0: ताइवान यू बैक और डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन के मंत्री ली योंग चेओल से महत्वपूर्ण मुलाकातें की। सियोल में हुई इन बैठकों में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच रक्षा, रक्षा उद्योग, साइबर सुरक्षा, तकनीकी सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर व्यापक चर्चा हुई।
1: वी मस्ट फुल्ली लीवरेज द ट्रस्टेड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड द रिपब्लिक ऑफ कोरिया। द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एंड द प्रेसिडेंट ई जेमयूंग हैव बोथ प्लेस्ड स्ट्रांग इम्फेसिस ऑन एडवांसिंग दिस पार्टनरशिप अक्रॉस मल्टीपल डोमेन्स विद डिफेंस इमर्जिंग एज एन इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ अवर बाइलेटरल कोऑपरेशन।
0: इन अहम बैठकों से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सियोल में नेशनल सेमेट्री ऑफ कोरिया पहुंचे, जहां उन्होंने देश के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने पुष्प अर्पित कर उन सैनिकों को नमन किया जिन्होंने अपने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि वीर जवानों का साहस, समर्पण और देशभक्ति आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आज तक ब्यूरो।
2: अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर नए हमले की डेडलाइन का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि अगले 48 घंटे में पीस डील साइन नहीं हुई तो एक बार फिर अमेरिका हमला करेगा। ईरान को दिए गए आखिरी अल्टीमेटम के मुताबिक अमेरिका शुक्रवार, शनिवार या रविवार को हमला कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी पर पलटवार करते हुए ईरान ने विनाशकारी हमले की चेतावनी दी है।
0: ईरान झुकने को नहीं तैयार, ट्रंप छेड़ेंगे वॉर। ट्रंप नेतन्याहू का प्लान, ईरान विध्वंस तैयार। अगले 48 घंटे में ईरान पर हमले की धमकी। ईरान के टारगेट लॉक ऑर्डर का इंतजार। इजरायली सेना ने हमले की तैयारी शुरू की। ईरान बोला हमला हुआ तो महाविनाश तय। महायुद्ध की घड़ी, दुनिया की टेंशन बढ़ी।
3: And now we're blowing it away. We're blowing everything away. And we're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly. They're tired of this should have happened for 47 years. Somebody should have done something about it. And it's going to happen. And it's going to happen fast. And you're going to see oil prices plummet. They're going to come down. There's so much oil out there. They're going to come plummeting down.
0: बीते कुछ घंटों में अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर दोबारा हमले को लेकर दो बड़े बयान दिए हैं। पहले ट्रंप ने दावा किया कि मिडिल ईस्ट के देशों की मांग पर उन्होंने ईरान पर नया हमला टाल दिया है। अमेरिकी सेना ईरान पर नए हमले के लिए पूरी तरह तैयार थी, लेकिन ट्रंप ने साफ कर दिया है कि हमला सिर्फ कुछ घंटों के लिए टला है। अगर अगले 48 घंटे के अंदर ईरान की तरफ से पीस डील को लेकर कोई अच्छी खबर नहीं आई तो ईरान पर विध्वंसक हमलों की शुरुआत हो जाएगी। मतलब एक बार फिर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू हो जाएगा। वहीं ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी पर विनाशकारी परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। यही ऐलान किया है कि ईरानी सेना की उंगली ट्रिगर पर है। इधर अमेरिका हमला करेगा, उधर अमेरिकी सैन्य ठिकानों के साथ मिडिल ईस्ट में बारूदी तबाही का तांडव ईरान शुरू कर देगा। मतलब ईरान भी अमेरिका के साथ महायुद्ध के लिए तैयार है। सबसे पहले ट्रंप के उस अल्टीमेटम को सुनिए जिसने दुनिया के लिए महायुद्ध की घंटी बजा दी है।
4: I mean, I'm saying two or three days, maybe Friday, Saturday, Sunday, something, maybe early next week, a limited period of time. Because we can't let them have a nuclear weapon.
0: ट्रंप की धमकी का मतलब यही है कि शुक्रवार, शनिवार या फिर संडे को ईरान पर एक बार फिर हमला हो सकता है। क्योंकि ईरान के साथ पीस डील को लेकर अब तक सहमति नहीं बनी है। ये तब है जब ईरान ने पीस डील का नया प्रस्ताव अमेरिका को भेज रखा है। मामला सिर्फ और सिर्फ ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर अटका और लटका हुआ है। ईरान ने साफ कहा है कि परमाणु प्रोग्राम पर किसी दबाव में निर्णय नहीं होगा। अमेरिका के साथ बातचीत होगी

0: लेकिन ईरान परमाणु प्रोग्राम पर झुकेगा नहीं। वहीं ट्रंप मानते हैं कि ईरान का परमाणु प्रोग्राम सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है।
1: I'm in the middle of a negotiation. I'm saying you cannot have a nuclear weapon, and it comes over the wire that the Democrats want to stop Trump from further negotiations. They want to stop Trump from, if he has to, giving them another slap. They want to have a nuclear weapon to blow up the Middle East and to blow up, frankly, the world. It's not going to happen.
0: ईरान पर नए हमले को लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ ट्रंप अहम बैठक कर चुके हैं। इजरायली मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ईरान युद्ध खत्म करने को लेकर कोई बड़ा नया प्रस्ताव नहीं देता तो ट्रंप आखिरकार सैन्य कार्रवाई का रास्ता चुन सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि नेतन्याहू ने सोमवार रात करीब 5 घंटे लंबी सुरक्षा कैबिनेट बैठक की। इसमें सेना प्रमुख, एयरफोर्स चीफ और कई बड़े सुरक्षा अधिकारी शामिल हुए थे। मीटिंग का मकसद ईरान पर नए हमलों को लेकर सैन्य अफसरों के साथ चर्चा करना था। साफ है कि इजरायली सेना हमले के लिए तैयार है। चंद दिन पहले अमेरिकी वायुसेना का बेड़ा इजरायल पहुंच चुका है। महायुद्ध की तैयारियों के बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने ईरान को धमकी दी है।
2: We think that we've made a lot of progress. We think the Iranians want to make a deal. The President of the United States has asked us to negotiate in good faith, and that's exactly what we've done. So we're in a pretty good spot here, but there's an option B. And the option B is that we could restart the military campaign to continue to prosecute the case, to continue to try to achieve America's objectives. And we could talk a little bit about what that looks like, but that's not what the President wants, and I don't think it's what the Iranians want either.
0: अमेरिका की धमकी को लेकर IRGC ने बयान जारी करते हुए ट्रंप को अंदाज भुगतने की सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल अपनी बड़ी और बार बार की रणनीतिक पराजय से सबक लेने में विफल रहे हैं और एक बार फिर धमकियों का सहारा ले रहे हैं। उन्हें ये पता होना चाहिए कि दुनिया की दो सबसे महंगी सेनाओं ने अपनी सभी सैन्य क्षमताओं का इस्तेमाल करके हम पर हमला किया। अभी हमने दुश्मनों के खिलाफ अपनी पूरी क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो युद्ध सिर्फ सीमित क्षेत्र तक नहीं रहेगा बल्कि पूरे इलाके में फैल जाएगा। हमारे करारे प्रहार उन जगहों को बर्बाद कर देंगे जिनकी कल्पना अमेरिका नहीं कर सकता। हम युद्ध के मैदान में लड़ने वाले लोग हैं और आप हमारी शक्ति को खोखले बयानों से नहीं बल्कि युद्ध के मैदान में देखेंगे। ईरान ने उस रिपोर्ट के बहाने ट्रंप पर निशाना साधा है जिसमें युद्ध के दौरान कम से कम 42 अमेरिकी सैन्य विमानों के नुकसान का जिक्र है। दरअसल अमेरिकी संसद की रिसर्च एजेंसी कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 28 फरवरी से ईरान के साथ जंग में अमेरिका के कम से कम 42 विमान या तो नष्ट हो गए हैं या उन्हें नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि कई मामलों की जानकारी अभी गोपनीय रखी गई है। अमेरिकी रिपोर्ट को लेकर ईरान के विदेश मंत्री ने ट्रंप को दोबारा जंग शुरू नहीं करने की नसीहत दी है। ईरान पर युद्ध शुरू होने के महीनों बाद अमेरिकी कांग्रेस ने अरबों डॉलर मूल्य के दर्जनों विमानों के नुकसान को स्वीकार किया है। हमारी शक्तिशाली सशस्त्र सेनाओं ने सबसे पहले एक चर्चित F-35 विमान को मात गिराने की पुष्टि की है। भविष्य के किसी भी संघर्ष में और भी कई आश्चर्य देखने को मिलेंगे। हमने जो सबक सीखे हैं और जो ज्ञान प्राप्त किया है उसके आधार पर युद्ध में वापसी कई और आश्चर्यों से भरी होगी। धमकियों के बीच ईरान ने भी महायुद्ध की घंटी बजा दी है। ईरान का दावा यही है कि अस्थायी युद्ध विराम के वक्त का इस्तेमाल उसने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए किया है। सैन्य बलों ने युद्ध विराम की अवधि को युद्ध के समय के रूप में माना है और इस अवसर का उपयोग अपनी युद्ध क्षमताओं को मजबूत करने के लिए किया है। ईरान को घेरा या पराजित नहीं किया जा सकता है। अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। दोनों तरफ सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हैं। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर दोबारा हमले का आदेश दिया तो महायुद्ध की चपेट में अब की बार पूरी दुनिया आ सकती है क्योंकि ईरान खुला खुला ऐलान कर चुका है कि इस बार अपनी उन विध्वंसक मिसाइलों से प्रहार करेगा जिनका इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया है। आज तक ब्यूरो।
3: आजकल सबसे ज्यादा चर्चाओं में है बंगाल और उसकी वजह है शुभेंदु अधिकारी के फैसले और ताबड़तोड़ एक्शन। बंगाल में आजकल हिंदुत्व का मॉडल चल रहा है और बुलडोजर गरज रहा है। अतिक्रमण पर एक्शन जोरदार लिया जा रहा है। बंगाल में TMC के ऑफिस पर पीला पंजा चला है तो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों पर भी एक्शन की तैयारी है।
0: एक्शन में शुभेंदु, हिंदुत्व ही केंद्र बिंदु।
4: जय श्री राम, जय श्री राम।
0: बंगाल में शुभेंदु सरकार बुलडोजर ने दिखाई था। टीएमसी के दफ्तर पर पीला पंजा, अभिषेक बनर्जी पर शिकंजा। बंगाल में सीएम शुभेंदु के एक्शन पर तगड़ा सियासी रिएक्शन। शुभेंदु अधिकारी का सीधा ऐलान, एक बार जो कमिटमेंट कर दी।
4: बोलबो जो हमारे साथ, हम उनका साथ।
0: बंगाल में 207 सीटें जीतकर बीजेपी का शासन आया है और शुभेंदु अधिकारी ने हिंदुत्व का मॉडल अपनाया है। सीएम ऑफिस में कुर्सी पर भगवा तौलिया और गले में भगवा गमछा शुभेंदु अधिकारी की पहचान बन चुके हैं। अब बंगाल में एक तरफ तो शुभेंदु अधिकारी का हिंदुत्व मॉडल चल रहा है, दूसरी तरफ बुलडोजर दौड़ रहा है। पहले बात बुलडोजर की करते हैं। आसनसोल में टीएमसी ऑफिस ढहाया, कोलकाता में अतिक्रमण का सफाया, हावड़ा में 5 मंजिला इमारत पर हथौड़ा। शुभेंदु का मैसेज क्लियर है, अतिक्रमण पर अब सीधे बुलडोजर चलेगा। जो कानून तोड़ेगा शुभेंदु सरकार उसको तोड़ देगी। जैसे आसनसोल में टीएमसी के दफ्तर को तोड़ दिया, कोलकाता और हावड़ा के बाद आसनसोल के बनपुर में बुलडोजर की दहाड़ सुनाई दी है। त्रिवेणी मोड़ के करीब सेल की जमीन पर टीएमसी यूथ विंग का ऑफिस बना हुआ था। इसको यानी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की तरफ से कई बार अवैध ऑफिस को हटाने के लिए नोटिस दिया गया था। टीएमसी सत्ता में थी तो यूथ विंग के लोगों ने जबरदस्ती वहां निर्माण कर लिया, लेकिन सत्ता बदलते ही भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में उस ऑफिस को तोड़ दिया गया है। अब टीएमसी कह रही है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई है, जबकि शुभेंदु अधिकारी साफ साफ कह रहे हैं कि वो बीजेपी के हर कमिटमेंट को पूरा करेंगे।
5: झुकने वाला आदमी नहीं हूँ, डराने का काम करने का कोई जरूरत नहीं है। भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा।
0: आसनसोल में टीएमसी के दफ्तर पर बुलडोजर चला तो कोलकाता में ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के नंबर दो अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों पर एक्शन का नोटिस मिला।
6: हम लोग इस वक्त खड़े हैं दक्षिण कोलकाता के हरीश मुखर्जी रोड पर और हमारे पीछे ये जो घर आप देख पा रहे हैं, ये जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं, 188A शांति निकेतन जिसका नाम है, ये है तृणमूल कांग्रेस के सांसद, लोकसभा के सांसद अभिषेक बनर्जी का घर। और इसी घर पे कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक नोटिस जारी किया है और उस नोटिस में ये कहा गया है कि ये जो स्ट्रक्चर, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसका कुछ हिस्सा अनऑथराइज्ड है, इलीगल है, और इसलिए ये नोटिस सर्व किया गया है अभिषेक बनर्जी को। मेरे हाथ में इस नोटिस का कॉपी आपको दिखा दे, जिसमें लिखा है 7 दिन के अंदर उनको रिस्पॉन्ड करना है क्यों इस बिल्डिंग में अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हुआ है।
0: आपको बता दें कि कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अभिषेक बनर्जी की 17 संपत्तियों पर नोटिस भेजा है। इन संपत्तियों की जांच हो रही है और संकेत ये भी दिए गए हैं कि अभिषेक बनर्जी की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर भी चलाया जा सकता है। नगर निगम ने ये भी निर्देश दिया है कि गैर कानूनी निर्माण को 7 दिनों के भीतर ध्वस्त कर दिया जाए। बड़ी बात यह है कि कोलकाता के नगर निगम के मेयर अभी टीएमसी विधायक फिरहाद हाकिम ही हैं और उनका दावा है कि उन्हें अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जारी नोटिस के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
7: हम पॉलिसी मेकर हैं, हमको ये बारे में कोई जानकारी नहीं।
0: ऐसे में टीएमसी की एक बैठक में मौजूद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि चुनावी हार के बावजूद पार्टी अपनी राजनीतिक लड़ाई जारी रखेगी। वो जो चाहे करे, मेरा घर गिरा दें, नोटिस भेजें, मैं इन बातों के आगे नहीं झुकूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, बीजेपी के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। कोलकाता पश्चिम बीजेपी ने अभिषेक बनर्जी को लेकर दावा किया है कि उनके पास कोलकाता में 43 संपत्तियां हैं। बीजेपी ने अभिषेक की इन संपत्तियों की लिस्ट भी शेयर की है। इनमें से कई संपत्तियां अभिषेक और उनके सहयोगियों और पारिवारिक सदस्यों के संयुक्त स्वामित्व वाली बताई जा रही हैं, और अब इन संपत्तियों की जांच की बात कही जा रही है।
5: पहले घाटा का राजू नस्कर, आठरा पपाटी, दूसरा कौसबा का सोना पप्पू 24 प्रॉपर्टी, तीसरा भातीजा अभिषेक बनर्जी लिप्स एंड बाउंस का 14, अपने नाम में 4, पिताजी का नाम में और भी 6 प्रॉपर्टी, और चौथा नाम सुनना चाहता है जावेद खान का बेटा 90 प्रॉपर्टी। ये लोग लूटा है।
0: चुनाव से पहले तक टीएमसी के शासन के दौरान सबसे ताकतवर रहे अभिषेक बनर्जी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। बंगाल में फलता उपचुनाव के लिए गुरुवार को वोट डाले जाएंगे और मंगलवार को इस सीट से चुनाव लड़ रहे टीएमसी कैंडिडेट जहांगीर खान ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। फलता विधानसभा डायमंड हार्बर लोकसभा सीट का हिस्सा है, वो डायमंड हार्बर जहाँ से अभिषेक बनर्जी सांसद है। यानी मुश्किलों के दौर में अभिषेक के लिए शुभेंदु सरकार अब सबसे बड़ा चैलेंज बनकर आई है।
5: ममता बनर्जी का जो घमंड था तोड़ दिया आप लोग। एक गांव से आया हुआ लड़का को आप लोग आपने अपना आदमी बना लिया। मैं मेरा काम पूरा करूंगा। जय जय श्री राम।
3: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: है ज्योतिष में गुरु चांडाल योग, गुरु चांडाल योग का जीवन पर कैसा पड़ता है प्रभाव, क्या करें उपाय कि गुरु चांडाल योग के प्रभाव से बच जाएं, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्यचक्र।
10: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट। मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल, वी वेक अप फॉर द स्वीट रश ऑफ गेटिंग दैट वार्म delicious breakfast right before it ends.
11: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
10: Ba-da-ba-ba-ba.
12: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
13: The Tailgate Top 20. Hey, it's Blake from the Garth Channel, and I'm your host of the Tailgate Top 20. Join me every weekend as we pick a year, go back in time, and count down the biggest tailgating songs around. And since this is Tailgate Radio, you know anything goes. The Tailgate Top 20. This weekend with me, Blake, from the Garth Channel, only on Tailgate Radio.
14: The Tailgate Top 20.
15: Search for Tailgate Radio on TuneIn to listen.
13: Try to keep up.

0: भीषण गर्मी से तपता हिंदुस्तान, उबलते शहर, लू से उत्तर भारत का बुरा हाल, यह है गर्मी का आपातकाल। अगले 7 दिन भीषण लू का अलर्ट, हे भगवान धरती बचाओ। पूरा हिंदुस्तान तप रहा है, उत्तर भारत में सबसे बुरा हाल है। हरियाणा से लेकर राजस्थान तक और दिल्ली से लेकर यूपी एमपी तक आसमान से अंगारे बरस रहे हैं। शहर शहर तंदूर लगा हुआ है, हर शहर का पारा 45 के पार चला गया है। रात को भी ऐसा लगता है जैसे लू चल रही है। 19 मई मंगलवार को दिल्ली में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया, 46.5 डिग्री सेल्सियस। सफदरजंग और पालम में 45.1 डिग्री, लोधी रोड में 45.2 डिग्री और आयानगर में 45.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। ये तापमान सामान्य से 3 से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक है, जो ये बता रहा है कि दिल्ली में गंभीर हीट वेव यानी कि लू चल रही है। रात में भी आराम नहीं है और मौसम विभाग डरा रहा है कि अभी तो इस गर्मी से दिल्ली एनसीआर में राहत नहीं मिलने वाली।
1: अभी
0: दिल्ली से सटे पंजाब और हरियाणा में बुरा हाल है, भीषण गर्मी और लू चल रही है। पंजाब में मंगलवार को सबसे अधिक तापमान फरीदकोट में 47.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, पटियाला में 45.3 डिग्री, बठिंडा एयरपोर्ट पर 45.9 डिग्री, लुधियाना में 44.2 डिग्री और अमृतसर व चंडीगढ़ में 43 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान दर्ज हुआ। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि आने वाले कुछ दिनों तक इस गर्मी और लू से राहत नहीं मिलने वाली। राजस्थान में गर्मी का असर अब केवल दिन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि रातें भी तपने लगी हैं। पिछले 2 दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव का असर और तेज हो गया है। आने वाले दिनों में भी राहत मिलने की संभावना कम दिखाई दे रही है। बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के 9 शहरों में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। पूरे मध्य प्रदेश का भी यही हाल है। एमपी में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। खजुराहो में पारा पहुंचा 46.8 डिग्री सेल्सियस तक। भोपाल का बोट क्लब पर्यटकों से भरा रहता था, लेकिन भीषण गर्मी में यहां से भी पर्यटक गायब हैं। सड़कों पर सन्नाटा है। दोपहर को तो ऐसा लगता है जैसे कोई कर्फ्यू लग गया हो। यहां भी मौसम विभाग ने हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज तक देर रहा।

आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक, मोदी सरकार 3.0 के कार्यकाल की होगी समीक्षा, जून में मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें, सभी केंद्रीय राज्य मंत्रियों को दिल्ली में रहने के निर्देश। पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी के गद्दार वाले बयान पर सियासी गदर, बीजेपी ने कहा ये पाकिस्तान की भाषा, मेलोनी को मेलोडी गिफ्ट पर भी राहुल का तंज। आज दिल्ली एनसीआर में नहीं चलेंगे ऑटो टैक्सी, किराए में बढ़ोतरी की मांग को लेकर अगले 3 दिन तक हड़ताल, एक बेस्ट कंपनियों की वजह से नुकसान का दावा। प्रचंड गर्मी में झुलसा हिंदुस्तान, 48 डिग्री तापमान के साथ दुनिया के सबसे गर्म शहरों में शुमार, यूपी का बांदा, दिल्ली में 46 डिग्री के पार पहुंचा पारा, तेजी से बढ़ रही है मरीजों की संख्या। ईरान पर हमले का काउंटडाउन, ट्रंप ने दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम, कहा डील साइन या ईरान खत्म, रविवार तक हो सकता है हमला, ईरान ने कहा विनाशकारी होगा जवाब।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा पराशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ जो कि दिल्ली से है। दरअसल दिल्ली में 24 घंटे में 4 हत्याओं से हड़कंप मच गया है। संसद भवन से करीब 20 किलोमीटर दूर रोहिणी में जॉनी और मयंक नाम के दो नाबालिग युवकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। अवन विहार इलाके में बुधवार शाम ये वारदात हुई है। हथियारों ने चाकू से गोद कर दोनों नाबालिगों को मार डाला। कुछ ही देर में मुख्य आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया। वही हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के वेलकम इलाके में भी एक युवक की हत्या कर दी गई। अमानतुल्ला कुरैशी नाम के युवक को गोली मारी गई। पुलिस के मुताबिक यहां भी आपसी रंजिश में हत्या की गई है। वही तीसरी वारदात इंद्रपुरी में हुई है, जहां पर तीसरी मंजिल से गिरने की वजह से एक महिला की मौत हो गई। वही महिला के मायके वालों का आरोप है कि उनकी बेटी को उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए घर की छत से नीचे फेंक दिया। तो 4 वारदात दिल्ली में पिछले 24 घंटे में हुई है। 24 घंटे में दिल्ली में 4 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसमें पुलिस के मुताबिक कहीं पर आपसी रंजिश का मामला बताया जा रहा है, कहीं पर दहेज की वजह से महिला की हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। दरअसल जो तीसरी वारदात हुई है वो इंद्रपुरम में हुई है, जहां पर घर पर तीसरी मंजिल में गिरने की वजह से एक महिला की मौत हो गई है, और जिसमें परिवार वाले आरोप ये लगा रहे हैं कि ससुराल वालों ने उनकी बेटी को मार दिया है। परिजनों ने दहेज का आरोप लगाया है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 4 लोगों की हत्या की खबर सामने आई है, और इसकी अभी पुलिस जांच कर रही है। अलग अलग इलाकों से जहां चाकू गोद कर नाबालिगों को मार डाला, तो कुछ ही देर में मुख्य आरोपी को पुलिस ने फिलहाल पकड़ लिया है। उस केस में हत्या में इस्तेमाल उस चाकू को भी बरामद किया गया है। ये पूरी घटना अमन विहार इलाके की है। बुधवार शाम को ये वारदात हुई है। तो पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 4 वारदात हुई है, 4 और जिसकी वजह से मौत भी हुई है। राजधानी में अपराधी बेखौफ हो गए, इससे ये समझा जा सकता है, और कानून ठोस किया जा रहा है, लगातार प्रयास किया जा रहा है। जांच पड़ताल इस पूरे मामले में की जा रही है। रोहिणी में 2 नाबालिगों को चाकू से गोद दिया गया, 2 युवकों को चाकू से गोदा गया। रोहिणी में हत्याकांड, वेलकम इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो ये 3 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, रोहिणी, इंद्रपुरी और वेलकम, जहां पर इंद्रपुरी में माना जा रहा है कि परिजन ये दावा कर रहे हैं कि ससुराल वालों ने उनकी बेटी की हत्या की है। दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। वहीं और रोहिणी और वेलकम में भी कुछ घटनाएं सामने आई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 4 हत्याओं से हड़कंप मच गया है। संसद भवन से करीब 20 किलोमीटर दूर रोहिणी में जॉनी और मयंक नाम के 2 नाबालिग युवकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। तो वही केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों के बीच आज पीएम आवास पर कैबिनेट की एक अहम बैठक होने वाली है। पीएम मोदी खुद इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और बैठक शाम 4 बजे होगी। सभी केंद्रीय और राज्य मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में सरकार के कार्यकाल की मध्यावधि समीक्षा की जाएगी। साथ ही कैबिनेट की यह महत्वपूर्ण बैठक मोदी 3.0 सरकार में संभावित फेरबदल को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच हो रही है। सूत्रों के मुताबिक मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार और फेरबदल जून के दूसरे सप्ताह में हो सकता है। बैठक में प्रमुख सरकारी योजनाओं, परियोजनाओं के क्रियान्वयन और प्रगति की भी समीक्षा की जाएगी। बैठक में शामिल होंगे सभी केंद्रीय और राज्य मंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक में शामिल होंगे पीएम आवास पर। लगभग शाम 4 बजे ये बैठक होने वाली है, जहां पर पीएम मोदी की बैठक, इस पूरी बैठक में पीएम मोदी अध्यक्षता करेंगे। कैबिनेट की अहम बैठक है। मोदी 3.0 सरकार के कार्यकाल की समीक्षा इस बैठक में की जाएगी। तो वही पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बीच आज संसदीय समिति की एक अहम बैठक होने वाली है। दरअसल इस बैठक में ताजा हालात की समीक्षा होगी। पेट्रोलियम गैस सहित तमाम सरकारी उपक्रम और मंत्रालय इस बैठक में ताजा रिपोर्ट पेश करेंगे। वही साथ ही पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन, सुरक्षा और संरक्षण की समीक्षा भी की जाएगी। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बीच आज संसदीय समिति की एक अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में ताजा हालात की समीक्षा की जाएगी, साथ ही पेट्रोलियम मंत्रालय की रिपोर्ट की समीक्षा भी की जाएगी। वहीं आज से दिल्ली में ऑटो टैक्सी वाले अगले 3 दिन की हड़ताल पर है। जी हां, ऑटो यूनियन किराए में बढ़ोतरी की मांग कर रही है और दावा है कि ईंधन की लगातार बढ़ती कीमतें, पुराने किराए और ऐप बेस्ड कंपनियों की वजह से ऑटो और टैक्सी वालों को नुकसान हो रहा है। 3 दिन की यह हड़ताल 23 मई तक रहेगी। इस दौरान दिल्ली NCR में ऑटो टैक्सी, ई रिक्शा और प्राइवेट कैब सेवाएं लगभग पूरी तरह से ठप रहने वाली है। इससे सुबह शाम सफर करने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही बाजारों, अस्पतालों, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन तक आने जाने में भी लोगों को दिक्कत हो सकती है। ऐप बेस्ड कंपनियों की वजह से नुकसान का दावा ऑटो टैक्सी वाले कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो हड़ताल पर है। आज पूरे दिल्ली NCR में सफर करना लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की कामयाब यात्रा के बाद दिल्ली आ रहे हैं। इटली से पीएम मोदी रवाना हो चुके हैं और पीएम मोदी का इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को दिया गया एक साधारण सा गिफ्ट दोनों मुल्कों के रिश्तों के लिए बहुत मूल्यवान हो गया है। दरअसल देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में मोदी का मेलोनी ट्रॉफी वाले गिफ्ट की चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर मेलोनी लगातार ट्रेंड कर रहा है और बहुत लोगों के मन में सवाल है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री को तोहफे में भारत में बनने वाली साधारण सी मेलोनी ट्रॉफी ही क्यों दी।
1: Word which states that very well, which is parishram, which means hard work, constant commitment, fatigue, a word which I know is very often used in India.
2: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला।
3: मेलोनी को मोदी ने क्यों दी मेलोडी टॉफी?
4: प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रॉट अस अ गिफ्ट, अ वेरी वेरी गुड टॉफी।
3: मोदी की मेलोडी डिप्लोमेसी के पीछे क्या है? भारत इटली रिश्तों में मेलोडी वाली मिठास। मोदी, मेलोनी और मेलोडी गिफ्ट। आज पूरी दुनिया में इन्हीं तस्वीरों की चर्चा हो रही है। चर्चा की वजह है पीएम मोदी की तरफ से इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को तोहफे में मेलोडी टॉफी देना, जो भारत में एक लोकप्रिय टॉफी है। मेलोनी ने अपने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहा है।
4: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
2: Melt.
3: ये वीडियो दोनों नेताओं के बीच की दोस्ताना केमिस्ट्री की एक और झलक है। आज यही वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, 100 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है। सवाल यही है कि मेलोनी को पीएम मोदी ने मेलोडी टॉफी ही गिफ्ट में क्यों दी?
5: Hello from the Melody team.
3: तो इस सवाल का जवाब 15 जून 2024 को मेलोनी की तरफ से साझा किए गए वीडियो में छिपा है। तब मेलोनी ने अपने सोशल मीडिया पर ये वीडियो शेयर किया था। वीडियो में पीएम मोदी और मेलोनी हैं, जिसमें वो कहती हैं, मेलोडी टीम की तरफ से सभी को नमस्कार। वीडियो शेयर करते हुए इटली की पीएम ने लिखा था, नमस्ते दोस्तों फ्रॉम मेलोडी। तभी सोशल मीडिया पर मेलोडी टीम खूब वायरल हुआ था। पीएम मोदी ने मेलोनी की टीम मेलोडी का जवाब मेलोडी टॉफी से दिया, जो भारत में ज्यादातर लोग समझते हैं और लोग जिसे स्वाद में मिठास घोलने वाली टॉफी मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रीको रोमन सभ्यता में मेलोडी का अर्थ है सुर, लय और ताल के संगम वाला संगीत। यानी टीम मेलोडी और मेलोडी टॉफी के गिफ्ट का मतलब है इटली और भारत के रिश्तों में पर्सनल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, रिश्तों में मेलोडी जैसा संगम और मिठास है।
6: With Prime Minister Modi over the past 3.5 years, during which we have gotten to deeply know one another and our respective points of view. We have also created an honest friendship based on respect and mutual trust. I have personally learned to appreciate the vision, the pragmatism and the leadership of the Prime Minister, as shown by how popular he is amongst his citizens after many years in government.
2: आज की बहुत ही उपयोगी बैठक के लिए और आपकी मित्रता के लिए मैं एक बार फिर आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से मैं आपको भारत आने का एक बार फिर से निमंत्रण देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राजिए मिले।
3: इन तस्वीरों में दोनों मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों की पर्सनल केमिस्ट्री नजर आती है। ये भी सच है कि अच्छे रिश्तों का असर भारत और इटली के रिश्तों पर पड़ा है। बीते कुछ सालों में इटली और भारत के रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं। बड़ा बदलाव ये है कि इटली आज भारत के करीब आ रहा है। इटली की विदेश नीति में ये बदलाव कोविड महामारी और मेलोनी के सत्ता में आने के बाद दिखा।
6: We are further strengthening our relation all the way up to the special strategic partnership, the highest ever reached in the relations between our two nations. So I think it's safe to say that now Italy and India are closer than they have ever been.
3: आज भारत और इटली का रिश्ता ट्रिपल डी के फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहा है। ट्रिपल डी का फॉर्मूला क्या है समझिए। 3D मतलब डिजिटल डिप्लोमेसी, 3D मतलब डिफेंस डिप्लोमेसी, 3D मतलब डायस्पोरा डिप्लोमेसी।
2: मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
3: सबसे पहले बात डिजिटल डिप्लोमेसी की। डिजिटल डिप्लोमेसी के जरिए भारत और इटली सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा शेयरिंग में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इसी कड़ी में भारत विज्ञान और तकनीक का क्षेत्र हो, साइबर सिक्योरिटी हो या फिर क्वांटम टेक्नोलॉजी, सभी सेक्टर्स में दोनों मुल्क कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। दोनों मुल्क मिलकर कई अहम शोध भी कर रहे हैं। और तो और, इटली के जिनोवा पोर्ट से भारत तक डेटा केबल बिछाई जा चुकी है। ठीक ऐसे ही डिफेंस सेक्टर में भी इटली और भारत की पार्टनरशिप बहुत अहम है। लिबरेशन ऑफ इटली आंदोलन के दौरान भारत के 5,782 सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। यानी भारत और इटली के रिश्ते गहरे और पुराने हैं। दोनों मुल्कों के बीच 2023 में रक्षा सहयोग समझौता हुआ। दोनों देशों ने अप्रैल 2025 में डिफेंस इंडस्ट्री के सेक्टर को मजबूत करने के लिए MOU साइन किया। इटली और भारत डिफेंस सेक्टर के कई प्रोजेक्ट्स पर मिलकर काम कर रहे हैं। मकसद है रक्षा से जुड़े नए हथियार और तकनीक को मिलकर विकसित करना और फिर साझा उत्पादन करना। भारत और इटली के बीच रिश्तों की मजबूत कड़ी का एक आधार डायस्पोरा डिप्लोमेसी भी है। इटली में बड़ी संख्या में भारतीय पूरे सम्मान के साथ रहते हैं। इसे समझिए। नवंबर 2023 में भारत और इटली के बीच माइग्रेशन और मोबिलिटी एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट का मकसद है इटली में भारतीय कामगारों को रोजगार मिलना। एग्रीमेंट के तहत भारतीय कामगारों का कोटा इटली ने निर्धारित कर रखा है। इटली हर साल 5,000 भारतीय कामगारों को सीजनल वर्क की गारंटी देता है, जबकि 7,000 भारतीय कामगारों को नॉन सीजनल वर्क की गारंटी। ये भारतीय कामगारों को इटली में नौकरी के मौके देता है। इटली में बढ़ती भारतीयों की मजबूत मौजूदगी का असर है कि इटली से भारत में आने वाली रेमिटेंस मनी, यानी वो धनराशि जो भारतीय घर भेजते हैं, उसमें 32% का इजाफा साल 2025 में हुआ है। मतलब यही है कि इटली और भारत के रिश्ते अब एक नए आयाम को छू रहे हैं, जहां दोनों मुल्कों के प्रमुखों के बीच अच्छे रिश्ते हैं, अच्छी केमिस्ट्री है। आज तक ब्यूरो।
0: बात बंगाल की कर लेते हैं, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में है बंगाल, और उसकी वजह भी है सीएम शुभेंदु अधिकारी के फैसले और ताबड़तोड़ एक्शन। बंगाल में आजकल हिंदुत्व का मॉडल चल रहा है और बुलडोजर गरज रहा है। अतिक्रमण पर एक्शन जोरदार हो रहा है। बंगाल में टीएमसी के ऑफिस पर पीला पंजा चला, जो कि तो वही ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों पर भी एक्शन की तैयारी है।
3: एक्शन में शुभेंदु, हिंदुत्व ही केंद्र बिंदु।
7: जय श्री राम।
3: बंगाल में शुभेंदु सरकार बुलडोजर ने दिखाई धार। टीएमसी के दफ्तर पर पीला पंजा, अभिषेक बनर्जी पर शिकंजा। बंगाल में सीएम शुभेंदु के एक्शन पर तगड़ा सियासी रिएक्शन। शुभेंदु अधिकारी का सीधा ऐलान, एक बार जो कमिटमेंट कर दी,
7: बोलबो जो हमारे साथ हम उनका साथ।
3: बंगाल में 207 सीटें जीतकर बीजेपी का शासन आया है और शुभेंदु अधिकारी ने हिंदुत्व का मॉडल अपनाया है। सीएम ऑफिस में कुर्सी पर भगवा तौलिया और गले में भगवा गमछा शुभेंदु अधिकारी की पहचान बन चुके हैं। अब बंगाल में एक तरफ तो शुभेंदु अधिकारी का हिंदुत्व मॉडल चल रहा है, दूसरी तरफ बुलडोजर दौड़ रहा है। पहले बात बुलडोजर की करते हैं। आसनसोल में टीएमसी ऑफिस ढहाया, कोलकाता में अतिक्रमण का सफाया, हावड़ा में 5 मंजिला इमारत पर हथौड़ा। शुभेंदु का मैसेज क्लियर है, अतिक्रमण पर अब सीधे बुलडोजर चलेगा। जो कानून तोड़ेगा शुभेंदु सरकार उसको तोड़ देगी। जैसे आसनसोल में टीएमसी के दफ्तर को तोड़ दिया, कोलकाता और हावड़ा के बाद आसनसोल के बनपुर में बुलडोजर की दहाड़ सुनाई दी है। त्रिवेणी मोड़ के करीब सेल की जमीन पर टीएमसी यूथ विंग का ऑफिस बना हुआ था। इसको यानी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की तरफ से कई बार अवैध ऑफिस को हटाने के लिए नोटिस दिया गया था। टीएमसी सत्ता में थी तो यूथ विंग के लोगों ने जबरदस्ती वहां निर्माण कर लिया, लेकिन सत्ता बदलते ही भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में उस ऑफिस को तोड़ दिया गया है। अब टीएमसी कह रही है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई है, जबकि शुभेंदु अधिकारी साफ साफ कह रहे हैं कि वो बीजेपी के हर कमिटमेंट को पूरा करेंगे।
7: झुकने वाला आदमी नहीं हूँ, डराने का काम करने का कोई जरूरत नहीं है। भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा।
3: आसनसोल में टीएमसी के दफ्तर पर बुलडोजर चला तो कोलकाता में ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के नंबर दो अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों पर एक्शन का नोटिस मिला।
8: हम लोग इस वक्त खड़े हैं दक्षिण कोलकाता के हरीश मुखर्जी रोड पर और हमारे पीछे ये जो घर आप देख पा रहे हैं, ये जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं 188A शांति निकेतन जिसका नाम है, ये है तृणमूल कांग्रेस के सांसद, लोकसभा के सांसद अभिषेक बनर्जी का घर। और इसी घर पे कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक नोटिस जारी किया है और उस नोटिस में ये कहा गया है कि ये जो स्ट्रक्चर, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसका कुछ हिस्सा अनऑथराइज्ड है, इलीगल है, और इसलिए ये नोटिस सर्व किया गया है अभिषेक बनर्जी को। मेरे हाथ में इस नोटिस का कॉपी आपको दिखा दे, जिसमें लिखा है 7 दिन के अंदर उनको रिस्पॉन्ड करना है क्यों इस बिल्डिंग में अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हुआ है।
3: आपको बता दें कि कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अभिषेक बनर्जी की 17 संपत्तियों पर नोटिस भेजा है। इन संपत्तियों की जांच हो रही है और संकेत ये भी दिए गए हैं कि अभिषेक बनर्जी की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर भी चलाया जा सकता है। नगर निगम ने ये भी निर्देश दिया है कि गैर कानूनी निर्माण को 7 दिनों के भीतर ध्वस्त कर दिया जाए। बड़ी बात यह है कि कोलकाता के नगर निगम के मेयर अभी टीएमसी विधायक फिरहाद हाकिम ही हैं और उनका दावा है कि उन्हें अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जारी नोटिस के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
9: हम पॉलिसी मेकर हैं, एमसी एक्ट में हमको ये बारे में कोई जानकारी नहीं।
3: ऐसे में टीएमसी की एक बैठक में मौजूद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि चुनावी हार के बावजूद पार्टी अपनी राजनीतिक लड़ाई जारी रखेगी, वो जो चाहे करे, मेरा घर गिरा दें, नोटिस भेजें, मैं इन बातों के आगे नहीं झुकूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए बीजेपी के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। कोलकाता पश्चिम बीजेपी ने अभिषेक बनर्जी को लेकर दावा किया है कि उनके पास कोलकाता में 43 संपत्तियां हैं। बीजेपी ने अभिषेक की इन संपत्तियों की लिस्ट भी शेयर की है। इनमें से कई संपत्तियां अभिषेक और उनके सहयोगियों और पारिवारिक सदस्यों के संयुक्त स्वामित्व वाली बताई जा रही हैं और अब इन संपत्तियों की जांच की बात कही जा रही है।
7: बेलेघाटा का राजू नस्कर, 18 पपाटी, दूसरा कौसबा का सोना पप्पू 24 प्रॉपर्टी, तीसरा भातीजा अभिषेक बनर्जी लिप्स एंड बाउंस का 14, अपने नाम में 4, पिताजी का नाम में और भी 6, 24 प्रॉपर्टी, और चौथा नाम सुनना चाहता है, जावेद खान का बेटा 90 प्रॉपर्टी, ये लोग लूटा है।
3: चुनाव से पहले तक टीएमसी के शासन के दौरान सबसे ताकतवर रहे अभिषेक बनर्जी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। बंगाल में फलता उपचुनाव के लिए गुरुवार को वोट डाले जाएंगे और मंगलवार को इस सीट से चुनाव लड़ रहे टीएमसी कैंडिडेट जहांगीर खान ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। फलता विधानसभा डायमंड हार्बर लोकसभा सीट का हिस्सा है, वो डायमंड हार्बर जहां से अभिषेक बनर्जी सांसद हैं। यानी मुश्किलों के दौर में अभिषेक के लिए शुभेंदु सरकार अब सबसे बड़ा चैलेंज बनकर आई है।
7: ममता बनर्जी का जो घमंड था तोड़ दिया आप लोग। एक गांव से आया हुआ लड़का को आप लोग आपने अपना आदमी बना लिया। मैं मेरा काम पूरा करूंगा, जय जय श्री राम।
0: तो अभिषेक बनर्जी को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, वरना तो अनधिकृत निर्माण पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। आपको बता दें कि शुभेंदु सरकार का बुलडोजर अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कोलकाता से लेकर हावड़ा तक अतिक्रमण पर बुलडोजर का जोरदार प्रहार हुआ।
3: कोलकाता में पुलिस पर पथराव तो शुभेंदु की चेतावनी, अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस पर पथराव, 8 जवान घायल। कोलकाता में पार्क सर्कस इलाके में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर आया तो सुरक्षा बलों पर पथराव कर दिया जाता है, 6 पुलिसकर्मी और 2 CRPF जवान घायल हो जाते हैं। पूर्व CM और TMC प्रमुख बनर्जी ने एक्स पर लिखा, बंगाल बुलडोजर राजनीति में यकीन नहीं करता, टैगोर और नेताजी की धरती पर आम नागरिकों के खिलाफ डर बल और तोड़फोड़ के जरिए शासन नहीं चलाया जा सकता। जवाब में CM शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जो भी पुलिस पर पत्थरबाजी करेगा उसे सबक सिखाया जाएगा,
7: आपको भुगतना पड़ेगा, बहुत जोर भुगतना पड़ेगा। पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करेगा तो सबक सिखाने काम भारतीय जनता पार्टी का सरकार करेगा।
3: जबकि हावड़ा में नगर निगम ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए एक 5 मंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया। नियमों को दरकिनार करते हुए ये इमारत खड़ी कर दी गई थी। गुंडागर्दी करने वाले TMC के नेताओं पर एक्शन। बंगाल पुलिस ने उत्तरी बंगाल के कूच बिहार जिले में TMC के एक ब्लॉक अध्यक्ष को गिरफ्तार किया है। अब्दुल कादिर नाम के इस TMC नेता पर हिंसा और छेड़छाड़ का आरोप है। पुलिस सूत्रों की माने तो बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले अब्दुल कादिर पर तोड़फोड़, लूटपाट और छेड़छाड़ के आरोप हैं और इन आरोपों के संबंध में मिली एक शिकायत के आधार पर तृणमूल नेता को गिरफ्तार किया गया है।
10: अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, 0 टॉलरेंस। मैं ऑन स्पॉट आकर उनको साथ मुलाकात किया, नहीं बुला के बात किया। ये मैसेज जो उपद्रवी है उनको भी ये मैसेज चला जाना चाहिए, ये सरकार अपने कार्रवाई करेगा।
3: पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद अब बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है, तो बंगाल में शुभेंदु अधिकारी हिंदुत्व की पिच पर खुलकर खेल रहे हैं। अब उनके ताजा फैसलों पर गौर करिए। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद। बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद। बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी। बंगाल में मदरसा एवं अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा। बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गाय के वध पर रोक। OBC सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा, जिसका असर मुस्लिम OBC पर। और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत। ऐसे में फुरफुरा दरगाह शरीफ ने मुसलमानों से अपील की है कि इस साल बकरीद पर गाय की कुर्बानी ना दें। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा तोहा सिद्दीकी ने मुसलमानों से ये अपील की है,
11: মুসলিম ভাইদেরকে যে অনুরোধ করব, আপনারা গরু কিনবেন না, গরু আপনারা কিনে কুরবানি দেবেন না, আমরা দেব না। এতে শুধু আমাদের অসুবিধা হয় না অন্য কারো অসুবিধা হয় সেটা দেখার বিষয় আছে। এতে যদি আমরা কুরবানি গরু দিয়া বন্ধ করি তাহলে আমাদের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আমরা স্বাবলম্বী হব বলে মনে করি।
3: इतना ही नहीं, शुभेंदु सरकार ने OBC आरक्षण व्यवस्था में भी बदलाव किया है। राज्य में OBC आरक्षण 17% से घटाकर 7% कर दिया गया है। नई लिस्ट के मुताबिक अब सिर्फ 66 जातियां OBC आरक्षण के दायरे में रहेंगी। धर्म आधारित वर्गीकरण की व्यवस्था भी खत्म कर दी गई है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।
0: क्या रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से।
13: क्या है ज्योतिष में गुरु चांडाल योग? गुरु चांडाल योग का जीवन पर कैसा पड़ता है प्रभाव? क्या करें उपाय कि गुरु चांडाल योग के प्रभाव से बच जाएं? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र।
14: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
12: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।

आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक, मोदी सरकार 3.0 के कार्यकाल की होगी समीक्षा, जून में मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें, सभी केंद्रीय राज्य मंत्रियों को दिल्ली में रहने के निर्देश। पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी के गद्दार वाले बयान पर सियासी गदर, बीजेपी ने कहा ये पाकिस्तान की भाषा, मेलोनी को मेलोडी गिफ्ट पर भी राहुल का तंज। आज दिल्ली एनसीआर में नहीं चलेंगे ऑटो टैक्सी, किराए में बढ़ोतरी की मांग को लेकर अगले 3 दिन तक हड़ताल, ऐप बेस्ड कंपनियों की वजह से नुकसान का दावा। प्रचंड गर्मी में झुलसा हिंदुस्तान, 48 डिग्री तापमान के साथ दुनिया के सबसे गर्म शहरों में शुमार यूपी का बांदा, दिल्ली में 46 डिग्री के पार पहुंचा पारा, तेजी से बढ़ रही है मरीजों की संख्या।

0: आपके साथ पूजा पराशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त गर्मी की खबर के साथ, क्योंकि मई की गर्मी इस बार लोगों की अग्नि परीक्षा ले रही है। जी हां, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक हालात ऐसे हैं कि दोपहर में सड़क पर निकलना खतरे से खाली नहीं है। सबसे ज्यादा बदतर हालात यूपी में हो चुके हैं, क्योंकि यूपी का बांदा लगातार तीसरे दिन देश का सबसे गर्म शहर बना रहा, जहां पर तापमान 48 डिग्री सेल्सियस रहा और उससे भी ज्यादा तक पहुंच गया है। दिल्ली में पारा 46 डिग्री को पार कर गया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल कोई भी मजबूत वेदर सिस्टम एक्टिव नहीं है, यानी कि गर्मी से राहत मिलने के आसार अभी भी कहीं ना कहीं कम नजर आ रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का हाल आपको बता रहे हैं। बांदा में 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पारा पहुंच गया, सबसे ज्यादा गर्म यूपी का बांदा माना जा रहा है। वहीं कानपुर में 45 डिग्री के पार पारा पहुंच गया है। लखनऊ में 45 डिग्री सेल्सियस गर्मी बढ़ चुकी है। झांसी में 45.4 डिग्री सेल्सियस पारा है। वहीं वाराणसी 44 डिग्री सेल्सियस पारा पहुंच चुका है। महाराष्ट्र का हाल आपको बताते हैं। महाराष्ट्र के वर्धा में 47 डिग्री सेल्सियस, अमरावती 46.2 डिग्री सेल्सियस, अकोला 45.2 डिग्री सेल्सियस, वहीं नागपुर और चंद्रपुर में भी 45 डिग्री के पार पारा पहुंच चुका है। अब तेलंगाना की हाल आपको बताते हैं, गर्मी कितनी बढ़ चुकी है। तेलंगाना में जगतियाल में 45.9 डिग्री सेल्सियस, निर्मल में 45.8 डिग्री सेल्सियस, वहीं नलगोंडा में 46.6 डिग्री सेल्सियस पारा पहुंच चुका है। दिल्ली में भी काफी ज्यादा भीषण गर्मी है। दिल्ली के रिज एरिया में 45.8 डिग्री सेल्सियस पारा है। वहीं सफदरजंग में 44.5 डिग्री सेल्सियस पारा पहुंच गया है। आया नगर में 45.2 डिग्री सेल्सियस, पालम और लोधी रोड का हाल ऐसा है कि 44.9 डिग्री सेल्सियस पालम का हाल है। वहीं राजस्थान के भी इलाके भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं। श्रीगंगानगर 46.5 डिग्री सेल्सियस पारा हो चुका है। चूरू में 44.5 डिग्री सेल्सियस, फलोदी 44.8 डिग्री सेल्सियस, वहीं पिलानी में 45.3 डिग्री सेल्सियस और बीकानेर और अलवर का हाल 44 के बाद पारा पहुंच चुका है। तो यह हर राज्य का हाल आपको बता रहे हैं। पंजाब में भी अधिकतम तापमान है, भटिंडा में 46.6 डिग्री सेल्सियस और चंडीगढ़ में 45.6 डिग्री सेल्सियस पारा पहुंच चुका है। यानी कई जगह ऐसी है जहां पर 45 के पार पारा पहुंच चुका है। तो मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल राहत की कोई भी उम्मीद नहीं लग रही। दिल्ली, यूपी सहित तकरीबन सभी राज्यों में अगले 7 दिन काफी मुश्किल होने वाले हैं।
1: ओवरऑल आप बात करें अगर स्पीकर के हिसाब से, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आने वाले दिनों में जहाँ तो ऑरेंज अलर्ट है, और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट है। अगर हम एनसीआर दिल्ली की बात करें तो वहाँ भी जो टेम्परेचर्स हैं हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ज़्यादा ही रहेंगे। हीट वेव, सीवियर हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल कर सकती हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है एनसीआर दिल्ली में भी जो टेम्परेचर है 47 के पास रहे।
0: तो यूपी के बांदा जिले में भीषण गर्मी पड़ रही है और यहां का तापमान 48 डिग्री से भी ज्यादा है। यूपी का ये जिला दुनिया के सबसे गर्म शहरों में लिस्ट में शामिल हो चुका है।
2: उत्तर प्रदेश का बांदा इन दिनों दुनिया के सबसे गर्म शहरों को मात दे रहा है। महज 2 दिनों में बांदा के तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। महज 2 दिन पहले बांदा में तापमान 47.4 डिग्री था, जो मंगलवार को 48.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। 10 जून 2019 को बांदा में पारा 49.2 डिग्री तक पहुंचा था। इस वक्त बांदा का तापमान जिस तेजी से बढ़ रहा है उससे आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही ये रिकॉर्ड टूट सकता है। हालात दिल्ली में भी कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। दिल्ली में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है, जिसकी वजह से अस्पतालों में डिहाइड्रेशन, थकावट, चक्कर आना और गर्मी से संबंधित अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।
3: जब ये गर्मी ज्यादा होती है, सबसे पहले तो आपको किसी तरीके से गर्मी से बचना है। हल्का कपड़ा, लूज कपड़े पहनिए, हल्के रंग के कपड़े पहनिए, जिससे क्योंकि जितना डार्क कलर क्लोथ पहनेंगे उतना ही ज्यादा हीट एब्जॉर्प्शन होता है।
2: मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में राहत की कोई उम्मीद नहीं है, यानी उत्तर भारत में पारा अभी और ऊपर चढ़ सकता है। हालांकि दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रहे मॉनसून के मद्देनजर दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में बारिश और तेज आंधी तूफान की चेतावनी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: तो वही अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर नए हमले की डेडलाइन का ऐलान किया। जी हां, ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि अगले 48 घंटे में पीस डील साइन नहीं हुई तो एक बार फिर से अमेरिका हमला करेगा। दोनों देश परमाणु प्रोग्राम को लेकर आमने सामने हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जे को लेकर भी दोनों देशों के बीच तनातनी है। ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप ने अब अल्टीमेटम दे दिया है, 48 घंटे में समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए तो ईरान का खात्मा हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति
4: But that's going to end soon, one way or the other. Oil is going to come tumbling down. On the Iran, I had no choice because they were going to have a nuclear weapon. We're not going to give them a nuclear weapon. But that's going to end soon, one way or the other. Oil is going to come tumbling down.

0: ईरान झुकने को नहीं तैयार, ट्रंप छेड़ेंगे वॉर। ट्रंप नेतन्याहू का प्लान, ईरान विध्वंस तैयार। अगले 48 घंटे में ईरान पर हमले की धमकी। ईरान के टारगेट लॉक ऑर्डर का इंतजार। इजरायली सेना ने हमले की तैयारी शुरू की। ईरान बोला, हमला हुआ तो महाविनाश तय। महायुद्ध की घड़ी, दुनिया की टेंशन बढ़ी।
1: And now we're blowing it away. We're blowing everything away, and we're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly. They're tired of this. This should have happened for 47 years. Somebody should have done something about it, and it's going to happen, and it's going to happen fast. And you're going to see oil prices plummet. They're going to come down. There's so much oil out there. They're going to come plummeting down.
0: बीते कुछ घंटों में अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर दोबारा हमले को लेकर दो बड़े बयान दिए हैं। पहले ट्रंप ने दावा किया कि मिडिल ईस्ट के देशों की मांग पर उन्होंने ईरान पर नया हमला टाल दिया है। अमेरिकी सेना ईरान पर नए हमले के लिए पूरी तरह तैयार थी, लेकिन ट्रंप ने साफ कर दिया है कि हमला सिर्फ कुछ घंटों के लिए टला है। अगर अगले 48 घंटे के अंदर ईरान की तरफ से पीस डील को लेकर कोई अच्छी खबर नहीं आई, तो ईरान पर विध्वंसक हमलों की शुरुआत हो जाएगी। मतलब एक बार फिर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू हो जाएगा। वहीं ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी पर विनाशकारी परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। यही ऐलान किया है कि ईरानी सेना की उंगली ट्रिगर पर है। इधर अमेरिका हमला करेगा, उधर अमेरिकी सैन्य ठिकानों के साथ मिडिल ईस्ट में बारूदी तबाही का तांडव ईरान शुरू कर देगा। मतलब ईरान भी अमेरिका के साथ महायुद्ध के लिए तैयार है। सबसे पहले ट्रंप के उस अल्टीमेटम को सुनिए जिसने दुनिया के लिए महायुद्ध की घंटी बजा दी है।
1: I mean, I'm saying two or three days, maybe Friday, Saturday, Sunday, something, maybe early next week, a limited period of time. Because we can't let them have a nuclear weapon.
0: ट्रंप की धमकी का मतलब यही है कि शुक्रवार, शनिवार या फिर संडे को ईरान पर एक बार फिर हमला हो सकता है, क्योंकि ईरान के साथ पीस डील को लेकर अब तक सहमति नहीं बनी है। ये तब है जब ईरान ने पीस डील का नया प्रस्ताव अमेरिका को भेज रखा है। मामला सिर्फ और सिर्फ ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर अटका और लटका हुआ है। ईरान ने साफ कहा है कि परमाणु प्रोग्राम पर किसी दबाव में निर्णय नहीं होगा। अमेरिका के साथ बातचीत होगी, लेकिन ईरान परमाणु प्रोग्राम पर झुकेगा नहीं। वही ट्रंप मानते हैं कि ईरान का परमाणु प्रोग्राम सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है।
1: I'm in the middle of a negotiation. I'm saying you cannot have a nuclear weapon, and it comes over the wire that the Democrats want to stop Trump from further negotiations. They want to stop Trump from, if he has to, giving them another slap. They want to have a nuclear weapon to blow up the Middle East and to blow up, frankly, the world. It's not going to happen.
0: ईरान पर नए हमले को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ ट्रंप अहम बैठक कर चुके हैं। इजरायली मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ईरान युद्ध खत्म करने को लेकर कोई बड़ा नया प्रस्ताव नहीं देता तो ट्रंप आखिरकार सैन्य कार्रवाई का रास्ता चुन सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि नेतन्याहू ने सोमवार रात करीब 5 घंटे लंबी सुरक्षा कैबिनेट बैठक की। इसमें सेना प्रमुख, एयरफोर्स चीफ और कई बड़े सुरक्षा अधिकारी शामिल हुए थे। मीटिंग का मकसद ईरान पर नए हमलों को लेकर सैन्य अफसरों के साथ चर्चा करना था। साफ है कि इजरायली सेना हमले के लिए तैयार है। चंद दिन पहले अमेरिकी वायुसेना का बेड़ा इजराइल पहुंच चुका है। महायुद्ध की तैयारियों के बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने ईरान को धमकी दी है।
2: We think that we've made a lot of progress. We think the Iranians want to make a deal. The President of the United States has asked us to negotiate in good faith, and that's exactly what we've done. So we're in a pretty good spot here, but there's an option B. And the option B is that we could restart the military campaign to continue to

0: prosecute the case, to continue to try to achieve America's objectives. And we could talk a little bit about what that looks like, but that's not what the president wants, and I don't think it's what the Iranians want either.
1: अमेरिका की धमकी को लेकर आईआरजीसी ने बयान जारी करते हुए ट्रंप को अंदाज भुगतने की सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल अपनी बड़ी और बार बार की रणनीतिक पराजय से सबक लेने में विफल रहे हैं और एक बार फिर धमकियों का सहारा ले रहे हैं। उन्हें ये पता होना चाहिए कि दुनिया की दो सबसे महंगी सेनाओं ने अपनी सभी सैन्य क्षमताओं का इस्तेमाल करके हम पर हमला किया। अभी हमने दुश्मनों के खिलाफ अपनी पूरी क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो युद्ध सिर्फ सीमित क्षेत्र तक नहीं रहेगा बल्कि पूरे इलाके में फैल जाएगा। हमारे करारे प्रहार उन जगहों को बर्बाद कर देंगे जिनकी कल्पना अमेरिका नहीं कर सकता। हम युद्ध के मैदान में लड़ने वाले लोग हैं और आप हमारी शक्ति को खोखले बयानों से नहीं बल्कि युद्ध के मैदान में देखेंगे। ईरान ने उस रिपोर्ट के बहाने ट्रंप पर निशाना साधा है जिसमें युद्ध के दौरान कम से कम 42 अमेरिकी सैन्य विमानों के नुकसान का जिक्र है। दरअसल अमेरिकी संसद की रिसर्च एजेंसी कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 28 फरवरी से ईरान के साथ जंग में अमेरिका के कम से कम 42 विमान या तो नष्ट हो गए हैं या उन्हें नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि कई मामलों की जानकारी अभी गोपनीय रखी गई है। अमेरिकी रिपोर्ट को लेकर ईरान के विदेश मंत्री ने ट्रंप को दोबारा जंग शुरू नहीं करने की नसीहत दी है। ईरान पर युद्ध शुरू होने के महीनों बाद अमेरिकी कांग्रेस ने अरबों डॉलर मूल्य के दर्जनों विमानों के नुकसान को स्वीकार किया है। हमारी शक्तिशाली सशस्त्र सेनाओं ने सबसे पहले एक चर्चित F-35 विमान को मार गिराने की पुष्टि की है। भविष्य के किसी भी संघर्ष में और भी कई आश्चर्य देखने को मिलेंगे। हमने जो सबक सीखे हैं और जो ज्ञान प्राप्त किया है उसके आधार पर युद्ध में वापसी कई और आश्चर्यों से भरी होगी। धमकियों के बीच ईरान ने भी महायुद्ध की घंटी बजा दी है। ईरान का दावा यही है कि अस्थायी युद्ध विराम के वक्त का इस्तेमाल उसने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए किया है। सैन्य बलों ने युद्ध विराम की अवधि को युद्ध के समय के रूप में माना है और इस अवसर का उपयोग अपनी युद्ध क्षमताओं को मजबूत करने के लिए किया है। ईरान को घेरा या पराजित नहीं किया जा सकता है। अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। दोनों तरफ सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हैं। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर दोबारा हमले का आदेश दिया तो महायुद्ध की चपेट में अब की बार पूरी दुनिया आ सकती है क्योंकि ईरान खुल्ला खुल्ला ऐलान कर चुका है कि इस बार अपनी उन विध्वंसक मिसाइलों से प्रहार करेगा जिनका इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया है। आज तक ब्यूरो
2: होर्मुज जलडमरू मार्ग को लेकर भी ईरान और अमेरिका आमने सामने हैं। अमेरिकी सेना ने ईरान की नाकेबंदी का वीडियो जारी किया तो वहीं ईरान दावा कर रहा है कि समुद्री मार्ग से तेल टैंकर्स के आवागमन में कोई भी बाधा नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टोल वसूली के लिए ईरान ने एक रेगुलेटरी संस्था बनाई है।

0: अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने हॉर्मुज जल डमरू पर नाकेबंदी का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें अमेरिकी मरीन कॉर्प्स का एक AH-1 जेट वाइपर हमलावर हेलीकॉप्टर हॉर्मुज के पास मंडराता नजर आ रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि नाकेबंदी के दौरान अब तक ईरान के करीब 90 जहाजों को रास्ता बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं IRGC का कहना है कि पिछले 24 घंटे में तेल टैंकर, मालवाहक पोत सहित कुल 26 जहाजों ने हॉर्मुज से आवागमन किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए ईरान ने नई रेगुलेटरी संस्था बनाई है, जिसका नाम है पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी। अब हॉर्मुज से गुजरने वाले सभी जहाजों को ईरान से अनुमति लेनी होगी। ईरान ने अभी तक आधिकारिक फीस तय नहीं की है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कुछ जहाजों से एक बार गुजरने के लिए करीब 17 करोड़ रुपए तक लिए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है हॉर्मुज खोलना जरूरी है, लेकिन अभी वो जल्दबाजी में नहीं, वो ईरान को एक मौका देना चाहते हैं जिससे बड़ी जनहानि से बचा जा सके। ईरान भी अपने प्रस्तावों में लगातार हॉर्मुज को खोलने के लिए अमेरिकी नाकेबंदी हटाने की अपील कर रहा है, लेकिन मामला परमाणु प्रोग्राम पर अटका है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: अभिषेक बनर्जी को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, वरना तो अनधिकृत निर्माण पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि शुभेंदु सरकार का बुलडोजर अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कोलकाता से लेकर हावड़ा तक अतिक्रमण पर बुलडोजर का जोरदार प्रहार हुआ।
2: कोलकाता में पुलिस पर पथराव तो शुभेंदु की चेतावनी, अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस पर पथराव, 8 जवान घायल। कोलकाता में पार्क सर्कस इलाके में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर आया तो सुरक्षा बलों पर पथराव कर दिया जाता है, 6 पुलिसकर्मी और 2 CRPF जवान घायल हो जाते हैं। पूर्व CM और TMC प्रमुख बनर्जी ने एक्स पर लिखा, बंगाल बुलडोजर राजनीति में यकीन नहीं करता, टैगोर और नेताजी की धरती पर आम नागरिकों के खिलाफ डर, बल और तोड़फोड़ के जरिए शासन नहीं चलाया जा सकता। जवाब में CM शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जो भी पुलिस पर पत्थरबाजी करेगा उसे सबक सिखाया जाएगा,
3: आपको भुगतना पड़ेगा, बहुत जोर भुगतना पड़ेगा। पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करेगा तो सबक सिखाने काम भारतीय जनता पार्टी का सरकार करेगा।
2: जबकि हावड़ा में नगर निगम ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए एक 5 मंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया। नियमों को दरकिनार करते हुए ये इमारत खड़ी कर दी गई थी। गुंडागर्दी करने वाले TMC के नेताओं पर एक्शन। बंगाल पुलिस ने उत्तरी बंगाल के कूच बिहार जिले में TMC के एक ब्लॉक अध्यक्ष को गिरफ्तार किया है। अब्दुल कादिर नाम के इस TMC नेता पर हिंसा और छेड़छाड़ का आरोप है। पुलिस सूत्रों की माने तो बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले अब्दुल कादिर पर तोड़फोड़, लूटपाट और छेड़छाड़ के आरोप हैं, और इन आरोपों के संबंध में मिली एक शिकायत के आधार पर तृणमूल नेता को गिरफ्तार किया गया है।
4: अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, 0 टॉलरेंस। मैं ऑन स्पॉट आकर उनको साथ मुलाकात किया, नहीं बुला के बात किया। ये मैसेज जो उपद्रवी है उनको भी ये मैसेज चला जाना चाहिए, ये सरकार अपने कार्रवाई करेगा।
2: पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद अब बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है, तो बंगाल में शुभेंदु अधिकारी हिंदुत्व की पिच पर खुलकर खेल रहे हैं। अब उनके ताजा फैसलों पर गौर करिए। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद, बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद, बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी, बंगाल में मदरसा एवं अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा, बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गाय के वध पर रोक, OBC सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा जिसका असर मुस्लिम OBC पर, और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत। ऐसे में फुरफुरा दरगाह शरीफ ने मुसलमानों से अपील की है कि इस साल बकरीद पर गाय की कुर्बानी ना दें। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा तोहा सिद्दीकी ने मुसलमानों से ये अपील की है,
5: मुस्लिम भाइयों का जो अनुरोध करूँ, अपनारा गोरु किनबें ना, গরু আপনারা কিনে কুরবানি দেবেন না, আমরা দেব না। এতে শুধু আমাদের অসুবিধা হয় না, অন্য কারো অসুবিধা হয় সেটা দেখার বিষয় আছে। এতে যদি আমরা কুরবানি গরু দিয়া বন্ধ করি তাহলে আমাদের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আমরা স্বাবলম্বী হওয়ারই মনে করি।
2: इतना ही नहीं, शुभेंदु सरकार ने ओबीसी आरक्षण व्यवस्था में भी बदलाव किया है। राज्य में ओबीसी आरक्षण 17% से घटाकर 7% कर दिया गया है। नई लिस्ट के मुताबिक अब सिर्फ 66 जातियां ओबीसी आरक्षण के दायरे में रहेंगी। धर्म आधारित वर्गीकरण की व्यवस्था भी खत्म कर दी गई है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।
1: रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
6: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, Complete Oral Health का सच।
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Country roads. Thank God I get to wake up. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
8: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
9: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
6: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, Complete Oral Health ka Sach. Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, Complete Oral Health ka Sach.

आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक, मोदी सरकार 3.0 के कार्यकाल की होगी समीक्षा, जून में मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें, सभी केंद्रीय राज्य मंत्रियों को दिल्ली में रहने के निर्देश। पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी के गद्दार वाले बयान पर सियासी गदर, बीजेपी ने कहा ये पाकिस्तान की भाषा, मेलोनी को मेलोडी गिफ्ट पर भी राहुल का तंज। आज दिल्ली एनसीआर में नहीं चलेंगे ऑटो टैक्सी, किराए में बढ़ोतरी की मांग को लेकर अगले 3 दिन तक हड़ताल, ऐप बेस्ड कंपनियों की वजह से नुकसान का दावा। प्रचंड गर्मी में झुलसा हिंदुस्तान, 48 डिग्री तापमान के साथ दुनिया के सबसे गर्म शहरों में शुमार यूपी का बांदा, दिल्ली में 46 डिग्री के पार पहुंचा पारा, तेजी से बढ़ रही है मरीजों की संख्या।

आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में योगों का बहुत ज्यादा महत्व है और कभी कभी केवल एक योग आपकी जिंदगी को ऊंचाई पर पहुंचा देता है या आपके जीवन में मुश्किलें बढ़ा देता है। आज हम बात करेंगे गुरु चांडाल योग के बारे में। क्या होता है गुरु चांडाल योग, इसका प्रभाव क्या होता है और अगर ये आपकी कुंडली में है तो इसके प्रभाव से बचें कैसे। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

26 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, प्रातः 8:26 तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं गुरु चांडाल योग के बारे में और इसके प्रभाव के बारे में। देखिए, ज्योतिष में तमाम नकारात्मक योग भी होते हैं और तमाम शुभ योग भी होते हैं, दोनों पाए जाते हैं। सबसे बड़े नकारात्मक योग जो होते हैं, जैसे केमद्रुम योग, ग्रहण दोष, शनि का विष योग, वैसे ही सबसे बड़े नकारात्मक योग में से एक योग है गुरु चांडाल योग। अगर कुंडली में राहु और बृहस्पति एक साथ हों तो कुंडली में गुरु चांडाल योग बन जाता है। दृष्टि से गुरु चांडाल योग नहीं बनता, क्योंकि राहु की दृष्टि होती नहीं, और बृहस्पति अगर केवल राहु को देखेगा तो राहु शुभ हो जाएगा, इसलिए दृष्टि से योग नहीं बनता। राहु और बृहस्पति जब एक साथ कुंडली में बैठे हों तब गुरु चांडाल योग बनता है। कुंडली में कहीं भी ये योग बने, सामान्यतः ये योग नुकसान पहुंचाता है, और अगर ये योग लग्न पंचम या नवम भाव में बने तो विशेष नकारात्मक होता है। अगर कुंडली में गुरु चांडाल योग है तो इसका समय पर उपाय करना चाहिए, नहीं तो कुंडली के तमाम शुभ योग भंग हो जाते हैं। ज्योतिष के महानतम विद्वान श्री केएन राव का ऐसा कहना है कि गुरु और केतु अगर एक साथ हों और उन पर किसी पाप ग्रह की, मंगल, शनि या सूर्य की दृष्टि हो तो इसके परिणाम भी गुरु चांडाल योग की तरह जीवन पर दिखाई देते हैं। गुरु चांडाल योग पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल।

ध्यान बनाए रखें, परिवार में शांति रखें, करियर में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मिथुन राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है, संतान की चिंता हो सकती है। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। तो गुरु चांडाल योग बनता कैसे है ये तो आपने समझ लिया। गुरु चांडाल योग अगर कुंडली में है तो इसका इंपैक्ट क्या है, इसका प्रभाव क्या है वो भी जानिए। गुरु चांडाल योग में चूंकि बृहस्पति दूषित हो जाता है, कुंडली की शुभता दूषित हो जाती है, इसीलिए गुरु चांडाल योग अगर कुंडली में है तो ये व्यक्ति के शुभ गुणों को घटा देता है और नकारात्मक गुण जीवन में बढ़ा देता है। गुरु चांडाल योग अगर कुंडली में है तो अक्सर ये योग होने से व्यक्ति का चरित्र कमजोर होता है। गुरु चांडाल योग कुंडली में है तो व्यक्ति को डाइजेशन की, पेट की, लीवर की समस्या और गंभीर रोग होने की संभावना बनती है। लीवर में दिक्कत, आंतों में दिक्कत और पेट में दिक्कत होती है। कभी कभी गुरु चांडाल योग कैंसर का कारण भी बनता है, लंबे समय तक चलने वाली बीमारी डाल देता है। गुरु चांडाल योग अगर कुंडली में है तो व्यक्ति सन्मार्ग पर नहीं चलता, धर्म के मार्ग पर नहीं चलता, धर्म भ्रष्ट हो जाता है और उसको जीवन में अपयश का सामना करना पड़ता है। अगर किसी महिला की कुंडली में गुरु चांडाल योग है तो उसका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होगा। वैवाहिक जीवन को लेकर वो महिला कभी चैन से और संतोष से नहीं रह पाएगी, बेवजह की दिक्कतें उसके वैवाहिक जीवन में आती रहेंगी। देखिए, गुरु चांडाल योग का जो सबसे बड़ा प्रभाव है वो ये है कि जीवन से पवित्रता और शुभता गायब हो जाती है और जीवन में जो ईश्वर की या गुरु की विशेष कृपा होती है उसका अनुभव आपको नहीं हो पाता है। गुरु चांडाल योग पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे
आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, मानसिक तनाव कम होगा, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी।

रहेगी, करियर में लाभ होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न सुमित जी ने हमें लिखा है और सुमित जी हमें बेंगलोर से मेल लिखते हैं। 26 जुलाई 1990 का जन्म है। दोपहर के 2:10, जन्म का स्थान है बलिया, उत्तर प्रदेश। सुमित जी कह रहे हैं कि अब तक मेरा विवाह नहीं हो पाया है तो मेरा विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। सुमित, आपकी कुंडली में विलंब से विवाह होने के योग वैसे भी बनते हैं, लेकिन अब आपकी शादी का समय इस साल के अगस्त के महीने से शुरू हो जाएगा और इस साल आपकी शादी फाइनल हो जाएगी। ऐसा लग रहा है अगले साल के आरंभ में, 2027 के आरंभिक समय में आपके विवाह होने का योग बनता है और लड़की आपके जान पहचान की भी हो सकती है। देखो, शुक्र की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए जब भी विवाह करिए एक बार अगर कुंडली मिला करके आप विवाह कर लें तो मुझे लगता है जीवन बेहतर होगा। एक ओपल बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करके प्रार्थना करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुंडली में गुरु चांडाल योग तो है लेकिन ये बहुत नुकसान नहीं करता, इसका बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ता। कब ऐसा होता है? गुरु अगर केंद्र का स्वामी है और राहु के साथ त्रिकोण में बैठा है तो राहु और गुरु राजयोग कारक हो जाते हैं। गुरु अगर त्रिकोण का स्वामी है और राहु के साथ केंद्र में बैठा है तो राहु और बृहस्पति राजयोग देते हैं। अगर गुरु और राहु के अंश बहुत दूर दूर हों, 10 डिग्री से ज्यादा का अंतर हो दोनों के बीच में, तो गुरु चांडाल योग उतना ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता। जो लोग नियमित रूप से साधना पूजा करते हैं, मंत्र जप करते हैं, ध्यान करते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनके ऊपर गुरु चांडाल योग का नकारात्मक प्रभाव नहीं रहता। अगर व्यक्ति के ऊपर किसी सद्गुरु की, वास्तव में किसी गुरु की कृपा हो, जो वास्तविक गुरु हैं उनकी कृपा हो, तो कुंडली का गुरु चांडाल योग निष्फल हो जाता है, उसका प्रभाव नहीं रह जाता है। तो मुख्यतः अगर गुरु की कृपा हो, आप साधना करते हो, उपासना करते हो, नाम जप करते हो, तो वैसे भी कुंडली के दुर्योगों का ज्यादा प्रभाव देखिए पड़ेगा नहीं और गुरु चांडाल योग का भी दुष्प्रभाव आपके ऊपर उतना ज्यादा नहीं होगा। गुरु चांडाल योग पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और
आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, लाभकारी यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृश्चिक राशि, कोई यात्रा हो सकती है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। धनु राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, निर्णयों में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। देखिए, अगर आपकी कुंडली में गुरु चांडाल योग है तो इसके प्रभाव को कम करना या इसके प्रभाव को समाप्त करना जरूरी है, नहीं तो ये बाकी शुभ योगों को भी गड़बड़ कर देगा। क्या उपाय करें इसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए? हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का चरण छूकर आशीर्वाद लें। नियमित रूप से किसी भी धर्म स्थान या मंदिर में जाते रहें। गुरु चांडाल योग अगर कुंडली में है तो आपका मन नहीं करेगा मंदिर जाने का, आपको जबरदस्ती अपने आप को खींच करके मंदिर तक ले जाना पड़ेगा। लेकिन आप जैसे जैसे रेगुलर मंदिर जाने लगेंगे इसका प्रभाव कम हो जाएगा। रोज सवेरे गायत्री मंत्र का हल्दी की माला से 108 बार जप करिएगा। अगर आपके गुरुदेव ने कोई मंत्र दिया है तो गुरु मंत्र का निरंतर जप करते रहें, या कोई नाम जप दिया है तो नाम का निरंतर जप करते रहें, चांडाल योग का प्रभाव कम हो जाएगा। एक सोने का या पीतल का चौकोर टुकड़ा पीले धागे में या सोने की चेन में अपने गले में धारण करिएगा। पार्क, मंदिर और सड़कों पर पीपल के पौधे लगवाइए। जब मौका मिले एक महीने में, दो महीने में पीपल के पौधे जगह जगह पर लगाते रहिए। और गुरु चांडाल योग अगर कुंडली में है तो सख्ती से मांस मदिरा का सेवन बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी खराब होगा और ये आपके जीवन में उपद्रव बढ़ाएगा, आपके जीवन में दुर्भाग्य ले आएगा।
तो जितना भगवान के नाम का जप करें, पवित्र स्थानों पर दर्शन करें, अपने गुरु की शरण में रहें और अपना आहार व्यवहार शुद्ध रखें, तो गुरु चांडाल योग आपके ऊपर ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं डाल पाएगा। देखिए, अगर आपकी कुंडली में गुरु चांडाल योग बना हुआ है और उसके अंदर निगेटिविटी है, नकारात्मकता है, तो आपको सोना पहनने से, गोल्ड प्रयोग करने से और पीला पुखराज पहनने से बचना चाहिए। क्योंकि अगर गुरु चांडाल योग है तो डाइजेशन, लीवर, आंतों में दिक्कत तो होगी ही, थोड़ी या ज्यादा। और अगर ऐसी स्थिति में आप पीला पुखराज पहनने या आप ज्यादा सोना पहनने लगे तो आपकी बीमारी, आपके स्वास्थ्य की समस्या काफी गंभीर हो सकती है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता के योग हैं, परिवार में शुभ कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज

कुंभ राशि, स्वास्थ्य और तनाव में सुधार होगा, धन की समस्याएं दूर होंगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाब।

नए अवसर मिलेंगे, मानसिक तनाव समाप्त होगा, काम की अधिकता रहेगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि पीला पुखराज पहनने से मोटापा बढ़ जाता है, क्या ऐसा है? देखिए, पीला पुखराज जो है ये बृहस्पति देव का रत्न है और शरीर में मोटापे के लिए जिस ग्रह की भूमिका होती है वो बृहस्पति ही है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति आपके शरीर को प्रभावित करता है तब पीला पुखराज पहनने से आपका मोटापा बढ़ेगा, लेकिन अगर बृहस्पति आपके शरीर को प्रभावित नहीं करता है तब पीला पुखराज पहनने से मोटापा नहीं बढ़ेगा। हर व्यक्ति का पुखराज पहनने से मोटापा बढ़ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है आइए जानते हैं। नंबर 1, धन की प्राप्ति होगी। नंबर 2, जीवन की समस्याएं हल होंगी। नंबर 3, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 4, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 5, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 6, विवाह तय हो सकता है। नंबर 7, चोट चपेट से बचाव करें। नंबर 8, मानसिक तनाव बढ़ सकता है। नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि भाग्य पहर में आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से शिक्षा और संतान के मामलों में उन्नति होगी। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलने की सफलता मिले आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में।

खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई इंटरव्यू है, जीरा खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो अपने साथ एक पीला फूल रख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। अगर डॉक्टर के पास जाना है इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए, तो हल्दी का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, तो पीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको

कर्क राशि वालों के लिए कार्यों में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा कन्या राशि वालों के लिए, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में सफलता मिलेगी। आज सावधान रहना होगा धनु राशि के लोगों को, चोट चपेट लग सकती है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। इस समय अधिक मास चल रहा है तो इस समय कोई भी नया काम शुरू ना करें। आज जल का और पीले फल का अगर आप दान करें तो अधिक मास के दान का ज्यादा से ज्यादा पुण्य आपको प्राप्त होगा और आपके जीवन में शुभता आएगी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज सुबह दिल्ली पहुंचने की संभावना है। विदेश दौरे के बाद वो तुरंत सरकारी कामकाज में जुटेंगे। गुरुवार शाम 4 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। सभी मंत्रियों की मौजूदगी अनिवार्य मानी जा रही है। जून में संभावित मंत्रिमंडल बदलाव को लेकर चर्चा तेज है। इस बैठक को राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। पिछले 12 वर्षों में टॉफी एक्सपोर्ट में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज हुई। 2013-14 में 49.68 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में 132 करोड़ पहुंचा। लोकसभा की पेट्रोलियम और गैस से जुड़ी समिति की बैठक, ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा। रोम में भारत इटली रिश्तों में नई उड़ान, रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने पर हुई सहमति। रोम में पीएम मोदी को खाद्य एवं कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान मिला। बोले ये 140 करोड़ भारतीयों और किसानों का सम्मान। पीएम मोदी और इटली की पीएम मेलोनी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी का ऐलान, इटली से 2029 तक 20 अरब यूरो का होगा व्यापार, आतंकवाद से साथ लड़ने का वादा। पीएम मोदी ने मेलोनी को दिया भारत आने का न्योता, स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ऐलान किया। इटली और भारत के बीच द्विपक्षीय वार्ता, रक्षा सुरक्षा और सामरिक प्रौद्योगिकी में सहयोग को और मजबूती पर जोर, आईएमईसी पर भी दोनों देशों में सहमति। पीएम मोदी के विदेश दौरे पर राहुल गांधी का जोरदार हमला, कहा देश में महंगाई बढ़ती जा रही है लेकिन मोदी जी मेलोनी को टॉफी खिलाकर रील बना रहे हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी और सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा किसानों को खाद नहीं मिलने वाला, अब हिंदुस्तान का मजदूर, युवा और किसान देश को बचा सकता है। पीएम मोदी और अमित शाह को गद्दार कहने पर राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का पलटवार, कहा पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं नेता विपक्ष। दक्षिण कोरिया के मंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की बैठक कर रक्षा अधिग्रहण को लेकर हुई चर्चा। नीट री एग्जाम को लेकर शिक्षा मंत्री की हाई लेवल मीटिंग। फर्जी सोशल मीडिया पर सख्त एक्शन के आदेश, मेटा गूगल टेलीग्राम के साथ भी मीटिंग। हावड़ा में सीएम शुभेंदु अधिकारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीमा सुरक्षा को लेकर बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में चर्चा। फालता सीट पर पुनर्मतदान, जहांगीर खान के नाम वापस लेने पर टीएमसी सांसद सायोनी घोष बोली सुरक्षा और निष्पक्ष चुनाव को लेकर चिंता के बीच लिया गया यह फैसला व्यक्तिगत है। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर बड़ा एक्शन, बीजेपी ने जारी की 43 अवैध संपत्तियों की लिस्ट, आसनसोल में टीएमसी दफ्तर पर चला बुलडोजर। एनआईए ने कोलकाता से पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में एक शख्स को किया गिरफ्तार, सुरक्षा संबंधी गोपनीय जानकारी लीक करने का आरोप। केरला में कैबिनेट में विभागों का बंटवारा, मुख्यमंत्री सतीशन ने अपने पास वित्त कानून समेत 35 अहम विभाग रखे। केरलम सरकार में रमेश चेन्नीतला के पास गृह, सतर्कता और 3 अन्य विभागों की जिम्मेदारी, वहीं केपीसीसी के प्रमुख को बिजली, पर्यावरण और संसदीय मामलों का प्रभार मिला। केरलम में दूध के दाम 4 रूपये बढ़े, नए सीएम सतीशन ने दी मंजूरी, बढ़े हुए दाम 1 जून से होंगे लागू। तमिलनाडु के नागापट्टिनम में एक टीवीके की शानदार जीत पर गेराल्ड मिल्टन ने घुटने के बल चलकर अपनी मन्नत पूरी की, भगवान की पूजा कर लिया आशीर्वाद। भोपाल में ट्रिशा शर्मा का पोस्टमार्टम दोबारा नहीं होगा, कोर्ट ने खारिज की परिवार की याचिका। मुंबई में महाविकास अघाड़ी प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से की मुलाकात, वोटर लिस्ट और एसआईआर प्रक्रियाओं पर चर्चा। मुंबई के बांद्रा में गरीब नगर इलाके में दूसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन जारी, रेलवे की जमीनों पर बनाए गए अवैध घरों को तोड़ने के दौरान भारी बवाल। बांद्रा में अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान भड़की हिंसा, पथराव के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बांद्रा में तोड़फोड़ और लाठीचार्ज पर शिवसेना यूबीटी विधायक वरुण सरदेसाई का बयान, बोले अगर लोग बांग्लादेशी है तो वोटर आईडी कैसे बने। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने नीट पेपर लीक मामले पर केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा बीजेपी सरकार के दौरान हर साल कोई न कोई पेपर लीक हुआ। नीट पेपर लीक केस में मोतेगांवकर के आरसीसी पुणे कैंपस पर बुलडोजर कार्रवाई, शहर में आरोपी से जुड़ी अन्य संपत्तियों की जांच में जुटा पुणे नगर निगम। नगर निगम अधिकारियों ने बताया है कि बकाया संपत्ति कर और अनधिकृत इस्तेमाल के आरोप में की गई कार्रवाई और इन संपत्तियों पर 3 करोड़ से भी ज्यादा रुपए का बकाया था। नीट पेपर लीक मामले की जांच विदर्भ तक पहुंची। सीबीआई ने नागपुर और चंद्रपुर में एक साथ छापेमारी कर परीक्षा रैकेट से जुड़े नए नेटवर्क का खुलासा होने की जताई संभावना। चंद्रपुर में एक संदिग्ध से कड़ी पूछताछ, कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और डिजिटल स्टोरेज डिवाइस जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए। गुजरात के कच्छ समेत कई इलाकों में पेट्रोल डीजल संकट गहराया, किसानों की खेती और सिंचाई कार्य बुरी तरह से प्रभावित, पेट्रोल पंप पर लगी लंबी कतारें। देशभर में ई फार्मेसी के विरोध में केमिस्ट की देशव्यापी हड़ताल, मुरादाबाद में केमिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने मांग को लेकर पीएम मोदी के नाम लिखा ज्ञापन प्रशासन को सौंपा।
ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में नागपुर में भी 7,000 मेडिकल स्टोर बंद रहे, मांगे ना मानने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। अमृतसर में मेडिकल स्टोर बंद, दवाइयों के लिए भटके मरीज, ऑनलाइन कंपनियों के खिलाफ प्रदर्शन, केमिस्ट बोले मांगे ना मानी तो आंदोलन करेंगे तेज। दिल्ली में भी दवा दुकानदारों की हड़ताल का असर, कई मेडिकल स्टोर बंद, लोगों को हो रही है परेशानी, जन औषधि केंद्र बने सहारा। गाजियाबाद में भी केमिस्ट की देशव्यापी हड़ताल का समर्थन, ऑनलाइन दवा बिक्री और कॉर्पोरेट फार्मेसी के विरोध में मेडिकल स्टोर बंद। पंजाब गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने की ई बस से यात्रा, लोगों से भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अपील की, ईंधन बचाने की पीएम की अपील का किया समर्थन। मेघालय के उमरोई मिलिट्री स्टेशन पर बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का शुभारंभ, 12 मित्र देशों की सेनाएं अभ्यास में ले रही हैं हिस्सा। मेघालय में आतंकवाद रोधी ऑपरेशन और आधुनिक युद्ध तकनीक पर होगा प्रशिक्षण, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रक्षा साझेदारी को मिलेगी मजबूती। चंदौली में सड़क चौड़ीकरण के लिए दूसरे हफ्ते भी बुलडोजर एक्शन जारी, 300 से ज्यादा अतिक्रमण किए गए ध्वस्त। पटना में बीपीएससी ट्री 4 का नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। रांची एयरपोर्ट को मिली नई सुविधाओं की सौगात, केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने उद्घाटन किया, यात्रियों के लिए उड़ान यात्री कैफे शुरू। अवसर सेंटर में मिलेगा स्थानीय उत्पादों को मंच, रांची एयरपोर्ट पर खुली नई लाइब्रेरी, बच्चों के लिए बना किड्स प्ले जोन। कोची में आईओएस सागर पर फहराया गया झंडा, समंदर की निगरानी करेगा आईओएस सागर, वाइस एडमिरल समीर सक्सेना रहे मौजूद। आईओएस सागर ने बढ़ाया समुद्री गौरव, कोची में सैन्य अनुशासन का शानदार नजारा, हिंद महासागर क्षेत्र में मजबूत होगी मौजूदगी। बगहा में 227 नए बिहार पुलिस जवान पास आउट, जवानों का दमदार मार्च पास्ट, परेड ग्राउंड में गूंजा जवानों का जोश। एसएसबी

में श्रद्धालुओं के लिए बिछाए गए विशेष मैट फर्श पर दिनभर किया जा रहा है पानी का छिड़काव। मैदानों पर बढ़ती गर्मी के बीच पहाड़ बने सैलानियों की पहली पसंद, कश्मीर की वादियों का आनंद ले रहे हैं सैलानी। भयंकर गर्मी की चपेट में आधा भारत, दिल्ली के रिज इलाके में 45.8 डिग्री पर पहुंचा पारा, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। एमपी के बुंदेलखंड में 5 जिलों में भीषण लू का रेड अलर्ट, दिन के समय सड़कों पर पसरा सन्नाटा। एमपी का छतरपुर प्रदेश का सबसे गर्म जिला बना, तापमान 47 डिग्री के पार पहुंचा, आने वाले दिनों में 50 डिग्री तक जा सकता है तापमान। उत्तर प्रदेश में 23 मई तक पड़ेगी भयंकर गर्मी, मौसम विभाग ने लू का रेड अलर्ट जारी किया। यूपी के बांदा में तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस, 11 जिलों में 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट, तपती गर्मी को लेकर प्रशासन अलर्ट। यूपी के 15 जिले भीषण गर्मी से प्रभावित, अयोध्या में पारा 41 डिग्री के पार, गर्मी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। चंदौली में पारा पहुंचा 44 डिग्री के पार, चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी से लोग बेहाल, प्रशासन की लोगों से बिना वजह घर के बाहर ना निकलने की अपील। अलवर में 46 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, ट्रैफिक सिग्नल्स पर टेंट लगाकर पुलिस ने लोगों को दी है राहत। अकोला में भी भीषण गर्मी का प्रकोप जारी, गर्मी के चलते कई इलाकों में पानी की कमी। औरैया में भी तापमान बढ़कर 45 डिग्री पर हुआ, गर्मी से बचने के लिए कई जगहों पर की गई है पानी की व्यवस्था। औरैया में भीषण गर्मी से बढ़ा बिजली बोझ, ट्रांसफार्मर्स को ठंडा रखने के लिए लगाए गए हैं कूलर। गाजियाबाद में प्रिंटिंग इंक और प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भयंकर आग, दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। अलवर में खुशखेड़ा थाने के कबाड़ यार्ड में हाईटेंशन तार की चिंगारी से लगी भीषण आग, 50 से अधिक वाहन जलकर खाक हुए। श्रीनगर में प्लाईवुड शोरूम में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लगी, हादसे में कोई जनहानि नहीं। देहरादून में एक अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एसी फटने की वजह से आग लगी, कई घायल, एक महिला की मौत। दिल्ली के अमन विहार में 2 नाबालिगों की चाकू से हत्या, इलाके में दहशत, रोहिणी सेक्टर 20 में वारदात, पुलिस जांच में जुटी, आपसी रंजिश की आशंका। मेरठ में आईआईएमटी यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में दर्दनाक हादसा, छत से गिरकर एमबीए छात्रा की मौत से मचा हड़कंप। यूपी में भदोही पुलिस की बड़ी कार्रवाई, उड़ीसा से लाई जा रही 3 करोड़ की गांजे की खेप बरामद, 4 तस्कर गिरफ्तार। मथुरा में दर्दनाक हादसा, चाय पी रहे 4 लोगों को कंटेनर ने रौंदा, 2 की मौत, 2 गंभीर रूप से हुए घायल। रीवा में तेज रफ्तार कार ने पैदल चल रही 3 जैन साध्वियों को मारी टक्कर, 1 की मौत हुई, 2 की हालत गंभीर। पंजाबी सिंगर इंदर कौर हत्याकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार, जबरन शादी का दबाव बनाकर हत्या की वजह बनी। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार स्कोडा कार डिवाइडर से जाकर टकराई, हादसे में 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। अकोला में कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई, बिना लाइसेंस के 92 लाख के बोगस बायो खाद जब्त कर गोदाम किया सील। सूरत में गली में खेलते बच्चों पर टूट पड़े आवारा कुत्ते, 48 घंटे में 2 बच्चों पर जानलेवा हमले से दहशत। सूरत पुलिस का अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, करीब 20 लाख की कीमत की विदेशी शराब की बोतलों को नष्ट किया। जामनगर में अज्ञात महिला ने नवी मंजिल से कूदकर की आत्महत्या, पुलिस ने मानसिक तनाव के कारण कदम उठाने की जताई आशंका।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
2: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा।
3: प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
4: एक हिंट तो देते।
5: विक्रम!
4: हिंट।
3: बड़े आराम से।
6: Lion O's family, super action family, Lion.
7: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
8: और वही कहाँ गए थे घूमने?
9: जीके मैक्स।
10: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
9: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
11: जेके वॉल मैक्स
9: बेस्ट पेंट,
12: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Max Paints, खुशियों के रंग।
13: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
14: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
15: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
16: सर, हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
17: पर मार्केट की समझ ना बाउंसर जा रही है।
16: आप कैसे कर लेते हो?
18: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
17: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो, और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो,
18: तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
19: नहीं,
17: और म्यूचुअल फंड्स है
19: सही।
20: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े।
21: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
22: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
23: इसमें माइक्रोफाइबर है।
22: माइक्रोफाइबर यानी
23: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
22: हमारे सीमेंट में नहीं है?
23: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
24: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
25: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर, हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।
26: भाजपा संवैधानिक आरक्षण के मामले में सत्ता का फाउल प्ले खेल रही है। भाजपा वो एम्पायर है जो सदियों से चली आ रही इस गैर बराबरी की इस लड़ाई को बेईमानी से जीतना चाहती है। ये रूल्स भी बेईमानी कर रही है, और डिसीजन में भी रूल्स में तो बेईमानी कर ही रहे हैं, वहीं डिसीजंस में भी बेईमानी कर रहे हैं। इनकी कोशिश तो कोर्ट रूपी थर्ड एम्पायर को भी मैनेज करने की रहती है। भाजपा नहीं चाहती है कि सबको बराबरी का मौका मिले। वंचित समाज को सदियों से पढ़ाई नौकरी से वंचित रखा गया। भाजपा आरक्षण की उस सीढ़ी को खंडित कर देना चाहती है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

0: Morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
1: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
2: Ba-da-ba-ba-ba.
3: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
5: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
6: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा
7: ए प्रिया कैसा लगा मेरा स्टंट
8: विक्रम एक हिंट तो देते
9: विक्रम
8: हिंट
7: बड़े आराम से
10: लायन ओज फैमिली सुपर एक्शन फैमिली लायन
11: इसमें है फाइबर बीटा ग्लूकोन प्रोटीन मैग्नीशियम तत्व इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है लायन ओट्स फैमिली सुपर एक्शन फैमिली
12: और वही कहाँ गए थे घूमने
13: जीके मैक्स
14: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है
13: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी
14: जेके वॉल मैक्स
13: बेस्ट पेंट
14: जेके मैक्स
13: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Max Paints. खुशियों के रंग
15: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है
16: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें

0: ससुराल पक्ष तो फॉर्चूनर गाड़ी मांग रहा है, 51 लाख रुपए मांग रहा था।
1: आखिर ऐसा क्या हुआ कि ग्रेटर नोएडा की बेटी को जान गंवानी पड़ी? घर वालों ने नाजों से पाला, बड़े अरमानों से शादी की, 1 करोड़ से ज्यादा खर्च किए, स्कॉर्पियो कार तोहफे में दिया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ दिन बाद ससुराल वाले राक्षस बन जाएंगे, दहेज के लिए बेटी को सताने लगेंगे, फॉर्च्यूनर कार के लिए मारने पीटने लगेंगे। ग्रेटर नोएडा के रहने वाले संजय नागर का आरोप है कि बेटी की शिकायत के बाद वो उससे मिलने ससुराल भी गए थे और लौटते ही बेटी के छत से गिरने की खबर आ गई। ससुराल वालों ने बताया कि दीपिका छत से गिर गई है। अस्पताल पहुंचने पर दीपिका के घर वालों को पता चला कि दीपिका अब इस दुनिया में नहीं है, 3री मंजिल से गिरने से उसकी मौत हो चुकी है। पिता को यकीन नहीं हो रहा कि बेटी की मौत गिरने से हुई। उनका आरोप है कि बेटी को छत से धक्का देकर मारा गया। वो चोटों के निशान का हवाला देते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इसकी तस्दीक कर रही है। रिपोर्ट बताती है कि दीपिका के चेहरे, कोहनी, जांघ, घुटने, कमर, पेट सब जगह गहरे निशान मिले। मामला इकोटेक थाना इलाके का है। दीपिका के घर वाले पुड़ीखेड़ा गांव के रहने वाले हैं, जबकि उसका ससुराल जलपुरा में है। घर वालों का कहना है कि दीपिका के ससुराल वाले लगातार उनसे फॉर्च्यूनर समेत लाखों रुपए की मांग कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने दीपिका के ससुर मनोज और पति ऋत्विक को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रेटर नोएडा से अरुण त्यागी के साथ अंशुल सिंह, आज तक।

0: क्या ट्रिशा ने खुदकुशी की? क्या उसकी हत्या कर उसे फंदे से लटका दिया गया था? या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छुपी है? सस्पेंस गहरा है। ट्रिशा के पिता को न तो सुसाइड थ्योरी पर भरोसा है, न ही ससुराल वालों पर। वो उनके रसूख की बातें कर रहे हैं, वो दोबारा पोस्टमार्टम की मांग कर रहे हैं, वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। 12 मई की 2 तस्वीर से सस्पेंस गहरा गया। एक तस्वीर में रात के 10 बजे ट्रिशा रस्सी लेकर छत पर जाती दिख रही है। दूसरी तस्वीर में उसके पति समर्थ सिंह उसे CPR देते दिख रहे हैं। ये 2 तस्वीरें काफी कुछ कहती हैं। कैमरा दिखा रहा है अकेली छत पर जाती है ट्रिशा और फिर अनहोनी होती है और उसके पति उसे बचाने की कोशिश करते हैं, फौरन अस्पताल ले जाते हैं।
1: ये हमारी लड़ाई।
0: लेकिन ट्रिशा के पिता इस कहानी पर भरोसा नहीं करते। उसकी वजह भी है। उनका आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद से ही वो फोन पर अक्सर रोती थी, जलील करने की बात करती, प्रताड़ित करने की बात करती। 12 मई की रात को भी उसने अपनी माँ को फोन किया था, रात 10:05 पर। उसने कहा था कि अब वो टूट चुकी है और अब सहा नहीं जा रहा, लेकिन कुछ ही मिनट बाद फोन कट गया और करीब 15 मिनट बाद सास गिरिबाला सिंह का फोन आया। उन्होंने बताया कि ट्रिशा फंदे से लटकी मिली है और उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ट्रिशा के शरीर पर कई चोटों के निशान मिलने की बात सामने आई, यानी सिर्फ फांसी नहीं, शरीर पर और भी जख्म थे। यही वजह है कि परिवार अब दोबारा पोस्टमार्टम की मांग कर रहा है। 6 दिन गुजर जाने के बावजूद ट्रिशा का अंतिम संस्कार नहीं किया गया। उसका शव अब भी भोपाल की मॉर्चरी में रखा है। इस केस में एक और सवाल उस बेल्ट को लेकर उठ रहा है जिससे कथित तौर पर ट्रिशा ने फंदा लगाया। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने शुरुआत में उस बेल्ट को फॉरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा। हालांकि बाद में पुलिस ने कहा कि बेल्ट जब्त कर ली गई थी और उसकी जांच कराई जा रही है। ट्रिशा के परिवार का आरोप है कि रसूखदार सास की वजह से उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। कटारा हिल्स थाने से लेकर CM हाउस तक परिवार लगातार चक्कर लगा रहा है। पुलिस ने अब इस मामले में दहेज हत्या का केस दर्ज कर दिया, SIT बनाई गई है। लेकिन इसी बीच ट्रिशा की सास गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत भी मिल गई और अब इस केस ने एक नया मोड़ ले लिया। अपनी जमानत अर्जी में ट्रिशा की सास ने ट्रिशा को ड्रग एडिक्ट बताया। कहा है कि वो नियमित तौर पर ड्रग्स लेती थी, जब ड्रग्स नहीं मिलती तो उसका व्यवहार बदल जाता था। लेकिन ट्रिशा का परिवार इसे मौत के बाद चरित्र हनन बता रहा है। अब सवाल यही, क्या ट्रिशा ने सचमुच खुदकुशी की या फिर 5 महीने पहले शुरू हुई शादी मौत की साजिश में बदल गई?
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: मोदी कैबिनेट के विस्तार और फेरबदल की अटकलों के बीच आज पीएम करेंगे मंत्रिपरिषद की बैठक। 3.0 के कार्यकाल की होगी समीक्षा। शाम 4 बजे सभी केंद्रीय और राज्य मंत्री होंगे शामिल। ईवीएम टिपकांड से रद्द हुए चुनाव के बाद बंगाल की फलता सीट पर दोबारा चल रही है वोटिंग। सुबह से ही पोलिंग बूथों पर लंबी कतार। सुरक्षा पहल से दोगुनी। टीएमसी के जहांगीर लड़ाई से बाहर। नीट पेपर लीक मामले पर आज संसदीय समिति के सामने होगी एनटीए के टॉप अफसर की पेशी। दोबारा परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री की हाई लेवल मीटिंग। फर्जी टेलीग्राम चैनल्स पर भी होगी कार्रवाई। आज दिल्ली एनसीआर के लोगों की बढ़ सकती है मुश्किलें। किराए में बढ़ोतरी की मांग को लेकर अगले 3 दिन तक ऑटो की हड़ताल। ऐप बेस्ड कंपनियों की वजह से नुकसान का दावा। ईरान पर हमले का काउंटडाउन। ट्रंप ने दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम। कहा डील साइन या ईरान खात्मा। रविवार तक हो सकता है अटैक। ईरान ने कहा विनाशकारी होगा जवाब।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट। कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। सुबह के 8 बजे हैं और वक्त है खास बुलेटिन सुपर 8 का। जी हां, आज सबसे बड़ी खबरें जो देश और दुनिया की सुर्खियों में है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस बुलेटिन में क्या खास है आपके लिए। आप देखेंगे कि पीएम मोदी का रोम वाला मेलोडी मूवमेंट कितना ज्यादा सुपरहिट रहा। महंगाई और मेलोडी पर राहुल गांधी ने क्यों और कैसे हमला बोल दिया है। क्या मोदी सरकार में फेरबदल की तैयारी है, इस खबर भी होगी बात। साथ ही इटली से लौटते ही आज पीएम मंत्रिपरिषद की बैठक क्यों करने वाले हैं, जो कि काफी अहम है। वहीं दिल्ली में 24 घंटे में 4 मर्डर के पीछे क्या कहानी है, ये भी आपको बताएंगे। बंगाल के फलता में जारी वोटिंग में अब तक क्या कुछ हुआ है, और साथ ही बात गर्मी की भी होगी। क्या गर्मी पर मौसम विभाग की चेतावनी के बाद आपको सावधान रहना चाहिए। वहीं ईरान से युद्ध क्या फिर शुरू हो जाएगा, इस खबर के बारे में भी देंगे पूरी जानकारी। क्योंकि अब ट्रंप ने कुछ बड़ा कहा है, और वहीं खेल जगत की भी बात होगी। आईपीएल में केकेआर की जीत के बाद क्या उलटफेर हुआ, ये भी आपको बताएंगे। शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ। मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों के बीच आज मंत्रिपरिषद की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। इसमें मोदी सरकार के सभी केंद्रीय और राज्य मंत्री शामिल होंगे। पीएम मोदी खुद इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये मीटिंग शाम 4 बजे तय की गई है। सेवा तीर्थ में सभी केंद्रीय और राज्य मंत्रियों की मीटिंग में शामिल होने के लिए कहा गया है। खबर है कि कैबिनेट में संभावित फेरबदल को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार और फेरबदल जून के दूसरे सप्ताह में हो सकता है, और माना जा रहा है कि इस बैठक में सरकार के कार्यकाल की मध्य अवधि समीक्षा भी की जाएगी। साथ ही आपको ये बता दें कि प्रमुख सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रगति की समीक्षा किए जाने की उम्मीद भी आज जताई जा रही है। तो मोदी मंत्रिपरिषद की एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसके कई मायने हैं। एक बड़ा फेरबदल ऐसा माना जा रहा है। आज प्रगति की समीक्षा किए जाने की भी उम्मीद जताई जा रही है। तो पीएम आवास पर शाम 4 बजे ये बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में दिल्ली पहुंच जाएंगे, और पीएम मोदी बैठक की खुद अध्यक्षता करने वाले हैं, जो कि शाम 4 बजे होने वाली है। मोदी 3.0 सरकार के कार्यकाल की समीक्षा इस बैठक में की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि बैठक में सभी केंद्रीय और राज्य मंत्री भी शामिल होने वाले हैं। तो ये बैठक शाम 4 बजे होगी। वहीं जून में मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें काफी तेज हो गई है, इसलिए भी ये बैठक अहम मानी जा रही है। तो लगभग 4 बजे पीएम आवास पर यह बैठक होने वाली है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, और कुछ ही देर में वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों के दौरे से कुछ ही देर में दिल्ली लौटने वाले हैं। पीएम मोदी अपने विदेश दौरे के आखिरी पड़ाव पर इटली में थे, और बीती रात वो रोम से रवाना हुए और अब किसी भी वक्त दिल्ली पहुंच सकते हैं। तो कुछ ही देर में पीएम मोदी इटली पहुंच जाएंगे। बीती रात इटली से भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हुए थे। आज सुबह 5 देशों की यात्रा पूरी कर भारत लौट रहे हैं पीएम मोदी। तो तो पीएम मोदी के इस दौरे पर सबसे खास रहा रोम का वो मेलोडी मूवमेंट। पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी ट्रॉफी का तोहफा दिया और उस पल की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है।
2: ये खास मोमेंट है जिसे दुनिया ने देखा है। इटली दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो उन्होंने पीएम मेलोनी को भारतीय कंपनी की मेलोडी ट्रॉफी का पैकेट गिफ्ट किया। इस मेलोडी मोमेंट को पूरी दुनिया ने देखा। चंद घंटे में इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को देखने वालों की संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा हो गई। इसी मेलोडी मोमेंट के बाद भारत और इटली के बीच कई अहम डील और 15 अहम समझौते हुए। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों देशों के राजनयिक संबंधों को नया आयाम मिला।
3: It is often used in a very popular way of saying "Parishram hi safalta ki kunji hai."
2: पीएम मोदी और मेलोनी ने साझा बयान दिया। MOU साइन करने के बाद पौधारोपण भी किया। मेलोनी की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने उन्हें भारत आने का न्योता भी दिया।
4: 40 करोड़ भारतवासियों की ओर से मैं आपको भारत आने का एक बार फिर से निमंत्रण देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राजिए मिले।
2: इटली समेत 5 देशों के इस कामयाब दौरे के बाद पीएम मोदी की अब स्वदेश वापसी हुई है। आज तक ब्यूरो।
0: तो पीएम मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के इस मेलोडी मूवमेंट पर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने हमला किया। राहुल ने कहा है कि आर्थिक तूफान सिर पर है और पीएम ट्रॉफियां बांट रहे हैं।
5: हिंदुस्तान में आर्थिक तूफान आ रहा है। तेल के, पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल के दाम आसमान को छुएंगे। फर्टिलाइजर की कमी होगी, फर्टिलाइजर महंगा होगा, किसानों को नुकसान होने वाला है। अर्थव्यवस्था पर भारी झटका पड़ने वाला है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा सोना मत खरीदो, ज्यादा गाड़ी मत चलाओ और विदेश मत जाओ। और फिर विदेश जाकर हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश जाकर उधर वो इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी ट्रॉफी खिला रहे हैं। दिस इज एन इंसल्ट टू द पीपल ऑफ इंडिया। दिस रील दैट द प्राइम मिनिस्टर हैज मेड इज एन इंसल्ट टू द पीपल ऑफ इंडिया एंड व्हाट दे आर सफरिंग।
0: तो राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और आरएसएस पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी कर दी है। राहुल के गद्दार वाले संबोधन पर बीजेपी आग बबूला हुई। बीजेपी का कहना है कि राहुल पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, उन्होंने देश का अपमान किया और तत्काल उन्हें माफी मांगनी चाहिए। तो क्या कुछ बीजेपी की तरफ से इसके बाद कहा गया है वो आपको समझा रहे हैं। राहुल गांधी ने पहले इस पर बयान दिया जैसा कि आपने सुना और अब दोनों ये विवादित बयान आपको बताते हैं। राहुल गांधी ने कहा है मोदी, अमित शाह, आरएसएस गद्दार है। वहीं नितिन नवीन बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि भारतीय राजनीति के राहु है आप, तो एक दूसरे पर पलटवार किया है। ये दो विवादित बयान आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी ने मोदी, अमित शाह और आरएसएस के गद्दार है ये उन्होंने कहा है, वे भारतीय राजनीति के राहु है आप, ये नितिन नवीन का बयान सामने आया है। तो इसी के साथ एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। जिस महंगाई की मार पर सियासी तकरार है उससे आज दिल्ली एनसीआर वालों की मुश्किल बढ़ सकती है। आज से दिल्ली में ऑटो टैक्सी वाले अगले 3 दिन तक हड़ताल पर है। ऑटो यूनियन किराए में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ईंधन की लगातार बढ़ती कीमतों, पुराने किराए और ऐप बेस्ड कंपनियों की वजह से ऑटो और टैक्सी वालों को नुकसान हो रहा है। 3 दिन की यह हड़ताल 23 मई तक रहेगी और इस दौरान दिल्ली एनसीआर में ऑटो, टैक्सी, रिक्शा और प्राइवेट कैब सेवाएं लगभग पूरी तरह से ठप रह सकती है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 3 दिन की ये लगभग हड़ताल है, 23 मई तक 3 दिन की हड़ताल का ऐलान किया गया है। किराए में इजाफे को लेकर यह हड़ताल की जा रही है। तो वही ऊर्जा संकट और बढ़ती कीमतों के बीच आज पेट्रोलियम गैस से जुड़ी संसदीय समिति की एक अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में ताजा हालात की समीक्षा की जाएगी। पेट्रोलियम गैस सहित तमाम सरकारी उपक्रमों और मंत्रालय के अधिकारी इस बैठक में ताजा रिपोर्ट पेश करेंगे। पेट्रोल गैस पर आज संसदीय समिति की एक अहम बैठक होने वाली है।

तो बैठक में ताजा हालात की समीक्षा की जाएगी। देश में जिस तरीके से तेल गैस के दाम बढ़ रहे हैं, एक ही हफ्ते में दो बार तेल गैस की कीमतों में इजाफा हुआ, वही आज पेट्रोलियम मंत्रालय की रिपोर्ट की समीक्षा आज इस बैठक में की जाएगी। तो ये बैठक कई मायनों में खास है। पेट्रोल गैस पर आज संसदीय समिति की एक अहम बैठक होने वाली है। पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन सुरक्षा पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। ऊर्जा संकट और बढ़ती कीमतों के बीच आज ये बैठक हो। अब चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है। टीएमसी का गढ़ माने जाने वाली इस सीट से पार्टी उम्मीदवार रहे जहांगीर खान ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, और उसके बाद अब ईवीएम पर टीएमसी उम्मीदवार का नाम तो है लेकिन पार्टी चुनाव मैदान में नहीं है। 23 अप्रैल को हुए मतदान में कुछ केंद्रों पर अनियमितताओं की शिकायतें मिली थी, जिसके बाद यहां दोबारा वोटिंग कराने का फैसला चुनाव आयोग ने लिया। फलता विधानसभा क्षेत्र में 285 पोलिंग बूथ है और पूरे इलाके में केंद्रीय सुरक्षा बलों की करीब 35 कंपनियां तैनात की गई। भारी सुरक्षा के बीच 285 सीटों पर फिर से वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। सुबह 7 बजे वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई। केंद्रीय सुरक्षा बलों की 35 कंपनियां यहां पर तैनात की गई है। फलता में वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है 285 केंद्रों में मतदान, और आपको ये बता दें कि काफी भारी सुरक्षा बल यहां पर तैनात किए गए हैं। और अब वो खबर जिससे 22 लाख छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच जारी है। एक दिन पहले जांच एजेंसी ने आरोपियों को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जहां पर अदालत ने उन्हें 2 जून तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया, जबकि एक आरोपी शुभम खैरानार की सीबीआई कस्टडी 5 दिन और बढ़ा दी गई है। उधर पुणे महानगर पालिका ने गिरफ्तार कोचिंग मालिक शिवराज के कोचिंग पर कल बुलडोजर एक्शन किया। आरसीसी क्लासेस के नालंदा कैंपस पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई, साथ ही शिवराज की 2 प्रॉपर्टी को भी सील कर दिया गया है। इस पूरे मामले में तीसरी ओर और अहम खबर यह है कि शिक्षा पर पार्लियामेंट स्टैंडर्ड कमेटी आज एनटीए प्रमुख से सवाल जवाब करेगी। कमेटी ने समन भी भेजा है। बात करते हैं ट्विशा केस की, जिसमें पुलिस फरार पति की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अब तक कोई भी सुराग नहीं मिला है। पुलिस ने समर्थ सिंह की गिरफ्तारी पर इनाम राशि बढ़ाकर 3 गुना यानी कि 30,000 रुपए कर दिया है। उधर ट्विशा के माता पिता को कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल अदालत ने ट्विशा के दूसरे पोस्टमार्टम की अपील को खारिज कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ट्विशा के परिजनों ने जांच प्रक्रिया में खामियों का आरोप लगाया। इस पूरे मामले में एक बड़ी खबर यह भी है कि ट्विशा की मौत की सीबीआई जांच हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा है कि अगर परिजनों ने कहा तो इसकी सिफारिश कर देंगे। दूसरी ओर राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से 7 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी। खामियों का आरोप लगाया है, लेकिन अभी तक समर्थ सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और लगातार कोशिश की जा रही है समर्थ सिंह को ढूंढने की। ऐसे में उस पर इनाम राशि को भी बढ़ा दिया गया है 30,000 रुपए। अगर कोई भी समर्थ सिंह की जानकारी पुलिस तक पहुंचाता है तो उसे 30,000 रुपए दिए जाएंगे। सीएम मोहन यादव से ट्विशा के परिजन भी मिले हैं, ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। राज्य सरकार ने सीबीआई जांच के संकेत ऐसे में इस पूरे केस में दिए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ उसके बाद परिजन एक बार फिर से पोस्टमार्टम की मांग कर रहे हैं। बात अमेरिका की करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर नए हमले की डेडलाइन का ऐलान किया है। ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अगले 48 घंटे में पीस डील साइन नहीं हुई तो एक बार फिर से अमेरिका हमला करेगा। दोनों देश परमाणु प्रोग्राम को लेकर आमने सामने हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जे को लेकर भी दोनों देशों के बीच तनातनी है। ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप ने एक बार फिर से अल्टीमेटम दे दिया है, अगर डील साइन नहीं हुई, 48 घंटे में समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए तो ईरान का खात्मा कर दिया जाएगा। ईरान को ट्रंप ने रविवार तक की मोहलत दी है। एक बार फिर से ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दे दिया है। दोनों देशों के बीच तनातनी काफी बढ़ गई है।

0: तो लगातार अब एक बार फिर से ट्रंप ने अल्टीमेटम ईरान को दिया है, अगर पीस डील साइन नहीं होती है तो ईरान का खात्मा कर दिया जाएगा। ये ट्रंप ने साफ कहा है। ट्रंप ने और क्या कुछ कहा सुनिए।
1: Choice because they were going to have a nuclear weapon. We're not going to give them a nuclear weapon, but that's going to end soon, one way or the other. Oil is going to come tumbling down.
0: तो ट्रंप ने ईरान को जो डेडलाइन दी है उसके मुताबिक अमेरिका शुक्रवार, शनिवार या फिर रविवार को हमला कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी पर पलटवार करते हुए ईरान ने विनाशकारी हमले की चेतावनी दी है।
2: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर अगले 48 घंटे के अंदर ईरान की तरफ से पीस डील को लेकर कोई अच्छी खबर नहीं आई तो ईरान पर विध्वंसक हमलों की शुरुआत हो जाएगी।
1: एंड नाउ वी आर ब्लोइंग इट अवे, वी आर ब्लोइंग एवरीथिंग अवे एंड वी आर गोइंग टू एंड दैट वॉर वेरी क्विकली। दे वांट टू मेक अ डील सो बैडली, दे आर टायर्ड ऑफ दिस। शुड हैव हैपेंड फॉर 47 इयर्स, समबडी शुड हैव डन समथिंग अबाउट इट एंड It's going to happen, and it's going to happen fast, and you're going to see oil prices plummet. They're going to come down. There's so much oil out there. They're going to come plummeting down.
2: ट्रंप की धमकी का मतलब ये है कि शुक्रवार, शनिवार या फिर रविवार को ईरान पर एक बार फिर हमला हो सकता है, क्योंकि ईरान के साथ पीस डील को लेकर अब तक सहमति नहीं बनी है। ईरान ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव अमेरिका को भेज रखा है। मामला सिर्फ और सिर्फ ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर अटका और लटका हुआ है। ईरान ने साफ कहा कि वो परमाणु प्रोग्राम पर किसी दबाव में फैसला नहीं लेगा। इस बीच पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी एक बार फिर तेहरान पहुंचे हैं। युद्ध के खतरे के बीच इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर दोबारा हमले का आदेश दिया तो महायुद्ध की चपेट में अब की बार पूरी दुनिया आ सकती है, क्योंकि ईरान खुल्लम खुल्ला ऐलान कर चुका है कि इस बार अपनी उन विध्वंसक मिसाइलों से प्रहार करेगा जिसका इस्तेमाल अभी तक नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: तो वही हॉर्मुज जल डमरू मध्य मार्ग को लेकर भी ईरान और अमेरिका आमने सामने हैं। अमेरिकी सेना ने ईरान की नाकेबंदी का एक वीडियो जारी किया तो वहीं ईरान दावा कर रहा है कि समुद्री मार्ग से तेल टैंकर्स के आवागमन में कोई भी बाधा नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टोल वसूली के लिए ईरान ने एक रेगुलेटरी संस्था बनाई है।

0: अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने हॉर्मुज जल डमरू पर नाकेबंदी का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें अमेरिकी मरीन कॉर्प्स का एक AH-1Z वाइपर हमलावर हेलीकॉप्टर हॉर्मुज के पास मंडराता नजर आ रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि नाकेबंदी के दौरान अब तक ईरान के करीब 90 जहाजों को रास्ता बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं IRGC का कहना है कि पिछले 24 घंटे में तेल टैंकर, मालवाहक पोत सहित कुल 26 जहाजों ने हॉर्मुज से आवागमन किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए ईरान ने नई रेगुलेटरी संस्था बनाई है, जिसका नाम है पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी। अब हॉर्मुज से गुजरने वाले सभी जहाजों को ईरान से अनुमति लेनी होगी। ईरान ने अभी तक आधिकारिक फीस तय नहीं की है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कुछ जहाजों से एक बार गुजरने के लिए करीब 17 करोड़ रुपए तक लिए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है हॉर्मुज खोलना जरूरी है, लेकिन अभी वो जल्दबाजी में नहीं, वो ईरान को एक मौका देना चाहते हैं जिससे बड़ी जनहानि से बचा जा सके। ईरान भी अपने प्रस्तावों में लगातार हॉर्मुज को खोलने के लिए अमेरिकी नाकेबंदी हटाने की अपील कर रहा है, लेकिन मामला परमाणु प्रोग्राम पर अटका है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: अब खबर राजधानी दिल्ली की, जहां पर दो दिन में 6 हत्याएं की गई हैं। पिछले 24 घंटे में 4 हत्याओं की खबर थी। अब ताजा मामले में गोविंदपुरी में 2 हत्या की खबर सामने आई है। साउथ ईस्ट दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में मां बेटे की चाकू से कूदकर हत्या कर दी गई। परिवार के मुताबिक 10 से 12 लाख कैश और सोना चांदी लेकर आरोपी हत्या के बाद फरार हो गए। वहीं दिल्ली पुलिस अब सीसीटीवी से जांच कर रही है। उधर रोहिणी में जॉनी और मयंक नाम के 2 नाबालिग युवकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। अमन विहार इलाके में बुधवार शाम ये वारदात हुई। हत्यारों ने चाकू से गोदकर दोनों नाबालिगों को मार डाला। तो वहीं 19 से 20 मई की रात नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के वेलकम इलाके की बात की जाए तो वहां पर एक युवक की हत्या कर दी गई। अमानतुल्लाह कुरैशी नाम के युवक को गोली मारी गई। पुलिस के मुताबिक यहां भी आपसी रंजिश में हत्या की गई है। दिल्ली में एक साथ 6 वारदात सामने आई है। हत्या से हड़कंप दिल्ली में मच गया है। 2 दिनों में कुल 6 हत्याएं की गई है। पहले गोविंदपुरी, अभी गोविंदपुरी में मां और बेटे की हत्या कर दी गई। हमारे सहयोगी अंशुल सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अंशुल, 2 दिनों में 6 हत्याएं दिल्ली में हुई है, साफ तौर पर पुलिस प्रशासन पर ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं।
2: जी हाँ बिल्कुल, पिछले 2 दिनों में जिस तरीके से कि ये घटनाएं एक के बाद एक क्रम से सामने आई हैं, इसमें कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जिनमें जो अक्यूज या जिनमें जो आरोपी हैं वो जुवेनाइल्स हैं, वो 18 साल से कम के बच्चे हैं। और पिछले कुछ दिनों में ये भी देखा गया है कि जो ये हीनियस क्राइम्स हैं इनमें जुवेनाइल्स का जो रोल है वो ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आजकल जो गैंग मेंबर्स हैं जो ऐसे छोटे गैंग चला रहे हैं उन्हें ये पता है कि अगर आरोपी नाबालिग होता है तो उसके खिलाफ कानूनी तौर पर ज्यादा एक्शन नहीं लिया जा सकता और जल्दी छूट जाते हैं। इसकी वजह से जुवेनाइल जो है वो इन केसेस में ज्यादा इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। अभी जो सबसे लेटेस्ट खबर आई है वो गोविंदपुरी से आई है, जहां मां बेटे की 14 साल के लड़के की हत्या कर दी गई है। और ये बताया जा रहा है कि लूटपाट के इरादे से कुछ लोग घर में घुसे और उसके बाद मां और बेटे पर अटैक करके घर से लूटपाट करके करीब 10 से 12 लाख रुपए कैश में लेकर के फरार हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में अभी मामला दर्ज तो कर लिया है, लेकिन आरोपी अभी भी दिल्ली पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। तो अब ये देखना होगा कि पिछले 24 से 36 घंटे में।
1: चलिए ठीक है अंशुल, आप नजर बनाए रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं अब खबर भीषण गर्मी की, क्योंकि मई की गर्मी इस बार लोगों की अग्नि परीक्षा ले रही है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक हालात ऐसे हैं कि दोपहर में सड़क पर निकलना खतरे से खाली नहीं है। सबसे ज्यादा बदतर हालात यूपी में है। यूपी का बांदा लगातार 3rd दिन देश का सबसे गर्म शहर बना रहा, जहां पर तापमान 48.2 डिग्री तक पहुंच गया है। दिल्ली में पारा 46 डिग्री को पार कर चुका है। तो किस तरीके से गर्मी दिल्ली में बढ़ रही है, दिल्ली ही नहीं उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। माना जा रहा है कि 50 डिग्री सेल्सियस तक अब यह पारा पहुंच जाएगा। अब आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में वर्धा में 47 डिग्री सेल्सियस गर्मी का पारा हो चुका है। अमरावती में 46.2 डिग्री सेल्सियस, अकोला में 45.2 डिग्री सेल्सियस, वहीं नागपुर और चंद्रपुर में 45 डिग्री के पार पारा पहुंच चुका है। तो महाराष्ट्र का हाल आप समझिए, गर्मी कितनी भीषण है। ऐसे में लगातार लोगों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि इतनी भीषण गर्मी में जरूरी हो तभी घर से बाहर निकला जाए, अभी और पारा बढ़ने वाला है। वहीं उत्तर प्रदेश का हाल आप समझिए, बांदा में 48.2 डिग्री सेल्सियस, कानपुर में 45.3 डिग्री सेल्सियस, वाराणसी की बात की जाए तो 44 डिग्री सेल्सियस और झांसी और लखनऊ में भी 45.4 डिग्री सेल्सियस तक पारा पहुंच गया है।
0: उत्तर प्रदेश का बांदा इन दिनों दुनिया के सबसे गर्म शहरों को मात दे रहा है। महज 2 दिनों में बांदा के तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। महज 2 दिन पहले बांदा में तापमान 47.4 डिग्री था, जो मंगलवार को 48.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। 10 जून 2019 को बांदा में पारा 49.2 डिग्री तक पहुंचा था। इस वक्त बांदा का तापमान जिस तेजी से बढ़ रहा है, उससे आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही ये रिकॉर्ड टूट सकता है। हालात दिल्ली में भी कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। दिल्ली में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से अस्पतालों में डिहाइड्रेशन, थकावट, चक्कर आना और गर्मी से संबंधित अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।
3: जब ये गर्मी ज्यादा होती है, सबसे पहले तो आपको किसी तरीके से गर्मी से बचना है। हल्का रंग का, हल्का कपड़ा, लूज कपड़े पहनिए, हल्के रंग के कपड़े पहनिए, जिससे क्योंकि जितना डार्क कलर क्लोथ पहनेंगे उतना ही ज्यादा हीट एब्जॉर्प्शन होता है।
0: मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में राहत की कोई उम्मीद नहीं है, यानी उत्तर भारत में पारा अभी और ऊपर चढ़ सकता है। हालांकि दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रहे मॉनसून के मद्देनजर दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में बारिश और तेज आंधी तूफान की चेतावनी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: तो वहीं यूपी के बांदा जिले में भीषण गर्मी पड़ रही है और यहां का तापमान 48 डिग्री पहुंच चुका है। तो गर्मी का हाल आपने जाना। अब खबर खेल जगत से जुड़ी। आईपीएल में आगे की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है, क्योंकि कल कोलकाता ने मुंबई इंडियंस को हराकर प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीद जिंदा रखी। कोलकाता की टीम ने मुंबई को 4 विकेट से मात दी। मुंबई ने 148 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे केकेआर ने 7 गेंद बाकी रहते ही 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। कोलकाता की ओर से सबसे ज्यादा 45 रन मनीष पांडे ने बनाए, जबकि रोवम पावले ने 40 और कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 21 रनों का योगदान दिया। तो इस जीत के साथ ही अब कोलकाता पॉइंट्स टेबल में 6 नंबर पर पहुंच चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं, वक्त हो गया है सुपर 8 में फटाफट न्यूज का। सरिस्का के जंगल में भीषण आग, वन विभाग ने घंटों की मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। बिजनौर में बिजली का तार गिरते ही स्विफ्ट कार बनी आग का गोला, पेट्रोल पंप कर्मचारियों की सूझबूझ से चला बड़ा हादसा। आगरा में सड़क किनारे खड़ी 2 कारों में भीषण आग लगी, एक कार जलकर राख, दूसरी आधी जली। गाजियाबाद इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में लगी भयंकर आग, दमकल की दर्जन भर गाड़ियों ने 1 घंटे के बाद आग पर पाया काबू। जयपुर में रात्रि गश्त के दौरान पुलिस टीम पर हमला, सीसीटीवी आया सामने, महिला ने पकड़े पुलिसकर्मी का गिरेबान, लाठी से हमले का आरोप। सूरत पुलिस का ऑपरेशन रैम्बो, 7 घंटे में 72 अपराधी गिरफ्तार, भारी मात्रा में रैम्बो चाकू बरामद। मैसूर में लोन विवाद में कार के बोनट पर लटका युवक, 500 मीटर तक घसीटा, रोडरेज की सनसनीखेज घटना कैमरे में कैद। वहीं प्रयागराज में स्वरूप रानी अस्पताल में वकीलों और डॉक्टर्स के बीच हंगामा, भारी पुलिस बल तैनात। चलिए अब यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आपका ही मत जाइएगा, देखते रहिए आज।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद भारत।
5: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
6: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
7: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
9: Best putty,
10: JK Walmax.
11: Best paint,
12: JK Max.
13: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
14: जेके मैक्स पेंट्स,
13: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
15: सर, हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
16: पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है।
15: आप कैसे कर लेते हो?
17: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
16: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो, और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो,
17: तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
15: नहीं,
17: और म्यूचुअल फंड्स है
15: सही।
18: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
19: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
20: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
21: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
22: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
23: Like I said before, we better own the sin.
24: यार
25: ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
24: इसमें माइक्रोफाइबर है।
25: माइक्रोफाइबर यानी
24: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
25: हमारे सीमेंट में नहीं है?
24: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
26: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
27: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
0: हिंट, बड़े आराम से। विमल, बोलो जुबां केसरी।
3: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
4: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
5: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें ईपेपर.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: आज सुबह दिल्ली पहुंचने की संभावना। विदेश दौरे के बाद वो तुरंत सरकारी कामकाज में जुटेंगे। गुरुवार शाम 4 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। सभी मंत्रियों की मौजूदगी अनिवार्य मानी जा रही। जून में संभावित मंत्रिमंडल बदलाव को लेकर चर्चा तेज है। इस बैठक को राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। पिछले 12 वर्षों में टॉफी एक्सपोर्ट में बड़ी बढ़ोतरी की हुई है। 2013 से 14 में 49.68 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में 132 करोड़ पहुंचा। लोकसभा की पेट्रोलियम और गैस से जुड़ी समिति की बैठक। ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा। रोम में भारत इटली रिश्तों में नई उड़ान। रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने पर बनी सहमति। रोम में पीएम मोदी को खाद्य एवं कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान मिला। बोले ये 140 करोड़ भारतीयों और किसानों का सम्मान। पीएम मोदी और इटली की पीएम मेलोनी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी का ऐलान। इटली से 2029 तक 20 अरब यूरो का होगा व्यापार। आतंकवाद के साथ लड़ने का वादा। पीएम मोदी ने मेलोनी को दिया भारत आने का न्योता। स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ऐलान किया। इटली और भारत के बीच द्विपक्षीय वार्ता। रक्षा सुरक्षा और सामरिक प्रौद्योगिकी में सहयोग को और मजबूती पर जोर। आईएमईसी पर भी दोनों देशों में सहमति। पीएम मोदी के विदेश दौरे पर राहुल गांधी का जोरदार हमला। कहा देश में महंगाई बढ़ती जा रही है लेकिन मोदी जी मेलोनी को ट्रॉफी खिलाकर रील बना रहे हैं।
1: पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, गैस नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मेलोनी जी के साथ मेलोनी ट्रॉफी खा रहे हैं।
0: राहुल गांधी ने पीएम मोदी और सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा किसानों को खाद नहीं मिलने वाला। अब हिंदुस्तान का मजदूर युवा और किसान देश को बचा सकता। पीएम मोदी और अमित शाह को गद्दार कहने पर राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का पलटवार। कहा पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं नेता विपक्ष। दक्षिण कोरिया के मंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की बैठक। रक्षा अधिग्रहण को लेकर हुई चर्चा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद पर पाकिस्तान को खूब सुनाया। साथ ही अफगानिस्तान में हत्याओं को लेकर भी आड़े हाथों। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि जिस देश का इतिहास नरसंहार और हिंसा से जुड़ा रहा वो भारत के आंतरिक मामलों पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं रखता। सीमा पार आतंकवाद पर भारत ने यूएन में कड़ा संदेश दिया। भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश ने आतंकवाद को समर्थन देने वाले देशों को जवाबदेह ठहराने की मांग की। आज गृहमंत्री अमित शाह ने यमुना नदी को लेकर सुबह 10 बजे बड़ी बैठक बुलाई है। मीटिंग में दिल्ली सीएम, जल शक्ति मंत्री सहित विभागों के कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। राजस्थान सरकार के डेयरी विभाग ने दूध की कीमतों में 2 रूपये लीटर की बढ़ोतरी। स्टैंडर्ड दूध की नई कीमत 62 रूपये और गोल्ड दूध की कीमत 70 रूपये प्रति लीटर हुई। नीट री एग्जाम को लेकर शिक्षा मंत्री की हाई लेवल मीटिंग। फर्जी सोशल मीडिया पर सख्त एक्शन के आदेश। मेटा गूगल टेलीग्राम के साथ भी मीटिंग। हावड़ा में सीएम शुभेंदु अधिकारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीमा सुरक्षा को लेकर बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में चर्चा। पालता सीट पर पुनर्मतदान। जहांगीर खान के नाम वापस लेने पर टीएमसी सांसद सायोनी घोष बोली सुरक्षा और निष्पक्ष चुनाव को लेकर चिंता के बीच लिया गया ये फैसला व्यक्तिगत है। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर बड़ा एक्शन। बीजेपी ने जारी की 43 अवैध संपत्तियों की लिस्ट। एनआईए ने कोलकाता से पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में एक शख्स को किया गिरफ्तार। वही केरलम में कैबिनेट में विभागों का बंटवारा। मुख्यमंत्री सतीशन ने अपने पास वित्त कानून समेत 35 अहम विभाग रखे। केरलम सरकार में रमेश चेन्नीथला के पास गृह सतर्कता और 3 अन्य विभागों की जिम्मेदारी। केरलम में दूध के दाम 4 रूपये बढ़े। नए सीएम सतीशन ने दी मंजूरी। बढ़े हुए दाम 1 जून से होंगे लागू। तमिलनाडु के नागापट्टिनम में टीवीके की शानदार जीत पर गेराल्ड मिल्टन ने घुटने के बल चलकर अपनी मन्नत पूरी की। भगवान का लिया आशीर्वाद। भोपाल में त्रिशा शर्मा का पोस्टमार्टम दोबारा नहीं होगा। कोर्ट ने खारिज की परिवार की याचिका। मुंबई में महाविकास अघाड़ी प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से की मुलाकात। वोटर लिस्ट और एसआईआर प्रक्रियाओं में चर्चा। मुंबई के बांद्रा में गरीब नगर इलाके में दूसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन जारी रहा। वही बांद्रा में अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान भड़की हिंसा। पथराव के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बांद्रा में तोड़फोड़ और लाठीचार्ज पर शिवसेना यूबीटी विधायक वरुण सरदेसाई का बयान। बोले अगर लोग बांग्लादेशी हैं तो वोटर आईडी कार्ड कैसे बने। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने नीट पेपर लीक मामले पर केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा बीजेपी सरकार के दौरान हर साल कोई न कोई पेपर लीक हुआ। नीट पेपर लीक केस में शिवराज के आरसी

बिजली का तार गिरने से स्विफ्ट कार में लगी भीषण आग, पेट्रोल पंप कर्मचारियों की सूझबूझ से चला बड़ा हादसा। टोंक में पेयजल संकट से भड़के ग्रामीण, महिलाएं समेत कई लोग पानी की टंकी पर चढ़े। दो साल से पानी की किल्लत का आरोप। मिर्जापुर में जिम की आड़ में धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग मामले में 10 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई। जयपुर में रात की गश्त के दौरान पुलिस पर हमला, एक महिला सहित 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में डबल मर्डर, सब्जी व्यापारी की पत्नी और बेटे की घर में लूटपाट के बाद चाकू गोदकर हत्या।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 21 मई 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, प्रातः 8:26 तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, परिवार में शांति रखें, करियर में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

स्थान परिवर्तन हो सकता है, संतान की चिंता हो सकती है। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कर्क राशि, मानसिक तनाव कम होगा, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं।

ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी।

होगी, करियर में लाभ होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, लाभकारी यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृश्चिक राशि, कोई यात्रा हो सकती है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। धनुराशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, निर्णयों में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता के योग हैं, परिवार में शुभ कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

स्वास्थ्य और तनाव में सुधार होगा, धन की समस्याएं दूर होंगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाब।

मानसिक तनाव समाप्त होगा, काम की अधिकता रहेगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
3: प्रिया कैसा लगा मेरा स्टंट?
4: विक्रम एक हिंट तो देते।
5: विक्रम
4: हिंट
3: बड़े आराम से।
1: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
6: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
7: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
8: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
9: Like I said before, we better hold the sins.

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
0: हिंट, बड़े आराम से। विमल, बोलो जुबां केसरी।
3: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
4: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।

0: भीषण गर्मी से तपता हिंदुस्तान, उबलते शहर, लू से उत्तर भारत का बुरा हाल, यह है गर्मी का आपातकाल। अगले 7 दिन भीषण लू का अलर्ट, हे भगवान धरती बचाओ। पूरा हिंदुस्तान तप रहा है, उत्तर भारत में सबसे बुरा हाल है। हरियाणा से लेकर राजस्थान तक और दिल्ली से लेकर यूपी एमपी तक आसमान से अंगारे बरस रहे हैं। शहर शहर तंदूर लगा हुआ है, हर शहर का पारा 45 के पार चला गया है। रात को भी ऐसा लगता है जैसे लू चल रही है। 19 मई मंगलवार को दिल्ली में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया, 46.5 डिग्री सेल्सियस। सफदरजंग और पालम में 45.1 डिग्री, लोधी रोड में 45.2 डिग्री और आया नगर में 45.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। ये तापमान सामान्य से 3 से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक है, जो ये बता रहा है कि दिल्ली में गंभीर हीट वेव यानी कि लू चल रही है। रात में भी आराम नहीं है और मौसम विभाग डरा रहा है कि अभी तो इस गर्मी से दिल्ली एनसीआर में राहत नहीं मिलने वाली।
1: अभी
0: दिल्ली से सटे पंजाब और हरियाणा में बुरा हाल है, भीषण गर्मी और लू चल रही है। पंजाब में मंगलवार को सबसे अधिक तापमान फरीदकोट में 47.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, पटियाला में 45.3 डिग्री, बठिंडा एयरपोर्ट पर 45.9 डिग्री, लुधियाना में 44.2 डिग्री और अमृतसर व चंडीगढ़ में 43 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान दर्ज हुआ। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि आने वाले कुछ दिनों तक इस गर्मी और लू से राहत नहीं मिलने वाली। राजस्थान में गर्मी का असर अब केवल दिन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि रातें भी तपने लगी हैं। पिछले 2 दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव का असर और तेज हो गया है। आने वाले दिनों में भी राहत मिलने की संभावना कम दिखाई दे रही है। बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के 9 शहरों में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। पूरे मध्य प्रदेश का भी यही हाल है। एमपी में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। खजुराहो में पारा पहुंचा 46.8 डिग्री सेल्सियस तक। भोपाल का बोट क्लब पर्यटकों से भरा रहता था, लेकिन भीषण गर्मी में यहां से भी पर्यटक गायब हैं। सड़कों पर सन्नाटा है। दोपहर को तो ऐसा लगता है जैसे कोई कर्फ्यू लग गया हो। यहां भी मौसम विभाग ने हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज तक ब्यूरो।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
5: Acajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

सड़क पर उतरेंगी ममता, विरोध से पहले टीएमसी में फूट की अटकलें। ईवीएम टेप कांड से रद्द हुए चुनाव के बाद बंगाल की फलता सीट पर दोबारा चल रही है वोटिंग। पोलिंग बूथ पर लंबी कतार, सुरक्षा पहले से दोगुनी। लड़ाई से हटे टीएमसी के जहांगीर खान। मोदी कैबिनेट के विस्तार और फेरबदल की खबरों के बीच आज पीएम करेंगे मंत्रिपरिषद की बैठक। 3.0 के कार्यकाल की होगी समीक्षा। शाम 4 बजे सभी केंद्रीय और राज्य मंत्री होंगे शामिल। नीट पेपर लीक मामले पर आज संसदीय समिति के सामने होगी एनटीए के टॉप ऑफिसरों की पेशी। दोबारा परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री की हाई लेवल बैठक। फर्जी टेलीग्राम चैनल्स पर होगी कार्रवाई।

0: 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं, खबरें रफ्तार से और विस्तार से। लेकिन सबसे पहले खबरों की झलकियों पर एक नजर डाल लेते हैं। मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार की अटकलें तेज, आज शाम मोदी कर रहे हैं मंत्रिपरिषद की बैठक, आज की यही है लीड स्टोरी। दिल्ली में पुलिस पस्त, अपराधी मस्त, 2 दिन में 6 मर्डर से दहल गई है राजधानी। त्रिशा मर्डर मामले में परिवार का नया आरोप, रिटायर्ड जज सास पर त्रिशा की मौत के बाद कई रसूखदारों को कॉल करने का आरोप। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के साथ, जहां पर शुभेंदु सरकार ने वंदे मातरम को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। शुभेंदु सरकार ने बंगाल के सभी मदरसों में वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया है। पश्चिम बंगाल के स्कूलों के साथ साथ मदरसों में भी वंदे मातरम को गाना अनिवार्य हो गया है। अनुपम मिश्र मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनुपम, क्या कहा जाए, पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी जीत के बाद ये तो होना ही था।
1: जी देखिए, इससे पहले कुछ दिनों पहले ही आपको याद होगा कि शुभेंदु सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया था। और अब जो नया नोटिफिकेशन आया है, इसके तहत जो मदरसे हैं, जो मदरसा डिपार्टमेंट और अल्पसंख्यक दफ्तर के अंतर्गत आते हैं, एडेड अनएडेड सरकारी जो मदरसे हैं, उनमें भी अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया गया है। तौर पर पहले बीजेपी सरकार की नीति थी पश्चिम बंगाल में, जिस तरीके से शुभेंदु सरकार काम कर रही है उसके तहत ये होना लाजमी था और वही अब हुआ है। और बहुत जल्दी ये कदम उठाया गया है पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से, वंदे मातरम को सभी सरकारी स्कूलों में, चाहे वो मदरसा हो चाहे ऐसे सरकारी स्कूल हैं, सब में अब उसका गाना कंपलसरी कर दिया गया है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अगली खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां पर फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा वोट डाले जाएंगे। सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है। टीएमसी का गढ़ माना जाता है ये सीट, लगातार चर्चा में भी रहा है। 29 अप्रैल को यहां दूसरे चरण में चुनाव था, लेकिन भारी गड़बड़ी के बाद, शिकायत के बाद इसे रद्द कर दिया गया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के हटने के ऐलान के बाद फिर से ये सीट चर्चा में आ गई है। हालांकि जहांगीर खान ने प्रचार के आखिरी दिन चुनाव से हटने का ऐलान किया, इसलिए ईवीएम से उनका नाम हटा नहीं है। 35 कंपनी केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है, यानी कि ये सीट बेहद संवेदनशील। और यहां पर चुनाव रद्द होने के बाद अब दोबारा जब चुनाव हो रहा है, एक बार फिर से सावधानी बरती जा रही है। दोबारा मतदान यहां पर सुबह 7 बजे से जारी है। अनिर्बान मेरे सहयोगी सीधे पलता से जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनिर्बान, सुबह से मतदान हो रहा है, लगभग 2 घंटे का वक्त बीत चुका है, सब कुछ अभी ठीक ठाक है?
2: जी हाँ, देखिए अभी तक तो फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यही सारे बूथ जो है, यहाँ से रिगिंग छप्पा तथा जो ईवीएम टैम्परिंग की खबर आई थी, और इस वक्त दिखा दे कि ये बूथ के सामने पूरी तरीके से अभी तो सन्नाटे है। लोगों की भीड़ धीरे धीरे हो रही है, लोग आ रहे हैं अपनी मतदान करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ यहाँ पे दिखेगी आपको कि पुलिस तथा सेंट्रल फोर्स की तैनाती, ये काफ़ी मात्रा में, भारी मात्रा में दिया हुआ है। कुछ देर पहले हमने देखा कि यहाँ पे CRPF एवं CAPF जवानों की ऑफिसर्स भी आए थे, जो यहाँ पे पूरी तरीके से एकदम, आप देख सकते हैं सामने अभी जितने भी गाड़ियाँ जा रही है उसकी नाका चेकिंग चल रही है बूथ के सामने। और यही जो छवि है इस वक्त फलता में देखने को मिल रही है, क्योंकि जहांगीर खान, जो कि टीएमसी के स्ट्रांग मैन कहा जाते थे, वही जहांगीर खान ने अपनी नाम तो हटा ली, लेकिन ईवीएम में उनकी नाम रहेगी, ईवीएम में लोग मतदान कर पाएंगे उनके नाम से। तो यही कारणवशत कि कोई भी तरीके से कोई भी चूक ना हो, और लोगों की भी यही शिकायतें थी कि यहाँ पे लोग अपने मतदान खुद नहीं कर सकते थे, जो बोल दिया जाता था वहीं पे मतदान किया जाता था। तो यही बात है कि अभी लोग भी खुश है काफ़ी, कुछ लोगों से कुछ देर पहले बात हो रही थी तो उन्होंने कहा हम लोग खुश है। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो CRPF की तैनाती भी भारी मात्रा में जारी है। नेहा,
0: ठीक है, बने रही हमारे साथ। तो बीजेपी और टीएमसी की आर पार लड़ाई इस सीट को लेकर है। दरअसल ये वर्चस्व की लड़ाई फलता सीट बन गई है। आखिरी समय में यहां पर फलता सीट से टीएमसी के जहांगीर खान ने अपना नाम विड्रॉ कर लिया। उन्होंने कहा था कि पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन प्रचार के आखिरी दिन वो चुनाव से ही हट गए। इसे लेकर अब जुबानी जंग भी तेज है।
3: वो तो नाम कैसे वापस लेंगे, वो तो वापस लेने का टाइम नहीं है, हट गया है पुष्पा, पुष्पा हो गया, अब क्या कर सकते हैं। वो दम नहीं है, डायलॉग बाजी कर रहे थे ज्यादा, दम सब में नहीं होता। हम जानते हैं कैसे ऑपोजिशन में लड़के आना पड़ता है, उन लोगों को पता नहीं ना ऑपोजिशन में कैसे लड़ते हैं। तो सब नए नए नेता बने, जब टीएमसी पावर में आई उसके बाद ही नेता बने।
4: आई थिंक इट इज जहांगीर्स ओन डिसीजन, और ये पार्टी ने भी अपना स्टांस क्लियर किया है कि पार्टी के साथ इसकी कोई कंसल्टेंसी नहीं हुई थी। जहांगीर को शायद लगा होगा कि ही इज़ नॉट फीलिंग सेफ, और उनके ऊपर भी काफ़ी थ्रेट थे जिसको लेकर वो कोर्ट भी गए थे कि उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी। और अगर ये इलेक्शन होता भी तो ये फ्री और फेयर इलेक्शन तो होता नहीं, तो मुझे लगता है ये सब सोच के व्यक्तिगत तौर से उन्होंने ये डिसीजन लिया है, वो सबसे अच्छा बोल पाएंगे।
0: और आइए अब आपको सुनाते हैं जहांगीर खान का वो चर्चित बयान जिसमें उन्होंने अपने आप को पुष्पा बताया था।
5: ये निजे के सिंह मने करे सिनेमा आर्टिस्ट আমরাও পুষ্পা ঝুঁকেগা নেই। ये निजे के सिंह मने करे सिनेमा आर्टिस्ट আমরাও পুষ্পা ঝুঁকেগা নেই।
0: और अब बात मोदी मंत्रिमंडल की, जिसमें फेरबदल की अटकलों के बीच आज मंत्रिपरिषद की बड़ी बैठक होने वाली है। मोदी सरकार के सभी केंद्रीय और राज्य मंत्री शामिल होंगे। पीएम मोदी खुद इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये मीटिंग शाम 5 बजे तय है। सेवा तीर्थ में सभी केंद्रीय और राज्य मंत्रियों को मीटिंग में शामिल होने के लिए कहा गया है। खबर यह भी है कि कैबिनेट में संभावित फेरबदल को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार और फेरबदल जून के दूसरे सप्ताह में हो सकता है। माना जा रहा है कि इस बैठक में सरकार कार्यकाल की मध्यावधि समीक्षा की जाएगी, साथ ही प्रमुख सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रगति की समीक्षा किए जाने की उम्मीद है।
6: विदेश द्वारा खत्म हुआ और अब शुरू होगी देश की बात। पेट्रोल डीजल संकट और महंगाई से आम जीवन में बढ़ते तनाव के बीच आज पीएम मोदी मंत्रिमंडल की बैठक करने वाले हैं। सेवा तीर्थ यानी पीएम कार्यालय में शाम 4 बजे केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है। पीएम मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इसमें सभी मंत्रियों यानी कैबिनेट मंत्रियों, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को बुलाया गया है। इटली से लौटते ही मंत्रिपरिषद की बैठक, अटकलों का दौर गर्म है कि आखिर बैठक के जरिए पीएम मोदी कौन सा बड़ा सियासी संदेश देने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सरकार के आगामी एजेंडे, योजनाओं की समीक्षा, मंत्रियों के परफॉर्मेंस की समीक्षा करने के साथ आने वाले महीनों की राजनीतिक रणनीति पर चर्चा हो सकती है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी जनता से संवाद और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर भी स्पष्ट संदेश दे सकते हैं। लेकिन इस बैठक की सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि मोदी 3.0 सरकार के संभावित मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की अटकलें तेज हैं। सूत्रों की माने तो जून के दूसरे सप्ताह में मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार और फेरबदल हो सकता है। ऐसे में आज की बैठक को सिर्फ रूटीन मीटिंग नहीं बल्कि बड़े राजनीतिक संकेतों से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल 26 मई को ही केंद्र में मोदी के नेतृत्व वाली पहली सरकार के 12 साल पूरे हो रहे हैं। वही 9 जून को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे हो जाएंगे। मंत्रियों के परफॉर्मेंस, राजनीतिक संतुलन और राज्यों के समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट विस्तार और फेरबदल की अटकलें तेज हो गई। सूत्रों के मुताबिक 2027 में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। उसे देखते हुए बीजेपी क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश में है। उसी के तहत मोदी मंत्रिमंडल में नए चेहरों को मौका मिल सकता है। यानी इटली दौरे से लौटने के बाद पीएम मोदी की ये बैठक सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक तौर पर भी बेहद अहम मानी जा रही है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: ऐश्वर्या पालीवाल मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। ऐश्वर्या, आज सिर्फ नामों पर चर्चा होगी या फिर नामों पर मुहर लग जाएगी, वो तय हो जाएंगे?
7: देखिए, नामों पर चर्चा कहीं ना कहीं होगी, कहीं ना कहीं मोहर भी लगी है, लेकिन उससे ज्यादा अहम नेहा जो यहाँ पे किया जाएगा वो ये है कि किस तरीके से आगे जो संकट आने वाला है, किस तरीके से उससे जो इंडियन इकोनॉमी है उसको बचाया जा सके, कौन सा विभाग क्या कर सकता है, किस तरीके से आप जनता तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि सरकार आपके साथ खड़ी है, सरकार कोशिश कर रही है जिससे कि अगर इकोनॉमी पे थोड़ा सा भी डेंट पड़े तो उसको किस तरीके से बचाया जाए, जा सके और अब तक क्या क्या हो चुका है उन सब चीजों पर भी विस्तार के अंदर बातचीत होगी। ये जो मोदी 3.0 है इसके 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, किन किन चीजों के ऊपर जो उन्होंने मंथन किया था क्या वो सारी चीजें अचीव हो चुकी है, क्या चीजें अचीव नहीं हुई है और जो स्पेसेस है जहां पर अभी भी कमी है उन सब स्पेसेस को कैसे फिल किया जाए, इन सब चीजों के ऊपर भी बहुत महत्वपूर्ण बैठक ये जो 4 बजे सेवा तीर्थ के अंदर होगी, इन सब चीजों पर विस्तार में बातचीत होगी।
8: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों के दौरे से कुछ देर में दिल्ली लौट जाएंगे और उसके बाद अपने विदेश दौरे के आखिरी पड़ाव पर वो इटली में थे। आपको बता दें बीती रात वो रोम से रवाना हुए और किसी भी वक्त अब दिल्ली पहुंच सकते हैं। प्रधानमंत्री का इटली दौरा काफी चर्चित रहा। इस दौरे में आपसी सहयोग और रणनीति भागीदारी के कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। व्यापार, रक्षा, निवेश, विज्ञान, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई। तो 5 तस्वीरों के जरिए इटली दौरे की कुछ झलकियां आपको दिखा देते हैं जिसमें प्रधानमंत्री ने कई मुद्दों पर चर्चा की। वहीं प्रधानमंत्री मेलेनी को मेलेडी भेंट की जो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय रही। आधिकारिक स्वागत उनका रेड कार्पेट पर किया गया। उसके बाद पौधरोपण की तस्वीर सामने आई जिसमें उन्होंने पौधा लगाया, एमओयू पर हस्ताक्षर किए और इसके बाद इटली के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई।
9: हम डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया एंड इटली एंड डिलीवर फॉर द वर्ल्ड के सिद्धांत पर आगे बढ़ेंगे। फैशन से लेकर फिनटेक तक, लेदर से लेकर लॉजिस्टिक तक, मोबिलिटी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, हर क्षेत्र में हम अपनी ताकतों को जोड़कर पूरी मानवता की भलाई के लिए काम करेंगे। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी पार्टनरशिप का इंजन है। एआई, क्वांटम, स्पेस और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, आज की बहुत ही उपयोगी बैठक के लिए और आपकी मित्रता के लिए मैं एक बार फिर आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से मैं आपको भारत आने का एक बार फिर से निमंत्रण देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, ग्राजिय मिले।
8: वही ऊर्जा संकट और बढ़ती कीमतों के बीच आज पेट्रोलियम गैस से जुड़ी संसदीय समिति की अहम बैठक होने वाली है और इस बैठक में ताजा हालात की समीक्षा की जाएगी। पेट्रोलियम गैस सहित तमाम सरकारी उपक्रमों और मंत्रालय के अधिकारी इस बैठक में ताजा रिपोर्ट पेश करेंगे। बढ़ती कीमतों के बीच बेहद अहम ये बैठक, ताजा हालात की समीक्षा की जाएगी। देश में कितने पेट्रोलियम की खपत है और उस हिसाब से कितनी आपूर्ति की जा रही है ये सब इस रिपोर्ट का हिस्सा होगा। संसदीय समिति की बैठक बुलाई गई है। बीते एक हफ्ते में लगभग 4 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। और अब बात दिल्ली की करेंगे जहां 2 दिन में 6 हत्याएं हो गई हैं। हत्या की ताजा वारदात गोविंदपुरी की है जहां 2 हत्या की खबर आई है। साउथ ईस्ट दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में मां बेटी की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। परिवार के मुताबिक 10 से 12 लाख कैश और सोना चांदी लेकर आरोपी हत्या के बाद फरार हो गए। दिल्ली पुलिस अब सीसीटीवी को खंगाल रही है। उधर रोहिणी में जॉनी और बैंक नाम के 2 नाबालिग युवकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। तो बीते 24 घंटे में 6 हत्याओं से दहल गई है राजधानी। वेलकम इलाके की घटना जहां पर युवक की गोली मारकर हत्या हुई है, उन जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह वारदात हुई है। वहीं इंद्रपुरी में दहेज के लिए महिला की हत्या का आरोप है। तीन तस्वीरें गोविंदपुरी, रोहिणी और साथ ही वेलकम इलाके की जहां पर अलग अलग वजहों से कुल मिलाकर 6 हत्याएं अब तक 2 दिन में हुई।
10: दिल्ली के रोहिणी जिले के अमन विहार की ये तस्वीर राजधानी की कानून व्यवस्था को चुनौती दे रही है। तस्वीरें इतनी विचलित करने वाली हैं कि हम इसे हूबहू आपको टीवी स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। बुधवार शाम अमन विहार इलाके में दो नाबालिगों की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। वारदात रोहिणी के सेक्टर 20 इलाके की बताई जा रही है। आरोप है कि 3 से 4 युवकों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। शुरुआती जांच में आपसी रंजिश की आशंका जताई जा रही है।
11: उतने जी हम लोग घर पे ही थे, 2:30 बजे तक लड़का हमारे घर पे ही था। उसके बाद वो नीचे आया है, उसके बाद हमें नहीं पता वो कहाँ गया हुआ। हमें तो ये बोला था कि मैं आ रहा हूँ, और हमें करीब 4:30 बजे के आसपास में, नहीं 5:30 बजे के आसपास में मैसेज मिला, किसी का कॉल आया है कि आपके लड़के को चोट लगी है बिल्डिंग स्कूल के पास में।
10: 24 घंटे में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हत्या की 4 वारदात हुई है। 19 और 20 मई की दरमियानी रात उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में श्यामलाल कॉलेज के पास 22 साल के अमानुल्लाह कुरैशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश में अमानुल्लाह कुरैशी की हत्या की गई। उत्तरी दक्षिण दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस इलाके में चाचा और भतीजे के बीच चाकूबाजी की घटना हुई, जिसमें चाचा की मौत हो गई, जबकि भतीजे की हालात गंभीर है। चौबीस घंटे में 4 मर्डर, देश की राजधानी में ये क्या हो रहा है? अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
8: और अब बात ट्विशा मौत मिस्ट्री की। आरोपी है कि ट्विशा की मौत के अगले दिन उनकी सास रिटायर्ड जज गिरीबाला ने कई लोगों को कॉल्स किए। इनमें से कुछ कॉल्स जुडिशरी से जुड़े लोगों को थे, कुछ कॉल्स रिश्तेदारों और अन्य परिचितों को किए गए। ट्विशा मौत मामले में फोन कॉल्स को लेकर ट्विशा के परिवार ने सवाल खड़े किए हैं। ट्विशा के परिवार ने कई फोन नंबर जारी करते हुए दावा किया ट्विशा की मौत के अगले दिन उसकी सास गिरीबाला सिंह ने कई कॉल्स किए, जिनमें से कुछ नंबर जुडिशरी से जुड़े हैं। जज और जस्टिस स्तर के लोग इन कॉल्स में शामिल हैं। रवीश पाल सिंह मेरी सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रवीश, इनकी सास पर पहले भी इस बात का आरोप लग रहा था कि वो इन्फ्लुएंशियल हैं, कुछ ऐसे लोगों को फोन कर सकती हैं, जांच को प्रभावित कर सकती हैं। अब तो कॉल से दरअसल ये एक तरह से साबित भी हो रहा है।
12: देखिए, जो आरोप त्विशा के परिवार की तरफ से लगाए गए हैं, और उन्होंने करीब 46 फोन नंबर जारी किए हैं, और इसमें आरोप लगाए हैं उन्होंने कि वो बार बार कह रहे थे कि जो त्विशा का ससुराल है वो बहुत ताकतवर है, जुडिशरी से जुड़े हुए लोग हैं, रिटायर्ड जज रह चुकी हैं गिरीबाला सिंह, पति जो है क्रिमिनल लॉयर है। तो ऐसे में उनको इस बात का शक था, और वो बार बार इस बात को कह रहे हैं शुरुआत से कि उनकी बेटी को इंसाफ नहीं मिल पाएगा, इतने ताकतवर लोगों के साथ उनकी लड़ाई है। लेकिन कल रात को उन्होंने कुछ नंबर जारी किए हैं, और उनका कहना है कि इनमें से कुछ नंबर जो हैं वो जस्टिस और जज स्तर के लोग हैं, जिनसे लगातार 13 मई को त्विशा की सास गिरीबाला सिंह ने बातचीत की है। और अब बातचीत क्या की है ये उन्होंने जरूर साफ नहीं किया, जाहिर सी बात है वो रिकॉर्ड उनके पास नहीं होगा, लेकिन ये पुलिस की जांच का एक अहम हिस्सा बन सकता है, जिसमें पुलिस शायद भविष्य में जरूर जांच करे और ये पता लगाने की कोशिश करे कि मौत के अगले ही दिन आखिर इन लोगों से बात करने की क्या जरूरत आन पड़ी थी, और पुलिस शायद ये भी पता लगाने की कोशिश करे कि क्या ये बातें लगातार होती रहती थी या फिर मौत के बाद ही फोन किए गए हैं इन बड़े प्रभावशाली लोगों को। फिलहाल ये भी पुलिस की जांच का विषय होगा, लेकिन ये नंबर अभी जारी किए हैं, ये परिवार का आरोप है। देखना यह है कि इस पे आगे पुलिस की तरफ से या फिर आरोपी पक्ष की तरफ से क्या सफाई आती है।
8: ठीक है, अब बने रहिए हमारे साथ। इस बीच ट्विशा मामले में पुलिस फरार पति की तलाश में जुट गई है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस ने समर सिंह की गिरफ्तारी पर इनाम राशि बढ़ाकर 3 गुना यानी कि 30,000 कर दी है। उधर ट्विशा के माता पिता को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने ट्विशा के दूसरे पोस्टमार्टम की अपील को खारिज कर दिया है। ट्विशा के परिजनों ने जांच प्रक्रिया में खामियों का आरोप लगाया। इस मामले की बड़ी खबर यह भी है कि ट्विशा की मौत की सीबीआई जांच हो सकती है। मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा कि अगर परिजनों ने कहा तो इसकी सिफारिश वो करेंगे। दूसरी ओर राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से 7 दिन के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। रवीश मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रवीश, परिवार को एक बड़ा झटका उस अपील के जरिए लगा है, जिसमें कोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम की इजाजत नहीं दी है, अर्जी को खारिज कर दिया है। अब उनके पास क्या विकल्प बचे हैं? क्या वो हायर कोर्ट में ये अपील कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी को प्रिजर्व करने की बात कोर्ट ने जरूर कही है?
12: बिल्कुल, कल हम कोर्ट में उस वक्त मौजूद थे जब जज ने यह फैसला सुनाया है, और जज ने साफ किया है कि ये जो इलाका है जहां पे ये घटनाकांड हुआ है, तो ये यहीं पे इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए, ये मांग की है। पहले त्रिशा के परिवार ने तो मांग की थी कि दिल्ली एम्स में भेजा जाए, लेकिन कोर्ट ने इसे साफ तौर पे खारिज कर दिया कि जहां घटना हुई है आप यहीं पे पोस्टमार्टम करवाइए, सेकंड पोस्टमार्टम अगर आपको लगता है तो। और पुलिस को भी आदेश दिए हैं कि आप आज का पूरा दिन पुलिस को एक ही काम दिया है कोर्ट ने कि आप मध्य प्रदेश के जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं उन सभी से बात करें और उनकी रिपोर्ट आज या शाम तक या कल सुबह या दोपहर तक कोर्ट को सबमिट कराएं कि किस इंस्टीट्यूट के पास -80 डिग्री तापमान की सुविधा उपलब्ध है जहां पर त्विशा के शव को रखा जा सके। फिलहाल कोर्ट की पूरी जो पूरा ध्यान है वो इसी पर है। वहीं पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन के विपरीत अब एक नए मामले में भी लग गई है कि ऐसे इंस्टीट्यूट के बारे में पता किया जाए जहां शव को -80 डिग्री तापमान में रखा जा सके, क्योंकि जो सुविधा है वो इसलिए रखी गई है ताकि जो शव है वो इस कंडीशन में कम से कम रहे कि उसका सेकेंड पोस्टमार्टम हो सके। क्योंकि देखिए गर्मी बेतहाशा है मध्य प्रदेश में, भोपाल में बेतहाशा गर्मी पड़ रही है, शव -4 डिग्री पर रखा जरूर है, लेकिन इसके बावजूद जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि धीरे धीरे जो है वो शव की स्थिति ऐसी नहीं हो पाएगी इतने दिनों तक, क्योंकि तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं, इतनी शव की स्थिति नहीं हो पाएगी कि सेकेंड पोस्टमार्टम में वो तमाम जो शक है परिवार को उसका आसान से जवाब मिल सके। इसलिए कोर्ट भी हो या पुलिस हो, पुलिस भी अपनी तरफ से कह चुकी है कि शव धीरे धीरे डिकम्पोज होने की स्थिति में पहुंच रहा है, तो ऐसे में शव को जल्दी से जल्दी या तो आप अपने अधिकार में लें और उसका अंतिम संस्कार करें, या फिर अगर लगता है कि शव को कहीं भेजा जाए जहां -80 डिग्री तापमान की सुविधा हो तो वहां शव को ले जाया जाए, उस प्रक्रिया को शुरू किया जाए। लेकिन लगता नहीं कि मध्य प्रदेश में कहीं भी -80 डिग्री तापमान की व्यवस्था किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूट में है। लेकिन फिलहाल पुलिस को आज ये टास्क दिया गया है तो पुलिस इसमें लगी हुई है, पत्राचार कर रही है, उसके बाद शाम तक स्थिति साफ हो जाएगी कि क्या त्रिशा का शव एम्स भोपाल में ही रहेगा या फिर यहां से कहीं और बाहर भेजा जाएगा।
8: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात मुंबई के बांद्रा में चल रहे डिमोलिशन ड्राइव की करेंगे। बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान का आज तीसरा दिन है और कल इस कार्रवाई में अचानक माहौल गर्मा गया, प्रशासन की टीम पर पथराव शुरू हो गया। इस पत्थरबाजी में कुछ पुलिस वालों को मामूली चोटें आई हैं, हालांकि प्रशासन और पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए स्थिति पर काबू पा लिया। फिलहाल घटनास्थल पर हालात शांतिपूर्ण है, लेकिन मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए भारी संख्या में आज पुलिस बल और रेलवे सुरक्षा बल RPF और GRP की तैनाती की गई। विद्या मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विद्या, आज किस तरह का माहौल है, हालांकि जो अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई है उससे क्या पत्थरबाजी को रोकने में सफलता पूर्णता हासिल हो गई है?
13: जी देखिए, पत्थरबाजी थोड़ी छुटपुट समय के लिए, तो अगर मैं आपको दिखा सकूं इस पूरे मामले में, क्योंकि जो पत्थरबाजी है वो दूसरे इलाके से हुई थी और वहां से आप देख लीजिए, पुलिस की तैनाती तो जरूर है पूरी, यहां पर तकरीबन 1,250 लोग हैं, रिजर्व पुलिस कह लीजिए, मुंबई पुलिस कह लीजिए या फिर जो रेलवे के अधिकारी हैं, वो तकरीबन 1,250 लोग यहाँ डिप्लॉयड थे। ये एरिया जो है उसको उनको डिमोलिश करना था। ये दरअसल ये एरिया में काफ़ी सालों से ये स्लम्स लगे हुए थे, लेकिन पिछले कुछ समय से कार्रवाई ना होने की वजह से काफ़ी बड़े बड़े स्लम्स हो गए थे, तो इस पर रोक लगाने के लिए यहाँ पर ये कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर एक टर्मिनस बनना है, टर्मिनस का एक्सपेंशन है, एक इंटीग्रेटेड टर्मिनस का प्रोजेक्ट है, तो तमाम चीज़ें रेलवे ने अपने प्रॉपर्टी पे प्लान की हुई थी, लेकिन क्योंकि ये स्लम्स थे इसको हटाने की प्रक्रिया बहुत देर से करने की कोशिश कर रहे थे, कोर्ट अदालत तक का रुख करना पड़ा था, अदालत से जब आदेश आया उसके बाद ही ये डिमोलिशन शुरू हुआ। 60% काम हो चुका है ऐसा यहां रेलवे का कहना है, अगला 2 दिन और है जहां पर कि वो ये काम करेंगे, जहां पर कि उन्हें जो तकरीबन 600 के आसपास जो इमारतें हैं, जो स्लम्स हैं, उसमें से 500 के आसपास को तोड़नी है, 100 पर प्रोटेक्शन है क्योंकि उनको ऑलरेडी प्रोटेक्शन मिला हुआ था, तो उनको छोड़ के बाकी 500 जो हैं उन्हें हटानी थी, तो 60% वर्क हो गया है। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे के लिए।
8: बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बात मौसम की करेंगे। उत्तर भारत धधक रहा है और आसमान से आग बरस रही है, अगले 2 दिन तक यही हाल रहने वाला है। इस घातक गर्मी से बचने का एक ही उपाय है कि घर पर रहें, सुबह 8 से 4 बजे तक घर से ना निकलें, क्योंकि मई के महीने में ऐसा हो गया है कि सुबह ही दोपहर हो जाती है। यूपी के कई शहरों में 8 बजे पारा 30 से 35 डिग्री के पार पहुंच जाता है। मौसम विभाग ने यूपी में लू यानी हीट वेव का अलर्ट जारी किया है।

0: और अब आपको दिखाते हैं कि मौसम का कहर कहां कहां है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में कहर दिखाई दे रहा है। यहां पर झांसी में तापमान 46 डिग्री पहुंच चुका है, बांदा में लगभग 48 डिग्री, सबसे ज्यादा तापमान इस वक्त बांदा में दर्ज किया गया है। बुंदेलखंड भी इसका हिस्सा है। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो यहां पर प्रयागराज 47 डिग्री पर है, मिर्जापुर 46 डिग्री पर है। तो उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जो शहर है इस वक्त हीटवेव से जूझ रहे हैं, जिसमें आगरा शामिल है, 43 डिग्री पर है। कानपुर में 47 डिग्री पारा पहुंच चुका है। तो ये पश्चिम मध्य का क्षेत्र है जो इस वक्त धधक रहा है, और यहां पर भी इस वक्त पारा काफी ज्यादा है। तो मई का तापमान इस वक्त डराने वाला है, और ऐसे में सलाह यही दी जा रही है कि ज्यादा समय घर पर ही रहें। और अब खबर जयपुर से। यहां पर एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। पुलिस दल पर एक परिवार ने हमला कर दिया। खबरों के मुताबिक पुलिस गश्त दल ने आधी रात को गली के बाहर बैठे 3 युवकों को टोका। इस पर परिवार के लोग नाराज हो गए और घर के बाहर आकर पुलिस कर्मियों को थप्पड़ और मुक्के मारने लगे। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 हमलावरों को गिरफ्तार किया है। ये तस्वीरें हैं, पुलिस के साथ ये घर वाले भिड़ गए। पुलिस ने जब 3 लोगों को घर से बाहर बैठने से मना किया, गश्त दल था जिस पर यह हमला किया गया। तो बिना ब्रेक की खबरों का सिलसिला लगातार 9 बज गए में जारी रहेगा। वक्त हो गया है हेडलाइंस का।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: आदेश, मदरसों में वंदे मातरम गाना होगा अनिवार्य। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सड़क पर उतरेंगी ममता। विरोध से पहले टीएमसी में फूट की अटकलें। ईवीएम के इम्कान से रद्द हुए चुनाव के बाद बंगाल की फलता सीट पर दोबारा चल रही है वोटिंग। पोलिंग बूथ पर लंबी कतारें, सुरक्षा पहले से दोगुनी। लड़ाई से हटे टीएमसी के जहांगीर खान। मोदी कैबिनेट के विस्तार और फेरबदल की खबरों के बीच आज पीएम करेंगे मंत्रिपरिषद की बैठक। 3.0 के कार्यकाल की होगी समीक्षा। शाम 5 बजे सभी केंद्र राज्य मंत्री होंगे शामिल। नीट पेपर लीक मामले पर आज संसदीय समिति के सामने होगी एनटीए के टॉप अफसरों की पेशी। दोबारा परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री की हाई लेवल मीटिंग। 48 घंटे में 6 हत्याओं से दिल्ली में हड़कंप। गोविंदपुरी में चाकू गोदकर हत्या, मां बेटे का मर्डर। रोहिणी में 2 नाबालिगों का कत्ल। वेलकम एक युवक को गोली मारी गई।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर मां का भरोसा प्यार से पर...
0: भोपाल में ट्रिशा सुसाइड केस में घिरी कंज्यूमर फोरम जज गिरिबाला सिंह पर कार्रवाई तेज। पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू। खाद्य विभाग का बड़ा एक्शन। गिरिबाला सिंह के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 के तहत जांच रिपोर्ट तलब। अग्रिम जमानत पर चल रही है जज गिरिबाला सिंह पर रिमूवल की तैयारी। राज्य सरकार ने आयोग को लिखा पत्र। ट्रिशा शर्मा मौत मामले में NCW सख्त, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए मुख्य सचिव और DGP को पत्र। फरार आरोपी की गिरफ्तारी से लेकर सीसीटीवी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक NCW ने मांगी पूरी कार्रवाई की डिटेल। त्रिशा मामले में नया खुलासा। परिवार का आरोप, मौत के अगले दिन सास गिरिबाला ने जुडिशरी से जुड़े कई नंबर्स पर किए कॉल। परिवार ने लगाया गंभीर आरोप, किया दावा। गिरिबाला के फोन से 13 मई को रिश्तेदारों और परिचितों को कई कॉल्स किए गए। पुलिस ने CDR की जांच की मांग की। त्रिशा मामले में बड़ा खुलासा। परिजनों का कहना है मौत के अगले दिन CCTV इंस्टॉलेशन से जुड़े युवकों को भी गिरिबाला के नंबर से कॉल किए गए। त्रिशा के परिवार ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की मांग तेज। परिवार ने कॉल डिटेल्स, रिकॉर्ड, टावर लोकेशन, डिजिटल डेटा की फोरेंसिक जांच कराने की अपील की। साक्ष्य सुरक्षित रखने की मांग। त्रिशा मामले में पति समर सिंह के नहीं मिलने पर पुलिस ने बढ़ाई इनाम की राशि, 3,000 रुपए इनाम घोषित। मोगा में सरकारी नशा मुक्ति केंद्र से ताला तोड़कर 30 युवक हुए फरार। भागने की कोशिश में स्टाफ के साथ धक्का मुक्की। पुलिस ने फरार युवकों की तलाश में उनके घरों पर निगरानी बढ़ाई। सेंटर के आसपास लगे CCTV कैमरों को खंगाला गया। वाराणसी में पेट्रोल पंप पर बदमाश ने पिस्टल दिखाकर भरवाया मुफ्त में पेट्रोल, वीडियो वायरल। दिल्ली के इंद्रपुरी में विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत, पति और देवर अरेस्ट। मृतका के परिवार का आरोप, रंग रूप को लेकर देते थे ताने, दहेज के लिए करते थे परेशान। सीतामढ़ी में 22 साल के युवक की गोली मारकर हत्या, 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। आगरा में भीषण गर्मी का कहर, काम करते मजदूर की अचानक तबियत बिगड़ी, इलाज के दौरान मौत। ग्रेटर नोएडा में ड्यूटी पर जा रहे युवक पर बदमाश ने बरसाई गोलियां, इलाज के दौरान मौत। ग्रेटर नोएडा हत्याकांड मामले में पुलिस की जांच शुरू, 2 टीमें गठित। CCTV कैमरों को खंगाला गया। उन्नाव में 48 घंटे में 4 लूट की वारदात, ज्वेलर्स शॉप समेत कई घटनाओं के बाद SHO सस्पेंड। अलवर में पत्नी ने मायके जाने से मना करने पर अपने नवजात को बुलाया तेजाब, इलाज के दौरान बच्ची ने तोड़ा दम। बेगूसराय में रील बनाने वाली महिला की संदिग्ध मौत, दहेज हत्या और आत्महत्या के बीच उलझी है गुत्थी। धनबाद में कोयला सिंडिकेट की खूनी जंग, AJSU और राम रहीम सेना समर्थकों के बीच फायरिंग। अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व के जंगल में भीषण आग, वन विभाग की तत्परता से बड़ा हादसा टला। रेवाड़ी की GLS कंपनी में भीषण आग के बाद राहत बचाव कार्य तेज, DCSP ने प्रबंधन की लापरवाही पर जताई नाराजगी। बिजनौर में बिजली का तार गिरने से स्विफ्ट कार में लगी आग, पेट्रोल पंप कर्मचारियों की सूझबूझ से टला हादसा। टोंक में पेयजल संकट से भड़की ग्रामीण, महिलाएं समेत कई लोग पानी की टंकी पर चढ़े, 2 साल से पानी की किल्लत झेल रहे हैं। मिर्जापुर में जिम की आड़ में धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग मामले में 10 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई, संगठित गिरोह का खुलासा। जयपुर में रात की गश्त के दौरान पुलिस पर हमला, 1 महिला सहित 3 लोग गिरफ्तार, 1 नाबालिग को पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में डबल मर्डर, सब्जी व्यापारी की पत्नी और बेटे की घर में लूटपाट के दौरान चाकू गोदकर हत्या। प्रधानमंत्री मोदी के आज सुबह दिल्ली पहुंचने की संभावना, विदेश दौरे के बाद तुरंत सरकारी कामकाज में जुटेंगे। गुरुवार शाम 5 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, सभी मंत्रियों की मौजूदगी अनिवार्य। जून में संभावित मंत्रिमंडल बदलाव को लेकर चर्चा तेज, इस बैठक को राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। पिछले 12 वर्ष में टॉफी एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी दर्ज हुई, 2013-14 में 49.68 करोड़ से बढ़कर 25-26 में 132 करोड़ पहुंची। लोकसभा की पेट्रोलियम और गैस जुड़ी समिति की बैठक, ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा। रोम में भारत इटली रिश्तों को नई उड़ान, राजनीतिक साझेदारी तक ले जाने पर सहमति। रोम में प्रधानमंत्री को खाद्य एवं कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान, बोले 140 करोड़ भारतीय और किसानों का सम्मान है। पीएम मोदी और इटली की पीएम मेलेनी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी का ऐलान, इटली से 2029 तक 20 अरब यूरो का होगा व्यापार। पीएम मोदी ने मेलेनी को दिया भारत आने का न्योता, स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का किया ऐलान। इटली और भारत के बीच द्विपक्षीय वार्ता, रक्षा सुरक्षा और सामरिक प्रौद्योगिकी में सहयोग को और मजबूती पर जोर। पीएम मोदी के विदेश दौरे पर राहुल गांधी का हमला, देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, मोदी जी मेलेनी को टॉफी खिलाकर रील बना रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा।
2: प्रधानमंत्री मेलोनी जी का पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, गैस नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मेलोनी जी के साथ मेलोनी
0: राहुल गांधी ने पीएम मोदी सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, किसानों को खाद नहीं मिलने वाली है, अब हिंदुस्तान का मजदूर, युवा और किसान देश को बचा सकता है। पीएम मोदी और अमित शाह को गद्दार कहने पर राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का पलटवार, कहा पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं नेता विपक्ष। दक्षिण कोरिया के मंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक, रक्षा अधिग्रहण को लेकर चर्चा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद तक पर पाकिस्तान को खूब सुनाया, साथ ही अफगानिस्तान में हत्याओं को लेकर आड़े हाथ लिया। यूएन ने भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाते हुए कहा, नरसंहार इतिहास वाला देश भारत के आंतरिक मामले में बोलने का हक नहीं रखता है। सीमा पार आतंकवाद पर भारत ने यूएन में कड़ा संदेश दिया, भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने आतंकवाद को समर्थन देने वाले देश को जवाबदेह ठहराने की मांग की। थोड़ी देर में यमुना सफाई को लेकर गृहमंत्री शाह की बड़ी बैठक, मीटिंग में दिल्ली सीएम, जल शक्ति मंत्री सहित विभागों के कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। राजस्थान सरकार के डेयरी विभाग ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की, स्टैंडर्ड दूध की नई कीमत 62 रुपए, गोल दूध की कीमत 70 रुपए प्रति लीटर हुई। नीट री एग्जाम को लेकर शिक्षा मंत्री की हाई लेवल मीटिंग, फर्जी सोशल मीडिया पर सख्त एक्शन के आदेश, मेटा गूगल टेलीग्राम के साथ मीटिंग। हावड़ा में सीएम शुभेंदु अधिकारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीमा सुरक्षा को लेकर बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में चर्चा। हालता सीट पर पुनर्मतदान, जहांगीर खान के नाम वापस लेने पर टीएमसी सांसद सायोनी घोष बोली, सुरक्षा और निष्पक्ष चुनाव को लेकर चिंता के बीच लिया गया है, यह फैसला व्यक्तिगत है। ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी पर बड़ा एक्शन, बीजेपी ने जारी की 43 अवैध संपत्तियों की लिस्ट, आसनसोल में टीएमसी दफ्तर पर चला बुलडोजर। एनआईए ने कोलकाता से पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में एक शख्स को किया गिरफ्तार, सुरक्षा संबंधी गोपनीय जानकारी लीक करने का आरोप। केरलम में कैबिनेट के विभागों का बंटवारा, मुख्यमंत्री सतीशन ने अपने पास वित्त कानून समेत 35 अहम विभाग रख लिए हैं। केरलम सरकार में रमेश चेन्नीथला के पास गृह, सतर्कता और 3 अन्य विभागों की जिम्मेदारी, वहीं केपीसीसी के प्रमुख को बिजली, पर्यावरण और संसदीय मामलों का प्रभार मिला। केरलम में दूध के दाम 4 रुपए बढ़े, नए सीएम सतीशन ने दी मंजूरी, बढ़े हुए दाम 1 जून से लागू होंगे। तमिलनाडु के नागापट्टिनम में टीवीके की शानदार जीत पर जेराल्ड मिल्टन ने घुटने के बल चढ़कर अपनी मन्नत पूरी की। मुंबई महा विकास अघाड़ी प्रतिनिधिमंडल की मुख्य निर्वाचन अधिकारी से की मुलाकात, वोटर लिस्ट और एसआर प्रक्रियाओं पर चर्चा। मुंबई के बांद्रा में गरीब नगर इलाके में दूसरे दिन बुलडोजर एक्शन जारी, रेलवे की जमीन पर बनाए गए अवैध घरों को तोड़ने के दौरान भारी बवाल। बांद्रा में अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान भड़की हिंसा, पथराव के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बांद्रा में तोड़फोड़ और लाठीचार्ज पर शिवसेना यूबीटी विधायक वरुण सारदेसाई का बयान, बोले अगर लोग बांग्लादेशी हैं तो वोटर आईडी कैसे बने। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने नीट पेपर लीक मामले पर केंद्र सरकार को घेरा, बीजेपी सरकार के दौरान हर साल कोई ना कोई पेपर लीक हुआ है। करनाल में नीट पेपर लीक, बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर कांग्रेस पार्टी का जोरदार प्रदर्शन, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी रहे मौजूद। छत्रपति संभाजीनगर में एनसीपी शरद पवार गुट का प्रदर्शन, किसानों ने कर्ज माफी और फसलों के उचित दाम की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर किसानों से किए वादे पूरे ना करने का आरोप लगाया, कर्ज माफी और फसलों को उचित दाम देने की मांग की। पश्चिमी मेदनापुर में एक दुकान से सरकारी राहत सामग्री मिलने पर हंगामा, बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प। पलवल में सोशल मीडिया पर वीडियो डालने पर युवकों पर हथौड़ों और डंडों से हमला, हाथ पैर तोड़े, पुलिस ने केस दर्ज किया। एमपी के बुंदेलखंड में 5 जिलों में भीषण लू का रेड अलर्ट, दिन के समय सड़कों पर पसरा सन्नाटा। एमपी का छतरपुर प्रदेश का सबसे गर्म जिला, 47 डिग्री तापमान, आने वाले दिनों में 50 डिग्री तक जा सकता है तापमान। उत्तर प्रदेश में 23 मई तक पड़ेगी भयंकर गर्मी, मौसम विभाग ने लू का रेड अलर्ट जारी किया। यूपी के बांदा में तापमान 48.2 डिग्री, 11 जिलों में 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट। यूपी के 15 जिले भीषण गर्मी की चपेट में, अयोध्या में पारा 41 डिग्री के पार, गर्मी ने बढ़ाई परेशानी। चंदौली में पारा 44 डिग्री, चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी से लोग बेहाल। अलवर में 46 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, ट्रैफिक सिग्नल पर टेंट लगाकर पुलिस ने लोगों को दी राहत। अकोला में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी, गर्मी के चलते कई इलाकों में पानी की किल्लत। औरैया में तापमान बढ़कर 45 डिग्री, गर्मी से बचने के लिए कई जगहों पर पानी की व्यवस्था। और अयोध्या में भीषण गर्मी से बढ़ा बिजली का बोझ, ट्रांसफॉर्मर्स को ठंडा रखने के लगाए गए कूलर, लाइन में लगातार रख रहे हैं निगरानी। भूल भुलैया पार्ट टू के पूरे हुए 4 साल, निर्देशक अनीस बाजवी ने जताया आभार, शेयर किया पोस्ट। हॉरर थ्रिलर फिल्म खेती का फर्स्ट लुक सामने, जैकी श्रॉफ और शरद केलकर निभा रहे हैं मुख्य किरदार। मशहूर डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की वेब सीरीज पीटर एंड पेड्रो का टीजर लॉन्च, 3 जुलाई को जियो हॉटस्टार पर होगी स्ट्रीम। अपने पिता की वेब सीरीज से एक्टिंग डेब्यू कर रहे वीर हिरानी, वेब सीरीज में अरशद वारसी के साथ स्क्रीन करेंगे शेयर। ओटीटी पर फिर से दिखेगा मिश्रा परिवार का मजेदार ड्रामा, 5 जून को सोनी लाइव पर रिलीज होगी गुल्लक सीजन 5। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स

0: और अगली खबर का रुख करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर नए हमले की डेडलाइन डिसाइड कर ली है और ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अगले 48 घंटे में पीस डील साइन नहीं हुई तो एक बार फिर अमेरिका हमला करेगा। दोनों देश परमाणु प्रोग्राम को लेकर आमने सामने हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जे को लेकर दोनों देशों के बीच तनातनी है।
1: On the Iran, I had no choice because they were going to have a nuclear weapon. We're not going to give them a nuclear weapon. But that's going to end soon, one way or the other. Oil is going to come tumbling down.
0: ट्रंप ने ईरान को जो डेडलाइन दी है उसके मुताबिक अमेरिका शुक्रवार, शनिवार या फिर रविवार को हमला करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी पर पलटवार करते हुए ईरान ने विनाशकारी हमले की चेतावनी दी है।
2: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर अगले 48 घंटे के अंदर ईरान की तरफ से पीस डील को लेकर कोई अच्छी खबर नहीं आई तो ईरान पर विध्वंसक हमलों की शुरुआत हो जाएगी।
3: And now we're blowing it away. We're blowing everything away, and we're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly. They're tired of this. This should have happened for 47 years. Somebody should have done something about it, and it's going to happen, and it's going to happen fast. And you're going to see oil prices plummet. They're going to come down. There's so much oil out there. They're going to come plummeting down.
2: ट्रंप की धमकी का मतलब ये है कि शुक्रवार, शनिवार या फिर रविवार को ईरान पर एक बार फिर हमला हो सकता है क्योंकि ईरान के साथ पीस डील को लेकर अब तक सहमति नहीं बनी है। ईरान ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव अमेरिका को भेज रखा है। मामला सिर्फ और सिर्फ ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर अटका और लटका हुआ है। ईरान ने साफ कहा कि वो परमाणु प्रोग्राम पर किसी दबाव में फैसला नहीं लेगा। इस बीच पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी एक बार फिर तेहरान पहुंचे हैं। युद्ध के खतरे के बीच इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर दोबारा हमले का आदेश दिया तो महायुद्ध की चपेट में अब की बार पूरी दुनिया आ सकती है क्योंकि ईरान खुल्लम खुल्ला ऐलान कर चुका है कि इस बार अपनी उन विध्वंसक मिसाइलों से प्रहार करेगा जिसका इस्तेमाल अभी तक नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: और वही कहाँ गए थे घूमने?
6: जीके मैक्स।
7: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
6: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
8: जेके वॉल मैक्स
6: बेस्ट पेंट,
8: जेके मैक्स।
6: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Max Paints, खुशियों के रंग।
9: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
10: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
11: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
12: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
13: Director, the taste of success.
14: Like I said before, we better own the sins.
15: यार
16: ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
17: इसमें माइक्रोफाइबर है।
16: माइक्रोफाइबर यानी
17: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
16: हमारे सीमेंट में नहीं है?
17: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
18: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
19: सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
20: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
21: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
22: नहीं,
21: और म्यूचुअल फंड से
22: सही।
23: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
24: अनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
25: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
26: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
2: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
3: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
1: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
4: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
2: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
1: जहां खबर वहां खबरदार।
5: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
6: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, और वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया
0: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का साथ

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
3: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
4: सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
5: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
6: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
7: नहीं,
6: और म्यूचुअल फंड से
7: सही।
8: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
9: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
10: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
11: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, एनटीओ को पता नहीं।
9: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
12: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
10: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
9: जहां खबर वहां खबरदार।
13: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
14: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।

0: ससुराल पक्ष तो फॉर्चूनर गाड़ी मांग रहा है 51 लाख रुपए मांग रहा था।
1: आखिर ऐसा क्या हुआ कि ग्रेटर नोएडा की बेटी को जान गंवानी पड़ी? घर वालों ने नाजों से पाला, बड़े अरमानों से शादी की, 1 करोड़ से ज्यादा खर्च किए, स्कॉर्पियो कार तोहफे में दिया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ दिन बाद ससुराल वाले राक्षस बन जाएंगे, दहेज के लिए बेटी को सताने लगेंगे, फॉर्च्यूनर कार के लिए मारने पीटने लगेंगे। ग्रेटर नोएडा के रहने वाले संजय नागर का आरोप है कि बेटी की शिकायत के बाद वो उससे मिलने ससुराल भी गए थे और लौटते ही बेटी के छत से गिरने की खबर आ गई। ससुराल वालों ने बताया कि दीपिका छत से गिर गई है। अस्पताल पहुंचने पर दीपिका के घर वालों को पता चला कि दीपिका अब इस दुनिया में नहीं है। 3री मंजिल से गिरने से उसकी मौत हो चुकी है। पिता को यकीन नहीं हो रहा कि बेटी की मौत गिरने से हुई। उनका आरोप है कि बेटी को छत से धक्का देकर मारा गया। वो चोटों के निशान का हवाला देते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इसकी तस्दीक कर रही है। रिपोर्ट बताती है कि दीपिका के चेहरे, कोहनी, जांघ, घुटने, कमर, पेट सब जगह गहरे निशान मिले। मामला इकोटेक थाना इलाके का है। दीपिका के घर वाले पुड़ीखेड़ा गांव के रहने वाले हैं, जबकि उसका ससुराल जलपुरा में है। घर वालों का कहना है कि दीपिका के ससुराल वाले लगातार उनसे फॉर्च्यूनर समेत लाखों रुपए की मांग कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने दीपिका के ससुर मनोज और पति ऋत्विक को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रेटर नोएडा से अरुण त्यागी के साथ अंशुल सिंह, आज तक।

0: क्या ट्रिशा ने खुदकुशी की? क्या उसकी हत्या कर उसे फंदे से लटका दिया गया था? या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छुपी है? सस्पेंस गहरा है। ट्रिशा के पिता को न तो सुसाइड थ्योरी पर भरोसा है, न ही ससुराल वालों पर। वो उनकी रसूख की बातें कर रहे हैं, वो दोबारा पोस्टमार्टम की मांग कर रहे हैं, वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। 12 मई की दो तस्वीर से सस्पेंस गहरा गया। एक तस्वीर में रात के 10 बजे ट्रिशा रस्सी लेकर छत पर जाती दिख रही है। दूसरी तस्वीर में उसके पति समर्थ सिंह उसे CPR देते दिख रहे हैं। ये दो तस्वीरें काफी कुछ कहती हैं। कैमरा दिखा रहा है अकेली छत पर जाती है ट्रिशा और फिर अनहोनी होती है और उसके पति उसे बचाने की कोशिश करते हैं, फौरन अस्पताल ले जाते हैं।
1: ये हमारी लड़ाई
0: लेकिन ट्रिशा के पिता इस कहानी पर भरोसा नहीं करते। उसकी वजह भी है। उनका आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद से ही वो फोन पर अक्सर रोती थी, जलील करने की बात करती, प्रताड़ित करने की बात करती। 12 मई की रात को भी उसने अपनी माँ को फोन किया था, रात 10:05 पर। उसने कहा था कि अब वो टूट चुकी है और अब सहा नहीं जा रहा, लेकिन कुछ ही मिनट बाद फोन कट गया और करीब 15 मिनट बाद सास गिरिबाला सिंह का फोन आया। उन्होंने बताया कि ट्रिशा फंदे से लटकी मिली है और उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ट्रिशा के शरीर पर कई चोटों के निशान मिलने की बात सामने आई, यानी सिर्फ फांसी नहीं, शरीर पर और भी जख्म थे। यही वजह है कि परिवार अब दोबारा पोस्टमार्टम की मांग कर रहा है। 6 दिन गुजर जाने के बावजूद ट्रिशा का अंतिम संस्कार नहीं किया गया। उसका शव अब भी भोपाल की मॉर्चरी में रखा है। इस केस में एक और सवाल उस बेल्ट को लेकर उठ रहा है जिससे कथित तौर पर ट्रिशा ने फंदा लगाया। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने शुरुआत में उस बेल्ट को फॉरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा। हालांकि बाद में पुलिस ने कहा कि बेल्ट जब्त कर ली गई थी और उसकी जांच कराई जा रही है। ट्रिशा के परिवार का आरोप है कि रसूखदार सास की वजह से उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। कटारा हिल्स थाने से लेकर CM हाउस तक परिवार लगातार चक्कर लगा रहा है। पुलिस ने अब इस मामले में दहेज हत्या का केस दर्ज कर लिया, SIT बनाई गई है। लेकिन इसी बीच ट्रिशा की सास गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत भी मिल गई और अब इस केस ने एक नया मोड़ ले लिया। अपनी जमानत अर्जी में ट्रिशा की सास ने ट्रिशा को ड्रग एडिक्ट बताया। कहा है कि वो नियमित तौर पर ड्रग्स लेती थी, जब ड्रग्स नहीं मिलती तो उसका व्यवहार बदल जाता था। लेकिन ट्रिशा का परिवार इसे मौत के बाद चरित्र हनन बता रहा है। अब सवाल यही, क्या ट्रिशा ने सचमुच खुदकुशी की या फिर 5 महीने पहले शुरू हुई शादी मौत की साजिश में बदल गई?

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

बंगाल में शुभेंदु सरकार का बड़ा आदेश, मदरसों में वंदे मातरम गाना होगा अनिवार्य। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सड़क पर उतरेंगी ममता बैनर्जी। विरोध से पहले टीएमसी में फूट की अटकलें। ईवीएम टेप कांड से रद्द हुए चुनाव के बाद बंगाल की फलता सीट पर दोबारा वोटिंग जारी। सुबह 9 बजे करीब 21% मतदान। लड़ाई से हटे टीएमसी के जहांगीर खान। इटली से स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री मोदी, आज शाम लेंगे मंत्रिपरिषद की बैठक। 3.0 कार्यकाल की होगी समीक्षा। शाम 5 बजे सभी केंद्रीय और राज्य मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा। नीट पेपर लीक मामले पर आज संसदीय समिति के सामने होगी एनटीए के टॉप अफसरों की पेशी। दोबारा परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री की हाई लेवल मीटिंग। फर्जी टेलीग्राम चैनल्स पर होगी कार्रवाई। प्रचंड गर्मी में झुलसा हिंदुस्तान, अगले 3 दिन तक चलेंगे लू के थपेड़े। दुनिया के सबसे गर्म शहरों में शुमार, उत्तर प्रदेश का बांदा। तेजी से बढ़ रही है मरीजों की संख्या।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल। मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह के साथ एक बार फिर से हाजिर है। और इस पेशकश में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज क्या क्या स्पेशल है। बात होगी पश्चिम बंगाल की, जहां आज फुल एक्शन का दिन है। शुभेंदु सरकार हिंदुत्व के रथ पर सवार है, तो ममता बैनर्जी बुलडोजर एक्शन के खिलाफ पहली बार सड़क पर उतरने जा रही हैं। साथ ही बात होगी आज शाम होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक की। बताएंगे मंत्रियों के साथ होने वाली मेगा बैठक में क्या क्या होगा, किन मसलों पर चर्चा होगी, मंत्रियों के काम की रिपोर्ट तलब होगी या नहीं, कैबिनेट विस्तार की भी एक सुगबुगाहट जरूर है। साथ ही बताएंगे कि ट्विशा मौत मिस्ट्री में कैसे 46 फोन कॉल्स पर घिर गई है रसूखदार सास गिरीवाला। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वक्त पश्चिम बंगाल की खबर से, जो कि इस वक्त आ रही है बंगाल, जहां हिंदुत्व के रथ पर सवार है शुभेंदु सरकार और उसने एक और बड़ा फैसला ले लिया है। बंगाल के सभी मदरसों को एक फरमान जारी कर दिया गया है, वंदे मातरम गाना जरूरी कर दिया गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुसलमानों को लेकर एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए, फिर चाहे वो सार्वजनिक जगहों पर नमाज पर रोक हो या फिर इमामों और मुअज्जिनों को मिलने वाले भत्ते को खत्म करना हो, ओबीसी लिस्ट में मुस्लिम जातियों की समीक्षा हो या फिर घुसपैठ को लेकर सॉलिड प्लान हो, ये सब किया गया है। और अब जो खबर आ रही है वो ये कि सभी मदरसों पे अब राष्ट्रगीत गाना अनिवार्य हो जाएगा।
1: वो जोर भुगतना पड़ेगा, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करेगा तो सबक सिखाने काम भारतीय जनता पार्टी का सरकार करेगा।
2: अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, जीरो टॉलरेंस। मैं ऑन स्पॉट आकर उनको साथ मुलाकात किया, नहीं बुला के बात किया। ये मैसेज जो उपद्रवी है उनको भी ये मैसेज चला जाना चाहिए, ये सरकार अपने कार्रवाई करेगा।
0: और आइए अब सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अनुपम मिश्र का। अनुपम, लगातार फैसले ले रही है सरकार और धड़ाधड़ ले रही है, एक और फैसला, इसके बारे में हमें बताएं, क्या ये सभी मदरसों पर लागू है, चाहे वो सरकारी मदद से चलते हो या ना?
3: ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। अब जो नया फैसला आया है, इससे पहले आपको मालूम होगा सभी सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया गया था। अब जो नया फैसला आया है उसके तहत जो मदरसा डिपार्टमेंट है और जो अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट है उसके तहत आने वाले जितने भी मदरसे हैं, खासतौर पर सरकारी मदरसे जो हैं, जो एडेड हैं या अनएडेड हैं, सभी में अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया गया है विथ इमीडिएट इफेक्ट। तो ये नया फैसला है ये, लेकिन सरकारी और सरकार से जुड़े, सरकार से संबंधित जो मदरसे हैं, चाहे वो एडेड हों अनएडेड हों, इन सभी मदरसों पर लागू होगा। और इससे पहले जहां तक हमें जानकारी है कि बहुत जगहों पर जनगण मन गाया जाता था, बहुत जगहों पर कुछ और जो प्रायर असेंबली होती है उसमें गाया जाता था, लेकिन अब जो नया नियम आया है उसके तहत पुराने सभी नियमों को निरस्त कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है और वंदे मातरम का गाना ही अनिवार्य किया गया है। अंजलि
0: जी, शुक्रिया आपका अनुपम इस पूरी जानकारी के लिए। तो अगली खबर भी पश्चिम बंगाल से ही है और पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा वोट डाले जा रहे हैं। दो घंटे में करीब 21% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। और टीएमसी का ये गढ़ माना जाता है ये सीट, और ये लगातार चर्चा में भी रही है। 29 अप्रैल को यहाँ दूसरे चरण में चुनाव था, लेकिन भारी गड़बड़ी की शिकायत के बाद इसे रद्द कर दिया गया था। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के हटने के ऐलान से फिर से ये सीट चर्चा में आ गई है। हालांकि जहांगीर खान ने प्रचार के आखिरी दिन चुनाव से हटने से ऐलान किया, इसलिए ईवीएम से उनका नाम अभी तक हटा नहीं है, वो ईवीएम पर मौजूद है। और फलता से हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी अनिर्बान। अनिर्बान, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त किस तरह से वोटिंग वहां चल रही है, क्योंकि एक वक्त था कहा जाता था कि फलता में वोटिंग के वक्त थोड़ा सा डर का माहौल होता है, क्या आज वहां पर शांति के साथ वोटिंग हो रही है और क्या नाम ईवीएम पे दिख रहा है लोगों को?
4: जी हाँ, आज तो है कि शांतिपूर्वक वोटिंग चल रही है अभी तक की जो खबर आ रही है, और सामने ही बूथ है। इतना जो है कि सिक्योरिटी दिया गया है यहाँ पे कि 100 मीटर के अंदर मीडिया वाले को भी नहीं घुसने दिया जा रहा है, 100 मीटर से की दूरी से रिपोर्टिंग करना पड़ रहा है और उसके साथ साथ कोई भी अनजान लोगों को घुसने नहीं दिया जा रहा है। मेरे साथ इतने भी वोटर्स यहाँ पे जुड़ चुके हैं, देखिए इनसे बातें करते हैं। आप लोग जो 15 सालों से वोटिंग चल रही थी यहाँ पे, कहा जाता है कि यहाँ वोट अपने मर्जी से नहीं दे सकते थे, क्या ये था, क्या ये डर का माहौल था?
5: हाँ, डर का माहौल था। 15 साल से जो वोट दे रहा था हमको वोट नहीं दे रहा था, पा था कुछ लोग अनजान लोग है वोट देने के लिए मना कर रहा था, किंतु अभी पूरा शांतिपूर्ण है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम सब सुबह से सब शांतिपूर्वक वोट देकर आया है।
4: जी हाँ, देखिए यहाँ पे सेंट्रल फोर्स की तैनाती जैसे है, सीआरपीएफ सीएपीएफ तैनाती पूरी तरीके से है। जहांगीर खान जिसको स्ट्रॉन्ग मैन माना जाता था, अब उसके खिलाफ जो है अब भाजपा की लड़ाई है। अब ये देखना है कि ये जब 24 तारीख को रिजल्ट आएगा तो
0: जी बिल्कुल, और 24 तारीख पर रहेगी हमारी नजर। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो फलता सीट जो है वो टीएमसी के जहांगीर खान की वजह से चर्चा में है, और जहांगीर खान ने कहा था कि पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन प्रचार के आखिरी दिन वो चुनाव से हट गए। इसे लेकर अब भी जुबानी जंग जारी है।
6: वो तो नाम कैसे वापस लेंगे, वो तो वापस लेने का टाइम नहीं है, हट गया पुष्पा, पुष्पा हो गया, अब क्या कर सकते हैं, वो दम नहीं है, डायलॉगबाजी कर रहे थे ज्यादा, दम सब में नहीं होता। हम जानते हैं कैसे ऑपोजिशन में लड़के आना पड़ता है, उन लोगों को पता नहीं ना ऑपोजिशन में कैसे लड़ते हैं, तो सब नए नए नेता बने हैं, जब टीएमसी पावर में आई उसके बाद ही नेता बने।
7: आई थिंक इट इज जहांगीर ओन डिसीजन, और ये पार्टी ने भी अपना स्टांस क्लियर किया है कि पार्टी के साथ इसकी कोई कंसल्टेंसी नहीं हुई थी। जहांगीर को शायद लगा होगा कि ही इज़ नॉट फीलिंग सेफ, और उनके ऊपर भी काफ़ी थ्रेट थे जिसको लेकर वो कोर्ट भी गए थे कि उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, और अगर ये इलेक्शन होता भी तो ये फ्री और फेयर इलेक्शन तो होता नहीं। तो मुझे लगता है ये सब सोच के व्यक्तिगत तौर से उन्होंने ये डिसीजन लिया है, वो सबसे अच्छा बोल पाएंगे।
0: तो आइए आपको सुनाते हैं जहांगीर खान का वो पुष्पा वाला चर्चित बयान।
8: নিজেকে সিংহ মনে করে সিনেমার আর্টিস্টে, আমরাও পুষ্পা ঝুঁকেগা নেই, নিজেকে সিংহ মনে করে সিনেমার আর্টিস্টে, আমরাও পুষ্পা ঝুঁকেগা নেই।
0: और अब दूसरी बड़ी खबर, बात प्रधानमंत्री मोदी की। 5 देशों के दौरे से थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री वापस देश लौट आए हैं। प्रधानमंत्री के लौटते ही दिल्ली में सियासी एक्शन तेज हो गया है। आज शाम को बड़ी बैठक है जिसमें सभी केंद्रीय और राज्य मंत्री मौजूद रहेंगे। इस बैठक में मोदी सरकार की तीसरी पारी के कामकाज की समीक्षा होगी, मंत्रियों से रिपोर्ट कार्ड तलब की जाएगी। मोदी कैबिनेट के विस्तार से पहले इसे काफी अहम माना जा रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी लौट चुके हैं, और ये कुछ ही देर पहले उनका विमान वापस दिल्ली पहुंचा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा जुड़ गए हैं। हिमांशु, आज की बैठक किस लिए अहम है, बताइए।
9: देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि मोदी सरकार 3-0 के जो है वो 2 साल कंप्लीट हो रहे हैं 9 जून को, और इससे पहले जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी वो 4 जून 2025 को हुई थी, यानी कि लगभग 11 महीने पहले। तो ऐसे में ये बैठक बहुत अहम भी है, और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मोदी सरकार के 2 साल कंप्लीट हो रहे हैं। इससे पहले मोदी सरकार ने सभी मंत्रियों से उनके मंत्रालयों की जो भी योजनाएं हैं, जो भी स्कीम है, जो भी परियोजनाएं हैं, जो भी पॉलिसी उन्होंने बनाई है, उसकी एक रिपोर्ट मांगी थी कि उनके 2 साल के कार्यकाल में क्या क्या उन्होंने अचीव किया है। वो रिपोर्ट्स दे दी गई हैं, उसको लेकर चर्चा होगी। उसके साथ साथ कई मंत्रालयों की प्रेजेंटेशन है, जिसमें लेबर है, पर्यावरण मंत्रालय है, DIP मंत्रालय है, उसके साथ साथ ऑटोमिक एनर्जी है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट है। तो इस तरीके से कई मंत्रालयों की जो है वो प्रेजेंटेशन भी होनी है, और उसके बाद जिस तरीके से पश्चिमी एशिया के अंदर जो क्राइसिस आए हैं, जो संकट है, उसको लेकर सरकार किस तरीके से आगे बढ़ेगी, ये सारी चीजें भी कंसल्टेशन में आएंगी। और उसके बाद अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों को संबोधन होगा कि किस तरीके से जो देश के सामने चुनौतियां हैं उससे निपटना है, और इसको लेकर क्या स्ट्रेटेजी और क्या रोड मैप है सरकार का, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो है अपने संबोधन में अपने मंत्रिपरिषद के जो सदस्य साथी हैं उनको बताया भी जाएगा। और इसमें ना सिर्फ मंत्रिपरिषद के सदस्य रहेंगे बल्कि कई मंत्रालयों के सचिव भी रहेंगे
0: जी,
9: जो प्रेजेंटेशन देंगे इसके अंदर। और हमेशा ये होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाते हैं तो उसमें इसी तरीके से कई मंत्रालयों की प्रेजेंटेशन होती है कि उनका कैसा कामकाज चल रहा है, क्या उन्होंने किया है और आगे फ्यूचर में उनका क्या रोडमैप जो है वो रहने वाला है।
0: जी हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन आइए आपको सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो अपने इटली दौरे से लौटे हैं वहां उन्होंने क्या किया और कौन कौन सी डील साइन हुई, सुनिए।
1: हम डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया एंड इटली एंड डिलीवर फॉर द वर्ल्ड के सिद्धांत पर आगे बढ़ेंगे। फैशन से लेकर फिनटेक तक, लेदर से लेकर लॉजिस्टिक तक, मोबिलिटी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, हर क्षेत्र में हम अपनी ताकतों को जोड़कर पूरी मानवता की भलाई के लिए काम करेंगे। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी पार्टनरशिप का इंजन है। एआई, क्वांटम, स्पेस और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, आज की बहुत ही उपयोगी बैठक के लिए और आपकी मित्रता के लिए मैं एक बार फिर आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से मैं आपको भारत आने का एक बार फिर से निमंत्रण देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, ग्राजिए मिले।
0: तो प्रधानमंत्री के इस इटली दौरे में जितनी उपलब्धियां हुई हैं उतने ही विवाद भी खड़े हो गए हैं और इस दौरे पर मेलेडी मोमेंट पर सियासत तेज हो गई है। राहुल गांधी इसे देश के हालात और अर्थव्यवस्था से जोड़ रहे हैं तो बीजेपी ने मेलेडी मोमेंट को चॉकलेट के एक्सपोर्ट से जोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पोस्ट कर लिखा है कि 2014 के बाद से 166% एक्सपोर्ट बढ़ गया है।
10: हिंदुस्तान में आर्थिक तूफान आ रहा है, तेल के, पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल के दाम आसमान को छुएंगे, फर्टिलाइजर की कमी होगी, फर्टिलाइजर महंगा होगा, किसानों को नुकसान होने वाला है, अर्थव्यवस्था पर भारी झटका पड़ने वाला है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा सोना मत खरीदो, ज्यादा गाड़ी मत चलाओ और विदेश मत जाओ, और फिर विदेश जाकर हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश जाकर उधर वो इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी टॉफी खिला रहे हैं। दिस इज एन इंसल्ट टू द पीपल ऑफ इंडिया। दिस रियल दैट द प्राइम मिनिस्टर हैज मेड इज एन इंसल्ट टू द पीपल ऑफ इंडिया एंड व्हाट दे आर सफरिंग।
0: और अब बात करते हैं राहुल गांधी के गद्दार वाले बयान पर जो घमासान मचा हुआ है उसकी। राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसको लेकर बीजेपी में काफी सवाल उठ रहे हैं। आइए सुनते हैं कि बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन इस पर क्या कह रहे हैं।
11: राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में जहां सुचिता, सामाजिकता और कहीं ना कहीं एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं ना कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है।
12: देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस समय जनता के द्वारा नकारी हुई रिजेक्टेड लोग हैं, रिजेक्टेड नेता है, रिजेक्टेड पार्टी है, और ये उनकी फ्रस्ट्रेशन ही बोल रही है, जो उनकी नाकामियां उनको फ्रस्ट्रेट कर रही है उसके कारण से उनके मुंह से ऊल जलूल बातें निकल रही है। पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि जिस संविधान की कॉपी वो जेब में लेके घूमते हैं कभी कभार उसको खोल के पढ़ भी लेना चाहिए। जिस सदन के वो नेता विपक्ष हैं उसी सदन के नेता को जब वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो ये उनकी नीच सोच और उनकी भाषा शैली, उनके संस्कार दिखाता है। और वैसे तो पूरा देश जानता है कि देश की आजादी के समय से 1947 के बाद से किस नेता ने, किस परिवार ने देश के साथ गद्दारी की है।
13: बहुत दुर्भाग्य की बात है, नेता प्रतिपक्ष के मुंह से ऐसी भाषा, ये समूचे लोकतंत्र का अपमान है। लोकतंत्र में दो बड़े पद है, एक पक्ष का, विपक्ष का। पक्ष का पद प्रधानमंत्री का होता, प्रतिपक्ष का पद हमारे लोकतंत्र को जीवंत रखते हुए। कोई आप नीतिगत बात करो तो समझ में आती है।
14: राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में, सत्ता का फ्रस्ट्रेशन है, सत्ता ना मिलने के कारण फ्रस्ट्रेशन है। वो मोदी जी को गाली नहीं दे रहे हैं, देश को गाली दे रहे हैं। वो फ्रस्ट्रेशन में निकल रहा है। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मैं आपके कैमरे को कहूंगा कि इसे दिखाएं कि पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने देश में 3.2% की केवल वृद्धि की है, नहीं तो 110% तक का वृद्धि हुआ।
15: राहुल गांधी के फ्रस्ट्रेशन का सीमा यहां पहुंच गया है कि अब वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो राजनीति में मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी ऐसा नहीं बोल सकता। राजनीतिक सुचिता, राजनीति में एक दूसरे नेताओं के लिए शब्दावली, ये सब चाहे वो व्यक्ति किसी पार्टी का हो, किसी आइडियोलॉजी का हो, उसका एक परिचय बताती है।
0: तो रायबरेली के अपने दौरे के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को गद्दार बुलाया। आइए सुनिए वो बयान जिससे ये सियासी तूफान अब खड़ा हो गया है।
16: दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ, आप दूर दूर से आए, गर्मी में आपसे बात सुनी, मगर आप जब आप घर जाओगे, जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अम्बेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरप्पा जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है, खुल के उनसे कहिए।
0: और अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ, नीट पेपर लीक की। तो नीट पेपर लीक के मामले पर आज संसदीय समिति के सामने होगी एनटीए के टॉप अफसरों की पेशी। दोबारा परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री की हाई लेवल की एक मीटिंग है। आपको बता दें कि फर्जी टेलीग्राम चैनल्स पर भी कार्रवाई होगी, लेकिन अहम बात यह है कि आज संसदीय समिति यानी पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने, और वो भी स्टैंडिंग कमेटी के सामने, एनटीए के अफसर पेश होंगे और जवाब देंगे कि आखिर राधा कृष्णन कमीशन को क्यों नहीं लागू किया गया, क्या कमी पेशी रह गई इसको लागू करने में। याद रखिएगा कि एक कमीशन के जरिए कई रिकमेंडेशंस दिए गए थे और यही सवाल आज संसदीय समिति की स्टैंडिंग कमेटी पूछेगी कि क्यों नहीं इन्हें सही तरीके से लागू किया गया। टॉप अफसर वहां पर मौजूद रहेंगे एनटीए के, जो जवाब देंगे इस समिति के सामने। इस समिति में कई सांसद मौजूद है, पक्ष विपक्ष दोनों के सांसद इसमें मौजूद है और उनके सामने पेशी होगी एनटीए के टॉप अफसरों की।
17: मित्रों, मैं फिर आपको आश्वस्त करता हूं, विशेष करके विद्यार्थियों को मैं फिर एक बार अपील करना चाहता हूं, कोई भी अफवाह में ना जाए, कोई भी, आखिर ये सामाजिक चुनौती है। राधा कृष्ण कमिटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी उस कमांड चेन में कहीं ना कहीं ब्रीच हुई है, इसको हम स्वीकार करते हैं, इसकी सुधारने की जिम्मेवारी हम लेते हैं। बिल्कुल सुधारने का हम जिम्मेवारी लेते हैं और मैं समाज की सभी वर्गों को अपील करना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि हम आस पड़ोस में जो माफिया घूमते हैं हमें पता नहीं है, एक सामाजिक व्याधि है, एक सामाजिक व्याधि में सभी से सोशल इविल, सोशल इविल है। इस व्याधि से हमको समाज को मुक्त करना पड़ेगा। हमें मालूम है कि हमारे आस पड़ोस में क्या क्या हलचल हो रही है, आपको भी मालूम है, आप लोग कई सारे विषय तो मीडिया से पता चलता है, सही पता चलता है। मैं आप सभी के सहयोग चाहता हूं, देशवासियों का सहयोग चाहता हूं, नीति निर्धारकों का सहयोग चाहता हूं, राज्य सरकारों का सहयोग चाहता हूं, देश की बच्चों के भविष्य के लिए हमें एक निर्भुल परीक्षा, परिष्कार परीक्षा, स्वच्छ परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मेरे ओर से इतना उल्लेख करना था।
0: वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
19: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट, मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल वी वेक अप फॉर द स्वीट रश ऑफ गेटिंग दैट वार्म डिलीशियस ब्रेकफास्ट राइट बिफोर इट एंड्स।
20: हॉट केक्स, सॉसेज पैटी, हैश ब्राउन, स्क्रैम्बल्ड एग्स, बिस्किट, रियल बटर एंड सिरप, यू नो हाउ आवर बिग ब्रेकफास्ट गॉट इट्स नेम, एंड यू नो वेयर योर होल फैमिली कैन शेयर वन फॉर जस्ट $6। मैकडॉनल्ड्स, लिमिटेड टाइम ओनली, प्राइस एंड पार्टिसिपेशन मे वेरी, कैन नॉट बी कंबाइंड विद एनी अदर ऑफर और कॉम्बो मील।
19: Ba-da-ba-ba-ba.
21: Hop on board. We're going for a cruise with some easy listening. Feel the wind in your hair and bounce to the beat of the waves with Yacht Rock Classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins & Messina, and more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing or tell your device to play Sailing on TuneIn.
22: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
23: Sokudo.

0: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
1: सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
2: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
3: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। तो अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
4: नहीं,
3: और म्यूचुअल फंड से
4: सही।
5: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
6: और वही कहाँ गए थे घूमने?
7: जीके मैक्स।
8: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
7: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
9: जेके वॉल मैक्स
7: बेस्ट पेंट,
10: जेके मैक्स।
7: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
11: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस इलाके में चाचा और भतीजे के बीच चाकूबाजी की घटना हुई, जिसमें चाचा की मौत हो गई जबकि भतीजे की हालात गंभीर है। चौबीस घंटे में चार मर्डर, देश की राजधानी में ये क्या हो रहा है? अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
1: तो क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है। 10 गैंगस्टर्स के पासपोर्ट रद्द कराने के लिए क्राइम ब्रांच ने विदेश मंत्रालय को एक पत्र लिखा है। ये वो गैंगस्टर्स हैं जो दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में सक्रिय हैं। ये लोग विदेशों में बैठकर भारत में आपराधिक गतिविधियां करते हैं। हत्या, रंगदारी, गैंग वॉर और संगठित अपराध के मामलों में वांछित है, और अब इनका पासपोर्ट रद्द करवाने के लिए दिल्ली पुलिस ने विदेश मंत्रालय का रुख किया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी अरविंद ओझा। अरविंद, ये कौन गैंगस्टर्स हैं? किसी का नाम पता चल पाया है कि दिल्ली पुलिस के इस पत्र में किस किस गैंगस्टर को शामिल किया गया है?
2: देखिए, हरियाणा का हिमांशु भाऊ है और दिल्ली का रहने वाला जो नंदू है, और इस तरह के कुल मिलाकर 10 गैंगस्टर हैं जो दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में एक्टिव हैं। और बीते दिनों खासतौर से दिल्ली में कई फायरिंग की वारदात हुई थी, एक्सटॉर्शन की वारदात हुई थी, उसके बाद क्राइम ब्रांच नए सिरे से इन गैंगस्टर के खिलाफ एक्शन ले रही है। पहले से इनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी है, लेकिन अब इन 10 गैंगस्टर के खिलाफ विदेश मंत्रालय को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने लिखा है कि इनका जो भी पासपोर्ट है वो रिवोक किया जाए। तो एक ये बड़ा एक्शन है, खासतौर से जिस तरह से जो गैंगस्टर हैं दिल्ली एनसीआर में पैर पसार रहे हैं बीते कुछ सालों से, उसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने ये एक्शन लिया है और नए सिरे से जो गैंगस्टर हैं उनके खिलाफ जो एक्शन है वो तेज कर दिया। और इसी के तहत विदेश मंत्रालय को लेटर लिखा गया है कि ये जो 10 गैंगस्टर हैं इनका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाए। विदेश से बैठकर ये गैंगस्टर दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा पंजाब में अपना गैंग चलाते हैं, और जो शूटर है वो तो जरूर पकड़े जाते हैं जो वारदातों को अंजाम देते हैं, लेकिन जो असल मास्टरमाइंड, जो असल माफिया, असल गैंगस्टर है वो विदेश में बैठा रहता है और वहां गंजा कसना मुश्किल होता है, इसलिए ये कार्रवाई की।
1: जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे गर्मी की। शहर अग्निकुंड में बदला, जलती धरती और तपती हवा।

उत्तर भारत धधक रहा है, आसमान से आग बरस रही है और अगले दो दिन तक यही हाल रहने वाला है। इस घातक गर्मी से बचने का एक ही उपाय है कि घर पर रहें। सुबह 8 से 4 बजे तक घर से न निकलें, क्योंकि मई के महीने में ऐसा हो गया है कि सुबह ही दोपहर हो जाती है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में 8 बजे ही पारा 30 से 35 डिग्री के पार निकल जाता है। मौसम विभाग ने यूपी में लू यानी कि हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र, तराई का इलाका, अगर आपको कहें कि आप इसे छोड़ दें तो लगभग पूरे के पूरे राज्य में इस वक्त अलर्ट जारी है। कहीं पर ऑरेंज अलर्ट है, तो कहीं पर रेड अलर्ट है, तो कहीं पर येलो अलर्ट है। जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं कहां कहां रेड अलर्ट, कहां ऑरेंज अलर्ट, लेकिन हम आपको दिखाते हैं रेड अलर्ट वाले क्षेत्रों की स्थिति इस वक्त। यूपी के बुंदेलखंड का इलाका इस समय विश्व का सबसे गर्म इलाका बन गया है। बांदा का तापमान 48 डिग्री के पार जा चुका है और अब आज भी 48 डिग्री तक ही रहेगा। बहुत भीषण गर्मी है, सावधान रहें। झांसी की बात करें तो वहां का तापमान भी 47 डिग्री पहुंच चुका है। यहां 46 डिग्री भी इसके आसपास यानी कि मंडरा रहा है। अब बात करते हैं अगर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी इलाके की, तो उसमें प्रयागराज का इलाका आ जाता है और यहां 47 डिग्री का तापमान था और आज भी यही रहने की संभावना है। अब बात

करते हैं मिर्जापुर की। मिर्जापुर में 46 डिग्री तापमान रहा है और आज भी यही हो सकता है। अगर यूपी के पश्चिम मध्य क्षेत्र की बात करते हैं तो आगरा और कानपुर बहुत गर्म रहने वाला है। आप देख सकते हैं कानपुर में 47 डिग्री का तापमान, वहीं आगरा में उसके मुकाबले रहा 43 डिग्री का तापमान दर्ज किया गया। आज भी यही रहने का पूर्वानुमान है। और इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, आइए सीधा उसका रुख करते हैं। यूपी में प्रचंड गर्मी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अफसर अलर्ट मोड पर रहें, डीएम, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और राहत एजेंसियां एकदम चौकन्ना रहें, अस्पतालों, पेयजल और बिजली आपूर्ति पर नजर रखी जाए, सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों के लिए विशेष इंतजाम किया जाए।

0: क्या यूपी में इस साल पारा 50 डिग्री के पार चला जाएगा? दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में भारत के 97 शहर कैसे आए? दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में यूपी के 41 शहर क्यों हैं? आसमान से आग बरस रही है, शहर तंदूर की भट्टी हो गए हैं, कई जगहों पर तापमान 48 डिग्री के पार चला गया, और सबसे ज्यादा बुरा हाल है उत्तर प्रदेश का, जो दुनिया का सबसे ज्यादा गर्म इलाका बना हुआ है। दुनिया में और किसी भी देश में इतने गर्म इलाके नहीं है जितने इस वक्त यूपी में है। उत्तर प्रदेश में तो मौसम विभाग का लू का रेड अलर्ट जारी है, लेकिन सवाल है कि ऐसा क्या हो गया कि इस साल सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है। ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है AQI.in। ये पूरी दुनिया का मौसम और हवा की गुणवत्ता दर्ज करती है। इस वेबसाइट पर हमने बुधवार दोपहर का 2 बजे का डेटा देखा तो हम ये जानकर हैरान रह गए कि दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों के लिस्ट में सारे शहर हिंदुस्तान के हैं। आप भी देख सकते हैं, ये सारे भारत के शहर हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गर्म है। AQI.in के अनुसार बुधवार दोपहर में 2 बजे दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से 97 शहर भारत के हैं। सबसे गर्म है ओडिशा का बालांगीर और कटक, जहां 48 डिग्री का तापमान दर्ज किया गया। सिर्फ 3 शहर दूसरे देशों के हैं। 41वें नंबर पर है नेपाल का धनगढ़ी, 66वें नंबर पर है पाकिस्तान का लाहौर, और तीसरा शहर है 99वें नंबर पर नेपाल का नेपालगंज। और इसमें भी सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इन 100 शहरों में सबसे ज्यादा यूपी के शहर शामिल हैं। आप एक एक करके देख सकते हैं, 48 डिग्री, 47 डिग्री, 46 डिग्री और 45 डिग्री तापमान वाले शहरों में सबसे ज्यादा यूपी के हैं। AQI.in के अनुसार दुनिया के 100 सबसे ज्यादा गर्म शहरों में से 41 शहर अकेले उत्तर प्रदेश के हैं। 48 डिग्री तापमान वाले शहरों में मिर्जापुर, प्रयागराज और वाराणसी हैं। 47 डिग्री तापमान वाले शहरों में फतेहपुर, मुरादाबाद, रामपुर, कानपुर, बरेली, शाहजहांपुर, बांदा, रायबरेली, बिजनौर, जौनपुर, लखनऊ, अमरोहा, सीतापुर, औरैया, एटा, बदायूं, संभल, मैनपुरी और अलीगढ़ शामिल हैं। इसके अलावा 46 डिग्री तापमान वाले शहरों में इटावा, बलरामपुर, हाथरस, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, मेरठ, फिरोजाबाद, बागपत, हापुड़, सहारनपुर, शामली, मथुरा और अयोध्या शामिल हैं। फिर आते हैं 45 डिग्री तापमान वाले शहर, इनमें आगरा, बहराइच, ग्रेटर नोएडा, झांसी और गाजीपुर शामिल हैं। लेकिन सवाल है कि क्यों, आखिर यूपी के ये शहर इतने गर्म क्यों हैं? यूपी में गर्मी और लू इस बार रिकॉर्ड क्यों तोड़ रही है? गर्मी तो वैसे हर साल ही पड़ती है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से आपने ये भी बात नोट की होगी कि अत्यधिक गर्म हवाएं चल रही हैं, और इसका एक बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन भी है। लेकिन इसके अलावा जिस तरह से हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसकी वजह से भी गर्मी बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में अत्यधिक गर्मी के प्रमुख कारणों में गर्म पछुआ हवाएं हैं। थार मरुस्थल से आने वाली तेज शुष्क और गर्म हवाएं मैदानी इलाकों के तापमान को बहुत तेजी से बढ़ा देती हैं। इसके अलावा इस मौसम में बादलों के न होने की वजह से भी आसमान साफ होता है। सूरज की किरणें बिना किसी रुकावट के सीधे धरती को तपाती हैं। सबसे ज्यादा गर्मी का शिकार बुंदेलखंड के इलाके हैं, और इसकी वजह है इसकी भौगोलिक स्थिति, क्योंकि बांदा, झांसी और प्रयागराज जैसे दक्षिणी जिलों में पथरीली और कठोर जमीन है जो धूप को जल्दी सोखती है और बहुत धीमी गति से ठंडी होती है। और इसके अलावा जंगलों की कटाई, अंधाधुंध खनन और पानी के प्राकृतिक स्रोतों के सूखने से पारिस्थितिकी खराब हुई है, जिससे गर्मी का प्रभाव कई गुना बढ़ गया है।
1: ऐसे वक्त में जब उत्तर प्रदेश का बांदा जिला 48 डिग्री में तप रहा है, तब आप अंदाजा लगाएं कि बाकी शहरों का क्या हाल होगा। बात चाहे पूर्वांचल की करें या बुंदेलखंड की करें, असल बात तो यह है कि यूपी के लिए इस वक्त दोपहर का समय दूभर हो गया है, और ये दूभर होती दोपहर से कब शांति मिलेगी इसका कोई समय नहीं है। मौसम विभाग का मानना है अगले 10 से 15 दिन भीषण गर्मी रहेगी।
0: यूपी में इस साल जब भी गर्मी की बात हो रही है तो बांदा का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। बल्कि बांदा तो हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे गर्म इलाका बना हुआ है। बांदा में मंगलवार को 48.2 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया गया था। बांदा में अब मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन सवाल है कि आखिर बांदा अचानक से इतना गर्म क्यों हो गया है। बांदा जिला कर्क रेखा के पास है, तो इन दिनों सूरज की किरणें सीधे जमीन पर आ रही हैं, लेकिन प्राकृतिक के अलावा कुछ इंसानों के लालच से पैदा हुए कारण भी हैं। पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र की तुलना में बांदा में केवल 3% के आसपास सबसे कम वन आवरण यानी हरा क्षेत्र है, और इसको भी लोग काट रहे हैं। केन और यमुना नदी के किनारों पर बेलगाम रेत खनन और पहाड़ों की ब्लास्टिंग ने प्राकृतिक जल प्रणालियों और चट्टानों को प्रभावित किया है। खनन के कारण वनस्पति हटने से सतह का तापमान तेजी से बढ़ता है। वनों की कटाई, सूखती नदियां और पानी की कमी के कारण बांदा एक लोकल हीट आइलैंड में तब्दील हो गया है। यहां दिन भर गर्म रहने वाली चट्टाने रात में भी ठंडी नहीं हो पाती और लगातार गर्मी का एक चक्र बना रहता है। बांदा जैसा हाल ही प्रयागराज का भी है। संगम नगरी में गर्मी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। नौतपा से पहले ही मई के महीने में झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। संगम नगरी में बुधवार को तापमान 46 डिग्री के करीब पहुंच गया। चिलचिलाती गर्मी और गर्म हवाओं से लोग बेहाल हो उठे।
2: संगम नगरी प्रयागराज में भीषण गर्मी पड़ रही है और पारा 45-46 के पार पहुंच गया है। वहीं प्रयागराज में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं और यहां लंबा जाम लगा हुआ है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और यहां पर जो कुछ लोग हैं उनको ट्रेन पकड़नी है या पेपर है, इस वजह से भी उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जाम से लोग परेशान हैं।
0: यूपी में एक और जिला गर्मी में इस साल टॉप पर बना हुआ है, इटावा। यहां भी तापमान 45 के पार चला गया है। मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी कर रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। दोपहर में लोगों को घर से बाहर न निकलने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि मौसम विभाग खुद ये मान रहा है कि ये तो अभी शुरुआत है, अगले 1-1.5 हफ्ते इस भीषण गर्मी से निजात नहीं मिलने वाली।
3: 1-2 दिनों में जो IMD से जो अलर्ट प्राप्त हुआ है, उसमें ये जो हीट वेव का जो 45.05 हमारी जनपद का जो टेम्परेचर है, और संभवतः आज उसको भी क्रॉस करने की ऐसी हालत हमारी जनपद में देखी जा सकती है।
0: आज तक ब्यूरो।
4: अब बात दूसरे इलाकों की। राजधानी दिल्ली में भी प्रचंड गर्मी पड़ रही है। दिल्ली में भी 45 डिग्री के पार तापमान बना हुआ है। बात अगर पंजाब और हरियाणा की करें तो यहां 46 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है और आज भी गर्मी से राहत मिलती नहीं दिख रही। महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र भी अप्रत्याशित तापमान झेल रहा है। विदर्भ क्षेत्र में 11 जिले हैं और हर जगह यही हाल है। वर्धा में 47 डिग्री पारा पहुंच चुका है, नागपुर में 46 तक पहुंचा है और फिलहाल कहीं से कोई भी राहत नहीं दिख रही है। इसलिए सावधान, इस गर्मी से बचिए, घर पर रहिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
7: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट। मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल, वी वेक अप फॉर द स्वीट रश ऑफ गेटिंग दैट वार्म डिलीशियस ब्रेकफास्ट right before it ends.
8: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
7: Ba-da-ba-ba-ba.
9: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
10: Feel the good vibes with Roots Reggae. TuneIn is bringing positivity to your ears with the best reggae hits. Stir it up with Bob Marley, Jimmy Cliff, Protégé, and much more. Let Roots Reggae lift your spirits and fill your ears with rhythms and beats of the best. Just search Roots Reggae or tell your device to play Roots Reggae on TuneIn.
11: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
12: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
13: सोच बदलो और बैंक भी।

0: गर्मी इतनी कि सड़कें सूनी पड़ने लगी हैं। सूखते गले को तर करने के लिए शरबत की दुकानों पर भीड़ बढ़ने लगी है। जरूरी काम से निकले लोग लू के थपेड़ों के बीच कुछ पल राहत पा सके, इसके लिए कूलिंग सेंटर खुल गए हैं। ये यूपी का बांदा है जो इन दिनों सूरज की तपिश में जल रहा है। बांदा का तापमान बताएंगे तो आप भी पसीने से भीग जाएंगे। बांदा में कल अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। बांदा ही नहीं, यूपी के तमाम शहरों पर सूरज इन दिनों अंगारे बरसा रहा है। प्रांत के 75 से 22 जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के ऊपर चल रहा है। कई शहर गर्मी में बांदा से होड़ कर रहे हैं। प्रयागराज में अधिकतम तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस और राय में 45.2, कानपुर शहर में 44 डिग्री, मेरठ में 43.6 और अलीगढ़ में 43.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज हुआ। भयंकर गर्मी को देखते हुए यूपी के डिप्टी सीएम ने सभी अस्पतालों को लू पीड़ितों के इलाज के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों के लिए गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। आज आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, झांसी, हमीरपुर, महोबा, बांदा, फतेहपुर, औरैया, चित्रकूट, कौशाम्बी और प्रयागराज के लिए गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अब गर्मी तड़पा रहा है। वाराणसी में भीड़ से भरे रहने वाले गंगा घाट सूने पड़ गए हैं। गर्मी भयंकर है तो आप भी अपना पूरा ख्याल रखिए। जरूरी हो तभी घर से निकलें। जान है तो जहान है। आज तक ब्यूरो।
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Truth.
2: Morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
3: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
4: Ba-da-ba-ba-ba.
5: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn. TuneIn has got all your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news.
6: You know, the breaking news is this started long before he even announced for president. It was
5: to live sports action.
7: To the near side corner, to wrap around, he scores!
5: And your favorite music.
8: You and I stargazing.
5: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
9: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
10: In association with
11: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
12: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
13: Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: अभी तो आधा मई ही बीता है और आसमान से आग बरसने लगी है। सबसे ज्यादा बुरा हाल है उत्तर प्रदेश का। मौसम विभाग के इस नक्शे में उत्तर प्रदेश अलग लाल रंग से दर्शाया गया है। आलम यह है कि दुनिया और देश के सबसे गर्म इलाकों की सूची में यूपी के शहरों ने अपनी जगह बना ली है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर मुरादाबाद, बांदा, इटावा और औरैया का नाम है, जहां पारा 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। प्रयागराज, बदायूं, रामपुर, फतेहपुर, संभल, एटा, बिजनौर, अमरोहा, मिर्जापुर, अलीगढ़, बलरामपुर, बरेली और वाराणसी में 46 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। जौनपुर, आजमगढ़, झांसी, मुजफ्फरनगर, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, हाथरस, सीतापुर, शाहजहांपुर, शामली और अयोध्या में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।
1: उत्तर प्रदेश में गर्मी का कहर प्रचंड है। लखनऊ, रायबरेली का तापमान 43 तो बांदा का पार कर चुका है 45। हालत यह है कि दिन में लू के थपेड़े और साथ में गर्मी इतनी कि अगर आप पानी ना पिए तो बेहोश हो जाएं, इस तरह की गर्मी है। आप अगर देखें यहाँ पर तपन, सड़क के आसपास का जो एरिया है, बड़ी मुसीबत है। छोटे छोटे बच्चों के लिए स्कूल जाना इस वक्त आफत का सबब बना हुआ है।
0: मौसम विभाग ने साफ कह दिया है कि आने वाले 7 से 8 दिनों तक पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी ही लू चलने की आशंका है।
2: उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने भयंकर गर्मी और लू की 8 से 10 दिन की चेतावनी जारी की है। आने वाले 8-10 दिनों में भयंकर गर्मी का प्रकोप उत्तर प्रदेश में होने वाला है। मैं उत्तर प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को, मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को और सभी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्यों को हमने निर्देश दिए हैं कि आवश्यक इंतजाम तत्काल करें।
0: उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जिले अलर्ट मोड में हैं, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है और लू चल रही है। सड़कों पर सन्नाटा है। दोपहर को तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई कर्फ्यू लग गया हो। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया.

0: बंगाल में शुभेंदु सरकार का बड़ा आदेश, मदरसों में वंदे मातरम गाना होगा अनिवार्य, बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सड़क पर उतरेंगी ममता, विरोध से पहले टीएमसी में फूट की अटकलें।
1: ईवीएम टेप कांड से रद्द हुए चुनाव के बाद बंगाल की फलता सीट पर दोबारा वोटिंग जारी, सुबह 9 बजे तक करीब 21% मतदान, लड़ाई से हटे टीएमसी के जहांगीर खान।
0: इटली से स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री, आज शाम लेंगे मंत्रिपरिषद की बैठक, 3.0 कार्यकाल की होगी समीक्षा, शाम 5 बजे सभी केंद्रीय और राज्य मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा।
1: नीट पेपर लीक मामले पर आज संसदीय समिति के सामने होगी एनटीए के टॉप अफसरों की पेशी, दोबारा परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री की हाई लेवल मीटिंग, फर्जी टेलीग्राम चैनल्स पर होगी कार्रवाई।
0: प्रचंड गर्मी में झुलसा हिंदुस्तान, अगले 3 दिन तक चलेगी लू के थपेड़े, दुनिया के सबसे गर्म शहरों में शुमार यूपी का बांदा, तेजी से बढ़ रही है मरीजों की संख्या।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज एक और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम।
1: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल। शुरुआत करते हैं शतक आज तक से।

0: पांच देशों की आधिकारिक यात्रा पूरी कर नई दिल्ली लौटे प्रधानमंत्री मोदी। आज शाम 5 बजे होने वाली मंत्रिपरिषद बैठक की करेंगे अध्यक्षता। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में सुधारों को लेकर करीब 12 से ज्यादा मंत्रालय देंगे प्रेजेंटेशन। सभी मंत्रालय सुधारों के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी कैबिनेट सचिवालय को सौंप चुके। करीब 11 महीने बाद हो रही मोदी कैबिनेट की बैठक में सरकार के आने वाले एजेंडे के बारे में बताए जाने की संभावना। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पश्चिम एशिया के युद्ध के मद्देनजर कई महत्वपूर्ण सुधार किए जाने की संभावना पर भी होगी चर्चा। इस बैठक में विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज, हाल ही में लिए गए नीतिगत फैसलों के परिणामों और भविष्य की योजनाओं की भी समीक्षा की जाएगी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का बड़ा एक्शन, 10 गैंगस्टर्स के पासपोर्ट रद्द कराने के लिए विदेश मंत्रालय को लिखा पत्र। विदेश में बैठकर गैंग ऑपरेट करने वाले पर फोकस, फरार गैंगस्टर्स की अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों पर भी नजर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास 2 बैग में मिले ड्रग्स और हथियार, सेना के जवानों ने इन्हें बालाकोट सेक्टर में नियमित गश्त और तलाशी अभियान के दौरान बरामद किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर दोबारा वोटिंग जारी, अब तक 21% मतदान। सीएम शुभेंदु अधिकारी आज दोपहर 2 बजे दुर्गापुर में पहली प्रशासनिक बैठक करेंगे। मीटिंग को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम।
1: सीएम शुभेंदु की इस बैठक में पुरुलिया, बांकुड़ा, बीरभूम, पश्चिम बर्धमान, पूर्व बर्धमान के अधिकारी शामिल होंगे। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक के बाद आज ही सीएम शुभेंदु दिल्ली के लिए होंगे रवाना। सूत्रों के मुताबिक आज शाह के साथ है मुलाकात, कल पीएम से मीटिंग संभव। पश्चिम बंगाल के मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य, शुभेंदु सरकार ने सख्त लहजे में दिया आदेश। नीट, यूजी, पेपर लीक और शिक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर संसद की स्थायी समिति की महत्वपूर्ण बैठक। मीटिंग में नीट, यूजी, पेपर लीक और एनटीए सुधार को लेकर बनी राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। शिक्षा विभाग के सचिव और एनटीए के अध्यक्ष होंगे बैठक में शामिल। अमेरिका के युद्ध मंत्री ने सोशल मीडिया पर ईरान को बड़ी धमकी दी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेरी वैंस ने पोस्ट को रीट्वीट करते हुए लिखा, लॉक्ड और लोडेड। युद्ध विराम के बीच ट्रंप और नेतन्याहू के बीच तनावपूर्ण फोन कॉल की खबर। ईरान के समझौते की खबर को लेकर इजरायली पीएम नेतन्याहू नाराज। सूत्रों के मुताबिक नेतन्याहू इन वार्ताओं को लेकर बेहद संशय में है और वो युद्ध को फिर से शुरू करना चाहते हैं ताकि ईरान की सैन्य क्षमता और सत्ता को कमजोर किया जा सके। आईआरजीसी नौसेना के राजनीतिक उप प्रमुख ने फिर उड़ाया मजाक, ट्वीट कर लिखा, दुश्मन को ना तो ईरान के बारे में सही खुफिया जानकारी है और ना ही समझ और अकल। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां फिर युद्ध टालने के दिए संकेत, लिखा, हमारी ओर से सभी रास्ते खुले हैं लेकिन जबरदस्ती ईरान को झुकने पर मजबूर करना केवल भ्रम है।
0: रोम में भारत इटली रिश्तों में नई उड़ान, रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने पर हुई सहमति। रोम में प्रधानमंत्री मोदी को खाद्य एवं कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान मिला, बोले ये 140 करोड़ भारतीयों और किसानों का सम्मान। प्रधानमंत्री मोदी और इटली की पीएम मेलोनी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी का ऐलान, इटली से 2029 तक 20 अरब यूरो का होगा व्यापार, आतंकवाद के साथ लड़ने का वादा। पीएम मोदी ने मेलोनी को दिया भारत आने का न्योता, स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का किया ऐलान। इटली और भारत के बीच द्विपक्षीय वार्ता, रक्षा, सुरक्षा और सामरिक प्रौद्योगिकी में सहयोग को और मजबूती पर जोर, आईमेक पर भी दोनों देशों में सहमति। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद पर पाकिस्तान को खूब सुनाया, साथ ही अफगानिस्तान में हत्याओं को लेकर भी आड़े हाथों लिया। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाते हुए कहा, नरसंहार इतिहास वाला देश भारत के आंतरिक मामलों में बोलने का हक नहीं रखता। सीमापार आतंकवाद पर भारत ने यूएन में कड़ा संदेश दिया, भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने आतंकवाद को समर्थन देने वाले देशों को जवाबदेह ठहराने की मांग भी की। थोड़ी देर में यमुना सफाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक, मीटिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री, जल शक्ति मंत्री सहित विभागों के कई अधिकारी रहेंगे मौजूद। राजस्थान सरकार के डेयरी विभाग ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। स्टैंडर्ड दूध की नई कीमत 62 रुपए और गोल्ड दूध की कीमत 70 रुपए प्रति लीटर हो गई है।
1: करनाल में डीड पेपर लीक, बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रहे मौजूद। छत्रपति संभाजनगर में एनसीपी शरद पवार गुट का प्रदर्शन, किसानों ने कर्ज माफी और फसलों के उचित दाम की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के किसानों से किए वादे पूरे न करने का लगाया आरोप, कर्ज माफी और फसलों को उचित दाम देने की मांग की। पश्चिमी मेदिनीपुर से एक दुकान से सरकारी राहत सामग्री मिलने पर हंगामा, बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। पलवल में सोशल मीडिया पर वीडियो डालने पर युवक पर हथौड़ों और डंडों से हमला, हाथ पैर तोड़े, पुलिस ने केस दर्ज, जांच शुरू की। भोपाल में त्रिशा सुसाइड केस में घिरी कंज्यूमर फोरम जज गिरिबाला सिंह पर कार्रवाई तेज, पर्चे हटाने की प्रक्रिया शुरू। खाद्य विभाग कपड़ा एक्शन, गिरिबाला सिंह के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 के तहत जांच रिपोर्ट तलब। अग्रिम जमानत पर चल रही जज गिरिबाला सिंह पर रिमूवल की तैयारी, राज्य सरकार ने आयोग को लिखा पत्र। त्रिशा शर्मा मामले में एनसीडब्ल्यू सख्त, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए मुख्य सचिव और डीजीपी को लिखा पत्र। फरार आरोपी की गिरफ्तारी से लेकर सीसीटीवी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक एनसीडब्ल्यू ने मांगी पूरी कार्रवाई की डिटेल।
0: त्रिशा केस में नया खुलासा, परिवार का आरोप, मौत के अगले दिन सास गिरिबाला ने जुडिशरी से जुड़े कई नंबरों पर किए थे फोन कॉल। परिवार ने लगाए गंभीर आरोप, किया दावा गिरिबाला के फोन से 13 मई को रिश्तेदारों और परिचितों को भी किए गए कई कॉल। पुलिस ने सीडीआर जांच की मांग की। त्रिशा केस में बड़ा खुलासा, परिजनों का कहना है कि मौत के अगले दिन सीसीटीवी इंस्टॉलेशन से जुड़े युवकों को भी गिरिबाला के नंबर से कॉल आए थे। त्रिशा के परिवार ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की मांग तेज, परिवार ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड, टावर लोकेशन और डिजिटल डेटा की फोरेंसिक जांच कराने की अपील की और साक्ष्य सुरक्षित रखने की भी मांग की। त्रिशा मामले में पति समर्थ सिंह के कहीं भी नहीं मिलने पर पुलिस ने बढ़ाई इनाम की राशि, 30,000 रुपए का इनाम किया घोषित।
1: गाजियाबाद के पैसिफिक मॉल स्थित सिनेमा घर के प्रोजेक्ट रूम में भीषण आग, दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। पटना में पहली पत्नी की दूसरी शादी का बदला लेने पहुंची पति ने घर में लगाई आग, 5 झुलसे, 1 की मौत। उड़ीसा के झारसुगुड़ा में नाबालिग लड़की को अस्पताल परिसर से अगवा कर सामूहिक बलात्कार, जांच जारी। सूरत के पौष इलाके में 48 लाख की चोरी का खुलासा, 100 सीसीटीवी खंगालने के बाद छात्र चोर गिरफ्तार। प्रयागराज के एक लॉज में छात्राओं ने मकान मालिक के बेटे पर मारपीट और छेड़छाड़ कर लगाया आरोप, वीडियो वायरल। बोगा में सरकारी नशा मुक्ति केंद्र ताला तोड़कर 30 युवक फरार, भागने की कोशिश में स्टाफ के साथ धक्का मुक्की। पुलिस ने फरार युवकों की तलाश में उनके घरों पर निगरानी बढ़ाई, सेंटर के आसपास सीसीटीवी कैमरों से नजर। वाराणसी में पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर भरवाया मुफ्त पेट्रोल, वीडियो वायरल। दिल्ली के इंद्रपुरी में विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत, पति और देवर अरेस्ट। मृतका के परिवार का आरोप, रंग रूप को लेकर देते थे ताने, दहेज के लिए करते थे प्रताड़ित।
0: सीतामढ़ी में 22 साल के युवक की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। आगरा में भीषण गर्मी का कहर, काम करते मजदूर की अचानक बिगड़ी तबीयत, इलाज के दौरान ही मौत। ग्रेटर नोएडा में ड्यूटी पर जा रहे युवक पर बदमाशों ने बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां, इलाज के दौरान हुई मौत। ग्रेटर नोएडा हत्याकांड मामले में पुलिस ने जांच शुरू की, 2 टीमों का गठन किया, सीसीटीवी कैमरों को भी खंगालने में जुटी है पुलिस। ऊना में 48 घंटे में 4 लूट की वारदातों से हड़कंप, ज्वेलर्स की शॉप समेत कई घटनाओं के बाद 2 SHO सस्पेंड। अलवर में पत्नी ने मायके जाने से मना करने पर अपने नवजात को पिलाया तेजाब, इलाज के दौरान बच्ची ने तोड़ा दम। बेगूसराय में रील बनाने वाली महिला की संदिग्ध मौत, दहेज हत्या और आत्महत्या के बीच उलझी गुत्थी। धनबाद में कोयला सिंडिकेट की खूनी जंग, AGSU और राम रहीम सेना समर्थकों के बीच फायरिंग, हिंसा में कई घायल। अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व के जंगल में भीषण आग, वन विभाग की तत्परता से बड़ा हादसा टला। रेवाड़ी की GLS कंपनी में भीषण आग के बाद राहत बचाव कार्य तेज, DCSP ने प्रबंधन की लापरवाही पर जताई नाराजगी, 2 कर्मचारी लापता होने की आशंका।
1: बिजनौर में बिजली का तार गिरने से स्विफ्ट कार में लगी आग, पेट्रोल पंप कर्मचारियों की सूझबूझ से चला बड़ा हादसा। टोंक में पेयजल संकट से भड़के ग्रामीण, महिलाएं समेत कई लोग पानी की टंकी पर चढ़े, दो साल से पानी की किल्लत का आरोप। मिर्जापुर में जिम की आड़ में धर्मांतरण ब्लैकमेलिंग मामले में 10 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। जयपुर में रात की गश्त के दौरान पुलिस वालों पर हमला, एक महिला सहित 3 लोग गिरफ्तार, एक नाबालिग को पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली के गोविंदपुर इलाके में डबल मर्डर, सब्जी व्यापारी की पत्नी और बेटी की घर में लूटपाट के बाद चाकू गोदकर हत्या। उत्तराखंड में जारी है चार धाम यात्रा में इस बार आस्था उत्साह और श्रद्धा का अद्भुत संगम, देश भर में भगवान केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं लाखों श्रद्धालु। बद्रीनाथ धाम में आस्था का महासैलाब, एक महीने में कम से कम 4.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं भगवान बद्री विशाल के दिव्य दर्शन। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 10,000 से ज्यादा यात्रियों का सफल रेस्क्यू, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की संयुक्त टीमों ने चुनौतीपूर्ण हालात में किया रेस्क्यू। अयोध्या के दुर्गा मंदिर में 29 मई को ध्वजारोहण, 3500 से अधिक महिलाएं बनेंगी अतिथि। उत्तराखंड के द्वितीय केदार धाम पर आस्था का सैलाब, आज पूरे धूमधाम से खोले जाएंगे बाबा मध्य महेश्वर बाबा के कपाट।
0: जम्मू कश्मीर के जोजिला में बेमौसम गर्मी से जमकर बर्फबारी, तापमान में आई गिरावट। बर्फबारी से श्रीनगर लद्दाख सड़क अस्थायी रूप से यातायात के लिए बंद की गई, लोगों से मौसम देखकर यात्रा करने की अपील। मानीपुरम में भारी बारिश से कई जगहों पर भूस्खलन, कई सड़कों पर यातायात प्रभावित। यूपी के बांदा में तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस, 11 जिलों में 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट, तपती गर्मी को लेकर प्रशासन अलर्ट पर। यूपी में 15 जिले भीषण गर्मी से प्रभावित, अयोध्या में पारा 41 डिग्री के पार, गर्मी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। हीटवेव के चलते प्रयागराज में सड़कों पर कर्फ्यू जैसा माहौल, पेड़ों की छांव में राहत ढूंढते नजर आए लोग। अलवर में 46 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, ट्रैफिक सिग्नल्स पर टेंट लगाकर पुलिस ने लोगों को दी राहत। अकोला में भी भीषण गर्मी का प्रकोप जारी, गर्मी के चलते कई इलाकों में पानी की कमी। औरैया में भी तापमान बढ़कर 45 डिग्री हुआ, गर्मी से बचने के लिए कई जगहों पर की गई पानी की व्यवस्था। औरैया में भीषण गर्मी से बड़ा बिजली का बोझ, ट्रांसफॉर्मर्स को ठंडा रखने के लिए लगाए गए कूलर, लैंड जो लाइनमैन है वो लगातार रख रहे हैं निगरानी।
1: भूलभुलैया पार्ट 2 के पूरे हुए 4 साल, निदेशक अनीस बजमी ने जताया आभार, शेयर किया पोस्ट। हॉरर थ्रिलर फिल्म केदी का फर्स्ट लुक लॉन्च, जैकी श्रॉफ और शरद केलकर निभा रहे मुख्य भूमिका। मशहूर डायरेक्टर राजकुमार ईरानी की वेब सीरीज पीटर एंड पेड्रो का टीजर जारी, 3 जुलाई को जियो हॉटस्टार पर लॉन्च। अपने पिता की वेब सीरीज में एक्टिंग डेब्यू कर रहे हैं वीर ईरानी, वेब सीरीज में अर्शद वारसी के साथ स्क्रीन करेंगे शेयर। ओटीटी पर फिर से दिखेगा मिश्रा परिवार का मजेदार ड्रामा, 5 जून को सोनी लाइव पर रिलीज होगी गुल्लक सीजन 5। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला, अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा ये मैच। पहली प्लेऑफ में एंट्री पा चुके हैं गुजरात की टीम, चेन्नई के खिलाफ जीत हासिल कर टॉप 2 में जगह बनाने की कोशिश, जिससे उन्हें फाइनल पहुंचने में जगह मिलेगी। अंक तालिका में आरसीबी के बाद दूसरे स्थान पर है गुजरात टाइटंस, 13 मैचेस में मिली है 8 जीत 5 हार। चेन्नई के लिए मैच है साख की लड़ाई, हार का मतलब होगा लगातार तीसरा ऐसा सीजन जिसमें टीम प्लेऑफ तक नहीं पहुंच पाई है। दोनों टीम्स ने अभी तक आईपीएल में 9 मैचेस खेले हैं, जिसमें 5 मैच जीटी ने जीते हैं और सीएसके ने 4 मैच जीते हैं।

0: और शुरुआत कर रहे हैं चंडीगढ़ से आ रही बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ के स्कूल्स को एक बार फिर मिली धमकियों के चलते। स्कूल्स को ईमेल के जरिए ये धमकी भेजी गई है बम से उड़ाने की। ये वो ईमेल है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें स्कूल के साथ साथ हरियाणा सीएम दफ्तर को भी धमकी मिली है। हरियाणा सीएम ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी के बाद प्रशासन मुस्तैद है, ऑफिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ईमेल भेजने वाले की जांच में पुलिस जुट गई है।
1: और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं कमलजीत संधु। कमलजीत, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो धमकी आई है इसको लेकर के इस वक्त क्या कार्रवाई चल रही है और क्या लिखा है इस धमकी में?
2: देखिए, यहाँ पे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि धमकियां आई हैं। और आपको ये भी बता दें कि धमकियां लगातार स्कूलों को आई हैं और यहाँ पे जो बड़े बड़े स्कूल हैं, चितकारा हो गया, सेंट स्टीफन्स का नाम लिया गया है, सेक्रेड हार्ट का नाम लिया गया है, तो पुलिस जांच पड़ताल कर ली है। और यहाँ पे हरियाणा सीएम के लिए भी एक चेतावनी है और ख़ासतौर पर वहाँ पर भी सुरक्षा जाँच की जा रही है। रेलवे ट्रैक्स की बात की जा रही है और ख़ासतौर पर 6 जून से लगातार बम धमाकों की बात की जा रही है। और आपको बता दें कि 6 जून 1984 का जो ऑपरेशन ब्लू स्टार का एनिवर्सरी है वो आने वाला है। अपने तौर पे क्योंकि ये धमकियां पहले भी आई हैं, हर बार चेकिंग की जाती है, हर बार वो हुक्स निकलता है, लेकिन क्योंकि माहौल इस तरह है, इलेक्शंस भी बिल्कुल नजदीक है, तो वहाँ पे इस तरह की कोई भी कोताही,
0: तो ये पहली बार नहीं है कमलजीत जब इस तरह की धमकी स्कूल्स को मिली है। अब बात करेंगे महंगाई की मार की, जिसमें दिल्ली में हड़ताल हो रही है। दिल्ली एनसीआर में आज ट्रांसपोर्ट की हड़ताल है। दिल्ली एनसीआर में करीब 16 लाख ट्रक ऑपरेटर्स हड़ताल पर चले गए हैं। ड्राइवर यूनियन बढ़ती महंगाई और ईंधन की कीमतों के खिलाफ 3 दिन यानी 21 से 23 मई तक हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल में काली पीली टैक्सी ड्राइवर हिस्सा ले रहे हैं। यूनियन की मांग है किराए में बढ़ोतरी की जाए, साथ ही यूनियन ने टैक्सी और ऑटो के किराए में बढ़ोतरी की मांग की है। पिछले कई सालों से किराया नहीं बढ़ाया गया, जबकि सीएनजी और दूसरी चीजों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। वहीं ड्राइवर्स की हड़ताल की खबरों के बीच यात्रियों के लिए राहत की खबर यह है, क्योंकि ऐप पर ओला और उबर की कैब बुकिंग सामान्य रूप से चालू रहेगी।
3: टैक्स को लेकर के तमाम ट्रांसपोर्टर्स जो है वो दिल्ली एनसीआर में जो ट्रांसपोर्ट चलाते हैं वो 3 दिन की हड़ताल जो है वो रखी गई है। और आप देख सकते हैं कि संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर की तस्वीरें हैं, जहां पर तमाम जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्टर्स है, वो इस वक्त पैदल मार्च निकाल रहे हैं। नारेबाजी इस वक्त जो है वो आपको यहां पर नजर आएगी। साफ तौर पर कारोबारियों का कहना है कि जो ग्रीन टैक्स लगाया गया है सरकार की तरफ से वो पूरी तरीके से गलत है और ऐसे में उस ग्रीन टैक्स को वापस लिया जाना चाहिए, जिसको लेकर के यहां पर तमाम कारोबारी जो है वो इस वक्त जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। क्या मांग है आप लोगों की और 3 दिन तक के लिए आपने सांकेतिक हड़ताल जो है वो कॉल की है?
4: आज जो हमारी प्रमुख मांगे हैं, जिसमें हम लोग सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कि दिल्ली के अंदर एसेंशियल गुड्स के ऊपर पहले ग्रीन टैक्स नहीं था, खाली गाड़ी के ऊपर ग्रीन टैक्स नहीं था, वो सरकार ने लगाया है, और जो पहले भी ग्रीन टैक्स लग रहा था उस पर 50% और इंक्रीज कर दिया गया, जिससे कि हमारे तमाम सेक्टर के लोग बिल्कुल परेशान है, हताशा है, नाराजगी है। और दूसरी रही कि हमारे यहाँ पे जो गाड़ियां 2020 तक रजिस्टर्ड हुई है उन गाड़ियों का अवधि अभी 4 साल बाकी है, लेकिन सरकार 1 नवंबर 2026 से उस गाड़ी को ही बंद करने का जो पहले से अल्टीमेटम दिया हुआ है वो किया है। तीसरी बात, जो हमारी गाड़ियां BS6 है वो एग्जम्प्टेड है पॉल्यूशन में, ग्रैप में भी, उन गाड़ियों को भी सरकार उससे भी ग्रीन टैक्स वसूल रहा है।
1: और आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी सुशांत मेहरा का। सुशांत, दिल्ली में क्या इसका कोई असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है?
3: देखिए अंजलि, अभी फिलहाल इसका असर जो है वो नजर नहीं आएगा, क्योंकि कल देर रात 12 बजे के बाद से ये हड़ताल जो है वो शुरू हुई है। सुबह के वक्त जो तमाम चीजें लेकर के, चाहे वो आजादपुर मंडी हो, गाजीपुर मंडी हो, तमाम जो ट्रक है वो आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद से ये तमाम जो ट्रक है वो इस वक्त दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर, जहाँ मेरी इस वक्त मौजूदगी है, ये संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर है। अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े ट्रक जो है वो यहाँ पर आपको खड़े नजर आएंगे, जो वो लोग जो सुबह रात 12 बजे के आसपास आए थे, उसके बाद से यहीं पर अब खड़े हैं। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ पर आपको ट्रक ट्रक इस वक्त जो है वो नजर आएंगे। दरअसल जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका ये कहना है कि सरकार की तरफ से दिल्ली के अंदर जो है जो भी गाड़ी दिल्ली एनसीआर से दिल्ली में एंटर करती है, दरअसल उस पर ग्रीन टैक्स जो है वो वसूला जाता है। पहले ये जो टैक्स था वो 2600 रुपये था, लेकिन पिछले महीने अप्रैल में इस टैक्स को बढ़ाकर के 4000 रुपये कर दिया गया। भाई अक्सरी के टैक्स जो है वो लेती है।
0: ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। इसी के साथ यहाँ रुकना होगा, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर, टिकते रहिए आज।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद भारत.
6: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
7: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's, limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Ba-da-ba-ba-ba.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. You can stream all the podcasts you already love right on TuneIn. Available on your smartphone, on your tablet, and even on your connected devices. There's so much to explore, like mind-blowing facts about your world.
9: So they were disallowed from speaking their language.
8: In-depth conversations with A-list celebrities.
10: No, I was ready to go. You know, after I wanted to fulfill my contract.
8: True crime podcasts you just can't stop listening to.
11: Others escape justice to live and die in infamy. These
8: plus the news and sports content you crave in podcast form.
12: Couldn't run in a straight line very quickly and didn't have much of an arm. His arm is stronger now.
8: So whether you want to save your go-to shows for later by subscribing and listening offline, or you want to discover a whole slate of new podcasts to be obsessed with, TuneIn is your destination. True crime, sports, lifestyle, culture, news, and so much more. TuneIn is Podcast Central. Hear them all here.
5: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो. Akaje, the number one Korean skincare brand, now in India.
6: Morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
7: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
6: Ba-da-ba-ba-ba.
14: TuneIn has the music.
8: Take a vacation with poolside hits on TuneIn.
15: TuneIn Poolside has the music I love.
8: Vibe out in your poolside cabana with hits from iconic artists like Calvin Harris, Avicii, Bloom, and more. Listen to the best blend of house, techno, trance, and more from the hottest DJs. And get your pool party started. Just search Poolside or ask your device to play Poolside on TuneIn. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
16: EU करेंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम. EU
17: सोच बदलो और बैंक भी.
18: सर हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
19: पर मार्केट की समझ ना बाउंसर जा रही है.
18: आप कैसे कर लेते हो?
20: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ.
19: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
21: नहीं
19: और म्यूचुअल फंड्स है
21: सही.
22: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े.
23: Like I said before, we better own the sins.
1: फ्रांस का खूबसूरत शहर इवियन ले बैन 15 से 17 जून तक G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार हो रहा है। मध्य पूर्व से लेकर यूक्रेन तक युद्ध और ऊर्जा संकट से जुड़ी तमाम चुनौतियों के बीच आयोजित सम्मेलन पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां उस मुलाकात को लेकर बनेंगी जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच होने वाली है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के विशेष निमंत्रण पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शिरकत करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात होगी। अगर दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत होती है तो ये पिछले 16 महीनों में उनकी पहली इन पर्सन यानी आमने सामने की मुलाकात होगी। इससे पहले दोनों शीर्ष नेता फरवरी 2025 में वॉशिंगटन DC स्थित व्हाइट हाउस में मिले थे, लेकिन 16 महीने की दूरी सिर्फ शारीरिक नहीं, भले ही फरवरी 2025 की वॉशिंगटन यात्रा के बाद से दोनों नेताओं के बीच कोई बड़ी द्विपक्षीय इन पर्सन मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संवाद फोन कॉल्स के जरिए लगातार होते रहे। साल 2025 में पीएम मोदी और ट्रंप के बीच रिकॉर्ड 8 बार फोन पर बातचीत हुई, जबकि साल 2026 के शुरुआती 5 महीनों में ही कम से कम 3 से 4 बेहद महत्वपूर्ण फोन कॉल्स दर्ज किए जा चुके हैं। ट्रंप के सत्ता संभालने के तुरंत बाद सहयोग बढ़ाने और मोदी की व्हाइट हाउस यात्रा को लेकर बातचीत हुई। इसके बाद सुरक्षा, व्यापार और इमिग्रेशन पर सकारात्मक चर्चा हुई। 2025 में पहलगाम हमले के तुरंत बाद ट्रंप ने संवेदना जताने के लिए फोन किया, लेकिन सीज फायर का श्रेय लेने वाले उनके बयानों ने बेवजह की कड़वाहट पैदा की। हालांकि हालिया हफ्तों में दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट की लंबी बातचीत हुई। इसमें पीएम मोदी ने ईरान युद्ध से पैदा हुए हालात पर चिंता जताई और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखने की जरूरत पर जोर दिया। इस दौरान ट्रंप का रुख बेहद दोस्ताना और व्यक्तिगत रूप से गर्मजोशी भरा रहा। अगर दोनों नेता फ्रांस में मिले तो इसी गर्मजोशी को बहाल करने और टैरिफ के अलावा मध्य पूर्व संकट पर बात हो सकती है। आज तक ब्यूरो

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री आज शाम लेंगे मंत्रिपरिषद की बैठक। 3.0 कार्यकाल की होगी समीक्षा। शाम 5 बजे सभी केंद्रीय और राज्य मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा।
1: बंगाल में शुभेंदु सरकार का बड़ा आदेश, मदरसों में वंदे मातरम गाना होगा अनिवार्य। आज दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सड़क पर उतरेंगी ममता बैनर्जी।
0: शुभेंदु सरकार को हुमायूं कबीर का खुला चैलेंज, का हलाल में होगी कुर्बानी, कोई मना करे तो नहीं मानेंगे, गाय बकरी ऊंट की देंगे कुर्बानी।
1: नीट पेपर लीक मामले पर आज संसदीय समिति के सामने होगी एनटीए के टॉप अफसरों की पेशी। दोबारा परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री की हाई लेवल मीटिंग, फर्जी टेलीग्राम चैनल्स पर होगी कार्रवाई।
0: प्रचंड गर्मी में झुलसा हिंदुस्तान, अगले 3 दिन तक चलेंगे लू के थपेड़े। दुनिया के सबसे गर्म शहरों में शुमार यूपी का बांदा, तेजी से बढ़ रही मरीजों की संख्या।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर।
1: और एक और 11 में अब हम खबर लेकर आ रहे हैं पश्चिम बंगाल से, जहां कुर्बानी पर तनातनी बढ़ गई है। आम जनता इस वक्त आम जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर ने यह कह दिया है कि बकरीद पर कुर्बानी तो होकर रहेगी। विवादित बयान देते हुए हुमायूं कबीर ने कहा कि गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी की भी कुर्बानी होगी, ऊंट की भी कुर्बानी होगी, सारे पशु जो कुर्बानी के जायज हैं उन्हें कुर्बानी देने से कोई उन्हें नहीं रोक सकता।
3: कोई मुसलमान को गाय खाने के मना करे तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का जियो करके वो मना कर दीजिए, लेकिन कुर्बानी तो होगा ही। कुर्बानी कोई मना करेगा वो भी नहीं सुनेगा। वो कुर्बानी सत्ता में आए शुभेंदु ठीक है, लोगों को उनको पास वोट डाला, वो सरकार चलाएगी, लेकिन मेरा 1400 साल से पहले से एक कुर्बानी होके आ रहा है। अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होगी, गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊंट भी होगी, दुम्बा भी होगी, सारे पशु जो है वो कुर्बानी का जायज है, वो कुर्बानी होगी, कोई रुक सकता नहीं। कोई मुसलमान को गाय खाने के मना करे तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का जियो करके वो मना कर दीजिए, लेकिन कुर्बानी तो होगा ही। कुर्बानी कोई मना करेगा वो भी नहीं सुनेगा। वो कुर्बानी सत्ता में आए शुभेंदु ठीक है, लोगों को उनको पास वोट डाला, वो सरकार चलाएगी, लेकिन मेरा 1400 साल से पहले से एक कुर्बानी होके आ रहा है। अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होगी, गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊंट भी होगी, दुम्बा भी होगी।

0: जारी फरमान में वंदे मातरम को गाना जरूरी कर दिया गया है।
1: आपको बता दें कि मदरसे मान्यता प्राप्त हो या फिर गैर मान्यता प्राप्त, सरकारी फंड से चल रहे हो या फिर अपने फंड से, नया आदेश सब तरीके से सभी मदरसों पर लागू होगा। जाहिर है शुभेंदु सरकार के इस नए आदेश से बंगाल में नया सियासी बवाल मचना तय है।
2: बंगाल में शुभेंदु का एक और सियासी कार्ड। बंगाल के मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य। बंगाल में मदरसा चलाना है तो वंदे मातरम गाना होगा। अपने हिंदुत्व के एजेंडे को शुभेंदु अधिकारी ने नई धार दे दी है। इस धार की चपेट में अब बंगाल के मदरसे आए हैं। शुभेंदु सरकार का ये नया आदेश बंगाल में नया बवंडर लेकर आने वाला है। क्यों, ये आप इस आदेश को पढ़कर समझ सकते हैं। इस आदेश में साफ लिखा है, पिछले तमाम आदेशों और प्रक्रियाओं पर रोक लगाते हुए मैं मदरसा में क्लास शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाने का आदेश देता हूँ। ये पश्चिम बंगाल के मदरसा शिक्षा निदेशालय का आदेश है जिसे फौरन लागू करने का फरमान जारी हुआ है। शुभेंदु सरकार का यह नया आदेश सभी तरह के मदरसों पर लागू होगा। इनमें सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सरकारी सहायता प्राप्त दोनों तरह के मदरसे हैं।
3: सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम का गायन कंपलसरी करने के बाद अब पश्चिम बंगाल सरकार ने मदरसों में भी वंदे मातरम का गाना अनिवार्य कर दिया है। एक नोटिफिकेशन के जरिए कहा गया है कि जो भी मदरसे सरकार के अंतर्गत आते हैं, खासतौर पर अल्पसंख्यक विभाग और मदरसा विभाग के अंतर्गत आते हैं, उनमें चाहे वो एडेड हो या अनएडेड मदरसा हो, उनमें अब से वंदे मातरम का गाना कंपलसरी होगा। तो एक तरह से शुभेंदु सरकार सत्ता में आने के बाद से ही कुछ ऐसे फैसले ले रही है जिससे बंगाल की राजनीति में बहुत सा बदलाव देखने को मिल रहा है।
2: पश्चिम बंगाल में मदरसों की अच्छी खासी तादाद है और ममता सरकार अनुदान के मामलों में इन मदरसों पर खासा उदार रही है, लेकिन अब बंगाल की सियासी हवा अलग दिशा में बह रही है। जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए। पश्चिम बंगाल में इस वक्त 609 मान्यता प्राप्त मदरसा हैं। इनमें 395 हाई मदरसा, 112 जूनियर हाई मदरसा और 102 सीनियर मदरसा है। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 685 गैर मान्यता प्राप्त मदरसा भी है। 2026-27 के अंतरिम बजट में ममता सरकार ने अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के लिए 5,713 करोड़ आवंटित किया था। जाहिर है बंगाल के मदरसों पर ममता सरकार मेहरबान रही थी, लेकिन शुभेंदु सरकार ने इन मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर बड़ा संदेश दे दिया है कि उनका रुख क्या रहने वाला है, क्योंकि वंदे मातरम को लेकर मुस्लिम समुदाय की आपत्ति छिपी नहीं है। अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक।
0: तो चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे सहयोगी तापस सेन गुप्ता का। तापस, आदेश तो और फरमान तो जारी कर दिया गया है, लेकिन क्या आपको क्या पता चल रहा है, मदरसे मानने को तैयार हैं?
4: देखिए, अभी कुछ देर पहले मेरी बात हो रही थी कोलकाता की एक मुस्लिम संगठन से। उन लोगों ने साफ तौर पे कह दिया है कि संगठन का नाम है खिलाफत कमेटी, जो अमूमन बड़े नमाजों का आयोजन करते हैं। उनके तरफ से उनके प्रेसिडेंट ने साफ तौर पे कहा कि वो इस तरीके के फरमान को नहीं मानेंगे और आगे जाकर वो शुभेंदु अधिकारी और मुख्य सचिव को भी जरूरत पड़ा तो वो लिखेंगे, और उसके बाद भी अगर कोई काम ना हुआ तो फिर वो अदालत की दरवाजे को खटखटाएंगे। तो यानी ये साफ तौर साफ हो गया है कि किसी भी सूरत में ये वंदे मातरम को मदरसों में गायन के तौर पे लाने का जो फैसला राज्य सरकार ने किया है, ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि एक उनके समुदाय के अलग अलग जो संगठन है उनके तरफ से इनका जबरदस्त विरोध जताया जा रहा है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं शुभेंदु अधिकारी को बंगाल का मुख्यमंत्री बने अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं, लेकिन हिंदुत्व को लेकर और मुस्लिम तुष्टिकरण के खिलाफ अपना इरादा उन्होंने पूरी तरह से साफ कर दिया है।
0: सत्ता में आने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने मुसलमानों को लेकर एक के बाद एक कई फैसले किए, फिर चाहे वो सार्वजनिक जगहों पर नमाज पर रोक हो या फिर इमामों और मुअज्जिनों को मिलने वाले भत्ते को खत्म करना हो, ओबीसी लिस्ट में मुस्लिम जातियों की समीक्षा हो या फिर घुसपैठ को लेकर एक सॉलिड प्लान।
5: अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का।

0: कैबिनेट ने सब रिलीजियस भाता बंद कर दिया।
1: सरकार बनी तो शुभेंदु अधिकारी किस राह पर जाएंगे, इसका ट्रेलर खुद शुभेंदु ने उसी दिन दिखा दिया था जब वो भवानीपुर में ममता के मुकाबले खड़े हुए और खुलकर कहा कि उन्हें सिर्फ हिंदुओं ने वोट दिया। भवानीपुर में शुभेंदु ने चंद झलकियां दिखाई थी, अब वो पूरी पिक्चर दिखा रहे हैं। शुभेंदु की इस नई पिक्चर में कई सीन ऐसे हैं जो भविष्य के बंगाल का चेहरा दिखा रहे हैं। सीन नंबर एक, बंगाल में लाउड स्पीकर से अजान बंद।
0: हर समुदाय का लोग लाउड स्पीकर अपने जो आस्था का केंद्र है उनकी प्रीमिसेस के अंदर रखिए ना भाई। सुबह 4 बजे से क्यों ये सब कर रहा है।
1: सीन नंबर दो, बंगाल में इमाम मुअज्जिन का भत्ता बंद।
0: सरकार का काम इमाम मुअज्जिन पुरोहित का भाता डिस्ट्रीब्यूशन है ना, एडुकेशन का अच्छा करना है, इमाम मुअज्जिन को भाता देना है ना नौकरी देना है। आज कैबिनेट ने सब रिलीजियस भाता बंद कर दिया।
1: सीन नंबर तीन, बंगाल में वोटर लिस्ट से नाम डिलीट तो डिपोर्ट।
0: नेशन फर्स्ट, देश को सुरक्षित रखने का काम भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार करेगा। पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया, अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का।
1: इस नई पिक्चर में शुभेंदु सरकार के कुछ ताजा फैसलों पर भी गौर कीजिए। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद। बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद। बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी। बंगाल में मदरसा एवं अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा। बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गाय के वध पर रोक। ओबीसी सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा, जिसका असर मुस्लिम ओबीसी पर। और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत। इस नई पिक्चर को देखने के बाद फुरफुरा शरीफ दरगाह ने मुसलमानों से अपील की है, इस साल बकरीद पर गाय की कुर्बानी ना दें।
2: ভারতের দ্বিতীয় মুসলিম তীর্থভূমি ফুরফুরা দরবার শরীফ থেকে বলছি, আমরা এবছরে কুরবানি দেব, কিন্তু গরু কুরবানি দেব না, অবশ্যই আইনকে সম্মান জানাতে হবে।
1: बंगाल में अब जो कुछ भी हो रहा है उसके बाद इसमें कोई दो राय नहीं बचती कि बीजेपी की कहां निगाहें हैं और कहां निशाने हैं। अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक।
3: और सीधे आपको जयपुर की तस्वीरें दिखा देते हैं, जहां पर नीट पेपर लीक मामले में इस वक्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चल रहा है। दरअसल लंबे वक्त से ये मांग की जा रही थी कि जो लोग इस पूरे मामले में शामिल हैं, खासतौर पर एनटीए के टॉप लेवल के लोग, उन पर कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए। इसी को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, नीट पेपर लीक मामला, जिसमें कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, सीबीआई जांच चल रही है, लेकिन अब भी इसमें कई ऐसे नाम हैं जिनका खुलना बाकी है।
4: और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं शरत, जो कि इस वक्त वहीं मौजूद है जहां कांग्रेस का ये प्रदर्शन चल रहा है। शरत, जाहिर तौर पर हमने ये देखा है कि राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक की मांग कर डाली है इस मुद्दे पर, और कांग्रेस के ये जो लोग हैं वहां पर जो पहुंचे वो क्या कह रहे हैं?
5: देखिए, मैं ये दिखाना चाहता हूँ दृश्य क्या है, किस तरह से यहाँ बैरिकेडिंग पर कांग्रेस का नेता और कार्यकर्ता चल रहे हैं। पुलिस से लगातार गुत्थम गुत्थे हो रही है। यहाँ पर कांग्रेस के जो विधायक हैं, अध्यक्ष हैं, आप ये सब दिखाई दे रहे होंगे आपको, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, बड़ी संख्या में आज कांग्रेस ने यहाँ पर सख्ती प्रदर्शन किया है। 2.5 साल में कांग्रेस की सबसे बड़ी रैली है, प्रदर्शन है, जहाँ पर महिलाएं भी दिख सकती हैं आपको, किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन का क्रम जारी है। लगातार कांग्रेस मुख्यालय से निकले हैं, यहाँ पर पुलिस इन्हें हटाने की कोशिश कर रही है, ये बैरिकेडिंग तोड़कर जाने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी मुख्यालय की तरफ, और लगातार यहाँ पर पुलिस से धक्का धुक्की हो रही है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। देखिए, नीट ऐसा प्रकरण है कि सीकर से ही इस पूरे प्रकरण की शुरुआत हुई है, जयपुर से ही, और जिस तरह से 3 मई को ये पेपर लीक हुआ था, और उसके बाद 3 मई के बाद सीधे ये जो है 12 मई को मुकदमा दर्ज हुआ, इसे लेकर लगातार देखिए पानी की बौछारें शुरू कर दी गई है, पानी डाला जा रहा है। यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, जो बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वाटर कैनन से भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। जयपुर में आप देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, और ये जो कांग्रेस के नेता हैं ये सारे यहाँ पर बीजेपी दफ्तर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। वाटर कैनन के द्वारा भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि बैरिकेड पे ये चढ़ने लगे थे। देखिए नीट एक बड़ा मुद्दा है, जिस तरह से अशोक गहलोत की सरकार गई थी पेपर लीक के मसले पर, 18 में से 17 परीक्षाओं में पेपर लीक हुई थी कांग्रेस सरकार में। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस को ये एक ब्रह्मास्त्र मिला है कि किसी भी तरह से पेपर लीक के मुद्दे को अब बीजेपी के खिलाफ भुनाया जाए और बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बनाया जाए, क्योंकि बीजेपी सरकार में ये मुकदमा जो दर्ज होने में देरी हुई है, बड़े लोगों को बचाने का जो आरोप लग रहा है, इन सारे आरोपों के बीच इस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन जारी है, जहाँ पर बैरिकेडिंग से उठा उठा कर नीचे फेंक रहे हैं कार्यकर्ताओं को, और लगातार जो है कांग्रेस के ये कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, ये सारे लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सबकी मांग है, इसकी मांग जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, सीबीआई जिस तरह से जांच होनी चाहिए उसकी जांच नहीं कर रही है, जिसके खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार कई वाटर कैनन के जरिए पानी का प्रयोग करके तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है, मगर चूंकि गर्मी का मौसम है इसलिए पानी की वजह से ये भीड़ तितर बितर नहीं हो पा रही है। जयपुर में काफी ज्यादा तापमान है, इसके बावजूद यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता आए हैं, और पुलिस बल जो है इन्हें यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही कर रही है। पानी की बौछारों के जरिए ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से कार्यकर्ताओं को हटाया जाए, लेकिन बड़ी संख्या में आज कांग्रेस के कार्यकर्ता भीड़ लेकर आए हैं, जो यहाँ पर पानी के जरिए इन्हें तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है।
3: इस बारे में पहले से जानकारी थी प्रदर्शन होना है, तो क्या उचित संख्या बल पुलिस की तैनात है वहाँ पर?
5: बिल्कुल बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती है, तीन लेयर की पुलिस की बैरिकेटिंग की गई है, और तीन लेयर की पुलिस की बैरिकेटिंग में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से नेता के जो नेता प्रतिपक्ष हैं टीकाराम जूली, वो भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो महिला ब्रिगेड है, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर उठा के इन्हें ले जाया जा रहा है, महिला कार्यकर्ताओं को जो नीचे गिर चुकी है।
4: ये चिंता की बात अब आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, महिला कार्यकर्ता नीचे गिरने लग गई हैं, वहां पर भीड़ धक्का मुक्की, पानी की बौछार, हालांकि कैनन की कोशिश यही की जा रही है पुलिस की तरफ से, सीधा पानी का जो वेग होता है वो पूरा उनके ऊपर नहीं डाला जा रहा जो वहां प्रदर्शनकारी हैं, लेकिन इस वक्त धक्का मुक्की इतनी ज्यादा है ना यहाँ वहां पर, जो इतने सारे
3: बिल्कुल अंजलि, और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर अब विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। आपने जिस तरीके से बताया कि विपक्ष लगातार एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग कर रहा है, और अब नीट में जो रियल कल्प्रिट्स हैं जिन्हें कहा जा रहा है कि
6: चोर, बीजेपी चोर, धर्मेंद्र प्रधान चोर, मोदी सरकार चोर,
5: देख सकते हैं गोविंद सिंह
3: जुड़े हुए हैं। शरद, लगातार अब दबाव बनाने की प्रक्रिया जारी है, इस तरह के प्रदर्शन राजस्थान में और होने की संभावना है?
6: लेकिन पुलिस को जिस तरीके से बैरिकेडिंग करके हमारी महिला नेताओं के साथ अपद्र व्यवहार किया जा रहा है, पुलिस जिस तरीके का बर्ताव कर रही है, मैं समझता हूँ कि यह सरकार आगे आके इस धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, जब जाकर इन बच्चों के भविष्य।
3: शरद, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है, शरद से हम संपर्क करेंगे, वहां पर गहमा गहमी की स्थिति बनी हुई है, प्रदर्शनकारी काफी संख्या में अंजलि, और इनके लिए पूरी तैयारी भी की गई है, बैरिकेडिंग
5: करने की कोशिश कर रही है, और पुलिस के साथ यहां पर धक्का मुक्की चल रही है, पुलिस कोशिश कर रही है कि इस भीड़ को यहां से हटाया जाए, वाटर कैनन के जरिए भीड़ को थोड़ा सा पीछे धकेला गया है, और इसके बाद यहां पर यह स्थिति बनी हुई है जहां पर नीट के मसले पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच यहाँ युद्ध का मैदान बना हुआ है। यहाँ पर मुकेश भाकर को देख सकते हैं किस तरह से कंधे पर चढ़कर बैरिकेडिंग तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यह स्थिति

डीजीए चीफ और अफसरों की पेशी। इटली से स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज शाम लेंगे मंत्रिपरिषद की बैठक। 3.0 कार्यकाल की होगी समीक्षा, शाम 5 बजे सभी केंद्रीय और राज्य मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड पर होगी चर्चा। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार का बड़ा आदेश, मदरसों में वंदे मातरम गाना होगा अनिवार्य, आज दिल्ली पहुंचे सीएम। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सड़क पर उतरेगी ममता बनर्जी। शुभेंदु सरकार को हुमायूं कबीर का खुला चैलेंज, कहा हर हाल में होगी कुर्बानी, कोई मना करे तो नहीं मानेंगे, गाय बकरी ऊंट की देंगे कुर्बानी।

0: नमस्कार 12 बजे 12 रिपोर्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सुमित चौधरी। जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है, खबरों की दुनिया में हलचल तेज होती जा रही है। हर हलचल पर हर खबर की खबर देने के लिए तैयार है हमारे 12 रिपोर्टर, जो शुरुआत करते हैं खबरों के सफर की। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, सीधे चलते हैं जयपुर, जहां पर नीट पेपर लीक के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस नीट पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग कर रही है। प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए बीजेपी कार्यालय की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया, लेकिन आप देखिए तस्वीरें कि कैसे ये प्रदर्शन इस समय राजस्थान में उग्र होता जा रहा है। खासतौर पर कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के कार्यालय को घेरने की कोशिश की जा रही है।
1: धर्मेंद्र प्रधान नीट चोर है, वो बेईमान है, उसका इस्तीफा होना चाहिए। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने 2024 में कहा था कि नीट के पेपर चोर हो रहे हैं, आप चर्चा कराओ, नहीं कराए। युवाओं का मुद्दा है, असली चोर पकड़ा गया। कांग्रेस को बदनाम कर रहे थे, चोरी ये कर रहे थे।
0: और हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद कुमार जयपुर से जुड़ गए हैं। शरद कुमार का रुख करते हैं। शरद, देखिए कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि इस मुद्दे को जितना ज्यादा गरमाया जा सके, शिक्षा मंत्री को घेरने की कोशिश की जा रही है। ये प्रदर्शन हम देख रहे हैं जो राजस्थान में उग्र होते जा रहे हैं।

0: बिल्कुल सुमित, सीधे आपको प्रदर्शन दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर वाटर कैनन के बाद भी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और पुलिस, उनके बीच लगातार धक्का मुक्की का दौर जारी है। यहाँ पर जो कांग्रेस का यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आप जो नेता हैं, विधायक हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर लगातार पुलिस वालों के साथ यहाँ पर भिड़ रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे इस दृश्य को, जहाँ पर कई बार पुलिस और कार्यकर्ताओं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पास इस तरह की स्थिति बनी, जहाँ पर नीट को लेकर आप लोग धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं, सीबीआई जांच हो रही है।
1: देश के नौ निहालों के साथ में जो धोखा मोदी सरकार ने किया है और मोदी सरकार के मंत्रियों ने किया है, इसका एकमात्र हर्जाना है इनके खिलाफ जांच और इनको सजा।
0: कांग्रेस के नेता है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे।
2: बिल्कुल शरद, आपकी आवाज हम तक कम पहुंच रही है, अगर आप माइक को थोड़ा अपने करीब रखें और लगातार वहां के दृश्य भी हमें दिखाएं कि आखिरकार किस तरीके का मंजर वहां पर है, क्योंकि हम देख रहे हैं भीड़ बहुत ज्यादा वहां पर पहुंची हुई है।
3: कैमरामैन
0: आवाज आ रही है, बोलिए।
3: ये देखिए, नीट का पेपर जिस प्रकार से बीजेपी के नेताओं की सह से और उनकी मिली भगत से बीजेपी के पदाधिकारियों के अंदर इसके अंदर सहयोग है, और आप ये देखिए, पुलिस ये कहती रही कि आप एनटीए के अंदर जाइए, वहां आपको मदद मिलेगी, और यहां पे इनको मदद नहीं मिली। यहां राजस्थान में 9 दिन तक इसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया और जांच में ये आया कि 24 और 25 का पेपर भी लीक था, तीन तीन पेपर लीक हुए इनके
0: साथ। जांच में आया कि 2025 का पेपर, 2025 का पेपर लीक था,
4: 24 भी लीक, 25 लीक, 26 लीक, एनटीए पूरा भ्रष्ट, धर्मेंद्र प्रधान इनका संरक्षक भ्रष्ट, और बीजेपी की मोदी सरकार भ्रष्ट, डबल इंजन की सरकार भ्रष्ट।
0: सीबीआई की जांच हो रही है, क्या मांग
4: है सीबीआई, तोता है इनका।
2: बिल्कुल शरद, आप लगातार शरद आपका रुख करते रहेंगे, हम लगातार हम ये खबरें दिखाते रहेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जयपुर के अंदर हो रहे प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस उग्र होती जा रही है। अब अगली खबर का रुख करते हैं, उत्तर प्रदेश में मंदिर और नमाज को लेकर एक नया तकरार, एक नई विवाद शुरू हो गया है। ये विवाद खड़ा हुआ है लखनऊ के कसमंडी इलाके में, महिलाबाद थाना क्षेत्र स्थित कसमंडी के ऐतिहासिक किले और शिव मंदिर को लेकर विवाद छिड़ गया है। पासी समाज ने आरोप लगाया है कि राजा कंस पासी के किले में अवैध कब्जा कर मजारे बनाई जा रही हैं और नमाज पढ़ी जा रही है। विवाद बढ़ने पर मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और कल लाखन आर्मी और पासी समाज से जुड़े लोग आपस में, आप कह सकते हैं, बड़ी संख्या में वहां पहुंच गए और महिलाबाद थाना स्थित कस मंडी पहुंचे और जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि ऐतिहासिक शिव मंदिर और किले का स्वरूप बदला जा रहा है। उधर मुस्लिम पक्ष के लोगों का कहना है कि यहां सालों से मजार है और नमाज अदा की जाती है, कोई नया निर्माण नहीं किया गया। पासी संगठन ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर किले और मंदिर को सरकारी संरक्षण और पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग की है।
5: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के काकोरी क्षेत्र में एक नया कंट्रोवर्सी शुरू हुई है। यहाँ पर जो राजा कंसा पासी का जो किला बताया गया है, जहाँ पर ये दावा किया गया अंग्रेजी गजेटियर में भी इसको शामिल है, वहाँ पर अंदर मकबरा और कब्र जैसे बना लेने की बात सामने आई है, जिसके बाद यहाँ पर जो समाज के लोग हैं वो इकट्ठे हुए हैं और अब चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से भी ये मांग कर रहे हैं कि इस पे पूरी तरीके से जांच हो, और दूसरी तरफ ये सभी ज्ञापन देने के लिए इस मैदान में यहाँ जगह पर इकट्ठा हो गए हैं। देखिए, साफ तौर से चूंकि व्यवस्था बनी रहे इसलिए भी, और ये कंसा पासी का जो किला या बुजुर्ग बुर्ज बताया गया है उसको लेकर अब ये मांग की जा रही है, और यहाँ पर जो कम्युनिटी के लोग हैं काफी तादाद में इकट्ठा हो गए, नमाज जो पढ़ी जाती उसको रोकने की बात कह रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ मैं आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
6: मैं मुख्यमंत्री जी तक यही तो अपनी बात रखना चाहता हूं कि मालिक बसाने वाला होता है, आक्रमण करने वाला मालिक नहीं होता है। महोदय, हर तरीके से हिंदुओं को क्यों हर जगह दबाया जा रहा है? अभी यही प्रकरण काकोरी में है, शिवलिंग को बार बार बेलचे से उखाड़ने का काम किया, वो काकोरन पर भरपासी जी की धरती है, 800 साल पुराना शिव मंदिर है, वहां पे लोग जो है चहला करते हैं, घर का नालिक पानी भेजते हैं और जानबूझ के ताकि यहां पे कोई ना आए।
7: सर आप ही बताइए, आप भी बुद्धिमान हम भी बुद्धिमान है, किसी का किला क्या इतना छोटा सा होता है? ये किसी की मैयत रखने का बना हुआ है, मकबरा बना हुआ है, दो आदमी उसमें दफन है, उसका मकबरा बना हुआ है, उसी आदमी ने यहाँ मस्जिद बनवाई है।
2: 12 बजे 12 रिपोर्टर में खबरों का सिलसिला जारी है। अगली खबर पश्चिम बंगाल से है। शिवेंद्र सरकार ने वंदे मातरम को लेकर बड़ा फैसला लिया है। शिवेंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के सभी मदरसों में वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया है। पश्चिम बंगाल के स्कूलों के साथ साथ मदरसों में भी वंदे मातरम को गाना अनिवार्य कर दिया गया है।
8: सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम का गायन कंपलसरी करने के बाद अब पश्चिम बंगाल सरकार ने मदरसों में भी वंदे मातरम का गाना अनिवार्य कर दिया है। एक नोटिफिकेशन के जरिए कहा गया है कि जो भी मदरसे सरकार के अंतर्गत आते हैं, खासतौर पर अल्पसंख्यक विभाग और मदरसा विभाग के अंतर्गत आते हैं, उनमें चाहे वो एडेड हो या अनएडेड मदरसा हो, उनमें अब से वंदे मातरम का गाना कंपलसरी होगा। तो एक तरह से शुभेंदु सरकार सत्ता में आने के बाद से ही कुछ ऐसे फैसले ले रही है जिससे बंगाल की राजनीति में बहुत सा बदलाव देखने को मिल रहा है। कैमरामैन लिसन के साथ अनुपम मिश्र, आज तक कोलकाता।
2: और अगली खबर भी पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में कुर्बानी को लेकर तनातनी बढ़ती जा रही है। आम जनता यूनियन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर ने कहा है कि बकरीद पर कुर्बानी तो होकर रहेगी। विवादित बयान देते हुए हुमायूं कबीर ने कहा कि गाय की भी कुर्बानी होगी बकरीद पर। खासतौर पर उन्होंने कहा कि बकरी की भी कुर्बानी होगी और ऊंट की भी कुर्बानी होगी। सारे पशु जो कुर्बानी के जायज हैं उन्हें कुर्बानी देने से कोई नहीं रोक सकता। और देखिए हुमायूं कबीर ने कहा है कि देखिए कुर्बानी ऊंट गाय और बकरी तीनों की होगी। उन्होंने कहा कि हमें कुर्बानी देने से कोई नहीं रोक सकता।

0: कोई मुसलमान को गाय खाने के मना करे तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का जियो करके वो मना कर दीजिए, लेकिन कुर्बानी तो हो गई। कुर्बानी कोई मना करेगा वो भी नहीं सुनेगा। वो कुर्बानी सत्ता में आए शुभेंदु ठीक है, लोगों को उनको पास वोट डाला, वो सरकार चलाएगी, लेकिन मेरा 1400 साल से पहले से एक कुर्बानी होके आ रही, अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होगी। गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊंट भी होगी, दुम्बा भी होगी, सारे पशु जो है वो कुर्बानी का जायज है, वो कुर्बानी होगी, कोई रुक सकता नहीं।
1: वहीं पश्चिम बंगाल के फालता विधानसभा सीट पर आज दोबारा चुनाव वोट डाले जाने हैं। 5 घंटे की वोटिंग हो चुकी है और फालता सीट लगातार चर्चा में हुई। 29 अप्रैल को यहां दूसरे चरण में चुनाव हुए थे, लेकिन भारी गड़बड़ी की शिकायत के बाद इसे रद्द कर दिया गया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने हटने के ऐलान से फिर से ये सीट चर्चा में आ गई थी। हालांकि जहांगीर खान ने प्रचार के आखिरी दिन चुनाव से हटने से ऐलान किया था, इसलिए ईवीएम में उनका नाम हटा नहीं है।
2: आज तो है कि शांतिपूर्वक वोटिंग चल रही है अभी तक की जो खबर आ रही है, और सामने ही बूथ है, इतना जो है कि सिक्योरिटी दिया गया है यहाँ पे कि 100 मीटर के अंदर मीडिया वाले को भी नहीं घुसने दिया जा रहा है। 100 मीटर से के दूरी से रिपोर्टिंग करना पड़ रहा है, और उसके साथ साथ कोई भी अनजान लोगों को घुसने नहीं दिया जा रहा है। मेरे साथ कुछ इतने भी वोटर्स यहाँ पे जुड़ चुके हैं, देखिए इनसे बातें करते हैं। आप लोग जो 15 सालों से वोटिंग चल रही थी यहाँ पे, कहा जाता है कि यहाँ वोट अपने मर्जी से नहीं दे सकते थे, क्या ये था, क्या ये डर का माहौल था?
3: हाँ, डर का माहौल था। 15 साल से जो वोट दे रहा था हमको, वोट नहीं दे रहा था, पा था कुछ लोग अनजान लोग है, वोट देने के लिए मना कर रहा था, किंतु अभी पूरा शांतिपूर्ण है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम सब सुबह से सब शांतिपूर्वक वोट देकर आया है।
2: जी हाँ, देखिए यहाँ पे सेंट्रल फोर्स की तैनाती जैसे है, सीआरपीएफ सीएपीएफ तैनाती पूरी तरीके से है। जहांगीर खान जिसको स्ट्रांग मैन माना जाता था, अब उसके खिलाफ जो है अब भाजपा की लड़ाई है। अब ये देखना है कि ये जब 24 तारीख को रिजल्ट आएगा तो इसका जो रिजल्ट क्या होता है।
1: 12 बजे 12 रिपोर्टर्स में खबरों का सिलसिला जारी है, और अब खबर दिल्ली से। मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों के बीच आज शाम 5 बजे मंत्रिपरिषद की बड़ी बैठक होने जा रही है। इसमें मोदी मंत्रिमंडल के सभी मंत्री शामिल होंगे। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यकाल कार्यालय सेवा तीर्थ में होने वाली इस मीटिंग में सरकार के कार्यकाल की मध्यवर्ती समीक्षा की जाएगी, साथ ही प्रमुख सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रगति की समीक्षा भी किए जाने की उम्मीद है। लेकिन इस बैठक को लेकर अटकलें इस वजह से भी तेज हो गई है, गर्म हो गई है कि मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल को लेकर भी बैठक में चर्चा हो सकती है।
4: आज शाम 5 बजे मोदी सरकार की केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक है, और इस बैठक में लगभग 8 मंत्रालयों की प्रेजेंटेशन होनी है, जिसमें पावर मंत्रालय की है, उसके साथ साथ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की होनी है, कृषि मंत्रालय की, एटॉमिक एनर्जी की, रोड एंड ट्रांसपोर्ट, लेबर मिनिस्ट्री की प्रेजेंटेशन जो है वो उन मंत्रालयों के सेक्रेटरी देंगे। इसके साथ साथ ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद की जो बैठक है बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि मोदी सरकार 3.0 के जो हैं वो 2 साल जो हैं 9 जून को पूरे हो जाएंगे। उससे पहले ये बैठक, और इससे पहले जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी वो 4 जून 2025 को हुई थी, तो लगभग 11 महीने बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक जिसमें ये 8 मंत्रालयों की प्रेजेंटेशन तो है ही है, उसके साथ साथ पश्चिमी एशिया में जो क्राइसिस बना हुआ है उसको लेकर क्या रोडमैप रहेगा, उससे किस तरीके से निपटा जाएगा, जो चुनौतियां देश के सामने है, सरकार के सामने है, इन सब को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संबोधन होगा।
1: दिल्ली के बाद अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की खबर को लेकर। अब एक ऐसी खबर जो यूपी के हर कॉलेज स्टूडेंट से जुड़ी हुई है। यूपी की सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में अब यूनिफॉर्म अनिवार्य होगी, और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने यह आदेश दिया है जिसके तहत छात्रों के लिए यूनिफॉर्म व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू की जाएगी। नए आदेश के तहत सभी संस्थान अपने स्तर पर मनपसंद रंग और डिजाइन तय कर यूनिफॉर्म लागू करेंगे ताकि पूरे कैंपस में एक रूपता बनी रहे।
5: उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में अब एक समान यूनिफॉर्म
2: लागू कर दी गई है, यानी कि एक ही तरीके का ड्रेस कोड अब यूपी के तमाम विश्वविद्यालयों में होगा। ऐसा निर्देश यूपी की राज्यपाल और राज्य के विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कल राजभवन में दे दिए हैं। अब इसके बाद ये निर्देशित किया गया है यूनिवर्सिटीज को कि उन्हें अपने मन मुताबिक डिजाइन कलर उसको वो तय कर सकते हैं, लेकिन वो समान होनी चाहिए, यानी कि हर बच्चा हर अभ्यर्थी एक ही ड्रेस कोड में अपने कॉलेजों में पहुंचेगा। आपको बता दें ये व्यवस्था यूपी ही नहीं भारतवर्ष के तमाम स्कूलों में तो जरूर लागू है, स्कूलों में ड्रेस कोड होते हैं, लेकिन कॉलेजेस जो हैं वो कुछ ही हैं जो ड्रेस कोड वाली भूमिका को निभाते हैं। ऐसे में ये निर्णय निर्णायक तौर पर राज्यपाल के द्वारा लिया गया। राज्यपाल ने हालांकि लखनऊ यूनिवर्सिटी में टीचर द्वारा शिक्षक द्वारा अभ्यर्थी से छेड़छाड़ के मामले पर भी कड़ा रुख अपनाया है। ये भी माना जा रहा है कि क्या ये निर्णय उस लखनऊ यूनिवर्सिटी के मामले के बाद राज्यपाल के द्वारा लिया गया है, इस पर लोगों की दिलचस्पी बनी हुई है।
1: 12:12 रिपोर्टर में एक बार फिर से रुख करते हैं पश्चिम बंगाल का, जहां पर शुभेंद्र अधिकारी के पीए रहे चंद रथ की हत्या से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। इस मामले में खुलासा हुआ है कि कातिलों ने वारदात में इस्तेमाल कार बालिया से खरीदी थी। खुलासे के मुताबिक हत्याकांड में से 5 दिन पहले कार को 50,000 रुपए में खरीदा गया था। बालिया के रहने वाले ज्ञानेंद्र सिंह मोनू नाम के इस आरोपी ने यह कार खरीदी थी, जो आरोपी राजकुमार का करीबी बताया जा रहा है।
5: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में बलिया का एक और कनेक्शन सामने आया है। इस मामले में शूटरों के द्वारा जो कार प्रयुक्त की गई थी वो बलिया से खरीदी गई थी और वारदात से 5 दिन पहले इसे 50,000 रुपए में खरीदा गया था और खरीदने वाला ज्ञानेंद्र सिंह मोनू था। ज्ञानेंद्र सिंह मोनू मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार राजकुमार सिंह का करीबी दोस्त है और इसी ने 1 मई 2026 को बलिया के रसड़ा के रहने वाले जितेंद्र सिंह से यह कार 50,000 रुपए में खरीदी थी। जितेंद्र सिंह ने यह कार 5 महीने पहले 35,000 रुपए में खरीदी और जब ज्ञानेंद्र सिंह मोनू ने इसे 50,000 रुपए में खरीदने की पेशकश की तो उसने यह कार बेच दी। यह अलग बात है कि कार खरीदने के बावजूद ज्ञानेंद्र सिंह मोनू ने यह कार ट्रांसफर नहीं करवाई थी। फिलहाल सीबीआई ने जितेंद्र सिंह से पूछताछ कर ली है।
1: अगली खबर भोपाल से है। भोपाल की बहुचर्चित त्विशा शर्मा मौत मिस्ट्री की त्विशा की सास गिरिबाला सिंह को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। त्विशा के परिवार ने कई फोन नंबर जारी किए हैं और दावा किया है कि त्विशा की मौत के अगले दिन सास गिरिबाला सिंह ने कई लोगों को फोन कॉल किए थे। कुछ कॉल्स रिश्तेदारों और अन्य परिचित को किए गए थे। ऐसे में कॉल्स पर उठते सवालों के बीच रिटायर्ड जज गिरिबाला पर एक्शन की तैयारी है। अभी वो कंज्यूमर फोरम की जज के रूप में काम कर रही है।
6: त्विशा का परिवार शुरू से आरोप लगाता आया है कि उसकी सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह न्यायपालिका में बैठे बेहद ताकतवर लोग हैं जो जांच की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। और अब इसे साबित करने के लिए त्विशा के परिवार ने कुछ फोन नंबर सामने रखे हैं। त्विशा के परिवार का दावा है कि दरअसल त्विशा की सास गिरिबाला सिंह ने उसकी मौत के अगले दिन कई लोगों को फोन किया और इनमें से कुछ बेहद प्रभावशाली जज और जस्टिस स्तर के लोग थे। इसके साथ ही फोन करने वालों में कई रिश्तेदार और परिचित भी थे और इसीलिए त्विशा का परिवार अब मांग कर रहा है कि इन सभी फोन कॉल्स की हर डिटेल पुलिस को मुहैया कराई जाए। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
1: और अब खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां 2 दिन में 6 हत्याएं की गई। पिछले 24 घंटे में 4 हत्याओं की खबर मिली है। अब ताजा मामले में गोविंदपुरी में 2 हत्याओं की खबर मिली है और साउथ ईस्ट दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में मां बेटी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। उधर रोहिणी में भी जॉनी और मयंक नाम के 2 नाबालिग युवकों की बेरहमी से हत्या की गई। अमन विहार इलाके में भी बुधवार शाम को यह वारदात हुई थी। हत्यारों ने चाकू से गोद कर दोनों नाबालिगों को मार डाला। तो 19 और 20 मई की रात नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के वेलकम इलाके में भी एक युवक की हत्या कर दी गई थी। अमानुल्लाह कुरेशी नाम के युवक को गोली मारी गई। पुलिस के मुताबिक यहां भी आपसी रंजिश से हत्या की गई।
7: 38 साल की शारदा साहू और उनके 13 साल के बेटे खुशहाल की बॉडी घर के अंदर पड़ी हुई थी। पुलिस मौके पर पहुंची, छानबीन की तो पता चला घर के अंदर कोई जानकार ही था जो दाखिल हुआ था। लिहाजा पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। मृतक माँ बेटे के करीबियों से पूछताछ कर रही है, शारदा के पति से पूछताछ कर रही है। पुलिस को शक है कि लूटपाट की वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया होगा। वहीं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में अमानुल्ला की गोली मार के हत्या के मामले में पुलिस आपसी रंजिश का एंगल देख रही है। आरोपियों को लेकर लगातार छापेमारी की जा रही है। अमन विहार में डबल मर्डर के मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। छानबीन में पता चला है कि इस मामले में भी आपसी रंजिश के तहत हत्याकांड को अंजाम दिया गया।
1: अब बात मुंबई के बांदा में चल रहे डिमोलिशन अभियान की करते हैं। बांदा रेलवे स्टेशन के बाहर चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान का आज तीसरा दिन। इस कार्रवाई के दौरान अचानक माहौल गर्मा गया और प्रशासन की टीम पर पथराव शुरू हो गया। इस पत्थरबाजी में कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं। हालांकि प्रशासन और पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए स्थिति को काबू में पा लिया है। पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा भी दर्ज कर लिया और FIR में करीब 100-150 लोगों की तरफ से पथराव किए करने का जिक्र भी किया गया है। फिलहाल घटनास्थल पर हालात पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है, लेकिन मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए भारी संख्या में मुंबई पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF और GRP के जवानों को तैनात किया गया है।
8: पिछले 2 दिनों से वेस्टर्न रेलवे BMC और मुंबई पुलिस के साथ मिलकर रेलवे के जो बांद्रा इलाके में ये गरीब नगर है यहाँ पर डिमोलिशन का काम कर रही है। हालांकि कुछ छुटपुट घटनाएं हुई थी जिसमें कि पथराव हुआ और लाठीचार्ज करना पड़ा उसके बाद पुलिस को, लेकिन उसके अलावा बाकी का काम यहां पर सुचारू रूप से चल रहा है। तकरीबन 85% ये काम हो चुका है और कह लीजिए तो ये तकरीबन 1.25 एकड़ की जो जमीन जो वेस्टर्न रेलवे की है जिस पर वो बनाना चाहते हैं एक इंटीग्रेटेड रेलवे प्रोजेक्ट बांद्रा इलाके के लिए, उसको खाली करने की आधे से ज्यादा प्रक्रिया हो चुकी है। अब रेलवे अगले 2 दिनों में ये जो मलबा इकट्ठा है उसे साफ करेगी। इसके अलावा यहाँ पर उनका वादा है कि यहाँ फेंसिंग भी करेंगे ताकि फिर से लोग यहाँ पर आके न बस जाएं।
1: चलिए 12:12 रिपोर्टर में वक्त, एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से
10: इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
11: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
12: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
13: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
14: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी?
4: जेके वॉल मैक्स।
2: बेस्ट पेंट?
5: जेके मैक्स।
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग।
6: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
7: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
8: सोच बदलो और बैंक भी।
9: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
3: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
10: इसमें माइक्रोफाइबर है।
3: माइक्रोफाइबर यानी
10: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत?
3: हमारे सीमेंट में नहीं है।
10: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
11: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
12: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
0: हिंट, बड़े आराम से। विमल, बोलो जुबां केसरी।
3: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
4: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
5: दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग आईपीएल, दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स न्यूज प्लेटफॉर्म, 100 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज के साथ फैंस ने जताया भरोसा। मैच एनालिसिस, मस्ती मजाक और बैंटर मेरे साथ सिर्फ स्पोर्ट्स तक। कोई नहीं है दूर दूर तक, मैदान में सिर्फ स्पोर्ट्स तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
0: इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
0: हिंट, बड़े आराम से। विमल, बोलो जुबां केसरी।
3: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
4: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
5: जब सवाल हिंदुत्व वाले एजेंडे का हो तो शुभेंदु अधिकारी हिचक नहीं दिखाते। 10 दिन सरकार के हुए हैं और इन 10 दिनों में गिराने को कई फैसले हैं, जिनसे शुभेंदु ने दिखा दिया है कि हिंदुत्व ही उनके गवर्नेंस का केंद्र बिंदु है। उनके कुछ ताजा फैसलों पर गौर करिए। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद। बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद। बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी। बंगाल में मदरसा एवं अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा। बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गाय के वध पर रोक। ओबीसी सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा, जिसका असर मुस्लिम ओबीसी पर। और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत। ये तमाम फैसले हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन आज शुभेंदु अधिकारी हिंदुत्व की सियासी जड़ मजबूत करने उत्तर बंगाल कूच कर चुके हैं। ध्यान दीजिए, मुख्यमंत्री बनने के बाद ये उनका पहला उत्तर बंगाल दौरा है। उत्तर बंगाल बीजेपी के लिए क्यों अहम है ये जान लीजिए। 2026 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर बंगाल की 54 विधानसभा सीटों में से 40 सीटें जीतकर 2021 के चुनावों के अपने पिछले रिकॉर्ड 30 सीटों को पीछे छोड़ दिया। बीजेपी ने अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और कलिम्पोंग, इन 4 जिलों की सभी विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की। 2026 विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को उत्तर बंगाल में केवल 14 सीटें मिली। 2021 में तृणमूल ने उत्तरी बंगाल में 23 सीटें जीती थी। ये माना जा रहा है कि उत्तर बंगाल में हिंदू वोटों का जबरदस्त ध्रुवीकरण हुआ है और बीजेपी पहली बार बंगाल में सरकार बनाने में कामयाब हुई। आज शुभेंदु अधिकारी सिलीगुड़ी सचिवालय उत्तरकन्या में उत्तर बंगाल के 5 जिलों की कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, आम लोगों से मिलेंगे। एक तरह से ये उत्तर बंगाल के नाम बीजेपी का धन्यवाद भरा पैगाम है। अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक।

आपका आज तक पे बहुत बहुत स्वागत है और हम आपको इस खास पेशकश में दिखाएंगे कि युद्ध ना हो दोबारा। हमारी इस खास पेशकश में बात करेंगे मिडिल ईस्ट के तमाम बढ़ते घटनाक्रम को लेकर, जहां एक बार फिर से युद्ध दस्तक दे सकता है। लड़ाई के बादल छाए हुए हैं, हथियारों की नई खेप इसराइल पहुंच चुकी है, रिफ्यूलिंग टैंकर तैयार किए जा रहे हैं क्योंकि ईरान और अमेरिका में डील होती हुई नहीं दिख रही है। दोनों देशों में मिसाइलें तनी हुई हैं, हार ट्रिगर पर है और इस युद्ध संकट में पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट को बहुत ज्यादा गहरा दिया है। पूरी दुनिया इस समय आर्थिक मोर्चे पर एक तरीके से एक संकट से जूझ रही है और इस तमाम संकटों के बीच अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेक्सेट ने सोशल मीडिया पर ईरान को बड़ी धमकी दी। पीट हेक्सेट ने लिखा है कि लॉक एंड लोडेड। उन्होंने ये कमेंट अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के उस पोस्ट को रिपीट करते हुए लिखा जिसमें यह कहा गया था कि ईरान के साथ ऐसी डील नहीं होगी जिसमें उसे परमाणु हथियार बनाने की छूट मिल सके। जेडी वेंस ने यह भी अपने पोस्ट में लॉक एंड लोडेड लिखा था। साथ ही यह भी कहा था कि अमेरिका नहीं चाहता कि उसे फिर से युद्ध के रास्ते पर जाना पड़े, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप इसके लिए तैयार हैं कि अगर युद्ध करना पड़े तो उनकी इच्छा और क्षमता दोनों ही उसमें मजबूत है। यानी राष्ट्रपति ट्रंप से लेकर उपराष्ट्रपति और अब युद्ध मंत्री ईरान के खिलाफ फिर से जंग की धमकी दे रहे हैं।

0: देखिए वैसे तो यह युद्ध किसी के लिए भी ठीक नहीं है और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि कैसे मध्य पूर्व में युद्ध का तूफान कब थमेगा इसको लेकर आशंका है। तो युद्ध की अंतिम विकल्प ही है अमेरिका लॉक एंड लोडेड है, यानी अमेरिका बार बार ईरान को धमकियां दे रहा है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। और क्या अब युद्ध की अंतिम विकल्प बचा है? अमेरिकी लॉक एंड लोडेड की बात कह रहा है, ट्रंप की टीम से इस तरीके के धमकी भरे बयान लगातार मिल रहे हैं, तो ईरान भी शांत नहीं बैठ रहा। ईरान ने भी जवाबी हमले के लिए कमर कस ली है, झुकने को का सवाल ही नहीं है ये ईरान लगातार कहता है। और अगर क्या अगले हफ्ते हमला होना तय है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी बैठक शनिवार इतवार की रात को या फिर अगले हफ्ते हो सकती है। ट्रंप ने अरब देशों के रिक्वेस्ट पर हमला टालने की बात कही थी और इस युद्ध का क्या अंजाम होगा, कैसे आएगी शांति, क्या होगा समाधान, सब कुछ आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, ईरान युद्ध के आगे क्या होगा इसको लेकर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच एक बड़ी बातचीत हुई और कहा यह जा रहा है कि हमारी की न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के दावा किया जा रहा है कि देखिए कि ट्रंप एक बार फिर से फोन कॉल की गई। अमेरिकी मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में ईरान पर युद्ध की भावी दिशा को लेकर, यानी किस तरीके से युद्ध होगा इसको लेकर एक फोन कॉल पर लंबी बातचीत हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वॉशिंगटन हमलों को फिर से शुरू करने के लिए बजाय समझौते के पक्ष में नजर आ रहा है। दरअसल कतर, पाकिस्तान ने, सऊदी अरब और तुर्की और मिस्र जैसे देशों ने समर्थन से नया ईरान डील ड्राफ्ट आगे बढ़ाया जा सकता है और इसको लेकर कोशिशें जारी हैं कि मिडिल ईस्ट के इन तमाम देशों की मध्यस्थता के हिसाब से ही इस डील को, यानी शांति वार्ता को आगे बढ़ाया जा सके।
1: And now we're blowing it away. We're blowing everything away. And we're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly. They're tired of this should have happened for 47 years. Somebody should have done something about it. And it's going to happen. And it's going to happen fast. And you're going to see oil prices plummet. They're going to come down. There's so much oil out there. They're going to come plummeting down.
2: बीते कुछ घंटों में अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर दोबारा हमले को लेकर दो बड़े बयान दिए हैं। पहले ट्रंप ने दावा किया कि मिडिल ईस्ट के देशों की मांग पर उन्होंने ईरान पर नया हमला टाल दिया है। अमेरिकी सेना ईरान पर नए हमले के लिए पूरी तरह तैयार थी, लेकिन ट्रंप ने साफ कर दिया है कि हमला सिर्फ कुछ घंटों के लिए टला है। अगर अगले 48 घंटे के अंदर ईरान की तरफ से पीस डील को लेकर कोई अच्छी खबर नहीं आई तो ईरान पर विध्वंसक हमलों की शुरुआत हो जाएगी। मतलब एक बार फिर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू हो जाएगा। वहीं ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी पर विनाशकारी परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। यही ऐलान किया है कि ईरानी सेना की उंगली ट्रिगर पर है। इधर अमेरिका हमला करेगा, उधर अमेरिकी सैन्य ठिकानों के साथ मिडिल ईस्ट में बारूदी तबाही का तांडव ईरान शुरू कर देगा। मतलब ईरान भी अमेरिका के साथ महायुद्ध के लिए तैयार है। सबसे पहले ट्रंप के उस अल्टीमेटम को सुनिए जिसने दुनिया के लिए महायुद्ध की घंटी बजा दी है।
1: I mean, I'm saying 2 or 3 days, maybe Friday, Saturday, Sunday, something, maybe early next week, a limited period of time. Because we can't let them have a nuclear weapon.
2: ट्रंप की धमकी का मतलब यही है कि शुक्रवार, शनिवार या फिर संडे को ईरान पर एक बार फिर हमला हो सकता है, क्योंकि ईरान के साथ पीस डील को लेकर अब तक सहमति नहीं बनी है। ये तब है जब ईरान ने पीस डील का नया प्रस्ताव अमेरिका को भेज रखा है। मामला सिर्फ और सिर्फ ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर अटका और लटका हुआ है। ईरान ने साफ कहा है कि परमाणु प्रोग्राम पर किसी दबाव में निर्णय नहीं होगा। अमेरिका के साथ बातचीत होगी लेकिन ईरान परमाणु प्रोग्राम पर झुकेगा नहीं। वहीं ट्रंप मानते हैं कि ईरान का परमाणु प्रोग्राम सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। ईरान पर नए हमले को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ ट्रंप अहम बैठक कर चुके हैं। इजरायली मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ईरान युद्ध खत्म करने को लेकर कोई बड़ा नया प्रस्ताव नहीं देता तो ट्रंप आखिरकार सैन्य कार्रवाई का रास्ता चुन सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि नेतन्याहू ने सोमवार रात करीब 5 घंटे लंबी सुरक्षा कैबिनेट बैठक की। इसमें सेना प्रमुख, एयरफोर्स चीफ और कई बड़े सुरक्षा अधिकारी शामिल हुए थे। मीटिंग का मकसद ईरान पर नए हमलों को लेकर सैन्य अफसरों के साथ चर्चा करना था। साफ है कि इजरायली सेना हमले के लिए तैयार है। चंद दिन पहले अमेरिकी वायुसेना का बेड़ा इजरायल पहुंच चुका है। अमेरिका की धमकी को लेकर IRGC ने बयान जारी करते हुए ट्रंप को अंदाज भुगतने की सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल अपनी बड़ी और बार बार की रणनीतिक पराजय से सबक लेने में विफल रहे हैं और एक बार फिर धमकियों का सहारा ले रहे हैं। उन्हें ये पता होना चाहिए कि दुनिया की दो सबसे महंगी सेनाओं ने अपनी सभी सैन्य क्षमताओं का इस्तेमाल करके हम पर हमला किया। अभी हमने दुश्मनों के खिलाफ अपनी पूरी क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो युद्ध सिर्फ सीमित क्षेत्र तक नहीं रहेगा बल्कि पूरे इलाके में फैल जाएगा। हमारे करारे प्रहार उन जगहों को बर्बाद कर देंगे जिनकी कल्पना अमेरिका नहीं कर सकता। हम युद्ध के मैदान में लड़ने वाले लोग हैं और आप हमारी शक्ति को खोखले बयानों से नहीं बल्कि युद्ध के मैदान में देखेंगे। ईरान ने उस रिपोर्ट के बहाने ट्रंप पर निशाना साधा है जिसमें युद्ध के दौरान कम से कम 42 अमेरिकी सैन्य विमानों के नुकसान का जिक्र है। दरअसल अमेरिकी संसद की रिसर्च एजेंसी कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 28 फरवरी से ईरान के साथ जंग में अमेरिका के कम से कम 42 विमान या तो नष्ट हो गए हैं या उन्हें नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि कई मामलों की जानकारी अभी गोपनीय रखी गई है। अमेरिकी रिपोर्ट को लेकर धमकियों के बीच ईरान ने भी महायुद्ध की घंटी बजा दी है। ईरान का दावा यही है कि अस्थायी युद्ध विराम के वक्त का इस्तेमाल उसने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए किया है। सैन्य बलों ने युद्ध विराम की अवधि को युद्ध के समय के रूप में माना है और इस अवसर का उपयोग अपनी युद्ध क्षमताओं को मजबूत करने के लिए किया है। ईरान को घेरा या पराजित नहीं किया जा सकता है। अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। दोनों तरफ सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हैं। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर दोबारा हमले का आदेश दिया तो महायुद्ध की चपेट में अब की बार पूरी दुनिया आ सकती है क्योंकि ईरान खुल्ला खुल्ला ऐलान कर चुका है कि इस बार अपनी उन विध्वंसक मिसाइलों से प्रहार करेगा जिनका इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया है। आज तक ब्यूरो।
0: और देखिए शांति वार्ता को लेकर लगातार दोनों तरफ से तैयारियां बातचीत की जा रही है लेकिन अपनी जंगी तैयारियों को भी पीछे नहीं हटाया जा रहा, उससे भी पीछे नहीं हटाया जा रहा। अब अमेरिकी मीडिया आउटलेट ने क्या कुछ कहा है इस ड्राफ्ट को लेकर मंगलवार को जब डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की बातचीत हुई, ये हम आपको दिखाते हैं। दरअसल आपको बताया कि एक्सियोस की तरफ से कहा गया कि ट्रंप डील करने के पक्ष में है, वो चाहते हैं कि शांति वार्ता हो जाए लेकिन नेतन्याहू हमले के पक्ष में है। वो हमेशा चाहते हैं नेतन्याहू कि जितना ज्यादा विध्वंसक ईरान पर हमला होगा उतना ज्यादा इजराइल का फायदा होगा। ट्रंप ने हमला टाल दिया है और इसको लेकर भी नेतन्याहू बहुत ज्यादा नाराज हैं। नेतन्याहू गुस्से में है और इस बात को लेकर बार बार कह रहे हैं कि देखिए हमला टालना नहीं चाहिए, हमें बड़े हमले करने चाहिए ताकि ईरान को कमजोर किया जा सके। नेतन्याहू का मकसद कमजोर ईरान है, वो चाहते हैं कि ईरान की जो पावर है जो रिजिम है IRGC इतनी ज्यादा कमजोर हो जाए कि दशकों तक वो अपने आप को संभाल ना सके। ट्रंप का मकसद मजबूत परमाणु डील है, यानी वो सिर्फ परमाणु डील को ज्यादा मुस्तैदी से लागू करना चाहते हैं नेतन्याहू। और खास तौर पर ट्रंप बोले डील तक रुक जाते हैं, यानी जब तक डील नहीं होती जब तक रुक जाते हैं, कोई कंक्लूजन नहीं आ जाता जब तक रुकना पड़ेगा। अब ट्रंप बोले डील तक रुक जाते हैं लेकिन ये तमाम बातों के बीच इसराइल के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बड़े अटैक्स इस समय ईरान पर किए जाए ताकि ईरान को और ज्यादा कमजोर किया जा सके। अब वहीं अमेरिकी लाख कोशिश के बावजूद हॉर्मूज खुलवाने में भी नाकाम साबित हुए। ईरान के पास इस वक्त हॉर्मूज की नाकेबंदी सबसे बड़ा हथियार है और वो इस मुद्दे पर लगातार अमेरिका को चिढ़ा भी रहे। बड़ी खबर यह है कि IRGC नौसेना के राजनीतिक उप प्रमुख के हवाले से आ रही है। मोहम्मद अकबरजादे ने कहा है, तंज करते हुए कहा कि हॉर्मूज स्ट्रेट को कमांडर तंगसिरी के आदेश पर बंद कर दिया गया था। यही नहीं, अपने तमाम दावपेचों और चालों के बावजूद अमेरिका इसे फिर से खुलवाने में नाकामयाब साबित हुआ है। दुश्मन को ना तो ईरान के बारे में सही खुफिया जानकारी है और ना ही समझ और ना ही अकल है। आपको बता दें कि अली रेजा तंगसिरी ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स यानी IRGC के नेवी कमांडर थे। उन्होंने हॉर्मूज बंद करने की रणनीति का मास्टरमाइंड बताया जाता है। 26 मार्च 2026 को यानी 28 फरवरी के स्टार्ट होने के करीबन 26 दिन बाद बंदर अब्बास में इजरायली एयर स्ट्राइक्स में वो बुरी तरीके से घायल हो गए थे और 4 दिन बाद उनकी मौत हो गई थी, जिसको लेकर IRGC ने भी ऐलान किया। लेकिन उनकी जो स्ट्रैटेजीज थे उसने ईरान को बहुत मदद दी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को एक ऐसा वेपन तैयार कर दिया जो ईरान के लिए बहुत ज्यादा अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा मुसीबत साबित कर रहा है। अब वॉशिंगटन DC में हमारे सहयोगी रोहित शर्मा से रोहित का रुख करते हैं और रोहित से जानने की कोशिश करते हैं। रोहित, अमेरिकी राष्ट्रपति के मन में आखिरकार क्या चल रहा है? नेतन्याहू ने उनको लगातार उनसे अनबन चल रही है, कहा जा रहा है कि देखिए लगातार युद्ध करने की कोशिश की जा रही है लेकिन ऐसा लग रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय युद्ध करने के मूड में नहीं है।
3: देखिए, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो जो उनके कमेंट्स रहे हैं, और इनफैक्ट कल जेडी वैंस ने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो एक पॉस्चर जो है वो क्लियर किया कि अमेरिका जो है ऑब्वियसली ये एक फॉरएवर वॉर नहीं चाहता, और एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश ही है कि जो हमने पहले 4 या 6 हफ्ते में जो डैमेज अमेरिका ने पहुंचाया ईरान को, इट हैज बीन सफिशियंट इनफ कि उनकी मिलिट्री नहीं रही है या उनकी नेवी नहीं है, और जिस तरह के जो बार बार क्लेम्स अमेरिका ने किए हैं, तो उसको लेके आई थिंक यू नो दे हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट कि अब ये शायद सही समय है एक डील करने का, लेकिन उस डील में गारंटीज चाहता है अमेरिका। और जहां तक सवाल इस बात का है कि ये जो लिमिटेड समय की बात है कि किस तरह से इसको आगे देखा जाए, या जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कमेंट था कि टाइम है, कम टाइम है, वो इनफैक्ट उन्होंने कहा था कि मैं अटैक करने वाला था ईरान पे लेकिन मैंने रोक दिया, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक यू नो नॉट ओनली सेंडिंग अ मैसेज बट एक सच्चाई भी बयान कर रहे हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की। ये नेगोशिएशंस चलती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, और इवेंचुअली कभी ना कभी तो एक एक्सपेक्टेशन होगी प्रेसिडेंट ट्रंप की कि ईरान किसी डील को लेके, समझौते को लेके आगे बढ़े, और फिलहाल उन्हें उस तरह की चीजें नहीं दिख रही। उन्होंने ये कहा था कि मैंने एक जो नया लेटेस्ट जो नेगोशिएशन का जो पेपर आया था वहां से, पहली लाइन पढ़ के ही मैंने उसे फिर डस्टबिन में डाल दिया, बिकॉज उसमें ऑब्वियसली न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर गारंटीज नहीं थी। तो आई थिंक हम अभी मई में हैं, 3 साढ़े 3 4 महीने बाद यहाँ पे जो जब इलेक्शन होंगे मिड टर्म्स के लिए, उसमें इसे गलत यू नो अगर ये वॉर बढ़ती है तो इसके काफी ज्यादा इम्पैक्ट होगा रिपब्लिकन पार्टी पे, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के ऊपर। तो मुझे लगता है कि इसी वजह को लेके आई थिंक शायद प्रेसिडेंट ट्रंप को ये लग रहा है कि ही हैज टू डू अराउंड 2 ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन की अमेरिकन पावर कितनी है, और अगर उसके लिए अगर उन्हें ईरान के ऊपर फिर से हमला करना पड़े तो वो बता रहे हैं हम ईरान को, पूरी दुनिया को, मैं तैयार हूं। सो आई थिंक कहीं ना कहीं ईरान हैज टू टेक यू नो दिस इन सीरियसली, और साथ ही साथ अगर ईरान सचमुच चाहता है कि वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप करे और नेगोशिएशन नहीं चाहता, तो ऑब्वियस सी बात है फिर ये युद्ध आगे बढ़ने वाला है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ज्यादा गंभीर चेतावनी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं, स्पेशली जब वेंस ने आके पोजिशन क्लियर की, उसके बाद भी अगर आप बात देखें तो ऐसा लगता है कि उनका पेशेंस जो है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का वो खत्म होता नजर आ रहा है।
0: बिल्कुल रोहित, देखिए न्यूक्लियर डील से ज्यादा मुझे लगता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर डील होना बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि उसको लेकर भी ईरान अपने जो स्टैंड है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रख चुका है। जिस तरीके से ईरान और अमेरिका के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की लड़ाई में दुनिया सबसे बड़े ऊर्जा संकट का सामना कर रही है, ऐसे में इन हालातों से कैसे निकला जाए, कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का हल निकाला जाए और कैसे युद्ध को रुकवाया जाए, दुनिया इसी मत्थापच्ची में लगी हुई है और इस तरीके से इस लड़ाई का समाधान हो इसको लेकर भी बहुत ज्यादा गंभीर चर्चाएं चल रही है।
2: ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच जिस तरह से जंग छिड़ी, अब पूरी दुनिया इस जंग के साइड इफेक्ट्स झेल रही है। भले ही ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर चल रहा हो, लेकिन दोनों देशों के बीच बारूद आज भी सुलग रहा है। हालात ऐसे हैं कि ये जंग कभी भी महायुद्ध में बदल सकती है, क्योंकि ना तो अमेरिका मानने को तैयार है, ना ही ईरान छुपने को तैयार है। अमेरिका शर्तें रख रहा है ईरान अपना एनरिच यूरेनियम और परमाणु प्रोग्राम छोड़े, और ईरान कह रहा है कि चाहे जो हो जाए एनरिच यूरेनियम और परमाणु प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा, और ईरान अमेरिका की इस जंग में दुनिया चने के साथ घुन की तरह पिस रहा है, क्योंकि ईरान और अमेरिका दोनों ने अपनी अपनी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकेबंदी कर रखी है, वो हॉर्मुज जहां से पूरी दुनिया का तेल और गैस गुजरता है, इसीलिए दुनिया भर में तेल और गैस का संकट खड़ा हुआ है। ऐसे में अब हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान और अमेरिका की नाकेबंदी पर अब नाटो में बड़ी हलचल देखी जा रही है। अब तक डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज खुलवाने में नाटो की ओर से मदद न मिलने पर तीखे बयान देते रहे हैं, अब खुद नाटो देश बड़ी बैठक करने वाले हैं। आने वाली 7 और 8 जुलाई को तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। इस बार का सम्मेलन वैश्विक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिहाज से बेहद ऐतिहासिक होने जा रहा है। तुर्की दूसरी बार इस समिट की मेजबानी कर रहा है। इस सम्मेलन का सबसे बड़ा और संवेदनशील एजेंडा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जारी संकट और ईरान की ओर से लगाई गई नाकेबंदी है। अगर नाटो के सुप्रीम अलाइड कमांडर यूरोप ने पुष्टि की है कि ये सैन्य विकल्प पूरी तरह मेज पर है, और ब्रिटेन के साथ ही फ्रांस जैसे देश पहले से ही समुद्र सुरक्षा योजनाओं को अमली जमा पहनाने में जुटे हैं, अगर ये मिशन शुरू होता है तो ये नाटो के इतिहास का एक बड़ा आउट ऑफ एरिया यानी अपने तय क्षेत्र से बाहर का ऑपरेशन होगा, जो गठबंधन की सैन्य भूमिका को सीधे मिडल ईस्ट तक बढ़ा देगा। हालांकि इस मिशन पर अभी पूर्ण सहमति नहीं बन पाई है। कई यूरोपीय देश डर रहे हैं कि नाटो के सीधे उतरने से ईरान के साथ तनाव और अधिक भड़क सकता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नाटो इस समिट में खाड़ी देशों यानी यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित करने की तैयारी कर रहा है, ताकि एक व्यापक क्षेत्रीय रणनीति बनाई जा सके। इस सम्मेलन से पहले नाटो ट्रंप की ओर से किसी भी आग्रह पर अपना फैसला डाल रहा है। बीजिंग में पुतिन और जिनपिंग की ईरान युद्ध पर चर्चा। बैठक में जिनपिंग ने पुतिन से कहा ईरान युद्ध रोकना जरूरी। राष्ट्रपति पुतिन और शी जिनपिंग के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुई और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मिडल ईस्ट में जारी युद्ध को लेकर चेतावनी दी है। रॉयटर्स के मुताबिक बीजिंग में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक में उन्होंने कहा है कि दुनिया फिर जंगल राज की तरफ बढ़ रही है। जिनपिंग ने चेतावनी दी कि अगर जंग नहीं रुकी तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और वैश्विक स्थिरता पर बड़ा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि एकतरफा सैन्य कार्रवाई और लंबे समय तक चलने वाला युद्ध दुनिया को ऐसे दौर में ले जा सकता है जहां अंतर्राष्ट्रीय नियम कमजोर पड़ जाएं। उन्होंने कहा कि लड़ाई रोकना बेहद जरूरी है। बीजिंग में हुई उच्च स्तरीय बैठक में दोनों नेताओं ने वैश्विक राजनीति, मिडल ईस्ट युद्ध, ऊर्जा सुरक्षा और ब्रिक्स जैसे मुद्दों पर चर्चा की। पुतिन ने कहा कि पिछले 25 वर्षों में रूस चीन रिश्ते तेजी से मजबूत हुए हैं और दोनों देश लगातार साझा परियोजनाओं पर साथ काम कर रहे हैं।
4: 25
5: आज चीन और रूस के रिश्ते अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच चुके हैं, जो एक सार्थक व्यापक साझेदारी और रणनीतिक सहयोग की मिसाल है। इस साल इस साझेदारी की 30वीं वर्षगांठ है। प्रतिकूल हालातों के बावजूद हमारा सहयोग और आर्थिक समन्वय मजबूत गति से आगे बढ़ रहा है। व्यापार में 30 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है और लगातार कई सालों से ये 200 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक रहा है। मिडिल ईस्ट में जंग के बावजूद रूसी चीनी आर्थिक सहयोग का मुख्य केंद्र ऊर्जा सहयोग है।
2: आपको बता दें कि सितंबर में भारत में ब्रिक्स सम्मेलन होने जा रहा है। ये ब्रिक्स सम्मेलन नई दिल्ली में होगा। इस ब्रिक्स समिट में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शामिल होने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो फिर दुनिया को ब्रिक्स के मंच से नया मैसेज जाएगा। आज तक ब्यूरो।
0: चलिए, इस खास पेशकश में इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: युद्ध के तनाव के बीच पाकिस्तान के गृह मंत्री तेहरान पहुंचे हैं और तेहरान में मोहसिन नकवी ईरान चले गए हैं और वहां उन्होंने IRGC कमांडर सरदार अहमद वाहिदी से मुलाकात भी की। तो एक तरफ युद्ध का तनाव है, संकट के बादल, दूसरी तरफ पाकिस्तान के मंत्री नकवी तेहरान पहुंच गए और पाकिस्तान की हिपोक्रेसी देखे कि सऊदी अरब में अपनी सेना को भी और फाइटर जेट को भी उन्होंने तैनात किया हुआ है।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
8: ट्यून इन हाउ टू, अ ब्रीफ लुक इन ऑल द स्पेशल फंक्शंस एंड थिंग्स यू माइट नॉट नो वी हैव।
9: TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests, did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
10: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
11: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin,
4: Kiss. AC/DC.
11: Lynyrd Skynyrd. And so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
6: Presented by Patanjali Dant Kanti Truth.
10: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
11: TuneIn's got all your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news.
12: You know, the breaking news is this started long before he even announced for president. It was
11: to live sports action.
13: To the near side corner, to wrap around, he scores!
11: And your favorite music. TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn. Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
6: Complete oral health ka sach.

नीट पेपर लीक केस के मास्टरमाइंड और आरसीसी क्लासेस के मालिक शिवराज मोटेगांवकर पर शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई के साथ पुणे महानगर पालिका भी मोटेगांवकर के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। पुणे के जेएम रोड पर आरसीसी क्लासेस कैंपस पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुणे महानगर पालिका की टीम बुलडोजर लेकर कार्रवाई के लिए पहुंची। सीबीआई की गिरफ्त में मौजूद शिवराज मोटेगांवकर की कोचिंग से जुड़ी दो संपत्तियों को पुणे महानगर पालिका ने सील कर दिया। पीएमसी के मुताबिक इन प्रॉपर्टीज पर करीब 3,20,00,000 रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। इसके अलावा बिना अनुमति कोचिंग क्लासेस चलाने और अवैध निर्माण के आरोप भी सामने आए हैं। पुणे में बोराव के बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर मौजूद दुकान नंबर 1 को नोटिस देने के बाद सील कर दिया गया। यहीं से जेई और नीट की कोचिंग क्लासेस चलाई जा रही थी। पीएमसी अधिकारियों के मुताबिक बिल्डिंग में अवैध पार्किंग और अवैध निर्माण भी पाया गया, जिसके बाद बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। इस बीच सीबीआई ने भी अपनी जांच तेज कर दी। एनटीए के साथ मिलकर

नीर पेपर लीक मामले में जयपुर में जबरदस्त प्रदर्शन, सड़क पर पुलिस से भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता, आज संसदीय समिति के सामने हो गए एनटीए चीफ और अफसरों की पेशी। इटली से स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री, आज शाम लेंगे मंत्रिपरिषद की बैठक, 3.0 कार्यकाल की होगी समीक्षा, शाम 5 बजे सभी केंद्रीय और राज्य मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा। बंगाल में शिवेंदु सरकार का बड़ा आदेश, मदरसों में वंदे मातरम गाना होगा अनिवार्य, आज दिल्ली पहुंचेंगे सीएम, बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सड़क पर उतरेंगी ममता। शिवेंदु सरकार को मायू कबीर का खुला चैलेंज, कहा हाल में होगी कुर्बानी, कोई मना करे तो नहीं मानेंगे, गाय बकरी ऊंट की देंगे कुर्बानी। प्रचंड गर्मी में झुलसा हिंदुस्तान, अगले 3 दिन तक चलेंगे लू के थपेड़े, दुनिया के सबसे गर्म शहरों में शुमार यूपी का बांदा, तेजी से बढ़ रही है मरीजों की संख्या।

0: जयपुर नीट पेपर लीक मामले में विरोध, कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन, केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए एनटीए को पूरी तरह विफल बताया। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़े, पुलिस और सुरक्षा बल के साथ धक्का मुक्की। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी कार्यालय को घेराव की कोशिश की, रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। प्रदर्शन के दौरान शिक्षा मंत्री पर बोला हमला का, नीट पेपर लीक के सरगना को दे रहे हैं संरक्षण, लाखों युवाओं के भविष्य से कर रहे हैं खिलवाड़। डोटासरा ने कहा केंद्र सरकार नीट पेपर लीक मामले में जिम्मेदारी से बच नहीं सकती, 22 लाख बच्चों का भविष्य खराब करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की जरूरत। पश्चिम बंगाल में कुर्बानी को लेकर जारी विवाद के बीच एजेयूपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुमायूं कबीर का विवाद बयान का, हाल में कुर्बानी होगी कोई नहीं रोक सकता।
1: उनको गाय खाने के मना करे तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का जियो करके मना कर दीजिए, लेकिन कुर्बानी तो हो गई।
0: सीएम शुभेंदु अधिकारी के फैसले को चुनौती देते हुए हुमायूं कबीर ने कहा किसी के मना करने से नहीं रुकेगी कुर्बानी, जब तक दुनिया रहेगी ये चलता रहेगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी कर्मचारी द्वारा मीडिया के बयान तथा सूचना देने के संबंध में सख्त निर्देश जारी किया, बिना परमिशन के कोई भी जानकारी साझा करने पर रोक। अधिसूचना में साफ कहा गया कि सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी कर्मचारी किसी भी मीडिया प्रोग्राम में हिस्सा नहीं ले सकेगा, निजी कार्यक्रम के लिए लेना होगा आदेश। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर दोबारा वोटिंग जारी, 43% हुआ मतदान। सीएम शुभेंदु अधिकारी आज दोपहर 2 बजे दुर्गापुर में पहली प्रशासनिक बैठक करेंगे, मीटिंग को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सीएम को इस बैठक में पुरुलिया, बांकुड़ा, बीरभूम, पश्चिम बर्धमान, पूर्व बर्धमान के अधिकारी शामिल होंगे। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक के बाद आज ही सीएम शुभेंदु दिल्ली के लिए होंगे रवाना, आज हो सकती है अमित शाह के साथ मुलाकात, कल होगी प्रधानमंत्री से मीटिंग। पश्चिम बंगाल के मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य, शुभेंदु सरकार ने सख्त लहजे में दिया आदेश। 5 देशों की आधिकारिक यात्रा पर दिल्ली लौट आए पीएम, आज शाम 5 बजे होने वाली मंत्रिपरिषद बैठक की करेंगे अध्यक्षता। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में सुधारों को लेकर करीब 12 से ज्यादा मंत्रालय देंगे प्रेजेंटेशन, सभी मंत्रालय सुधारों के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी कैबिनेट सचिवालय को सौंप चुके हैं। 11 महीने बाद हो रही है मोदी कैबिनेट की बैठक में सरकार के आने वाले एजेंडे के बारे में बताए जाने की संभावना। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पश्चिम एशिया के युद्ध से मद्देनजर कई महत्वपूर्ण सुधार किए जाने की संभावना पर चर्चा। इस बैठक में विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज, हाल ही में

नीतिगत फैसलों के परिणाम और भविष्य की योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का बड़ा एक्शन, 10 गैंगस्टर्स के पासपोर्ट रद्द करने के लिए विदेश मंत्रालय को लिखा खत। विदेश में बैठकर गैंग ऑपरेट करने वालों पर फोकस, फरार गैंगस्टर्स की अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों पर नजर। पुंछ में एलओसी के पास दो बैग मिले ड्रग्स और हथियार, सेना के जवानों ने इन्हें बालाकोट सेक्टर में नियमित गश्त और तलाशी अभियान के दौरान बरामद किया। नीट यूजी पेपर लीक और शिक्षा जुड़े हैं मुद्दों पर संसद की स्थायी समिति की महत्वपूर्ण बैठक। मीटिंग में नीट यूजी पेपर लीक और एनटीए सुधार को लेकर बनी राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। अमेरिका के युद्ध मंत्री ने सोशल मीडिया पर ईरान को बड़ी धमकी दी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने पोस्ट रिट्वीट करते हुए लिखा, लॉक्ड एंड लोडेड। युद्ध विराम के बीच ट्रंप और नेतन्याहू के बीच तनावपूर्ण फोन कॉल की खबर, ईरान से समझौते की खबर को लेकर इजरायली पीएम नेतन्याहू नाराज। सूत्रों के मुताबिक नेतन्याहू वार्ताओं को लेकर बेहद संशय में और वो युद्ध को फिर से शुरू करना चाहते हैं ताकि ईरान की सैन्य क्षमता और सत्ता को कमजोर किया जा सके। आईजीसी नौसेना के राजनीतिक उप प्रमुख ने फिर उड़ाया मजाक, ट्वीट कर लिखा, दुश्मन को ना तो ईरान के बारे में सही खुफिया जानकारी और ना ही समझ और अकल है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने फिर युद्ध टालने के दिए संकेत, लिखा, हमारी ओर से सभी रास्ते खुले हैं लेकिन जबरदस्ती ईरान को झुकने पर मजबूर करना केवल भ्रम है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद पर पाकिस्तान को खूब सुनाया, साथ ही अफगानिस्तान में हत्याओं को लेकर आड़े हाथ लिया। यूएन ने भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान को खरी खुड़ी सुनाते हुए कहा, नरसंहार इतिहास वाला देश भारत के आंतरिक मामलों में बोलने का हक नहीं रखता है। सीमा पार आतंकवाद पर भारत ने यूएन में कड़ा संदेश दिया। भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व कर रहे पी हरीश ने आतंकवाद को समर्थन देने वाले देशों को जवाबदेही ठहराने की मांग की है। थोड़ी देर में यमुना सफाई को लेकर गृहमंत्री शाह की बड़ी बैठक, मीटिंग में दिल्ली सीएम, जल शक्ति मंत्री सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। राजस्थान सरकार के डेयरी विभाग ने दूध की कीमतों में 2 रुपए लीटर का इजाफा किया। स्टैंडर्ड दूध की नई कीमत 62 रुपए प्रति लीटर, गोल्ड दूध की कीमत 70 रुपए प्रति लीटर हुई। करनाल में नीट पेपर लीक, बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रहे मौजूद। छत्रपति संभाजीनगर में एनसीपी शरद पवार गुट का प्रदर्शन, किसानों ने कर्ज माफी और फसलों के उचित दाम की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर किसानों से किए वादे पूरे न करने का लगाया आरोप, कर्ज माफी और फसलों को उचित दाम देने की मांग। पश्चिमी मेदिनीपुर में एक दुकान से सरकारी राहत सामग्री मिलने पर हंगामा, बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प। पलवल में सोशल मीडिया पर वीडियो डालने पर युवक पर हथौड़ों और डंडों से हमला, हाथ पैर तोड़े, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। भोपाल में तुषार सुसाइड मामले में गिरी कंज्यूमर फोरम जज गिरिबाला सिंह पर कार्रवाई तेज, पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू। खाद्य विभाग का बड़ा एक्शन, गिरिबाला सिंह के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 के तहत जांच रिपोर्ट तलब। अग्रिम जमानत पर चल रही जज गिरिबाला सिंह पर रिमूवल की तैयारी, राज्य सरकार ने आयोग को लिखा पत्र। तुषार शर्मा केस में एनसीडब्ल्यू सख्त, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए मुख्य सचिव और डीजीपी को लिखा पत्र। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सीसीटीवी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक एनसीडब्ल्यू ने मांगी पूरी कार्रवाई की डिटेल। त्रिशा केस में नया खुलासा, परिवार का आरोप, मौत के अगले दिन सास गिरिबाला ने जुडिशरी जुड़े कई नंबर्स पर किए फोन। परिवार ने गंभीर आरोप लगाया, किया दावा, गिरिबाला के फोन से 13 मई को रिश्तेदारों और परिचितों को किए गए कई फोन कॉल्स, पुलिस ने सीडीआर की जांच की मांग की। त्रिशा केस में बड़ा खुलासा, परिजनों का कहना है मौत के अगले दिन सीसीटीवी इंस्टॉलेशन से जुड़े युवकों को भी गिरिबाला के नंबर से कॉल किए गए। त्रिशा के परिवार ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की मांग की, परिवार ने कॉल डिटेल्स, रिकॉर्ड, टावर लोकेशन, डिजिटल डेटा की फोरेंसिक जांच कराने की अपील की है। त्रिशा मामले में पति समर सिंह के नहीं मिलने पर पुलिस ने बड़ा इनाम राशि 30,000 रुपए इनाम घोषित किया। गाजियाबाद के बेसिक मॉल से सिनेमाघर के प्रोजेक्ट रूम में भीषण आग, 6 गाड़ियों ने पाया काबू। पटना में पहली पत्नी की दूसरी शादी का बदला लेने पहुंचे पति ने घर में लगाई आग, 5 झुलसे 1 की मौत। उड़ीसा के झारसुगुड़ा में नाबालिग लड़की को अस्पताल परिसर से अगवा कर किया सामूहिक बलात्कार, जांच जारी। सूरत के पौष इलाके में 48 लाख की चोरी का खुलासा, 100 सीसीटीवी खंगालने के बाद शातिर चोर गिरफ्तार। प्रयागराज के ग्लौज में छात्राओं ने मकान मालिक के बेटे पर मारपीट और छेड़छाड़ का लगाया आरोप, वीडियो वायरल। मोगा में सरकारी नशा मुक्ति केंद्र से ताला तोड़कर 30 युवक फरार, भागने की कोशिश में स्टाफ के साथ धक्का मुक्की। पुलिस ने फरार युवकों की तलाश में उनके घरों पर निगरानी बढ़ाई, सेंटर के आसपास सीसीटीवी कैमरों की जांच जारी। वाराणसी में पेट्रोल पंप पर बदमाश ने पिस्टल दिखाकर भरवाया मुफ्त पेट्रोल, वीडियो वायरल होने पर 2 गिरफ्तार। दिल्ली के इंद्रपुरी में विवाहिता की संदिग्ध मौत, पति और देवर अरेस्ट। मृतका के परिवार का आरोप, रंग रूप को लेकर देते थे ताना, दहेज के लिए करते थे परेशान। सीतामढ़ी में 22 साल के युवक की गोली मारकर हत्या, 4 लोग को हिरासत में लिया गया। आगरा में भीषण गर्मी का कहर, काम करते मजदूर की अचानक तबियत बिगड़ी, इलाज के दौरान मौत। ग्रेटर नोएडा में ड्यूटी पर जा रहे युवक पर बदमाश ने बरसाई गोलियां, इलाज के दौरान मौत। ग्रेटर नोएडा हत्याकांड में पुलिस ने जांच शुरू कर दी, 2 टीमों का गठन किया, सीसीटीवी कैमरों को खंगालने में जुटी है पुलिस। उन्नाव में 48 घंटे में 4 लूट की वारदात, सड़कम ज्वेलर्स शॉप समेत कई घटनाओं के बाद एसएचओ सस्पेंड।
अलवर में पत्नी के मायके जाने से मना करने पर अपने नवजात को पिलाया तेजाब, इलाज के दौरान बच्ची ने तोड़ा दम। बेगूसराय में रील बनाने वाली महिला की संदिग्ध हालत मौत, दहेज हत्या और आत्महत्या के बीच उलझ गई है गुत्थी। धनबाद में कोयला सिंडिकेट की खूनी जंग, एजेएसयू और राम रहीम सेना समर्थकों के बीच फायरिंग, हिंसा में कई घायल। अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व के जंगल में भीषण आग, वन विभाग की तत्परता से तला बड़ा हादसा। रेवाड़ी की जीएलएस कंपनी में भीषण आग से राहत, बचाव कार्य तेज, डीसीएसपी ने प्रबंधन की लापरवाही पर जताई नाराजगी। बिजनौर में बिजली का तार गिरने से स्विफ्ट कार नाक, पेट्रोल पंप कर्मचारियों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। टोंक में पेयजल संकट से भड़के ग्रामीण, महिलाओं समेत कई लोग पानी की टंकी पर चढ़े, दो साल से हो रही है पानी की किल्लत। मिर्जापुर में जिम केयर में धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग का मामला, 10 आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत अरेस्ट किया गया। जयपुर में रात की गश्त के दौरान पुलिस पर हमला, एक महिला सहित 3 लोग गिरफ्तार, एक नाबालिग को पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में डबल मर्डर, सब्जी व्यापारी की पत्नी और बेटी के घर में लूटपाट के बाद चाकू गोदकर हत्या। उत्तराखंड में जारी है चार धाम यात्रा में इस बार आस्था, उत्साह और श्रद्धा का अद्भुत संगम। देश भर से भगवान केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं लाखों श्रद्धालु। बद्रीनाथ धाम में आस्था का महासैलाब, एक महीने से कम समय में 4.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं भगवान बद्री विशाल के दिव्य दर्शन। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 10,000 से ज्यादा यात्रियों का हुआ सफल रेस्क्यू, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की संयुक्त टीमों ने चुनौतीपूर्ण हालात में किया सफल रेस्क्यू। अयोध्या के दुर्गा मंदिर में 29 मई को ध्वजारोहण समारोह, 3,500 से अधिक महिलाएं बनेंगी अतिथि। उत्तराखंड के द्वितीय केदार धाम पर आस्था का सैलाब, आज पूरे धूमधाम से खुले जाएंगे बाबा मध्य महेश्वर बाबा के कपाट। जम्मू कश्मीर के जोर जिला में बेमौसम गर्मी से जमकर बर्फबारी, तापमान में आई गिरावट। बर्फबारी से श्रीनगर लद्दाख सड़क अस्थायी रूप से यातायात बंद किया गया, लोगों से मौसम देखकर यात्रा न करने की अपील। बादीपुरा में भारी बारिश से कई जगहों पर भूस्खलन, कई सड़कों पर यातायात प्रभावित, एक व्यक्ति घायल। रुद्रप्रयाग के जंगलों में लगी आग, पहाड़ घाटियां धुएं से ढकी, चार धाम यात्रा पर असर, तापमान 40 डिग्री। हीट वेव के चलते प्रयागराज में सड़कों पर कर्फ्यू जैसा माहौल, पेड़ों की छांव में राहत ढूंढते नजर आए राहगीर। अलवर में 46 डिग्री पहुंचा तापमान, ट्रैफिक सिग्नल पर टेंट लगाकर पुलिस ने दी राहत। अकोला में भीषण गर्मी का प्रकोप, गर्मी के चलते इलाकों में पानी की कमी। औरैया में तापमान बढ़कर 45 डिग्री, गर्मी से बचने के लिए कई जगहों पर पानी की व्यवस्था की गई। औरैया में भीषण गर्मी से बड़ा बिजली का बोझ, ट्रांसफार्मर्स को ठंडा रखने के लिए लगाए गए कूलर, लाइन में लगातार रख रहे हैं निगरानी। भूल भुलैया फाटकों के पूरे विचार सार, निदेशक अनीस बाजवी ने जताया आभार, शेयर किया पोस्ट। हॉरर थ्रिलर फिल्म खेती का फर्स्ट लुक आउट, जैकी श्रॉफ और शरद केलकर निभा रहे मुख्य किरदार। मशहूर डायरेक्टर राजकुमार ईरानी और वेब सीरीज पीटर एंड पेड्रो का टीजर हुआ जारी, 3 जुलाई को जियो हॉटस्टार पर होगी स्ट्रीम। अपने पिता की वेब सीरीज एक्टिंग डेब्यू कर रहे हैं वीर ईरानी, वेब सीरीज में अर्शद वारसी के साथ आएंगे नजर। ओटीटी पर फिर से दिखेगा मिश्रा परिवार का मजेदार ड्रामा, 5 जून को सोनी लाइव पर रिलीज हो रही है गुल्लक सीजन 5। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला, अहमदाबाद में खेला जाएगा मैच। पहले प्लेऑफ में एंट्री पा चुकी है गुजरात टीम, चेन्नई के खिलाफ जीत हासिल कर टॉप 2 में जगह बनाने की कोशिश। अंक तालिका में आरसीबी के बाद दूसरे स्थान पर है गुजरात, अब तक खेले गए 13 मैच में 8 जीत 5 हार। चेन्नई के लिए मैच है साख की लड़ाई, हार का मतलब होगा लगातार तीसरा ऐसा सीजन जिसमें टीम प्लेऑफ में नहीं जगह बना पाएगी। दोनों टीमों ने अब भी आईपीएल के 9 मैच खेले हैं जिसमें से 5 मैच जीती के नाम है और सीएसके ने 4 मैच जीते हैं।

0: और अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां पर किला और बाजार को लेकर एक नई सियासत शुरू हो गई है। लखनऊ के मलिहाबाद थाना क्षेत्र स्थित कसमंडी के ऐतिहासिक किले में नमाज को लेकर विवाद हो गया है। पासी समाज ने आरोप लगाया कि राजा कंस पासी के किले में अवैध कब्जा कर मजारें बनाई गई और नमाज वहां पढ़ी जा रही है। विवाद बढ़ने पर मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। कल लाखन आर्मी और पासी समाज से जुड़े लोगों ने बड़ी संख्या में मलिहाबाद थाना स्थित कसमंडी पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि ऐतिहासिक किले का स्वरूप बदला है। उधर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहां सालों से मजार है और नमाज होती आई है, कोई नया निर्माण नहीं किया गया है। पासी संगठन ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर किले और मंदिर को सरकारी संरक्षण देने और पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग कर दी है।
1: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के काकोरी क्षेत्र में एक नया कंट्रोवर्सी शुरू हुई है। यहाँ पर जो राजा कंसा पासी का जो किला बताया गया है, जहां पर ये दावा किया गया अंग्रेजी गजेटियर में भी इसको शामिल है, वहां पर अंदर मकबरा और कब्र जैसे बना लेने की बात सामने आई है। जिसके बाद यहां पर जो समाज के लोग हैं वो इकट्ठे हुए हैं और अब चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से भी ये मांग कर रहे हैं कि इस पे पूरी तरीके से जांच हो, और दूसरी तरफ ये सभी ज्ञापन देने के लिए इस मैदान में यहाँ जगह पर इकट्ठा हो गए हैं। देखिए, साफ तौर से चूंकि व्यवस्था बनी रहे इसलिए भी, और ये कंसा पासी का जो किला या बुर्ज बताया गया है उसको लेकर अब ये मांग की जा रही है, और यहाँ पर जो कम्युनिटी के लोग हैं काफी तादाद में इकट्ठा हो गए, नमाज जो पढ़ी जाती उसको रोकने की बात कह रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ मैं आशीष श्रीवास्तव आज तक।
2: मैं मुख्यमंत्री जी तक यही तो अपनी बात रखना चाहता हूं कि मालिक बसाने वाला होता है, आक्रमण करने वाला मालिक नहीं होता है। महोदय, हर तरीके से हिंदुओं को क्यों हर जगह दबाया जा रहा है? अब यही प्रकरण काकोरी में है। शिवलिंग को बार बार बेलचे से उखाड़ने का काम किया, वो काकोरन पर भरपासी जी की धरती है, 800 साल पुराना शिव मंदिर है। वहां पे लोग जो है चहला करते हैं, घर का नालिक पानी भेजते हैं और जानबूझ के ताकि यहां पे कोई ना आए।
3: सर आप ही बताइए, आप भी बुद्धिमान हम भी बुद्धिमान है, किसी का किला क्या इतना छोटा सा होता है? ये किसी की मैयत रखने का बना हुआ है, मकबरा बना हुआ है, दो आदमी उसमें दफन है, उसका मकबरा बना हुआ है, उसी आदमी ने यहाँ मस्जिद बनवाई है।
0: और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के फलता में पुनर्मतदान की फलता सीट पर ये मतदान जारी है। बाकी विधानसभा सीटों को मद्देनजर रखते हुए यहां पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है, लेकिन सुबह से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक बंपर वोटिंग है। सुबह 11 बजे तक करीब 43% मतदान हो चुका है। 29 अप्रैल को भारी धांधली की शिकायत के बाद यहां का चुनाव रद्द कर दिया गया था, इसी वजह से पुनर्मतदान हो रहा है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के हटने से ये सीट एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। जहांगीर खान का पुष्पा झुकेगा नहीं वाला डायलॉग चर्चा में आया था, लेकिन आज वो इलाके में नजर भी नहीं आ रहे हैं।
4: हम लोग इस वक्त आके पहुंच चुके हैं जहांगीर खान के घर के सामने। ये जो मंजिल है, ये घर है, ये जहांगीर खान की घर है, ये तीसरी मंजिले की घर इस वक्त दिख रही है, लेकिन ये अंदर से अब बंद है। और यहीं पे अब हम लोग खोज चलाएंगे कि कहीं पे जहांगीर खान अंदर है या नहीं है। चलिए सबसे पहले तो जहांगीर जी को बुलाते हैं। जहांगीर जी, कोई है क्या अंदर? जहांगीर जी, वैसे तो कोई दिख नहीं रहा है और सामने ताला भी मारा हुआ है यहाँ पे, और इस वक्त जो है कि सबसे हाई सेंसिटिव ये इलाका कहा जाता है, क्योंकि कहीं पे यहाँ पे बहुत सारे आरोप लगे हैं। दूसरी चरण की जो मतदान थी 29 तारीख को, उस समय पर क्योंकि हमने देखा कि कहीं पे लोग पूरी आंदोलन पे उतर आए रास्ते में, और उसके साथ साथ बीजेपी के तरफ से, दूसरे पार्टियों की तरफ से भी बहुत सारी ऐसी आरोप लगाए गई कि जहांगीर खान यहाँ पे मतदान करने नहीं देते हैं लोगों को अपने हिसाब के अनुसार। और यही जो घर है, ये घर की दूसरी तरफ से हम लोग ये मंजिलें देख सकते हैं कि वहाँ पे एक एयर कंडीशन मशीन लगाया हुआ है घर के सामने, और उसी के साथ साथ जो घर है वो बोला जा रहा है कि वही रूम के साथ और दो रूम नीचे है जहाँ पे जहांगीर खान रहते हैं। और अभी जो है हम लोग काफ़ी सारे नारे लगाए जहांगीर खान के लिए, पुष्पा के लिए, लेकिन अभी तक वो यहाँ पे मिले नहीं है।
0: और अब बात गर्मी की, उत्तर भारत में सूरज आग उगल रहा है। उधर जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से माहौल सर्द है। बर्फबारी की वजह से श्रीनगर लद्दाख हाईवे को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक ऐसे मौसम रहने का अनुमान जताया है। ये तस्वीरें देखिए, एक तरफ भीषण गर्मी, हम और आप गर्मी से जूझ रहे हैं, और वहां पर श्रीनगर ले लद्दाख हाईवे पर इस तरह का नजारा है। वहां पर बर्फबारी हो रही है, ये श्रीनगर की तस्वीर आप देख रहे हैं। वहीं करगिल में भी भारी बर्फबारी हुई है। द्रास में भी जो तस्वीरें आई है वहां पर बर्फबारी की रिपोर्ट्स आ रही है। अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरह का मौसम वहां पर रहेगा, इस तरह का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है।
5: एक तरफ जहां पूरे देश में गर्मी के मौसम में हाहाकार है और तापमान नए कीर्तिमान बना रहा है, वहीं पर कश्मीर में मौसम अचानक बदल रहा है। ये मार्च, अप्रैल और मई के दौरान भी देखने को मिल रहा है। कल यानी बुधवार को अगर श्रीनगर की बात की जाए तो तापमान 30 डिग्री था, इस वक्त श्रीनगर का तापमान मात्र 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। न सिर्फ पूरे कश्मीर में अलग अलग जगहों पर बारिशें हो रही हैं, बल्कि पहाड़ों पर एक बार फिर इस गर्मी के मौसम में ताजा बर्फबारी शुरू हुई है। श्रीनगर करगिल हाईवे को बर्फबारी के कारण बंद करना पड़ा है, क्योंकि गुमरी, जोजिला और पंद्रास जो पहाड़ी जगहें हैं वहां पर करीब 2 से 4 इंच बर्फबारी कल शाम से हुई है, जिससे ये तापमान में गिरावट आई है। दरअसल कश्मीर में जिस अंदाज से मौसम अचानक करवट बदलता है और तापमान में अचानक गिरावट भी आती है और बढ़ोतरी भी हो रही है, वो साफ संकेत दे रहा है कि ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है। फिलहाल मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2-3 दिन के दौरान कश्मीर में मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा, लेकिन इस सुहाने मौसम का मजा लेने के लिए हजारों की तादाद में कश्मीर पर्यटक पहुंच रहे हैं।
0: इसी के साथ यहां रुकेंगे शुरू से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, टिकते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
7: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट, McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
8: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's, limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Ba-da-ba-ba-ba.
9: TuneIn has got all your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news.
10: You know, the breaking news is this started long before he even announced for president. It was
9: to live sports action.
11: To the near side corner, to wrap around, he scores!
9: And your favorite music.
12: You and I, stargazing.
9: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn. Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long.
13: This guitar about as hard as a can.
9: To top 40 hits you just can't get enough of.
13: Thank God I get to.
9: TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
14: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
15: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
16: इसमें माइक्रोफाइबर है।
15: माइक्रोफाइबर यानी
16: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत,
15: हमारे सीमेंट में नहीं है,
16: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
17: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
18: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
19: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
20: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट,
6: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
7: Like I said before, we better hold this in.
8: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
9: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
10: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
11: सर, हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
12: पर मार्केट की समझ ना, बाउंसर जा रही है।
11: आप कैसे कर लेते हो?
13: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
12: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो, और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो,
13: तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
14: नहीं,
12: और म्यूचुअल फंड्स है
14: सही।
15: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
16: करेक्ट, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
17: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
18: In association with
19: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
20: Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.
21: Owning a home is full of surprises. Some wonderful, some not so much. And when something breaks, it can feel like the whole day unravels. That's why HomeServe exists. For as little as $4.99 a month, you'll always have someone to call. A trusted professional ready to help, bringing peace of mind to 4.5 million homeowners nationwide. For plans starting at just $4.99 a month, go to HomeServe.com. That's HomeServe.com. Not available everywhere. Most plans range between $4.99 to $11.99 a month your first year. Terms apply on covered repairs.
22: During Memorial Day at Lowe's, shop household must-haves for less. Save $80 on the Charbroil Performance Series 4-Burner Grill to chef up something special. Plus, get up to 45% off select major appliances to keep things fresh. Our best lineup is here at Lowe's. Lowe's, we help, you save. Valid through 5/27, while supplies last. Selection varies by location. See Lowe's.com for details.
23: Visit your nearby Lowe's on Richmond Highway in Alexandria.
24: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. Jam out to your favorite songs with today's hits. TuneIn has got you covered with the top songs of today. From pop songs to EDM bangers. The hits are on. And hip-hop beats.
25: I'm in the game, I shoot that joint with this G23.
24: Today's hits will keep the party going 24/7. Listen now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
26: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
27: इसमें माइक्रोफाइबर है।
26: माइक्रोफाइबर यानी
27: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत,
26: हमारे सीमेंट में नहीं है,
27: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
28: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
2: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
3: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
1: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
4: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
2: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
1: जहां खबर वहां खबरदार।
5: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
6: यहाँ से मैं रसगुल्ला खाए बिना नहीं।
7: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूँ अंजना ओम कश्यप।
8: और हम लोग इस वक्त खड़े हैं भवानीपुर में ही।
9: श्वेतपुर, मेरे नाम की स्पेलिंग वाला श्वेतपुर।
10: किसी का मन हुआ चलो झालमुड़ी खाए, ओके।
8: शुभेंदु अधिकारी,
11: यहाँ पर पिक्चर साफ हो चुकी है। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे।
12: नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर तपस सिंह गुप्ता,
13: अनुपम मिश्र,
14: मोहम्मद भारद्वाज,
15: पीयूष मिश्रा,
16: मौसमी सिंह, कोलकाता आज तक।
17: बीजेपी वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं। नरेंद्र मोदी ने जो करना था पिछले 3 महीने में, जो आपकी प्रोटेक्शन करनी थी, जो दीवार, आर्थिक दीवार खड़ी करनी थी आपके लिए, वो उन्होंने नहीं की। उल्टा वो जाकर मेलोनी जी के साथ टॉफी खा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं जैसे मजाक चल रहा है।
18: दिल से आपका धन्यवाद करता हूं, आप दूर दूर से आए, गर्मी में आपसे बात सुनी, मगर अब आप जब आप घर जाओगे, जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अम्बेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए,

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Acoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: नीट पेपर लीक मामले में जयपुर में जबरदस्त प्रदर्शन, सड़क पर पुलिस से भिड़े कार्यकर्ता, संसद की स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेश हुए एनडीए चीफ अभिषेक सिंह। इटली से स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री, आज शाम लेंगे मंत्रिपरिषद की बैठक। 3.0 कार्यकाल की होगी समीक्षा, शाम 5 बजे सभी केंद्रीय और राज्य मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा। बंगाल में शुभेंदु सरकार का बड़ा आदेश, मदरसों में वंदे मातरम गाना होगा अनिवार्य। आज दिल्ली पहुंचेंगे सीएम, बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सड़क पर उतरेंगी ममता। त्रिशा के पति समर सिंह ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में दी अर्जी, मौत के बाद सास ने किए थे 46 कॉल्स, कानून से जुड़े कई लोगों किया फोन, दोबारा पोस्टमार्टम पर अड़ा है परिवार। प्रचंड गर्मी से झुलसा हिंदुस्तान, अगले 3 दिन तक चलेंगे लू के थपेड़े। दुनिया के सबसे गर्म शहरों में शुमार यूपी का बांदा, तेजी से बढ़ रही मरीजों की संख्या। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है, आपके साथ मैं नेहा बाथम। बात करेंगे अपराध की दो खबरों की, बताएंगे त्रिशा मौत मिस्ट्री और सास के 46 फोन कॉल्स का क्या कनेक्शन है, साथ ही ये भी बताएंगे कि परिवार को क्यों हाईकोर्ट जाना पड़ा है, आखिर क्यों एक पिता ने अपनी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर दिए, ये दूसरी खबर होगी, क्यों बक्से में बंद कर धर ट्रेन में छोड़ाया। शुरुआत कर रहे हैं लखनऊ के साथ, जहां से बड़ी खबर आ रही है, बाप ने ही बेटी को टुकड़े टुकड़े करके मार दिया। पुलिस के मुताबिक अपनी 15 साल की बेटी को सिर्फ इसलिए बेरहमी से मार डाला क्योंकि वो हिंदू लड़के से बात कर रही थी। इसे देखकर बाप का गुस्सा भड़क गया, बेटी का सर धड़ से अलग कर दिया और धड़ बक्से में बंद कर ट्रेन पर सवार हो गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब गोमती एक्सप्रेस छपरा पहुंची और लोगों ने एक लावारिस बक्सा देखा, बक्सा का ताला तोड़ने पर धड़ मिला, साथ ही एक थैली में हाथ पैर मिले। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाला तो पता चला कि कुशीनगर में बक्से को चढ़ाया गया, सीसीटीवी में 3 लोग नजर आए, इनमें उसका पिता बिग्गन अंसारी, फूफी नूरजहां और फूफा मुजीबुल्ला शामिल थे। पुलिस ने 3 को दबोच लिया है, सारा सच सामने आ चुका है। 15 साल की बेटी शब्बा दूसरे समुदाय के युवक से फोन पर बात करती थी। बिग्गन ने कई बार बेटी को समझाया कि लड़के से दूर रहे, कई बार चेतावनी दी, लड़की नहीं मानी। इससे पहले उसकी 2 बेटियां कहीं चली गई थी, अब तीसरी बेटी भी उसी राह पर थी जिसके चलते उसे बदनामी का डर था। इसी गुस्से में बिग्गन ने पहले अपनी पत्नी, दोनों बेटों को रिश्तेदार के पास भेज दिया, फिर 16 मई को अपनी बहन नूरजहां और बहनोई को बुलाया और अपनी बात बताई। बदनामी के डर से बिग्गन अंसारी ने पहले बेटी की हत्या की और फिर शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने गांव के तालाब में उसे फेंक दिया, धड़ को टिन के बक्से में डाला, हाथ पैर एक थैले में रख लिए। घर से करीब 4 किलोमीटर दूर स्थित तमकुही रोड स्टेशन गए जहां तीनों ने ट्रेन के स्लीपर कोच में शव के टुकड़े वाला थैला और टिन का बक्सा रख दिया और बगल के एसी कोच से उतर गए।
1: इस ट्रेन के कोच S1 में एक बॉक्स और एक बैग रखा हुआ था जो कि स्लीपर कोच है। रूटीन चेकिंग के दौरान जब रेलवे स्टाफ को यह मिला तो उन्होंने इसकी सूचना स्टेशन मास्टर को दी और वहां से सूचना RPF GRP को भी प्राप्त हुई, जिस पर 4-5 GRP की पुलिस और सभी लोग मौके पर पहुंचे। कमिश्नरेट लखनऊ से फील्ड यूनिट के लोग बुलाया गया और बॉक्स को और बैग को खोला गया तो बॉक्स के अंदर एक डेड बॉडी जिसका केवल धड़ था, सर नहीं था, और हाथ पैर जो कि अलग पॉलिथीन में और बॉडी पॉलिथीन में पैक करके बॉक्स में थी, हाथ और पैर पैक करके बैग में रखे हुए थे।
0: आशीष श्रीवास्तव में सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, कई बार बेरहमी शब्द भी छोटा पड़ जाता है, वानियत की ऐसी हदें पार हो जाती हैं कि इंसानियत और साथ ही जिस तरीके से शैतान काम करते हैं उसके बीच कोई फर्क ही नहीं रह गया।
2: बिल्कुल नेहा, देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये सनसनीखेज वारदात करते समय उस पिता की हाथ नहीं कांपे जब उसने बांके से अपनी बेटी को ही दर्दनाक मौत दे दी। यही नहीं, उसने सर धड़ और पैर अलग अलग कर दिए और जब उस बॉक्स में उस शव को डाल रहा था तब उसके पैर और हाथ जब नहीं आते हैं तो अलग से एक पॉलिथीन में उसको भर के रखता है। यानी कि ये खौफनाक मंजर उस समय का है जब वो बेटी उसकी किसी से बात कर रही होती है और उसको ये नागवार गुजरता है कि क्यों वो बात कर रही है, और इसको लेकर वो बाकी से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता, और यही नहीं उसको ई रिक्शा से रखने के बाद सीधे स्टेशन ले जाता है और स्टेशन पे उसको बॉक्स को उस ट्रेन में रखता है जो ट्रेन लखनऊ की तरफ रवाना होती है। यानी कि बॉक्स और पॉलिथीन रखने का साफ मैसेज था कि उसकी आंखों में डर बिल्कुल नहीं था, और जिस तरीके से उसने अपनी बेटी का कत्ल किया है ये जरूर जाहिर करता है कि उस खौफनाक तरीके से वह चाहता था कि उसको दर्दनाक मौत मिले, और यही वजह थी कि उसने बॉडी के अलग अलग पार्ट कर दिए, हाथों को काटा, पैरों को काटा, उसके धड़ को काटा और फिर उसको ट्रेन में रखकर आगे बढ़ाया, और इसमें उसकी मददगार बहन और बहनोई भी रहे। ये साफ उस जगह का वाकया आप सोचिए कि जब उसको काटा गया था उस दौरान ना घर में किसी ने आवाज सुनी और ना ही किसी बाहर सुनी। बताया ये भी जा रहा है कि जब वो सो रही थी उस दौरान इसने अटैक किया और कहीं ना कहीं बाके से इस कत्ल को अंजाम दिया। तो एक खौफनाक ये जो वारदात हुई है जिसको पूरे उत्तर प्रदेश को चौंका दिया है। साफ तौर से उस पिता ने जो कब्बन अंसारी करके है वो बांके से जिस तरीके से काटा है शायद ही कोई बाप कभी बेटी के लिए ये सपने में भी सोच सकता था। इसके बाद आज जब उसको गिरफ्तार किया गया उसके चेहरे पे जरा सा भी खौफ नहीं है, जरा सा भी डर नहीं है, पश्चाताप नहीं है, और वो साफ तौर से पुलिस के सामने चिल्लाता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि जरूर वो लड़का हिंदू धर्म से था जहां से उससे बातचीत होती थी, और ये पूरा परिवार नहीं चाहता था कि यानी कि उसकी बहन बहनोई और ये पिता नहीं चाहता था बात की जाए। और जब उसने हत्या की तब उसकी माँ बाहर गई थी यानी दो बच्चों को लेकर, उस दिन का वो इंतजार कर रहा था कि कब वो अकेले में अपनी बेटी को पाए और उसके टुकड़े टुकड़े कर दे। और यही वजह थी कि चॉप करने के बाद उसकी बॉडी को अलग अलग टुकड़े करने के बाद उसको बॉक्स में भरा गया, और जब बॉक्स में पूरी बॉडी नहीं आई तब उसको हाथ और पैर को पॉलिथीन में भी रखा गया अलग से। यानी कि ये दर्दनाक और ये खौफनाक मंजर करते समय उसने लड़की का मुंह भी दबाया जिससे कि आवाज ना आए और एक तरीके से पूरी इस बॉडी को कत्ल कर दिया। तो ये खौफनाक कहानी जरूर स्टेशन से जब पकड़ में आई, जब सीसीटीवी फुटेज एक सामने आया जिसमें दो लोग दिखाई दिए उस बॉडी को ई रिक्शा से रखते हुए स्टेशन पर ट्रेन में, और उसके बाद जाते हुए इसके साथ साथ कई ऐसी जो लोग थे यात्री थे उनसे भी पूछताछ की गई, उन्होंने भी इसकी तफ्तीश की कि हाँ इस तरीके का शख्स एक वहां
0: ठीक है। मैं लौटूंगी आगे आशीष, तो ये बेहद सनसनीखेज घटना जिसमें सीसीटीवी के माध्यम से अब पिता, बुआ और फूफा को पकड़ लिया गया है, तीनों इस वारदात में शामिल थे, बेरहमी से इस लड़की का कत्ल किया गया, उसके बाद शव के टुकड़े टुकड़े करके इस बक्से में भर दिए गए जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अब देखिए हमारी खास पेशकश, वो 46 कॉल।

0: ट्विशा मौत मिस्ट्री, अब ये मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है। ट्विशा के पिता ने इंसाफ की गुहार लगाई है, सुसाइड थ्योरी पर वो सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि हत्या को सुसाइड दिखाने की कोशिश की गई। उन्होंने सास के 39 कॉल्स पर सवाल उठाए हैं जो मौत के दिन 12 मई और उसके अगले दिन भी किए गए। पिता का दावा है कि सास गिरिबाला सिंह ने जज और रसूखदार लोगों को फोन किया। उन्होंने हाईकोर्ट से गिरिबाला की अग्रिम जमानत रद्द करने की अपील की। ट्विशा के पिता को भी पुलिस तलाश नहीं, पति को पुलिस नहीं तलाश पाई है। इनाम भी बढ़ाकर अब 30,000 रुपए कर दिया गया है। अब मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है। पिता ने अर्जी लगाई है और ये कहा है कि इस पूरे मामले में सुसाइड का एंगल ट्विशा के ससुराल वालों ने दिया है, उसकी जांच की जानी चाहिए। तो ये केस बुरी तरह से उलझा हुआ है। पुलिस कई थ्योरी पर काम कर रही है, परिवार के दावों के जवाब भी पुलिस नहीं दे पा रही है।
1: उसका वहीं से तो शुरू हुआ, हमें जानकारी हुई कि शी वॉज कंज्यूमिंग मारुआना, उसने एडमिट किया मेरे सामने।
2: समर्थ बहुत बड़े ड्रग एडिक्ट हैं, पुरानी हिस्ट्री है इनकी।
3: ये तस्वीरें, ये घर और ये सीढ़ियां अब एक रहस्य का हिस्सा बन चुकी हैं। ट्विशा की मौत को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन सच अब भी धुंध में छिपा है। कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, लेकिन गुत्थी वही है। पुलिस आत्महत्या बता रही है, लेकिन घर वालों को इस थ्योरी पर यकीन नहीं है। ट्विशा के घर वालों को सीसीटीवी की इन तस्वीरों पर भरोसा नहीं हो रहा। उन्हें लगता है कि तस्वीर के पीछे का सच कुछ और है, काफी कुछ छिपाया जा रहा है, वारदात को ट्विस्ट किया जा रहा है। पिता का आरोप है कि ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह ने अपने पुराने दबदबे का इस्तेमाल कर हत्या को आत्महत्या में बदल रही हैं। घर वालों का दावा है कि गिरिबाला ने ट्विशा की मौत के दिन यानी 12 तारीख और उसके अगले दिन यानी 13 तारीख को कुल 46 कॉल किए। ये सारे फोन बड़े लोगों को किए गए, इनमें से कुछ जुडिशियरी से जुड़े लोगों को भी किए गए। परिवार ने सारे कॉल की जांच की मांग की। उनकी मांग है कि सारे 40 कॉल की डिटेल सामने आए, सारी बातचीत का ऑडियो जारी हो।
4: विक्टिम की पीड़िता के परिवार द्वारा कुछ नंबर कल जारी करे गए थे, उन नंबर्स किसके हैं और ऐसी घटना, इतनी सीरियस घटना घट गई और उसके बाद ये अब विक्टिम के परिवार से बातचीत ना करके, उनको जानकारी ना देके किन लोगों से बात कर रहे थे, लगातार संपर्क में थे। उनका ऐसा आरोप है कि उसमें कोई सीसीटीवी वाला है जिससे इनने बात करी है, ऐसा पीड़िता के परिवार का आरोप है। तो उसकी सत्यता जानना जरूरी कि ये नंबर्स किन के हैं, इनके मालिक कौन है। कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस, चाहे वो बेल हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे वो एम्स हो, कहीं ना कहीं इनका इन्फ्लुएंस है और इन नंबर से हो सकता है हमको कोई जानकारी प्राप्त हो।
3: परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी यकीन नहीं हो रहा। परिवार दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम पर अड़ा है। लोअर कोर्ट से इस अपील को नकार दिया गया। अब परिवार हाईकोर्ट जा रहा है, जहां इस मांग के साथ ट्विशा की सास गिरिबाला की अग्रिम जमानत खारिज करने की अपील की जाएगी।
5: ट्विशा की मौत को अब करीब करीब 10 दिन होने वाले हैं, लेकिन 12 मई से यानी मौत के बाद से ही ट्विशा का शव एम्स की मॉर्चरी में रखा हुआ है। इस बीच परिवार को झटका लगा जब भोपाल की अदालत ने दिल्ली एम्स में सेकेंड पोस्टमार्टम की याचिका को खारिज कर दिया। अब परिवार के सामने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं है। परिवार हाईकोर्ट में ट्विशा के सेकेंड पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को लेकर याचिका लगाने वाला है, लेकिन इन सबके बीच सवाल यही है कि क्या शव अब उस स्थिति में होगा कि सेकेंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी सच सामने आ सके।
3: भोपाल पुलिस मामले को आत्महत्या बता रही है। पुलिस कमिश्नर ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि पोस्टमार्टम और लिगेचर रिपोर्ट मेल खा रही है, दोनों रिपोर्ट आत्महत्या की ओर इशारा कर रही है। ये जांच का विषय है कि आत्महत्या किन परिस्थितियों में हुई,
6: साइड किन परिस्थितियों में हुआ, वो एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस रहती है उसके अलग से। जिस बेल्ट का जिक्र कर रहे हैं वो बेल्ट एफएसएल द्वारा सीज किया गया था, सीज करके उसको प्रॉपर थाने के मालखाने में रख दिया था। पीएम रिपोर्ट में बहुत सारे आइटम भेजे जाते हैं, किसी कारण से वो बेल्ट उस समय नहीं भेजी जा सकी थी, उसकी हम अलग से इंक्वायरी करवा रहे हैं। लेकिन बाद में जब वो बेल्ट हमने भेजी और वो प्रॉपरली सील्ड थी बेल्ट, कोई ऐसा नहीं है कि उसके साथ कोई छेड़खानी हुई है, वो जो बेल्ट हमने भेजा तो डॉक्टर ने उसको एग्जामिन किया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी।
3: त्रिशा का पति समर्थ सिंह अब भी फरार है, पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही है लेकिन वो हाथ नहीं आया। पहले उस पर 10,000 के नाम घोषित हुआ था, अब इसे बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया। यानी पुलिस भी मान रही है कि समर्थ तक पहुंचना इस केस की सबसे बड़ी कड़ी हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, अगर ये आत्महत्या थी तो मौत के बाद इतनी हलचल क्यों हुई, पति फरार क्यों है, और अगर हत्या नहीं हुई तो त्रिशा को ऐसे हालात में क्या धकेला गया जहां उसने खुद जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। क्योंकि कानून में सिर्फ हत्या ही अपराध नहीं होती, किसी को मानसिक तौर पर इस कदर तोड़ देना कि वो मौत चुन ले, ये भी कटघरे में खड़ा करता है। मांग सीबीआई जांच की हो रही है, क्या मोहन यादव सरकार इसे सीबीआई को सौंपेगी? आत्महत्या और हत्या के बीच की ये धुंध साफ हो पाएगी? क्या त्रिशा की मौत का सच सामने आ पाएगा या ये मामला भी सवालों के अंधेरे में खो जाएगा? रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
0: रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रवीश, उन 46 कॉल्स पर अब क्या फोकस रहेगा पुलिस का इंक्वायरी के दौरान? और ये तो सर्वव्यापी है कि अबेटमेंट और टू सुसाइड भी अपने आप में गंभीर मामला है जो सास और पति दोनों पर बनता है। पति की कॉल डिटेल्स या फिर मोबाइल सर्विलांस से क्या अभी तक मालूम नहीं चल पाया कि वो कहाँ है?
5: देखिए, जो पुलिस के सूत्रों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा है कि फिलहाल समर्थ अपना फोन तो इस्तेमाल कर नहीं रहा है, इसलिए उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाएगी, क्योंकि टेक्निकल एविडेंस तो फोन के आधार पर ही काम करते हैं। क्योंकि समर्थ अपना फोन इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो उस तक तो पहुंच पाना फोन के जरिए फिलहाल मुमकिन नहीं है। हालांकि कोर्ट ने कल जब ऑर्डर दिया है तो उसमें यह भी कहा है कि समर्थ को जल्द से जल्द हाजिर होना होगा, या तो पुलिस उसे गिरफ्तार करे या फिर वो कोर्ट में सरेंडर करे या पुलिस के सामने सरेंडर करे, ये तीन विकल्प उसके सामने मौजूद है। लेकिन इन सबके बीच में बड़ी खबर यह है कि समर्थ ने जबलपुर हाई कोर्ट में भी अग्रिम जमानत याचिका लगा दी है। तो इन सब के बीच में सवाल यही है कि एक आरोपी जो पहले भोपाल की जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका लगाता है, यहां से वो खारिज हो जाती है तो अब वो जबलपुर हाई कोर्ट में उसके वकील की तरफ से जमानत याचिका लगाई गई है। लेकिन समर्थ कहां है, पुलिस उसे क्यों नहीं पकड़ पा रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। जैसे कि त्रिशा के परिवार वाले शुरू से आरोप लगा रहे हैं कि जो उसके ससुराल पक्ष के लोग हैं वो न्यायपालिका में बैठे हुए ताकतवर लोग हैं और कहीं ना कहीं वो होल्ड रखते हैं उस न्यायपालिका में, इसलिए ये पूरा मामला जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर के पुलिस की जांच तक और लिगेचर का समय पर पोस्टमार्टम पर नहीं पहुंच पाना, ये तमाम जो चीजें हैं ये परिवार के
0: त्रिशा की मौत कैसे मिस्ट्री बन गई है, ये कई सवालों से भी जाहिर हो रहा है। फिर चाहे मामला सीसीटीवी फुटेज का हो या फिर एफआईआर में देरी का, सवाल ये भी है कि अगर सुसाइड का ही मामला है तो पति क्यों फरार है, सास को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया और उन्हें डर क्यों लग रहा है?
6: ये सुसाइड का मामला है, हत्या का मामला नहीं है, सिंपल इंजरी है, हालांकि वो भी हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जिस बेल्ट का जिक्र कर रहे हैं वो बेल्ट एफएसएल द्वारा सीज किया गया था, सीज करके उसको प्रॉपर थाने के मालखाने में रख दिया था, वो प्रॉपरली सील्ड थी बेल्ट, कोई ऐसा नहीं है कि उसके साथ कोई छेड़खानी हुई है। इसमें तो बहुत जल्दी एफआईआर हुई है, कई बार बड़ा अपराधी बहुत जल्दी पकड़ा जाता है।
7: त्रिशा मौत मिस्ट्री खुदकुशी और मर्डर के बीच झूल रही है। धुंध इसलिए गहरा है क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जो आत्महत्या थ्योरी पर शक पैदा करते हैं। मसलन सेलेक्टिव सीसीटीवी कैसे जारी हुई, सुसाइड वाले बेल्ट की जांच क्यों नहीं हुई, 12 को मौत 3 दिन बाद एफआईआर क्यों, त्रिशा की चोट पर पुलिस गोलमोल क्यों, विसरा रिपोर्ट से पहले सुसाइड थ्योरी क्यों, सामान्य मौत तो पति समर्थ फरार क्यों, सास को अग्रिम जमानत की जल्दी क्यों थी, सवालों की पूरी फहरिस्त है। लेकिन भोपाल पुलिस से लेकर सारे महकमे त्रिशा केस को सुसाइड बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। अब पुलिस कमिश्नर को ही लीजिए, संजय कुमार सिंह ने पूरी जांच से पहले ही फैसला सुना दिया कि आत्महत्या है, इन्हें तो जैसे विसरा रिपोर्ट की जरूरत ही नहीं।
6: नहीं, अभी तक की जो हमारे इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये एंटीमार्टम हैंगिंग का मामला है, यानी कि हत्या का मामला नहीं है।
5: तो इसे क्या माना जाए, आसान शब्दों में अगर आप समझाना चाहें।
6: नहीं, आसान शब्दों में कि ये सुसाइड का मामला है, हत्या का मामला नहीं है।
5: परिवार लेकिन गंभीर आरोप लगा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है काफी फिजिकल डिस्क्रिप्शन अलग था, उसकी हाइट अलग थी, पोस्टमार्टम में अलग बताई गई, लिगेचर जो है वो देर से पहुंचा पोस्टमार्टम के।
6: नहीं, वो क्या है कि ये पीएम रिपोर्ट एक्सपर्ट की रिपोर्ट होती है, तो इसी पर हम रिलाई करते हैं। उसके अनुसार ये मामला एंटीमार्टम हैंगिंग का है, यानी कि ये सुसाइड का मामला है। अब सुसाइड किन परिस्थितियों में हुआ वो एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस रहती है उसकी अलग से।
7: ट्रिशा के परिवार की वकील सीमा कुशवाहा भी पुलिस की थ्योरी पर सवालों की बौछार कर रही है। उन्हें एफआईआर से लेकर पूरी जांच तक पर भरोसा नहीं है। उन्हें लगता है कि कदम कदम पर ट्रिशा की सास का दखल काम कर रहा है।
4: संदिग्ध हालतों में मौत होने के बाद जहां उसको सहानुभूति तो छोड़ी, किस तरीके की मीडिया में आके वो बातें कर रही हैं, उसके अगेंस्ट उसको पागल बनाने की कोशिश कर रही हैं। एक डेड बॉडी पड़ी हुई है आज एम्स में, 10 दिन से हम लोग मांग कर रहे थे सेकंड पोस्टमार्टम की, शासन प्रशासन सबसे करा, वो नहीं मिली। लेकिन एफआईआर हमें 3 दिन से मिली लेकिन जमानत 2 दिन में हो गई। ऐसा कानून सही नहीं है, ऐसे सिद्धांत भी सही नहीं है। जो
7: ट्रिशा के पति समर्थ को भोपाल पुलिस पकड़ नहीं पा रही है, दूसरी तरफ दूसरी आरोपी यानी ट्रिशा की सास जो कभी जज थी, वो पहले ही अग्रिम जमानत का सर्टिफिकेट लिए पुलिस को खुद से दूर कर चुकी है। अब ऐसे में ट्रिशा की मौत के पीछे का असली सच कैसे सामने आए, ये सवाल छूट गया कि जब एफआईआर में आरोपी नंबर 1 के तौर पर पूर्व जज और ट्रिशा की सास गिरिबाला सिंह का नाम दर्ज है और उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए पहले से ही अग्रिम जमानत ले ली है, तो भोपाल पुलिस ने उन्हें अग्रिम जमानत देने वाले उस कोर्ट के फैसले को अब तक चुनौती क्यों नहीं दी। लगता है भोपाल पुलिस को पूर्व जज साहिबा को गिरफ्तार करने या उनसे पूछताछ करने में कोई दिलचस्पी ही नहीं।
5: ट्रिशा की मौत मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब ट्रिशा के परिवार ने 46 मोबाइल नंबरों की एक सूची जारी की है और दावा किया है कि ट्रिशा की मौत के अगले दिन यानी 13 मई को सास गिरिबाला सिंह ने इन मोबाइल नंबरों पर कई कई बार बात की। ट्रिशा का परिवार शुरू से ही उसके ससुराल पक्ष के लोगों पर ताकतवर और इन्फ्लुएंशियल होने का आरोप लगाता आया है। परिवार का दावा है कि इसी ताकत की वजह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर पुलिस की जांच तक में उसका असर देखा गया। अब देखना यह है कि ट्रिशा के परिवार ने जो मोबाइल नंबर जारी किए हैं वो जांच की दिशा में कितनी अहम कड़ी साबित होते हैं, क्योंकि ट्रिशा के परिवार के वकील ने दावा किया है कि वो इसे लेकर भोपाल की अदालत में याचिका लगाने वाले हैं कि इन नंबरों से जुड़ी हुई हर एक जानकारी पुलिस को उपलब्ध कराई जाए।
7: हैरानी तो यह है कि मौत के बाद अपनी बहू पर ही गिरिबाला आरोप लगाती रही। मसलन वो घंटों फोन पर बात करती थी, घर से गायब रहती थी, पूछने पर बताती नहीं थी। सवाल यह है कि ट्रिशा के जीते जी यही शिकायत आपने कभी ट्रिशा के घर वालों से क्यों नहीं की?
5: निकले मैम किससे बात करती थी वो आप बताएं, देर देर तक फोन हेडफोन लगा।
8: अभी हम लोग वही निकलवा रहे हैं, किससे बात हो रही थी। ठीक,
7: जाहिर तौर पर पुलिस केस को जितना सीधा बता रही है वो इतना ही उलझा हुआ है। ऐसे में परिवार का शक दूर होना चाहिए, मामले को सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए। रविश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
0: वक्त शो से ब्रेक का हौसला, टिकते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: बात पश्चिम बंगाल की फलता सीट का, जहां दोबारा मतदान हो रहा है। बंगाल के बाकी विधानसभा सीटों की तरह यहां भी बंपर वोटिंग हो रही है। दोपहर 1 बजे तक 61% मतदान हो चुका है। फलता में 29 अप्रैल को भारी धांधली की शिकायत के बाद यहां चुनाव रद्द हो गया था, इसी वजह से दोबारा वोटिंग हो रही है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के अड्डे से ये सीट फिर से चर्चा में आ गई। लंच ब्रेक में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
11: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More favorite country roads.
12: Thank God I get to wake
11: and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
9: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste.
13: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
14: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
11: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
15: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
9: Complete oral health.
16: ससुराल पक्ष तो फॉर्चूनर गाड़ी मांग रहा है 51 लाख रुपए मांग रहा था।
17: आखिर ऐसा क्या हुआ कि ग्रेटर नोएडा की बेटी को जान गंवानी पड़ी? घर वालों ने नाजों से पाला, बड़े अरमानों से शादी की, 1 करोड़ से ज्यादा खर्च किए, स्कॉर्पियो कार तोहफे में दिया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ दिन बाद ससुराल वाले राक्षस बन जाएंगे, दहेज के लिए बेटी को सताने लगेंगे, फॉर्च्यूनर कार के लिए मारने पीटने लगेंगे। ग्रेटर नोएडा के रहने वाले संजय नागर का आरोप है कि बेटी की शिकायत के बाद वो उससे मिलने ससुराल भी गए थे और लौटते ही बेटी के छत से गिरने की खबर आ गई। ससुराल वालों ने बताया कि दीपिका छत से गिर गई है। अस्पताल पहुंचने पर दीपिका के घर वालों को पता चला कि दीपिका अब इस दुनिया में नहीं है। 3री मंजिल से गिरने से उसकी मौत हो चुकी है। पिता को यकीन नहीं हो रहा कि बेटी की मौत गिरने से हुई। उनका आरोप है कि बेटी को छत से धक्का देकर मारा गया। वो चोटों के निशान का हवाला देते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इसकी तस्दीक कर रही है। रिपोर्ट बताती है कि दीपिका के चेहरे, कोहनी, जांघ, घुटने, कमर, पेट सब जगह गहरे निशान मिले। मामला इकोटेक थाना इलाके का है। दीपिका के घरवाले कुड़ीखेड़ा गांव के रहने वाले हैं, जबकि उसका ससुराल जलपुरा में है।

प्रेंगी ममता। नीट पेपर लीक मामले में जयपुर में जबरदस्त प्रदर्शन, सड़क पर पुलिस से भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता, संसद की स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेश हुए एनटीए चीफ अभिषेक सिंह। विशा के पति समर्थ सिंह ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में दी अर्जी, मौत के बाद सास ने किए थे 46 कॉल, कानून से जुड़े कई लोगों को किया फोन, दोबारा पोस्टमार्टम पर अड़ा है परिवार। प्रचंड गर्मी में झुलसा हिंदुस्तान, अगले 3 दिन तक चलेंगे लू के थपेड़े, दुनिया के सबसे गर्म शहरों में शुमार यूपी का बांदा, तेजी से बढ़ रही है मरीजों की संख्या।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। दोपहर के दो बज गए हैं। जैसा कि आपको बताया था कि न्यूज रूम लाइव में, न्यूज रूम से हम कई खबरों के बारे में आपको बताएंगे, तो न्यूज रूम लाइव में आज हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहले किन खबरों के बारे में आपको बताने वाले हैं। आज सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूज रूम लाइव में, जहां पर कुछ देर बाद एक बैठक होने वाली है, और यह बैठक होगी मंत्रिपरिषद की बैठक, और फेरबदल की भी आहट यहां पर सुनाई दे रही है। मोदी मंत्रिमंडल 3.0 की बैठक क्या होने वाला है, यह हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही दूसरी और बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं, शुभेंदु अधिकारी से जुड़ी हुई, कि शुभेंदु अधिकारी ने किस तरह के फैसले लिए हैं, और अब आखिर वंदे मातरम गाना कहां पर अनिवार्य किया, ये हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही तीसरी बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं, और जो तीसरी बड़ी खबर होगी वो होगी कॉकरोच से जुड़ी हुई। महज कुछ दिनों का वक्त और कॉकरोच जनता पार्टी में इतनी भीड़ जुड़ चुकी है, सोशल मीडिया पर बीजेपी से भी बड़ी पार्टी बन चुकी है, अकाउंट बन चुका है जिसमें बहुत से लोग फॉलो करते हैं, ये सोशल मीडिया की बात की जा रही है। इसके अलावा बात होगी अग्नि परीक्षा की, मौसम की अग्नि परीक्षा, दोपहर 2:30 बजे हम आपको उसको डिटेल में बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि कहां कहां कितना असर हो रहा है, लोग कितने परेशान हो रहे हैं, और गर्मी का सितम किस कदर देखा जा रहा है। लेकिन सबसे पहले जैसा आपको बता देते हैं, बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बड़ी खबर ये कि मोदी मंत्रिपरिषद की बैठक अब से कुछ देर बाद, यानी लगभग मान के चलिए कि 3 घंटे बाद, 2.5 या 3 घंटे बाद ये शुरू हो जाएगी मंत्रिपरिषद बैठक है, और इसमें बदलाव की आहट भी सुनाई दे सकती है, दिखाई भी दे सकती है। देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की आज शाम 5 बजे ये बैठक है, यानी 3 घंटे का वक्त अभी है, और 3 घंटे के बाद ये आप कह सकते हैं रिपोर्ट कार्ड भी लिया जाएगा। अब 12 साल हो चुके हैं, तो ऐसे में क्या क्या कुछ नीतियां बनाई गई हैं और किस तरह से फेरबदल किया जा सकता है, इसको लेकर अब इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। खबर है कि प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ में होने वाली इस मीटिंग में सरकार के कार्यकाल की मध्यावधि समीक्षा की जाएगी, और प्रमुख सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रगति की समीक्षा किए जाने की भी उम्मीद है। करीब दर्जन भर मंत्रालयों की बैठक में प्रेजेंटेशन देने को कहा गया है, तो ये अब से कुछ देर बाद। इधर रुख करते हैं, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हिमांशु मिश्रा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मंजीत नेगी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, और ऐश्वर्या पालीवाल भी हमारी सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हिमांशु, बताइए कि इस बैठक से आज क्या माना जाए, क्या होगा इस बैठक में आज खास?
1: देखिए हिमांशु, ये 11 महीने बाद जो है ये बैठक होने जा रही है। लास्ट बैठक जो है मिनिस्टर ऑफ काउंसिल यानी कि मंत्रिपरिषद की जो बैठक है वो 4 जून को हुई थी, और इससे पहले जब ये बैठक रखी गई थी तो वो 7 मई को रखी गई थी, लेकिन उसको किसी कारणवश जो है पोस्टपोन किया गया था, टाला गया था, और अब ये बैठक जो है आज शाम 5 बजे होगी, जिसमें लगभग 10 मंत्रालयों की जो है वो प्रेजेंटेशन होगी, जिसमें पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है, कृषि मंत्रालय है, ऊर्जा विभाग की प्रेजेंटेशन है, लेबर मिनिस्ट्री की है, एटॉमिक एनर्जी की है, और उसके साथ साथ पर्यावरण मंत्रालय की भी जो है वो प्रेजेंटेशन होगी, और सभी सेक्रेटरी ये बताएंगे कि उनका अभी तक उन्होंने क्या किया है और आगे का जो फ्यूचर प्लान है यानी रोड मैप क्या रहने वाला है। इसके साथ साथ 2 साल के कार्य का कामकाज की जो है सभी मंत्रालयों की जो है वो रिपोर्ट मंगाई गई थी कि उनकी उपलब्धियां क्या है और उन्होंने कौन कौन सी नई पॉलिसी और नई नई परियोजनाओं का जो है वो शुरुआत किया है, उसका अभी फीडबैक क्या है, और उसके ऊपर किस तरीके का योजना कहां तक पहुंची है, ये तमाम चीजों को लेकर जो है वो चर्चा होगी। और उसके साथ साथ पश्चिमी एशिया में जिस तरीके का हालात बने हुए हैं उस पर सरकार किस तरीके से काम कर रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पश्चिमी एशिया के ये हालात बने थे तब ये कहा था, ये चाहे वो पेट्रोलियम मंत्रालय हो या उर्वरक मंत्रालय हो या विदेश मंत्रालय हो, ये उनसे जुड़े मामले नहीं है, ये पूरी सरकार से जुड़े हुए मामले हैं, और सभी को एक साथ मिलकर काम करना होगा और जो भी चुनौतियां हैं उससे पार पाना होगा। इसके साथ साथ ये जरूर रहेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी क्योंकि संबोधित भी करेंगे और मोदी सरकार 3.0 का दो साल जो है 9 जून को कंप्लीट हो जाएंगे, तो ऐसे में ये सही सुगबगाहट है सियासी हलकों के अंदर कि कैबिनेट रिशफल भी हो सकता है, यानी कि कैबिनेट में फेरबदल के भी एक संभावनाएं जो है, क्योंकि दो साल हो गए और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि दो साल हो जाए और किसी कैबिनेट के अंदर वो रिशफल
1: फेरबदल भी हो सकता है जैसा कि आप बता रहे हैं। हमारे साथ में मंजीत नेगी भी जुड़े हुए हैं। मंजीत, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी आपने देखा कि 5 देशों की यात्रा के बाद से आए हैं और उसके बाद अभी जिस तरह के हालात चल रहे हैं वो भी सभी देख रहे हैं, उसके बाद ये बैठक आपके पास इससे जुड़ी और क्या खबर आ पा रही है और कितने मायने निकाले जाए इस बैठक के?
2: हिमांशु, अगर हम प्रधानमंत्री की इस बैठक की बात करें तो इस वक्त जो देश दुनिया में हालात हैं, खासतौर से जो ईरान युद्ध के बाद के जो हालात पैदा हुए हैं, और आप देखिए कि प्रधानमंत्री की जो 5 देशों की यात्रा रही है उसकी शुरुआत यूएई से हुई थी। हालांकि विपक्ष उस पर सवाल उठा रहा था कि देश में इस वक्त आर्थिक संकट है, प्रधानमंत्री विदेश यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने यूएई से यात्रा की शुरुआत की जहां पर खासतौर से एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर बातचीत हुई है, क्योंकि वहां से भी बड़ी मात्रा में तेल और दूसरी चीज़ें आती हैं। और अगर आज की बैठक की बात करें तो ये बैठक प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है सेवातीर्थ में फरवरी में शिफ्ट होने के बाद आज ये सबसे एक बड़ी बैठक है जिसमें पूरी मंत्रिपरिषद है। और इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सुबह से ही जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति है उसके उससे भी इनपुट लिया है किस तरह से आर्थिक हालात को लेकर क्या तैयारी है सरकार की। खासतौर से
1: आपने कहा कि पीएम ने भी इनपुट लिया है, तो मैं चाहता हूं आप बने रहिए क्योंकि ऐश्वर्या इस वक्त हमारे साथ बीजेपी मुख्यालय से जुड़ी हुई है, तो ऐश्वर्या से जान लेते हैं। ऐश्वर्या, आपके पास क्या खबर आ रही है इस बैठक से जुड़ी हुई?
3: देखिए हिमांशु, मैं आपको तीन बातें बता दूं, तीन चीजें जो कि हमें देखने को मिलेंगी अगले 3 घंटे के अंदर जब बैठक चालू होगी। तो अब तक मोदी सरकार 3.0 के अंदर क्या कौन कौन सी वो चीजें हैं जिनको अचीव कर लिया गया है उनके ऊपर बातचीत होगी। दूसरी बात होगी कि कहां पे इस समय गैप्स सरकार को नजर आ रहे हैं, तो वो जो गैप्स हैं उनकी भरपाई किस तरह से हो, जो अचीव करना चाहती है सरकार अगर उसके अंदर छोटा सा कोई गैप है तो फिर उसकी भरपाई की जाए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात जो डिस्कस होगी, वेस्ट एशिया वॉर से जो इम्पैक्ट हिंदुस्तान पे पड़ रहा है, किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी को शील्ड किया जा सके, किस तरीके से कोशिश की जाए कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी जिस तरीके से बढ़ रही थी उसी तरीके से बढ़े, और कौन से मंत्रालय हैं जो फोरफ्रंट में आके इस चीज के अंदर सहायता कर सकते हैं, इन सब चीजों की महत्वपूर्ण बैठक आज शाम 5 बजे। हिमांशु,
1: और बिल्कुल ये महत्वपूर्ण बैठक कही जा रही है क्योंकि बहुत कुछ इसमें स्पष्ट होता हुआ दिखाई देगा। और इसी दौरान बीजेपी की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है, वो वीडियो जरा देख लेते हैं।
4: लेकिन जमीन पर असल में क्या बदला, आइए देखते हैं 12 बड़े बदलाव। पहले 550 साल का इंतजार, आज अयोध्या में विराजमान रामलला का भव्य मंदिर। पहले कश्मीर में पत्थरबाजी, आज आर्टिकल 370 खत्म और लाल चौक पर तिरंगा।
1: तो ये तो वीडियो यहाँ पर जारी किया गया। हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ में बने हुए हैं। हिमांशु, यानी ये माना जाए कि कितना कुछ काम हुआ है 12 साल में, आगे का क्या रोड मैप है, आज ये विजन बीजेपी की तरफ से स्पष्ट बताया जाएगा इस बैठक के बाद?
0: देखिए, क्योंकि 12 साल जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के हो चुके हैं और तीसरी सरकार के ये दूसरा साल जो है वो कंप्लीट होगा 9 जून को, तो कहीं ना कहीं ये अगर देखा जाए तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। 11 महीने बाद हो रही है और वेस्ट एशिया के जो हालात हैं उसको लेकर तो चर्चा होगी, उससे जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों से कैसे पार पाया जाए इसको लेकर जो है पूरा रोड मैप जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है वो सभी अपने मंत्रिपरिषद के जो सहयोगी हैं उनको बताया जाएगा। और साथ ही साथ जो 2 साल का उनका आकलन है काम का, वो आकलन किया जाएगा सभी मंत्रियों के कामकाज का। उनकी रिपोर्ट्स जो है सरकार ने पहले ही मंगा ली थी, उस रिपोर्ट के आधार पर एक पूरी प्रेजेंटेशन तैयार है, किस मंत्रालय ने कौन सी उपलब्धि हासिल की है, कौन सी नई परियोजना शुरू की है, वो ग्राउंड पे कहां तक पहुंची है, और अगर नहीं पहुंची है तो वो क्यों नहीं पहुंची है, उसके पीछे क्या है, उस परियोजना को नीचे तक लेके जाने के लिए क्या संभव चीजें की जा सकती है, तमाम इशू रहेंगे। और उसके साथ साथ लगभग 10 मंत्रालयों की जो है वो प्रेजेंटेशन होगी, जिनका नाम मैंने आपको पहले भी बताया, एग्रीकल्चर हो, लेबर मिनिस्ट्री की है, पावर मिनिस्ट्री की है, उसके साथ साथ पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से भी रिप्रेजेंटेशन है, एटॉमिक एनर्जी की है, DIP की भी एक प्रेजेंटेशन होगी। तो तमाम इस तरीके की प्रेजेंटेशन और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन रहने वाला, और इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि 2 साल इस सरकार के कंप्लीट हो रहे हैं और 2 साल ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि 2 साल के अंदर कोई भी कैबिनेट के अंदर रिशफल ना हुआ हो। हाँ, कोविड में एक बार ऐसा जरूर हुआ था, लेकिन लगभग 2 साल के बाद ही, यानी 2 साल 1 महीने के अंदर मंत्री जो है वो रिशफल कर दिया गया था 2019 में सरकार बनी थी 31 मई को, और 2021 के अंदर 7 जुलाई को जो है वो रिशफल किया गया था। तो 2 साल से थोड़ा समय ज्यादा लगा था क्योंकि कोविड की परिस्थितियां थी।
1: अच्छा, जब रिशफलिंग की बात की जा रही है तो मंजीत, मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूं, क्या ये माना जाए कि अगर मंत्रालयों की परफॉर्मेंस को देखा जाए, अभी की आर्थिक चुनौतियों को देखा जाए, तो कुछ बड़े फैसले आज की मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद क्या हम उम्मीद कर सकते हैं बदलाव की?
2: देखिए हिमांशु, जहां तक मंत्रिमंडल विस्तार की बात है, जैसा हमारे सहयोगी हिमांशु ने बताया कि 2 साल के बाद सामान्य तौर पर अगर पिछले ट्रेंड को आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 साल के बाद अपने मंत्रिमंडल में बदलाव करते हैं। खासतौर से आने वाले दिनों में, अब फरवरी के शुरुआती दिनों में 4 बड़े राज्यों के चुनाव हैं, उसको देखकर भी ये इस मंत्रिमंडल विस्तार में चीजें होंगी, उन राज्यों के लोग लिए जाएंगे। लेकिन एक बड़ा एजेंडा जो आज की बैठक का हिमांशु वो है, क्योंकि देश में इस वक्त जो आर्थिक हालात एक तरह से अब कई राज्यों में तेल की कमी है या दूसरे जो चीजों की कमी हो रही है उसको लेकर जरूर फोकस होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास एक अपनी पूरी आर्थिक सलाहकार समिति है जो लगातार प्रधानमंत्री के उस बात में इनपुट देती है। उन अधिकारियों के साथ भी प्रधानमंत्री ने बैठक ली है, और निश्चित तौर पर क्योंकि अब 2 साल के बाद ये जो सरकार के कार्यकाल के मंत्रालयों की समीक्षा है उसके आधार पर मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात होती है, क्योंकि लगातार पिछले 2 साल में इस बात की चर्चा।
1: मंजीत, ये भी इसमें माना जा सकता है कि जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सारे समझौते करके आए हैं उनको कैसे जल्द से जल्द यहां पर लागू किया जाए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। और आइए बात कर रहे थे पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी की, बात कर लेते हैं, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जिस तरह के उनकी तरफ से फैसले लिए गए हैं और उन्होंने कह दिया है कि अब जितने भी मदरसे हैं वंदे मातरम वहां पर गाना होगा, उस बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बंगाल के बेलूर मठ पहुंचे हैं सीएम शुभेंदु अधिकारी। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो हम आपको बता रहे हैं। बेलूर मठ इस वक्त शुभेंदु अधिकारी पहुंचे हुए हैं, ये वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ पर साधु संतों से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद भी शुभेंदु अधिकारी की तरफ से लिया गया। और ये देखिए, ये बेलूर मठ से वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद लिया और उनसे बातचीत भी की। और अब शुभेंदु अधिकारी के उस फैसले की बात कर लेते हैं जिसको लेकर चर्चा बहुत चल रही है कि अगर मदरसों में अब पढ़ना होगा तो वंदे मातरम आपको गाना ही होगा, यानी अनिवार्य कर दिया गया है शुभेंदु अधिकारी की तरफ से।
5: बंगाल ने शुभेंदु का एक और सियासी कार्ड। बंगाल के मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य। बंगाल में मदरसा चलाना है तो वंदे मातरम गाना होगा। अपने हिंदुत्व के एजेंडे को शुभेंदु अधिकारी ने नई धार दे दी है। इस धार की चपेट में अब बंगाल के मदरसे आए हैं। शुभेंदु सरकार का ये नया आदेश बंगाल में नया बवंडर लेकर आने वाला है। क्यों, ये आप इस आदेश को पढ़कर समझ सकते हैं। इस आदेश में साफ लिखा है, पिछले तमाम आदेशों और प्रक्रियाओं पर रोक लगाते हुए मैं मदरसा में क्लास शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाने का आदेश देता हूँ। ये पश्चिम बंगाल के मदरसा शिक्षा निदेशालय का आदेश है जिसे फौरन लागू करने का फरमान जारी हुआ है। शुभेंदु सरकार का यह नया आदेश सभी तरह के मदरसों पर लागू होगा। इनमें सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सरकारी सहायता प्राप्त दोनों तरह के मदरसे हैं।
6: सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम का गायन कंपलसरी करने के बाद अब पश्चिम बंगाल सरकार ने मदरसों में भी वंदे मातरम का गाना अनिवार्य कर दिया है। एक नोटिफिकेशन के जरिए कहा गया है कि जो भी मदरसे सरकार के अंतर्गत आते हैं, खासतौर पर अल्पसंख्यक विभाग और मदरसा विभाग के अंतर्गत आते हैं, उनमें चाहे वो एडेड हो या अनएडेड मदरसा हो, उनमें अब से वंदे मातरम का गाना कंपलसरी होगा। तो एक तरह से शुभेंदु सरकार सत्ता में आने के बाद से ही कुछ ऐसे फैसले ले रही है जिससे बंगाल की राजनीति में बहुत सा बदलाव देखने को मिल रहा है।
5: पश्चिम बंगाल में मदरसों की अच्छी खासी तादाद है और ममता सरकार अनुदान के मामलों में इन मदरसों पर खासा उदार रही है, लेकिन अब बंगाल की सियासी हवा अलग दिशा में बह रही है। जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए। पश्चिम बंगाल में इस वक्त 609 मान्यता प्राप्त मदरसा हैं। इनमें 395 हाई मदरसा, 112 जूनियर हाई मदरसा और 102 सीनियर मदरसा हैं। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 685 गैर मान्यता प्राप्त मदरसा भी हैं। 2026-27 के अंतरिम बजट में ममता सरकार ने अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के लिए 5,713 करोड़ आवंटित किया था। जाहिर है बंगाल के मदरसों पर ममता सरकार मेहरबान रही थी, लेकिन शुभेंदु सरकार ने इन मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर बड़ा संदेश दे दिया है कि उनका रुख क्या रहने वाला है, क्योंकि वंदे मातरम को लेकर मुस्लिम समुदाय की आपत्ति छिपी नहीं है। अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक।
1: देखिए, ज्यादा वक्त नहीं हुआ शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बने हुए, लेकिन जिस तरह के फैसले ले रहे हैं तो तुष्टीकरण की बात भी अब कही जा रही है। और अब बहुत स्पष्ट उन्होंने कह दिया कि अब आगे की उनकी रणनीति और कामकाज का तरीका कैसा रहने वाला है।
7: अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का। आज कैबिनेट ने सब रिलीजियस भाता बंद कर दिया।
5: सरकार बनी तो शुभेंदु अधिकारी किस राह पर जाएंगे, इसका ट्रेलर खुद शुभेंदु ने उसी दिन दिखा दिया था जब वो भवानीपुर में ममता के मुकाबले खड़े हुए और खुलकर कहा कि उन्हें सिर्फ हिंदुओं ने वोट दिया। भवानीपुर में शुभेंदु ने चंद झलकियां दिखाई थी, अब वो पूरी पिक्चर दिखा रहे हैं। शुभेंदु की इस नई पिक्चर में कई सीन ऐसे हैं जो भविष्य के बंगाल का चेहरा दिखा रहे हैं। सीन नंबर एक, बंगाल में लाउड स्पीकर से अजान बंद।
7: हर समुदाय का लोग लाउड स्पीकर अपने जो आस्था का केंद्र है उनकी प्रीमिसेस के अंदर रखिए ना भाई। सुबह 4 बजे से क्यों ये सब कर रहा है।
5: सीन नंबर दो, बंगाल में इमाम मुअज्जिन का भत्ता बंद।
7: सरकार का काम इमाम मुअज्जिन पुरोहित का भाता डिस्ट्रीब्यूशन है ना, एडुकेशन का अच्छा करना है। इमाम मुअज्जिन को भाता देना है ना नौकरी देना है। आज कैबिनेट ने सब रिलीजियस भाता बंद कर दिया।
5: सीन नंबर तीन, बंगाल में वोटर लिस्ट से नाम डिलीट तो डिपोर्ट।
7: नेशन फर्स्ट, देश को सुरक्षित रखने का काम भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार करेगा। पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया। अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का।
5: इस नई पिक्चर में शुभेंदु सरकार के कुछ ताजा फैसलों पर भी गौर कीजिए। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद। बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद। बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी। बंगाल में मदरसा एवं अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा। बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गाय के वध पर रोक। ओबीसी सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा, जिसका असर मुस्लिम ओबीसी पर। और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत। इस नई पिक्चर को देखने के बाद फुरफुरा शरीफ दरगाह ने मुसलमानों से अपील की है इस साल बकरीद पर गाय की कुर्बानी ना दें।
8: ভারতের দ্বিতীয় মুসলিম তীর্থভূমি ফুরফুরা দরবার শরীফ থেকে বলছি, আমরা এবছরে কুরবানি দেব, কিন্তু গরু কুরবানি দেব না, অবশ্যই আইনকে সম্মান জানাতে হবে।
5: बंगाल में अब जो कुछ भी हो रहा है उसके बाद इसमें कोई दो राय नहीं बचती कि बीजेपी की कहां निगाहें हैं और कहां निशाने हैं। अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक।
1: तो शुभेंदु अधिकारी अब एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं और फैसले लिए जा रहे हैं जो बहुत स्पष्ट उन्होंने बता दिया है कि उनका आगे का अब जो एक्शन प्लान है वो क्या रहने वाला है। अभी आपने देखा कि किस तरह के फैसले उनकी तरफ से लिए गए, जिसमें उन्होंने वंदे मातरम की बात कही। अब कई जगह तो बुलडोजर चलने की भी बात आ रही है, तो वहां पर ममता बनर्जी भी सामने आ रही है। अब पूरी तरह से एक माहौल बनाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। विपक्ष अभी तैयार है, ममता बनर्जी तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है। बेलूर मठ से अभी तस्वीरें आई थी और वो आप देख ही रहे थे कि उस तस्वीरों में कैसे पूजा पाठ करते हुए साधु संतों से मिलते हुए दिखाई दे रहे थे। अब मदरसा चलाना है तो वंदे मातरम गाना होगा, एक तरह से ये संदेश देने की कोशिश की गई है। अब ये तस्वीरें देखिए, अब ये आप समझिए कि बंगाल में मदरसों का हाल देखें तो मान्यता प्राप्त करीब 609 मदरसे हैं, हाई मदरसे 395, जूनियर हाई मदरसे 112, गैर मान्यता प्राप्त 685 और सीनियर हाई मदरसों की बात करें तो करीब 102 मदरसे ऐसे हैं जिनको अब आदेश का पालन करना होगा। यहां रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार, इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
11: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट, मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल वी वेक अप फॉर द स्वीट रश ऑफ गेटिंग दैट वार्म डिलीशियस ब्रेकफास्ट राइट बिफोर इट एंड्स।
12: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
13: Ba-da-ba-ba-ba.
14: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
15: Step into the heart of the American zeitgeist with me, Billy Bush. My new show, Hot Mics, is now streaming on TuneIn. It's the radio talk show that's going to redefine what it means to be in the know. From sports and politics to entertainment, tech, pop culture, and everything in between. You'll hear from A-list stars, athletes, politicians, and more. No filter, no fluff, just the real talk. Because when the mic is hot, the conversations are even hotter. Live Mondays and Wednesdays at 5 p.m. Eastern, 2 Pacific. Search Hot Mics or tell your device to play Hot Mics on TuneIn to start listening now.
16: Sokudo.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: सर म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
3: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
4: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। तो अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
5: नहीं,
4: और म्यूचुअल फंड से
5: सही।
6: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
7: Like I said before, we better own the sins.
8: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
9: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
10: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
11: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
12: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग रहे, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
13: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
14: AU सोच बदलो और बैंक भी।
15: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
16: GK Maxx।
17: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
16: GK Maxx बेस्ट पुट्टी।
18: JK वॉल मैक्स
16: बेस्ट पेंट।
19: JK Maxx।
16: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Maxx Paints।
20: JK Maxx Paints। खुशियों के रंग।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
3: तो 5 देशों की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस भारत लौटे हैं और अब पीयूष गोयल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही, सीधे लिए चलते हैं।
4: बड़ी बड़ी कंपनियों के, अंतरराष्ट्रीय लेवल की फॉर्च्यून 500 कंपनियों के जो सीईओज हैं, जो चलाते हैं उनको, उनके साथ बातचीत हुई, उनके साथ आगे भारत में निवेश, व्यापार और संबंधों बढ़ाने की चर्चाएं हुई। अगर हम सिर्फ ये जिन सीईओज के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने बातचीत की, सिर्फ उन्हीं का अगर वैल्यू देखें तो वो $3 trillion से ज्यादा इनकी वैल्यू बनती है। यानी भारत की जीडीपी के लेवल के सीईओज मिल के सब उनके साथ चर्चाएं हुई है आगे की भारत की विकास यात्रा में जुड़ने के लिए। मित्रों, अगर हम स्पष्ट आउटकम्स को देखें तो जैसे यूएई ने $75 to $100 billion की निवेश की कमिटमेंट की इस एक यात्रा में, 45,000 crore लगभग $5 billion के कमिटमेंट्स को पूर्णतः अप्रूव किया गया और वो भारत में आने के लिए तैयार हो गए। इस विजिट के दौरान जीवन के हर पहलू को छूने वाले विषयों के ऊपर काम हुआ, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर मिशन जिसमें भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, हमारी ऊर्जा सुरक्षा एनर्जी सिक्योरिटी, हमारी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स, डिफेंस पार्टनरशिप्स, निवेश, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निर्यात को और प्रोत्साहन देना, भारत में एलपीजी उपलब्ध हो और हर एक घर तक हम एलपीजी पर्याप्त पहुंचा पाए उसको सुरक्षित करने की यूएई के साथ जो करार किया गया है, जो भारत में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स एसपीआर को बढ़ाने के लिए 30 मिलियन टन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व बढ़े उसमें यूएई की साझेदारी, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और एएसएमएल जो विश्व की एक सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट बनाने वाली एक बहुत ही नामी कंपनी है उसके साथ जो पार्टनरशिप तय हुई जिससे 300 mm सेमीकॉन फैब्स की फैक्ट्री भारत में बनाई जाएगी।
3: तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कितना अहम रहा भारत के लिए। आज से रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Acoge, the number one Korean skincare brand, now in India.

इटली से स्वदेश लौटे पीएम मोदी आज शाम लेंगे मंत्रिपरिषद की बैठक। 3.0 कार्यकाल की होगी समीक्षा। शाम 5 बजे सभी केंद्रीय और राज्य मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा। बंगाल में शुभेंदु सरकार का बड़ा आदेश, मदरसों में वंदे मातरम गाना होगा अनिवार्य। आज दिल्ली पहुंचेंगे सीएम, बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सड़क पर उतरेंगी ममता। नीट पेपर लीक मामले में जयपुर में जबरदस्त प्रदर्शन, सड़क पर पुलिस से भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता, संसद की स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेश हुए एनटीए चीफ अभिषेक सिंह। ऋषा के पति समर्थ सिंह ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में दी अर्जी। मौत के बाद सास ने किए थे 46 कॉल, कानून से जुड़े कई लोगों को किया फोन, दोबारा पोस्टमार्टम पर अड़ा है परिवार। और प्रचंड गर्मी में झुलसा हिंदुस्तान, अगले 3 दिन तक चलेंगे लू के थपेड़े, दुनिया के सबसे गर्म शहरों में शुमार यूपी का बांदा, तेजी से बढ़ रही है मरीजों की संख्या।

0: तो आइए अब एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं पीयूष गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर की जा रही
1: और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्व के सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत का विश्व पटल पर सम्मान। प्रधानमंत्री जी को स्वीडन में भी नवाजा गया रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस के साथ इस सम्मान से, और नॉर्वे में उनको कन्फर किया गया ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट वहां के किंग हैरल्ड V5.3 से। अब यह बड़ा स्पष्ट है कि 32 देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना उच्च स्तरीय सम्मान देकर विश्व का एकमात्र प्रधानमंत्री या विश्व नेता हो जिसको 32 देशों ने सम्मानित किया है। अच्छा, इसमें सब प्रकार के देश हैं, विकसित देश भी हैं, फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे, रशिया, इसमें दक्षिणी देश है, विकासशील या कम विकसित देश, ब्राजील, नमीबिया, मॉरिशस, कई सारे देश, 12 से अधिक। इसमें कई सारे इस्लामिक स्टेट्स भी हैं जो धर्म के आधार पर अपना देश चलाते हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, बारेन हो, ऐसे कई सारे देश हैं जिसने माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया है।
0: और अब बात करेंगे चलती जुबती गर्मी जो कि लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है और सोचने पर मजबूर कर रही है।

0: और उत्तर प्रदेश में गर्मी इस वक्त बिल्कुल प्रचंड रूप अपना चुकी है। जहां देखो वहां तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और सूर्य देवता की किरणें लोगों का हाल बेहाल करते हुए दिखाई दे रही हैं। हालात ये है कि उत्तर प्रदेश के ज्यादातर शहर ऐसे हैं जहां देश में सबसे ज्यादा इस वक्त गर्मी पड़ रही है और लोग परेशान हो रहे हैं।
1: देश के 27 शहर ऐसे हैं जहां तापमान 45 डिग्री या उससे ज्यादा हो चुका है। चढ़ते पारे के आंकड़े बदल रहे हैं, मौसम का मिजाज बदल रहा है, लेकिन आफत का अंदाज नहीं। सूरज की किरणों ने धरती को तपा दिया और यूपी के शहर इस ताप का सबसे बड़ा संकट झेल रहे हैं। 20 मई को देश के जिन 27 शहरों का तापमान 45 या उससे ज्यादा दर्ज किया गया, उनमें से 5 यूपी के हैं। इनमें पहला स्थान है बांदा का, जहां बढ़ते तापमान का रिकॉर्ड टूटा। पारा 48 डिग्री तक पहुंच गया, जो कि देश के किसी भी शहर में सबसे ज्यादा है। यूपी का दूसरा शहर हमीरपुर है, वहां तापमान 46.2 डिग्री दर्ज किया गया। तीसरे नंबर पर रहा झांसी, जहां करीब 46 डिग्री तक पारा पहुंचा। चौथे नंबर पर ताज नगरी आगरा, वहां भी 45.3 डिग्री तापमान के साथ स्थिति बेहद गंभीर दिखी। तो 27 शहरों में यूपी का 5वां शहर था उरई, जहां 45 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। आंकड़ों से साफ है कि यूपी में संकट बेहिसाब है। बांदा की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी आफत बनकर टूटी है। दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। बांदा के बीते 4 दिनों के आंकड़ों पर नजर दौड़ाइए। 17 मई को बांदा का तापमान 47.5 डिग्री दर्ज किया गया, उसके अगले दिन 47.8। 19 मई को स्थिति और बिगड़ी, तापमान 48 के पार पहुंचा। 20 मई को अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री रहा। पारा का तेवर ऐसा हो गया कि बांदा प्रशासन भी लोगों से सुरक्षित रहने की अपील कर रहा है।
2: बांदा में पिछले 2-3 दिन से टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की तरफ से प्रतिदिन एडवाइजरी जारी की जा रही है कि किस प्रकार हम जो है हीट वेव की स्थिति में अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। निर्देश दिए गए हैं कि सभी हमारी सरकारी बिल्डिंगें, तहसील, कलेक्ट्रेट, ब्लॉक, नगर पालिकाएं, ग्राम पंचायत भवन, सबको कूलिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त सभी अस्पतालों में पीएससी सीएससी में भी कूलिंग सेंटर बनाए गए हैं। जनता को ये बताया जा रहा है कि किस समय उनको बाहर नहीं निकलना है। हिदायत दी गई है कि 12-4 के बीच अनावश्यक रूप से जब तक जरूरी काम न हो बाहर न जाएं।
1: यूपी में भीषण गर्मी और लू की मार का गंभीर असर प्रयागराज में भी दिखा। वहां भी लोग पारे के बिगड़े मिजाज की वजह से घरों में कैद हो गए। वहां भी तापमान 45 डिग्री के करीब दर्ज किया गया। लोग पेड़ों की छांव खोजते नजर आए तो कुछ लोग संगम तट पर जा पहुंचे। गर्मी से राहत के लिए प्रयागराजवासी गंगा में डुबकी लगाते दिखे।
3: घंटे 2 घंटे तक नहाते हैं, डुबकी लगाते हैं, लेकिन पानी इतना कम हो गया है कि अच्छे से डुबकी भी नहीं लगा पाते।
4: भैया गर्मी तो बहुत है, तो अब क्या बताएं, यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है। लेकिन अपन हो गया नहा के उसी में अपन राहत पहुंचा रहे हैं।
5: गर्मी तो बहुत ज्यादा है, इस समय हम गाड़ी से भी निकल रहे हैं तो हमारे हाथ पैर में जलन हो जा रही है, लेकिन हम प्रयागराज से हैं इसलिए हम यहाँ संगम आते हैं और अपने आप को राहत पहुंचाते हैं।
1: सहारनपुर का सामना भी ऐसे संकट से हुआ है। वहाँ भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। जिले का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुँचने से दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। गर्म हवाओं और हीट वेव के चलते लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। बाजारों, चौराहों और मुख्य सड़कों पर आम दिनों की तुलना में काफी कम भीड़ दिखाई दे रही है। सहारनपुर से राहुल कुमार, बांदा से सिद्धार्थ गुप्ता और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: सहारनपुर हो, प्रयागराज हो, हालात एक ही जैसे बने हुए, हर जगह गर्मी है और लोग परेशान है। वहीं अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी पारा जो है वो 43 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। समर्थ श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
6: यूपी में अब दिन के साथ साथ रात में भी पारे का टॉर्चर है। रात में तो वार्म नाइट अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिन में अगर 45 के पार कई जिलों का तापमान पहुंचा तो रात में 28-30 डिग्री, ये नॉर्मल तो फिलहाल नहीं है। बांदा हमने जैसा आपको बताया 48 क्रॉस कर चुका है। लखनऊ इस वक्त 45 से थोड़ा सा नीचे नजर आ रहा है। हम इस वक्त आपको लखनऊ के हालात दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। तस्वीरें आप देखें तो यहाँ पर नारियल पानी जो है ना उसकी खपत बढ़ गई है। वो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है कि यहाँ जो विक्रेता है वो यहाँ पर आ रहे हैं और नारियल पानी लेकर कहीं ना कहीं जो बॉडी में जो डिहाइड्रेशन हो जाता है उस पर काम कर रहे हैं। ये देखें यहाँ पर लगातार लोग तरबूज है जो जिस तरह की आइटम्स गर्मियों में लोग खाते हैं वो सब ले रहे हैं आकर।
0: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का हाल आपने देख लिया, लेकिन ये सिर्फ यूपी की बात नहीं है। दिल्ली चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कहीं भी चले जाइए, राजस्थान में हर जगह गर्मी ही गर्मी है। और मौसम विभाग से राहत की खबर अभी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, यानी अभी आसमान में शोले और बरसेंगे।

0: गर्मी के कहर के बीच इंडिया गेट का दर्शन भारी पड़ सकता है क्योंकि दिल्ली तप रही है। तपती राजधानी में दोपहर के वक्त सैर सपाटा खतरे भरा है क्योंकि यहां का तापमान भी 46 डिग्री के करीब पहुंच गया है। 20 मई को दिल्ली का रिज इलाका सबसे ज्यादा तपता नजर आया, वहां 45.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया तो सफदरजंग में 44.5 डिग्री रहा। आया नगर में भी पारा 45 डिग्री तक पहुंचा। पूरी दिल्ली तड़प रही है, यहां दोपहर के वक्त बहुत जरूरी हुआ तो लोग कपड़े से चेहरा ढक कर बाहर निकल रहे हैं।
1: मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिनों तक ये जो तापमान है वो 2 से 3 डिग्री और बढ़ सकता है। ये तस्वीरें राजघाट की अगर आप देखेंगे तो अमूमन राजघाट पर लोग जो है वो घूमने के लिए आते हैं, विदेशी सैलानी आते हैं, लेकिन राजघाट पर अगर आप देखेंगे तो सन्नाटा इस वक्त जो है वो पसरा हुआ नजर आएगा। एक भी शख्स जो यहाँ पर दिल्ली के लिए घूमने के लिए आते हैं वो आपको नजर नहीं आएंगे। अमूमन इस तरीके की स्थिति जो है वो राजघाट पर नहीं होती है, लेकिन जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, लोग सड़कों पर जो है वो काफी हद तक कम नजर आ रहे हैं, ट्रैफिक भी जो है वो काफी हद तक कम नजर आ रहा है।
0: ताजा हालात को देखते हुए मौसम विभाग ने 26 मई तक ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। कहा है कि आने वाले कुछ और दिन लू के संकट का सामना करना पड़ेगा।
2: ओवरऑल आप बात करेंगे स्पीकर के हिसाब से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आने वाले दिनों में जहां तो ऑरेंज अलर्ट है, और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट है। अगर हम NCR दिल्ली की बात करें तो वहाँ भी जो टेम्परेचर्स हैं हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ज़्यादा ही रहेंगे। हीट वेव, सीवियर हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल कर सकती है, कहीं ना कहीं हो सकता है NCR दिल्ली में भी जो टेम्परेचर जब 47 के पास रहे।
0: महाराष्ट्र में भी मुसीबत कम होती नहीं दिख रही, वहाँ के कई शहर इस संकट से जूझ रहे हैं। नागपुर में गर्मी ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वहाँ पारा 46.6 डिग्री तक जा पहुँचा है। विदर्भ के सभी जिलों में पारा 45 के पार जा चुका है। महाराष्ट्र के वर्धा में 47 डिग्री से ज्यादा तापमान हो गया है। वहीं नागपुर में इस सीजन का सबसे ज्यादा तापमान 46.6 डिग्री हो गया। अमरावती में 46.4 डिग्री और चंद्रपुर में 46.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं गढ़चिरौली में 45.6, अकोला और यवतमाल में 45.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया।
3: नवतपा शुरू होने को है, उससे पहले ही विदर्भ के कुछ शहरों का तापमान 47 डिग्री को पार कर चुका है। 20 मई की अगर बात करें तो विश्व के सबसे गर्म शहरों में विदर्भ के 2 शहर शामिल थे जिसमें वर्धा और नागपुर का समावेश था। वर्धा का 20 मई का तापमान 47.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड दर्ज किया गया, जबकि नागपुर का तापमान जो है वो 46.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
0: मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि महाराष्ट्र में अगले 5 से 6 दिन तापमान और बढ़ेगा।
4: अलर्ट पे रखा है क्योंकि यहाँ पे ऐसी संभावना है कि जो हीट वेव की जो इंटेंसिटी है वो लाइकली टू भी ज्यादा हो सकती है, हीट वेव टू सीवियर हीट वेव हो सकते हैं, और साथ साथ इन जगहों में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से अधिक बने रहेंगे। और इसको देखते हुए भी हमने अगले आने वाले 5 से 7 दिनों के लिए तापमान में कोई राहत न मिलने की उम्मीद जताई है। तापमान जो इसी क्रम में बने रहेंगे, अधिकांश जगहों में तापमान जो 46-47 और उसके ऊपर भी जाने की संभावना बन रही है।
0: झारखंड के अलग अलग हिस्सों में भी बुरा हाल है। लगातार बढ़ते तापमान के बीच रामगढ़ में पीने के पानी की किल्लत हो गई है। हालात ऐसे हैं कि लोगों को गड्ढा खोदकर पानी निकालना पड़ रहा है। रांची की सड़कों पर भी सन्नाटा हालात की गवाही दे रहा है।
5: गर्मी का कहर ऐसा है कि पूरे सड़क पे आपको सन्नाटा दिखेगा। इस वक्त हम सचिवालय के पास के इलाके में है और इसे स्मार्ट सिटी कहा जाता है, और ये सड़क जो है बिल्कुल ये जो यहाँ से सचिवालय की दूरी जो है 200 से 250 मीटर की है, और आप देख सकते हैं आलम किस तरह का है, आपको कहीं आम लोग दिखाई नहीं पड़ेंगे जिस तरह का मौसम है।
0: कई राज्यों में ऐसा ही हाल है। मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ दिन राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। नागपुर से योगेश पांडे के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
6: तो बाकी राज्यों का हाल आपने देख लिया, लेकिन जो तेरा हाल है वही मेरा हाल है, और यही कह रहे हैं चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी अमन भारद्वाज, गर्मी से वो भी परेशान है।
7: पंजाब हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप जारी है। पंजाब के अंदर तापमान 47 डिग्री तक जा पहुंचा है, तो वहीं हरियाणा का हिसार हो, सिरसा हो, तापमान 47 डिग्री के पार जाता दिखाई दे रहा है। वहीं चंडीगढ़ के अंदर भी 44.4 डिग्री टेम्परेचर इस समय है, और इस जलती उबलती गर्मी के अंदर लोगों को ये सलाह दी गई है कि घर से बाहर ना निकला जाए, जरूरत पड़ने पर ही सुबह और शाम के वक्त काम घर के किए जाएं, पानी ज्यादा पिए, लस्सी हो, ठंडी चीजें हो, जूस हो, ऐसी चीजों से खुद की तासीर जो है वो ठंडी रखें। पंजाब का फरीदकोट ऐसा शहर है जहां पर रिकॉर्ड छूता तापमान जा पहुंचा है, 47 डिग्री तापमान पिछले 24 घंटों में दर्ज किया गया। बठिंडा के अंदर भी टेम्परेचर 47 डिग्री के ऊपर जा पहुंचा है, जबकि पिछले 40 साल का रिकॉर्ड 48.5 डिग्री बठिंडा का है। तो आप देखिए कि गर्मी इतनी ज्यादा है कि पंजाब का, चाहे बठिंडा, फरीदकोट हो, हरियाणा के शहर हिसार, सिरसा, रोहतक हो, जहां 46 डिग्री टेम्परेचर है, और चंडीगढ़ जो 44 डिग्री पर है, तो ये सभी अपने अपने रिकॉर्ड को छूते नजर आ रहे हैं।
6: देखिए, हर जगह की कुछ खासियत होती है। बिहार पटना की भी खासियत है, पटना में लिट्टी चोखा बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन लोग बात कह रहे हैं कि अब पटना की गर्मी भी उतनी ही फेमस हो गई है, बहुत तेज धूप पड़ रही है। रोहित सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
8: पूरे बिहार में इस वक्त भीषण गर्मी का असर देखा जा रहा है। पिछले एक सप्ताह से लगातार बिहार के कई जिलों में पारा 40 डिग्री के पार है, और खासकर दक्षिणी बिहार के कई जिलों में लू का अलर्ट भी मौसम विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है। रोहतास, कैमूर, आरा, बक्सर जैसे जिलों में जो है जबरदस्त गर्मी जो है वो देखने को मिल रही है। और राजधानी पटना की भी बात करें तो आज पटना में अधिकतम तापमान जो है वो 40 डिग्री के आसपास रहेगा, लेकिन जो एक महसूस या फील्स लाइक कहा जाता है तो वो तकरीबन 50 डिग्री के पास है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके के हालात इस वक्त जो है राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में गर्मी से बने हुए हैं।
6: और देखिए, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, लेकिन पिंक सिटी इस वक्त जल रही है। वहां राजस्थान में इतनी जोरदार गर्मी पड़ रही है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। शरद की हमारी एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।
9: राजस्थान में आसमान से आग बरस रही है। पूरे राजस्थान में 14 से 15 शहरों का तापमान 45 डिग्री के आसपास रह रहा है। श्रीगंगानगर में तो तापमान 46 डिग्री तक पहुंच गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर लोग गर्मी का इंतजाम करके चलते हैं, गमछा और चश्मा लगाए हुए, बहुत तो साफा पहन के भी चलते हैं। जगह जगह अलवर हो या फिर पाली हो, बाड़मेर हो, हर जगह सड़कों पर छिड़काव किया जा रहा है। जगह जगह जो चौराहे हैं वहां पर तंबू का इंतजाम किया जा रहा है। जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं उससे सड़कों पर छिड़काव करके तापमान को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 7 दिनों तक इसी तरह से आसमान में आग बरसती रहेगी और नौतपा और तपेगा। जो पुलिस वाले हैं ड्यूटी कर रहे हैं, देखिए किस तरह से वो भी अपने गर्मी से बचाव के लिए यहां पर तैयारी करके रखते हैं। राजस्थान में प्रचंड गर्मी का दौर बदस्तूर जारी है। ज्यादातर शहरों में जो तापमान है वो 45 डिग्री के आसपास है। जयपुर की बात करें तो यहां पर 43 से लेकर 44 डिग्री तापमान रह रहा है। कैमरा मनीष के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।
6: तो देखिए, गर्मी अभी और बढ़ने वाली है, नौतपा अभी और ज्यादा तपेगा, तो ऐसे में आप लोग अपने अपने परिवार का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
12: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट। मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
13: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Ba-da-ba-ba-ba.

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete.
3: Morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
4: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
5: Ba-da-ba-ba-ba.
6: At Byers Volkswagen, shop online, customize your deal, and finalize everything from home.
7: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
6: Byers Auto, driving the next generation of buyers.
8: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
9: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
10: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: Presented by
11: Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health Ka Sach.
12: In association with
13: Bharat Ki Apni Electric Sawari Sokudo.
14: और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पीओके में इस हत्या को अंजाम दिया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हमजा बुरहान जो कि पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड में से एक बताया जा रहा है, और इसकी अब हत्या कर दी गई है। और इसी खबर पर सीधे रुख करते हैं, हमारे सहयोगी जुड़े हुए अरविंद दोजा। अरविंद बताइए एक्सक्लूसिव खबर के बारे
15: में। ये आज तक पर सबसे पहले हम बता रहे हैं कि पुलवामा में जो 2019 में अटैक हुआ था, उसके मास्टरमाइंड में से एक था हमजा बुरहान, जिसकी अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने, अननोन गनमैन ने गोली मार के हत्या कर दी है। ये डेवलपिंग स्टोरी है। हमजा बुरहान की बात करें तो ये अल बदर का आतंकी था, कमांडर था और कुख्यात था, और जम्मू कश्मीर में कई बड़े आतंकी हमलों का रोल था। पाकिस्तान में बैठ कर ये भूमिका निभा रहा था, लेकिन जो सबसे बड़ा अटैक था वो पुलवामा 2019 में जो सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर अटैक हुआ था, उसमें वन ऑफ द मास्टरमाइंड में से एक था ये हमजा बुरहान, जिसकी गोली मार के हत्या की गई है। और सबसे पहले ये जो खबर है वो हम आज तक पर दिखा रहे हैं, तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, और ये मोस्ट वांटेड आतंकी है, अलबदर का कमांडर, अलबदर का जो चीफ है। लेकिन पाकिस्तान में बैठकर ये लगातार जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिलवा रहा था, और खासतौर से पुलवामा 2019 में जो अटैक हुआ था सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर, उसके बाद से ये मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। और खासतौर से एजेंसियों की बात करें, खुफिया एजेंसियों की बात करें, तो खुफिया एजेंसियां इस पर लगातार नजर बनाए हुई थी, गुपचुप तरीके से नजर बनाए हुई थी, पूरी तरह से मॉनिटरिंग इसकी की जा रही थी। लेकिन जो आज तक कुछ सबसे पहले एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है, कुछ देर पहले मुजफ्फराबाद इलाके में इसको अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी है, जब ये अपने दफ्तर में बैठा हुआ था उस वक्त इसको गोली मारी गई है, और कई गोलियां मारी गई हैं, इसकी मौत हो गई है। जो पाकिस्तान की पुलिस है वो इस बात की अब जांच करेगी कि आखिर इसकी हत्या कैसे हुई। लेकिन वहीं जो हमें एजेंसियों के जरिए जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये मोस्ट वॉन्टेड आतंकी था, अल बदर जो आतंकी संगठन है उसका ये आतंकी था, और बीते कई सालों से एक्टिव था। हालांकि बहुत खुले तौर पर इसका नाम नहीं आता था, लेकिन कई जो बड़े अटैक हैं उसमें इसकी भूमिका रही थी। खूंखार अभी अगर बात की जाए तो एक यंग नौजवान आतंकी था, काफी डेस्परेट था ये। अगर पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ कई अपने आप को ये टीचर बताता था, लेकिन सबकी आड़ में ये बड़े आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता था। और 2019 पुलवामा अटैक में जो हमारे सूत्र बता रहे हैं इसकी बड़ी भूमिका थी, और अब से कुछ देर पहले मुजफ्फराबाद में इसकी गोली मार के हत्या की गई। तो हाल फिलहाल में जो अननोन गनमैन है, अज्ञात हमलावर है, उस पर दोबारा ये स्ट्राइक हुआ है और ये सबसे बड़ा अटैक।
14: लेकिन अरमजीबा बताइए, इससे पहले भी हमने ये बात देखी है कि बहुत से ऐसे लोग जो भारत के दुश्मन हैं, जो भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं, उनकी इसी तरह से हत्या की गई, एक पैटर्न हमने देखा गया है, इसको लेकर अभी तक क्या खबर आ रही है और उसको आप कैसे डिकोड करेंगे?
15: देखिए, ये पैटर्न है और इस पैटर्न का जो खासतौर से हमजा बुरहान की अगर बात करें, और आज तक ही वो चैनल जो भरोसे के साथ जो अज्ञात हमलावर का जो भी स्ट्राइक है वो सबसे पहले आज तक ही बताता है, एक ये सेट पैटर्न जरूर है। लेकिन मैं ये भी साथ साथ आपको बताता चलूं कि जो पाकिस्तान है वो लगातार इस तरह की हत्याओं के पीछे जो भारत की खुफिया एजेंसियों को जिम्मेदार बताता है, वहीं भारत ये साफ साफ कहता है कि भारत इस तरह की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है वो नहीं कराता है। जो पाकिस्तान में आतंकी अलग अलग तंजीमें हैं उनके बीच आपसी वर्चस्व की लड़ाई है, उसका ये नतीजा है। जबकि दूसरी तरफ अज्ञात हमलावर गुपचुप तरीके से अपना ये काम कर रहा है, और जो सटीक आज तक को जानकारी मिली उसके मुताबिक जो हमजा बुरहान है उसको वो दफ्तर में बैठा हुआ था, आपसे कुछ देर पहले ही की बात है जब उसको अज्ञात हमलावर पहुंचते हैं और एक के बाद एक कई गोलियां मारते हैं, हमजा बुरहान की मौत हो जाती है। और ये खास तौर से अगर बात की जाए हिमांशु, ये हमजा बुरहान पर भारतीय खुफिया एजेंसियों की काफी लंबे वक्त से निगाह चल रही थी, लेकिन काम अज्ञात हमलावरों ने कर दिया।
14: एक बार फिर से अगर आप बता सके कि पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड में से एक इसे माना जाता है, क्या भूमिका इसकी अभी तक बताई जा रही थी उस मामले में?
15: देखिए, पूरी प्लानिंग करना, उस प्लान को एग्जीक्यूट कराना, वो इस मामले में इसकी भूमिका थी। हालांकि जब पुलवामा अटैक हुआ तो अलग अलग तरह के तंजीमों के नाम सामने आए, लेकिन जो भारतीय खुफिया एजेंसी है उनको इसके बारे में खासतौर से हमजा बुरहान के बारे में पता चला। और इतना ही नहीं, कई बड़े आतंकी हमलों की भूमिका, आतंकी हमलों में इसका रोल रहा है जम्मू कश्मीर में, और खासतौर से जो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है वो काफी ज्यादा परेशान थी इससे, जो इस तरह का जो खासतौर से अगर मुजफ्फराबाद पीओके के इलाकों में बैठकर जम्मू कश्मीर में, चूंकि इसका एक लोकल नेटवर्क था, उस लोकल नेटवर्क के दम पर एक के बाद एक कई बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिलवा रहा था, जिसमें पुलवामा अटैक एक बड़ा हमला आप ये कह सकते हैं। लेकिन लगातार इसको मॉनिटरिंग की जा रही थी, और उससे कुछ देर पहले ही मुजफ्फराबाद में तस्वीरें भी आने लगी हैं पाकिस्तान से। वहां जो हमें जानकारी मिली आज तक को कि अज्ञात हमलावर वो इसके दफ्तर में दाखिल होते हैं और ताबड़तोड़ कई गोलियां मार के इसकी हत्या की जाती है।
14: इसी तरह से पीओके में अब बहुत से लोगों को टारगेट करना, इन आतंकियों को मारना, ये माना जाए कि जो इनके नेक्सस है उसमें एक दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही। पाकिस्तान कह रहा है आपसी लड़ाई या फिर जो भी है भारत पर दोष डालता है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि इन आतंकियों का काम तमाम हो रहा है, तो इसके पीछे ये माना जाए कि आपसी दरार या कुछ और?
15: नहीं, डर तो बैठ रही है। देखिए, अब ये तो जरूर है, देखिए पाकिस्तान तो सीधे सीधे बीते दिनों जो पैटर्न हुए, पाकिस्तान के पास तो एक ही चीज है, वो हर मामले में इंडिया पर ही एलिगेशन लगाता है। लेकिन भारत का रुख साफ है इस मामले में कि वो इस तरह का एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग नहीं करता है, लेकिन जो अज्ञात हमलावर है वो तो अपना काम कर रहा है। कम से कम जो इंडियन एजेंसीज नहीं कर पा रही, अज्ञात हमलावर वो कर रहा है, तो राहत की बात तो है। तो वो आतंकी जो पाकिस्तान में बैठकर भारत में एक के बाद एक आतंकी वारदातों को अंजाम देते थे और पाकिस्तान में खुद को सुरक्षित महसूस करते थे, अब अज्ञात हमलावरों की वजह से वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। और हाफिज सईद 2021 में उसके घर के बाहर जौहर टाउन में भी बड़ा विस्फोट हुआ था, और उसके बाद से हाफिज सईद आज तक कभी कैमरे के सामने दिखा नहीं है। तो डर हाफिज सईद को भी है, मौलाना मसूद अजहर को भी है, जितने भी टॉप आतंकी हैं वो कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान में डरे। और
14: मैं चाहता हूं आप हमारे साथ बने रहिए, बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए। देखिए, आप समझिए पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड जो यहां पर बताया जा रहा है, और ये भी बताया जा रहा है कि इसको अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, जैसे हमारे सहयोगी अरविंद

0: के या पीओके में ही इस हत्या को अंजाम दिया गया है। हमजा बुरहान इसका नाम था जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। और एक बार फिर आपको बता दें, ये बड़ी खबर है क्योंकि ये बताया गया है कि पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड में से ये एक था। और इसी खबर पर हम लगातार बने हुए और इस खबरों के सिलसिले को अब आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी सुमित चौधरी।
1: और देखिए लगातार हम आपको न्यूज रूम से बता रहे थे कि कैसे एक बड़ी उपलब्धि खासतौर पर हमजा बुरहान को मार दिया गया है। 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ था उसके पीछे का एक मास्टरमाइंड ये भी था। बताया जा रहा है कि 2019 के बाद से ही लगातार ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में ऑपरेट कर रहा था और कई आप कह सकते हैं कि आतंकियों को ट्रेनिंग देने और इसके अलावा उसकी पूरी कॉन्स्पिरेसी को रचने में इसकी महत्वपूर्ण एक अहम भूमिका थी, मास्टरमाइंड में से एक था। बताया जा रहा कि अज्ञात हमलावरों ने इसे मार दिया। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी हमें बता रहे थे अरविंद ओझा की, देखिए ऑफिस में बैठा हुआ था जब ये पूरी घटना हुई और पीओके में हमजा बुरहान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। 2019 में हुए पुलवामा अटैक के अंदर इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये उन तमाम मास्टरमाइंडों में से एक था जिसने इस पूरी घटना को, इस आतंकवादी घटना को अंजाम दिया। और देखिए हम आपको ये भी बता दें कि अज्ञात हमलावरों ने हमजा बुरहान को गोली मार दी है। इसके बाद इसकी मौत की खबर भी लगातार पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से सामने आ रही है। पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड था ये और 2019 के बाद से लगातार कई आतंकवादी संगठनों में आप कह सकते हैं घटनाओं के अंदर भी इसके इन्वॉल्वमेंट के इनपुट की लगातार खबरें मिल रही थी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये हमजा बुरहान की वो तस्वीर है जो कुछ साल पहले की, लेकिन बताया जा रहा था कि पिछले कई सालों से लगातार ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के कुछ इलाकों में टेररिस्ट ऑपरेटिव के तौर पर काम कर रहा था और ये ना सिर्फ उनको ट्रेनिंग देता था बल्कि उनको घुसपैठ करने के लिए तरीके या फिर उनको सिखाता भी था। इसके ऊपर कई मामलों में खासतौर पर कई आतंकवादी संगठनों के साथ इसका इन्वॉल्वमेंट भी रहा है और अलबदर के साथ भी सीधे तौर पर ये काम करता था। और बताया जाता है कि यही 2019 में से 2019 के हमलों का एक बड़ा मास्टरमाइंड के तौर पर काम कर रहा था। आपको बता दें कि 2019 के अंदर पुलवामा अटैक में जो सीआरपीएफ का कॉन्वॉय था उस पर अटैक करने के दौरान जिस तरीके से लोन वुल्फ अटैक किया गया था, भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव भारत लाया गया था, उसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। हमजा बुरहान को लेकर एनआईए की टीम लगातार कई बार इसका जिक्र कर चुकी थी, यहां तक कि जो आप कह सकते हैं इंटेलिजेंस इनपुट थे वो भी इसके खिलाफ कई बार सार्वजनिक किए गए थे। बताया गया था कि कैसे लगातार पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में बैठा हुआ ये भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व रहता है, ट्रेनिंग में इन्वॉल्व रहता है। और अब कहा जा रहा है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जब ये अपने ऑफिस में बैठा था तभी उसी वक्त इसको न्यूट्रलाइज को मार दिया गया, इसको अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी और इसके बाद इसकी हत्या कर दी गई है। और इस बड़ी खबर पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन अब वक्त है 100 शहर 100 खबरों का। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड में से एक आतंकी पाकिस्तान में हत्या हुई है। पाकिस्तान के मोस्ट वांटेड आतंकियों को गोली मार दी गई। अज्ञात हमलावरों ने मारी है गोली, आतंकी हमजा बुरहान को मारी गई है गोलियां। के मुताबिक हमजा बुरहान की मौत हो गई है। पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर अटैक किया है। पांच देशों की आधिकारिक यात्रा पूरी कर नई दिल्ली लौटे प्रधानमंत्री मोदी, आज शाम 5 बजे होने वाली है मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में सुधारों को लेकर करीब 12 से ज्यादा मंत्रालयों को देंगे प्रोजेक्शन दिया जाएगा। सभी मंत्रालय सुधारों के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी कैबिनेट सचिवालय को सौंप चुके हैं। करीब 11 महीने बाद हो रही है मोदी कैबिनेट की बैठक में सरकार के आने वाले एजेंडे के बारे में बताया जाने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पश्चिमी एशिया के युद्ध के मद्देनजर कई महत्वपूर्ण सुधारों के डिस्कस किए जाने की संभावना भी है। इस बैठक में विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज, हाल ही में लिए गए नीतिगत फैसलों के परिणामों और भविष्य की योजनाओं के बारे में समीक्षा भी की जाएगी। जयपुर में नीट पेपर लीक के विरोध में कांग्रेस का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए एनटीए को पूरी तरीके से विफल बताया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह धुटसारा ने नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग पर चढ़ गए, इस दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ उनकी धक्का मुक्की भी हुई।

0: प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी कार्यालय का घेराव करने की कोशिश भी की, रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। प्रदर्शन के दौरान शिक्षा मंत्री पर बोला हमला, कहा कि नीट पेपर लीक के सरगना को दे रहे हैं संरक्षण, लाखों युवाओं के भविष्य के साथ हो रहा है खिलवाड़। राजनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार नीट पेपर लीक मामले में जिम्मेदारी ले बच नहीं सकती है, 22 लाख बच्चों का भविष्य खराब करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल में कुर्बानी को लेकर जारी विवाद के बीच एजी यूपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष हुमायूं कबीर का विवादित बयान, कहा कि हर हाल में कुर्बानी होगी, कोई नहीं रोक सकता।
1: कोई मुसलमान को गाय खाने के मना करे तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का जियो करके वो मना कर दीजिए, लेकिन कुर्बानी तो हो गई।
0: को चुनौती देते हुए हुमायूं कबीर ने कहा कि किसी के मना करने से नहीं रुकेंगी कुर्बानी, जब तक दुनिया रहेगी ये चलता रहेगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी कर्मचारी द्वारा मीडिया को बयान तथा सूचना देने के संबंध में सख्त निर्देश जारी कर दिया, बिना परमिशन के कोई भी जानकारी साझा नहीं की जाएगी। अधिसूचना में साफ कह दिया गया है कि सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना कोई भी कर्मचारी किसी भी मीडिया प्रोग्राम में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, निजी कार्यक्रम के लिए भी लेना होगा आदेश। पश्चिम बंगाल की फालता विधानसभा सीट पर दोबारा वोटिंग जारी है, अब तक 61% मतदान हो चुके हैं। दुर्गापुर में सीएम शुभेंदु अधिकारी की पहली प्रशासनिक बैठक, अपराध के खिलाफ पुलिस को सख्त एक्शन लेने के आदेश दिए गए। सीएम शुभेंदु अधिकारी की इस बैठक में पुरलिया और इसके अलावा बाकुंडा, बीरभूम, पश्चिम बर्धमान और पूर्व बर्धमान के अधिकारी भी शामिल रहे। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक के बाद आज ही सीएम शुभेंदु अधिकारी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। सूत्रों के मुताबिक आज शाह के साथ कर सकते हैं मुलाकात, कल पीएम से मीटिंग भी संभव है। पश्चिम बंगाल के मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया गया है, शुभेंदु अधिकारी ने सख्त लहजे में इसका आदेश दिया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का बड़ा एक्शन, 10 गैंगस्टर्स के पासपोर्ट रद्द करने के आदेश दिए गए हैं, विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा गया है। विदेश में बैठकर गैंग ऑपरेट करने वालों पर फोकस होगा, फरार गैंगस्टर्स की अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों पर भी नजर होगी। पुंछ में एलओसी के पास दो बैग मिलने से के साथ हड़कंप मच गया, ड्रग्स और हथियारों के साथ ये बैग्स मिले, सेना के जवानों ने इन्हें बालाकोट सेक्टर के नियमित गश्त और तलाशी अभियान के दौरान बरामद किया है। नीट यूजी पेपर लीक होने पर शिक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर संसद की स्थायी समिति की महत्वपूर्ण बैठक। मीटिंग में नीट यूजी पेपर लीक और एनटीए सुधार को लेकर बनी राधाकृष्ण कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा होगी, शिक्षा विभाग के सचिव और एनटीए के अध्यक्ष भी इसमें बैठक में शामिल होंगे। अमेरिका के युद्ध मंत्री ने सोशल मीडिया पर ईरान को बड़ी धमकी दी, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के पोस्ट को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि लॉक्ड एंड लोडेड। युद्ध विराम के बीच ट्रंप और नेतन्याहू के बीच तनावपूर्ण फोन कॉल की खबर सामने मिली है, ईरान से समझौते की खबर को लेकर इजरायली पीएम नेतन्याहू नाराज है। सूत्रों के मुताबिक नेतन्याहू ने इन वार्ताओं को लेकर बेहद संशय में है और वो युद्ध को फिर से शुरू करना चाहते हैं ताकि ईरान की सैन्य क्षमता और सत्ता को कमजोर किया जा सके। आईआरजीसी की नौसेना के राजनीतिक उप प्रमुख ने उड़ाया है मजाक, ट्वीट पर लिखा कि दुश्मन को ना तो ईरान के बारे में कोई सही जानकारी है और ना ही समझ और अकल है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने फिर से युद्ध टालने के लिए दिए संकेत, लिखा है कि हमारी और ये सभी रास्ते खुले हैं लेकिन जबरदस्ती ईरान को झुकाने पर मजबूर करना केवल भ्रम है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद पर पाकिस्तान को खूब सुनाया है, साथ ही अफगानिस्तान में हत्याओं और को लेकर भी आड़े हाथों लिया है। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि नसनहार इतिहास वाले देश भारत के आतंकी मामले में बोलने का हक नहीं रखते। सीमा पार आतंकवाद पर भारत ने यूएन में कड़ा संदेश दिया है, भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने आतंकवाद को समर्थन देने वाले देशों को जवाबदेह ठहराने की मांग की गई। यमुना सफाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक, मीटिंग में दिल्ली सीएम, जल शक्ति मंत्री सहित विभागों के कई अधिकारी भी शामिल हुए। राजस्थान सरकार के डेयरी विभाग ने दूध की कीमतों में 2 रुपए लीटर की बढ़ोतरी और स्टैंडर्ड दूध की कीमतों में 62 रुपए और गोल्ड दूध की कीमतों में 70 रुपए प्रति लीटर हुई है। करनाल में नीट पेपर लीक, बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कांग्रेस पार्टी का जोरदार प्रदर्शन, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी रहे मौजूद। छत्रपति संभाजीनगर में एनसीपी शरद पवार गुट का प्रदर्शन, किसानों ने कर्ज माफी और फसलों के उचित दाम की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर किसानों के वादे पूरे करने पर लगाया आरोप, कर्ज माफी और फसलों की उचित दाम देने की भी मांग की। पश्चिमी मदीनापुर में एक दुकान में से सरकारी राहत सामग्री मिलने पर हंगामा, बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं में हुई झड़प। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त एक बड़ी खबर जो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड से एक आतंकी की पाकिस्तान में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में हत्या कर दी गई, मोस्ट वांटेड आतंकी की गोली मारकर हत्या कर दी है। आतंकी का नाम हमजा बुरान है और बताया जा रहा है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जब ये अपने ऑफिस में बैठा था तब इसकी हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावरों ने आतंकी हमजा बुरान को गोली मार दिया है, कई गोलियों से इसे दागा गया है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने जहां गोली मारी है ये वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि मुजफ्फराबाद के इसी इलाके में इस आतंकी को मार गिराया गया है। अज्ञात हमलावरों ने लगातार इस आतंकी को निशाना बनाया और इसकी हत्या कर दी गई है। ऐसा लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से गैंग वॉर आतंकवादी संगठनों में चले और उसी बीच ये खबर आई है कि अज्ञात हमलावरों में से एक जो 2019 का पुलवामा आतंकी हमला था उसका मास्टरमाइंडों में से एक है हमजा बुरान, जिसकी हत्या कर दी गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि जहां पर ये पूरी घटना हुई है वहां की तस्वीरें हैं और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से लगातार ये ऑपरेट करता रहता था। कई बार इसको कई बड़े मंचों पर भी देखा गया, इसको लेकर लगातार इनपुट मिलते रहते हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से, जहां पर हमजा बुरान एक आतंकी जिसकी हत्या कर दी गई है, अज्ञात हमलावरों ने इसकी हत्या की और हम आपको तस्वीरें दोनों दिखा रहे हैं जहां पर इसको गोली मारी गई, वहां पर पुलिस बल तैनात था और वहां से लगातार इसकी हत्या के बाद वहां से इसकी लाश को वहां से हटाया जा रहा है या फिर इसको कह सकते हैं कि कॉर्डन कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ हमजा बुरहान की वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जो लगातार कई बार वायरल भी हुई और कहा जा रहा है कि ये 2019 के बाद से भी कई बार एक्टिव नजर आया, आतंकवादियों की ट्रेनिंग, इसके अलावा उनके इन्फिल्ट्रेट कराने के लिए यानी उनकी घुसपैठ कराने में भी इसका मुख्य किरदार रहा है। देखिए हम आपको लगातार ये दोनों तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि 2019 के कई ऐसे मास्टरमाइंड थे जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। 2019 में सीआरपीएफ के कॉनवॉय को टारगेट किया गया था और फरवरी के महीने में इसको टारगेट किया गया था जिसमें कई हमारे जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इस पर जवाबी कार्रवाई भी की गई। खासतौर पर आतंकियों के कई ऐसे आप कह सकते हैं लॉन्च पैड्स हो, उनके बड़े आप कह सकते हैं कि जो उनके बेस कैंप्स थे उनको टारगेट भी किया गया था स्ट्राइक्स के अंदर और उसके बाद से ही इन आतंकियों पर लगातार भारत ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। इनके बारे में लगातार सार्वजनिक जानकारियां दी जा रही थी कि कैसे ये ऑपरेट करते हैं और पाकिस्तान के आला अधिकारियों के साथ साथ पाकिस्तान की आर्मी इनको ट्रेन करती है, इनको लगातार इनको पालने पोसने का काम करती है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से, जहां से हमजा बुरहान जो एक हमले का 2019 के इस हमले का मास्टरमाइंड बताया जाता था उसको मार गिराया गया है। हमजा बुरहान को अज्ञात हमलावरों ने उसके ऑफिस के बाहर ये टारगेट किया जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और ये एक्सक्लूसिव जानकारी आज तक पर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लगातार एक बड़ी खबर मिल रही है, एक बड़ी अपडेट मिल रही है जिसमें हमजा बुरहान को मारे जाने की उसकी लगातार खबरें मिल रही है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से। देखिए दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर है पहली जहां हमजा बुरहान को उसके ऑफिस के बाहर मारा गया और दूसरी तस्वीर हम आपको हमजा बुरहान की दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद ओझा जिन्होंने न्यूज ब्रेक किया, अरविंद ओझा का रुख करते हैं। अरविंद देखिए लगातार आप ऐसी खबरों के बारे में सबसे पहले जानकारी देते रहे, हमजा बुरहान को लेकर भी कई बार ये जानकारी मिली थी कि देखिए ये आतंकवादी 2019 के बाद भी बहुत ज्यादा एक्टिव था, लगातार कई लॉन्च पैड्स पर देखा गया और आखिरकार अज्ञात हमलावरों ने इसे मार गिराया।
2: बिल्कुल, और आज तक पर यह सबसे पहले और बहुत बड़ी खबर हमने अपने दर्शकों को बताई और बता रहे हैं कि ये वो आतंकी है हमजा बुरहान जिसे डॉक्टर के नाम से भी जाना जाता था, इसको अब से तकरीबन कुछ एक घंटे पहले ये जब अपने ऑफिस में बैठा हुआ था तभी इसको अज्ञात हमलावरों ने कई गोलियां मारी हैं और मौके पर ही इसकी मौत हो गई है। अस्पताल ले जाकर पुष्टि करवाने तक की जरूरत नहीं पड़ी, इतनी गोलियां इसे मारी गई हैं। हमजा बुरहान की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला था, लेकिन कुछ साल पहले ये पाकिस्तान भाग गया था और पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में बैठकर ये ऑपरेट कर रहा था। देखिए बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में कई बड़े आतंकी हमले हुए और उसमें अलग अलग तंजीमों के नाम सामने आ जाते थे और आतंकियों के। हमजा बुरहान की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा लो प्रोफाइल अंडरग्राउंड रहता था। 2019 में जब पुलवामा अटैक हुआ था तो इसका नाम खुफिया एजेंसियों के सामने चर्चा में आया था। जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है उनको अलग कर दें, उनकी जांच अलग है, लेकिन जो सबसे बड़ी एजेंसी है, खुफिया एजेंसी टॉप लेवल की, उसके सामने हमजा बुरहान का नाम आया कि ये वो टेररिस्ट है जिसकी पहलगाम हमले में भूमिका है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक करना हो उसमें भी इसकी बड़ी भूमिका है, क्योंकि चूंकि ये पुलवामा का है, लोकल नेटवर्क इसका ज्यादा था और इसी का इस्तेमाल जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी अल बदर के आतंकी और खुद हमजा बुरहान भी कर रहा था। आप अगर विकिपीडिया देखेंगे तो अल बदर का जो खूंखार कमांडर है नंबर वन पर आता है हमजा
3: प्लस प्लस कैटेगरी के। मुझे अरविंद अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, ये भी कहा जा रहा था कि जो रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस चलता है, अल बदर को रिवाइव करने की जो कोशिश की जा रही थी साउथ कश्मीर में, उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहता था।
2: बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए यह न सिर्फ अटैक कराना, और देखिए मुजफ्फराबाद में इसका ऑफिस है, उस ऑफिस की तस्वीरें और वीडियो भी आज तक के पास मौजूद है, कुछ देर बाद हम वो भी दिखाएंगे। लेकिन आपको बता दूं कि बाकायदा इसको पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पाक आर्मी के ऑफिसर्स ने एक ऑफिस प्रोवाइड कराया हुआ था और मुजफ्फराबाद में इसने कवर लिया हुआ था एक टीचर का, खुद को ये टीचर बताता था, लेकिन इसको सिक्योरिटी मिली हुई थी AK-47 से लैस। जो टेररिस्ट है, जो सिक्योरिटी पर्सनल है, वो इसकी सिक्योरिटी में तैनात रहते थे। जैसा आपने बताया, न सिर्फ पुलवामा के नौजवानों को, आसपास के नौजवानों को रेडिकलाइज करना, बल्कि जब जम्मू कश्मीर में कोई अटैक हो तो उसके लिए ओवरग्राउंड वर्कर की तलाश करना, प्लानिंग बनाना, ड्रोन से वेपन्स भेजना, एक्सप्लोसिव भेजना, इन सब में इसकी बड़ी भूमिका थी। और उसी के बाद ये जो भारत की खुफिया एजेंसी है उसकी नजरों में आया। और कुछ देर पहले जैसा मैंने बताया मुजफ्फराबाद में इसकी हत्या हुई है, पुलिस पाकिस्तान की पुलिस वहां पर पहुंची और जाहिर सी बात है कुछ देर बाद, जैसा कि हमेशा होता है, बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान ये आरोप लगाए। जिस तरह से अननोन गनमैन, अज्ञात हमलावरों ने बीते सालों स्ट्राइक किया है, पाकिस्तान एक बार फिर इंडिया पर ये आरोप लगाएगा। हालांकि इंडिया ने साफ, इंडिया हमेशा से कहता रहता है कि इंडिया एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग या इस तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं रहा है। लेकिन राहत की बात तो है ना सुमित, देखिए जिस तरह से पाकिस्तान में, चाहे हाफिज सईद की बात कर लीजिए आप, मौलाना मसूद अजहर की बात कर लीजिए, अज्ञात हमलावरों का इतना खौफ है कि अब वो ये समझने लगे हैं कि भारत में या कहीं अटैक करते हैं तो वो पाकिस्तान में खुद को महफूज अब नहीं समझने लगे हैं।
3: बिल्कुल। और अरविंद एक और इंपॉर्टेंट बात ये कि भले ही देखिए पाकिस्तान की सरकार हो या लगातार ये आतंकवादी संगठन हो, ये भारत पर आरोप लगाते हो, लेकिन हमने देखा है कि इन आतंकी संगठनों में एक तरीके की गैंग वॉर छिड़ गई है अपने वजूद को बचाने के लिए, क्योंकि देखिए जितना ज्यादा जिसका वजूद होता है उसको उतना पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से फंड मिलता है, लगातार उसको सिक्योरिटी मिलती है, और शायद इसी सर्वाइवल के लिए इस तरीके की गैंग वॉर्स को अंजाम भी दिया जा रहा है।
2: बिल्कुल। देखिए अब वहां पर अलग अलग तंजीमें हैं और वक्त जैसे ही बदलता है, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI है वो जो पुरानी तंजीम है, जो हाईलाइट होता है उससे अपना पल्ला झाड़ लेती है। लश्कर-ए-तोयबा खड़ा किया पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पाक आर्मी पाकिस्तान की सरकार ने, उसके बाद जैसे मोहम्मद खड़ा किया, अलबदर खड़ा किया, कई खालिस्तानी आतंकियों को खड़ा किया। इसकी बात की जाए हमजा बुरहान, इसको गुपचुप तरीके से काफी लो प्रोफाइल रखा गया था और इसको टीचर का, एक अध्यापक का कवर दिया गया था और उसी कवर में रहता था, लेकिन लगातार ये इनपुट्स मिल रहे थे कि ये हमजा बुरहान एलियस डॉक्टर न सिर्फ अटैक में शामिल है, जैसा आपने कहा रेडिकलाइजेशन में, बल्कि जो POK से एक्सप्लोसिव है वो भिजवाना, वेपन्स भिजवाना, इन सब में ये शामिल था और काफी यंग, काफी डेस्परेट था ये। और हाल फिलहाल की बात की जाए तो उसकी गतिविधियों को काफी क्लोज मॉनिटर किया गया था और अब से कुछ देर पहले, और क्लोज मॉनिटर इंडियन एजेंसीज कर रही थी, शायद इसकी भनक जो ISI को लगी होगी, उनको लगता होगा कि ये बड़ा एसेट है, इस वजह से इसकी सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई थी। मैं आपको बताऊं, मैं ये एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा हूं कि राउंड द क्लॉक इसके आसपास AK-47 से तैनात सिक्योरिटी पर्सनल रहते थे और उन्हीं सुरक्षा कर्मियों के बीच तकरीबन 1.5 घंटे पहले मुजफ्फराबाद में एक ऑफिस है जो हमजा बुरहान एलियस डॉक्टर का था, इसको उस ऑफिस में घुसकर अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी है। राहत की खबर तो जरूर है कम से कम भारत के लिए, क्योंकि ये भारत का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था, लेकिन पाकिस्तान पुलिस, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो अब इस पूरे मामले की जांच करेंगे।
3: अरविंद, एक और इंपॉर्टेंट बात है, जब हम मुजफ्फराबाद की बात करते हैं, देखिए कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा था जो पाकिस्तान ने कब्जाया हुआ है, और लेकिन इसको पूरी तरीके से आतंकवादियों के एपिसेंटर में तब्दील कर दिया गया है। मुजफ्फराबाद वो इलाका है जहां पर हर तंजीम का आतंकवादी आपको मिल जाएगा, हर तंजीम के आतंकवादी के पीछे जो सपोर्ट होता है वो ISI से ज्यादा उनकी आर्मी का रहता है। लेकिन अंदर खाते ही इन इलाकों में आपस में इस तरीके की गोलीबारी, ये भी दिखाती है कि पाकिस्तान की एजेंसीज का, ISI का, आर्मी का कंट्रोल खोता जा रहा है इनके ऊपर से।
2: बिल्कुल, और जो आपने कहा वो बहुत बड़ी बात है, ये दर्शकों को बताना भी जरूरी है, जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, मुजफ्फराबाद में मीटिंग्स भी होती है अलग अलग तंजीमों की, और बीते दिनों इस तरह के लगातार इनपुट्स एजेंसियों को और एजेंसियों के जरिए हमें भी आते रहे कि खासतौर से पहलगाम हमले के पहले और बाद में जो मुजफ्फराबाद है वहाँ पर सरकारी दफ्तरों में जो आतंकी हैं, ISI के अधिकारी हैं और पाक आर्मी के अधिकारी हैं, उनके बीच लगातार मीटिंग होती रही। और मुजफ्फराबाद में अलग अलग तंजीमों के कई आतंकी रहते हैं, उनको कुछ दूसरा कवर दिया होता है, उनको बाकायदा दफ्तर खुलवा कर रखा जाता है और फिर वो वहां पर एक्टिव रहते हैं। और जैसा आपने कहा, जब एक साथ कई आतंकी एक ही जगह पर रहेंगे तो उनके बीच फिर वर्चस्व की लड़ाई, वो गैंगवार जैसी स्थिति तो होती ही होती है, क्योंकि इन सब के पीछे पैसा भी मोटी रकम उनको मिलती है ISI की तरफ से, तो जाहिर सी बात है उनके बीच गैंगवार की नौबत भी आ सकती है, तो बहुत मुमकिन है ये गैंगवार का भी नतीजा हो। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि जो अज्ञात हमलावर है वो चुपचाप अपना काम करके गया है, जो ये इंडिया का मोस्ट वांटेड आतंकी अल बदर का सबसे खूंखार कमांडर, जो बहुत लो प्रोफाइल रहता था, जम्मू कश्मीर में कई बड़े आतंकी हमलों में इसका रोल रहा है, CRPF के कॉन्वॉय में ग्रेनेड फेंकवाने से लेकर 2019 पुलवामा में जो CRPF के कॉन्वॉय पे अटैक हुआ था उसमें भी इसकी बड़ी भूमिका, वो जो भारत की जो
3: बिल्कुल सबसे बिल्कुल अरविंद आप वक्त कम है, लेकिन अरविंद ओझा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देख रहे थे, एक बड़ा न्यूज ब्रेक जो उसने बताया कि कैसे 2019 के पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड में से एक मास्टरमाइंड को पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर मुजफ्फराबाद के अंदर गैंग वॉर के जरिए अज्ञात हमलावरों ने मार दिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
6: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
8: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
9: Sokudo.

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: Character, the taste of success.
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: GK Max.
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: GK Max. Best पुट्टी?
5: JK Wall Max.
3: Best paint?
6: JK Max.
7: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन most beautiful walls के लिए सिर्फ
3: JK Max paints.
7: JK Max. JK Max paints. खुशियों के रंग.
8: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां.
9: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश.
10: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो. E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
11: यार
12: ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
13: इसमें माइक्रोफाइबर है.
12: माइक्रोफाइबर यानी
13: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत.
12: हमारे सीमेंट में नहीं है.
13: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है.
14: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़. ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: एयू,
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।
8: हम सिखाएंगे आपको मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट बनने का हुनर। ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट।
9: रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
10: बीजेपी वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं। नरेंद्र मोदी ने जो करना था पिछले 3 महीने में, जो आपकी प्रोटेक्शन करनी थी, जो दीवार, आर्थिक दीवार खड़ी करनी थी आपके लिए, वो उन्होंने नहीं की। उल्टा वो जाकर मेलोनी जी के साथ टॉफी खा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं जैसे मजाक चल रहा है।
11: दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। आप दूर दूर से आए, गर्मी में आपसे बात सुनी, मगर आप जब आप घर जाओगे, जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरा पासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए,

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड आतंकी लिस्ट में हमजा बुरहान की हत्या, पीओके में अनजान लोगों ने गोलियों से भून डाला। इटली से स्वदेश लौटे पीएम मोदी आज शाम लेंगे मंत्रिपरिषद की बैठक। 3.0 कार्यकाल की होगी समीक्षा, शाम 5 बजे सभी केंद्रीय और राज्य मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा। पीएम मोदी के विदेश दौरे से करीब $5 मिलियन निवेश को मिली मंजूरी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दी जानकारी। राहुल पर बोले, हार की हताशा में है राहुल। बंगाल में शुभेंदु सरकार का बड़ा आदेश, मदरसों में वंदे मातरम गाना होगा अनिवार्य। आज दिल्ली पहुंचेंगे सीएम, बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सड़क पर उतरेंगी ममता। नीट पेपर लीक मामले में जयपुर में जबरदस्त प्रदर्शन, सड़क पर पुलिस से भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता। संसद की स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेश हुए एनटीए चीफ अभिषेक सिंह।

0: नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूँ। खबरें असरदार की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड में से एक आतंकी की पाकिस्तान में हत्या हो गई है। इस मोस्ट वांटेड आतंकी को गोली मारी गई है। आतंकी हमजा बुरहान की गोली मारकर हत्या की गई है। अज्ञात हमलावरों ने आतंकी हमजा बुरहान को कई गोलियां मारी। पीओके के मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने आतंकी हमजा बुरहान को गोली मारी है। इसमें ढेर हो गया है ये आतंकी। भारत में कई आतंकी गतिविधियों में इसका हाथ था स्पष्ट रूप से। अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस समय जुड़ रहे हैं। अरविंद, किस तरह की भूमिका इसकी मानी गई है हमजा बुरहान की, और ये कब पाकिस्तान पहुंचा था? अरविंद, हम कुछ देर में आपसे फिर बात करते हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। लेकिन ये वो तस्वीर है हमजा बुरहान की जो मुजफ्फराबाद में मारा गया है। पुलवामा हमले के जो अलग अलग मास्टरमाइंड्स हैं उसमें से एक नाम हमजा बुरहान का भी है। अज्ञात हमलावर की हमले में ढेर हो चुका है ये पीओके के मुजफ्फराबाद में। अरविंद, आवाज आ रही है आपको?
1: श्वेता
0: जी, जी अपनी बात रखें।
1: देखिए, एग्जैक्ट तारीख जो एजेंसी है उसको ये नहीं मालूम है, लेकिन ये जरूर है कि ये पुलवामा जम्मू कश्मीर का रहने वाला है और यहाँ पर भी लगातार वो आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था, और जब शिकंजा कसा गया तब ये पाकिस्तान फरार हो गया और बीते कुछ सालों से पीओके के मुजफ्फराबाद में ये एक्टिव था। जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI है उसने इसे कवर दिया था एक प्रिंसिपल का, स्कूल के प्रिंसिपल का, एक स्कूल में ये प्रिंसिपल था, लेकिन असल काम जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े आतंकी वारदातों को अंजाम दिलवाना। जो भारतीय खुफिया एजेंसी के सूत्र हैं वो आज तक को ये बताते हैं कि जो 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था उसमें इसकी बड़ी भूमिका थी हमजा बुरहान, जिसको डॉक्टर के नाम से भी जाना जाता है, और कुछ सालों से इसे सिक्योरिटी भी दी गई थी। राउंड द क्लॉक AK-47 से इसके आसपास सिक्योरिटी पर्सनल तैनात रहते थे। मुजफ्फराबाद में इसे एक ऑफिस खोल कर दिया गया था, और आज तकरीबन 2 घंटे पहले उसी दफ्तर में अज्ञात हमलावर दाखिल होते हैं और ताबड़तोड़ कई गोलियां मार के इसकी हत्या कर देते हैं। एक हेडशॉट भी मारा गया है, सर पर इसे गोली मारी गई है। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है, क्योंकि ये अल बदर का खूंखार कमांडर था। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी पर्सनल पर अटैक, सिक्योरिटी कॉन्वे पर अटैक में इसकी भूमिका थी, और चूंकि ये पुलवामा का था तो जाहिर सी बात है इसका लोकल नेटवर्क काफी मजबूत था और उसका ये इस्तेमाल करता था, लेकिन लो प्रोफाइल काफी रहता था। कई ऐसे बड़े आतंकी हमले हुए, आतंकी वारदात हुई जिसमें इसका नाम नहीं आया, लेकिन बाद में पता चला कि इसकी बड़ी भूमिका थी। तो अज्ञात हमलावरों ने तकरीबन 2 घंटे पहले से मुजफ्फराबाद के एक दफ्तर में गोली मारी है, और कई गोलियां मारी है, हेडशॉट भी मारा गया है जिसमें इसकी मौत हो गई है। श्वेता,
0: बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी, लेकिन आतंकी कुकर्म जो है उसकी पूरी कुंडली बड़ी लंबी है। अरविंद, एक के बाद एक भारत के दुश्मनों की जिस तरीके से अज्ञात हमलावरों के द्वारा हत्या की गई है पाकिस्तान में, ऐसे भी देश के सभी दुश्मन उस ओर रहने वाले थरथर कांपते ही रहते हैं।
1: बिल्कुल, और देखिए आपने जो बात कही काफी यंग, लेकिन अगर बात की जाए, जितना मैं एजेंसियों से बातचीत बीते कुछ सालों से कर रहा हूं, खास तौर से जो टॉप लेवल की हमारी एजेंसीज है वो लगातार इसको मॉनिटर कर रही थी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा खूंखार था, यंग और खूंखार, और शायद इसे ये भनक लग भी गई थी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को, ISI को, क्योंकि बीते दिनों जिस तरह से अज्ञात हमलावर पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में इंडिया के मोस्ट वांटेड को निशाना बना रहा है, उसके बाद शायद ISI को इस बात की भनक लग गई थी। इस वजह से हमजा बुरहान के आसपास सुरक्षा पहरा भी लगाया गया था, AK-47 से लगातार जो सिक्योरिटी पर्सनल है वो इसकी सुरक्षा में तैनात रहते थे।
0: अरविंद, आप बताते रहे अपनी बात, लेकिन जो आप बातें बता रहे हैं उसके बारे में डिटेल्स वो हम एक बार अपने दर्शकों को बताएं। हमजा बुरहान पाकिस्तान फरार हुआ था भारत से, जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला हिस्सा है कश्मीर का, वहां पर मुजफ्फराबाद में वो रह रहा था, और प्रिंसिपल था एक स्कूल में। प्रिंसिपल रहते आतंकी वारदात को उसने अंजाम दिया, एक स्कूल में वहां पर प्रिंसिपल था, और जैसे कि अरविंद बता रहे हैं वो लो प्रोफाइल रहने की कोशिश कर रहा था, लो प्रोफाइल वो रह रहा था। और अरविंद जैसा कि आप समझा रहे हैं लो प्रोफाइल रहने के पीछे वो शायद एक खौफ मन में कि न जाने कब उसकी बारी आ जाए।
1: ऑफ था, क्योंकि अगर बीते दो साल का पैटर्न आप देखें, जो जिस तरह से अननोन गनमैन अज्ञात हमलावरों ने इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को पाकिस्तान में निशाना बनाया, उसके बाद ऐसा लगता है खौफ है। और कई तस्वीरें हमें दिखाई देती थी जिसमें हमजा बुरहान के आसपास जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं वो तैनात रहते थे। और जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है AK-47 से लेस कई सिक्योरिटी पर्सनल इसकी सिक्योरिटी में तैनात थे। मुजफ्फराबाद में इसे एक ऑफिस दिया गया था जहां पर यह काम करता था, कवर इसे स्कूल के प्रिंसिपल था, यानी मुजफ्फराबाद में एक स्कूल जिसमें यह प्रिंसिपल था, और उस स्कूल के बाद एक दफ्तर दिया गया था, उस दफ्तर में बैठकर ये अपना असल काम करता था, जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना, ब्रेन वॉश करना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है श्वेता कि जम्मू कश्मीर में ऐसे कई बड़े आतंकी हमले हुए जिसमें इसका नाम ऑन रिकॉर्ड तक नहीं आया, लेकिन हकीकत यह थी कि उसमें इसकी बड़ी भूमिका रही है। जैसे सूत्र हमें बताते हैं 2019 में जो पुलवामा में सीआरपीएफ के कोनवे पे अटैक हुआ था, इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई तरह की बातें आई, लेकिन इसकी भूमिका भी बड़ी बताई जाती है, चूंकि ये पुलवामा का भी था उस वजह से जीरो इन इसको किया गया था। उसके अलावा
0: सही बात है, जिस तरह की कारनामों को इसकी तरफ से अंजाम दिया गया है, अब इंसाफ हो चुका है और अज्ञात हमलावरों के हमले में ढेर हो चुका है ये आतंकी भी। बहुत शुक्रिया अरविंद ओझा हमारे संवाददाता, ये सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी हमें दे रहे थे। अब पश्चिम बंगाल की बात करते हैं जहां बकरीद से पहले कुर्बानी पर तनातनी बढ़ गई है। आम जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर ने कहा है कि बकरीद पर कुर्बानी तो होकर रहेगी। विवादित बयान देते हुए हुमायूं कबीर ने कहा है कि गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी की भी कुर्बानी होगी, ऊंट की भी होगी, सारे पशु जो कुर्बानी के लिए जायज हैं उन्हें कुर्बानी देने से कोई नहीं रोक सकता। तो बकरीद से पहले बंगाल में फिर से माहौल गर्माने की कोशिश है और इसको लेकर बयानबाजी शुरू हो गई।
2: कोई मुसलमान को गाय खाने के मना करे तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का जियो करके वो मना कर दीजिए, लेकिन कुर्बानी तो होगा ही। कुर्बानी कोई मना करेगा वो भी नहीं सुनेगा। वो कुर्बानी सत्ता में आए शुभेंदु ठीक है, लोगों को उनको पास वोट डाला, वो सरकार चलाएगी, लेकिन मेरा 1400 साल से पहले से एक कुर्बानी होके आ रहा है। अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होगी, गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊंट भी होगी, दुम्बा भी होगी, सारे पशु जो है वो कुर्बानी का जायज है, वो कुर्बानी होगी, कोई रुक सकता नहीं।
0: तो बकरीद और कुर्बानी पर तनातनी बढ़ी है क्योंकि बंगाल की शुभेंदु सरकार ने कुर्बानी को लेकर 1950 के नियमों को सख्ती से लागू करने की कवायद शुरू की है। अब जब बंगाल सरकार 1950 के नियम को सख्ती से लागू कराने का फैसला कर चुकी है तो गाय पालने वाले और कुर्बानी के लिए गाय खरीदने वाले बकरीद से पहले आर्थिक संकट की दुहाई देने लगे हैं।
3: गाय को माने या ना माने लेकिन दूध गाय का ही पीता होगा ना गाय का दूध। क्या जो लोग गाय को खाते हैं क्या वे सुअर का दूध पीते हैं क्या? नहीं, दूध तो गाय का ही सब लोग पीते हैं।
0: गाय को लेकर योगी आदित्यनाथ का यही आक्रामक रूप पश्चिम बंगाल चुनाव में भी दिखता रहा।
4: गौ माता को कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बटने नहीं देंगे। याद रखना, मां का सपना तब साकार होगा। हमें बंगाल की धरती को घुसपैठियों की धरती नहीं, मां काली, मां दुर्गा और मां सिद्धेश्वरी की धरती के रूप में स्थापित करना होगा।
0: गो माता को कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बटने नहीं देंगे का नारा लगातार पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रचार में गूंजता रहा।
4: ये गारंटी केवल बीजेपी दे सकती है कि दंगा नहीं होगा, कर्फ्यू नहीं लगेगा, लेकिन गौ माता को कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे।
0: और अब पश्चिम बंगाल में बकरीद से पहले हलचल है। हलचल इतनी कि जो लोग गाय को केवल बकरीद पर कुर्बानी के लिए बेचने के मकसद से पालते रहे, उन्हें लग रहा है कि अब वो क्या करेंगे, क्योंकि बंगाल में सरकार बनते ही शुभेंदु सरकार ने उस पुराने कानून को सख्ती से पालन कराने का ऐलान कर दिया, जिसे सुनकर अब बकरीद पर गाय बेचने वाले कहते हैं कि बस इस बार सरकार छूट दे दे।
5: सरकार से हमारा निवेदन है कि जैसे चल रहा था इस साल के लिए हमको छूट दीजिए, क्योंकि हमारे पास जितना भी जानवर है हम इसका सर क्या करेंगे।
0: असल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने बंगाल में गाय काटने पर प्रतिबंध लगा दिया, पशु वध के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी कर दिया, तय कर दिया कि 14 साल से ज्यादा उम्र के मवेशी का ही वध किया जा सकता है और उसके लिए सर्टिफिकेट दिखाना होगा।
6: हमारा स्ट्रिक्ट नियम जो 1950 का नियम में लिखा हुआ है, 14 साल के नीचे के कैटल को काटा नहीं जाएगा, और जो कैटल एकदम ही अस्वस्थ है या अपाहिज है या एज हो गया है, उसको पर्टिकुलर ऑफिसर्स उनको सर्टिफिकेट देना होगा। तो सर्टिफिकेट अगर आप लोग दिखा सकते थे इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1950 का जो आईन हमारे राज्य में है वो दूसरे राज्य में नहीं है, और ये राज्य में बहुत सख्त है। ये अलग बात है कि अभी तक वो आईन लागू नहीं किया गया था, क्योंकि पिछला सरकार बहुत सारा आईन नहीं मानते थे, वोट बैंक का हिसाब करते थे, लेकिन इस सरकार में वो नहीं होगा, क्योंकि हम लोग काउस को माता भगवान समझते हैं।
0: अब हालत ये कि शुभेंदु सरकार के फैसले के बाद टीएमसी के विधायक और सांसद तक बकरीद में गाय की कुर्बानी के लिए कोर्ट तक दौड़ गए। कलकत्ता हाईकोर्ट में एक मामला दायर किया गया, जिसमें राज्य सरकार की 13 मई की उस अधिसूचना को चुनौती दी गई जो बकरीद से पहले गायों और भैंसों की कुर्बानी से जुड़ी। रघुनाथगंज के विधायक अखरुज्जमा ने कलकत्ता हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा इस मामले के सिलसिले में कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने पेश हुई, जो दावा करती है कि बंगाल के गरीब गाय इसीलिए तो पालते हैं ताकि उन्हें बेचकर पैसा कमाया जा सके, और टीएमसी विधायक का दावा है कि कुर्बानी एक धार्मिक प्रथा है, फिर चाहे गाय हो या भैंस, अल्लाह के नाम पर कुर्बानी दी जाती है।
7: হিন্দুদের উপরে এটা খুব খারাপ একটা প্রভাব পড়েছে, কারণ যারা এর সাথে যুক্ত তারাও তো এই ফেস্টিভ্যালকে সামনে রেখে এই ক্যাটেলটাকে রিয়ার করেছে, খাইয়েছে। মহিলারা যারা এদের সাথে যুক্ত তারা নিজের সোনা বন্ধক রেখে স্বনির্ভর গোষ্ঠী থেকে লোন নিয়ে, বন্ধন ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে তারা এটা করেছে। তাই এই এত কম টাইমের মধ্যে এই নোটিফিকেশনটা এক আমাদের গ্রামীণ যেটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সেটার মধ্যে ঘা লাগছে।
0: स्थिति अब ये बंगाल में बन गई कि बकरीद से पहले बीजेपी की विधायक रेखा पात्रा बशीरहाट में मवेशियों को लेकर जाते टेम्पो रोककर जांच करने लगी, गोवंश का फिटनेस सर्टिफिकेट मांगने लगी, पता करने लगी कि बकरीद से पहले जो गोवंश जा रहा है वो 14 साल से बड़ा है या नहीं, जो नहीं मिला गाड़ी से उस गोवंश को उतरवा लिया गया। इन्हीं सब वजह से बंगाल की राजनीति में अब तक बड़ी दखल रखने वाले कुरपुरा शरीफ के पीरजादा तोहा सिद्दीकी ने तो ये कहना शुरू कर दिया कि मुस्लिम नागरिक बंगाल में गाय की कुर्बानी ना ही दे।
8: ভারতের দ্বিতীয় মুসলিম তীর্থভূমি ফুরফুরা দরবার শরীফ থেকে বলছি, আমরা এবছরে কুরবানি দেব, কিন্তু গরু কুরবানি দেব না, অবশ্যই আইনকে সম্মান জানাতে হবে।
0: लेकिन सरकार बंगाल में लगातार ये याद दिला रही है कि कानून तो पहले से था, बस ममता सरकार में गायों की कुर्बानी की छूट मिलती रही, अब की बार बस कानून का पालन सख्ती से कराया जा रहा है।
9: तो पहले से था, अदालत का फैसला था, यहाँ मान्य नहीं होता, सरकार जानबूझकर उसको नहीं मानती थी और लोगों को धोखा दिया जाता था नहीं मानने के लिए, उसी को फिर से हमारी सरकार सामने लाई है। जो पहले से कोर्ट का फैसला है, संवैधानिक व्यवस्था के अंदर जो चीजें उसी को हमने लागू किया है, लोगों को याद करा दिया कि आप कानून से चलिए।
0: इस बीच बंगाल के दूसरे मुस्लिम धर्मगुरु अलग सुर पकड़ लेते हैं, गाय के नाम पर राजनीति का दावा करके उसे राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करते हैं।
10: और हम सरकार से अपील करते हैं कि गाय को नेशनल जानवर का दर्जा दीजिए और इसका मुकम्मल खरीद फरोख्त, जो इसको जबा करके हमारा भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर बना हुआ है, उस पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। और ये खास करके यूपी में सबसे ज्यादा स्लॉटर हाउस है जिसका 99% मालिक हिंदू भाई है।
0: बकरीद पर गाय को 30,000 से 1.5 लाख रुपए तक में बेचने का काम पहले बंगाल में होता आया, लेकिन इस बार शुभेंदु सरकार ने जब पुराने नियम को सख्ती से लागू कराना शुरू किया तो गाय पालने वाले, गाय बेचने वाले और कुर्बानी के लिए गाय खरीदने वाले तीनों को कानून का डर सताने लगा है। शुभेंदु अधिकारी जब से मुख्यमंत्री बने उसके बाद आज पहली बार बेलूर मठ पहुंचे। शुभेंदु अधिकारी ने मठ के साधु संतों से आशीर्वाद लिया। ये वहीं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां बेलूर मठ पहुंचने के बाद वो दंडवत हुए, प्रणाम किया सबको। भारत की आजादी के आंदोलन से लेकर स्वतंत्रता मिलने के बाद राजनीति के हिसाब से भी कई दफा आप यहां पर नेताओं का पहुंचना देखते हैं, लेकिन मठ स्वयं को राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखते हुए एक ऐसे स्थान के रूप में स्थापित है जहां पर लोगों की भरपूर आस्था है। पश्चिम बंगाल में जब से शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनी है हिंदुत्व की सियासी बयार बह रही है। हिंदुत्व के रथ पर सवार शुभेंदु अधिकारी ने एक और बड़ा फैसला लिया है। बंगाल के सभी मदरसों को जारी फरमान में वंदे मातरम को गाना जरूरी कर दिया है।
11: बंगाल में शुभेंदु का एक और सियासी कार्ड। बंगाल के मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य। बंगाल में मदरसा चलाना है तो वंदे मातरम गाना होगा। अपने हिंदुत्व के एजेंडे को शुभेंदु अधिकारी ने नई धार दे दी है। इस धार की चपेट में अब बंगाल के मदरसे आए हैं। शुभेंदु सरकार का ये नया आदेश बंगाल में नया बवंडर लेकर आने वाला है। क्यों, ये आप इस आदेश को पढ़कर समझ सकते हैं। इस आदेश में साफ लिखा है, पिछले तमाम आदेशों और प्रक्रियाओं पर रोक लगाते हुए मैं मदरसा में क्लास शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाने का आदेश देता हूँ। ये पश्चिम बंगाल के मदरसा शिक्षा निदेशालय का आदेश है जिसे फौरन लागू करने का फरमान जारी हुआ है। शुभेंदु सरकार का ये नया आदेश सभी तरह के मदरसों पर लागू होगा। इनमें सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सरकारी सहायता प्राप्त दोनों तरह के मदरसे हैं।
12: सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम का गायन कंपलसरी करने के बाद अब पश्चिम बंगाल सरकार ने मदरसों में भी वंदे मातरम का गाना अनिवार्य कर दिया है। एक नोटिफिकेशन के जरिए कहा गया है कि जो भी मदरसे सरकार के अंतर्गत आते हैं, खासतौर पर अल्पसंख्यक विभाग और मदरसा विभाग के अंतर्गत आते हैं, उनमें चाहे वो एडेड हो या अनएडेड मदरसा हो, उनमें अब से वंदे मातरम का गाना कंपलसरी होगा। तो
0: बंगाल से एक और बड़ी खबर आ रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजी कार केस में सबूत मिटाने के आरोपों की फिर से जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने पीड़ित परिवार के आरोपों की फिर से जांच के आदेश दिए हैं। सीबीआई की 3 सदस्यीय एसआईटी जांच करेगी। घटना की पूरी टाइमलाइन की दोबारा जांच होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 25 जून तक रिपोर्ट मांगी है। तो ये लंबे समय से ये मांग थी पीड़ित परिवार की और अब अदालत की तरफ से ये कहा गया है कि दोबारा जांच हो। अभी के लिए इतना ही। आपसे रात 8 बजे खबरदार में मुलाकात होगी जहां आज आपको पश्चिम बंगाल की फलता सीट पर होती वोटिंग की राजनीति बताएंगे। क्या हार्ट अटैक के डर से भागा अभिषेक का पुष्पा? आज शाम मंत्रिपरिषद के साथ प्रधानमंत्री पीटीएम करने वाले हैं। ये पीटीएम मतलब प्रधानमंत्री टास्क मीटिंग, जहां मंत्रियों को 2 साल में पूरे हुए टास्क का हिसाब देना है। इस अहम बैठक की हर खबर से भी खबरदार करेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश में बिजली का हक मांगा तो मुकदमे की धमकी देती पुलिस से आपको खबरदार करेंगे। और कौन से राज्य में यूनिवर्सिटी जमीन पर कम कागज पर ज्यादा चल रही है, जनता का पैसा बर्बाद करने वालों से हम खबरदार करेंगे। तो मिलते हैं रात 8 बजे आपसे। तब तक देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
13: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
14: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

साइड कश्मीर में अनजान लोगों ने गोलियों से भूना। इटली से स्वदेश लौटते ही प्रधानमंत्री मोदी आज शाम लेंगे मंत्रिपरिषद की बैठक। 3.0 कार्यकाल की होगी समीक्षा। शाम 5 बजे सभी केंद्रीय और राज्य मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड पर होगी चर्चा।

0: प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरों से करीब $5 मिलियन निवेश को मिली मंजूरी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दी जानकारी। राहुल गांधी पर बोले, हार की हताशा में है राहुल। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार का बड़ा आदेश, मदरसों में वंदे मातरम गाना होगा अनिवार्य। आज दिल्ली पहुंचेंगे सीएम। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सड़क पर उतरी ममता बनर्जी। नीट पेपर लीक मामले में जयपुर में जबरदस्त प्रदर्शन। सड़क पर पुलिस से भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता। संसद की स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेश हुए एनटीए चीफ अभिषेक सिंह।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकु।
3: पांच देश तूफानी दौरा और दिल्ली लैंड करते ही महामंथन। पूरे 11 महीने बाद आज शाम 5 बजे सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल। 9 जून को सरकार के 12 साल, क्या कैबिनेट में होगी सबसे बड़ी फेरबदल। दुनिया युद्ध की आग में झुलस रही है, मोदी भारत के लिए सुरक्षा कवच तैयार कर रहे हैं। 12 मंत्रालय, 2 साल का रिपोर्ट कार्ड, रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का अगला चैप्टर।

0: इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर की जो दिल्ली के गलियारों से आ रही है। आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जो इस बैठक में सरकार के अगले 3 सालों के साथ साथ विजन 2029 तक का मंथन किया जाएगा। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी संवाददाता हमारे साथ जुड़े होंगे। हमारे साथ हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़े होंगे, साथ ही हमारे साथ ऐश्वर्या पालीवाल भी हमारे साथ जुड़े होंगे, और हमारे साथ रक्षा मंत्रालय पर नजर रखने वाले मंजीत नेगी भी हमारे साथ जुड़े होंगे। लेकिन सबसे पहले इस मीटिंग को लेकर एक बड़े अपडेट के साथ शुरुआत करते हैं। हम आपको बता दें, एक बड़ी खबर आ रही है कि इस बैठक को करीबन 1 घंटे बाद यानी करीब 5 बजे प्रधानमंत्री के दफ्तर सेवा तीर्थ में शुरुआत होगी। करीब 11 महीने बाद हो रही इस महाबैठक को लेकर कूटनीति और राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। एक तरफ जहां मोदी कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें लगाई जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी एशिया के युद्ध के बीच सरकार बड़े सुधारों का खाका खींचकर बड़ी तैयारियां कर रही है। क्या है आज की बैठक का पूरा एजेंडा, सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
1: आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों के तूफानी दौरे से दिल्ली लौटे और अब से कुछ देर बाद राजनीतिक हलचल चरम पर होगी। मौका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने जा रही मंत्रिपरिषद की महाबैठक का। पूरे 11 महीने बाद होने जा रही इस बैठक की टाइमिंग बेहद खास है। आज शाम 5 बजे शुरू होने वाली ये मैराथन बैठक करीब 4 से 5 घंटे तक चल सकती है। दरअसल आगामी 9 जून को मोदी सरकार 3.0 के 2 साल और केंद्र में मोदी सरकार के बेमिसाल 12 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस ऐतिहासिक पड़ाव से ठीक पहले हो रही इस बैठक को लेकर सियासी गलियारों में कैबिनेट फेरबदल की अटकलें भी बेहद तेज हो गई हैं। कई मंत्रियों के परफॉर्मेंस पर आज मुहर लग सकती है, लेकिन इस बैठक का असली एजेंडा है सुधार और भविष्य का रोड मैप। बैठक के दौरान करीब 1 दर्जन मंत्रालयों के सचिव प्रधानमंत्री के सामने एक हाई लेवल प्रेजेंटेशन देंगे। इनमें ऊर्जा, वित्त, रेलवे, वाणिज्य, श्रम, कृषि और सड़क परिवहन जैसे भारी भरकम मंत्रालय शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सख्त निर्देश के बाद सभी मंत्रालय पिछले 2 सालों में किए गए सुधारों का पूरा लेखा जोखा कैबिनेट सचिवालय को पहले ही सौंप चुके हैं। आज मंत्रालयों के सचिव न सिर्फ ये बताएंगे कि अब तक उन्होंने क्या कदम उठाए हैं, बल्कि ये भी बताएंगे कि देश को आगे ले जाने के लिए उनके पास फ्यूचर प्लान क्या है। इस बैठक की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि इस समय दुनिया पश्चिम एशिया में छिड़े युद्ध के अंजाम भुगत रही है। इस वैश्विक संकट के मद्देनजर भारत की अर्थव्यवस्था और सप्लाई चेन को सुरक्षित रखने के लिए पीएम मोदी कई बड़े और कड़े आर्थिक सुधारों की घोषणा कर सकते हैं। बैठक के आखिर में प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन होगा जो सरकार के आने वाले एजेंडे की दिशा तय करेगा। साफ है कि 2026 के इस दौर में मोदी सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के अपने नारे को और धार देने जा रही है। अब नजरें शाम 5 बजे से शुरू होने वाली महाबैठक पर टिकी हैं, जिसमें कई नए फैसलों और सुधारों से पर्दा उठेगा। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: और इस मीटिंग थोड़ी देर में मीटिंग शुरुआत होने वाली है, लेकिन इसके एजेंडे को लेकर हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं हिमांशु का। हिमांशु देखिए, 2014 में हमें याद है कि जब सरकार बनी थी, प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए थे, तब उनका एजेंडा था डिसिप्लिन, ट्रांसपेरेंसी, या फिर आप कह सकते हैं डेवलपमेंट। 2024 का एजेंडा था रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, इनफॉर्म। तो अभी इस मीटिंग को लेकर क्या कुछ एजेंडा है? क्या सरकार ये डिसाइड करेगी कि आखिरकार अगले 3 साल में क्या खाका डिसाइड किया जाएगा, किस तरीके से उस पर चला जाएगा?
2: देखिए, ये तो रहेगा ही, उसके साथ साथ सुमित जो है 10 मंत्रालयों की जो है वो प्रेजेंटेशन रहेंगी, जिसमें लेबर मिनिस्ट्री है, जिसमें पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, जिसमें कृषि मंत्रालय है, जिसके अंदर एटॉमिक ऊर्जा है, साथ ही साथ जो है ऊर्जा मंत्रालय है। तो ऐसे कई मंत्रालयों की जो है वो प्रेजेंटेशन, इसमें रोड एंड ट्रांसपोर्ट भी है, और अर्थव्यवस्था को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए ये रहेगा। उसके साथ साथ क्योंकि इस सरकार के 2 साल जो है वो 9 जून को पूरे होने वाले और 11 महीने बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, तो यह भी मानकर चला जा सकता है कि मंत्रिपरिषद से में फेरबदल से पहले ये एक बड़ी बैठक है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, ये नारा है उनकी सरकार का, और इसीलिए वो हमेशा ये भी कहते हैं कि गतिशील सरकार होनी चाहिए और तेज गति के साथ काम करना चाहिए। जो काम आप अपने समय में जिसका शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी आप ही कीजिए, यही सरकार का होना चाहिए। और इसीलिए 2 साल के सभी मंत्रालयों की रिपोर्ट को वो मंगा लिया गया है, उसको खंगाला जा रहा है कि किस मंत्रालय की कौन सी उपलब्धि है, कौन सी परियोजना को जो है लागू किया गया है, और ये

0: इतना कहां तक पहुंची है और अगर
1: बिल्कुल
0: जमीन पर नहीं पहुंची है तो उसके क्या कारण है, उसको कैसे पूरा किया जाए। लेकिन इतना जरूर है मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल से पहले ये बड़ी बैठक है, क्योंकि 2 साल के अंदर जो है लगभग कोई भी केंद्रीय मंत्रालय केंद्रीय मंत्रिमंडल हो उसमें फेरबदल जरूर होता है, और इस बार भी 2 साल पूरे होने वाले 9 जून को, तो उससे पहले ये मानकर चला जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस स्पीड से चलते हैं उसी स्पीड से चलने के लिए अपने मंत्रियों को भी कहते हैं। वो ये कहते हैं कि देखिए काम करने का तरीका यह है, आज जो फाइल आपके टेबल पे है वो शाम को नहीं आने रहनी
1: बिल्कुल
0: चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु, देखिए वही परफॉर्मेंस के साथ साथ उसका काउंटर चेक भी करने की कोशिश की जाती है, और इस तरीके का ही एक रिपोर्ट कार्ड हर हर हर 2 साल के अंदर तय किया जाता है, उसको सामने रखा जाता है। अब से कुछ ही दिनों में जिस तरीके से हिमांशु बता रहे थे 9 जून को सरकार के 12 साल पूरे हो जाएंगे, मोदी सरकार की 12 साल पूरे होने पर क्या 12 मंत्रालयों के सचिव लगातार अपने प्रेजेंटेशन में देंगे, आइए आपको बड़ी स्क्रीन पर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि आखिरकार 12 सालों की उपलब्धि या फिर 12 मंत्रालयों की जो रिपोर्ट कार्ड होगी उसमें क्या क्या कुछ हो सकता है। मोदी सरकार के 12 साल और 12 बड़े काम, देश भर में स्वच्छता पीने के पानी की उपलब्धता, यानी आप कह सकते हैं कि स्वच्छ भारत की बात कर लीजिए, हर घर जल की बात कर लीजिए, ये प्रमुखता से सरकार ने पिछले 12 सालों के अंदर इस पर काम किया है। अब बिना न्यूनतम राशि जनधन के 53 करोड़ बैंक खाते खोले गए, आप देखिए इतने ज्यादा बड़े मैसेज स्केल पर, और शायद इसी वजह से डिजिटलाइजेशन के अंदर बहुत बड़ा फायदा पूरे देश भर को हुआ, दूसरी बड़ी उपलब्धि हमने आपको गिनाई। अब काले धन टेरर फंडिंग पर नोटबंदी से प्रहार किया गया, ये वो बड़ा आप कह सकते हैं कि बड़ा स्टेप था जिससे जो टेरर फंडिंग थी उस पर बहुत हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की गई। अब चौथा बड़ा कारण क्या है, चौथा बड़ा काम क्या है, मेक इन इंडिया से देश बना प्रोडक्शन का ग्लोबल सेंटर, यानी बहुत सी चीजें जो थी जो हम दुनिया भर के तमाम देशों से मंगाते थे वो हमने खुद बनाना शुरू किया, और शायद इसी वजह से एक ग्लोबल सेंटर के तौर पर हमारा एक इमेज क्रिएट हुई। अब डिजिटल इंडिया से ग्रामीण इलाकों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाया गया, इंटरनेट के साथ साथ उनकी इकोनॉमी को जोड़ा गया, लगातार ये बड़ा काम था। अब छठा बड़ा काम का आधार एक्ट, सब्सिडी सरकारी योजनाओं में आप कह सकते हैं पारदर्शिता लाई गई, यानी जो जो आप कह सकते हैं सरकारी बेनिफिट होते हैं वो उनके सीधे अकाउंट में जाते हैं, और शायद इसी वजह से लोगों के अकाउंट में जाने से उसका भ्रष्टाचार या दूसरी चीजों पर उसके लगाम लग सकी। अब सातवां बड़ा अपडेट क्या है, उज्ज्वला योजना से ग्रामीण परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन दिए गए, यानी घर घर तक एलपीजी कनेक्शन पहुंचाया जा सके, प्रदूषण पर रोकथाम इससे लगे वो भी बड़ा कदम उठाया गया। आठवां बड़ा अपडेट, आठवां बड़ा काम क्या है ये भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए आठवां बड़ा काम था किसान सम्मान निधि से किसानों को सीधे वित्तीय सहायता दी गई, जो इकोनॉमिक बेनिफिट थे वो किसानों तक सीधे उनके बैंक अकाउंट तक पहुंचे, इसी वजह से उनके जो बैंक खाते थे उनसे कनेक्ट किया गया लगातार आधार के हिसाब से। और नौवां बड़ा काम क्या था, उरी पुलवामा पहलगाम हमलों के बाद पाक को मुंहतोड़ जवाब दिया गया, यानी क्विक रिस्पांस दिया गया, हमारी सेनाओं को खुली छूट दी गई कि अब वो अपने हिसाब से एक्शन ले सकते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी जहां पर सेनाओं के साथ साथ स्ट्रेटजी में बहुत क्लियर विजन हमने दिखाया। अब दसवां बड़ा काम क्या था, जीएसटी लागू कर देश में एक देश एक टैक्स सिस्टम लागू करना, यानी टैक्स सिस्टम के अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस थी उसको दूर करने के लिए एक टैक्स एक देश के हिसाब से काम किया गया, एक सिस्टम को डेवलप किया गया। ग्यारहवां बड़ा काम क्या था, आयुष्मान भारत योजना में गरीबों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज दिया जाए, और देखिए मुफ्त इलाज जो हर देश की बुनियाद होता है उसको लागू करना, उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है ये भी एक बड़ा काम किया गया। अब अनुच्छेद 370 को खत्म करना, जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करना, शायद एक बड़ा लैंडमार्क आप कह सकते हैं डिसीजन था सरकार का, और जिसके बाद आप कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर हो लद्दाख हो उसमें डेवलपमेंट के लिए नए काम भी किए गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल भी जुड़ गई हैं, ऐश्वर्या पालीवाल का रुख करते हैं। ऐश्वर्या देखिए ये तमाम 12 काम हमने बताए लेकिन कुछ और भी काम थे जो सरकार ने किए और जो एक मील का पत्थर साबित हुए खासतौर पर सरकार के साथ साथ लोगों की डेवलपमेंट में।
2: बिल्कुल देखिए सुमित, कहीं ना कहीं आप भी जिस तरीके से बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक टास्क देते हैं और फिर वो कहते हैं कि जितनी स्पीड से ये टास्क आप पूरा करेंगे उतना बेहतर है हिंदुस्तान के लिए। इस समय सबको मालूम है कि वेस्ट एशिया में जो वॉर है वो थमने का नाम नहीं ले रही है, किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी को शील्ड किया जा सके और वो कौन कौन से मंत्री हैं, कौन कौन से वो डिपार्टमेंट्स हैं जो फोर फ्रंट में आके ये काम करेंगे, इन सब चीजों पर विस्तार में बात होगी। कहीं ना कहीं कोशिश ये भी की जाएगी कि अगले एक साल तक हिंदुस्तान की इकोनॉमी को एक तो किस तरीके से किया जा सके और दूसरा जिस दर पे इकोनॉमी बढ़ती आ रही है पिछले कई सालों में उसी तरीके से कैसे वो आगे बढ़ती रहे, इन सब चीजों का खासा ध्यान रखा जाएगा। प्रेजेंटेशंस जो होंगी, प्रेजेंटेशंस के अंदर ये बताया जाएगा कि अब तक जो 2 सालों के अंदर काम हुआ है क्या वो उसी पेस पे हुआ है जिस पेस पर आशा थी, जिस पेस पर उम्मीद थी, और अगले आने वाले 1 से 1.5 साल जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं उनके अंदर सरकार किस तरीके से तेजी से आगे बढ़ेगी, इन सब चीजों का ही को देखा जाएगा और कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट कार्ड ऑफ सॉर्ट्स जो है मीटिंग के बाद वो बनाया जाएगा, वो तय किया जाएगा और आगे आने वाला एक रोड मैप भी इस मीटिंग के अंदर
1: बिल्कुल आने वाला रोड मैप और अपने परफॉर्मेंस को रिव्यू करना। सरकार हर दो साल के बाद ये काम करती है। और आइए अब आपको एक बेहद दिलचस्प ट्रेंड दिखाते हैं और आपको एक बार फिर से बड़ी स्क्रीन पर लिए चलते हैं। जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी तब तक सरकार बनने के दो साल बाद उसका विस्तार होता है, यानी ये ट्रेंड है कि दो साल के बाद अपने कामों की समीक्षा की जाती है, मंत्रालयों में फेरबदल किया जाता है, नए मंत्रियों को उसमें शामिल किया जाता है। हर बार दो साल यानी शपथ ली गई। 26 मई 2014 को पहला बड़ा विस्तार किया गया, 5 जुलाई 2016 को यानी ठीक दो साल बाद यह विस्तार किया गया और रिशफल किया गया। अब इसके बाद दूसरी बार यानी 2.0 की अगर बात करें, शपथ ली गई 30 मई 2019 को, 7 जुलाई 2021 को फिर से विस्तार किया गया, बदलाव किए गए और शायद एक ट्रेंड है कि अपने काम की समीक्षा आप करते हैं और खास तौर पर ये 2.0 के अंदर बड़े बदलाव 7 जुलाई 2021 को किए गए। अब आपको मोदी सरकार के 3.0 के बारे में बात करते हैं। अब आप कह सकते हैं 9 जून 2024 को और पहला बड़ा विस्तार आज होगा या नहीं होगा, 9 जून को आप कह सकते हैं कि जो आने वाले वक्त में कुछ ही दिनों के अंदर दूसरा साल पूरा हो जाएगा। लेकिन कहा यह जा रहा है एक बार फिर से उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए ना सिर्फ रिशफल होगा बल्कि ये कोशिश की जाएगी कुछ नए चेहरों को सरकार में जोड़ा जा सके, काम को तेजी से बढ़ाया जा सके और हर किसी की परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जा सके। और आज इसी क्रम में लगातार ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। इस मीटिंग को प्रधानमंत्री मोदी खुद अध्यक्षता करेंगे और इसमें सुझावों के साथ साथ हर किसी के काम के मंत्रालय के काम को रिव्यू किया जाएगा। आज कम से कम 12 मंत्रालयों के सचिव सुधारों की दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी देंगे, साथ ही आगे के सुधारों को लेकर अपनी योजनाएं भी बताएंगे। जहां तक कि गृह मंत्रालय की बात करें तो उसके बड़े काम पर भी आपको कुछ खबरें बताते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने देश को पूरी तरीके से नक्सल मुक्त घोषित कर दिया, अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म कर दिया गया, जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर उसे मुख्य धारा से जोड़ा गया। इसके अलावा उपनिवेश कानूनों को बदलाव कर भारतीय न्याय संहिता BNS लागू कर दी गई, पड़ोसी देशों के पीड़ित अल्पसंख्यकों के लिए CAA नियम अधिसूचना जारी की गई, जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 70% और पूर्वोत्तर में उग्रवाद पर 64% की भारी कमी आई, यानी लगातार ये कोशिश की गई कि अपने जो इंटरनल सिक्योरिटी है उस पर भी काम किया जा सके। वो बड़े काम क्या थे हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। और वहीं देखिए रक्षा मंत्रालय के काम और इंटरनल काम किस किस तरीके से किए गए हमने आपको बताया, हमारे साथ मंजीत नेगी बने हुए हैं। मंजीत देखिए आप लंबे समय से दो दशकों से ज्यादा रक्षा मंत्रालय हो या इंटरनल सिक्योरिटी इनको देखते हैं, क्या कुछ बड़ी उपलब्धि रही खासतौर पर फोर्सेस के परस्पेक्टिव से जिस तरीके से उनके काम करने के तरीकों में डिसीजन मेकिंग के अंदर यहां तक कि उनके हथियार खरीदने की प्रणाली में बड़े बदलाव किए गए?
3: देखिए सुमित आज की बैठक की बात करें तो ऊर्जा सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा होगा जो सरकार के लिए चुनौती है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यात्रा की शुरुआत UAE से की थी और इटली में वो यात्रा खत्म हुई। आज मेरे पीछे जो प्रधानमंत्री का कार्यालय है जहां पर इसी साल फरवरी में प्रधानमंत्री इस नए कार्यालय में शिफ्ट हुए थे वहां पर इस बैठक की पूरी तैयारी हो चुकी है क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटरीट भी प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ ही इस नए कार्यालय में है। और इसीलिए अगर बात करें खासतौर से जो आर्थिक मुद्दे हैं और उसके अलावा सुरक्षा की आपने बात की तो नक्सलवाद क्योंकि दो दिन पहले ही जो गृहमंत्री अमित शाह उन्होंने इस बात की घोषणा की कि अब देश में नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो चुका है उसका भी एक प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री के सामने होगा। इसके अलावा विदेश यात्रा से लौटने के बाद प्रधानमंत्री ने तमाम खासतौर से आर्थिक मुद्दे पर जो आर्थिक सलाहकार समिति है उसने भी इस वक्त जो पश्चिम एशिया के हालात हैं उसको लेकर क्या सरकार के आर्थिक मोर्चे पर तैयारी है उसको लेकर एक जो इंटरनल मिनिस्ट्रल ग्रुप बनाया गया है वो किस तरह से स्थिति पर नज़र बनाए हुए है। और उसके अलावा अगर रक्षा मंत्रालय की मैं बात करूं तो ऑपरेशन सिंदूर इस वक्त जारी है सुमित और खासतौर से आत्मनिर्भरता पर सेनाओं को जोर है किस तरह से सिंदूर के दौरान देश के जो देश के बने हथियार हैं उनसे लड़ा गया और आने वाले दिनों की भी तैयारी को लेकर इस बात पर चर्चा होगी कैसे इस वक्त देश दुनिया में जो युद्ध के हालात हैं उसमें कैसे आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल मंजीत आप रक्षा मंत्रालय की बात करें तो रक्षा मंत्रालय में बीते 12 वर्षों में कई बड़े काम किए गए। उरी पुलवामा हमले के बाद जहां उनके नेतृत्व में सर्जिकल स्ट्राइक एयर स्ट्राइक्स के जरिए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया, वहीं पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर जिसका जिक्र मंजीत नेगी कर रहे थे पाकिस्तान के आतंकी कैंपों के अलावा उनके सैन्य ठिकानों को भी तबाह कर दिया गया, वित्तीय वर्ष 2025-26 में रक्षा निर्यात करीबन 38,000 करोड़ के पास पहुंचा और आप कह सकते हैं कि यह सबसे ज्यादा था पिछले कुछ सालों में। तीनों सेनाओं में 4 साल के लिए अग्निवीरों की भर्ती की क्रांतिवीर शुरुआत भी की गई। पूर्व सैनिकों के लिए सालों से अटके हुए वन रैंक वन पेंशन को लागू किया गया। घरेलू प्रोडक्शन और कॉरिडोर को निर्माण भी शुरुआत की गई। इसी के तहत वडोदरा में C-295 विमानों के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स की शुरुआत की गई। यानी ये बड़ी उपलब्धियां थी और लगातार इन बड़े कामों के दौरान अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने का काम भी किया गया। मनजीत देखिए, जब आप आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, आपने कई ऑपरेशंस की बात की, सबसे बड़ा आप कह सकते हैं जो पॉइंट था, पॉजिटिव पॉइंट था, वो ये था कि इस सभी ऑपरेशंस में भारत अपने आत्मनिर्भरता के ऊपर खड़ा रहा और लगातार ऐसे बड़े मुकाबलों के लिए जब दुनिया एक तरफ होकर बैठी थी तब भारत उनके सामने अपना आप कह सकते हैं बड़ा जवाब देने के लिए तैयार था।
3: सुमित, अभी देखेंगे आत्मनिर्भरता के मोर्चे पर जो 2-3 बड़ी बातें हैं, खासतौर से अगर 2 दिन पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आंध्रा में जाकर जो एमका जो हमारा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है उसके नए प्लांट की शुरुआत की है, वो एक बड़ा कदम आप देख सकते हैं कि स्वदेशी 5th जनरेशन, क्योंकि रफाइल के बाद हम अपने देश के अंदर अगर अपना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाना चाहते हैं उस दिशा में काम हो रहा है। इसके अलावा LCA Mark 1 भी कल ही इस बात को लेकर सरकार की तरफ जानकारी देगी कि इसी वित्तीय वर्ष में LCA Mark 1 भारतीय वायुसेना का को मिलना शुरू हो जाएगा। मिसाइल के क्षेत्र में लगातार हमने देखा कि चाहे ब्रह्मोस मिसाइल की सफलता रही हो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, अब हम उसको न सिर्फ दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि कई देशों में, अभी रक्षा मंत्री वियतनाम में हैं, वहां पर वियतनाम की बात करें, वियतनाम उसको लेना चाहता है, कई फ्रेंडली कंट्री जो देश हैं वो हमारे हथियारों को लेना चाहते हैं। तो अगर आप 12 साल के कार्यकाल को देखें, खासतौर से रक्षा क्षेत्र में, पहले जहां हम 80% हथियार विदेशों से खरीद रहे थे, अब हम इस स्थिति में हैं कि कई बड़े हथियार, क्रिटिकल हथियार, ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर आर्टिलरी गन और दूसरे हथियार हम अब विदेशों को भी निर्यात कर रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया लगातार हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए, हमारे सभी संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब खबरों का रुख आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड में से एक आतंकी की पाकिस्तान में हत्या कर दी गई है। पाकिस्तान पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के मोस्ट वांटेड आतंकी को गोली मार दी गई, आतंकवादी हमजा बुरान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अज्ञात हमलावरों ने आतंकी हमजा बुरान को गोलियों से भून दिया और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के मुजफ्फराबाद इलाके में अज्ञात हमलावरों ने इस घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि ये वही मास्टरमाइंड लोगों में से एक चेहरा है जो 2019 के अंदर CRPF के कैंप पे कॉन्वॉय अटैक किया था, जिसमें हमारे कई जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद भारत ने उसका जवाब भी दिया। और देखिए, हम आपको एक्सक्लूसिव जानकारी बता रहे हैं सिर्फ आज तक पर, हमजा पर मुजफ्फराबाद में एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। हमजा बुरान एक स्कूल में प्रिंसिपल था। देखिए, हमारे सहयोगी लगातार अरविंद ओझा इस बड़ी खबर पर हमें जानकारी साझा करते रहे। अरविंद ओझा का रुख करते हैं। अरविंद, आप ही ने थोड़ी देर पहले बताया था कि देखिए, टीचर के तौर पर इसको शील्ड दी गई थी, लगातार ये वहां पर आराम से घूमता था, इसको सिक्योरिटी तक मुहैया कराई गई थी। अब बताया जा रहा है कि उस स्कूल का प्रिंसिपल था ये वहां पर।
4: बिल्कुल, और देखिए, उस स्कूल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव विजुअल हम आज तक पर दिखा भी रहे हैं। ये वो POK में मुजफ्फराबाद में ये वो स्कूल है जिसमें वो प्रिंसिपल था और वो कवर दिया गया था, SI ने उसे कवर दिया था। और यहीं पर इसी जगह पर कुछ देर पहले हमजा बुरहान को ढेर किया है अज्ञात हमलावर ने, कई गोलियां मारी है, हेडशॉट भी, यानी क्लोज रेंज से सर पर भी गोली मारी गई है, उसकी मौत हो गई है। और बीते कुछ सालों तक तो ये जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भी एक्टिव था, जब सिक्योरिटी फोर्सेज इसके पीछे पड़ी तब ये भाग कर पाकिस्तान में पहुंच गया था और वहां बैठकर लगातार लोकल सपोर्ट के जरिए जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक बड़े आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। जब 2019 में पुलवामा में CRPF के कॉन्वॉय पर अटैक हुआ था, शुरुआती जांच में आप जो लिखात पढ़त होती है सुमित, आप अच्छे से जानते हैं, उसमें कुछ और तंजीमों के नाम आए, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तब इनपुट एजेंसियों को मिला कि उसमें एक बड़ी भूमिका इस हमजा बुरहान की भी थी। उसके बाद एजेंसी से मॉनिटर कर रही थी, लेकिन अज्ञात हमलावर अपना काम कर गया। अब एक बात बताइए सुमित, जो स्कूल का हो उसको सिक्योरिटी की क्या जरूरत
1: है? क्या जरूरत है? बिल्कुल। और अरविंद, ये भी बात है कि देखिए, आपने देखिए हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो अरविंद ओझा ने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे दर्शकों के लिए टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। अरविंद एक और बात इंपॉर्टेंट थी कि आपने इससे पहले भी कई न्यूज ब्रेक किया, आपने बताया कि देखिए ये टेररिस्ट लगातार यहां पर उनको अपने आप कह सकते गैंग वॉर के अंदर मारा गया है, लेकिन हर जो आतंकी है वो हमेशा इन्हीं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के इलाकों में मिलता है। ऐसा लगता है कि ये इलाके जो है उनके लिए एपिसेंटर तो है, एक सेफ पनागाह भी है जहां पर वो आराम से मूव कर सकते हैं, अपनी आलिशान जिंदगी भी जीते हैं पाकिस्तान की ISI की मदद से।
4: बिल्कुल, और आप लगातार कई सालों से कवरेज करते रहे, आपको भी सुमित मालूम होगा कि मुजफ्फराबाद मुफीद जगह है आतंकियों के लिए, सेफ हर्षद है। और बड़ी चीज, यहाँ पर आए दिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के ऑफिसर, पाक आर्मी के ऑफिसर और आतंकवादी गुट बड़ी मीटिंग करते हैं सरकारी दफ्तरों में। यही मुजफ्फराबाद से बड़ी प्लानिंग होती है भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देने की, इस तरह के कई एविडेंस इंडियन एजेंसी को मिलते रहे। और वही मुजफ्फराबाद में कई आतंकी एक्टिव है जिसमें हमजा बुरहान भी एक्टिव था, और साथ ही साथ कई जो आतंकी है संगठन वो यहाँ एक्टिव है, कैंप टेरर कैंप यहाँ पर चलते हैं। अब जाहिर सी बात है फिर उनके बीच वर्चस्व की जंग तो होगी, तो क्या उनके बीच जो आपसी वर्चस्व है उसका नतीजा हमजा बुरहान की मौत है? लेकिन जो सूत्र है वो बताते हैं कि अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ कई गोलियां मारी हैं और मौके पर ही हमजा की मौत हो गई है। जी
1: बिल्कुल। अरविंद एक और बात है, क्योंकि आप इससे पहले भी बता रहे थे कि देखिए ना सिर्फ ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था, OGW से डेवलप करता था, बल्कि रेडिकलाइजेशन के अंदर भी, यानी पुलवामा के अलावा साउथ कश्मीर के कई इलाकों में सक्रिय था युवाओं को भड़काने के लिए, रेडिकलाइज करने के लिए भी।
4: बिल्कुल, जो रेडिकलाइज करता था, ब्रेन वॉश करता था, चूंकि जैसा मैंने पहले बताया पुलवामा का ये लोकल रहने वाला है, तो मुजफ्फराबाद में बैठकर ये वहां से लगातार इंक्रिप्टेड जो सोशल मीडिया ऐप है उसके जरिए बातचीत करता था, गुमराह करने की कोशिश करता था। कई OGW, इसने OGW का नेटवर्क खड़ा किया था और उसके जरिए लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता था। हालांकि हाल फिलहाल में जो सुरक्षा बल है उन्होंने और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो OGW का नेटवर्क है वो लगभग खत्म सा कर दिया है, तो ऐसे जो हमजा बुरहान है वो उसको परेशानी उसकी जरूर बढ़ रही थी। और खासतौर से अज्ञात हमलावर जिस तरह से पाकिस्तान में एक्टिव थे उसके बाद इसकी सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई। आप एक प्रिंसिपल की सुरक्षा में AK-47
1: बिल्कुल अरविंद, ये सारे तमाम सवाल हैं जो पाकिस्तान की एजेंसियों पर उनके उनके हुक्मरानों पर खड़े होते हैं। अरविंद ओझा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और बताया कि कैसे भारत का एक मोस्ट वांटेड आतंकी एक बार फिर से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मारा गया है, और ये वो आतंकी है जो लगातार बड़ी आतंकवादी घटनाओं में सीधे तौर पर इन्वॉल्व था। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, देश और दुनिया की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे, आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
6: Morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
7: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's, limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Ba-da-ba-ba-ba.
8: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
9: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs, so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
10: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
11: call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
12: It's your boy,
11: just
12: Jay-Z.
11: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
13: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
4: जेके वॉल मैक्स।
2: बेस्ट पेंट
5: जेके मैक्स।
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
6: सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
7: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
8: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
9: नहीं, और म्यूचुअल फंड से सही।
10: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
11: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
12: इसमें माइक्रो फाइबर है।
11: माइक्रो फाइबर यानी
12: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत?
11: हमारे सीमेंट में नहीं है।
12: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
13: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
14: The taste of success.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akaje, the number one Korean skincare brand, now in India.
0: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akaje, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: की बैठक 3.0 कार्यकाल की होगी समीक्षा, शाम 5 बजे सभी केंद्रीय और राज्य मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी के विदेशी दौरों से करीब $5 मिलियन निवेश की मिली मंजूरी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दी जानकारी। राहुल गांधी पर बोले, हार की हताशा में है राहुल। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार का बड़ा आदेश, मदरसों में वंदे मातरम गाना होगा अनिवार्य। आज दिल्ली पहुंचेंगे सीएम, बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सड़क पर उतरी ममता बनर्जी। नीट पेपर लीक मामले में जयपुर में जबरदस्त प्रदर्शन, सड़क पर पुलिस से भिड़े कांग्रेस के कार्यकर्ता। संसद की स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेश हुए नीट एनटीए के चीफ अभिषेक सिंह।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
3: ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम, ईरान के पास अब दो ही विकल्प, अमेरिका के आगे झुके या महायुद्ध लड़े। सुलह की कोशिशों से बौखलाए नेतन्याहू, ट्रंप के साथ फोन पर फिर हुई बहस। ईरान की दो टूक, झुकने से इनकार। हुर्मुज में ईरानी जहाज पर अमेरिका की चढ़ाई। ईरान के जवाब का इंतजार, 48 घंटे बाद भीषण वार।
0: नमस्कार, रणभूमि में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि अगर ईरान ने डील के लिए भेजे गए प्रस्ताव को सही जवाब नहीं दिया तो अमेरिका हमला करने के लिए तैयार है। और इसी बीच एक बड़ी खबर यह कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ईरान के शत प्रतिशत सही जवाब चाहिए। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि अगर दो दिन रुकने के बाद भी वो लोगों को मारे जाने से बचा सकते हैं तो अच्छी बात होगी। दरअसल अमेरिका एक ऐसी डील का इंतजार कर रहा है जिसमें ईरान परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरीके से छोड़ दे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी पूरी तरीके से खोल दे। ट्रंप ने ईरान को पराजित देश बताते हुए कहा कि अगर ईरान ने जल्द फैसला नहीं लिया तो बड़े पैमाने पर हमले एक बार फिर से शुरू हो जाएंगे। दूसरी तरफ ईरान की सरकारी एजेंसी नूर न्यूज ने विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने हवाला देते हुए कहा कि हमें अमेरिका के व्यू मिल गए हैं और हम उनकी समीक्षा कर रहे हैं।
4: Right on the borderline, believe me. If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go. We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers. And if we do, we save a lot of time, energy, and lives, most importantly. But I don't know. Do I get what? I never get tired. But what I like to do, if I can save war by waiting a couple of days, if I can save people being killed by waiting a couple of days, I think it's a great thing to do.
0: और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेक्सेट ने सोशल मीडिया पर ईरान को बड़ी धमकी दी है। पीट हेक्सेट ने लिखा है, लॉग्ड एंड लोडेड। उन्होंने ये कमेंट अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के उस पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा जिसमें यह कहा गया था कि ईरान के साथ ऐसी डील नहीं होगी जिसमें उसे परमाणु हथियार बनाने की छूट मिल जाए। जेडी वेंस ने यह भी लिखा अपने पोस्ट में कि लॉग्ड एंड लोडेड लिखा था। साथ ही ये कहा था कि अमेरिका नहीं चाहता कि उसे फिर से युद्ध के रास्ते पर जाना पड़े, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है और अगर युद्ध करना पड़ा तो इसकी इच्छा और क्षमता दोनों ही उसमें मौजूद है। यानी राष्ट्रपति ट्रंप से लेकर उपराष्ट्रपति और अब युद्ध मंत्री भी ईरान के खिलाफ फिर से जंग छेड़ने की धमकी देते रहे। और इस बीच एक और बड़ा अपडेट यह मिल रहा है कि ट्रंप के सलाहकार, सुरक्षा सलाहकार स्टीफन मिलर ने ईरान को ऐसी सजा भुगतने की चेतावनी दी है जिसकी मिसाल आधुनिक इतिहास में कभी नहीं होगी। यानी स्टीफन मिलर ने कहा है कि ईरान के पास दो ही विकल्प हैं, या तो वो अमेरिका की ओर से दिए गए प्रस्ताव को पूरी तरीके से रजामंदी के साथ मान ले, या फिर अमेरिकी सेना के हाथों दंड भुगतने के लिए तैयार रहे। ये दंड ऐसा होगा जो आधुनिक इतिहास में किसी ने नहीं देखा होगा। यानी लगातार हर बड़ा अधिकारी इस बार ईरान को धमका रहा है।
5: They can either agree to a piece of paper that is satisfactory to the United States, or they can face a punishment from our military, the likes of which has not been seen in modern history. That's the choice that they face. They can either agree to a piece of paper that is satisfactory to the United States, or they can face a punishment from our military, the likes of which has not been seen in modern history. That's the choice that they face.
0: यानी अमेरिकी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और तमाम बड़े अधिकारी इस समय ईरान को धमका रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमले में आखिरी समय पर इस फैसले को क्यों टाल दिया। इससे जुड़ी एक बड़ी खबर न्यूज वेबसाइट मिडिल ईस्ट से आई है जो ये बताती है कि उसका दावा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने खाड़ी देशों के अपने सहयोगियों और अपने ही अधिकारियों की इस चेतावनी के बाद ये फैसला लिया कि हज यात्रा के दौरान युद्ध शुरू ना किया जाए। खाड़ी देशों के दो वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार ट्रंप को बताया गया कि हज यात्रा के दौरान ईरान पर हमला करने से खाड़ी देशों के भीतर संकट पैदा हो जाएगा, क्योंकि इससे लाखों तीर्थ यात्री वहीं फंस जाएंगे। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर मिल रही है कि ट्रंप को आगाह किया गया कि इस पवित्र समय के दौरान जो इस्लामिक त्योहार ईद उल अजहा के ठीक पहले ये हमला करना ठीक नहीं होगा। हमला करने से मुस्लिम जगत में वॉशिंगटन के खिलाफ और उनके खिलाफ ज्यादा आक्रोश बढ़ेगा और ट्रंप प्रशासन के भीतर चल रही चर्चाओं से आप कह सकते परिचित एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि यह बातचीत हुई थी। उन्होंने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति को उनके अपने ही अधिकारियों ने चेतावनी दी कि इस समय अमेरिका इसराइल युद्ध को फिर से शुरू करने से ट्रंप की साख पर भी गंभीर नुकसान पड़ेगा, और अमेरिका ने इससे पहले मुसलमानों के पवित्र महीने रमजान के दौरान ईरान पर हमला किया था, लेकिन हज के समय ऐसा करने से सऊदी अरब के सामने भारी लॉजिस्टिक चुनौतियां भी खड़ी हो सकती हैं। सऊदी अरब हर साल लगभग 10 लाख विदेशी तीर्थयात्रियों की मेजबानी करता है। ये चुनौतियां खाड़ी देशों के हवाई केंद्रों पर भी बन सकती है जहां कतर, यूएई और दक्षिणी या फिर आप कह सकते पूर्वी एशिया में उन तमाम देशों भी तक भी ये फैल सकती है जहां पर कई तीर्थयात्री अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं। इस साल की हज यात्रा 24 मई से शुरू होने वाली है और ये 6 दिनों तक चलेगी। इस योजना के शुरू होने से पहले ही लाखों तीर्थयात्री सऊदी अरब पहुंच चुके हैं, और अगर खबर सही है तो डोनाल्ड ट्रंप ने मई महीने में हमला करने से बचेंगे, यानी अब यह हमला जून के पहले हफ्ते में हो सकता है। ईरान युद्ध में आगे क्या होगा, इस पर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच तनावपूर्ण फोन कॉल की खबरें भी मिल रही हैं। कहा यह जा रहा है कि नेतन्याहू ने ट्रंप से एक बार फिर एक लंबी फोन कॉल के दौरान वो भड़क गए, और अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच ईरान पर युद्ध की भावी दिशा को लेकर एक तनावपूर्ण फोन कॉल हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वॉशिंगटन हमलों को फिर से शुरू करने के बजाय समझौते के पक्ष में नजर आ रहा है। दरअसल कतर और पाकिस्तान में सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के समर्थन से नया ईरान डील का एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है। अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस के मुताबिक इस ड्राफ्ट को लेकर मंगलवार को ट्रंप के साथ फोन पर नेतन्याहू की बात हुई। बातचीत के बाद नेतन्याहू बेहद गुस्से में नजर आए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इजरायली प्रधानमंत्री हमले को फिर से शुरू करना जल्दी से जल्दी चाहते हैं ताकि ईरान की सैन्य क्षमताओं को और कमजोर किया जा सके, उसके महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को नष्ट किया जा सके और सत्ता को भी कमजोर किया जा सके। इससे पहले रविवार को ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने ईरान पर मंगलवार को किए जाने वाले हमलों को टाल दिया है। उन्होंने बताया कि फैसला कतर और यूएई सहित अरब देशों के अनुरोध पर किया गया। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच खाई को पाटने की कोशिश की जा रही है। कतर और पाकिस्तान ने अन्य क्षेत्रीय मध्यस्थता को सुझाव के लिए मिलकर आप कह सकते हैं शांति प्रस्ताव को एक ड्राफ्ट तैयार किया है। नेतन्याहू इन वार्ताओं को लेकर बेहद सर्ष में है और वो युद्ध को फिर से शुरू करना चाहते हैं। और आपको एक बार फिर से बड़ी स्क्रीन पर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि आखिरकार नेतन्याहू और ट्रंप की तीखी बातचीत के बारे में क्या खबरें मिल रही है। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस की तरफ से जो खबरें मिल रही है वो ये बताई जा रही है कि देखिए कई लंबी बातचीत उनकी हुई और ट्रंप ने फोन पर जो रुख अपनाया उससे नेतन्याहू बहुत ज्यादा नाराज है। मंगलवार को ट्रंप के कॉल से नेतन्याहू हैरान रह गए क्योंकि इसी कॉल के दौरान दोनों के बीच में लंबी बातचीत हुई और युद्ध को लेकर समीक्षा रिव्यू कैसे है दोनों के पक्ष अपने एक दूसरे से साझा किए। वहां बताया गया कि कतर पाक ने ईरान डील का एक नया ड्राफ्ट तैयार किया है और इसी पर आगे बढ़ा जाएगा जिसको लेकर इसराइल के प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा भड़क गए। ड्राफ्ट को सऊदी तुर्की और मिस्र का समर्थन हासिल है यानी मिडिल ईस्ट के तमाम देश जो लगातार अमेरिका के आप कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है और सहयोगी भी है वो लगातार इस डील का ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं जिसको लेकर अमेरिका में एक समर्थन या फिर आप कह सकते हैं एक तरीके का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। ट्रंप ने कहा कि अब तो डील होगी या युद्ध होगा। डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि पहले डील हो जाए सभी संभावनाओं पर बातचीत कर ली जाए मिडिल ईस्ट के देशों को समझा लिया जाए कि देखिए आपके ड्राफ्ट पर भी हमने बातचीत की लेकिन अगर बातचीत नहीं बनी तो फिर युद्ध होगा। नेतन्याहू चाहते हैं कि युद्ध से ईरान का बड़ा कि ढांचा सत्ता को ढहा जा सके। नेतन्याहू चाहते हैं कि अभी वक्त ना लिया जाए रिव्यू या फिर रिवाइव करने का मौका ईरान को ना दिया जाए और तुरंत अटैक कर दिया जाए। मध्य पूर्व के देश युद्ध खत्म करने का लेटर ऑफ इंटेंट तैयार कर रहे हैं एमओयू या फिर आप कह सकते हैं कि एक तरह के लेटर ऑफ इंटेंट तैयार किया जा रहा है। प्रस्ताव में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर 30 दिन की बातचीत शामिल है यानी जो परमाणु कार्यक्रम है उस पर एक लंबी बातचीत करने की बात की जा रही है। 30 दिन की बातचीत की भी इसमें शामिल है यानी ड्राफ्ट का एक बड़ा मुख्य बिंदु है। ईरान समीक्षा कर रहा है लेकिन नरमी के संकेत नहीं दे रहा। ईरान देखिए बातचीत करने के लिए तैयार तो है लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर न्यूक्लियर एनरिचमेंट पर वो अपना कड़ा रुख अब भी इख्तियार किए हुए हैं। और इसके बाद ईरान की मांग है कि फ्रीज फंड रिलीज हो और यूएस कार्रवाई रुके यानी ईरान की सबसे बड़ी दो प्रायोरिटी जो है वो ये है कि जो उनका डीफ्रीज किया जाए सभी अकाउंट चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो चाहे अमेरिका में हो। करीबन 52 बिलियन के करीब जो है अमेरिका में इसके अलावा मिडिल ईस्ट में 20 से 25 मिलियन बिलियन के करीब है इन सबको डीफ्रीज किया जाए और उसके बाद आगे बातचीत हो। ट्रंप की चेतावनी बातचीत फेल हुई तो फिर अटैक होगा। नेतन्याहू वाशिंगटन जाकर अहम बैठक कर सकते हैं यानी फोन कॉल के बाद अभी आशंका जताई जा रही है कि नेतन्याहू शायद अब वॉशिंगटन जाएंगे वो वहां पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर से मनाएंगे और ये कोशिश करेंगे कि अमेरिका और इजराइल मिलकर दोबारा से नए ऑपरेशन की शुरुआत करें। अब अमेरिका लाख कोशिश करे लेकिन इसके बावजूद हॉर्मुज खुलवाने में वो नाकामयाब साबित हुआ है। ईरान के पास इस वक्त हॉर्मुज की नाकेबंदी सबसे बड़ा हथियार है। वो इस मुद्दे पर लगातार अमेरिका को चिढ़ा भी रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि IRGC के नौसेना के राजनीतिक उप प्रमुख के हवाले से खबर मिल रही है कि मोहम्मद अकबर जादे ने कहा है तंज करते हुए कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट को कमांडर तंगसिरी के आदेश पर बंद किया गया था। यही नहीं अपने तमाम दांव पेचों और चालों के बावजूद अमेरिका इसे फिर से खोलने में नाकामयाब साबित हुआ। दुश्मन को ना तो ईरान के बारे में सही खुफिया जानकारी है और ना ही समझ और ना ही अकल है। आपको बता दें कि अली रेजा तंगसिरी ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के नेवी के कमांडर थे। उन्हें हॉर्मुज को बंद करने की पूरी रणनीति उन्होंने ही तैयार की। मास्टरमाइंड बताए जाते हैं। 26 मार्च को बंदर अब्बास में इजरायली हमलों के अंदर वो मारे गए और चार दिन बाद इसकी आधिकारिक इसकी ऐलान भी कर दिया गया लेकिन उन्हीं की रणनीति के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया गया था। और वहीं अमेरिका और ईरान के बीच भरोसे की इतनी कमी है कि दोनों के बीच अब तक समझौता नहीं हो पाए और समझौते की गुंजाइश बेहद कम नजर आती है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि इस बीच ईरानी सांसद इब्राहिम अजीजी ने डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर के सिर पर इनाम रखा है। उन्होंने इसके लिए ईरान की संसद यानी मजलिस में एक बिल पेश किया है और इस बिल में 50 बिलियन यूरो यानी लगभग 58 बिलियन डॉलर का इनाम भी रखा गया। 58 बिलियन डॉलर का इनाम रखा गया है। यह कहा गया है कि जो कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू या अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर को मार देगा उसे यह इनाम दिया जाएगा। अजीजी ने इसके साथ ही ईरान अमेरिका के बीच अविश्वास की खाई को और चौड़ा कर दिया है। अजीजी ने कहा कि अमेरिकी कूटनीति पर भरोसा कर दौर को खत्म कर चुका है यानी कूटनीति पर अब विश्वास नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि हम हर स्थिति के लिए अब तैयार है यानी ईरान से जो संकेत आ रहे हैं उसका मतलब साफ है कि अब वो भी इंतजार कर रहा है अमेरिकी रिस्पॉन्ड का और उसके बाद वो भी जंग के लिए तैयार है। इसके बजाय ईरान युद्ध की स्थिति में लड़ने को तैयार यानी बातचीत के लिए कतई तैयार नहीं। अब हॉर्मुज पर ईरान की नाकेबंदी के जवाब में अमेरिका ने ब्लॉकेट जारी रखा हुआ। अमेरिकी नौसेना पूरी ताकत के साथ ईरान के बंदरगाहों पर पाबंदी लागू करने में जुटी हुई है। इसी के तहत एक बड़ी खबर आ रही है कि आज ओमान की खाड़ी में 31वीं मरीन एक्सपेडिशन यानी यूनिट को भेजा गया है। यूएस मरीन एमटी सेलेस्टिया सी के नाम से जहाज पर चढ़ाई किए करते हुए नजर आए। ये कमर्शियल तेल टैंकर है जिस पर ईरान का झंडा लगा हुआ था। अमेरिकी नौसेना को शक है कि यह अमेरिकी ब्लॉकेट को तोड़ते हुए कोशिश कर सकता था। जिस वक्त ये अमेरिकी नौसेना की नजर में आया उस वक्त ये ईरान के एक बंदरगाह की ओर लगातार बढ़ रहा था। अमेरिकी नौसेना ने जहाज की तलाशी लेने और उसके क्रू को रास्ता बदलने के निर्देश देने के बाद जहाज छोड़ दिया और अमेरिकी सेना ने नाकेबंदी को पूरी तरीके से लागू कर दिया। ये हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कैसे लगातार इस नाकेबंदी को पूरी तरीके से मुस्तैद करने की कोशिश की गई। कल भी अमेरिका की तरफ से खबर आई थी कि 89 से ज्यादा जहाजों को उन्होंने डीरूट किया या फिर उनके रूट्स में बड़े बदलाव किया या फिर अपने नाकेबंदी के दौरान उनको इस इलाके में जाने नहीं दिया। वह ईरान हर स्थिति के लिए तैयार है और इसका संकेत उनके राष्ट्रपति ने एक अपने ताजा बयान में दिया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ईरान ने लगातार अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान किया है और युद्ध को टालने के लिए हर संभव रास्ता तलाशा है। उन्होंने यह भी लिखा कि हमारी ओर से सभी रास्ते खुले हैं। जबरदस्ती के जरिए ईरान को झुकने पर मजबूर करना एक भ्रम के सिवाय कुछ भी नहीं है। कूटनीति से आपसी सम्मान युद्ध की तुलना में कहीं अधिक समझदारी भरा और सुरक्षित और टिकाऊ होता है। पेजेश्कियान ने यह भी लिखा कि ईरान में IRGC के मुकाबले नरमपंथी माना जाता है और वो अक्सर सुलह की बात करते हैं, लेकिन उनके इस पोस्ट में यह संकेत मिलता है कि ईरान झुकने को कतई तैयार नहीं है। और जिस तरीके से ईरान और अमेरिका के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लड़ाई में दुनिया सबसे बड़े ऊर्जा संकट का सामना कर रही है, ऐसे में इन हालातों से कैसे निकाला जाए, कैसे निपटा जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या हल निकलेगा, इसको लेकर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
3: ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच जिस तरह से जंग छिड़ी, अब पूरी दुनिया इस जंग के साइड इफेक्ट्स झेल रही है। भले ही ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर चल रहा हो, लेकिन दोनों देशों के बीच बारूद आज भी सुलग रहा है। हालात ऐसे हैं कि ये जंग कभी भी महायुद्ध में बदल सकती है, क्योंकि ना तो अमेरिका मारने को तैयार है, ना ही ईरान छुपने को तैयार है। अमेरिका शर्तें रख रहा है ईरान अपना एनरिच यूरेनियम और परमाणु प्रोग्राम छोड़े, और ईरान कह रहा है कि चाहे जो हो जाए, एनरिच यूरेनियम और परमाणु प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। और ईरान अमेरिका की इस जंग में दुनिया चने के साथ घुन की तरह पिस रहा है, क्योंकि ईरान और अमेरिका दोनों ने अपनी अपनी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकेबंदी कर रखी है। वो हॉर्मुज जहां से पूरी दुनिया का तेल और गैस गुजरता है, इसीलिए दुनिया भर में तेल और गैस का संकट खड़ा हुआ है। ऐसे में अब हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान और अमेरिका की नाकेबंदी पर अब नाटो में बड़ी हलचल देखी जा रही है। अब तक डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज खुलवाने में नाटो की ओर से मदद न मिलने पर तीखे बयान देते रहे हैं। अब खुद नाटो देश बड़ी बैठक करने वाले हैं। आने वाली 7 और 8 जुलाई को तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। इस बार का सम्मेलन वैश्विक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिहाज से बेहद ऐतिहासिक होने जा रहा है। तुर्की दूसरी बार इस समिट की मेजबानी कर रहा है। इस सम्मेलन का सबसे बड़ा और संवेदनशील एजेंडा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जारी संकट और ईरान की ओर से लगाई गई नाकेबंदी है। अगर नाटो के सुप्रीम अलाइड कमांडर यूरोप ने पुष्टि की है कि ये सैन्य विकल्प पूरी तरह मेज पर है, और ब्रिटेन के साथ ही फ्रांस जैसे देश पहले से ही समुद्र सुरक्षा योजनाओं को अमली जमा पहनाने में जुटे हैं, अगर ये मिशन शुरू होता है तो ये नाटो के इतिहास का एक बड़ा आउट ऑफ एरिया यानी अपने तय क्षेत्र से बाहर का ऑपरेशन होगा, जो गठबंधन की सैन्य भूमिका को सीधे मिडिल ईस्ट तक बढ़ा देगा।
0: चलिए रणभूमि में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
6: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
8: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes. And dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
9: Sokudo.
10: यहाँ से मैं रसगुल्ला खाए बिना नहीं।
11: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ, मैं हूँ अंजना ओम कश्यप।
12: और हम लोग इस वक्त खड़े हैं भवानीपुर में ही।
13: श्वेतपुर, मेरे नाम की स्पेलिंग वाला श्वेतपुर।
14: किसी का मन हुआ चलो झालमुड़ी खाए, ओके।
12: शुभेंदु अधिकारी,
11: यहाँ पर पिक्चर साफ हो चुकी है। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे।
15: नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर तपस सेन गुप्ता,
16: अनुपम मिश्र,
17: मोहम्मद भारद्वाज,
18: पीयूष मिश्रा,
19: मौसमी सिंह, कोलकाता आज तक।

चुनाव की चर्चा के बीच मंत्रिपरिषद की बैठक, सभी मंत्रियों की बड़ी परीक्षा, मंत्रालयों के कामकाज की पीएम करेंगे खुद समीक्षा, वैश्विक हालात, ऊर्जा संकट पर भी हो सकती है चर्चा। बंगाल में जारी है शुभेंदु का ताबड़तोड़ फैसला, मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने के दिए आदेश, कुर्बानी को लेकर भी सियासी बयानबाजी, बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सड़क पर उतरेंगी ममता।

जबरदस्त प्रदर्शन, सड़क पर पुलिस से भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता, संसद की स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेश हुए एनटीए चीफ अभिषेक सिंह। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को का हो गया हिसाब, पीओके में मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने किया काम तबाह। सीज फायर पर गहराया संकट, ईरान को अमेरिका की बड़ी धमकी, 48 में नहीं मानी बात तो होगा बड़ा हमला, ईरान झुकने को नहीं तैयार, नेतन्याहू को ट्रंप के आदेश का इंतजार।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

आपके साथ मैं हूं साहिल जोशी। 5 देशों के दौरे के बाद आज सुबह ही प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में लैंड हुए हैं और उसके बाद अब कुछ ही देर में दिल्ली में प्रधानमंत्री दफ्तर सेवा तीर्थ में मंत्री परिषद की बैठक शुरू होने वाली है। मोदी मंत्री परिषद की बैठक वैसे तो 11 महीने के बाद हो रही है, लेकिन अहम बात यह है कि खाड़ी देशों में युद्ध के बाद इस वक्त देश में हालात बिल्कुल अलग है और खास तौर पर आर्थिक मोर्चे पर सबकी नजर लगी हुई है। मई के महीने में ही तेल के दाम 2 बार बढ़ चुके हैं। उत्तर से दक्षिण तक दूध की कीमत में 2 से 4 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। मुंबई में ब्रेड और वड़ा पाव के दाम बढ़ गए हैं। आर्थिक मोर्चे पर इन्हीं वजह पर भी मंत्रिपरिषद की बैठक में चर्चा संभव मानी जा रही है। सेवा तीर्थ में शाम 5 बजे से मीटिंग शुरू होगी जिसमें कैबिनेट मंत्रियों समेत सभी राज्य मंत्री भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि 4 से 5 घंटे तक यह बैठक चल सकती है। 12 मंत्रालय अपना प्रेजेंटेशन भी इस बैठक में देंगे और इसमें आगे सुधार को लेकर क्या योजना बनाई जा सकती है इसकी जानकारी भी दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में माना जा रहा है कि ईरान युद्ध के मद्देनजर कई फैसले भी किए जा सकते हैं, हालांकि इसकी उम्मीद की जा रही है। मोदी मंत्रिपरिषद की बैठक में माना जा रहा है कि पश्चिम एशिया संकट और ईंधन की बढ़ती कीमत पर भी बात हो सकती है। ऊर्जा आपूर्ति और सुरक्षा को लेकर बैठक में नई नीति बनाई जा सकती है। कृषि, उर्वरक, विमानन और जहाजरानी जैसे क्षेत्र जिन पर खास करके इस खाड़ी युद्ध का असर हो रहा है उस पर विशेष चर्चा हो सकती है। मीटिंग में घटते विदेशी मुद्रा भंडार का मुद्दा भी उठ सकता है। कुल मिलाकर आर्थिक मोर्चे पर भारत के भविष्य के लिए रणनीति बनाई जा सकती है। अब बात करते हैं कि आखिर भारत के लिए आर्थिक हालात को लेकर बढ़ती चिंता लाजमी क्यों है, तो कुछ आंकड़ों पर नजर डालना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात महंगाई की, क्योंकि जनवरी 2026 में 2.73% महंगाई का दर था, मार्च 2026 में यह बढ़कर 3.4% रह गया है। पिछले महीने यानी अप्रैल 2026 में यह बढ़कर 3.48% तक जाकर पहुंच चुका है। उसी तरीके से विदेशी मुद्रा भंडार पर भी नजर डालिए, उसमें भी गिरावट हुई। जनवरी 2026 में विदेशी मुद्रा भंडार 711 अरब डॉलर थी, तो मार्च में घटकर 709 अरब डॉलर बच गई है और आज की तारीख में 696 अरब डॉलर तक घट पहुंच चुकी है। बात रुपए की घटती ताकत भी करनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता इसी बात को लेकर है। 2 फरवरी 2026 को $1 की कीमत 91.64 रुपए थी। 4 मई को यह आंकड़ा 94.94 रुपए तक पहुंच गया। 21 मई को रुपए की कीमत घटकर 96.31 रुपए प्रति डॉलर हो गई है। आखिर में नजर डालते हैं कि भारत में व्यापार का घाटा भी कैसे बढ़ा, जो मार्च 2026 में 20.7 अरब डॉलर था, तो अप्रैल 2026 में बढ़कर 28.4 अरब डॉलर हो गया है। कुल मिलाकर सभी फोर्सेस पर अगर हम नजर डालें तो कहीं ना कहीं चिंता का माहौल जरूर है और इसीलिए तो आज दिल्ली में मंत्री परिषद की बैठक होगी और वहां पर प्रधानमंत्री फिलहाल की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है इस वक्त की उस पर भी चर्चा करेंगे। मंत्रिपरिषद में बाकी

0: बाकी चिंताएं भी अलग अलग इकोनॉमिस्ट इस पूरे मामले को लेकर जता रहे हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में IMF में भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका के पूर्व डायरेक्टर और भारत के पहले सरकारी घरेलू आय सर्वे के टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप के चेयरमैन और भारत के लीडिंग इकोनॉमिस्ट सुरजीत भल्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भल्ला जी, आपने आज एक आर्टिकल लिखा है और वो आर्टिकल मैंने पढ़ा है और उसमें आपने एक चिंता जताई है कि रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक चुनाव जीत रही है और उनके लिए पॉलिटिकल दृष्टि से देखा जाए तो इट्स अ हाई पॉइंट फॉर देम, एक राजनीतिक दृष्टि से सबसे ऊंचा पॉइंट उनके पॉलिटिकल लाइफ में दिखाई दे रहा है। लेकिन सरकार के तरफ से अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था में आपका कहना है कि सबसे लो पॉइंट है, ऐसा आपको क्यों लगता है?
1: ये इसलिए लगता है क्योंकि जो भी देखें हम इंडिकेटर्स को देखें, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखें, आपने ठीक कहा है कि अगर पॉलिटिकल इंडिकेटर्स को देखें तो हर चीज में भाजपा सबसे ऊपर है, सारी इलेक्शन जीत रही है और कोई कंपटीशन भी नहीं लगता उनको आने के लिए। मगर अगर इकोनॉमिक सिचुएशन को देखें, GDP ग्रोथ देख लें, रुपी की वैल्यू देख लें, तो ये लगता है, और बिजनेस का क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस देख लें, तो वो मेरे को लगता है लो पॉइंट पे है। तो इसलिए ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन सा है क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप पॉलिसी चेंज कर सकते हैं, आप मोर एडवेंचरस हो सकते हैं और रिफॉर्म्स आ सकते हैं, मगर यहाँ तो कुछ लगता नहीं है कि रिफॉर्म्स आ रहे हैं। तो मेरा ये, मैं ये कोशिश कर रहा था आर्टिकल में कि ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है, ये पैराडॉक्स क्यों है कि इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म नहीं हो रहा और पॉलिटिकल सिचुएशन बड़ी कॉन्फिडेंट है। तो जो मैंने
0: सर दावे ये किए जा रहे हैं सरकार के, हम प्रवक्ताओं से बात करते हैं, BJP के प्रवक्ताओं से बात करते हैं, ये दावे किए जा रहे हैं कि देखिए भारत की स्थिति तो ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट काफी हद तक कंट्रोल में है, सरकार के पास $690 बिलियन तक के फॉरेन एक्सचेंज इस वक्त मौजूद है भारत के पास में, यानी अगले 10-11 महीने तक उसका भी कोई प्रेशर नहीं होगा। जो इन्फ्लेशन लेवल्स है वो 3.48% तक है, यानी RBI का जो 4% का जो उन्होंने एक स्लैब रखा हुआ है उससे नीचे है, यानी हमने बाकी सारी चीजें एक तरीके से कंट्रोल की हुई है। और फिलहाल जो स्थिति पैदा हुई है वो सिर्फ इस वजह से कि जो खाड़ी देशों में जो स्थिति पैदा हुई है, जो युद्ध वहां पर चल रहा है, स्टेट ऑफ होर्मुज़ बंद पड़ा हुआ है, जो सप्लाई चेन रुकी हुई है, उसी के वजह से ये सारी दिक्कतें हो रही है, यानी बाकी हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है। तो क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ आज की स्थिति के वजह से क्राइसिस पैदा हुई है या ये लंबी खींच सकती है?
1: तो क्राइसिस इसलिए होता कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो हम ये सोचते थे कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो ठीक कह रहे हैं। तो पहला पहला फैक्ट ये है कि अगर आप डॉलर टर्म्स में देखें और सारी जो कैलकुलेशंस विकसित भारत की होती हैं वो सब US डॉलर टर्म्स में होती है, और US डॉलर टर्म्स में हमारी तरक्की काफी स्लो है, 16th सारे देशों को लेके नंबर वन नहीं है, हम 16th है। तो इसलिए हमारी एक्सपेक्टेशन, और अगर आप रूपी को देखें तो रूपी काफी डिप्रिशिएट हो गया है, 7 साल कंटिन्यूसली डिप्रिशिएट हो रहा है, और उसके साथ साथ एक्सपोर्ट ग्रोथ कोई एक्सेलरेट नहीं कर रही, तो क्या फायदा हुआ रूपी डिप्रिशिएटिंग का, और रूपी क्यों डिप्रिशिएट कर रहा है, कम वैल्यू क्यों हो रही है रूपी की? तो ये है क्राइसिस, ये है इकोनॉमिक मिसफॉर्च्यून आप कह सकते हैं, कि पॉलिटिकल फॉर्च्यून बहुत अच्छी है भाजपा की, एकदम ठीक सारी इलेक्शन जीत रही हैं, और यहाँ पे जो इकोनॉमी है वो तरक्की ज्यादा नहीं कर रही, नो मैटर व्हाट इंडिकेटर यू टेक।
0: आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही इसमें, आपने कहा कि क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार यह कहा जा रहा है कि अगर रुपया गिर रहा है तो वो अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि 7 साल में लगातार रुपया गिरता जा रहा है, इससे पहले RBI ने इंटरवेंशन करके जो डिक्लाइनिंग रुपी था उसको थोड़ा सा रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बावजूद आज की स्थिति में 12% से ज्यादा रुपया गिर चुका है, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा है, उसका जो परिवर्तन होना चाहिए एक्सपोर्ट

0: बढ़ने में वो नहीं हो पा रहा है, उसका क्या कारण आपको नजर आता है?
1: तो देखिए, पहली बात ये है, जो रूपी, कई इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि रूपी को डिप्रिशिएट करना चाहिए, एक्सपोर्ट ग्रोथ हो जाएगी, वो तब होता है जब रूपी की ओवर वैल्यूड है, मतलब कि काफी, मगर कोई इंडिकेटर नहीं लगता कि रूपी ओवर वैल्यूड है। तो इसलिए क्या कारण है कि रूपी डिप्रिशिएट कर रहा है? और मेरे मुताबिक, मेरे एनालिसिस के मुताबिक, कि कॉन्फिडेंस इंडियन इकोनॉमी में कम हो गई है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बिल्कुल हो रही है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की सब कुछ उस बिल्कुल ठीक ठाक है, मगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। और प्राइवेट, अगर पब्लिक इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दोनों को हम देखें तो वो कोई 32% एवरेज कर रही है पिछले 10 साल से, मगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 6% कम हो गई है परसेंटेज पॉइंट्स, और पब्लिक इन्वेस्टमेंट 6 परसेंटेज पॉइंट्स ऊपर हुई। एक तो ये बात, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज मोर प्रोडक्टिव देन पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ये सारी दुनिया में है, ये हमारा कोई स्पेशल चीज नहीं है। तो अब दूसरी आइटम इन्वेस्टमेंट का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आप सप्लाई चेन्स की बात करते हैं, लिंकेजेस की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, वो सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी, वो सब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से आती है। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नेट अब इंडिया में एट द लोएस्ट पॉइंट सिंस 1990, मतलब कि नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब कोई 0.4% ऑफ GDP रहा, और पिछले 7 महीने से नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नेगेटिव है। तो ये प्रॉब्लम है, आपकी तरक्की हो रही है, GDP ग्रोथ हो रही है, मगर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। तो हमें ये सवाल पूछना है कि इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रही।
0: धन्यवाद सुरजीत भल्ला, यहां पर जो बता रहे थे शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, क्योंकि ये बड़ी सीरियस और गंभीर चर्चा इस पूरे मामले पर होनी चाहिए, और आज प्रधानमंत्री भी जब मंत्रिपरिषद की बैठक कर रहे हैं तो ये सारे मुद्दों पर उस पर भी चर्चा हो सकती है। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी से इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, प्रोफेसर अजय उपाध्याय कांग्रेस की तरफ से इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आशुतोष हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट और रजत सेठी भी एनालिस्ट इस चर्चा में शामिल होंगे। सुरजीत भल्ला लीडिंग इकोनॉमिस्ट है, IMF में काम कर चुके हैं, भारत सरकार की तरफ से जो आय गिनने की जो एक टेक्निकल कमिटी बनाई थी उसको भी उन्होंने हेड किया हुआ, और वो ये साफ शब्दों में यहां पर कहने की कोशिश कर रहे हैं शहजाद पूनावाला कि एक मौका है फिलहाल भारत के पास, जिस तरीके से 1991 में क्राइसिस के दौरान भारत में ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ, रिफॉर्म्स का दौर शुरू हुआ, इसी वक्त मौका है क्योंकि हम क्राइसिस में है। शहजाद,
2: क्योंकि शुरुआत में मैंने उनके 4 पॉइंट नोट किए हैं, और जैसे आपने उनको पूरा समय दिया, उन्होंने आर्टिकल भी लिखा है, हमारे तो आर्टिकल छपेंगे नहीं इतने बड़े पेपर में, तो मुझे साहिल जी मौका दीजिए पूरी बात एक एक करके रखने का। उन्होंने कहा फंडामेंटल्स वीक है, शुरुआत करते उन्होंने कहा कि इंडिया इज नॉट द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एनीमोर। मैं आपको बता दूं, IMF 2026 का प्रोजेक्शन 6.5 to 7.5%, वर्ल्ड बैंक का 6.6%, OECD का 7.6% प्रोजेक्शन है, और ये चाइना और किसी भी और मेजर इकोनॉमी से ज्यादा है, अभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। पर इकोनॉमी के बारे में बात करूं, मैं आपको थोड़ा और सब्सटेंटिव चीजें बताता हूं। GST रेवेन्यू ऑल टाइम हाई 22 लाख करोड़, डोमेस्टिक होलसेल ट्रैक्टर के सेल इस महीने 26% बढ़े हैं, पैसेंजर व्हीकल डोमेस्टिक सेल 25% बढ़े ऑल टाइम हाई, थ्री व्हीलर सेल मतलब रिक्शा के सेल 32% बढ़े, टू व्हीलर के सेल 28% बढ़े ईयर ऑन ईयर, ऑटो होलसेल्स जो है वो 2.82 करोड़ यूनिट्स पहुंचे हैं, पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड में आज है, और आज कोई भी शॉर्टेज नहीं हो रही इलेक्ट्रिसिटी की, जो है 256 गीगावाट। इलेक्ट्रिसिटी तब डिमांड होगी जब लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी यूज करने का रीजन भी होगा, और रीजन करने के बाद खर्चा करने के लिए पैसा भी होगा। उसके बैंकिंग सिस्टम, प्राइवेट सेक्टर नहीं, पब्लिक सेक्टर बैंकिंग सिस्टम जो हमेशा एनपीए में घिसा रहता था, आज उसका ऑल टाइम एनपीए लोस पे है, और 2 लाख करोड़ का ऑलमोस्ट आज प्रॉफिट हो गया है। अब आते हैं कि जो उन्होंने बात की बाकी के फंडामेंटल्स ऑफ द इकॉनमी की, और उन्होंने कहा कि ये वो बीजेपी के लिए पॉलिटिकली तो अच्छा है पर इकोनॉमिकली वो अच्छा काम नहीं करते। हमारा FDI, क्योंकि उन्होंने FDI और इन्वेस्टमेंट की बात की, FDI ड्यूरिंग 2004 to 2014 $308 बिलियन। साहिल जी अब सुनिए, 2014 to 2026 अभी लास्ट महीने तक का लेकर आया हूं, $780 बिलियन। इसका मतलब ये है कि जो 70% हमारा FDI आया है पिछले 20-25 वर्षों में, वो इस 10-12 वर्ष के कार्यकाल में आया है। फिर आते हैं एक्सपोर्ट्स पे, उन्होंने बोला एक्सपोर्ट्स मॉडरेटली बढ़ रहे हैं, ज्यादा नहीं बढ़ रहे, रहे हैं। 466 बिलियन डॉलर्स पर एक्सपोर्ट्स छोड़ा था यूपीए ने, आज हमारा 800 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट्स टच किया गया है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से इन्फ्लेशन जो 10-12% था आज 4% है। मैं आपको थोड़े से और ऐसे चीजें देता हूं जो आप देख सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के 2 यूनिट होते थे मोबाइल फोन के इस देश में, आज 300 से अधिक असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट है। मोबाइल फोन का प्रोडक्शन कुल मिला के 18,900 करोड़ था, हम इंपोर्ट करते थे, मतलब कि हमारा डॉलर खर्च होता था इस इलेक्ट्रॉनिक्स में भी। हम लोग आज बनाते हैं 5.4 लाख करोड़ के मोबाइल फोन्स और 10 बिलियन डॉलर के मोबाइल फोन्स हम एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब हमारे पास अभी फॉरेन एक्सचेंज आता है इसकी वजह से। इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारा टोटल मार्केट ऑफ प्रोडक्शन था 31 बिलियन डॉलर्स, आज 133 बिलियन डॉलर्स हो चुका है। पीएलआई स्कीम हमने जो शुरू की उसमें हमारा लगभग 1.5 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ। 400 स्टार्टअप थे मनमोहन सिंह के जमाने में, आज 2 लाख स्टार्टअप है। क्या इसका मतलब यह है कि एक्सटर्नल शॉक की वजह से हमारी इकॉनमी पर कोई असर नहीं पड़ रहा? 10 सेकंड और साहिल जी, केवल 10 सेकंड, क्योंकि आपके जैसा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे कहीं और नहीं मिलेगा, आपको भी पता और आप जैसे सीरियस जर्नलिस्ट के साथ बात कर रहा हूं मैं केवल 10 सेकंड लेकर एक बात करना चाहता हूं। देखिए साहिल जी, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आपका इतना एक्सपीरियंस है कि एक इकॉनमी जो वर्ल्ड इकॉनमी होती है समंदर की तरह होती है। समंदर में आंधी तूफान आएगा तो हमारी भी शिप चल रही है, बाकियों की भी चल रही है, थोड़े हिचकोले हमारी शिप खाएगी। हम कैसे नेविगेट करते हैं और नेविगेट करते वक्त केवल हिचकोले खा रहे इसका मतलब हम डूब गए, इसका मैं आपको उदाहरण बताता हूं। रूपी के ऊपर बहुत चर्चा होती है, बिल्कुल रूपी जो है नीचे हुआ है और डॉलर ऊपर हुआ है, इसके कारण क्या है समझो। पहली बात, आपके साथ बैठे हैं रजत सेठी, वन ऑफ द फाइनेस्ट माइंड्स, उनसे पूछे कि आज जिस प्रकार का फेडरल रिजर्व रेट है वो कभी अप्रत्याशित है, इतना हाई रिजर्व रेट होगा तो कैपिटल इन्फ्लो होगा ही जब ग्लोबल क्राइसिस। 10 सेकंड और, केवल 10 सेकंड और, दर्शकों को जानने दीजिए, दर्शकों को जानने दीजिए क्या है आज हमारे पास। एक नहीं,
0: जो पूछा है वो लेकर मुझे रजत सेठी के पास जाना ही है ना, इसीलिए उनको भी बोलने का मौका मिला, इसलिए मैं आपको बीच में रोक दूंगा, नहीं तो आप बोलेंगे तो उनको बोलने का मौका नहीं।
2: 10 सेकंड
0: आपकी बात खत्म करिए,
2: 10 सेकंड में केवल खत्म कर दूंगा। ऐसा है कि जब 2011-12 में हमारा रूपी गिरता था तब 2-3 वॉर नहीं चल रहे थे, आज जब वॉर दो वॉर और एक पैंडेमिक आया है उसकी वजह से जब फियर होता है मार्केट में तो सबसे पहले लोग यूएस ट्रेजरीज की ओर जाते हैं, इसकी वजह से कैपिटल इन्फ्लो पूरी दुनिया से भागता है यूएस ट्रेजरी की ओर। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये ग्लोबल सिचुएशन हमने क्रिएट नहीं की, ईरान पे हमने बम नहीं गिराया, परंतु फिर भी हमने इससे सेफगार्ड करने के लिए क्या किया, हमारा बफर स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आज 699 बिलियन डॉलर, यूपीए के जमाने में 200 बिलियन डॉलर था, आज हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 4% से घट के आज 1.3% है, आज हमारा इन्फ्लेशन लार्जली सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो 4% है,
0: जो
2: हमारे फंडामेंटल स्ट्रांग
0: है। एब्सोल्यूट नंबर्स एक्सपोर्ट्स के मामले में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में यहां पर रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो बात यहां पर सुरजीत भल्ला रखने की कोशिश कर रहे थे वो जीडीपी के प्रतिशत में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहां पर आ रहा है, और खास करके कैपिटल इन्फ्लो की भी बात उन्होंने उसमें कही थी, और उन्होंने उनका यह मानना था कि जीडीपी के प्रतिशत में कैपिटल इन्फ्लो माइनस में जा रहा है, 1991 के से अगर हम कंपेयर करें तो माइनस में जा रहा है, यह बात उन्होंने रखने की कोशिश की थी। रजत सेठी जो फाइनेस्ट माइंड आपने जिनका जिक्र किया उनके पास मुझे उसको लेकर जाना है, लेकिन उससे पहले अजय उपाध्याय, सुरजीत भल्ला यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि रूलिंग पार्टी चुनाव के बाद चुनाव तो जीत जाती है और उसके वजह से उनको लगता है कि सब कुछ ठीक है, लोगों की मुहर उस पर लगती है, लोगों को लगता है भरोसा है भारतीय जनता पार्टी पर, इसीलिए उनको वहां पर वोट दे रहे हैं आज की स्थिति में, लेकिन इकोनॉमी को लेकर वो सबसे लोएस्ट पॉइंट पर है जो कहने की कोशिश हो रही है।
3: देखिए सही पूछे तो साहिल भाई, सही पूछे तो जनता ठगी हुई महसूस कर रही है आज के समय में। चुनाव जरूर ये जीत जाते हैं लेकिन चुनाव सारे जो यंत्र तंत्र षड्यंत्र हैं सब पर कब्जा इन्होंने कर लिया है। सच्चाई है, जाकर के फील्ड में जाइए और देखिए युवा कितना बेरोजगारी दर है, अभी तो सारी डाटा दे रहे थे सामने वाले, उनसे पूछ लीजिए कि भाई यूथ का बेरोजगारी दर कितना है, नहीं बताएंगे। और सच पूछिए तो आईएमएफ का उन्होंने डाटा दिया, आईएमएफ ने तो खुद ही कह दिया कि भाई ये फर्जीगिरी चल रही है भारत के, डेटा फर्जीफिकेशन एक नया टर्म दिया है उन्होंने, बी से सी कैटेगराइजेशन में कर दिया, भारत सरकार डेटा भी फर्जी प्रोड्यूस कर रही है सिर्फ अपने फेवर में दिखाने के लिए। बेसिकली हाथी का दांत खाने का और दिखाने का अलग है। इकोनॉमी की हालत यह है कि एक साल में 12% रुपए जो है उसकी गिरावट हुई है। अब सरकार की गिरावट और मोदी जी के साख की गिरावट कितनी प्रतिशत है उसकी यदि हम आंकड़ा दे दें तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, मैं उस पर जाना भी नहीं चाहता। मोदी जी ने तो कहीं दिया आप त्याग कीजिए, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, न खाने का तेल, पकाने का तेल, चलने का तेल, जनता का तेल, सबका तेल आपने कर ही दिया है। बचा हुआ जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे श्रिंक हो रही है, एफडीआई निगेटिव में है जो आपके इकोनॉमिस्ट ने ही बता दिया सच्चाई है, डब्ल्यूपीआई का क्या हाल है 8.3% पहुंच गया है। ये डेटा सही है तो फिर तो सरकार से प्रश्न बनता है कि जनता जो है त्याग करे, मोदी जी 1 रुपये का मेलोडी लेकर के मेलोनी के साथ घूमे, क्या ये चलेगा देश में? या आप जनता पर रोज महंगाई का अपमान करेंगे? अभी आपने पेट्रोल डीजल का दाम फिर बढ़ा दिया, जब हम तेल जो है 108 डॉलर प्रति बैरल था तब भी हम 70 रुपए से ज्यादा पेट्रोल नहीं दे पाए 14 में, आज जब 70 रुपए पिछले समय तक था, अब ठीक है कि क्राइसिस के कारण थोड़ा बढ़ा है, उस समय भी आप 90-95 रुपए से कम नहीं दे पा रहे थे पेट्रोल डीजल, तो जनता की जेब पर इतने बड़े पॉकेट मारी कर रहे हैं। 44 लाख करोड़ रुपए लूटा आपने पर डे, 1000 करोड़ रुपए की आपने लूट मचाई है जनता से, और मिला क्या उनको ठगने के अलावा? तो ये सिर्फ लंबे लंबे फेंकना,
0: सच्चाई इस बात का भी जिक्र किया है कि अगर अर्थव्यवस्था पटरी से उतर रही है तो उसके लिए सरकार अगर जिम्मेदार है तो उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष में बैठी हुई है उसको भी अलग तरीके से जिम्मेदार माना है। जरा आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बड़ा दिलचस्प उसमें उन्होंने चीज रखी हुई है। रजत सेठी के पास मुझे जाना है, लेकिन उससे पहले इस वक्त मंत्रिपरिषद की बैठक यहां पर शुरू हो चुकी है, सेवा तीर्थ में मंत्रिपरिषद की बैठक शुरू हो चुकी है। 11 महीने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की मंत्रिपरिषद की बैठक वहां पर हुई है और अलग अलग चीजों पर इस बैठक में चर्चा होगी, खास करके मंत्रियों के एक तरीके से मूल्य मापन किया जाएगा, उनके काम का रिव्यू लिया जाएगा, और उसके साथ साथ जो फिलहाल खाड़ी देशों में क्राइसिस चल रहा है उसके इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या हो सकते हैं, सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जाए उस पर भी इस पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री के दफ्तर में सेवा तीर्थ में मंत्रिपरिषद की बैठक यहां पर शुरू हो चुकी है। रजत सेठी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रजत, जो कुल मिलाकर बातचीत यहां पर हो रही थी और शहजाद पूनावाला ने कई सारे आंकड़े भी रखे और मैं उसको डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो जो आंकड़े रख रहे हैं वो अधिकृत आंकड़े और वो उस तरीके से वहां पर रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो लार्जर पॉइंट इस पूरे मामले को लेकर निकल के आता है और आज खास करके अभी के क्राइसिस के मद्देनजर अगर हम नजर डालें तो यह बात सही है कि करंट अकाउंट डेफिसिट पूरी तरीके से कंट्रोल में नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा वो बढ़ा नहीं है, यानी इकोनॉमिक पैरामीटर्स के हिसाब से देखें तो वो ठीक ठाक है। महंगाई के आंकड़े 3.48% कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फिलहाल है, 4% से कम है, आरबीआई का जो स्तर है उसके उससे कम है जो स्लैब उन्होंने रखा हुआ है। सरकार भी मजबूत स्थिति में है पूरी तरीके से, यानी कोई ये डर नहीं है कि सरकार हिलेगी नहीं हिलेगी क्या होगा, पॉलिटिकली स्टेबिलिटी यहां पर नजर आती है, लेकिन उसके बावजूद 7 साल में 12% रुपया घटता है और उसके बदले में जो एक्सपोर्ट में बढ़ना चाहिए वो उतना बढ़ता नहीं है, क्या कारण हो सकता है इसका?
4: साहिल जी, इसमें दो चीजें हैं। मैं अगर 1990 से लेके 30-35 साल का एक एवरेज बिठाऊं तो आपको मालूम चलेगा कि हर साल ऑन एन एवरेज रुपया 3-5% के बीच में डेप्रिशिएट करता है। ये एक सेक्युलर ट्रेंड है, ये हमेशा से होता जा रहा है और इसके ऊपर में जो पिछले आप 7 साल का आंकड़ा दे रहे हैं वो एक आउटलायर आंकड़ा हो ऐसा नहीं है। जो भी रुपया का जो आंकड़ा है वो ये टेम्पररी बफर का जो पीरियड रहा है ईरान वॉर के आसपास उसी के अराउंड रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो मुद्रा का जो भंडार होता है बड़ी रोचक चीज है, आप इसको मुद्रा भंडार को ज्यादा से ज्यादा रखना चाहते हैं, किस दिन के लिए रखना चाहते हैं? इसी समय के लिए रखना चाहते हैं कि जब हमारे करेंसीज के ऊपर में एक्सटर्नल शॉर्टिंग हो रही हो, बहुत सारे इमीडिएट शॉक्स हो, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बफर बनाते हैं। जैसे ही आप उस बफर को यूज करने लगते हैं तो लोगों को लगता है कि क्या हो गया, कोहराम हो गया। तो ये बड़ी एक रोचक चीज है फॉरेन रिजर्व्स के साथ। बट मैं मोटा मोटा ये कहना चाहूंगा, इसमें गीता गोपीनाथ का अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आर्टिकल पढ़ें तो उन्होंने बड़ा बढ़िया आर्टिकल लिखा था कि इतना घबराना नहीं चाहिए अगर रुपया 105 रुपए 110 रुपए तक भी जाता है, सीमलेसली अगर डिप्रिशिएट होता है उससे राष्ट्रवाद को अगर आप जोड़ेंगे तो आप बड़े दूसरे निष्कर्ष तक पहुंचेंगे जो कि सत्य से दूर होंगे। आपका ओवरऑल
0: छोटा इंटरवेंशन यहाँ पर रजत सेठी जी, एक छोटा इंटरवेंशन मैं आप ही को पूछ रहा हूँ इस बात को लेकर, ये बात सही है और यही सवाल हम भी पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि एक वक्त था कि जब इसे जोड़ा जाता था कि रुपए का अवमूल्यन होता है, अगर घट जाता है गिरता है तो राष्ट्र की प्रतिष्ठा इससे गिर जाती है, इस तरीके का भाषण लोकसभा में दिया गया था, आपने भी इसको सुना था।
4: मैं राजनीति में,
0: लेकिन नहीं, मेरी बात पूरी हो, मेरा पूरा सवाल सुन लीजिएगा एक बार, मैं आपको कारण बताता हूं। चलिए वो हटा देते हैं क्योंकि कई बार ये होता है कि विपक्ष में आप होते हैं तब आपकी स्थिति अलग होती है, जब सरकार में जाते हैं तो रियलिटी कुछ और होती है सरकार चलाने की, ये दोनों चीजें अलग होती है। रुपया घट रहा है उससे भी ज्यादा रुपया घटने का फायदा जो होना चाहिए, जो एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ने चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत के भीतर आना चाहिए, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भारत से निकलकर जा रहे हैं, उसको लेकर भी चिंता जताई जा रही, इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है रजत से।
4: नहीं नहीं आपकी बात सही है, और देखिए रुपया तो हर दिन घटता बढ़ता है, लेकिन हर दिन फैक्ट्रियां उखड़ती और लगती तो है नहीं। फैक्ट्रियों को लगने में, एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट्स को धीरे धीरे बढ़ने में डेल्टा टाइम लगता है, टाइम लैग होता है। अगर एक रुपया ठीक स्तर पे जाके सेटल होता है, मतलब चाइना को अगर आप देखेंगे, आपके दर्शक हैरान होंगे कि चाइना जानबूझ के अपनी करेंसी को गिरा के रखता है डॉलर के सामने, ताकि दुनिया भर में अपना एक्सपोर्ट कर सके और एक्सपोर्ट कॉम्पिटेटिव हो, ये आपके दर्शकों को जानना होगा। इसलिए एक देखिए राजनीति होती रहेगी, बीजेपी बनाम कांग्रेस चलता रहेगा, लेकिन जो अगर किसी भी बेसिक इकोनॉमिक्स का भी आप लेंगे, राष्ट्रवाद से रुपया के को मत जोड़िए, एक्सपोर्ट्स बढ़ने चाहिए, भारत सरकार को ताबड़तोड़ रिफॉर्म्स करने चाहिए, आपको अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर हटाना है हटाना चाहिए, फॉरेनर्स के लिए हटाओ, क्योंकि देश को फॉरेन कैपिटल चाहिए, चाहे वो एफआईआई के फॉर्मेट में हो, एफडीआई में हो, आप इनके ऊपर से टैक्सेस को रिड्यूस करिए, क्योंकि कंपटीशन दुबई से भी है, हांगकांग से है, सिंगापुर से है, आप अकेले नहीं हैं, तो आपको टैक्स रिफॉर्म्स लाने होंगे। और मुझे लगता है जो आज भारत सरकार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ मिल रही है, कैबिनेट मीटिंग नहीं है, ये पूरी काउंसिल के साथ बैठ रही है भारत सरकार, इसमें सबके साथ में एजेंडा डिस्कस होगा, हर मंत्रालय क्या कर सकता है अपने आप को कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड वाइड बनाने के लिए, इस पर काम होगा। और ओवरऑल जो एक बहुत बड़ा एक हाइपर साइकिल चल रही है एआई की, जिसमें दुनिया भर की कैपिटल को खींच लिया अपनी तरफ, ये इस परिस्थिति में भारत
0: बात है, रजत से भी बहुत बड़ी बात है कि यही वक्त है कि जब क्राइसिस की सिचुएशन पैदा होती है तब क्या सरकार उस क्राइसिस के सिचुएशन को बेनिफिट के तौर पर देखती है कि नहीं देखती है, और क्या इसके बाद रिफॉर्म्स के लिए, बड़े रिफॉर्म्स के लिए, क्योंकि सरकार के पास सब कुछ है, सरकार के पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, सरकार के पास जनता का भरोसा है आज की स्थिति में, लेकिन उसके बावजूद क्या रिफॉर्म्स करती है कि नहीं करती है। शहजाद आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बार जरा आशुतोष से भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं इसको लेकर, क्योंकि लार्जर पॉइंट इस पर यह रखने की कोशिश हो रही है आशुतोष कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का फायदा इकोनॉमी को जिस तरीके से होना चाहिए, रिफॉर्म्स को जिस तरीके से होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। 1991 में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होने के बावजूद भी बड़े रिफॉर्म हो पाए थे, क्योंकि पॉलिटिकल सपोर्ट उस तरीके से दिया गया था, नंबर ऑफ रिफॉर्म्स। क्या आपको लगता है कि आज की स्थिति में उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, सरकार को यह एक्सेप्ट करने की सबसे पहले जरूरत है कि देयर इज अ क्राइसिस?
5: देखिए साहिल, हमारे ख्याल से जब सुरजीत भल्ला जैसे लोग जब कोई बात कहते हैं तो उसको सुनना चाहिए, क्योंकि वो सरकार के आलोचकों में से नहीं है, वो सदस्य है जो मेंबर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, नरेंद्र मोदी की सरकार में जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसके मेंबर रह चुके हैं, साथ ही साथ आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं। तो ये आप नहीं कह सकते कि दरअसल वो कांग्रेस से प्रभावित है या किसी आलोचना से प्रभावित है। तो उन्होंने जो बात कही वो बड़ी गंभीर बात कही है और उस पर चर्चा होनी चाहिए। अब अगर आपका रुपया अगर 100 के आसपास पहुंच रहा है और उसकी अगर हम बारे में चर्चा ना करें और उसको हम बड़े होलिस्टिक अंदाज में ले तो बात समझ में नहीं आती, क्योंकि मनमोहन सिंह के जमाने में जो रुपया गिरा था वो तकरीबन 35% गिरा था 10 साल में, मोदी के जमाने में 58% के आसपास गिर चुका है। और जब मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे उस वक्त भारत रुपया की कीमत 61.04 थी, आज 97 के आसपास पहुंच चुकी है। तो और अगर ध्यान से देखेंगे तो 2023 के बाद से वो बहुत तेजी के साथ उसमें जो ड्रॉप है बहुत ही शार्प है, और ये बिल्कुल उसी तरीके का ड्रॉप है जैसे कि अगर आप 2011 में अगर आप देखते तो 46.67% था रुपया, और उसके बाद अगले 3 साल के अंदर उसमें तकरीबन 15 basis points की गिरावट आई थी। तो यह सरकार के लिए चिंता का सबब होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि हम एक चीज के बारे में जिस तरह उन्होंने इशारा किया सुरजीत भल्ला ने नेट एफडीआई का, तो जो सबसे बड़ी चिंता का प्रश्न है उसी बात को लेकर यह है कि एफडीआई हमारा जो एफआईआई है वो पिछले 6 साल में 4 साल कम से कम 2026 2025 2022 2021 में 1,34,000 crore रुपया, 1,30,000 crore रुपया, 2025 में 1,66,000 crore रुपया, और 2026 में सिर्फ 5 महीने में 2 लाख से ज्यादा करोड़ रुपया हिंदुस्तान से बाहर जा चुका है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ बहुत सीधी सी बात है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको भारत की इकोनॉमी में उतना विश्वास नहीं जितना होना चाहिए, और इसके बहुत सारे कारण, आप उसे कहेंगे तो मैं कम से कम आधे घंटे से बात कर सकता हूं। और जो असली चीज है कि क्यों ऐसा हो रहा है, उसका दूसरा बड़ा कारण जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है वो ये है कि जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे तब उन्होंने कहा था, टारगेट रखा था कि 2022 में हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी वो तकरीबन 25% के आसपास होगा। 2015 में जो डेटा कहता है तकरीबन 15 से 17% के आसपास था, आज भी वो 15 से 17% ही है और 4 साल आगे निकल चुके हैं। और इस वक्त जो हमारे पास डेटा है वो
0: कारण क्या
5: कहता
0: लगता है आपको?
5: मैं
0: क्या
5: आपको
0: सरकार
5: बताया
0: इस बात को मानने को तैयार नहीं है? क्योंकि आपने शहजाद को भी सुना, आपने रजत सेठी को भी सुना, सरकार के तरफ से कई बार इस बारे में कहा जाता है कि देखिए बाकी पैरामीटर्स देख लीजिए ना, सब कुछ तो ठीक है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज उस तरीके से नहीं है जो 1991 में था। क्या आपको लगता है? उसके बाद शहजाद उसका जवाब देंगे जल्दी।
5: मैं आपकी बात पे आ रहा। आज की तारीख में अगर आप मर्केंडाइज ट्रेड डेफिसिट अगर आप देखेंगे 2025-2026 का, हमारा इंपोर्ट 17% के हिसाब से आगे बढ़ा है और तकरीबन तकरीबन $775 बिलियन है आपका इंपोर्ट। उसके मुकाबले में जो आपका एक्सपोर्ट है वो $442 बिलियन, यानी लगभग 3-4% के हिसाब से बढ़ रहा है और इंपोर्ट आपका जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। कारण क्या है? आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे जिस तरीके से काम होना चाहिए उस तरीके से नहीं हुआ, और इसके लिए 3 सबसे बड़े कारण है। एक, जिस तरीके से आपने डिमोनेटाइजेशन किया, जिस तरीके से आपने जीएसटी को लागू किया, उसका हश्र ये देखने में हुआ कि जो कोविड के ठीक पहले का जो क्वार्टर था
0: सरकार की अपनी नीतियों के वजह से ही इसका असर हुआ है, ये भी कहीं ना कहीं लोगों को कहना है, कहीं ना कहीं मान लीजिएगा कि ठीक है बाकी
2: पैरामीटर्स
0: समस्याएं भी आज की स्थिति में।
2: मैंने सारी चीजें नोट की और मैं आपसे सिर्फ संरक्षण चाहता हूं, मैंने किसी के बीच में एक शब्द नहीं बोला, मेरी बातें पूरी आने दीजिए क्योंकि मैं सबके काउंटर पॉइंट्स लिख के आंसर दे रहा हूं। अभी आशुतोष जी से स्टार्ट करते हैं, उन्होंने बोला 15% ऑफ जीडीपी था 2014 में, आज भी 15% जीडीपी। जीडीपी का साइज कितना बड़ा है भाई रजत जी? उस समय कितना था? $1.5 ट्रिलियन, आज $4 ट्रिलियन है। तो मैन्युफैक्चरिंग बड़ा है भाई साहब, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स बढ़े। मैं आपको उदाहरण स्पेसिफिक एग्जांपल देता हूं, मैंने बोला 2 फैक्ट्री थी, अब 300 फैक्ट्री हो गई मोबाइल फोन की, उसमें कौन काम कर रहे भाई? उसमें कांग्रेसी शर्ट निकाल के काम कर रहे, उसमें भारत के लोग काम कर रहे। चलिए मैं आपको बताता हूं, जब आपका इलेक्ट्रॉनिक्स $31 बिलियन का मैन्युफैक्चरिंग था, आज $133 बिलियन का है। और मैं चुनौती देता हूं आशुतोष को, इस फिगर को डिस्प्यूट करे, ये कहां मैन्युफैक्चर हो रहा है? सोनिया गांधी के ननिहाल में मैन्युफैक्चर हो रहा है कि यहां पे नोएडा में हो रहा है? चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, प्लीज नॉट नो डिस्टर्बेंस साहिल जी, दिस इज नॉट फेयर।
0: आप इस तरीके से फिर कांग्रेस प्रवक्ता भी उल्टा सीधा बोलेंगे तो चर्चा बैठ जाएगी, फिर मुझे मत टोकिएगा। आप बोलिए, जो बोलना है बोल लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
2: आशुतोष,
0: हम बड़ी सीरियस गंभीर चर्चा कर रहे हैं और आज तक यही चर्चा चल रही थी, ठीक है? चलिए,
2: 400 स्टार्टअप थे, आज 1.5 लाख से अधिक, 2 लाख स्टार्टअप है, ये इसमें मैन्युफैक्चरिंग के भी है। अब छोड़ देते हैं इसको, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। जो मोटा मोटी बात हो रही है कि हम लोगों ने जो है रिफॉर्म्स नहीं लाए, साहिल जी हर दूसरे महीने तो हम एक नया रिफॉर्म अनाउंस करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिफॉर्म था कि नहीं था? और फिर जीएसटी 2.0 रिफॉर्म था कि नहीं था? आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड रिफॉर्म था कि नहीं था? जो हमने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव किया वो था कि नहीं था? 29 लेबर कोड्स को रिड्यूस करके 4 लेबर कोड्स, ये था कि नहीं था? जो कॉर्पोरेट टैक्स का रिस्ट्रक्चरिंग किया वो था कि नहीं था? हम पीएम गतिशक्ति को जो लाए नेशनल मास्टर प्लान टू रिड्यूस द लॉजिस्टिकल कॉस्ट, ये है कि नहीं है? डिजिटल इंडिया, जो पहले कैश में पैसा देते थे आज डिजिटल ट्रांजेक्शन यूपीआई, जिसका मजाक चिदम्बरम ने उड़ाया, ये था कि नहीं था? जब चुनौती आती है तो नरेंद्र मोदी ने 2 वैक्सीन भारत में बनाए, 40 वर्ष वैक्सीन के लिए रुकते थे, ये रिफॉर्म था कि नहीं था हेल्थ सेक्टर का? मैं इससे आगे बढ़ना चाहता हूं। अभी 3 पैरामीटर बताए थे सुरजीत भल्ला ने कॉन्फिडेंस इन इकॉनमी के। नंबर 1 एफडीआई, मैंने एब्सोल्यूट फिगर्स कोट किए, $400 बिलियन वर्सेस $780 बिलियन, उसको डिस्प्यूट नहीं किया जा सकता। दूसरा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का मैं आपको फिगर कोट कर रहा हूं, 22% ऑफ द जीडीपी था एट द टाइम ऑफ द यूपीए, 18 लाख करोड़ के आसपास, आज 33% पे है, कम हुआ है। तीसरा आपको मैं और एक उदाहरण देता हूं, उन्होंने थर्ड फैक्टर नहीं बताया, एफटीएस, आज भारत ने 9 FTAs विद द मेजर
0: फिगर कोट कर रहे हैं
2: की है, अगर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो
0: फिगर कोट
2: क्यों
0: कर रहे
2: देश?
0: प्राइवेट इन्वेस्टमेंट घट रहा है, सबसे बड़ी बात आज की स्थिति में यही उठाई जा रही है, कॉर्पोरेट टैक्स कम करने के बावजूद भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट घट रहा है। रजत सेठी, अगर मैं गलत हूं तो
2: आपको बता रहा हूं आंकड़ों के साथ, मैं आपको आंकड़ों के साथ बता रहा हूं,
0: करेक्ट करिएगा,
2: मैं आपको आंकड़ों के साथ बता रहा हूं, एक सेकंड,
0: चलिए
2: मैं आपको आंकड़ों के साथ बता रहा हूं, एक सेकंड, सब आंकड़ों के साथ लेकर आया हूं मैं। बाय द वे जो आईएमएफ का भी बोल रहे थे वो ग्रुप कैटेगरी सी में डाला था क्योंकि बेस ईयर आउटडेटेड था, बेस ईयर को हमने ठीक कर दिया तो हम लोग ए कैटेगरी नहीं है। अब मेरी बात हो जाने दीजिए,
6: जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का
2: साहिल मुझसे पूछा ना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का मैं आपको आंकड़ा
0: एक मिनट अजय जी, एक मिनट शहजाद जल्दी खत्म करिएगा, शहजाद जल्दी खत्म, ठीक है अजय जी, एक मिनट
2: मैं आपको बता रहा हूं,
6: पिछली बार भी मुझे समय नहीं दिया, जीएफसीएफ
2: एवरेज जीएफसीएफ जो कैपिटल फॉर्मेशन जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए जो जीएफसीएफ को माप करते हैं, 22-27% 10 साल यूपीए के, आज ये 52% ग्रोथ
0: तो
2: के साथ
0: 33% है। सब कुछ ठीक चल रहा है, चिंता की कोई जरूरत नहीं है,
2: मैंने ये नहीं कहा,
0: जो इकोनॉमिस्ट कहने की कोशिश कर रहे हैं वो तो सुरजीत भल्ला और बाकी सारे जो लोग कह रहे हैं उस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, कुल मिलाकर यही कहने की जरूरत है ना, यही कहने की, यही कह रहे हैं ना आप?
2: नहीं, मैं कह रहा हूं कि जब समंदर में एक इस प्रकार का आंधी आएगा, शिप हिचकोले खाएगी, पर हमारा कैप्टन नरेंद्र मोदी है, हमारा कैप्टन राहुल गांधी टाइटैनिक की तरह डुबा दे।
0: अजय उपाध्याय, उसके बाद रजत सेठी को चार करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले अजय उपाध्याय
3: जी,
0: आशुतोष जी एक मिनट, अजय उपाध्याय कुछ कहना चाह रहे हैं जी।
3: साहिल जी, पिछली बार भी अन्याय किया, आपने समय नहीं दिया, इस बार समय जरूर देंगे, मुझे पूरा भरोसा है।
0: अरे सर, इसी में टाइप का उत्तर देना है, सवाल उनको पूछ रहे, कोई भाषण नहीं दे रहा है यहां पर अजय जी, मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है, अन्याय की क्या बात है, मैं सवाल उनको पूछ रहा हूं, चर्चा चल रही है ना, आशुतोष भी उस पे मुद्दा रखने की कोशिश कर रहे हैं, बताइए।
3: अरे भाई, चर्चा एक तरफा चल रही, एक तरफा चर्चा चल रही है, जरा चर्चा
0: कैसे आपको मालूम इतना चल रहा है, तो उसका उत्तर सुरजीत भल्ला जो बातचीत कर रहे थे वो क्या एक तरफा बात कर रहे थे? कैसे बात कर रहे हैं अजय उपाध्याय जी? प्लीज,
3: सात मिनट से छह मिनट से कर रहे हैं एक आदमी, पहली बात।
0: अरे ये टाइम गिनने से नहीं होता है, मुद्दे पर बात करेंगे ना,
3: बात है
0: ये 30 सेकंड 40 सेकंड एक मिनट उससे कुछ नहीं होता।
3: अरे भाई, मुद्दा पर ही बात हो रही है,
0: जो मुद्दा चल रहा है उस पर बात करिएगा, चलिए मुद्दा नहीं भटकाएंगे, चलिए।
3: अरे भाई, मुद्दा पर ही बात हो रही है, आप भी भटकाना चाह रहे हैं। सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यदि सब चंगा सी है तो ये कैसे यहाँ पे रोजगार घट गया है भाई? और ये सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का काम लगता है मोदी जी के पहले वाले समय, मैं नहीं कहूंगा बीच में नहीं, बीच में नहीं, अरे बीच में नहीं, सुनो यार, अरे
0: जी आप भी बीच में नहीं बोला था, आप भी बीच में नहीं,
3: फिर बीच में डिस्टर्ब कर,
0: बीच में नहीं,
3: ये देख लीजिए
0: बीच में, आप जो आप जो एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे से, आपको भी वही फॉलो करना है।
3: ये बदतमीजी,
0: आपकी बात खत्म करें, चलिए,
3: ये बदतमीजी जो है, ये विशुद्ध बदतमीजी है। मैं नहीं कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी के पहले वाले ससुराल में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार बढ़ा है या नए वाले ससुराल में बढ़ा है, मैं नहीं कहूंगा, प्रधानमंत्री है, बड़ा सम्मान है उनका, बस सच्चाई है कि रोजगार घटा और जो एमएसएमई है वो पूरी तरह बर्बाद हुआ है, आज भी एमएसएमई बीच में,
2: प्रधानमंत्री का
3: फिर बीच में नहीं, फिर बीच में नहीं, मैं कुछ बोल रहा हूं,
2: ससुराल का क्या मतलब है?
3: अरे भाई,
2: कौन है बदतमीज?
3: अरे भाई, मैंने तो कहा ना,
0: तुम ये मैंने पहले ही कहा था, और इसीलिए जब भी कोई भी देख लीजिए मामले पर, इकोनॉमी जैसे गंभीर मामले पर कभी भी कोई भी डिबेट होता है, मैंने पहले ही कहा था जब आपने सोनिया गांधी के ननिहाल की बात की, तब भी मैंने कहा था कि ये भी इस तरीके से बात करेंगे, और उन्होंने की, मैंने उनको रोका था, अजय उपाध्याय जी, मैंने उनको रोका था। अब आप लोग दोनों तय कर लीजिएगा इस मुद्दे पर बात करने की, एक दूसरे के नेता के बारे में बात करें,
2: भाग जाओगे यहाँ पे
3: जी, मुझे समय दीजिए, मुद्दे
0: चलिए बस हो गया, अजय उपाध्याय जी आप मुद्दे पर बात करिए प्लीज,
3: मुद्दे पर बात करें, मुझे
0: अजय उपाध्याय जी मुद्दे पर
3: मैं मुद्दे पर हूँ, लेकिन आप बदतमीजी बीच बीच में आप करवा रहे हैं,
2: पीएम के बारे में बकवास मत करना,
0: कोई नहीं
2: मत, पीएम के बारे में बकवास मत करना
0: जी प्लीज,
2: समझ रहे हो ना,
3: फिर चुप,
2: ये बकवास नहीं चलेगी यहाँ पे
3: प्लीज,
2: तुम लोग भी बहुत हो गया बकवास,
3: देखिए वो जानकर कर रहा है, ये बदतमीज है, रोड छाप,
0: अजय उपाध्याय जी आपकी बात खत्म करिए
2: प्लीज,
0: यार दोनों को रोक दीजिएगा, ये शहजाद ये ठीक नहीं है, शहजाद प्लीज ये ठीक नहीं है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप भटक रहे हैं उस पर, और अजय उपाध्याय जी आपको भी मैंने कहा था कि मैंने उनको रोका था, उसके बाद आपको उसमें जाने की जरूरत नहीं थी, आप अगर इकोनॉमिक मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो बात करिएगा, वरना मैं रजत सेठी के पास चला जाऊंगा, जल्दी अजय उपाध्याय जी आपकी बात खत्म करिए,
3: मैं तो क्लियर कर रहा हूं कि देश में जो महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान है, मोदी जी को इस मुद्दे तो दिखते नहीं है, यदि ये मुद्दे दिखते सरकार से ही बताइए जिम्मेवारी किसकी है, इस देश में यदि आर्थिक प्रहार हो रहा है, आर्थिक प्रतिकूल परिस्थितियां बनी है, तो जो सरकार में होगा उसी से प्रश्न किया जाएगा ना, जब देश में हानि का और संकट का और आपदा का समय आए तो पूरे आम जनता और आप और हम जैसे लोग जो है उसमें सफरर हो, और वो पूरे हानि का लॉस का हम जो है राष्ट्रीयकरण कर दें, और जब लाभ प्रॉफिट की बात आए तो कुछ मुट्ठी भर पूंजीपति मित्रों को जो है उसका जो है लाभ हो जाए, वो ये कैसे संभव है, ये ठीक है क्या? दूसरी बात, जिस तरह से अभी चर्चा आप कर रहे हैं, सबको ये सच पता है कि किस तरह से 1% लोगों के पास इस सरकार के रहते 12 साल में 40% देश के राष्ट्रीय संपत्ति का कहीं ना कहीं एक जगह संकेंद्रण हुआ है, आम जनता लगातार जो है महंगाई बेरोजगारी और घरेलू बचत के कमजोर होने के कारण इसकी जिंदगी दूर होती जा रही है,
0: भारतीय अर्थव्यवस्था में डिस्पैरिटी की बात पर पहले भी चर्चा हो चुकी है,
3: आलम है
0: और प्लानिंग कमीशन के समय पर भी डिस्पैरिटी को लेकर कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन आज के समय पे संकट जिस तरीके से नजर आ रहा है
3: हमने
0: इसीलिए चर्चा करना जरूरी
3: था, हमने मेंटेन किया उसको,
0: नहीं डिस्पैरिटी की चर्चा पहले भी हो चुकी है अजय उपाध्याय जी,
3: एकदम ठीक है, 10 सेकंड
0: आज की स्थिति में भारतीय इकोनॉमी में डिस्पैरिटी जिस तरीके से बढ़ी है उस पर कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन रजत सेठी क्या आज की स्थिति में हम इस बारे में चर्चा नहीं कर सकते।
3: रजत सेठी एक मिनट,
0: दस सेकंड दीजिए,
3: ये बात ठीक नहीं है।
0: दस सेकंड दीजिए
3: भी कहीं ना कहीं डिस्पेरिटी यदि इकोनॉमी के कारण बढ़ी है और सरकार के फेल्यूर के कारण बढ़ी है तो एक प्रश्न बनता है। पूरे विश्व के स्तर पर यदि गरीब लोगों को उत्थान की बात हम कर रहे हैं और भारत में भी
0: आज की स्थिति में कम से कम इस बात का जिक्र होना जरूरी है, जब प्रधानमंत्री आकर बचत करने की अपील करते हैं उसके बाद इकोनॉमी पर उस तरीके से चर्चा होना लाजमी है या वो भी गलत है? अगर इकोनॉमिस्ट सामने आकर कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं तो उस पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?
4: देखिए, यही गंभीर विषयों पे ही चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि तूतू मैमे का तो कोई अंत नहीं है। आज से 15-20 साल भी यही कर रहे होंगे तो ऐसे ही शो चल रहा होगा। मैं आपको देखिए, कुछ भ्रांतियां जो फैलाई गई हैं कि देश से पैसा विदेशी इन्वेस्टर्स खींच रहे हैं, FII जो होते हैं शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं। भारत का जो शेयर बाजार है, हमको मालूम है, हर साल 30-30% रिटर्न दे रहा था। जो इस तरह से हमारे जो शेयर्स की कीमतें थी, जो PE रेशियो बोलते हैं, आपको पता होगा, आपके दर्शक इन्वेस्ट करते हैं, एवरेज जो भारत में जो एवरेज शेयर के प्राइस है 25 गुना की दाम पे ट्रेड हो रहे हैं। बनिस्पत इसके अगर आप चाइना को देखेंगे, चाइना पिछले 5 सालों से जब से कोविड हुआ है उसके यहाँ जो एवरेज PE है उसका एवरेज PE 12-14 है। कोरिया जिसमें सैमसंग जैसी विश्वव्यापी कंपनियां हैं उसका PE 18 है। तो कैपिटल जो होता है वो महंगा आइटम क्यों खरीदेगा? वो जहां पे अंडर वैल्यूड स्टॉक्स है वहां पे जाएगा। इसलिए बहुत दिनों से, बहुत सालों से
0: लेकिन उसके साथ इन्वेस्टर ये भी देखेगा ना कि उसको रिटर्न किस तरीके से मिल रहा है, कितना प्रतिशत रिटर्न मिल रहा है, ये भी तो वो देखेगा ना।
4: साहिल जी, मैं वही मैं बोल रहा हूँ, हमारे शेयर ऑलरेडी 25-30 PE के बीच में बैठे हैं। उनको जो अभी भी इन्वेस्टेड है इन शेयर में वो उसी प्राइस पॉइंट पे इन्वेस्टेड है कि यहाँ से रिटर्न मिलेंगे इस देश में। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि इतने महंगे प्राइस पॉइंट पे फॉरेन कैपिटल आएगा तो कैसे आएगा, जब उसको सस्ते स्टॉक्स चाइना के, कोरिया के, जापान के दिख रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, FDI जो है, जो ग्रॉस FDI की बात होती है, नेट FDI की, अगर आप एक्चुअली इनकमिंग FDI देखें वो पिछले साल दर साल 15% के पेस से बढ़ रहा है। और पिछले साल ही अगर आप देखेंगे तो करीब $85 बिलियन था। क्या ये 200 बिलियन नहीं होना चाहिए?
0: आज की स्थिति में, और ये सवाल मुझे रजत सेठी और आशुतोष दोनों से पूछना है क्योंकि आखिरी कुछ ही सेकंड मेरे पास बाकी है। ठीक है, रजत सेठी, आज की स्थिति में जब ये चर्चा हो रही है, अभी मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है, कौन सी 3 चीजें आप एक्सपेक्ट करते हैं सरकार से कि जो आपको लगता है अगला क्राइसिस रोकने के लिए सरकार को सोचनी चाहिए? रजत सेठी, उसके बाद आशुतोष।
4: देखिए, मुझे सबसे पहले ये लगता है कि EVs, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इंडक्शन टॉप्स, इन सब चीजों के लिए जिसमें कि हमारे बाहर की फ्यूल पे डिपेंडेंसी कम हो सकती है, ऐसी टेक्नोलॉजीज पे हैवी इंसेंटिव्स देके उनको ताबड़तोड़ इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए भारत सरकार को, नंबर वन। नंबर टू, भारत सरकार को फॉरेन कैपिटल को इंटरेस्ट, भारत सरकार को फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए, रेड कार्पेट रोल करने के लिए और क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं? लॉन्ग टर्म कैपिटल हटाना हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल में रिबेट्स देनी हो, वो सब आपको भारत सरकार को करनी होगी। मुझे लगता है इसके ऊपर
0: रिफॉर्म्स
4: विचार हो चुका है।
0: ठीक, नंबर 3।
5: देखिए साहिल,
0: हाँ आशुतोष, साहिल दो चीजें वो कह रहे हैं कि दो चीजें होनी चाहिए। जी आशुतोष।
5: साहिल देखिए, फंडामेंटल इश्यू क्या है, आपकी सोसाइटी में डिमांड कम हुई है, कंजम्पशन बढ़ नहीं रहा है, मैन्युफैक्चरिंग आपका डाउन है और मैन्युफैक्चरिंग 2014 से लगातार GDP के रेशियो में डाउन ही चल रहा, बढ़ नहीं रहा है। आपको मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़ाना है ये देखना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, 2014, 2015, 2016 हमारी इकोनॉमी 8% पे ग्रो कर रही थी। जब आपने आंख बंद करके डीमोनेटाइजेशन किया, जब आप बिना किसी कारण के आप जिस तरीके से आपने GST लागू किया, उसके बाद जो जनवरी से मार्च के बीच का जो 2020 का क्वार्टर था कोविड के ठीक पहले, हमारी मैन्युफैक्चरिंग -1.4% स्विंग कर रही थी।
0: जो रजत सेठी ने सुझाया, मुझे आपसे भी सुनना है, मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है, 30 सेकंड मेरे पास है आशुतोष, नहीं मेरे पास 30 सेकंड है, दो चीजें एक्सपेक्ट करते जो सरकार से आप।
5: साहिल, बहुत सीधी सी बात है, आपको मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े आपको करना पड़ेगा। जब तक आपकी इकोनॉमी एक्सपोर्ट लेड नहीं होगी, मैन्युफैक्चरिंग का सुपर हब नहीं बनेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते।
0: उम्मीदें भरपूर है शहजाद, मेरा समय खत्म हो गया है, उम्मीदें भरपूर है। रजत सेठी ने भी वो बातें रखने की कोशिश की, आशुतोष और शहजाद भी यहां पर अपनी भूमिका यहां पर रख रहे थे, अजय उपाध्याय भी रख रहे थे, लेकिन कुल मिलाकर मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद सबसे बड़ा इंतजार लोगों को इसी बात का होगा कि सरकार आने वाले संकट को लेकर कैसे निपटने की तैयारियां करेगी, उसी को लेकर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लोगों का भी होगा, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: सर म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
3: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
4: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
5: नहीं,
4: और म्यूचुअल फंड से
5: सही।
6: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
7: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
8: इसमें माइक्रोफाइबर है।
7: माइक्रोफाइबर यानी
8: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
7: हमारे सीमेंट में नहीं है?
8: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
9: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
10: In association with
11: Punjab National Bank, भरोसे का प्रतीक।
12: Cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
10: Hint, बड़े आराम से। विमल बोलो जुबां केसरी।
13: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
14: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
15: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें ईपेपर.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड को अभी स्कैन करें।

0: देश के 27 शहर ऐसे हैं जहां तापमान 45 डिग्री या उससे ज्यादा हो चुका है। चढ़ते पारे के आंकड़े बदल रहे हैं, मौसम का मिजाज बदल रहा है, लेकिन आफत का अंदाज नहीं। सूरज की किरणों ने धरती को तपा दिया और यूपी के शहर इस ताप का सबसे बड़ा संकट झेल रहे हैं। 20 मई को देश के जिन 27 शहरों का तापमान 45 या उससे ज्यादा दर्ज किया गया, उनमें से 5 यूपी के हैं। इनमें पहला स्थान है बांदा का, जहां बढ़ते तापमान का रिकॉर्ड टूटा, पारा 48 डिग्री तक पहुंच गया, जो कि देश के किसी भी शहर में सबसे ज्यादा है। यूपी का दूसरा शहर हमीरपुर है, वहां तापमान 46.2 डिग्री दर्ज किया गया। तीसरे नंबर पर रहा झांसी, जहां करीब 46 डिग्री तक पारा पहुंचा। चौथे नंबर पर ताज नगरी आगरा, वहां भी 45.3 डिग्री तापमान के साथ स्थिति बेहद गंभीर दिखी। तो 27 शहरों में यूपी का 5वां शहर था उरई, जहां 45 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। आंकड़ों से साफ है कि यूपी में संकट बेहिसाब है। बांदा की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी आफत बनकर टूटी है। दोपहरी में सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। बांदा के बीते 4 दिनों के आंकड़ों पर नजर दौड़ाइए। 17 मई को बांदा का तापमान 47.5 डिग्री दर्ज किया गया, उसके अगले दिन 47.8। 19 मई को स्थिति और बिगड़ी, तापमान 48 के पार पहुंचा। 20 मई को अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री रहा। पारा का तेवर ऐसा हो गया कि बांदा प्रशासन भी लोगों से सुरक्षित रहने की अपील कर रहा है। यूपी में भीषण गर्मी और लू की मार का गंभीर असर प्रयागराज में भी दिखा। वहां भी लोग पारे के बिगड़े मिजाज की वजह से घरों में कैद हो गए। वहां भी तापमान 45 डिग्री के करीब दर्ज किया गया। लोग पेड़ों की छांव खोजते नजर आए तो कुछ लोग संगम तट पर जा पहुंचे। गर्मी से राहत के लिए प्रयागराजवासी गंगा में डुबकी लगाते दिखे। सहारनपुर का सामना भी ऐसे संकट से हुआ है। वहां भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। जिले का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने से दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। गर्म हवाओं और हीट वेव के चलते लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। बाजारों, चौराहों और मुख्य सड़कों पर आम दिनों की तुलना में काफी कम भीड़ दिखाई दे रही है। सहारनपुर से राहुल कुमार, बांदा से सिद्धार्थ गुप्ता और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
3: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
5: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस,
6: एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
7: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
9: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
10: इसमें माइक्रोफाइबर है।
9: माइक्रोफाइबर यानी
10: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
9: हमारे सीमेंट में नहीं है,
10: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
11: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
12: एक तरफ पूरा विश्व भारत की तरफ, प्रधानमंत्री जी की तरफ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ देखता है, दूसरी तरफ नकारात्मक सोच रखने वाले राहुल गांधी जी अपने स्वभाव का परिचय, अपने चरित्र का परिचय अपने शब्दों में, अपने भाषणों में बार बार दे रहे हैं। यह अलग बात है कि भारत की जनता उनको एक के बाद एक ठुकराती है, एक के बाद एक वो चुनाव में हारते हैं, उसका जो फ्रस्ट्रेशन है, उसकी जो एक प्रकार से उनमें खुंदकीय भावना है वो नजर आती है, जिस प्रकार से वो गाली गलौच पे उतर आए हैं और प्रधानमंत्री जी के लिए बड़ी ओछे शब्दों में वो बात रखते हैं।

0: मिलिए कॉकरोचों से जिन्होंने देश के सियासी हलकों में खलबली मचा दी है। जी हाँ, हम इन्हें कॉकरोच कह रहे हैं क्योंकि इनकी पहचान कॉकरोच से है। ये कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्य हैं और इन्होंने एक ऐसा संगठन खड़ा किया है जो दीन दुनी रात चौगुनी बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है। सबसे पहले हम आपको संस्थापक कॉकरोच यानी कॉकरोच जनता पार्टी की बुनियाद रखने वाले नौजवान से मिलवाते हैं। नाम है अभिजीत दीप के, रहने वाले छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र के। योग्यता, पुणे से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन, बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर ऑफ साइंस। तो हुआ यूं कि देश के चीफ जस्टिस की तरफ से कॉकरोच वाला बयान आया और अभिजीत के जहन में कॉकरोच जनता पार्टी के गठन का आइडिया आया। कैसे? अभिजीत दीपके ने बातों ही बातों में सोशल मीडिया पर एक मंच बनाया और देखते ही देखते ये मंच किसी वीडियो की तरफ वायरल होता चला गया। 16 मई को कॉकरोच जनता पार्टी की वेबसाइट लॉन्च हुई। सिर्फ 48 घंटे में ही 40,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए। आज की तारीख में इंस्टाग्राम पर इसके 1,15,00,000 से ज्यादा और एक्स पर 1,90,00,000 से अधिक फॉलोअर्स हो चुके हैं। अभिजीत दीपके का राजनीतिक संदेशों को वायरल कराने का पुराना अनुभव रहा है। साल 2020 से 2022 के बीच वो आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम के एक प्रमुख वॉलंटियर थे। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान आपके पक्ष में जो मीम्स की बाढ़ आई थी उसके पीछे अभिजीत का दिमाग माना जाता है। वो दिल्ली के शिक्षा विभाग के कम्युनिकेशन एडवाइजर के तौर पर भी काम कर चुके हैं, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का आइडिया सुपरहिट दिख रहा है। फिलहाल इस संगठन के वादे और इनकी घोषणाएं हल्की फुल्की और व्यंगों से सराबोर दिख रहे हैं, लेकिन इस मंच की बढ़ती लोकप्रियता सबको हैरान कर रही है। सवाल है कि क्या ये मंच भारत में जेन जी के आंदोलन की बुनियाद बनेगा? दिल्ली में सोनल मेहरोत्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
1: ससुराल पक्ष तो फॉर्चूनर गाड़ी मांग रहा है, 51,00,000 रुपए मांग रहा था।
0: आखिर ऐसा क्या हुआ कि ग्रेटर नोएडा की बेटी को जान गंवानी पड़ी? घर वालों ने नाजों से पाला, बड़े अरमानों से शादी की, 1,00,00,000 से ज्यादा खर्च किए, स्कॉर्पियो कार तोहफे में दिया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ दिन बाद ससुराल वाले राक्षस बन जाएंगे, दहेज के लिए बेटी को सताने लगेंगे, फॉर्च्यूनर कार के लिए मारने पीटने लगेंगे। ग्रेटर नोएडा के रहने वाले संजय नागर का आरोप है कि बेटी की शिकायत के बाद वो उससे मिलने ससुराल भी गए थे और लौटते ही बेटी के छत से गिरने की खबर आ गई। ससुराल वालों ने बताया कि दीपिका छत से गिर गई है। अस्पताल पहुंचने पर दीपिका के घर वालों को पता चला कि दीपिका अब इस दुनिया में नहीं है। तीसरी मंजिल से गिरने से उसकी मौत हो चुकी है। पिता को यकीन नहीं हो रहा कि बेटी की मौत गिरने से हुई। उनका आरोप है कि बेटी को छत से धक्का देकर मारा गया। वो चोटों के निशान का हवाला देते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इसकी तस्दीक कर रही है। रिपोर्ट बताती है कि दीपिका के चेहरे, कोहनी, जांघ, घुटने, कमर, पेट सब जगह गहरे निशान मिले। मामला इकोटेक थाना इलाके का है। दीपिका के घर वाले कुड़ीखेड़ा गांव के रहने वाले हैं, जबकि उसका ससुराल जलपुरा में है। घर वालों का कहना है कि दीपिका के ससुराल वाले लगातार उनसे फॉर्च्यूनर समेत लाखों रुपए की मांग कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने दीपिका के ससुर मनोज और पति ऋत्विक को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रेटर नोएडा से अरुण त्यागी के साथ अंशुल सिंह, आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: तो दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल के साथ। आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: Accoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: मंत्रिमंडल में बदलाव की चर्चा के बीच मंत्री परिषद की बैठक, मंत्रालयों के कामकाज की प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं समीक्षा, सभी मंत्रियों की बड़ी परीक्षा, वैश्विक हालात, ऊर्जा संकट पर भी चर्चा। प्रधानमंत्री के विदेशी दौरे से बड़े निवेश को मिली मंजूरी, पीयूष गोयल का बयान, सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा समेत कुल 57 बड़े समझौते, विपक्ष ने फिर उठाए सवाल। बंगाल में जारी है शुभेंदु का ताबड़तोड़ फैसला, मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने के दिए आदेश, कुर्बानी को लेकर भी सियासी बयानबाजी, बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सड़क पर उतरेंगी ममता बनर्जी। पुलवामा के गुनहगार का हो गया हिसाब, अज्ञात हमलावरों ने मास्टरमाइंड हमजा बुरहान का किया काम तमाम, पीओके के मुजफ्फराबाद में मारी गई गोली। और सीज फायर पर कह रहा है संकट ईरान को अमेरिका की बड़ी धमकी, 48 घंटे में नहीं मानी बात तो होगा बड़ा हमला, ईरान झुकने को नहीं तैयार, नेतन्याहू को ट्रंप के आदेश का है इंतजार।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: सर मोदी ब्रोट अस अ गिफ्ट, अ वेरी वेरी गुड टॉफी।
0: मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
2: हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश जाकर उधर वो इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी ट्रॉफी खिला। दिस इज एन इंसल्ट टू द पीपल ऑफ इंडिया।

0: ताकि आप देश के दर्द का अपमान कर रहे हैं। सुनिए,
1: हिंदुस्तान में आर्थिक तूफान आ रहा है, तेल के, पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल के दाम आसमान को छुएंगे, फर्टिलाइजर की कमी होगी, फर्टिलाइजर महंगा होगा, किसानों को नुकसान होने वाला है, अर्थव्यवस्था पर भारी झटका पड़ने वाला है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा सोना मत खरीदो, ज्यादा गाड़ी मत चलाओ और विदेश मत जाओ, और फिर विदेश जाकर हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश जाकर उधर वो इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी ट्रॉफी खिला रहे। दिस इज एन इंसल्ट टू द पीपल ऑफ इंडिया। दिस रील दैट द प्राइम मिनिस्टर हैज मेड इज एन इंसल्ट टू द पीपल ऑफ इंडिया एंड व्हाट दे आर सफरिंग।
0: चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय दुबे जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। मनोज काका जी राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, ताली थोड़ा बजा लीजिए आप लोग। और हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले गौरव भाटिया जी आपके पास आते हुए सवाल यह है कि विपक्ष कह रहा है कि भाई क्या हासिल हुआ इन पांच देशों के दौरे पर, और राहुल गांधी ने कड़ी आलोचना प्रधानमंत्री की है, क्या जवाब है आपका?
2: देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जब देश के प्रधानमंत्री विदेशी यात्रा पर होते हैं तो देश का हित ही होता है, कुछ ना कुछ अच्छा होता है, आपकी रिपोर्ट भी दिखा रही थी। लेकिन ये जनता से भी जो है एक सवाल है, जब देश के प्रधानमंत्री जी देश से बाहर हों, देश हित में समझौते कर रहे हों, तो भारत के नेता प्रतिपक्ष को क्या है ऐसी मजबूरी कि बार बार केवल नरेंद्र मोदी जी को गाली देना? और देश का प्रधानमंत्री अगर गद्दार है तो मैं कहता हूं राहुल गांधी भी सुरक्षित नहीं है। मोदी जी तो वो हैं कि अगर आज भी आ जाए नेता प्रतिपक्ष पर तो नरेंद्र मोदी जी खड़े हो जाएंगे कि पहले मेरे ऊपर आए फिर राहुल गांधी पे आए। तो इसलिए ये आलोचना का एक विषय है कि राहुल गांधी हमेशा नकारात्मक राजनीति क्यों करते हैं। दूसरा, ऐसा क्यों है कि जब भी नरेंद्र मोदी जी बाहर होते हैं तो इस तरह की बेकार की टिप्पणियां आती हैं? और हमने देखा 32 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिले हैं, राहुल गांधी क्यों जलते हैं? राहुल गांधी जी को भी तो कुछ अवार्ड मिले हैं, हाफिज सैयद पीस प्राइज, जॉर्ज सोरस यूनिटी अवार्ड, और सबसे बड़ी बात है पोगो चैनल का बेस्ट कार्टून अवार्ड राहुल गांधी को ही मिला है। इसलिए वो जो है कह रहे हैं कि भाई 32 और मुझे 3। दूसरी बात अंजना जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, बार बार ये कांग्रेसी झूठ का प्रचार करते हैं इस मंच से। सबसे पहले सारे दर्शकों से कहूंगा, करोड़ों में आप देखिए, पहला झूठ, जब गैस सिलेंडर का संकट नहीं था और आज भी संकट नहीं है, कटौती करने के लिए कहा है संकट नहीं है। 2011 की तस्वीर कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पे डाली और कहा देखिए कतारें लगी हुई है पूरे भारत में और गैस के सिलेंडर खत्म होने जा रहे हैं। जब बताया गया ये तो 2011 में कांग्रेस की सरकार थी तो डिलीट करके भाग गए। दूसरा, दो जहाज जब आ रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से और भारत की तरफ आ रहे थे तो पवन खेड़ा, इनके नेता हैं खेड़ा, वही पेड़ा वाले समझ गए ना, भाग गए थे जब पुलिस आई थी, तो वो बता रहे थे ये दो जहाज भारत नहीं आ रहे हैं, ये कहीं और जा रहे हैं। वो दोनों जहाज भारत आए अंजना जी, ये इतिहास गवाह है, आज तक ने दिखाया। तो उसके बाद वो ट्वीट डिलीट कर दिया। तीसरा झूठ, हम सब जानते हैं चुनौती का समय है, संकट नहीं चुनौती का समय है। नरेंद्र मोदी जी ने अपील करी, उस अपील पे क्या झूठ फैला रहे हैं कि रूस से कच्चा तेल भारत नहीं ले रहा और रूस के कहने पे ही लेता है, अमेरिका के कहने पे ही रूस से तेल लेता है। मैं कहता हूं, आंकड़ों के साथ कहता हूं, एनडीए के समय में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने 30-35% जो आयात किया है कच्चे तेल का रूस से किया है, इनके समय में 1%। दूसरा, 2026 में भी एक भी दिन बता दे जब रूस से कच्चे तेल का आयात नहीं हुआ है। तीसरा, करीब $25 बिलियन भारत ने बचाए हैं क्योंकि रूस से हम कच्चा तेल का आयात कर रहे हैं, और जब शुरू किया था तो यही कांग्रेस पार्टी कहती थी रूस से ना लेना गलत हो जाएगा, आज ये कहते क्यों नहीं ले रहे। इसलिए मैं कहता हूं इनको दर्द होता है तो इतना ही है, मेलेडी खाओ खुद जान जाओ, एक मेलेडी राहुल गांधी को भी खिलाओ और खुद समझ में आ जाएगा। वरना एक और कहावत है, बंदर क्या जाने।

0: अदरक का स्वाद, आजकल लोग कह रहे हैं नकली गांधी क्या जाने मेलेडी का स्वाद।
1: चलिए अबे दुबे जी, हालांकि मैं गौरव जी इतना ही कहूंगी कि आपने उनके नेता के बारे में कहा, फिर इधर से शुरू होगा, फिर नेताओं के अपमान की
0: गद्दार नहीं कहा, गद्दार नहीं कहा, कम से कम गद्दार नहीं कहा। अंजना जी, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ,
1: जिस तरह
0: देश के प्रधानमंत्री को गद्दार बोलते हैं, लाना था ऐसी कांग्रेस पार्टी पे, मुंह पे कहता हूँ।
1: जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के लिए होता है, तो आप उससे इनकार नहीं कर सकते हैं, गद्दार जैसे शब्द का गृहमंत्री और पीएम के लिए इस्तेमाल। लेकिन इससे ज्यादा, वो एक तो निजी यात्रा पर नहीं गए थे घूमने के लिए, है ना, वो 57 वहां पर समझौते भी हुए हैं, और हमारे तेल गैस की आपूर्ति यूएई से शुरू हुआ ये पूरा सफर। अब ऐसे में इसका मजाक उड़ाना क्या सही है?
2: मैं मेरे देश के प्रधानमंत्री को वफादार कहना चाहता हूं, मगर आप तय करिए क्या यह वफादारी है। अडानी ने 2300-2400 करोड़ रुपए का जुर्माना अमेरिका में भरा है। मुकदमा क्या था कि हिंदुस्तान में 2000 करोड़ रुपए से अधिक की रिश्वत दी है एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट्स लेने के लिए। अमेरिका ने मुकदमा क्यों सिक्योरिटी एक्सचेंज ने दर्ज किया? क्योंकि वो वहां के निवेशकों से इन्होंने पैसा उठाया था। मैं चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को कहूं, लेकिन जब 500 बिलियन डॉलर की डील प्रधानमंत्री जी अमेरिका के हितों में करेंगे और भारत के हितों को ठुकरा देंगे, तब मैं मेरे प्रधानमंत्री को कैसे खुददार कह दूं, वफादार कह दूं? मैं, आपने अभी बड़ी बड़ी बातें की, रशिया से हम 1% क्यों लेते थे? क्योंकि ईरान से आता था। अमेरिका ने कहा कि ईरान से पेट्रोल क्रूड ऑयल लेना बंद कर दो, इन्होंने बंद कर दिया। अमेरिका ने कहा कि चाबहार पोर्ट, हमने 14,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, वो छोड़ दो, प्रधानमंत्री जी ने छोड़ दिया। प्रधानमंत्री जी से हम अपेक्षा ये करते हैं कि जो बातें वो देश के लोगों से अपेक्षा करते हैं, वो खुद पर भी तो लागू करें। आपने कहा कि मित्रों, बहनों, भाइयों, हमारे क्रूड ऑयल का संकट है, पेट्रोल डीजल बचाना। 5,000 बसें लेकर पश्चिम बंगाल की और असम में लोगों को इकट्ठा किया, आपने जलसा किया प्रधानमंत्री जी, उसके तत्काल बाद एयर शो के लिए फोटो सेशन करा रहे हैं। अरे उसमें फ्यूल कंज्यूम नहीं होता है क्या प्रधानमंत्री जी? तो आप शिक्षा तब दीजिए जब खुद पर लागू करते हो। हमने सवाल ये उठाया कि प्रधानमंत्री जी आपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व क्यों प्रधानमंत्री जिम्मेदारी,
1: समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं
2: इस क्राइसिस के लिए।
1: मेन पॉइंट क्या है आपका आर्ग्यूमेंट का?
0: वो अभी आपको आएगा, 2 घंटे
1: प्लीज अभय जी जल्दी से।
2: इन सारी चीजों के लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार है जो आज के क्राइसिस है, महंगाई का मातम पसरा हुआ, वहां मेलोडी खिला रहे हैं प्रधानमंत्री जी। आपको समय रहते आपने क्यों नहीं तैयारी की बताइए? हमारे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कांग्रेस पार्टी ने 2005 में स्टेब्लिश किए थे, जिसका फीता आपने काटा 5.3 मिलियन मेट्रिक टन का। आपने बड़ी बड़ी घोषणा की कि मैं 6.5 मिलियन मेट्रिक टन के और बना रहा हूं, आज तक उसकी जमीन अधिग्रहित नहीं की, 12 साल हो गए प्रधानमंत्री जी। हमारे 32 में से 25 प्लांट यूरिया के, जो हमारा इंडिजीनियस प्रोडक्शन, अभी कह रहे थे मैं किसान भाइयों को समर्पित करता हूं अपना अवार्ड, तो फर्टिलाइजर हिंदुस्तान में 390 मिलियन मेट्रिक टन की आवश्यकता है इस खरीफ के सीजन में प्रधानमंत्री जी। 51% अवेलेबल स्टॉक में है और 78 मिलियन मेट्रिक टन सिर्फ आपका प्रोडक्शन और इम्पोर्ट हुआ है। त्राही माम होने वाला है किसानों को खाद की, 7 करोड़ हेक्टेयर खेती के लिए खाद नहीं है भारत के पास, कहां से प्रबंध करोगे? आपको नवंबर 25 में हमला हुआ था, अमेरिका ने किया, तब से आपने तैयारी नहीं की प्रधानमंत्री जी, क्यों नहीं की? हमारे
1: ठीक है,
2: 1 करोड़ लोग गल्फ में रहते हैं।
1: 27 फरवरी को युद्ध, ये 28 से आक्रमण शुरू हुआ था, 28 फरवरी से युद्ध शुरू होता है। आप 4 मई के नतीजे के बाद, ये सवाल मुझे लगता है पिछले कम से कम 10 डिबेट में मैं पूछ चुकी हूं, ये इनका सवाल आज भी है, उस पर आप जवाब दीजिए। दूसरा, वो कह रहे हैं आपने मैन्युफैक्चरिंग कितनी बढ़ाई, आपने कितना प्रोडक्शन देश का बढ़ाया कि आज भी हम पूरी तरह से आयात पर निर्भर है, इंपोर्ट पर निर्भर है, और इसीलिए तो हमारे
2: एक बात जोड़ दूं उसका, अंजना जी जिन्होंने कहा है उसका प्रमाण देखना हो तो जीएसटी में इंपोर्ट का कंपोनेंट देखना।
1: अरे सर, पेट्रोल डीजल को लाइए ना जीएसटी में, 20% दाम सबका कम हो जाएगा
2: भैया, 43 लाख करोड़ रुपए का डाटा
1: कहते हैं जीएसटी काउंसिल में, आप अपोज करते हैं इसको?
2: हमने नहीं किया कभी आज तक, हमने कभी आज तक नहीं किया, और जीएसटी का कानून है समझ लीजिए।
1: हमारे दर्शक भी सुनिए, 20% कटौती हो जाएगी पेट्रोल डीजल की कीमतों में अगर उसको जीएसटी में ला दिया जाता है।
2: आखिरी बात कहने, बहुत महत्वपूर्ण,
1: जल्दी,
2: आज भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, $108 पर बैरल क्रूड ऑयल था, हम कितने में दे रहे थे? 70 रुपए और 65 रुपए में पेट्रोल और डीजल दे रहे थे। हम 4,000 करोड़ रुपए सब्सिडाइज कर रहे थे, मतलब 1,64,000 करोड़ रुपए, 60,000 करोड़ कलेक्ट करते थे और 1,64,000 करोड़ की सब्सिडी देते थे। ये क्या कर रहे हैं पता है? सब्सिडी का बर्डन कितना है? सिर्फ 30,000 करोड़, और 400,000,000,000,000 रुपए हर साल हमारी जेब से निकालते हैं। अगर आज $120 पर बैरल भी कीमत हो जाए तो कीमत बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। कीमत क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि रिलायंस के पंपों को नुकसान हो रहा है साहब। रिलायंस के पेट्रोल पंपों को नुकसान से बचाने के लिए सिर्फ ये दाम बढ़ाए जा रहे
1: हैं। चलिए जवाब दीजिए तीनों सवाल का।
0: कांग्रेस को सुनिए और चाहे राहुल गांधी को, हाथी को गोद में बैठाना, चींटी को नहलाना, बैल का दूध निकालना और राहुल गांधी को समझाना, ये असंभव है, ये मैं जान गया। आप सुनिए, बीच में नहीं बोला, बीच में नहीं बोला,
2: तथ्यों पर बात करो,
0: तथ्यों पर ही आ रहा हूं। अभी भागेंगे आप, बीच में टोकेंगे आप, सब देखेंगे
1: बारी बारी,
0: वो नहीं हो पाएगा इनसे। चलिए देखिए क्या फर्क है, मैं आपको बताता हूँ भारत कहाँ खड़ा है मजबूती से और पूरे विश्व में क्या हो रहा है। ये जो वैश्विक संकट है, ये कोई भारत युद्ध नहीं कर रहा या मोदी जी ने नहीं किया, लेकिन तब भी मोदी जी ने सारे नागरिकों की सुरक्षा कैसे करी है मैं बताता हूं। पहला, महंगाई। ये पूरे विश्व के आंकड़े हैं, प्रतिष्ठित चैनल के ही हैं। मलेशिया में 56%, म्यांमार में 90, पाकिस्तान का नाम नहीं लेता, भिकमंगा देश है। UAE में 52%, अमरीका में 45% और भारत में 4% महंगाई दर। दूसरा, आप तेल की कीमतें कितनी बढ़ी, आज तक की ही रिपोर्ट लेके आया हूं। मलेशिया में 58%, अमेरिका में 46%, चीन में 25%, फ्रांस में 22% और भारत में 3.2 और अभी और बढ़े 90 पैसे, तो आप 4 से 4.5%। ये फर्क है,
2: तीसरा, से 100 रुपए ले गए किसी देश ने बढ़ाए हो 30 रुपए, बताओ।
0: आंकड़े आए तो फिर
2: अरे बताओ ना,
0: डरना क्या,
2: विश्व का एक देश का नाम बता दो जिसने इतनी अधिक कीमत बढ़ाई हो। जब $20 पर बैरल आपका क्रूड ऑयल मिल रहा था तब भी 100 रुपए में बेच रहे थे।
1: ठीक है, जवाब दीजिए,
0: किसने कितनी कीमत बढ़ाई? देखिए इसीलिए कहते हैं राहुल गांधी और उनके प्रवक्ता जैसी बुद्धि किसी को मत देना
2: भाई साहब।
0: सुनिए ना, अरे भैया हो गया, मम्मी मम्मी क्या कहना है डिबेट में आज, मम्मी सोनिया मम्मी बताओ ना,
1: प्लीज डिबेट कीजिए।
0: हाँ तो डिबेट करने तो करेंगे ना, वरना फिर यही करना पड़ेगा। जब एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं तो फिर एंटरटेनमेंट पूरा हो जनता का,
2: यही
0: रहेगी
2: नहीं।
0: अब सुनिए कितनी कीमत बढ़ी पेट्रोल डीजल की, ये भी जानना जरूरी है। अच्छा, चैनल भी आज तक है सबसे तेज है, सही रिपोर्ट दी होगी। इसमें लिखा है पेट्रोल की कीमत जो बढ़ी वो UPA के समय में 114% और डीजल की
1: 155%। उनका क्वेश्चन है, अच्छा है, क्रेडिट दे के बताइए, लेकिन उनका कहना है कि इस समय में जो कच्चे तेल की कीमत थी वो 100 के पार थी, 120 30 के आसपास,
0: और फिर कभी 100 के नीचे नहीं आई थी 10 साल में, ये भी आप कह रहे हैं?
1: नहीं, ये मैं नहीं
0: कह रही। धन्यवाद, बस तो मेरी बात हो गई। अब सुनिए, जब मैं आंकड़ा देता हूँ तो रोका क्यों जाता है? सच्चाई सामने ना आ जाए, राहुल गांधी कैसे देश के लिए नुकसानदायक है ये समझिए। और यहां बढ़ी 114% UPA के समय में, हमारे समय में 35.3% ये पेट्रोल की, और डीजल जो इन्होंने 155% बढ़ाया 10 साल में, हमने 12 साल में 63%। कौन बेहतर है? और दूसरी बात, इनके समय में इकोनॉमी फ्रेजाइल 5 में थी, आज लार्जेस्ट इकोनॉमी 5th और 6th में माना जाता है, फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्जेस्ट इकोनॉमी। इन्होंने फॉरेन रिजर्व रखे थे कितने पे? $300 बिलियन, हमारे समय में $720 बिलियन तक पहुंचा, अभी $690 बिलियन। इनके समय में महंगाई दर 12%, अभी भी युद्ध के बावजूद 4%। इनके समय में करंट अकाउंट डेफिसिट करीब पहुंच गया 5%, हमने लाया 2.5 से 3% पे। क्या दिखाता है? एक मजबूत इकोनॉमी है भारत। और मैं एक बात अंत करूंगा ये कह के, ऐसा कोई माइका लाल नहीं है जो भारत की अर्थव्यवस्था को ठेस लगा सके। युद्ध होते रहेंगे, चुनौती जरूर है, लेकिन मजबूत होकर निकलेगी 140 करोड़ की जनता भारत की, ये यकीन है हमें।
1: जवाब दीजिए,
2: 40 रुपए की दाल 200 रुपए कर दी, कहते हैं महंगाई नहीं है, 60 और 70 रुपए का पेट्रोल और डीजल चूहे माने के पास कर दिया,
0: कभी पेट्रोल में नहाई नहीं, कभी दाल पे
2: आएंगे। महंगाई महसूस क्यों नहीं होती पता है? 10,000 करोड़ रुपए इनके खाते में, जानते हैं आप? 10,000 करोड़, 8,000 करोड़ का तो इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम किया, 1,20,000 रुपए गरीब का घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री देते हैं, 500 करोड़ की 500 आलीशान इमारतें बन रही भारतीय जनता पार्टी की, मर्सिडीज में घूमेंगे कहां, आभास होगा साहब इनको महंगाई का।
0: राहुल गांधी तो टूटी साइकिल पे चल रहे हैं सपा की लेके,
2: आप कल्पना तो कीजिए ये दाम कैसे पड़े, टूटी खाने का तेल।
0: राहुल गांधी अभी गए थे शपथ समारोह में, किस पे गए थे,
2: इस पे, इस प्लेन इनके इन्हीं मस्खरी पे अगर ताली बचाएंगे तो देश को बचा नहीं पाएंगे।
0: 200 रुपए
2: तेल हो गया 200 रुपए का,
0: भारत की जनता से
2: खाने का तेल 200 रुपए का,
0: भारत में
2: ये क्यों हुआ विचार तो कीजिए,
0: वहाँ पे बताइए
2: खाने का तेल में आग जब लगी, जब इनके दो धंधा सेठ दोस्त मिले,
0: आडानी आंकड़े दे रहा हूँ,
2: 42% ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रधानमंत्री जी ने मेरे कहा 2015 में 15 अगस्त को, किसान भाइयों आप ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन इतना,
0: रॉबर्ट वाड्रा से कहिए किसानों की जमीन ना हड़पे, हमने तो उनको
2: फिर भी खाद तेल क्यों इम्पोर्ट हो रहा है जानते हो आप, क्योंकि अडानी और रामदेव इस धंधे में है, पॉम ऑयल कौन इंपोर्ट कर रहा है पूछ लो, नेपाल एक दाना सोयाबीन पैदा नहीं करता है, 7 लाख मेट्रिक टन नेपाल से खाद्य तेल आ गया, क्यों आ गया साहब बताए जानते हैं, क्योंकि साफ्टा है वहां पर, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वहां पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती, और क्लॉज है उसमें जीरो ओरिजिन क्लॉज, जहां जिस देश में जो चीज पैदा नहीं होती वहां से इंपोर्ट नहीं कर सकते, इनके दोस्तों के खिलाफ प्रधानमंत्री जी कब कार्रवाई करेंगे,
0: किस
2: दिन भाषण दे रहे थे क्रूड ऑयल के लिए 38 मिलियन मेट्रिक टन
0: भारत की जनता दोस्त,
2: क्या करोगे अडानी जी ने जुर्माना भर दिया, साहस नोटिस दो, नोटिस तक नहीं देते
0: अडानी ने जुर्माना भरा, जिसमें राहुल गांधी अडानी से मिलते हैं पार्टी में, एमओयू साइन करते हैं
2: 21,000 करोड़ के ट्रक्स, 21,000 करोड़ के
0: मंत्री थे, उन्होंने कहा अडानी जी
2: एक नोटिस दिया, अरे एक ग्राम
0: अगर कांग्रेस के लिए तो अच्छी है,
2: 10 साल जमानत तो करी है, क्या बात कर रहे हैं,
0: कम से कम सड़कों पे तो ध्यान दो,
2: लंका लगा दिया आपने,
0: राहुल गांधी मत बनो,
2: सत्ता की भूख
0: है भारत में,
2: पूरे देश को बर्बाद कर दिया,
0: पप्पू काफी है,
2: अमेरिका के कहने से सारे निर्णय हिंदुस्तान ले रहा है, पाकिस्तान को आप देखो मोदी जी के सामने कि भारत को आगे बढ़ने नहीं दूंगा, मोदी जी मौन रहते हैं मुंह नहीं खोलते, क्या पता क्या डर सताता है।
1: अभय जी आप चूंकि इतना डेटा लेकर आए, मैं एक फैक्ट पर एक सवाल आपसे पूछूं, ठीक है, हम किसको ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं रशिया को या अमेरिका को,
2: अमेरिका,
1: तो फिर हमारे हित कहाँ है,
2: बहुत अच्छा,
1: हमारे हित कहाँ
2: है ना अंजना जी,
1: आप ऐसा नहीं हो सकता कि हम अमेरिका से ट्रंप ने बोल दिया तो हम दुश्मनी ले लेंगे, हजारों
2: में
1: सवाल पूरा होने दीजिए,
2: दुश्मनी नहीं,
1: बहुत सारे लोग हैं जो भारत के वहां पर रहते हैं, हमें दोनों में से बीच का एक रास्ता निकालना है, जिससे हम रशिया का तेल हमारा बढ़ गया है, हम 35% के आसपास ले रहे हैं, और ये भी एक सच्चाई है कि टैरिफ का ऑर्डर अमेरिका चलाता है, और जिस तरह से वो पूरी दुनिया में इस तरह के टैरिफ लगाता है, वो कहीं ना कहीं सबको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, अब भारत को तय करना है कि हम रेयर अर्थ को अपना यूएसपी बनाएं या क्या यूएसपी बनाए जिससे हम उसकी काट खोजें, लेकिन रशिया और अमेरिका को बैलेंस करना दोनों ही उतना जरूरी है, और सिर्फ एक्सपोर्ट की बात नहीं, हमारा सबसे ज्यादा धंधा वहां से होता है अमेरिका से, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, वो सब ताक पर नहीं डाला जा सकता
2: जी,
1: है
2: अंजना
1: कि भाई हम लड़ेंगे अब ट्रंप से, लाओ तलवार मेरी आज तो हम लड़ेंगे उससे,
2: नहीं लड़ेंगे,
1: ऐसे थोड़ी होता है कूटनीति,
2: ये लड़ेंगे और डरेंगे में अंतर है, हम ये कह रहे हैं डरेंगे नहीं, ये देखिए नहीं डरने का
3: समय हो गया,
2: एक आखिरी बात, ये प्रमाण है
1: थोड़ा उनको बोलने दीजिए, अभी यूपी का चुनाव है, ज्यादा सीट जीतेंगे,
2: 2012 का एक आखिरी बात कहता हूँ मनोज भाई, आखिरी बात 2012 का प्रमाण है, हिलेरी क्लिंटन हिंदुस्तान में आई कि ईरान से तेल खरीदना भारत बंद करे, एक पत्रकार ने सवाल पूछा, जानते क्या जवाब दिया हमारे विदेश मंत्री ने, उन्होंने कहा कोई एक देश दूसरे देश पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का काम है, हम तेल खरीदना जारी रखेंगे, ये हिंदुस्तान का आत्मबल तो जानिए प्रधानमंत्री जी, सरेंडर क्यों हो गए आप,
0: तो हम कह रहे हैं मत करिए, ये बताइए ना,
2: हमारा
0: मनमोहन सिंह ने
1: सब लोग फैक्ट्स पर बात कीजिए, रेटरिक के लिए चिल्लाने का आपको भाषण का बहुत मौका मिलेगा,
0: रूस पे बताइए,
1: विदेश से भारत के लिए अगर अलग अलग जो देशों में पीएम गए यूएई में, अब भाई यूएई से हम अपना रिश्ता मजबूत कर रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है, और वहां से हम अलग अलग डील्स कर रहे हैं ताकि हमारे गैस की सप्लाई जो है खास तौर पर वो प्रभावित ना,
3: देखिए ये बहुत आपका वाजिब सवाल है कि देश के प्रधानमंत्री अगर विदेशों का दौरा कर रहे हैं तो हमें किसी तरह की कोई ऐतराज नहीं है। वो 140 करोड़ जनमानस के प्रधानमंत्री हैं, वो जितना पक्ष के हैं उतना ही विपक्ष के हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का दौरा कोई व्यक्तिगत दौरा नहीं होता, वो देश के पूरे स्वाभिमान का दौरा होता है। देश सवाल इसलिए पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने आपसे 12 सालों में उन्होंने 56-57 यात्राएं की है। हाउडी मोदी से लेकर के कौन कौन सी यात्राएं उन्होंने की है, लेकिन देश ने हासिल क्या करा? अगर देश यह पूछ रहा है कि देश की जो समस्या है, जो देश का जनमानस है वो पेट्रोल पंपों पे खड़ा है, तो मेलोडी चाटी वो चॉकलेट खा करके वो पेट्रोल पंप उसके लाइन से तो उसकी समस्या का निदान नहीं हो जाएगा जो गैस के लाइन में खड़ा है। देश यह पूछ रहा है कि आपका अगर इतना हासिल है तो जब आप प्रधानमंत्री बने इस देश पर कर्जा 55 लाख करोड़ रुपए का था, अब इस देश के ऊपर 255 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, तो इसका भी जवाब देश मांग रहा है। देश में जो स्ट्रेटेजिकल पेट्रोलियम रिजर्व का जो प्लांट था आप भी जान रही हैं, 2014 से पहले 3 था, इतने दिनों में प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं बढ़ाया? अगर ये देश और पूरा नौजवान और हम आप सब जानते हैं कि एक बूंद भी हम डीजल पेट्रोल नहीं बना पाते हैं, हमारे यहाँ उसका वो नहीं है, तो देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अपना कोष बढ़ा लिया, 800 करोड़ रुपए की बीजेपी 12000 करोड़ रुपए की हो गई, लेकिन स्ट्रेटेजिकल पेट्रोलियम रिजर्व प्लांट एक भी नहीं बना, ये सवाल है देश के प्रधानमंत्री से। मैं खत्म कर रहा हूँ। दूसरा सवाल ये है कि जो प्रधानमंत्री दूसरे को सलाह देते हैं कि स्वदेशी हो जाइए, वो प्रधानमंत्री जी आपके संस्थान ललन टॉप की रिपोर्ट है कि वो प्रधानमंत्री जी मोवाडो की घड़ी पहनते हैं, बुल्गारी का चश्मा लगाते हैं, मोंट ब्लैंक की पेन 1.5 लाख की रखते हैं, तो पर उपदेश कुशल बहुत तेरे जे आचर ही नर न घर। मोदी जी भी कुछ स्वदेशी करके उनके प्रवक्ता स्वदेशी, और साइकिल वही है जो आपको 24 में धूल चटा दी और 27 में आपको साफ कर देगी।
1: एक जवाब आप देंगे गौरव जी, उसके बाद मैं उनके पास जाऊंगा।
3: राजनीतिक विमर्श साइकिल से शुरू हुआ है, तो अपना जवान अपना विमर्श और भाषा ठीक रखिए
1: जल्दी से।
0: देखिये सबसे पहले तो जितना दम होना इस बार लगा लेना, 2027 में आएंगे तो योगी जी ही, ये बात याद रखना। और इसकी वजह बता दूं, ये वो लोग हैं, भूलिएगा मत,
3: ये तो समय बताएगा, ये तो समय बताएगा कि कौन आएगा। 400 पार वाला भी बात चल रही थी, ये तो समय बताएगा।
0: जनता क्या सवाल पूछती है इनसे? सबसे पहले इन्होंने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की बात करी अंजना जी, आपने भी कहा कि बताइएगा।
3: मैंने बहुत साफ पूछा कि 3 के बाद कोई और बनी कि नहीं, आप बताइएगा चौथा कहां बना रहे हैं।
0: अगर उनके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो भी बीच में बोलते हैं।
1: जल्दी मुझे दो जनता के भी 2-3 सवाल लेने हैं जल्दी से।
0: 3 स्टोरेज फैसिलिटी जो बनाई है 2014 के बाद में बता दूं, विशाखापट्टनम में 1.33 मिलियन मेट्रिक टन जून 2015, मंगलुरु में 1.5 मिलियन टन अक्टूबर 2016 और कर्नाटका में 2.5 मिलियन मेट्रिक टन 2018
2: में। बोलिए सरकार
0: आप के, कोई आप कोई उत्तर नहीं देते जनता तय करे। अगर प्रश्न चाहता हूँ मैं उत्तर दे रहा हूँ और मैं इनकी बातों को लिख रहा हूँ और ये बीच में कूद जाते हैं।
3: पूरी तरह से सफेद झूठ बोला जा रहा है,
0: झूठ बोला जा रहा है नहीं बोला जा रहा है ये तय हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए सुनिए और नोट करिए। मुझे पता है कलम से आपकी कोई दोस्ती नहीं है, केवल कट्टे से है, लेकिन उसके बावजूद कहता हूँ
3: सबसे अपनी बारी में बोलिए प्लीज। भारतीय जनता पार्टी ने एनडीआर की रिपोर्ट
1: अच्छा उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला, थोड़ा सा आप भी संयम रखिए बारी बारी से, क्योंकि दर्शक भी रिमोट उनके हाथ में, आप हाथ उठाइए, आपको मौका मिलेगा उस समय बोलेंगे आप, प्लीज जल्दी से पूरे।
0: ठीक, दूसरी बात अंजना जी देखिए, हमें एक बात समझनी होगी कि अभी कठिन परिस्थितियों में भी जब नरेंद्र मोदी जी ने अपील करी कि भाई सोना मत खरीदो, उन्होंने कहा विदेशी यात्रा पे मत जाओ, 140 करोड़ भारतीय कंधे से कंधा मिला के खड़े हो गए, उन्होंने कहा हम करेंगे। ऐसा क्यों है कि विपक्ष इतना गैर जिम्मेदार है, केवल कोसने का काम, केवल कहना कि ये गलत है, ऐसा क्यों है? जैसा आपने कहा नरेंद्र मोदी जी क्या विदेश यात्रा पे अपने कोई समर वेकेशन में गए थे, छुट्टियों में गए थे, मसाज कराने गए थे जैसे राहुल गांधी जाते हैं, मेडिटेशन में गए थे, नहीं
2: वो गए थे अडानी की खदान के लिए, श्रीलंका गए उसके बिजली के कारखाने के लिए, अमेरिका गए मुकदमे के।
1: जल्दी पूरा कीजिए, हर्षवर्धन जी तब से खाली मुंह ताकने थोड़ी आए बोलेंगे।
0: नहीं नहीं हर्षवर्धन जी हमारे बड़े भाई, आप चाहे आप
1: बोल लीजिए, पूरा कीजिए दो लाइन में।
0: मैं केवल एक बात कहूंगा और इससे सब सहमत होंगे, इन्होंने कहा विदेश नीति, मोदी जी ने इतनी विदेशी यात्रा करी, ये भूल जाते हैं ये वो मोदी जी हैं जिनके माँ का देहांत हुआ, उन्होंने अंत्येष्टि करी और उसके बाद सीधा, क्योंकि तूफान आ रखा था दक्षिण भारत में, वहां पहुंच गए थे। और हम अपाचे और चिनूक किससे लेते हैं अंजना जी? अमेरिका से लेते हैं। S-400 किससे लेते हैं? रूस से लेते हैं। राफेल किससे लिया? फ्रांस से लिया। इसराइल, जिसको ये कहते हैं शत्रु देश है, उसने हमारी मदद करी ड्रोन और टेक्नोलॉजी देके। ये विदेश नीति नहीं है तो ये क्या है? ये मजबूत विदेश नीति है, क्योंकि हमारा देश मजबूत है, हमारे प्रधानमंत्री मजबूत है, और कमजोर कड़ी कोई है तो ये विपक्ष।
1: ठीक है ना, इसके बाद एक बार हर्षवर्धन जी बोलने, उसके बाद हर्षवर्धन जी माइक उठाइए और समझाइए। देखिए देश में अब ये तो सच्चाई है कि ये युद्ध हमने शुरू नहीं किया है, लेकिन उसके असर में प्रधानमंत्री ने कहा कि पेट्रोल डीजल इन सब की कटौती कीजिए, सोना मत खरीदिए, कई सारी बंदिश है। अब इस मुद्दे पर विपक्ष घेर रहा है कि ऐसे टाइम पर आप बाहर जा रहे हैं और देश के अंदर ऐसे हालात है।
4: नहीं जी, नहीं जी, सबसे पहले तो एक विपक्ष का ये अधिकार है और नरेंद्र मोदी की जवाबदेही तय करनी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री हो। लेकिन जरा सोचिए कि मोदी जी मेलोनी के लिए सोना तो लेकर नहीं गए, एक स्वदेशी कंपनी की 1 रुपए की मिलने वाली चॉकलेट लेकर गए, और वो चॉकलेट ऐसा कमाल कर गई कि उस स्वदेशी कंपनी का बिजनेस बहुत बढ़ गया और सबको समझ में आ गया कि मेलोडी है। अब मेलोडी एक राइम होती है, एक संगीत होता है, जो अच्छे मन से, जो बढ़िया देश का मूड है वो दिखता है। अब ये पता नहीं क्यों दर्द भरे नगमे की इच्छा रखते हैं। ये ठीक बात है कि भारत दुनिया के दूसरे देशों की तरह संकट में है, लेकिन वो संकट क्या है? वो संकट है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल गैस की सप्लाई रुक गई। अब कुछ चीजें जरूर जाननी चाहिए। जिस समय हम लोग ये 6 बजे की आपकी डिबेट देख रहे हैं, भारत में करोड़ों लोग इसको देख रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, 3:40 पर 265 गीगावाट की देश की इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड पूरी हो गई। 2013 में नॉर्दर्न ग्रिड फेल हो गया तो भारत में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, पूरा उत्तर भारत अंधेरे में डूब गया, 7 दिन लग गए थे उसको रिस्टोर करने में, ये यूपीए के शासनकाल में था। और जब रशिया से नहीं ले रहे थे ना तो ईरान से उसी वक्त बंद कर दिया था। फैक्ट ये भी है कि तभी अमेरिका ने सैंक्शन लगाए थे और यूए जो तेल लेने का था ईरान से उसी वक्त कम करना शुरू कर दिया।
2: ये गलत बोल रहे
4: हैं। सबसे जरूरी बात,
2: ईरान कांग्रेस पार्टी की सरकार में बिल्कुल झूठ।
4: जैसे फैक्ट आता है कांग्रेस के प्रवक्ता परेशान हो जाते हैं, संकट के समय। अच्छी बात ये है कि आपकी पूरी चर्चा में मेलोडी पर कम बात हुई, लेकिन क्या हमने सेमीकंडक्टर के समझौते पर बात की जिससे भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा, नौजवान को अवसर मिलेगा? क्या हमने डिफेंस एग्रीमेंट पर बात की? क्या हम एग्रीकल्चर कोऑपरेशन पर किसी राहुल गांधी या किसी विपक्षी नेता के मुंह से सुन पाए? क्या हम ये सुन पाए कि कैसे जो नॉर्डिक कंट्रीज है जो टेक्नोलॉजी में एडवांस एज में बहुत आगे हैं, छोटे छोटे देश हैं लेकिन कमाल का इनोवेशन करते हैं, उनके साथ हमने जो समझौते किए उसको हमने देखा? हमने वो सब चर्चा नहीं की। क्यों? क्योंकि देश का नेता प्रतिपक्ष उसको प्रधानमंत्री का, दूसरे प्रधानमंत्री को मेलोडी चॉकलेट देने से कष्ट है। मैं फिर कह रहा हूं, चुनौती है लेकिन बहुत सलीके से भारत की सरकार मैनेज कर रही है।
1: ठीक है, छोटा सा जवाब आप दोनों का, चूंकि फैक्ट्स पर था, जल्दी से सर, फिर रेटरिक में मत घुसिएगा, जिस फैक्ट पे आप टोक रहे थे उस पे बोलिएगा।
2: नहीं नहीं, बिल्कुल
4: बिजली पे ही बता
2: दें। देखिए, सबसे पहला तो झूठ ये बोला गया, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व मेंगलुरु में, विशाखापट्टनम में और पोद्दूर में 2005 की कैबिनेट का डिसीजन था। हाँ, ये बात सही है कि उसके फीते मोदी सरकार ने आकर काटे। इन्होंने कहा कि हम पोद्दूर में और चांदीखोल में उड़ीसा के कैपेसिटी एनहेंस करेंगे, मोदी जी ने अनाउंस किया 6.5 मिलियन मेट्रिक टन। आज जमीन तक उसकी अधिग्रहित नहीं की, हम कैसे ट्रेप में फंस गए? हमने सार्क छोड़ दिया साहब, अभी ये पाकिस्तान से प्रेम की पींगे बढ़ा रहे हैं। हमने सार्क नेशन का ये कहा कि उरी ने पाकिस्तान ने हमला किया, हम सार्क के नहीं जाएंगे, हम कहां चले गए? ग्लोबल नॉर्थ, हम ग्लोबल साउथ है साहब, क्वाड अटेंड करने चले गए। आप ये कल्पना कीजिए कि हमारे आसपास के देश, ऑपरेशन सिंदूर में किसी एक देश ने हमारे समर्थन में वक्तव्य नहीं दिया।
1: ठीक है,
2: कि पाकिस्तान को जो तीनों शक्तिशाली देश
3: बिजली
2: वो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, आज भी उसके साथ खड़े।
3: बिजली की जो बात की है साथी, तो वो मैं तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के, हम लोग तो ग्रामीण अंचल से आते हैं, उत्तर प्रदेश के संबंध में मैं पूछना चाहूंगा कि आप कृपया जवाब दीजिए कि उत्तर प्रदेश में लगभग 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 3x6x60 का कितने क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट योगी आदित्यनाथ जी ने बनाया? एक नहीं बनाया। जितने उत्तर प्रदेश में क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बने, चाहे वो अनपरा में बने, चाहे कानपुर में बने, वो जो भी बना है माननीय समाजवादी पार्टी के सरकार में, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनाया है उसको। तो जब आपने एक भी क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बनाया ही नहीं, बिजली जो 2 रुपया 2.5 रुपया प्रति यूनिट थी, आज 6 रुपया 7 रुपया प्रति यूनिट
0: दे सकते हो।
3: और वही जो बात है ना कि सड़क पे लिखे हुए सैकड़ों नारे ना देख, जमीन तू देख, आसमान के तारे ना देख, तो नारों से। और
4: पहले लाइट कटती थी तो आसमान का तारा ही देखना पड़ता था। गर्मी में लोगों को छत पे ही सोना पड़ता था, आसमान के तारा ही दिखाते थे। ये सच बात यही है
3: मुझे भरोसा कि
4: 265 गीगावाट और सोलर एनर्जी ये भारत प्रोड्यूस कर रहा है।
3: जवाब दे दो, आप हमें बताओ कितना क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट योगी आदित्यनाथ जी और बीजेपी की सरकार ने बनाया।
5: मैम, इतनी मेलोडी टॉफी की बात हो रही है तो मैं राहुल गांधी सर से और कांग्रेस पार्टी से कहना चाहूंगी, अगर मेलोडी खाने और मेलोडी बांटने से देश का विकास हो रहा है तो मेलोडी खाना और बांटना देश के लिए हानिकारक नहीं है और सबको खाना चाहिए।
2: विकास
1: सबको खाना चाहिए बोल रहे हैं जल्दी।
2: अगर आप मेलोडी खिला रहे हो तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा होगा ना, हम एक्सपोर्ट कर पा रहे होंगे ना, हमारी इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी पूरी बना।
1: ठीक है, एक एक करके जवाब, तीन चार सवाल ले।
6: मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि कांग्रेस अगर स्ट्रॉन्गेस्ट अल्टरनेटिव है तो इसका ग्राउंड सपोर्ट जो है वो दिखता क्यों नहीं है?
1: यहाँ तक कि एक नई पार्टी कॉकरोच के नाम से बनती है, उसका सपोर्टर्स आप देखिए अचानक कितने आते हैं।
7: अगर
1: अगर
7: ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के विदेशी दौरे से भारत को बिलियंस डॉलर का फायदा हो रहा है तो विपक्ष को उससे क्या दिक्कत है, मैं पूछना चाहता हूँ।
1: ठीक है, एक सवाल यहाँ पे। हाँ, माइक मैंने पकड़ा हुआ है।
8: ओके,
1: हाँ जी, जल्दी सवाल।
8: सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को मेरा नमस्कार।
1: सवाल पूछो बेटा।
8: ओके सर, मेरा सवाल यह है कि आप वैसे बीजेपी वाले बात करते हैं कि हम चुनौतियों का सामना कर लेते हैं, हमारी देश तरक्की कर रहा है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है अभी
1: तो नहीं, अब छठे हैं।
8: ओके सर, मेरा कंसर्न ये है कि वैसे आप कहते हैं कि हम युवा को बढ़ावा देते हैं, ये वो, हमारा युवा आज भी सर अनएम्प्लॉयमेंट में काफी ही ज्यादा आगे है, इसके पीछे का क्या कारण है आप बता सकते हैं? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ती जा रही है,
1: लेकिन आपका सवाल चलिए जल्दी से।
7: मैम, मेरा कहना यह है कि अभी कांग्रेस
1: सवाल पूछिएगा क्या कहिएगा,
7: इस देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है, 12-13 सालों से सेंट्रल में बीजेपी है, लेकिन फिर भी शर्म की बात यह है कि 5 दिन के अंदर जो बयान सुप्रीम कोर्ट से वायरल हुआ उससे कांग्रेस कॉकरोच जनता पार्टी बन जाती है, और उसमें भी 13 मिलियन फॉलोअर्स कांग्रेस जनता पार्टी के हैं, 12 मिलियन फॉलोअर्स कांग्रेस पार्टी के हैं, 8 मिलियन फॉलोअर्स बीजेपी के।
1: इंस्टा की बात कर रहे हैं?
7: हाँ, इंस्टा की बात।
1: यही सवाल है कि आप विपक्ष पर उसका
2: मूल उसका मूल कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ
1: आपकी तरफ क्यों नहीं आ रहे?
2: सुनिए ना अंजना,
1: यही सवाल है बच्चे का।
2: वो राजनीतिक आंदोलन नहीं है, वो ये जो स्कैम्स कर रहे हैं नीट की भर्ती परीक्षा घोटाले, राज्य दर राज इनके भर्ती परीक्षा और प्रवेश परीक्षा घोटाले, उसका परिणाम है। एक बच्ची ने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया मेलोडी को लेकर, हम भी तो यही कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, मेलोडी खिलाइए लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ाइए प्रधानमंत्री जी। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स ने कहा कि चीन से बेतहाशा अनवांटेड इंपोर्ट कर रहे हैं, डंपिंग ड्यूटी तक नहीं, और $500 बिलियन की डील अगर अमेरिका से करते हैं तो जो अंजना जी कह रही थी कि वो ट्रेड प्लस पार्टनर है, 8 लाख करोड़ रुपए का माल हिंदुस्तान में बेचेगा अमेरिका, इसकी चिंता क्या भारत को नहीं होनी चाहिए?
1: जवाब दीजिए,
0: तथ्यों पे उत्तर होना चाहिए।
1: और जो बच्चे का सवाल था,
0: दो चीजें हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि पावर जनरेशन में क्या इजाफा हुआ, तो योगी जी की बहुत उपलब्धियां हैं जिसमें लॉ एंड ऑर्डर हमने सही किया है, अभी देखा जेवर में एयरपोर्ट आ रहा है, बुंदेलखंड का गंगा एक्सप्रेसवे है, लेकिन पावर जनरेशन पे मैं बता दूं 2017 का आंकड़ा है 23,660 मेगावाट, और 2026 में 36,700 मेगावाट, 55% का इजाफा 10 साल में हुआ है उत्तर प्रदेश की पावर जनरेशन कैपेसिटी की मैं बात कर रहा हूं, इसलिए योगी आदित्यनाथ जी ही दोबारा आएंगे 2027 में, जितना दम है टूटी साइकिल वाले लगा। दूसरी बात, मेरे भाई ने यहां पे साथियों ने एक सवाल पूछा बेरोजगारी पे और कहा कॉकरोच की बात, तो क्योंकि मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूं और यह बहुत बड़ा मंच है हमें मिला है, हमें एक बात जाननी होगी, हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए नहीं कहा था, मैं व्यक्तिगत तौर पे बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं, उन्होंने कहा था, केस था फर्जी डिग्री वाला था।
2: देखो भारतीय जनता
0: बीच में ना बोले,
2: सुनो
0: मेरी जिम्मेदारी,
2: भारतीय जनता
0: मेरी
2: जिम्मेदारी कर रही है,
0: डंके की चोट पे कहता हूँ, मेरी
2: जनता पार्टी जस्टिफाई कर रही है, कांग्रेस जनता पार्टी के जितने
1: आपका भाषण हो गया अभय जी,
2: गौर से सुनो
1: अभय जी, बारी बारी
0: मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आवश्यक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कोई बात कहें और सोशल मीडिया अगर गलत तरीके से उसको दिखाए और वो स्वयं बयान दें कि मैंने फर्जी डिग्री वालों के लिए कहा है तो ये मेरी जिम्मेदारी है और इससे मैं पीछे नहीं हटूंगा कि उन्होंने इसके लिए कहा था। और मुझे लगता है यार जितना यूथ बैठा है अगर आप सहमत हैं कि सच्चाई सामने आनी चाहिए तो एक बार ताली बजाइए और इनको पता चले। चुप हो जाइए, सुनिए,
2: कोर्ट संज्ञान ले लेना।
0: अरे आपको नहीं पता है कोर्ट वोट के बारे में?
2: अरे आपको
0: राहुल गांधी ने कान पकड़ के कहा था आई एम सॉरी मोदी जी को झूठ बोल दिया मैंने, मुझे माफ कर दीजिए, वो ऑर्डर दे दूंगा आपको, चुप हो जाइए।
1: पर गौरव जी किसी के लिए भी कॉकरोच जैसे शब्द का इस्तेमाल गलत है तो गलत है।
0: मैं आपको एक बात बताता हूं, जब हम लोग कहते हैं कि जो देश से गद्दारी करेगा आतंकी है, कोई चोर है, उसके खिलाफ सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए।
2: अरे किसानों को भी आतंकी कहते थे,
1: शुरू हो गया
2: आंदोलन करे तो
0: मिट्टी में मिलके
2: के खिलाफ
0: मिलेगी पार्टी, हर बार में
2: सर्टिफिकेट बांटने का,
0: हर बार बोलते हैं 1,00,000 वोट कम हो जाते कांग्रेस पार्टी के, फिर भी बोलते चलो बोलो भैया 1,00,000 कम कराओ,
2: देश की बस वोट की चिंता करते रहते हैं।
0: एम्प्लॉयमेंट पे आपकी बात को उत्तर दूंगा,
1: एम्प्लॉयमेंट लड़के ने पूछा कि एम्प्लॉयमेंट इतनी बड़ी समस्या,
0: मैं आपको आंकड़े के साथ बता रहा हूँ। 2024 का चुनाव हुआ, जनता ने आशीर्वाद दिया, मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरी बार लगातार बने, क्यों 18 से 18.5 करोड़ नए ईपीएफओ देख रहे हैं, मैं चुप क्यों हो जाता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ कितने हल्के लोग हैं, इनसे हमें चर्चा करनी पड़ती है, बताइए एक आंकड़ा नहीं दिया। सोनिया मम्मी क्या कहना है, आ जाओ भैया आ जाओ, अरे भाटिया मेरी क्लास लगा रहा है, मैं क्या करूँ, राहुल गांधी तो भाग्या, मेरी तो हवा टाइट है, मेरे गुब्बारे में तो छेद हो गया, छोड़ो भाई छोड़ो भाई नहीं हो पाएगा तुमसे, जाओ भैया राहुल गांधी के जूते उतार लो, पॉलिश करो बढ़िया से, नहीं हो पाएगा, ये डिबेट है, ये दिमाग की बुद्धि मांगता है, विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं, ये राहुल गांधी को पता है, गद्दी मिली बुद्धि नहीं मिली। अब सुनिए
1: रोजगार पर जो सवाल था गौरव भाटिया जी जवाब, 18.5 करोड़
0: जिम्मेदारी से कहता हूँ, गलत हूँ तो जो कहेंगे हार जाऊंगा, 18.5 करोड़ नए ईपीएफओ अकाउंट बने, नई नौकरियां मिली लोगों को। दूसरा, हमने रोजगार मेला लगाया, करीब 18-19 लाख सरकारी नौकरियां केवल केंद्र सरकार के थ्रू युवाओं को मिली। तीसरा, मुद्रा योजना, हमारी जो योजना है 42-43 करोड़ लाभार्थी हैं, जो चाहते हैं वो एंटरप्रेन्योर बने, वो अपना बिजनेस चलाए, हमने उनको लोन दिया जिससे कि वो कर सके। ये क्या कहते हैं, अरे इतना कम लोन 1,00,000 रुपए, अरे हमने मदद तो करी, तुम्हारी तरह चोरी तो नहीं करी, क्राइम मास्टर गोगो तो नहीं बने, राहुल गांधी आया हूँ तो तेरा कुछ तो लेके जाऊंगा, पॉकेट से 1 रुपया निकालो, क्राइम मास्टर गोगो शर्म करो।
1: मनोज काका जी,
3: कितना महीने से झूठ बोला जा रहा है इस देश की सदन में, जब नरेंद्र मोदी 9 साल जब प्रधानमंत्री रह लिए तो एक सांसद ने पूछा कि आपने कितना दिया है लोगों को रोजगार, तो इस देश के सदन में राज्यसभा में जो उच्च सदन है सरकार ने बताया कि 7,29,000 मात्र हमने जाप दिया, और वही प्रधानमंत्री का कौन भाषण नहीं सुना होगा कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। अब 2 करोड़ रोजगार क्या, 1 करोड़ हर साल दिया होते तो 12 साल में तो आपको 12 करोड़ देना चाहिए, कहां दे पाए। तो जो झूठ जो 15 लाख से लेके 2 लाख वो जो झूठों वाली
0: बात है,
3: झूठों से कहा है सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, लिखा है सच बोलो, ये हालात है, कोई भी सच। आपने पूछा, आपका सवाल मैं बात करता हूँ अंजना जी,
1: जल्दी
3: आपने पूछा सरकार अगर लोगों को राहत देना चाह रही है तो डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में कब लाएगी सरकार, बताए जीएसटी। आप रिफाइनरी कंपनियों का तो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों
0: सवाल का उत्तर दो फिर मैं भी दूंगा,
3: 20%
0: अच्छा अच्छा, क्या पूछा आप, सुनो
3: सरकार से
0: ये बता दो
3: कि आप,
0: चलिए आप सब देखेंगे, एक सवाल पूछा मैं पूछ के फिर उत्तर दूंगा,
3: कौन सा रिफाइनरी का आदमी है जो पूरा देश डरते हो,
0: कैसे कैसे पूछो बताइए,
3: आप डरते हो, ये कौन उद्योगपति जब पूरा देश अमेरिका में,
0: चलिए ये बताइए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आप सबको बताएंगे संविधान के किस अनुच्छेद में जीएसटी काउंसिल का प्रावधान है और कैसे जीएसटी काउंसिल में लाया जा सकता है, बताओ फिर मैं बताता हूँ।
3: संविधान के सरकार को ये पावर है,
0: संविधान के संविधान में पूछ रहा हूँ, पढ़ाई नहीं है संविधान, पढ़ाई नहीं है
3: तो सरकार
0: पता नहीं,
3: आपको
0: 279
3: आर्टिकल 279 ऐसे वकील हो
2: ये
3: संविधान
2: में संशोधन
1: दायरे में, हर राज्य का वेट उनके हिसाब से वोट होता है, 3/4 मेजोरिटी चाहिए अगर जीएसटी में शामिल करना है, लेकिन ये अभी तक नहीं हो पा रहा है। इन सब के बीच आप सभी का बहुत धन्यवाद, वक्त इतने की इजाजत देता है, तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। लेकिन आज रात 9 बजे जरूर रहिएगा हमारे साथ ब्लैक एंड व्हाइट में, हम आपको बताएंगे कि आखिर देश में मजहब मस्जिद और अवैध कब्जे का गठजोड़ क्यों चल रहा है। इसके बाद आपको बताएंगे कि बंगाल में सरकार सनातनी, क्या इसीलिए कुर्बानी पर तनातनी, और आखिर में बताएंगे कि देश में कॉकरोच वाली सोच कितनी हिट है। देखते रहिए आज तक, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।

0: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए ये शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली सुपर एक्शन फैमिली।
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
2: इसमें माइक्रो फाइबर है।
1: माइक्रो फाइबर यानी
2: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
1: हमारे सीमेंट में नहीं है?
2: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
3: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
4: बस दो हजार
5: इधर स्कोर करेगा तो इतना सा इनाम जीतेगा, और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1,00,000 तक जीतेगा।
6: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर, क्रेडिट स्कोर देखो और 1,00,000 तक जीतो।
7: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
8: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
9: विक्रम, एक हिंट तो देते।
10: विक्रम!
9: हिंट
10: बड़े आराम से।
11: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
12: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
13: सोच बदलो और बैंक भी।
14: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: सर हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
2: पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है।
1: आप कैसे कर लेते हो?
3: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
4: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
5: नहीं
4: और म्यूचुअल फंड्स है
5: सही।
6: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
7: और वही कहाँ गए थे घूमने?
8: जीके मैक्स।
9: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
8: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
10: जेके वॉल मैक्स।
8: बेस्ट पेंट
11: जेके मैक्स।
8: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
12: करेक्ट, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
13: लाइक आई सेड बिफोर, वी बेटर होन द सिंस।
14: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
15: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
16: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
17: आज ही paisabazaar.com पर अपना क्रेडिट स्कोर चेक करें, फ्री में, वो भी चारों क्रेडिट ब्यूरो से। लोन की जरूरत पड़ेगी तो काम आएगा।
18: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, और वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें ePaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
4: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
5: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: यार
3: ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
4: इसमें माइक्रो फाइबर है।
3: माइक्रो फाइबर यानी
4: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
3: हमारे सीमेंट में नहीं है?
4: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
5: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
6: बस 2000
7: इधर स्कोर करेगा तो इतना इनाम जीतेगा, और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1,00,000 तक जीतेगा।
8: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर, क्रेडिट स्कोर देखो और 1,00,000 तक जीतो।
9: सर हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
10: पर मार्केट की समझ ना बाउंसर जा रही है।
9: आप कैसे कर लेते हो?
11: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
12: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो, और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
13: नहीं
12: और म्यूचुअल फंड्स है
13: सही।
14: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े।
15: एक तरफ पूरा विश्व भारत की तरफ, प्रधानमंत्री जी की तरफ बहुत कॉन्फिडेंस के साथ देखता है, दूसरी तरफ नकारात्मक सोच रखने वाले राहुल गांधी जी अपने स्वभाव का परिचय, अपने चरित्र का परिचय अपने शब्दों में, अपने भाषणों में बार बार दे रहे हैं। यह अलग बात है कि भारत की जनता उनको एक के बाद एक ठुकराती है, एक के बाद एक वो चुनाव में हारते हैं। उसका जो फ्रस्ट्रेशन है, उसकी जो एक प्रकार से उनमें खुंदकीय भावना है वो नजर आती है, जिस प्रकार से वो गाली गलौच पे उतर आए हैं और प्रधानमंत्री जी के लिए बड़ी ओछे शब्दों में वो बात रखते हैं।

पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त भयानक लू चल रही है। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्य भी इस लू से अछूते नहीं है। यहाँ भी भयंकर गर्मी है, लेकिन उससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह है कि अगले एक हफ्ते तक ऐसा ही हाल रहने वाला है। मौसम विभाग का अनुमान है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र और गुजरात समेत देश के 10 राज्यों में अगले एक हफ्ते तक सूखी गर्म हवाएं चलेंगी। इस दौरान इन राज्यों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा रहेगा। वेस्टर्न डिस्टरबेंस कमजोर होने और कोई एक्टिव वेदर सिस्टम नहीं होने की वजह से बारिश की कोई संभावना नहीं है। दिल्ली में तो और बुरा हाल, यहाँ 45 से 46 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। ऐसे में दिल्ली सरकार भी सक्रिय हो गई है। दिल्ली सरकार ने मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स को सड़कों पर उतारा है। दावा है कि ये यूनिट्स भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाकर लोगों को तुरंत राहत देंगे। यही हाल दिल्ली से सटे गुरुग्राम का भी है, जहां तापमान 46 डिग्री के पार चला गया। इस भीषण गर्मी में रात को भी राहत नहीं मिल रही, रात को भी गर्मी और उमस है। लोगों से दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच धूप में निकलने से बचने को कहा जा रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि प्यास ना भी हो तब भी पानी पिए और खुद को हाइड्रेटेड रखें। वैसे तो भारत एक गर्म देश है, हर साल ही गर्मी पड़ती है, लू चलती है, गर्म हवाएं जीना दूभर करती हैं। लेकिन पिछले कुछ साल से ये हालात और ज्यादा बदतर हो गए हैं और ग्लोबल वार्मिंग इसे और खतरनाक बना रही है। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ग्लोबल वार्मिंग नहीं रोकी गई तो 45 से 50 डिग्री की हीटवेव सामान्य हो जाएगी। IMD के हालिया शोध बताते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण भारत में हीटवेव की तीव्रता और अवधि बढ़ रही है। 2020 से 2025 के अध्ययनों में पाया गया कि एक्सट्रीम हीट इवेंट्स में 2 से 3 गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। अर्थशास्त्री और स्वास्थ्य विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि ये भीषण गर्मी सिर्फ तापमान ही नहीं बढ़ाएगी, बल्कि ये आर्थिक विकास को भी धीमा करेगी, उत्पादकता घटाएगी और मेडिकल खर्चों को बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। और यह हाल किसी एक प्रदेश का नहीं है, बल्कि देश के सभी राज्यों का यही हाल है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और दिल्ली के कुछ इलाकों में तापमान सामान्य से 5.1 डिग्री या उससे ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं पूर्वी राजस्थान और ओडिशा में रातें भी गर्म बनी हुई हैं, जिससे लोगों को राहत नहीं मिल पा रही। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के लिए 24 से 26 मई तक रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसका अर्थ यह है कि सभी आयु वर्ग के लोगों में हीट स्ट्रोक और गर्मी से जुड़ी गंभीर बीमारियों का खतरा अत्यधिक बढ़ गया है। विदर्भ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी जोखिम अधिक बताए गए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, बिहार, राजस्थान और उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। आज तक

0: नमस्कार, मैं हूँ मारिया शकील। शाम के 7 बजने वाले हैं आज तक के इस खास शो में। अगले आधे घंटे में दिन भर की सभी बड़ी खबरें होंगी, लेकिन खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी देख रहे हैं सभी मंत्रियों की रिपोर्ट कार्ड, कामकाज की समीक्षा के साथ दुनिया के हालात और ऊर्जा संकट पर भी बात। प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से भारत आएगा बड़ा निवेश, पीयूष गोयल का बयान। 5 देश में हुए हैं 57 बड़े समझौते, विपक्ष ने फिर उठाए सवाल। शुभेंदु ने बंगाल के मदरसों में वंदे मातरम किया जरूरी, कुर्बानी को भी लेकर हो रही है बड़ी सियासत। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सड़क पर उतरेंगी ममता बनर्जी। पुलवामा के गुनाहगार का हुआ हिसाब, मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की गोली मारकर हत्या, पीओके के मुजफ्फराबाद में अज्ञात लोगों ने किया अटैक। सीज फायर पर गहराया संकट, अमेरिका ने दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम, ईरान झुकने को तैयार नहीं, नेतन्याहू को ट्रंप के आदेश का इंतजार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। इस वक्त दिल्ली में प्रधानमंत्री के दफ्तर सेवा तीर्थ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक चल रही है। ये मीटिंग पीएम मोदी की अध्यक्षता में हो रही है। सूत्रों के मुताबिक ये इस बैठक में पीएम मिनिस्ट्रीज के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं, साथ ही ग्लोबल हालात और ऊर्जा संकट पर भी चर्चा हो रही है। बैठक को लेकर और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं आज तक के संवाददाता मंजीत नेगी के पास। मंजीत, सवाल ये है कि क्या मिनिस्ट्रीज कोई प्रेजेंटेशन भी कर रही हैं, और आज जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक है उसमें कितने प्रेजेंटेशंस होंगे?
1: देखिए बारे, अब 5 बजे मेरे पीछे जो सेवा तीर्थ है, जहां पर ये पहली बड़ी बैठक है सेवा तीर्थ में, फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए कार्यालय में शिफ्ट हुए थे, उसके बाद ये मंत्रिपरिषद की पहली बड़ी बैठक यहां पर हो रही है। और 5 बजे के आसपास बैठक शुरू हुई थी। 8 से 9 बड़े प्रेजेंटेशन हैं, जो सबसे क्रूशियल जो मंत्रालय हैं। सबसे पहला जो प्रेजेंटेशन है वो वाणिज्य मंत्रालय का है, उसके अलावा पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का प्रेजेंटेशन है, गृह मंत्रालय का प्रेजेंटेशन है, और बाकी जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं उनके है। दो बड़े मुद्दे हैं, खासतौर से 2 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अपने जो मंत्रिपरिषद है, जो मंत्री हैं, उनके कार्यकाल का जायजा ले रहे हैं। और दूसरी बात, अभी प्रधानमंत्री आज सुबह ही अपनी 5 देशों की यात्रा के बाद लौटे हैं, और इस वक्त पश्चिम एशिया युद्ध की वजह से जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर देश में किस तरह की दिक्कतें हैं, खासतौर से ऊर्जा का जो संकट है, तेल का जो संकट है, उसको लेकर भी ये बैठक हो रही है। और इसीलिए उससे जुड़े जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, वाणिज्य मंत्रालय है, पेट्रोलियम मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, उनके प्रेजेंटेशन, 8 से 9 बड़े मंत्रालयों के प्रेजेंटेशन रखे गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने अपनी टीम के साथ, खासतौर से क्योंकि अब सेवा तीर्थ में ही कैबिनेट सेक्रेटरीट का कार्यालय है, एनएसएस का कार्यालय है, उनके साथ भी लगातार इस बैठक को लेकर तैयारी चल रही थी। कैबिनेट सेक्रेटरी उस पर तैयारी कर रहे थे। हालांकि दो बड़े जो मंत्री हैं, खासतौर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वो क्योंकि दक्षिण कोरिया में हैं, आज रात तक लौटेंगे, वो बैठक में नहीं है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी बाहर हैं जिनेवा में, लेकिन बाकी तमाम जो

0: स्ट्रिक्ट नियम जो 1950s का नियम में लिखा हुआ है, 14 साल के नीचे के कैटल को काटा नहीं जाएगा।
1: सरकार का आदेश आया तो आम जनता उन्नयन पार्टी के मुखिया हुमायूं कबीर भड़क उठे। उन्होंने कहा कुर्बानी तो हो।
2: 1400 साल से पहले से एक कुर्बानी होके आ रही, अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होगी। गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊंट भी होगी, दुम्बा भी होगी, सारे पशु जो है वो कुर्बानी का जायज है, वो कुर्बानी होगी, कोई रुक सकता नहीं।
1: टीएमसी के खेमे में भी खलबली मच गई। टीएमसी के नेता इस नियम के खिलाफ कोलकाता हाई कोर्ट पहुंच गए, कहा कि गाय पालने वालों के साथ ये अन्याय है। लेकिन बीजेपी के विधायक रेखा पात्रा बशीरहाट में पशुओं को ले जा रहे टैंकर की जांच करने निकल पड़ी। जिन पशुओं का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिला उन्हें टैंकर से उतरवा लिया गया। इन्हीं सब वजह से फुरफुरा शरीफ के पीरजादा ने ये कहना शुरू कर दिया कि इस बकरीद पर मुस्लिम गाय की कुर्बानी न दें।
3: ভারতের দ্বিতীয় মুসলিম তীর্থভূমি ফুরফুরা দরবার শরীফ থেকে বলছি, আমরা এবছরে কুরবানি দেব কিন্তু গরু কুরবানি দেব না।
1: अब गाय पालने वाले चिंतित हैं, मगर बकरीद से पहले बंगाल में गाय पर गदर मच गई है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
4: शुभेंदु अधिकारी जब से सीएम बने हैं वो बड़े फैसले ले रहे हैं। अब शुभेंदु की सरकार ने आदेश दिया है कि स्कूलों के बाद अब बंगाल के सभी मदरसों में भी वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा, और जो इस आदेश को नहीं मानेगा उस मदरसे के खिलाफ कार्रवाई होगी।
1: अपने हिंदुत्व के एजेंडे को शुभेंदु अधिकारी ने नई धार दे दी है। इस धार की चपेट में अब बंगाल के मदरसे आए हैं। शुभेंदु सरकार का ये नया आदेश बंगाल में नया बवंडर लेकर आने वाला है। क्यों? ये आप इस आदेश को पढ़कर समझ सकते हैं। इस आदेश में साफ लिखा है कि पिछले तमाम आदेशों और प्रक्रियाओं पर रोक लगाते हुए मैं मदरसा में क्लास शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाने का आदेश देता हूँ। ये पश्चिम बंगाल के मदरसा शिक्षा निदेशालय का आदेश है जिसे फौरन लागू करने का फरमान जारी हुआ है। इनमें सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सरकारी सहायता प्राप्त दोनों तरह के मदरसे हैं।
5: कहा गया है कि जो भी मदरसे सरकार के अंतर्गत आते हैं, खासतौर पर अल्पसंख्यक विभाग और मदरसा विभाग के अंतर्गत आते हैं, उनमें चाहे वो एडेड हो या अनएडेड मदरसा हो, उनमें अब से वंदे मातरम का गाना कंपलसरी होगा।
1: पश्चिम बंगाल में मदरसों की अच्छी खासी तादाद है। पश्चिम बंगाल में इस वक्त 609 मान्यता प्राप्त मदरसा है। इनमें 395 हाई मदरसा, 112 जूनियर हाई मदरसा और 102 सीनियर मदरसा हैं। पश्चिम बंगाल में 685 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे भी हैं। 2026-27 के अंतरिम बजट में ममता सरकार ने अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के लिए 5,713 करोड़ आवंटित किया था। वंदे मातरम को लेकर मुस्लिम समुदाय की आपत्ति छिपी नहीं है, लिहाजा इस मामले में सियासत गरमाना तय है। अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक।
4: पश्चिम बंगाल की फालता विधानसभा सीट पर आज रीपोलिंग हुई, मगर इस चुनाव में जहांगीर खान गायब थे। जहांगीर खान ने मतदान से पहले ही अपना नाम वापस ले लिया था, लेकिन आज वो मतदान करते भी नहीं दिखे। सवाल ये है कि आखिर जहांगीर खान कहां हैं?
6: और हम लोग इस वक्त आके पहुंच चुके हैं जहांगीर खान के घर के सामने। ये जो मंजिले है, ये घर है, ये जहांगीर खान की घर है, ये तीसरी मंजिले की घर इस वक्त दिख रही है, लेकिन ये अंदर से अब बंद है। और यहीं पे अब हम लोग खोज चलाएंगे कि कहीं पे जहांगीर खान अंदर है या नहीं है। चलिए सबसे पहले तो जहांगीर जी को बुलाते हैं। जहांगीर जी, कोई है क्या अंदर?
4: और बात कॉकरोच जनता पार्टी की, चीफ जस्टिस की टिप्पणी, और देखते ही देखते एक नया दल खड़ा हो गया। आज की स्थिति यह है कि इंस्टाग्राम पर बीजेपी से भी बड़ी पार्टी बन गई है कॉकरोच पार्टी। एक हफ्ते के अंदर 1.5 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं।
1: ये वो युवा हैं जिन्होंने सियासी

0: खलबली मचा दी है। ये कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्य हैं और इन्होंने एक ऐसा संगठन खड़ा किया है जो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ता जा रहा है। इसे बनाने वाले हैं अभिजीत दीपके। ये छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और इन्होंने पुणे से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है और बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर ऑफ साइंस भी हैं। तो हुआ यूं कि देश के चीफ जस्टिस की तरफ से कॉकरोच वाला बयान आया और अभिजीत के जहन में कॉकरोच जनता पार्टी के गठन का आइडिया आया।
1: कोई भी पार्टी ना इनकी बात करती है और ना इनकी बात सुनती है, इनको कम्प्लीटली इग्नोर करती है। तो अब ये उस डोमेन में आ गए जहां पर बाकी पॉलिटिकल पार्टियां अब इस मूवमेंट की वजह से वो सारी चीजें करने लग गई है। बाकी सारी पार्टियों के लीडर्स हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने मन बना रखा है, लेकिन मुझे सारे जेंजी बता रहे हैं।
0: अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर एक मंच बनाया और देखते ही देखते ये मंच किसी वीडियो की तरह वायरल हो गया। 16 मई को कॉकरोच जनता पार्टी की वेबसाइट लॉन्च हुई। सिर्फ 48 घंटों में ही 40,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए। आज की तारीख में इंस्टाग्राम पर इसके 1.5 करोड़ से ज्यादा और एक्स पर करीब 2 लाख फॉलोअर्स हो चुके हैं। साल 2020 से 2022 के बीच अभिजीत आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम के वॉलंटियर थे। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान आपके पक्ष में जो मीम्स की बाढ़ आई थी उसके पीछे अभिजीत का ही दिमाग माना जाता है। फिलहाल इस संगठन के वादे और इनकी घोषणाएं हल्की फुल्की और व्यंगों से सराबोर दिख रही हैं, लेकिन इस मंच की बढ़ती लोकप्रियता सबको हैरान कर रही है। दिल्ली में सोनल मेहरोत्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
2: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिली हार के बाद अब जन स्वराज के मुखिया प्रशांत किशोर ने अपना घर छोड़ दिया है। उन्होंने पटना के बेहटा में एक आश्रम में अपना ठिकाना बनाया है। प्रशांत किशोर ने तय किया है कि अगले 5 साल तक वहीं रहेंगे, यानी जब तक उनकी पार्टी जन स्वराज विधानसभा चुनाव 2030 में खुद को ठीक से स्थापित नहीं कर लेती तब तक प्रशांत किशोर इसी आश्रम में रहने वाले हैं। इसी आश्रम से आज तक संवाददाता रोहित सिंह की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए
3: कि प्रशांत किशोर पटना में रहकर जो इस पूरे अपनी पार्टी को चला रहे थे, यानी शेखपुरा हाउस जो काफ़ी प्रसिद्ध एक घर था वहाँ पे, और वहीं से जन स्वराज पार्टी का सारा काम चलता था, सारी मीटिंग, सारे वर्कशॉप, ट्रेनिंग वहीं चलता था। तो वो अब घर को प्रशांत किशोर ने छोड़ दिया है और पटना से तकरीबन 40-45 किलोमीटर बाहर IIT पटना के पास एक 15 बीघा का एक ज़मीन है, वहाँ पर प्रशांत किशोर एक नया अपना आश्रम बनवा रहे हैं। बिहार नवनिर्माण आश्रम के नाम से जो है ये पूरा एक सेटअप जो है ये तैयार हो रहा है, ये आश्रम की तैयारी हो रही है। और हमने देखा था किस तरीके से पटना में भी कुछ वक्त के लिए प्रशांत किशोर ने मरीन ड्राइव के पास भी जो है एक सेटअप अपना लगाया था कुछ दिनों के लिए, जो उनके कार्यकर्ता थे जो उनकी पार्टी से जुड़ते थे उनको ट्रेनिंग देने के लिए एक सेटअप लगाया था कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, और फिर बाद में उस सेटअप को जो है उन्होंने हटा दिया था। लेकिन मूल रूप से वो शेखपुरा हाउस से ही जो है वो काम किया करते थे। लेकिन अब यहाँ पर प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि यहाँ पे जो ये बिहार नवनिर्माण आश्रम जो बन के तैयार हो रहा है वो यहीं रहेंगे, यहीं से काम करेंगे और यहीं से पार्टी को चलाएंगे, जहां से वो अगले 5 साल रहकर 2030 का बिहार विधानसभा चुनाव जो है यहीं से लड़ेंगे। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक।
2: पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हमजा बुरहान की हत्या कर दी गई है। आतंकी हमजा बुरहान को POK के मुजफ्फराबाद में गोली मारी गई। आतंकी हमजा बुरहान 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड में से एक था। शख्स पाकिस्तान में खुद को टीचर बताता था। दरअसल हमजा अपनी पहचान छिपाने के लिए एक स्कूल में प्रिंसिपल भी बना हुआ था। हमजा बुरहान को अज्ञात शख्स ने तब गोली मारी जब वो अपने दफ्तर में था। अमेरिका और ईरान के बीच फिर से महायुद्ध होने वाला है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अमेरिका की तरफ से बार बार ईरान को धमकाया जा रहा है, लेकिन ईरान भी किसी भी तरह से झुकने के लिए तैयार नहीं है।
0: ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। ईरान के पास अब दो ही विकल्प, अमेरिका के आगे झुके या महायुद्ध लड़े। ईरान की तो टूक, झुकने से इनकार। अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेक्सेथ ने सोशल मीडिया पर ईरान को बड़ी धमकी दी है। पीट हेक्सेथ ने लिखा, लॉक्ड एंड लोडेड। उन्होंने ये कमेंट अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के उस पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा है, जिसमें ये कहा गया था कि ईरान के साथ ऐसी डील नहीं होगी जिससे उसे परमाणु हथियार बनाने की छूट मिल जाए। जेडी वेंस ने भी कहा था, लॉक्ड एंड लोडेड। साथ ही ये कहा था कि अमेरिका नहीं चाहता कि उसे फिर से युद्ध के रास्ते पर जाना पड़े, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप इसके लिए तैयार है कि अगर युद्ध करना पड़ा तो इसकी इच्छा और क्षमता दोनों ही उनमें मौजूद है। ट्रंप भी धमकी दे ही चुके हैं।
4: Right on the borderline, believe me. If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go. We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers. And if we do, we save a lot of time, energy and lives.
0: यानी राष्ट्रपति ट्रंप से लेकर उपराष्ट्रपति और अब युद्ध मंत्री की धमकी के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या फिर से महायुद्ध शुरू होने वाला है।
2: आज आईपीएल में चेन्नई का मुकाबला गुजरात टाइटंस से है और धोनी के चाहने वालों को आज भी झटका लगा है, क्योंकि धोनी इस मुकाबले में भी नहीं खेल रहे। गुजरात अगर चेन्नई को आज बड़े अंतर से हराती है तो प्ले ऑफ में उसके नंबर वन बनने के चांस बढ़ जाएंगे।
0: मैदान पर नहीं उतरेंगे धोनी। गुजरात हारेगा या चेन्नई के साथ हो जाएगी अनहोनी। पूरा का पूरा सीजन निकल गया, धोनी मैदान पर खेलने नहीं उतरे। इस सीजन के आखिरी लीग मैच में भी उनके फैंस को निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि वो रांची लौट गए हैं। इसके साथ ही फिर ये अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या धोनी आईपीएल में अपना आखिरी मैच खेल चुके हैं। खैर, आज चेन्नई का मुकाबला है गुजरात के साथ, जो प्लेऑफ में पहले ही अपनी जगह बना चुकी है। अब उसकी कोशिश जीत के साथ टॉप टू में जगह पक्की करने की होगी। गुजरात अभी 16 अंक लेकर अंक तालिका में दूसरे पायदान पर है। हैदराबाद भी टॉप टू में जगह बनाने की दौड़ में है। बेंगलुरु 18 अंक के साथ पहले स्थान पर है। इन तीनों ने पहले ही प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अगर गुजरात आज बड़ी जीत हासिल करता है तो वो बेंगलुरु के नेट रन रेट से भी आगे निकल सकता है। उधर ऋतुराज गायकवाड़ की टीम बाहर होने की कगार पर है। ऊपर से टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल और उनके जोड़ीदार साई सुदर्शन की शानदार फॉर्म से निपटना भी उनके लिए बड़ा इम्तिहान होगा। दूसरी तरफ फिरकी गेंदबाज राशिद खान चेन्नई की मजबूत बल्लेबाजी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन पावर प्ले में मजबूत नींव रख दें, ताकि बाद की मुश्किलों से उबरना आसान हो जाए। आज तक ब्यूरो।
2: अब खबरें व्यापार जगत से।
0: शेयर बाजार में आज कारोबार के दौरान दबाव के बीच घरेलू शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स 135 अंक कमजोर होकर 75,183 और निफ्टी 4 अंक गवाकर 23,654 के स्तर पर बंद हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज और इंफोसिस के शेयरों में आई गिरावट की वजह से मार्केट में कमजोरी देखी गई। वहीं कई दिनों से लगातार न्यूनतम स्तर का रिकॉर्ड तोड़ने वाले रुपए में आज मजबूती देखने को मिली। डॉलर के मुकाबले रुपया 49 पैसे मजबूत होकर 96.37 पर बंद हुआ। अगर सराफा बाजार की बात करें तो वहां भी आज तेजी का रुख रहा। IBJA के आंकड़ों के मुताबिक 10 ग्राम सोना 986 रुपए महंगा होकर करीब 1,59,000 रुपए तक पहुँच गया है, जबकि चांदी प्रति किलो 856 रुपए बढ़कर 2,66,000 रुपए के नजदीक पहुँच गयी है। आज तक ब्यूरो।
2: वक्त है अब एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर वन।
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. Yeah, I tried to... But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads.
8: Thank God I get to wake
7: and everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
9: Looking for more sports analysis between games? TuneIn has got what you need with all the sports podcasts right here. Whether you're looking for hot takes, post-game analysis, or good old-fashioned fun, we've got all your sports podcasts all in one place. The Bill Simmons Podcast.
10: It's college football time. College basketball feels
9: Pardon
10: like it's
9: my take.
11: The Rams catching the Commanders.
9: And Hank much more. Jump into the conversation and don't miss a single play. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn. There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
6: Orient Skincare Brand.
12: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती
13: है। भाई, भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूफ कर दिखाया यार, एनीबॉडी कैन ड्रीम।
12: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
14: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, एफर्टलेस स्टाइल, एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।
15: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
16: और वही कहाँ गए थे घूमने?
17: जीके मैक्स।
18: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
17: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
18: जेके वॉल मैक्स
17: बेस्ट पेंट,
18: जेके मैक्स।
17: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
18: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
19: इसमें माइक्रो फाइबर है।
18: माइक्रो फाइबर यानी
19: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत?
18: हमारे सीमेंट में नहीं है,
19: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
20: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
21: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
22: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: बस 2000
2: इधर स्कोर करेगा तो इतना सा इनाम जीतेगा, और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1,00,000 तक जीतेगा।
3: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियम, क्रेडिट स्कोर देखो और 1,00,000 तक जीतो।
4: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए ये शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
5: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
6: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
7: विक्रम, एक हिंट तो देते।
8: विक्रम!
7: हिंट।
9: बड़े आराम से।
10: सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
11: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
12: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
13: नहीं,
12: और म्यूचुअल फंड से
13: सही।
14: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
15: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
16: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
17: सोच बदलो और बैंक भी।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: Honey, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील टीएमटी से बना.
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील टीएमटी बाय एकदम सॉलिड.
4: Character, the taste of success.
5: Like I said before, we better hold this in.
6: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना. कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत. कैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो.
7: पैसा बाजार सीपीएल में अब अपना क्रेडिट स्कोर चेक करके 1,00,000 तक जीत सकते हैं.
8: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर लीग, क्रेडिट स्कोर देखो जीतो.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: At DSW, we ask the important questions, like, what shoes are you going to wear? Whether you're prepping for wedding season, festival season, or just planning the ultimate vacay, the right shoes can make or break an RSVP. So own the moment. You've got big plans, and we've got just the shoes. At the perfect price, of course. Get ready to get ready with Designer Shoe Warehouse. Head to your DSW store or DSW.com today, and let us surprise you.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
2: It's your boy,
1: just
2: Jay-Z.
1: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
3: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
5: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती
6: है। भाई, भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूव कर दिखाया यार, एनीबॉडी कैन ड्रीम।
5: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
7: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, एफर्टलेस स्टाइल, एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।
8: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
9: जीके मैक्स।
10: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
9: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी
10: जेके वॉल मैक्स
9: बेस्ट पेंट
10: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
10: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
11: इसमें माइक्रो फाइबर है।
10: माइक्रो फाइबर यानी
11: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत?
10: हमारे सीमेंट में नहीं है,
11: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
12: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
13: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
14: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: बस 2000
3: इधर स्कोर करेगा तो इतना इनाम जीतेगा, और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1,00,000 तक जीतेगा।
4: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियम, क्रेडिट स्कोर देखो और 1,00,000 तक जीतो।
5: सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
6: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
7: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का नहीं, और म्यूचुअल फंड से सही।
8: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
9: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
10: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
11: सोच बदलो और बैंक भी।
12: Character, the taste of success.
13: Like I said before, we better own the sins.
3: पैसा बाजार CPL में अब अपना क्रेडिट स्कोर चेक करके 1,00,000 तक जीत सकते हैं।
4: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर लीग, क्रेडिट स्कोर देखो जीतो।
14: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
15: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
16: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
14: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
17: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
15: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
14: जहां खबर वहां खबरदार।
18: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। मोंटे कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
19: यहाँ से मैं रसगुल्ला खाए बिना नहीं जाऊँ।
20: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूँ अंजना ओम कश्यप,
21: और हम लोग इस वक्त खड़े हैं भवानीपुर में ही।
22: श्वेतपुर, मेरे नाम की स्पेलिंग वाला श्वेतपुर।
23: किसी का मन हुआ चलो झालमुड़ी खाए, ओके।
21: शुभेंदु अधिकारी,
20: यहाँ पर पिक्चर साफ हो चुकी है। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे।
24: नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर तपस सिंह गुप्ता,
25: अनुपम मिश्र,
26: अमित भारद्वाज,
27: पीयूष मिश्रा,
28: मौसमी सिंह, कोलकाता आज तक।
29: बीजेपी वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं। नरेंद्र मोदी ने जो करना था पिछले 3 महीने में, जो आपकी प्रोटेक्शन करनी थी, जो दीवार, आर्थिक दीवार खड़ी करनी थी आपके लिए, वो उन्होंने नहीं की। उल्टा वो जाकर मेलोनी जी के साथ टॉफी खा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं जैसे मजाक चल रहा है।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। इन एसोसिएशन विद
30: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.
20: नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। पूरे हिंदुस्तान को मौसम की सजा जारी है। भीषण गर्मी और लू में कहीं कोई राहत की खबर नहीं है। नॉर्थ और सेंट्रल के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां भीषण हीट वेव है। तापमान 45 डिग्री से लेकर 48 डिग्री तक पहुंच गया है, और अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस बार पारा 50 डिग्री के भी आगे जा सकता है, क्योंकि इसके करीब तो पहुंच ही चुका है। हाँ, राहत की खबर जो आ रही है वो है हिमालयी राज्यों से, जहां बारिश की संभावना है, और कश्मीर में तो बर्फबारी भी हो रही है।

0: अभी ये गर्मी और कितना झुलसाएगी, कब तक लू इतना रुलाएगी। 48 डिग्री तक तो पारा पहुंच गया, क्या 50 भी पार करेगा। अब की बार गर्मी का क्यों इतना अत्याचार। भीषण गर्मी और लू से कहीं कोई राहत की खबर नहीं है, हालात वही हैं और लोगों के हाल भी वैसे ही हैं। गर्मी से तरबतर, पसीने से लथपथ, लू से पस्त। मौसम विभाग के पास भी कुछ नया बताने को नहीं है, उसने तो पहले ही बता दिया था कि अगले 7 दिनों तक कोई राहत नहीं मिलने वाली। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और ओडिशा सहित कई राज्यों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी है। ये भी चेतावनी है कि इन राज्यों में हीट स्ट्रोक का खतरा सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए बहुत अधिक है। राजस्थान में बुरा हाल है, यहाँ श्री गंगानगर जिले में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया, 46.5 डिग्री सेल्सियस। राजस्थान में करीब 15 शहरों में तापमान 45 डिग्री के पार चला गया। महाराष्ट्र में सबसे बुरा हाल विदर्भ इलाके का है, यहाँ वर्धा में तापमान 47.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विदर्भ में 11 जिले हैं, सभी जिलों में तापमान 45 डिग्री से ऊपर है। पंजाब और हरियाणा में लू से बुरा हाल है, यहाँ रोहतक और भटिंडा में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया, 46 डिग्री सेल्सियस। आंध्र प्रदेश के 11 जिलों में तापमान 45 डिग्री से ज्यादा चला गया है, सबसे ज्यादा तापमान पालनाडु जिले में दर्ज किया गया, 47.6 डिग्री।
1: आप ये देखेंगे, अगर ये मैप देखेंगे तो आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको ईस्ट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में वार्निंग जो है वो रेड अलर्ट जो है, रेड वार्निंग जो है वो दी गई है। वहां पे हॉट एंड ह्यूमिड की जो कंडीशन है वो लगातार बढ़ती जाएगी। लेकिन आज से एक पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय होगा पहाड़ी राज्यों में, जिसका असर जम्मू कश्मीर और हिमाचल के राज्यों में जो है वो देखने को मिल सकता है। वहां थोड़े से तापमान जो है कम हो सकते हैं क्योंकि बारिश जो है वहां देखी जाएगी। लेकिन अगर मैदानी राज्यों की अगर हम बात करें तो आने वाले 7 दिन तक किसी तरीके से तापमान कम नहीं होंगे, 45 डिग्री के ऊपर जो है तापमान जा सकते हैं। गर्मी अभी लोगों को परेशान करने वाली है, किसी तरीके की राहत मिलती हुई नहीं नजर आ रही।
0: और ऐसे हालात में बस राहत की एक ही खबर है कि 26 मई को मॉनसून केरल पहुंच जाएगा। लेकिन उत्तर भारत में आते आते आधा जून बीत जाएगा, यानी अभी उत्तर और मध्य भारत को लगभग एक महीने तक कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही।
2: हमारा 26 का हमने प्रेस रिलीज इशू किया था 26 में, और विद मॉडल एरर जैसे प्लस माइनस 4 डेज होता है। बाकी जो अगर आप जो ब्लू लाइन देख रहे हैं तो ये वो लाइंस है जो यहाँ पे अभी मानसून एडवांस हो चुका है। तो ये 16 मई को हमारा फर्स्ट एडवांस हुआ था, जिसमें हमने कुछ हिस्से अरबियन सी के, बियो बंगाल और अंडमान निकोबार आइलैंड के कुछ हिस्से जहाँ तक हमने कवर किए थे। उसके बाद सेकंड हमारा था वो 18 मई को था। 18 मई को हमने इंटायर अंडमान निकोबार कवर किया, बियो बंगाल के कुछ हिस्से कवर हुए, साउथ अरबियन सी के कवर हुए। और उसके बाद हमारा यही अनुमान है आने वाले कुछ दिनों में ये बियो बंगाल के कुछ और हिस्से कवर कर सकता है। और स्टार्टिंग अगर आप इधर की करते हैं तो जब 26 मई जहाँ जब आगे केरला में ऑनसेट मानसून होता है, तो उसके बाद हम फर्दर बताते हैं कि आने वाले दिनों में वो आगे कैसे प्रोग्रेस करें।
0: गर्मी और लू के थपेड़े पंजाब और हरियाणा को भी बहुत बुरी तरह से झुलसा रहे हैं। पंजाब के बहुत से जिलों में तापमान 46 डिग्री के पार चल रहा है। लोगों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि मौसम विभाग खुद बता रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिन यही हालात रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इस बार पंजाब हरियाणा में गर्मी के पुराने सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं।
3: ऑरेंज अलर्ट है और हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कई जिलों में पंजाब हरियाणा में है। और ये पूरा आपका पंजाब हरियाणा ट्राई सिटी पूरे जो है भीषण गर्मी की चपेट में है, और 2 से 3 दिन अब ये कंटिन्यू करेंगे। लेकिन सिर्फ इसमें एक अच्छी खबर ये है कि आज जो है, आज कल और परसों कुछ नॉर्थ पंजाब में या एडजॉइनिंग नॉर्थ हरियाणा, नॉर्थ ईस्ट पंजाब में कुछ है एक्टिविटी के चांसेस, जैसे बीच में क्लाउड फॉर्मेशन हो सकता है, कुछ हवाएं चल सकती हैं। तो उससे जो बेसिकली नॉर्थ का जो पंजाब का एरिया है, जिसमें गुरदासपुर, होशियारपुर, रूपनगर, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब, फिर इधर अम्बाला, हाँ ये जो पॉकेट्स है इसमें कुछ रिलीफ मिलने के चांसेस तो है। लेकिन इसके बावजूद भी जो बाकी जिले हैं पंजाब और हरियाणा पे, वहां पे जो है हीट वेव कंडीशन और लू।
0: यही हाल राजस्थान का भी है, यहाँ तो दिन में ही नहीं बल्कि रात को भी गर्मी है। सूरज ढलने के बाद भी जमीन ठंडी नहीं हो रही।
4: राजस्थान के भी ज्यादातर जिलों में तापमान 42 से 45 डिग्री तक पहुंच गया है।
5: राजस्थान में आसमान से आग बरस रही है। पूरे राजस्थान में 14 से 15 शहरों का तापमान 45 डिग्री के आसपास रह रहा है। गंगानगर में तो तापमान 46 डिग्री तक पहुंच गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर लोग गर्मी का इंतजाम करके चलते हैं, गमछा और चश्मा लगाए हुए, बहुत तो साफा पहन के भी चलते हैं। साफा से बचाव हो जाता है राजस्थान में?
6: साफा हमारी राजस्थान की शान है, मान है। और हमारे राजस्थान में जो गर्मी है अभी बहुत भयंकर गर्मी है, मौसम है, और इस टाइम गर्मी पड़ने से फसल और जो भी माहौल है उससे गर्मी से अच्छा होता है। और इस गर्मी से बचाव के लिए गवर्नमेंट से करते हैं कि अच्छा सिटी में ध्यान रखें, कोई पानी लगाए, व्यवस्था करें, और साफे से पूरा बचाव होता है कि धूप में डायरेक्ट वो सर पे नहीं आता।
4: मैदानी राज्यों में गर्मी और लू चल रही है तो जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही है। देखिए कुदरत के इस निराले खेल को, पंजाब से लेकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक पूरा हिंदुस्तान भीषण गर्मी की चपेट में है। आसमान से आग बरस रही है, शहर शहर तंदूर की भट्टी बने हुए हैं, और उधर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है। ये लद्दाख की पहाड़ियां हैं जहां भीषण बर्फबारी हुई है। मई के महीने में बर्फ गिरना सुनने में अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन यहाँ ये आम बात है। द्रास, करगिल और गुरेज वैली में भारी बर्फबारी हुई है। इस बर्फबारी की वजह से श्रीनगर ले हाईवे पर आवाजाही बंद हो गई, और इस बर्फबारी की वजह से कश्मीर घाटी में भी तापमान में कमी आ गई है। श्रीनगर में तापमान 30 डिग्री से घटकर 19 डिग्री हो गया। देश भर के पर्यटक श्रीनगर पहुंच रहे हैं।
7: पूरे देश में गर्मी से हाहाकार मची हुई है, तापमान जो है नए रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, झुलसती गर्मी है। और वहीं आपको एक अलग नजारा दिखाते हैं। कश्मीर को जन्नत कहा जाता है धरती पे बिना वजह नहीं। क्यों कहा जाता है ये? इस वजह से क्योंकि अभी जैसे मैंने कहा कि जहां पारा जो है आसमान छू रहा है देश के बाकी हिस्सों में, बहुत ज्यादा गर्मी है, कश्मीर जो है प्लेजेंट है, बहुत ठंडा इस वक्त वातावरण है। बादल और हालात ये हैं कि सोनमर्ग से ऊपर जब आप द्रास की तरफ जाते हैं या फिर जोजिला को क्रॉस करते हैं तो उस पूरे रास्ते पे जो है कल शाम से बर्फबारी हुई है, और उसका इम्पैक्ट जो है एक एसी इम्पैक्ट हुआ है, जहां जो प्लेन्स हैं वहां पे बहुत ज्यादा अभी तापमान गिरा है, तकरीबन 10 से 12 डिग्री तापमान गिरा है। नॉर्मल टेम्परेचर इस वक्त कश्मीर का 30 डिग्री के आसपास होना चाहिए, लेकिन अभी 16 से 18 डिग्री के आसपास।
4: आज तक ब्यूरो।
8: और भीषण गर्मी आते ही पूरे देश में बड़ा जल संकट शुरू हो जाता है। इस बार भी यही हालात हैं, लोगों के सामने दोहरी मार है, गर्मी से बचें या गर्मी में पानी का इंतजाम करें। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक और झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ तक सब जगह एक जैसे हालात हैं। खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की सख्त कमी हो गई है। पूरी रिपोर्ट देखिए।

0: गर्मी बढ़ते ही देश में भयानक जल संकट क्यों पैदा हो गया? बड़े शहर हो, कस्बे हो या ग्रामीण इलाके, जल संकट से कैसे उबरेगा हिंदुस्तान? राज्य कोई भी हो, जिला कोई भी हो, लगभग पूरा हिंदुस्तान ही इस वक्त भीषण जल संकट की चपेट में। गर्मियां आते ही ऐसा लगता है कि सरकार की हर घर जल और जल जीवन मिशन जैसी योजनाएं भी फेल हो गई। ये तस्वीरें तो यही बता रही है। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक और महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ झारखंड तक हालात एक जैसे ही हैं। ये मुंबई से सटा पालघर जिला है, जहां एक तरफ बुलेट ट्रेन और मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे बड़े प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आदिवासी बस्तियों के लोग आज भी पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये डहाणू तहसील है, जहां सैकड़ों परिवारों को रोजाना पानी के एक बर्तन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जल जीवन मिशन पर करोड़ों रुपए खर्च होने के दावों के बावजूद यहां नल आज भी सूखे पड़े हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि गांव के बोरिंग और कुएं भी पूरी तरह सूख गए। पानी के पारंपरिक स्रोत खत्म होने के बाद अब ग्रामीण जंगलों में बने छोटे गड्ढों के सहारे अपना जीवन गुजारने को मजबूर है। जिस पानी से मवेशी अपनी प्यास बुझा रहे हैं, उसी दूषित पानी को ग्रामीणों को पीना पड़ रहा है। पैंतालीस डिग्री की गर्मी में पानी के लिए जद्दोजहद। ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास का रीवा गांव, जहां 5,000 की आबादी है और ये लोग पिछले 50 वर्षों से पानी के लिए तरस रहे हैं। यहां सरकार की पानी वाली हर एक योजना फेल साबित हुई है। यहां पानी निकालने के लिए सोलर पंप लगाया गया है। जब तक सूरज है, तब तक ये पंप बड़ी मुश्किल से पानी निकालता है। सूरज ढला तो पानी भी चला जाता है, और 45 डिग्री तापमान वाले इस मौसम में पानी तो वैसे भी नहीं आ रहा।
1: दुनिया के कई हिस्सों में जमीन, संसाधनों और तेलों के लिए कई लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के पास रीवा के गांव में यहां के आम लोग यहां की गर्मी, भीषण गर्मी से, अपनी प्यास से, सिस्टम से और सरकार के करोड़ों के जल जीवन मिशन के दावों से ये जंग कई सालों से लड़ते हुए आ रहे हैं। आप यहां पर देखेंगे 40 साल से ये समस्या बनी हुई है। बताया जाता है कि जब से आजादी है तभी से ही इस गांव में पानी नहीं आता है। यहां पर जल जीवन मिशन के लिए कई सारे करोड़ों रुपए खर्च किए गए। हर घर के आगे नल तो दिया गया, लेकिन पानी की एक बूंद अभी तक यहां पर नहीं पहुंची है।
2: तो पूरा गर्मी भर रही थी, गर्मी में ठंडा बस में थोड़ा खाली रहते, पूरा गर्मी में अभी देख ले गर्मी लग।
1: तो 45 डिग्री में कैसे करते हो इतनी गर्मी में?
2: गर्मी में तो तबीयत खराब हुआ थी,
3: कूलर है फिर भी पानी नहीं है तो कहाँ से ठंडा हवा आई। पानी भरे बहुत मुश्किल जाते हमन, अब एकदम आधा उम्र हो गई, हमरो मन के कहाँ से पानी भर पाबो।
4: वक्त है अब एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।

0: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
1: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: कम भीड़ दिखाई दे रही है। सहारनपुर से राहुल कुमार, बांदा से सिद्धार्थ गुप्ता और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
8: Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.
0: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
9: I have no idea how this election is going to play out,
0: or want to catch up on your team's live play-by-plays, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
3: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX. There's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
10: It's your boy,
3: just
10: Jay-Z.
3: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
11: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं
12: इसमें माइक्रोफाइबर है
11: माइक्रोफाइबर यानी
12: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत
11: हमारे सीमेंट में नहीं है
12: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है
13: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़ ड्यूरागार्ड सीधी बात है ड्यूरागार्ड खास है
14: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है
15: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रहे हैं
16: बस 2000
17: इधर स्कोर करेगा तो इतना सा इनाम जीतेगा और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1,00,000 तक जीतेगा
18: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियम क्रेडिट स्कोर देखो और 1,00,000 तक जीतो
19: गाय को माने या ना माने लेकिन दूध गाय का ही पीता होगा ना गाय का दूध क्या जो लोग गाय को खाते हैं क्या वे सुअर का दूध पीते हैं क्या नहीं दूध तो गाय का ही सब लोग पीते हैं।
10: गाय को लेकर योगी आदित्यनाथ का यही आक्रामक रूप पश्चिम बंगाल चुनाव में भी दिखता रहा।
20: गौ माता को कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बटने नहीं देंगे।
10: गौ माता को कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बटने नहीं देंगे का नारा लगातार पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रचार में गूंजता रहा। और अब पश्चिम बंगाल में बकरीद से पहले हलचल है। हलचल इतनी कि जो लोग गाय को केवल बकरीद पर कुर्बानी के लिए बेचने के मकसद से पालते रहे, उन्हें लग रहा है कि अब वो क्या करेंगे, क्योंकि बंगाल में सरकार बनते ही शुभेंदु सरकार ने उस पुराने कानून को सख्ती से पालन कराने का ऐलान कर दिया, जिसे सुनकर अब बकरीद पर गाय बेचने वाले कहते हैं कि बस इस बार सरकार छूट दे दे। असल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने बंगाल में गाय काटने पर प्रतिबंध लगा दिया, पशुवध के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी कर दिया, तय कर दिया कि 14 साल से ज्यादा उम्र के मवेशी का ही वध किया जा सकता है और उसके लिए सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अब हालत ये कि शुभेंदु सरकार के फैसले के बाद टीएमसी के विधायक और सांसद तक बकरीद में गाय की कुर्बानी के लिए कोर्ट तक दौड़ गए। कलकत्ता हाईकोर्ट में एक मामला दायर किया गया, जिसमें राज्य सरकार की 13 मई की उस अधिसूचना को चुनौती दी गई जो बकरीद से पहले गायों और भैंसों की कुर्बानी से जुड़ी। रघुनाथगंज के विधायक अखरुज्जमा ने कलकत्ता हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा इस मामले के सिलसिले में कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने पेश हुई, जो दावा करती है कि बंगाल के गरीब गाय इसीलिए तो पालते हैं ताकि उन्हें बेचकर पैसा कमाया जा सके, और टीएमसी विधायक का दावा है कि कुर्बानी एक धार्मिक प्रथा है, फिर चाहे गाय हो या भैंस, अल्लाह के नाम पर कुर्बानी दी जाती है। स्थिति अब ये बंगाल में बन गई कि बकरीद से पहले बीजेपी की विधायक रेखा पात्रा बशीरहाट में मवेशियों को लेकर जाते टेम्पो रोककर जांच करने लगी, गोवंश का फिटनेस सर्टिफिकेट मांगने लगी, पता करने लगी कि बकरीद से पहले जो गोवंश जा रहा है वो 14 साल से बड़ा है या नहीं, जो नहीं मिला गाड़ी से उस गोवंश को उतरवा लिया गया। इन्हीं सब वजह से बंगाल की राजनीति में अब तक बड़ी दखल रखने वाले फुरफुरा शरीफ के पीरजादा तोहा सिद्दीकी ने तो ये कहना शुरू कर दिया कि मुस्लिम नागरिक बंगाल में गाय की कुर्बानी ना ही दें। लेकिन सरकार बंगाल में लगातार ये याद दिला रही है कि कानून तो पहले से था, बस ममता सरकार में गायों की कुर्बानी की छूट मिलती रही, अब की बार बस कानून का पालन सख्ती से कराया जा रहा है। इस बीच बंगाल के दूसरे मुस्लिम धर्मगुरु अलग सुर पकड़ लेते हैं, गाय के नाम पर राजनीति का दावा करके उसे राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करते हैं। बकरीद पर गाय को 30,000 से 1.5 लाख रुपए तक में बेचने का काम पहले बंगाल में होता आया, लेकिन इस बार शुभेंदु सरकार ने जब पुराने नियम को सख्ती से लागू कराना शुरू किया तो गाय पालने वाले, गाय बेचने वाले और कुर्बानी के लिए गाय खरीदने वाले तीनों को कानून का डर सताने लगा है।
21: कोई मुसलमान को गाय खाने के मना करे तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का जियो करके वो मना कर दीजिए, लेकिन कुर्बानी तो होगा ही, कुर्बानी कोई मना करेगा वो भी नहीं सुनेगा। वो कुर्बानी सत्ता में आए शुभेंदु ठीक है, लोगों को उनको पास वोट डाला, वो सरकार चलाएगी, लेकिन मेरा 1400 साल से पहले से एक कुर्बानी होके आ रहा है, अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होगी, गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊंट भी होगी, दुम्बा भी होगी, सारे पशु जो है वो कुर्बानी का जायज है, वो कुर्बानी होगी, कोई रुक सकता नहीं।

0: विशेष में अब इतना ही, आगे देखिए खबरदार श्वेता सिंह के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
2: Accoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: मंत्रिमंडल में बदलाव की चर्चा के बीच मंत्रिपरिषद की बैठक, मंत्रालयों के कामकाज की पीएम मोदी कर रहे हैं समीक्षा, सभी मंत्रियों की बड़ी परीक्षा, वैश्विक हालात, ऊर्जा संकट पर भी चर्चा। प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से बड़े निवेश को मिली मंजूरी, पीयूष गोयल का बयान, सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा समेत कुल 57 बड़े समझौते, विपक्ष ने फिर उठाए सवाल। मारुति ने कारों के दाम में किया 30,000 तक का इजाफा, जून से लागू होंगी नई कीमतें, बिहार में सुधा और राजस्थान में सरस ने दूध की कीमत में किया की 1-2 रुपए की बढ़ोतरी। नीट कांड को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को फिर घेरा, पोस्ट में लिखा, यहां पेपर लीक से युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, वहां इटली में मोदी रील बना रहे हैं। बंगाल में बकरीद में गायों के वध पर बरकरार रहेगी रोक, शुभेंदु सरकार के फैसले पर रोक लगाने वाली याचिका, कलकत्ता हाईकोर्ट से खारिज, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का दिया हवाला।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
2: एकजे, द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: करती हूँ। रात के 8 बज रहे हैं, वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों का दौरा करके आज लौटे हैं। इस वक्त सेवा तीर्थ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय में एक बहुत अहम बैठक चल रही है। बैठक को चलते हुए 3 घंटे बीत चुके हैं। पीएमओ में होती बैठक अहम है, इस पर हमारी नजर है। लेकिन साथ ही पहले हम आपको पश्चिम बंगाल की फलता सीट पर आज हुई रीपोलिंग से निकली एक बड़ी खबर बताएंगे। क्या हार्ट अटैक के डर से बंगाल के फलता से भागा था अभिषेक बनर्जी का पुष्पा? शाम से मंत्रिपरिषद के साथ प्रधानमंत्री की जो पीटीएम चल रही है, ये पीटीएम मतलब प्रधानमंत्री टास्क मीटिंग, जहां मंत्री 2 साल में पूरे हुए टास्क का हिसाब दे रहे हैं। इस अहम बैठक की हर खबर से खबरदार करेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश में बिजली का हक मांगा तो मुकदमे की धमकी देती पुलिस से भी आपको खबरदार आज हम करेंगे। और कौन से राज्य में यूनिवर्सिटी जमीन पर कम कागज पर ज्यादा चल रही है, जनता का पैसा बर्बाद करने वालों से खबरदार करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की सबसे बड़ी सियासी खबर, ये खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के फलता में आज दोबारा मतदान हुआ, जिसमें बंपर वोटिंग हुई। फलता में 87.85% वोटिंग हो चुकी है। मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। फलता में जहां मतदाताओं में उत्साह दिखा, तो टीएमसी के नेता और प्रत्याशी जहांगीर खान नदारद दिखे। जहांगीर खान 29 अप्रैल को हुए मतदान में खुद को पुष्पा बता रहे थे, दावा कर रहे थे कि वो झुकेंगे नहीं। लेकिन 26 दिन बाद फलता में अभिषेक बनर्जी के चहेते पुष्पा का अता पता नहीं। जहांगीर खान ने पहले ही चुनाव से हटने का फैसला किया, लेकिन आज मतदान के दिन वो कहीं दिखे भी नहीं। तो अभिषेक बनर्जी के करीबी बताए जाने वाले जहांगीर खान ने ममता बनर्जी की सत्ता जाते ही न सिर्फ अपने सुर बदल लिए, बल्कि वो अब फलता से फरार हो गए हैं। वो कहां हैं उसकी खबर किसी को नहीं है, लेकिन फलता में जिस तरह से जनता ने आज खुलकर मतदान किया, वो बहुत कुछ कहता है।
1: 15 साल से हम लोग जब वोट नहीं दे पा रहा था, अभी जो है पूरा माहौल जो है, हम सब मेरे मर्जी से वोट दे रहा था, वोट दे रहा है, खुशी से वोट दे रहा है। सुबह से ही पोलिंग चल रहा है, वोट दे रहा है, हम कोई प्रॉब्लम नहीं।
2: सोचिए, ये उस देश के नागरिक बोल रहे हैं जिन्हें संविधान से वोट देने का अधिकार मिला हुआ है। लेकिन पश्चिम बंगाल के फलता में ऐसे लोगों की कमी नहीं, जो खुलकर अब पूरे देश को बताते हैं कि संविधान से मिले उनके मौलिक अधिकार को ही जहांगीर खान नाम का शख्स अपनी जेब में लेकर घूमता था। फलता में लोग न सिर्फ वोट डालने से रोके जाते थे, बल्कि इसकी वो शिकायत तक किसी से नहीं कर सकते। जहांगीर खान के नाम का खौफ कुछ ऐसा रहा कि मतदान के दिन घर से लोग पहले नहीं निकल सकते थे।
3: जहांगीर खान, जो कि तृणमूल कांग्रेस के स्ट्रांग मैन माना जाते थे, वो पुष्पा झुकेगा नहीं ऐसा कहा था, और वो खुद अपने वोट से नाम हटा लिए। तो क्या लगता है कि इतने दिनों से उनका डर यहाँ पे था?
4: हाँ, उसके लिए डर के लिए सब बाहर निकल नहीं सकता है कि ऐसा किया था। और अभी हम रनिंग सीएम जो है, वो तो आके हम लोग का रोड शो किया है, जो सब अपना से वोट दो, कोई डर नहीं करेगा। भय आउट भर सही।
2: जहांगीर खान, जो पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड बताया जाता है। चुनाव प्रचार में जहांगीर खान अभिषेक बनर्जी के इर्द गिर्द ही रहता था। दावा है कि इसीलिए जब वो फलता में विपक्षी पार्टियों को प्रचार करने से रोकता था, तो उसे रोकने की हिम्मत कोई अफसर नहीं जुटा पाता था।
3: ये भी सुनने को आ रहा था कि यहाँ पे जो लोग वोट में विरोधी जो लोग रहते थे, जो कैंडिडेट रहते थे, ये भाजपा का हो या सीपीआईएम का हो, वो उनको प्रचार भी करने नहीं दिया जाता था। क्या ये सही है?
1: एकदम सही है सर। कोई भी आदमी प्रचार करने आए तो उसके लिए वो तो जहांगीर जो है ना, वो पूरा पूरा बंद कर देते थे, यानी दुकान बंद, पूरा करने नहीं देते।
4: शाम को उठा के चला जाता था।

0: आरोप लगाई गई कि जहांगीर खान यहां पे मतदान करने नहीं देते हैं लोगों को।
1: जहांगीर खान सत्ता के दम पर ही खौफ फैलाता रहा, इसीलिए जैसे ही ममता सरकार की विदाई हुई पहले उसने खुद को चुनाव की रेस से अलग किया और अब वहां से फरार हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि जनता बेखौफ होकर वोट डाल अपने घर से निकली। फलता में दोबारा हुआ पुनर्मतदान पश्चिम बंगाल के बदलाव से खबरदार करता है। बताता है कि सिर्फ 26 दिन मतदाताओं को डराने धमकाने वाला जहांगीर खान छुप चुका, उसे कानून का खौफ सताता है। जबकि 29 अप्रैल को हुए मतदान जहांगीर पर लोगों को डराने धमकाने का आरोप लगा। फलता में राजनीतिक हिंसा हुई लेकिन सरकार बदलने के बाद दोबारा चुनाव में माहौल शांतिपूर्ण दिखा। खान छुप चुका, उसे कानून का खौफ सताता है। जबकि 29 अप्रैल को हुए मतदान जहांगीर पर लोगों को डराने धमकाने का आरोप लगा। फलता में राजनीतिक हिंसा हुई लेकिन सरकार बदलने के बाद दोबारा चुनाव में माहौल शांतिपूर्ण दिखा। जनता खुलकर वोट डालती दिखी तो जहांगीर खान का नामो निशान यहां खत्म दिखा।
0: काफी भारी मात्रा में लोग बाहर आ रहे हैं, अपनी मतदान कर रहे हैं। और अब पुष्पा, जो जहांगीर खान अपने आप को बता रहे थे, वो तो फिलहाल अब ये मतदान की जो रस्म है वो रस्म से बाहर चली गई है, लेकिन उनका जो ईवीएम मशीन है उनमें तो उनका नाम रहेगा।
2: जहांगीर खान जो शुभेंदु सरकार के आने के बाद फरार चल रहा है, उसका प्रभाव दक्षिण 24 परगना जिले में काफी ज्यादा है। इसकी वजह ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी बताए जाते हैं, जिनके आशीर्वाद से ही साल 2014 में जहांगीर खान का कद पार्टी में फलता में बढ़ना शुरू हुआ। 2014 में अभिषेक बनर्जी ने डायमंड हार्बर से लोकसभा चुनाव लड़ा, इसी दौरान जहांगीर खान उनके संपर्क में आया और फलता में राजनीतिक समीकरणों में एक बड़ा बदलाव आया। ये अभिषेक बनर्जी ही थे जिन्होंने फलता युवा तृणमूल कांग्रेस का अध्यक्ष से नियुक्त किया। इसके बाद जहांगीर खान की जिम्मेदारियां और पार्टी में रुतबा लगातार बढ़ते गए। फलता और बाद में बजबज नगर पालिका में वो तृणमूल कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण चेहरे के रूप में उभरे। ममता सरकार में जहांगीर खान की देखरेख में दक्षिण 24 परगना जिला परिषद के लोक निर्माण और परिवहन विभाग से जुड़े काम होते थे। ममता बनर्जी सरकार ने जहांगीर खान को वाय श्रेणी सुरक्षा दे रखी थी, जो आमतौर पर किसी बड़े नेता को दी जाती है। यही जहांगीर खान थे जिन्होंने अभिषेक बनर्जी से फलता में एक इलेक्ट्रिक शमशान मांगा था, ताकि चुनाव नतीजों के बाद विरोधियों को जब हार्ट अटैक आएगा तो उनका अंतिम संस्कार ठीक ठाक तरीके से किया जा सके। लेकिन 4 मई के नतीजों ने सब कुछ पलट दिया और हम इसीलिए पूछ रहे हैं कि क्या हार्ट अटैक के डर से भागा अभिषेक का पुष्पा?
3: এখানে জাহাঙ্গীর আমাকে আস্তে আস্তে বলেছে, দাদা সব দিয়েছো, একটা বৈদ্যুতিক চুল্লি করে দিতে হবে। আমি ভাবলাম 4 তারিখ ফল বেরোনোর পর কিছু লোক তো হার্ট অ্যাটাক করবে, তাদের শর্টকাটটাও ভালো করে করা আমাদের উচিত।
1: জাহাঙ্গীর খান কো ফলতা সে আপনি জিত আর মমতা সরকার কে বন জানে কা ইতনা ভরসা থা কি ও খুলেআম ইলেকট্রিক ইতনা ভরসা থা কি ও খুলেআম इलेक्ट्रिक शमशान विरोधियों के अंतिम संस्कार के लिए मांगने लगा। लेकिन वो भूल गया कि जिस जनता को उसने डरा धमका कर वर्षों वोट नहीं डालने दिया, वही जनता इस बार खेला करने जा रही। इतना भरोसा था कि वो खुलेआम इलेक्ट्रिक शमशान विरोधियों के अंतिम संस्कार के लिए मांगने लगा। लेकिन वो भूल गया कि जिस जनता को उसने डरा धमका कर वर्षों वोट नहीं डालने दिया, वही जनता इस बार खेला करने जा रही। सवाल है कि क्या हार्ट अटैक के डर से अभिषेक बनर्जी का पुष्पा बीच चुनाव मैदान छोड़कर भाग गया? क्योंकि फलता में अब न सिर्फ शांतिपूर्ण मतदान हुआ बल्कि जनता सड़कों पर बेखौफ होकर उसकी करतूतों की कहानी सुनाने लगी।
4: बचपन जैसे था अभी ऐसे लग रहा बचपन का तरफ, अभी बहुत अच्छा है।
1: फलता के अनम खान को यकीन नहीं होता है कि वो वोट डाल रहे हैं, क्योंकि ये दावा करते हैं कि पिछले 15 वर्षों में उन्हें मतदान केंद्र के पास फटकने तक नहीं दिया गया।
4: नहीं, अभी डर का नहीं, 15 साल पहले डर था लेकिन अभी डर नहीं है।
5: तब वोट दे पाते थे?
4: नहीं, 15 साल पहले वोट नहीं दे सकता था, यहाँ आने ही नहीं देता है, वहाँ से लूट देता है।
5: क्या करते थे वो लोग उस टाइम?
4: उसका दल बल है, गुंडाबाजी है, वहाँ वोट देने आते है वहाँ रोक के देता है, बोले नहीं जाना होगा आपको, आपका वोट हो गया।
1: लेकिन अब अनम खान जैसे लोग न सिर्फ वोट डाल पा रहे हैं बल्कि उन्हें डराने धमकाने का आरोपी जहांगीर खान कहां चला गया किसी को पता नहीं। ये बदलाव सिर्फ 26 दिनों में आया, वरना पहले फलता में हुई वोटिंग के दौरान सबने देखा

0: किस तरह कहीं ईवीएम पर बटन के आगे काला या सफेद टेप लगा दिया गया ताकि वो बटन किस पार्टी का है दिखे ही नहीं। ईवीएम पर पार्टी के बटन पर गोंद चिपकाकर उसे जाम करने की शिकायत भी मिली थी। कहीं प्रत्याशी की फोटो पर स्याही या रंग लगाकर बाधित किया गया तो कहीं पर तारकोल जैसा चिपचिपा पदार्थ तक लगाने की शिकायत हुई, जबकि नियमों के मुताबिक ईवीएम पर सभी उम्मीदवारों के बटन साफ साफ दिखाई देने चाहिए और किसी भी बटन को टेप, गोंद या किसी दूसरी सामग्री से ढका नहीं जा सकता। लेकिन ये बंगाल में होता आया था। सवाल है कि क्या इसकी वजह जहांगीर खान जैसे लोगों को मिली खुली छूट थी? जहांगीर खान का चुनाव से हटना और फरार होना तृणमूल कांग्रेस और खासकर उसके नेता अभिषेक बनर्जी के लिए बड़ी शर्मिंदगी, क्योंकि जहांगीर खान को सीधा बीजेपी ममता सरकार के उस कथित सिंडिकेट से जोड़ती थी जिसकी कमान दावा अभिषेक बनर्जी के हाथ में थी।
1: आम लोगों को ये पाइपो टैक्स से बहुत परेशानी, ईंट खरीदेंगे भतीजा टैक्स लगेगा, सीमेंट खरीदेंगे भाईपो टैक्स लगेगा, बल्ब खरीदोगे भाईपो टैक्स लगेगा। अब 4 तारीख से सिंडिकेट समाप्त, भाईपो टैक्स भी समाप्त।
0: कटमनी के इल्जाम ममता बनर्जी सरकार पर पहले भी बीजेपी ने लगाए, लेकिन इस बार के चुनाव में वो उसे बहुत भारी पड़े और उन्हें सरकार गंवानी पड़ी। माना जाता है कि अभिषेक बनर्जी के दम पर ही जहांगीर खान ने खुद को फलता का बेताज बादशाह घोषित कर दिया था। इसीलिए अब सवाल सीधे अभिषेक बनर्जी पर उठ रहे हैं, क्योंकि बिना पार्टी को बताए चुनाव मैदान से हटने वाले जहांगीर पर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की। सवाल है कि क्या इसकी वजह जहांगीर की अभिषेक बनर्जी से करीबी?
2: सी आई थिंक इट इज जहांगीर्स ओन डिसीजन, और ये पार्टी ने भी अपना स्टांस क्लियर किया है कि पार्टी के साथ इसकी कोई कंसल्टेंसी नहीं हुई थी। जहांगीर को शायद लगा होगा कि ही इज नॉट फीलिंग सेफ, और उनके ऊपर भी काफी थ्रेट थे जिसको लेकर वो कोर्ट भी गए थे कि उनको प्रोटेक्शन की जरूरत थी। और अगर ये इलेक्शन होता भी तो ये फ्री और फेयर इलेक्शन तो होता नहीं, तो मुझे लगता है ये सब सोच के व्यक्तिगत तौर से उन्होंने ये डिसीजन लिया है, वो सबसे अच्छा बोल पाए।
0: फलता सीट पर 70% हिंदू मतदाता है। टीएमसी से कोई उम्मीदवार नहीं होने का फायदा बीजेपी को सीधा मिल जाता है। अगर फलता से बीजेपी जीतती है तो फिर इसका एक मतलब अगले लोकसभा चुनाव में अभिषेक बनर्जी की डायमंड हार्बर से मुश्किलें बढ़ना माना जा सकता है, जहां अभिषेक की चुनावी मॉडल को तोड़ना लोकसभा में बीजेपी के लिए पहले से अब आसान हो सकता है।
3: फलता सीट पहले करीब 3 दशक तक वामपंथ का अभेद्य दुर्ग थी, जिसे बाद में टीएमसी ने अपना नया घर बना लिया। साल 2011 से 21 तक यहां तृणमूल का एक छत्र राज था। फलता में साल 2021 में टीएमसी को एक तरफा 79% वोट मिले थे। 2021 के चुनाव में टीएमसी ने यहां करीब 40,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। इसके बावजूद तृणमूल कांग्रेस ने अपने मौजूदा विधायक को हटाकर जहांगीर खान को टिकट दिया। फलता में करीब 25-30% मुस्लिम मतदाता है। बीजेपी की कोशिश बाकी राज्य की तरह यहाँ के 70% लोगों को अपने पीछे लामबंद करने की होगी। जहां तक बात डायमंड हार्बर लोकसभा सीट की है, वहां आज भले ही टीएमसी का बोलबाला हो, लेकिन अगर वहां पर जहांगीर खान जैसे बाहुबली नेता कमजोर होते हैं तो वहां भी बीजेपी का रास्ता साफ हो सकता है। आज भले ही 7 विधानसभा सीटों में एक तरफा टीएमसी का बोलबाला हो, लेकिन जहांगीर खान का पहले चुनाव से हटना और अब फरार हो जाना, इसका भी काफी एक्सपर्ट मानते हैं असर होगा, क्योंकि इस पूरे इलाके में जहांगीर खान को अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड माना जाता था और जहांगीर का फरार होना सीधे अभिषेक बनर्जी को झटका माना जा रहा है। बीजेपी जहां फलता में पूरा जोर लगा रही है, तो शुभेंदु सरकार घुसपैठ को रोकने के लिए ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घुसपैठ के खिलाफ अपने 3D फॉर्मूले पर काम करना शुरू किया है, जिसके बाद बंगाल में अवैध घुसपैठियों की पहचान भी होगी और बॉर्डर पर सुरक्षा भी पुख्ता होगी।
4: ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है माननीय, डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करेंगे।
0: पश्चिम बंगाल में घुसपैठ को बीजेपी ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया।
5: जनता से वायदा किया कि बंगाल की सत्ता में आते ही वो घुसपैठ रोकने का काम करेंगी।
6: पश्चिम बंगाल में भी बहुत जरूरी है कि घुसपैठियों को बाहर किया जाए। आपको घुसपैठियों और यहां के सत्ताधारी लोगों के इस गठजोड़ को तोड़ना ही होगा।
5: पश्चिम बंगाल में शुभ हिंदू सरकार ने 10 दिन में वो काम कर दिखाने का दावा किया है जो ममता बनर्जी ने 12 साल से लटका रखा। बांग्लादेश की सीमा पर कटीले तार लगाने के लिए शुभ हिंदू सरकार ने सिलीगुड़ी वाले इलाके में 27 किलोमीटर की जमीन बीएसएफ को सौंप दी।
7: नाउ वी आर रेडी टू हैंड ओवर 27 किलोमीटर फेंसिंग लैंड अलोंग विथ फ्यू बीओ बॉर्डर आउटपोस्ट लैंड्स एंड बीएसएफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लैंड।
5: शुभेंदु सरकार की कोशिश जल्द से जल्द बांग्लादेश की सीमा को सुरक्षित कर जनता से वादा पूरा करने की है। राज्य सरकार से जमीन मिलने के बाद बीएसएफ और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर बाढ़ लगाने का काम भी शुरू कर दिया है। ये पश्चिम बंगाल का कूच विहार है जहाँ पर अवैध घुसपैठ की वजह से सामाजिक बदलाव में दावे बरसों से हो रहे हैं, इसके बावजूद यहाँ पर तारबंदी नहीं है। शुभेंदु सरकार के यहाँ पर फेंसिंग करने के लिए बीएसएफ को जमीन देने के फैसले से हलचल देखने को मिली। बीएसएफ की टीम ने यहाँ पर काम भी शुरू कर दिया है।
8: और इसी बॉर्डर पिलर से कुछ ही देर पहले आगे बांग्लादेश आते हैं। मेरा पीछे जो पैडी फील्ड है उसको छोड़ के एक मक्की का खेत दिखा रहा है, वो मक्की खेत छोड़ के बाद ही मिलेगा आपको बांग्लादेश। और इसी जगह में इनफिल्ट्रेशन का मुद्दा होता है, बॉर्डर स्मगलिंग का मुद्दा होता है, लेकिन इस रोकने के लिए फेंसिंग जरूरी है। और इस फेंसिंग देने के लिए बार बार बीएसएफ ने वेस्ट बंगाल सरकार को जमीन मांगे थे, लेकिन जमीन मिला नहीं। इसी बॉर्डर पिलर से 400 मीटर बाद में होगा नया फेंसिंग, इसलिए जमीन लेने का कार्रवाई चालू हो गया। और कुछ बिहार जिला का दिनहाटा दो ब्लॉक में 18 एकड़ जमीन दिया जाएगा बीएसएफ को।
5: पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई 2216 किलोमीटर है, जिसमें से 1647 किलोमीटर सीमा पर बाड़ लगाई जा चुकी है। वहीं 570 किलोमीटर के हिस्से में काम होना भी बाकी। बीजेपी का आरोप रहा है कि ममता के सरकार में रहते तुष्टिकरण की वजह से इस काम में खलल पड़ता रहा।
7: 555 किलोमीटर एमन इलाका रही है जिखने राज्य सरकार चाहले बीएसएफ के जमी दीते पारत, किंतु राज्य सरकार विगत राज्य सरकार राजनैतिक कारण भोट बैंकर जो এবং তাদের যে হাই অ্যাপিজমেন্ট তুষ্টিকরণ তোষণের এজেন্ডা ছিল সেই কারণে তারা হয়তো দেয়নি।
5: लेकिन बंगाल में बीजेपी अब सरकार बनते शुभेंदु अधिकारी इस मामले में एक्शन में दिख रहे हैं, जिससे बांग्लादेश सीमा पर रहने वाले लोगों को अवैध घुसपैठ की समस्या से निजात मिलने की उम्मीद है।
9: फेंसिंग होने से बीएसएफ का काम भी कुछ हल्का होगा। हमारा जो प्रतिरक्षा है, देश का जो सुरक्षा है, ये अच्छा होगा। और स्मगलिंग और जो इन्फिल्ट्रेशन टोटली शुड बी स्टॉप।
10: इधर फोर्स आएगा तो उधर जो हमारा जो चेकिंग होता है, ये कोई गेस्ट आता है तो घर से जाना पड़ता है आदमी लेने के लिए, फिर छोड़ने के लिए ले जाना पड़ता है, वो समस्या समस्या होगा।
7: सीए ते बोला आछे 7 कम्युनिटी बा धर्म पालन करा लोकेरा तारा সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের আওতায় আসবেন এবং তাদেরকে যারা 31/12/2024 পর্যন্ত এসেছেন তাদেরকে কোনো পুলিশ কোথাও হ্যারাসমেন্ট ডিটেন্ট করতে পারবে না।
5: তো পশ্চিম বঙ্গাল মে সিএএ সে অবৈধ ঘুসপাঠিয়ে পকড়ে যায়গে, শরণার্থী আর ঘুসপাঠিয়ো মে অন্তর কিয়া যায়গা, বাংলাদেশী অবৈধ ঘুসপাঠিয়ো কি পহচান হোনে পর উনহে বিএসএফ কে হাওয়ালে কিয়া যায়গা, जो बांग्लादेश से बात करके उन्हें भेजने का इंतजाम करेगी। बीएसएफ ने जिस तेजी से बांग्लादेश की सीमा पर पिलर लगाने के लिए सर्वे शुरू किया, उससे उम्मीद की जानी चाहिए कि बॉर्डर पर फेंसिंग का काम रिकॉर्ड समय में होगा। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से चिकन नेक की 120 एकड़ जमीन सौंपने से देश की सुरक्षा मजबूत होगी। चिकन नेक में आने वाले 7 हाईवे की देखरेख केंद्र कर पाएगा, जो ममता सरकार में पीडब्ल्यूडी के पास था। लेकिन बंगाल में सरकार बदलने के बाद बॉर्डर पर हालात अब बदल जाएंगे।
3: आज गुरुवार है, अगले गुरुवार को बकरीद है, और तब बकरीद से पहले बंगाल में गायों की कुर्बानी देने वाली प्रथा को लेकर जब शुभेंदु सरकार ने पुराने कानून को ही सख्ती से पालन कराना शुरू किया, जिसमें कहा गया कि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट दिखाए गाय की कुर्बानी नहीं दी जा सकती, तो कुछ लोग फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट गए। और तब बड़ी खबर कलकत्ता हाईकोर्ट से आई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुभेंदु सरकार के फैसले के खिलाफ दायर अर्जी को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि गाय की कुर्बानी कोई अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक जगहों पर गाय और भैंस की कुर्बानी नहीं की जा सकती। इस आदेश से पहले बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवाने की शुरुआत करने वाले हुमायूं कबीर ने फिर कहा कि गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी की भी कुर्बानी होगी, ऊंट की भी होगी। सारे पशु जो कुर्बानी के लिए जायज हैं, उन्हें कुर्बानी देने से कोई नहीं रोक सकता।
11: कोई मुसलमान को गाय खाने के मना करे तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का जियो करके वो मना कर दीजिए, लेकिन कुर्बानी तो होगा ही। कुर्बानी कोई मना करेगा वो भी नहीं सुनेगा। वो कुर्बानी सत्ता में आए शुभेंदु, ठीक है, लोगों को उनको पास वोट डाला, वो सरकार चलाएगी, लेकिन मेरा 1400 साल से पहले से एक कुर्बानी होके आ रहा है। अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होगी, गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊंट भी होगी, दुम्बा भी होगी, सारे पशु जो है वो कुर्बानी का जायज है, वो कुर्बानी होगी, कोई रुक सकता नहीं।
3: और अब उस मुद्दे से खबरदार करते हैं जो उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिन से जनता का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। मुद्दा बिजली, समस्या कटौती की। पहले कुछ अपडेट बता देते हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश जारी कर रखा है कि बिजली आपूर्ति की व्यवस्था पर विशेष नजर बड़े अधिकारी रखें। बिजली की मांग बढ़ने और कई जगह बिजली कटले, कुछ अपडेट बता देते हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश जारी कर रखा है कि बिजली आपूर्ति की व्यवस्था पर विशेष नजर बड़े अधिकारी रखें। बिजली की मांग बढ़ने और कई जगह बिजली कटौती की खबरों के बाद जनता की नाराजगी को देखते हुए मध्यांचल डिस्कॉम में काम करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां 31 जुलाई 2026 तक रद्द कर दी गई हैं। राजधानी लखनऊ में ही बीजेपी के 2 विधायक उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री ए के शर्मा को चिट्ठी लिखकर बता चुके हैं कि बिजली कटने से जनता में गुस्सा है। बीजेपी के एक विधायक का वीडियो वायरल है जिसमें वो बिजली कटौती के पीछे सियासी साजिश बताने लगे, यानी समस्या है ये सब मान रहे हैं। लेकिन जब इसी बिजली कटौती से परेशान जनता सड़क पर उतरती है तो पुलिस इसे उसे धमकी देती है, कहती है कि गर्मी से पहले से परेशान हो, मुकदमे से और परेशान हो जाओगे।
5: कानपुर में जनता बिजली कटी तो सड़क पर आ गई। फिरोजाबाद में बिजली कटौती के खिलाफ पुतला जलाकर प्रदर्शन होने लगा। सहारनपुर में थाने में एसपी सांसद इकरा हसन धरना दे रही थी, धरने के बीच थाने की बिजली कट गई। कानपुर में ही एक जगह पर बिजली की अघोषित कटौती ने जनता के हाथों सड़क बंद करा दी, बैरिकेड लगाकर सड़क जाम करनी पड़ी। महिलाएं बिजली दफ्तर में घुसकर अपना गुस्सा दिखा रही हैं।
12: 5 दिन से लाइट के लिए जूझ रही है, सारी जनता जूझ रही है, छोटे छोटे बच्चों को अजारिया हो रही है।
5: लखनऊ के फैजुल्लागंज में जब बिजली ने त्राहिमाम कर दिया तो जनता समाधान खोजने खुद ही आक्रोशित होकर पहुंच गई। ये उस उत्तर प्रदेश का हाल प्रचंड गर्मी के बीच, जहां अपराधियों की गर्मी उतार देने का दावा कानून व्यवस्था करती है, लेकिन बिजली विभाग की अव्यवस्था इस कदर कि जनता को ही गर्मी में बिजली की कटौती वाले टॉर्चर से परेशान होकर जूझना पड़ रहा है। और तब
0: बिजली कटने से परेशान जनता जब बिजली मांगती है तो मुकदमे की धमकी पुलिस देती है। जब हापुड़ में आम आदमी पूछता है कि बिजली क्यों नहीं वक्त से आती तो पुलिस कहती है घर चले जाओ वरना गर्मी के बाद मुकदमे में परेशान घूमोगे।
13: सुनो सुनो
14: सुनिए पहले मेरी बात। ये रोड पे से हट जाइए, क्लियर बता रहा हूँ मैं, रोड से हट जाइए। अगर रोड पे खड़े रहेंगे मैं वीडियोग्राफी करा रहा हूँ, जो रोड पे रहे मैं मुकदमा लिखवाऊंगा। फिर बाद में कल मेरे पास बताइएगा कि एक तो पहले गर्मी से परेशान थे, मुकदमे से भी झेलना पड़ेगा।
0: ये मनीष चौहान है, हापुड़ नगर कोतवाली प्रभारी। ये इस वक्त उन आम लोगों पर बिलबिलाकर अपनी पुलिसगिरी दिखा रहे हैं जो पहले से खुद परेशान है। वो आम लोग जो दिन को किसी तरह काट कर जब घर पहुंच कर सोचते हैं थोड़ा आराम।
15: मजदूर आदमी काम कर रहे हैं, उन्हें नींद पूरी नहीं होगी तो वे कैसे कमा करेंगे। फिर ये बताओ गरीब आदमी बच्चों को पाल रहा है या पेट भर रहा है या दवाई गोली का कर रहा है, क्या करेगा पूरे दिन। तो बत्ती भाग रही है, बस मजदूर आदमी काम कर रहे हैं, उन्हें नींद पूरी नहीं होगी तो वे कैसे कमा करेंगे। फिर ये बताओ गरीब आदमी बच्चों को पाल रहा है या पेट भर रहा है या दवाई गोली का कर रहा है, क्या करेगा पूरे दिन। तो हारे थे कहीं हंस जाएंगे और फिर जाकर नींद भी पूरी ना होगी।
0: घंटों तक बिजली आई नहीं और पसीना गर्मी में बहना बंद नहीं हुआ तो परेशान आम आदमी क्या करता, बिजली घर पहुंच गया, सुनवाई होती नहीं दिखी तो रास्ता जाम कर दिया। जनता और कुछ नहीं कर पाती है, लेकिन हापुड़ कोतवाली के नगर प्रभारी को ये गलत लगा, इसे सरकारी काम में बाधा बताकर मुकदमे की धमकी देने लगे।
14: आप लोग रोड पे रहेंगे कार्य में व्यवधान होगा, व्यवधान किस सरकारी कार्य में किसी में किसी को कोई बर्दाश्त नहीं है, निश्चित मान लीजिए। रोड पे आवागमन में आपकी वजह से समस्या उत्पन्न हो रही है तो निश्चित मान लीजिए न्यूसेंस पारित कर रहे हैं आप लोग, कार्रवाई मेरी तरफ से भी होगी, क्लियर बता दिया है।
0: हो सकता है कि कुछ लोग सोचें कि सड़क जाम रहेगी तो दिक्कत तो होगी ही, लेकिन सवाल है कि हर साल गर्मी में डिमांड बढ़ने पर अगर बिजली कटती रहेगी तो फिर वादा जो सरकार 24 घंटे बिजली का करती है जनता से, उस वादे का क्या? और जिस तरह पुलिस आम आदमी को प्रदर्शन करने पर धमकाती है, क्या ऐसे ही धमकी उन नेताओं को भी दे पाती है जो अपने अपने हित की सियासत में प्रदर्शन करने सड़क पर उतरते हैं?
3: गर्मी में बिजली की डिमांड हाई हो जाती है, इसका आंकड़ा भी आया है जो बताता है कि 19 मई 2026 को दोपहर 3:40 पर पूरे भारत में बिजली की मांग इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर 260.45 गीगावाट पर पहुंच गई थी। लेकिन देश का पावर ग्रिड पूरी मजबूती से खड़ा रहा, जहां एक तरफ 6 पड़ोसी देशों की कुल मांग लगभग 52 गीगाबाइट है, वहां भारत अकेले 5 गुना ज्यादा मांग संभाल रहा था। आज भी लगातार चौथा दिन रहा जब देश में बिजली की पीक डिमांड एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। आज दोपहर देश में 3:45 पर पीक बिजली डिमांड 270 गीगावाट रही, जिसे पूरा किया गया। वहीं यूपी के बिजली मंत्री ने भी बताया कि कल शाम यानी 20 मई को प्रदेश में पीक डिमांड 30,160 मेगावाट रही, जिसे पूरा किया गया। हर साल डिमांड बिजली की बढ़ जाती है जब पारा 45 के पार होने लगता है, कूलिंग उपकरण ज्यादा चलने लगते हैं और तभी बिजली की कटौती जनता को रुलाने लगती है। उत्तर प्रदेश में तो इस संकट की वजह से जनता की परेशानी का मुद्दा खुद बीजेपी के ही नेता उठा रहे हैं।
16: बिहार में भी अब लाइट फ्री होने की चर्चा है, क्या यूपी में कभी नंबर आएगा?
17: बिहार में फ्री है लेकिन बिजली आएगी तब ना फ्री होगी, बिजली आएगी नहीं तो फ्री कही जाएगी, ना बिजली आएगी ना बिल आएगा, फ्री हो गई हम बिजली दे रहे हैं।
0: बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में फ्री बिजली के वादे पर सवाल हुआ तो बहुत ठसक से तंज कसते हुए ऊर्जा मंत्री एके शर्मा बोले थे यूपी में तो बिजली आती है, कितना आती है वो अपनी बीजेपी के ही विधायकों से ही देख लें। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से विधायक राजेश्वर सिंह उत्तर प्रदेश की ऊर्जा मंत्री को चिट्ठी लिखे हैं, कहें कि जनता बहुत नाराज है बिजली की कटौती से। इनसे पहले लखनऊ उत्तर के बीजेपी विधायक नीरज वोरा बिजली मंत्री को चिट्ठी लिख चुके हैं कि जनता परेशान भी है और आक्रोशित भी। रायबरेली की सलोन सीट से बीजेपी विधायक तो बिजली काट रहे हो ताकि सरकार के खिलाफ गुस्सा पैदा हो। अब कार में जाते हुए रायबरेली से आने वाले बीजेपी विधायक अशोक कुमार कोरी को सुनिएगा, आप समझ जाएंगे जनता क्यों प्रदेश में बिजली कट से लगता है कि तुम लोग जानबूझकर बिजली काट रहे हो ताकि सरकार के खिलाफ गुस्सा पैदा हो। अब कार में जाते हुए रायबरेली से आने वाले बीजेपी विधायक अशोक कुमार कोरी को सुनिएगा, आप समझ जाएंगे जनता क्यों प्रदेश में बिजली कट से बेहाल हो रही है।
18: ये क्या दिक्कत है भाई, सबसे ज्यादा डी बिजली घर की समस्याएं आ रही है। मतलब उसको कम से कम पिछले दो घंटों में कम से कम 25-30 लोगों का फोन आ चुका है, और हाँ सबसे ज्यादा डी बिजली घर की जो है, क्या आप लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं क्या, 8-8 घंटे, 4-4 6-6 घंटे लोगों को बिजली नहीं दे पा रहे हैं? इतना कटौती तो नहीं प्रदेश सरकार ने बोला हुआ है कहीं करने के लिए? अभी जगदीशपुर से लड़कों का फोन आया, वहां से फोन आ रहा है, अभी एक लड़का और फोन किया जो है लगातार, इतना कैसे कटौती हो रही? हमको इतना तो नहीं समझ में आ रहा कि इतना प्रदेश सरकार ने कहीं कमी कर रखी है। 8-8 घंटे, 6-6 घंटे, मैं दिन भर अपने गांव में था, कल भी मैं गांव में था, 5-5, 6-6 घंटे। किस हिसाब से आपका रोस्टर है? रोस्टर तो चलो मान लिया रोस्टर है, बिना रोस्टर वाली कटौती आप लोग ऐसी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है जानबूझ के आप लोग सरकार को बदनाम करना चाहते हैं।
0: बीजेपी के विधायक ही मानते हैं कि 6-8 घंटे की कटौती हो रही है। जिस रायबरेली की बात बीजेपी के विधायक ने की, उन्हीं की जनता को सुनिएगा।
19: न बच्चे पढ़ पा रहे हैं, न लोग अपने घर में रह पा रहे हैं, न खाना बना पा रहे हैं।
20: रायबरेली में 4-5 घंटा 6 घंटे के ऊपर बिजली नहीं आ रही। मान लीजिए थोड़ी देर हमारा इन्वर्टर 2-3 घंटा कवर कर लेता है, मगर रात में बहुत स्थितियाँ गड़बड़ है।
21: बिजली की समय बहुत ज्यादा परेशान की हुई है, रात में कितनी बार ट्रिप हो रही है कि इन्वर्टर तो मेरे तक पूरी तरह से चार्ज ही नहीं हो पा रहा है, और कम से कम रात में बोला 4-5 बार तो जाने ही जाने।
0: लेकिन क्या बिजली विभाग जनता की समस्या को समझ पाता है? कतई नहीं समझता। तभी तो बीजेपी के विधायक को कहना पड़ रहा है, भैया देख लो, हम अगर आ गए तो ठीक नहीं होगा।
18: एसडीओ साहब देखिए, मैं एक ही बार 4 घंटे खड़ा था आपके बिजली घर पे, बहुत सी चीजों में सुधार हो गया था। अब ऐसा ना हो कि विधायक को हर रोज जाकर के बिजली घर पे खड़ा होना पड़े। आपके लिए समस्या हो जाएगी फिर। इतनी भी दिक्कत सरकार की ओर से नहीं जितना आप लोग पब्लिक में कर दे रहे हैं।
0: ये हाल केवल रायबरेली का नहीं, प्रदेश के तमाम जिलों में रात में कटौती से जनता परेशान है। लेकिन अब रायबरेली के सलोन से बीजेपी विधायक इसमें सियासी साजिश का एंगल देने लगे।
18: कुछ कर्मचारियों की वजह से और कुछ ऐसे अधिकारियों की वजह से सरकार की मंशा के अनुरूप वो लोग काम नहीं करना चाहते हैं। चुनाव नजदीक है, जानबूझकर वो लोग किसी ऐसी पार्टी की मानसिकता से ग्रसित होकर के काम कर रहे हैं, जिससे सरकार की साख पे बट्टा लग रहा है।
0: ये वीडियो वायरल होने के बाद का बदलाव है या फिर वाकई बिजली संकट में कोई सियासी साजिश है? जिम्मेदारी तो उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग की होगी और उसके मंत्री एके शर्मा की, जिनकी नाक के नीचे मतलब राजधानी लखनऊ में ही दुबग्गा इलाके के लोग दावा करते हैं कि 2-2, 3-3 दिन की बिजली कटौती के बाद वो परेशान हो चुके हैं, लाचार होकर सड़कों पर उतर आए। यहीं पर प्राइवेट अस्पताल के जनरेटर जब लगातार बिजली जाने के बाद सरेंडर कर गए तो मरीज बेहाल दिखने लगे, इलाज जांच सब थम गई।
22: एक होती है मरहम पर पट्टी और दूसरा होता है घाव पर नमक। तो कुछ यही
0: सरेंडर कर गए तो मरीज बेहाल दिखने लगे, इलाज जांच सब थम गई।
22: एक होती है मरहम पर पट्टी और दूसरा होता है घाव पर नमक। तो कुछ यही होगा घाव पर नमक। लखनऊ ही नहीं, पूरे प्रदेश में इस वक्त हीट वेव है, 45 के पार कई जिलों का टेम्परेचर है। ऐसे में बिजली समस्या बढ़ी और लखनऊ का एक प्राइवेट अस्पताल, यहां की तस्वीरें आप अगर देखें तो खुद तस्वीरें देखें, खुद समझें और खुद जायजा लें। ये एक पेशेंट है जो इस वक्त यहां पर एडमिट है, लेकिन इनकी मुसीबतें और तब बढ़ गई जब बिजली ही चली गई। जरूर अस्पताल में एक ट्रांसफॉर्मर था, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मर भी क्या करे जब घंटों दिनों दिन बिजली नहीं आ रही है। पंखा दिखाएं, ये पंखा लगाया तो गया था पेशेंट की मदद के लिए, कब से यहाँ पर पंखा बंद है?
23: हो गया 2-3 दिन। 3 दिन
22: आप तब से यहाँ ऐसे ही एडमिट है गर्मी में?
23: जी ऐसे एडमिट, क्या करें?
24: अब लाइट आ जाए, इलाज होना चालू हो जाए, लाइट है नहीं, क्या करें हम लोग?
25: एमआरआई होना था।
22: एमआरआई एक्सरे भी कैसे? देखिए एमआरआई एक्सरे केवल पंखा ही नहीं है, अस्पताल में तो एमआरआई एक्सरे सीटी स्कैन सारी ही चीजों को बिजली चाहिए, और जब बिजली ही नहीं है तो क्या होगा?
24: दो दिन से हमारे मरीज की ऐसी हालत है, पैर की हड्डी टूट गई है। अब वो उसको सही समय से उसका इलाज नहीं होगा तो अब पैर का खतरा।
0: सोचिए ये हाल राजधानी लखनऊ का है, जहां बीजेपी के ही विधायक राज
24: ऐसी हालत है, पैर की हड्डी टूट गई है। अब वो उसको सही समय से उसका इलाज नहीं होगा तो अब पैर का खतरा।
0: सोचिए ये हाल राजधानी लखनऊ का है, जहां बीजेपी के ही विधायक राजेश्वर सिंह ने चिट्ठी बिजली मंत्री को लिखकर कहा कि इस बार बिजली बाधित होना, लो वोल्टेज, ट्रांसफार्मर ओवरलोड, फ्यूज फेल्योर, शिकायत के निस्तारण में देरी की वजह से जनता में संतोष बढ़ रहा है। मतलब बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि बिजली विभाग कुछ नहीं कर पा रहा। आगे चिट्ठी में लिखा कि ये समस्या अभी की नहीं है, ये तो पिछले साल भी हुआ था। अब ये तो मंत्री AK शर्मा ही बता सकते हैं कि वो काहे जनता की समस्या हर साल दूर नहीं कर पाते, जिनकी वजह से बीजेपी के विधायक उनकी कार्यक्षमता पर सवाल उठाते हैं और जनता गर्मी से बेहाल होकर परेशान रात में बिजली आने का इंतजार करते करते थक कर प्रदर्शन करने लगती है और तब पुलिस की धमकी मिलती है, गर्मी सहो वरना मुकदमा झेलो।
14: रोड से हट जाइए, अगर रोड पे खड़े रहेंगे, मैं वीडियोग्राफी करा रहा हूँ, जो रोड पे रहे मैं मुकदमा लिखवाऊंगा। फिर बाद में कल एक बात बताइएगा कि एक तो पहले गर्मी से परेशान थे, मुकदमे से भी झेलना पड़ेगा।
3: और अब खबर प्रधानमंत्री की, मंत्रियों संघ PTM यानी प्रधानमंत्री की टास्क मीटिंग की। 11 महीने बाद और इस साल पहली बार प्रधानमंत्री आज मंत्रिपरिषद की बैठक कर रहे हैं। जब 9 जून को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा साल पूरा होने वाला है तो आज की ये बैठक अहम है, जहां कहा जा रहा है कि 2 साल में मंत्रियों ने क्या टास्क पूरा किया, आगे का क्या लक्ष्य है, ये सारी रिपोर्ट ली जा रही है। साथ ही नजर आगे होने वाले मंत्रिमंडल फेरबदल पर है, किसका पत्ता कटेगा, किसकी एंट्री होगी। साथ ही अभी ईरान युद्ध के बीच ऊर्जा और महंगाई संकट पर भी चर्चा हो सकती है, और तब क्या कोई नया सुधार सरकार कर सकती है। हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा इस समय जुड़ रहे हैं। हिमांशु, अहम बैठक, बड़ी बैठक ये चल रही है, क्या मुख्य हाइलाइट्स हम समझें अभी तक?
1: देखिए बिल्कुल अंजना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक मुख्य बैठक है, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिपरिषद की जो बैठक है वो 11 महीने बाद हो रही है और मोदी सरकार 3.0 के 2 साल जो है वो 9 जून को कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसका मतलब साफ है कि उससे पहले ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद की जो बैठक है इसमें कई अहम चीजों को लेकर डिस्कशन होना है। देश की अर्थव्यवस्था पटरी पे रहे और जो गति है उसको और तेज कैसा किया जाए, इसको लेकर होना है। 10 के करीब जो है मंत्रालयों की प्रेजेंटेशन है, जिसमें रोड एंड ट्रांसपोर्ट है, पेट्रोलियम मंत्रालय है, पर्यावरण है, कृषि मंत्रालय है, एटॉमिक एनर्जी है, पावर है। तो तमाम इश्यूज पे जो है वो प्रेजेंटेशन होगी और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि 5 देशों की यात्रा से लौट कर आए हैं, तो ऐसे में वो ये भी चाहेंगे कि जो उनका एक सरकार का मंत्र है रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म, अगर आप रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म ठीक नहीं कर पाए अपने मंत्रालय में, क्योंकि 2 साल की सबकी रिपोर्ट्स ली गई है, उनसे पूछा गया कि 2 साल में आपके मंत्रालय की अचीवमेंट क्या है और उसके साथ साथ आपने कौन सी पॉलिसी, कौन सी योजना को बनाया है और उसका ग्राउंड पे अभी तक कितना जो है इम्पैक्ट हुआ है, और ग्राउंड पे अगर नहीं पहुंची तो क्यों नहीं पहुंची। इन तमाम चीजों पे अगर जिसका परफॉर्म और रिफॉर्म ठीक नहीं होगा फिर उसका जो है ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, यानी कि उसका तबादला जो है वो किया जा सकता है, उसको मंत्रिपरिषद से हटाया भी जा सकता है। तमाम चीजें हैं और 2 साल के अंदर ये मानकर चला जाता है किसी भी सरकार के अंदर जो है वो फेरबदल होता ही है, कैबिनेट का विस्तार होता है, तो ये मानकर चला जाए कि 2 साल होने जा रहे हैं। उधर नितिन नवीन की नई टीम भी बननी है और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कैबिनेट है उसका विस्तार और उसमें फेरबदल भी होगा। श्वेता,
3: बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। महंगाई का संकट रोज नए नए रूप ले रहा है। आज का महंगाई अपडेट आपको अब बता देते हैं। आज मारुति सुजुकी ने कहा कि 1 जून की मारुति की गाड़ियां जो हैं उनकी कीमत में 30,000 रुपए तक का इजाफा हो सकता है। बिहार में सुधा डेयरी का दूध 2 रुपए प्रति लीटर तक आज से बढ़ा दिया गया है। जयपुर में सरस डेयरी के दूध की कीमत 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ गई है। दिल्ली में आज ऑटो स्ट्राइक का पहला दिन रहा, ये 2 दिन और स्ट्राइक जारी रहेगी, मांग है कि दाम बढ़ाए जाएं। वहीं ग्रीन टैक्स बढ़ने पर दिल्ली में ट्रकों ने सांकेतिक हड़ताल की। और अब आपके हक और हित की खबर, देश में शिक्षा माफियाओं और ठगों को कागजों पर यूनिवर्सिटी खोलने की बात तो सुनी होगी, लेकिन अगर सरकारी यूनिवर्सिटी कागज पर चलती दिखे और वहां ना स्टाफ हो, ना छात्र हो, ना कॉलेज का पता हो, बस करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हो, तो जरूरी है खबरदार किया जाए।
0: बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, दरवाजा खुलेगा कोई नहीं मिलेगा, कमरा खाली, पूछो क्या काम हो रहा है तो कुलगुरु कहते हैं
2: क्या काम हो रहा है बता दीजिए आप।
4: शरद जी प्लीज ऐसे प्रश्न आप हमसे न पूछें।
0: आज तक ने कदम आगे बढ़ाए, विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी जहां ना स्किल सिखाने वाला कोई दिखता है ना स्किल सीखने वाला। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ताला बंद, कागज पर काम जारी, छात्रों का पता नहीं, पढ़ाने वालों की हवा नहीं, किराए के कमरों में रेंगती, ये राजस्थान की 3 यूनिवर्सिटी का हाल है। आज तक संवाददाता शरद कुमार खबरदार करने पहुंचे जहां यूनिवर्सिटी का बड़ा नाम केवल कागज पर, हकीकत में जनता का करोड़ों रुपया बर्बाद हो रहा है। राजस्थान सरकार ये रिपोर्ट आज देखे, खबरदार हो, मकसद आज तक का यही। जयपुर में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ऑफिस, बाहर चमचमाती सफेद कार, कार पर 22 चांसलर की नेम प्लेट, भीतर पहुंचते ही 3 यूनिवर्सिटी के बोर्ड दिखते हैं। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, आगे से राइट बताने वाले निशान जहां आगे लगे हैं, हकीकत में वहां से राइट लेने पर आज तक संवाददाता शरद कुमार को पता चला यहां कुछ भी राइट नहीं। सबसे पहले बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की तरफ गए, यहां कुलगुरु यानी वाइस चांसलर के कमरे में पहुंचने पर एसी पंखा चलता मिला, अंदर कोई भी नहीं बैठा मिला। आज तक संवाददाता विश्वकर्मा कौशल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के कमरे में जाने लगे, पीछे से कुलगुरु डॉक्टर देव स्वरूप आवाज लगाते पहुंचे। पता चला राजस्थान में चलती दिव्यांग यूनिवर्सिटी और कौशल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एक ही हैं, डॉक्टर देव स्वरूप, जिनके पास कुर्सी दो यूनिवर्सिटी की, लेकिन यहाँ क्या पढ़ा रहे हैं, कितने कॉलेज खुले हैं, कितने छात्र हैं, इसमें से एक का भी जवाब नहीं।
2: दिव्यांग यूनिवर्सिटी में क्या काम हो रहा है सर? स्किल यूनिवर्सिटी में क्या काम हो रहा है?
4: समय ले लीजिए, मैं बता दूंगा बाद में।
2: सर आप कितने बजे बता दीजिए?
6: सर बोल दिया सर ने बस, सॉरी।
0: दरवाजा बंद करके वाइस चांसलर अंदर चले गए, कुछ देर बाद निकले तो आज तक ने फिर सवाल किया।
2: सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, क्या कोई कॉलेज संबद्ध है इससे?
4: संबद्धता की एक प्रक्रिया होती है।
2: कोई बच्चे इसमें पढ़ते हैं?
4: अरे संबद्धता की एक प्रक्रिया होती है, तो प्रक्रिया के तहत होता है ना वो।
2: तो है कोई?
4: आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? या तो आप पूरी तैयारी करके आइए, पहले पढ़ के आइए इसके क्या उद्देश्य है, क्या इसकी कार्य योजना थी, मैं सब बताऊंगा।
2: क्या क्या उद्देश्य है आपका?
4: अच्छा एकदम से कैसे बता दूं मैं आपको ये?
2: सर कोई काम कोई हो तब तो पूछूं मैं।
4: नहीं नहीं ये ठीक है।
2: क्या काम हो रहा है बता दीजिए आप।
4: शरद जी प्लीज ऐसे प्रश्न आप हमसे न पूछें।
2: सर कोई एक काम तो बता दीजिए जो हो रहा हो।
0: दो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एक काम नहीं बता पाए, कमरे में कैमरा बंद करके बुलवाया, भीतर कहा कि इनका तो कार्यकाल पूरा होने वाला है। असल में गहलोत राज में 2023 में सरकार की विदाई से पहले बाबा आमटे दिव्यांग यूनिवर्सिटी खुली, दिव्यांग छात्रों के लिए देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बनाए जाने का दावा हुआ, लेकिन मिला क्या? केवल 4 कमरे, 4 स्टाफ और उधार के एक कुलपति। जामडोली में 10 एकड़ जमीन मिली, 3 साल में यूनिवर्सिटी में ना कोई कॉलेज आया ना कोई छात्र। लेकिन जिस दिव्यांग यूनिवर्सिटी में 2023 से ना बच्चे आए ना कॉलेज खुला, वहाँ 3,27,00,000 रुपए बैठे बिठाए खर्च कर डाले गए, 2.5 करोड़ रुपया तो वेतन भत्ते पर चला गया, 20,00,000 की गाड़ी चल गई, 7,50,000 आवास पर, बाकी 50,00,000 एसी फर्नीचर चाय पानी पर। यहाँ बैठे स्टाफ से पूछो क्या काम करते हो, किसी को कुछ नहीं पता।
2: यहाँ क्या करते हो? क्या करते हो यहाँ?
8: जॉब करते हैं।
2: क्या किस चीज का?
0: इसी के बगल चलती कौशल यूनिवर्सिटी का हाल तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। 2022 में यहीं से आज तक ने दस्तक देकर रिपोर्ट दिखाई, बताया यहां से किसी को स्किल नहीं मिल रही। 4 साल बाद भी हालात वही, बस यूनिवर्सिटी के नाम में विश्वकर्मा जरूर जुड़ गया, बाकी हालत किराए के कमरे वाली। कौशल विश्वविद्यालय का कुलगीत रचा हुआ, लिखा है कौशल की कीर्ति पताका हम नभ तक फहराएंगे। हकीकत में 2008 में वसुंधरा सरकार ने सिंगापुर की तर्ज पर देश की सबसे बड़ी स्किल यूनिवर्सिटी बनाने का सपना दिखाया। 138 तरह के स्किल ट्रेनिंग के कोर्स शुरू होने थे, जमीन भी आवंटित हुई 18 साल में, लेकिन हुआ कुछ नहीं। 4 लोग सरकारी स्टाफ के नाम पर और 4 लोग रिटायर्ड और ठेके पर। 2.5 करोड़ रुपया सरकार हर साल केवल इसलिए यहाँ खर्च कर रही है कि यहाँ से किसी कॉलेज को कोर्स करवाना हो तो अनुमति का पत्र ले जाता है। वो क्या करता है इसे पता करने का कोई संसाधन नहीं है।
7: डेपुटेशन पे है गवर्नमेंट से 4 आदमी
8: जी। 4 आदमी के सहारे पूरी है?
7: नहीं नहीं, सारे आदमी के सहारे पूरे क्यों, बाकी सब भी तो है ना।
2: विश्वविद्यालय नौ कौशल का हम इतिहास लिखेंगे कल का। राजस्थान में ये इतिहास लिखा जा रहा है कि बच्चों का भविष्य अंधकार में ढकेला जा रहा है। हमने सुना था स्कूल और कॉलेज बिना भवन और बिना शिक्षक के खोले जा रहे हैं, मगर राजस्थान में अब तो विश्वविद्यालय बिना स्टाफ के, बिना भवन के, बिना छात्र के, बिना कॉलेज के करोड़ रुपए खर्च करके खोले जा रहे हैं, जहां पर अधिकारी केवल मौज काट रहे हैं, पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है।
3: वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप रहिए खबरदार।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: कूल फैंस से घर को सजाएं।
3: कूल फैंस, बिजली बचाएं और कम आवाज करें।
2: कूल फैंस, घर की शान बढ़ाएं।
4: बस दो दो हजार
5: अगर स्कोर करेगा तो इतना इनाम जीतेगा, और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1 लाख तक जीतेगा।
6: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर, क्रेडिट स्कोर देखो और 1 लाख तक जीतो।
7: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
8: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
9: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती है।
10: भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूफ कर दिखाया यार, एनीबॉडी कैन ड्रीम।
9: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
11: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, एफर्टलेस स्टाइल, एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।
12: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
13: जीके मैक्स।
14: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
13: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
14: जेके वॉल मैक्स
13: बेस्ट पेंट,
14: जेके मैक्स।
13: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: सर हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
3: पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है।
2: आप कैसे कर लेते हो?
4: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
5: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
6: नहीं
5: और म्यूचुअल फंड्स है
6: सही।
7: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
8: Where the software engineer meets the cool UI/UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
9: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
10: इसमें माइक्रोफाइबर है।
9: माइक्रोफाइबर यानी
10: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
9: हमारे सीमेंट में नहीं है?
10: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
11: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
12: The taste of success.
13: Like I said before, we better hold the sins.
14: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
15: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
16: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
15: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
17: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
18: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
19: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
20: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: बस दो हजार
3: इधर स्कोर करेगा तो इतना सा इनाम जीतेगा, और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1 लाख तक जीतेगा।
4: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर, क्रेडिट स्कोर देखो और 1 लाख तक जीतो।
5: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
6: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
7: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
8: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
9: इसमें माइक्रोफाइबर है।
8: माइक्रोफाइबर यानी
9: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
8: हमारे सीमेंट में नहीं है,
9: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
10: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
3: आज ही paisabazaar.com पर अपना क्रेडिट स्कोर चेक करें, फ्री में, वो भी चारों क्रेडिट ब्यूरो से। लोन की जरूरत पड़ेगी तो काम आएगा।
11: इन एसोसिएशन विद
12: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
13: Cool stylish fans enhance home decor with beautiful fans.
11: Hint, bade aaram se. Vimal, bolo zubaan kesri.
14: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
15: Summer cool cooler, hawa aisi chode, puri family ko thandak se jode. Summer cool cooler, life banaye wonderful.

0: दिल्ली के रोहिणी जिले के अमन विहार की यह तस्वीर राजधानी की कानून व्यवस्था को चुनौती दे रही है। तस्वीरें इतनी विचलित करने वाली हैं कि हम इसे हूबहू आपको टीवी स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। बुधवार शाम अमन विहार इलाके में दो नाबालिगों की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। वारदात रोहिणी के सेक्टर 20 इलाके की बताई जा रही है। आरोप है कि 3 से 4 युवकों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। शुरुआती जांच में आपसी रंजिश की आशंका जताई जा रही है।
1: उसने जी हम लोग घर पे ही थे, 2:30 बजे तक लड़का हमारे घर पे ही था। उसके बाद वो नीचे आया है, उसके बाद हमें नहीं पता वो कहाँ गया हुआ। हमें तो ये बोला था कि मैं आ रहा हूँ, और हमें करीब 4:30 बजे के आसपास में, नहीं 5:30 बजे के आसपास में मैसेज मिला, किसी का कॉल आया है कि आपके लड़के को चोट लगी है बिल्डिंग स्कूल के पास में।
0: 24 घंटे में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हत्या की 4 वारदात हुई है। 19 और 20 मई की दरमियानी रात उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में श्यामलाल कॉलेज के पास 22 साल के अमानुल्लाह कुरैशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश में अमानुल्लाह कुरैशी की हत्या की गई। उत्तरी दक्षिण दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस इलाके में चाचा और भतीजे के बीच चाकूबाजी की घटना हुई, जिसमें चाचा की मौत हो गई, जबकि भतीजे की हालात गंभीर है। चौबीस घंटे में 4 मर्डर, देश की राजधानी में ये क्या हो रहा है? अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: खबरदार में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक, आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट और हरदम रहिए खबरदार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि मजहब, मस्जिद और अवैध कब्जे का गठजोड़ देश के कानून से सुरक्षा की गारंटी कैसे बन चुका है। मतलब देश के कानून से बचना है, धर्म की दीवार बना दो, सरकारी जमीन पर कब्जा करो, वहां मस्जिद या मजार बना दो, जब जमीन खाली कराई जाए तो मजहब पर हमला बता दो। मुंबई के गरीब नगर में रेलवे की 600 करोड़ की जमीन, अब सोचिए जमीन किसकी, रेलवे की, कीमत कितनी, 600 करोड़ रुपए। और उस जमीन से अतिक्रमण हटाने पहुंचे प्रशासन पर हिंसक भीड़ ने पथराव कर दिया। एक तो पुलिस प्रशासन पर हमला, दूसरा जमीन रेलवे का कब्जाया है, दावा किया गया कि बुलडोजर मुसलमानों के हक पर चल रहा है। हमारे देश में सरकारी जमीन, रेलवे की जमीन, यहां तक कि सेना की हजारों एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा एक राष्ट्रीय समस्या बन गई। और जब यह अतिक्रमण धर्म की आड़ में होता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई करना नामुमकिन बना दिया जाता है। आज बड़ा सवाल यह है कि क्या धर्म के नाम पर सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जे को सही ठहराया जा सकता है। इसके बाद आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में बकरीद की कुर्बानी पर कोहराम क्यों मचा है। शुभेंदु सरकार ने नया नोटिस जारी करते हुए एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट को सख्ती से लागू कर दिया है, जिसके बाद अब ना तो खुले में कुर्बानी होगी, ना बिना सर्टिफिकेट के मवेशी कटेंगे और नियम तोड़ा जाएगा, और नियम तोड़ा तो सीधे जेल। ममता सरकार के दौर में जिन नियमों को ताक पर रख दिया गया था, आज वो सख्ती से लागू हो चुके हैं, जबकि टीएमसी नेता इसका विरोध कर रहे हैं। और आखिर में आपको बताएंगे कि कैसे अज्ञात हमलावर पाकिस्तान में छिपे भारत के दुश्मनों के लिए काल बन चुके हैं। अब पुलवामा हमले का एक और मास्टरमाइंड आतंकी हमजा बुरहान उर्फ डॉक्टर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद में मारा गया है। पीओके में उसकी मौत हुई है, उसकी हत्या की गई है। आईएसआई ने उसे स्कूल का प्रिंसिपल बनाकर छिपा रखा था, लेकिन हमलावर ने गोलियों से भूनकर उसका भी हिसाब चुकता कर दिया। लेकिन आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम इन तस्वीरों से करना चाहते हैं जो मुंबई के गरीब नगर इलाके से आई है। ये वही इलाका है जहां बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास सरकारी जमीन पर बनी 400 से ज्यादा झुग्गियों पर बुलडोजर चलाने के लिए आया था। ये सरकारी जमीन है, ये याद रख के ही ये देखिए। इसी दौरान हिंसक भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी और ये कहा कि ये बुलडोजर मुसलमानों के हक पर चलाया जा रहा है। देखिए, ये तस्वीरें उस गठजोड़ को दिखाती हैं जो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और अवैध कब्जों के लिए सुरक्षा की गारंटी बन गया है। और यह गठजोड़ है धर्म और अतिक्रमण का। हमारे देश में सड़क, हाईवे, सरकारी संपत्तियों पर जो अवैध कब्जे धर्म के नाम पर होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। ऐसे मामलों में अतिक्रमण को धार्मिक रूप मिलता है और फिर सालों साल ये मामले या तो अदालत में लंबित रहते हैं या इनके नाम पर हिंसा, इनके नाम पर दंगे किए जाते हैं और हालात ऐसे हो जाते हैं कि ये अवैध कब्जे कैसे देखते ही देखते स्थायी हो जाते हैं। जो कल तक था ही नहीं, सड़क किनारे आप देखिएगा कि वहां पर वो धर्म

0: देश में एक बार धर्म का मामला बन जाए उसके बाद स्थिति बहुत नाजुक हो जाती है। इसके बाद भीड़ ने कैसे पुलिस पर पत्थर बरसाए उसकी तस्वीर आपके सामने है। एक तो आप कब्जा करें जमीन पर, दूसरा धर्म के नाम पर वहां पर अपने धार्मिक स्थल बना लें, तीसरा कोर्ट में जाकर मामला कानूनी रूप से लड़ें, चौथा कानूनी रूप से जब कोर्ट भी आदेश दे तो आप उसको मानने को तैयार नहीं है, और पांचवा जब पुलिस और प्रशासन अपना काम करने के लिए सरकारी कामकाज में किसी को भी रोकना कानूनन जुर्म है, ये इस देश का कानून, इस देश का संविधान कहता है। लेकिन ये पांचों चीज दरकिनार करते हुए आप इन लोगों का गुस्सा देखिए कि हाथों में पत्थर लिए ये पुलिस और प्रशासन पर टूट पड़े। यानी ये मामला विशुद्ध रूप से अवैध कब्जे का था, लेकिन इसके बावजूद इस मामले में धर्म का कार्ड खेला गया और यह दिखाने की कोशिश हुई कि इस देश में अल्पसंख्यक मुसलमानों के मस्जिद मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। लोगों ने यहां वीडियो वहां वीडियो सोशल मीडिया पर तरह तरह के वीडियो डालने लगे कि देखिए मस्जिद को ढहा जा रहा है, ये कोर्ट का आदेश था साहब। और हमारे देश में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो इस नैरेटिव को बढ़ावा भी दे रहे हैं। लेकिन आज हम अवैध कब्जे को बचाने के लिए खड़ी की जा रही धर्म की इस दीवार को गिराना चाहते हैं और आपसे ही पूछना चाहते हैं कि क्या धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, मदरसे के नाम पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को सही ठहराया जा सकता है? नहीं। इसी भारत में अनेकों उदाहरण हैं जब मंदिर भी अवैध रूप से जमीन को कब्जा करके बनाए गए हैं तो उन्हें हटाया गया है, उन्हें तोड़ा गया है। अनेकों राज्यों में यह हुआ है, गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश कई जगहों पर जहां पर भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके कोई भी धर्मस्थली बनाता है उसे तोड़ने का अधिकार है, तब पुलिस प्रशासन पर इस तरह से पत्थर नहीं बरसाए गए। और देखिए कैसे हुआ ये, कोर्ट ने फैसला दिया, वो भी तब हुआ जब अदालत ने खुद सर्वे किया, सर्वे करवाया और सर्वे कराकर कई सालों की सुनवाई की, इस अवैध कब्जे को हटाने का आदेश उसके बाद दिया है। देखिए
1: बच्चा हैंडीकैप, मेरा घर था, घर तोड़ दिया है, हमको घर के बदले हमारा घर कोई है नहीं कमाने वाला सर।
2: 50 साल हो गए हम लोग को इधर आना, और 50 साल तो ज्यादा दिन गया, लेकिन मैं 50 साल बोल रही हूँ, अल्लाह का खड़ा कर दिया रोड पर, कोई पूछने वाला हम लोग को।
3: ऐसा 1994 का 94 का इलेक्शन कार्ड है, जब से मेरी माँ वोट देते हुए आ रही है, अब बताओ हम लोग कैसा बांग्लादेशी हो गए।
4: रेलवे की जमीन हम मानते हैं, मगर हम जो इतने सालों से रह रहे, 50 साल पुराना हमारे पास डॉक्यूमेंट्स, तो हमको घर के बदले घर दिया जाएगा ना।
5: 50 साल से रह रही, बहुत 40-50 साल होते, उम्र पे ख्याल करो, कहीं गई नहीं, मैं यही रही।
6: आज बोल रहे कि इल्लीगल जगह ये है, जब हमने इसको सोना बना दिया तो आज इसको इल्लीगल बताया जा रहा है, कल दलदल तक क्यों नहीं सरकार आई थी।
7: घर तोड़ दिए, हमें बेघर कर दिया, हम रोडों पे यहाँ पे भी बैठ रहे थे, यहाँ से भी भगा रहे, ऐसे के लिए नहीं भगा रहे।
8: इनलीगल बोलने से काम नहीं चलता है, इनलीगल बोला और तुम्हारी कहानी खत्म, ऐसा नहीं है।
9: पूरे एक्टिविटी में हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि किसी को भी कोई चोट ना आए, जैसा कि आपने देखा कि डेमोलिशन की जो एक्टिविटी आज तीसरा दिन है, अभी तक उस पूरे एक्सरसाइज में डेमोलिशन की एक्टिविटी में एक भी किसी को खरोंच नहीं आई है, किसी को कोई हेल्प चाहिए थी वो भी हमने किया।
0: इन तस्वीरों को देखकर हम यही कहना चाहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करना। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक हमारे देश में जिस रफ्तार से स्कूल्स, कॉलेजेस, अस्पताल, घर, फैक्ट्रियां, कारखाने और दफ्तर नहीं बने, उनसे कई गुना रफ्तार से क्या बना, धार्मिक स्थलों का निर्माण हुआ। साल 2001 के मुकाबले साल 2011 में धार्मिक स्थलों की संख्या में लगभग 25.6% की वृद्धि हुई, जबकि इसी दौरान फैक्ट्रियां, कारखानों, दफ्तरों की संख्या में लगभग 13% की बढ़ोतरी हुई, अस्पताल और डिस्पेंसरी की संख्या में 13% की वृद्धि हुई और नए घरों की संख्या में सिर्फ 8.8% की वृद्धि। इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि हमारे देश में नए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च का तेजी से निर्माण हुआ, और इनमें भी बहुत सारे

0: धार्मिक स्थल ऐसे हैं जो या तो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाए गए, जिनका निर्माण विवादित भूमि पर हुआ है। उदाहरण के लिए, उत्तराखंड की सरकार के मुताबिक पिछले 10 वर्षों में वहां वन विभाग की जमीन पर 300 से ज्यादा अवैध मस्जिदें, 300 से ज्यादा अवैध मस्जिदें, अवैध मदरसे और अवैध मंदिरों का निर्माण हुआ। और जब सरकार ने इनके खिलाफ कार्रवाई की तो बीच में धर्म की एक विशाल दीवार खड़ी हो गई। हलाल टाइम्स के मुताबिक आज पूरी दुनिया में इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा मस्जिद जानते हैं कहां है? भारत में। इंडोनेशिया में 8 लाख मस्जिदें हैं, भारत में 4 लाख मस्जिदें हैं, बांग्लादेश में 3.5 लाख मस्जिदें हैं, सऊदी अरब में 3 लाख मस्जिदें और पाकिस्तान में 1,10,000 मस्जिदें। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारे होना कोई विवाद का विषय तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जब इन धार्मिक स्थलों का निर्माण सरकारी जमीन पर हो तो इन्हें हटाने या उनके खिलाफ कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है, और मुंबई में यही हुआ। हालांकि इस खबर का दूसरा पहलू यह भी है कि हमारे देश में जब सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा होता है तब इसे उसी समय पर रोकने की ज्यादा कोशिशें होती ही नहीं है। अगर इस मामले में भी उसी वक्त अवैध कब्जे को रोका गया होता जब रेलवे की जमीन पर मस्जिदें बनाई जा रही थी, झुग्गियां बसाई जा रही थी, तब ये समस्या ही नहीं पैदा होती। और यहां बात सिर्फ एक जगह के अतिक्रमण की भी नहीं है। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक जो मुंबई उपनगर जिला है वहां 91,181 एकड़ जमीन में से 4,194 एकड़ की सरकारी जमीन पर आज अवैध कब्जा है। यानी मुंबई की कुल 4.6% जमीन पर अतिक्रमण हो रखा है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई के ही 4,000 किलोमीटर के फुटपाथ में से 51% फुटपाथ पर अवैध कब्जा था, जिनमें कई अतिक्रमण के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई हो पाई? बिल्कुल नहीं हो पाई। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग ही सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करते हैं। अब देखिए, दिसंबर 2025 में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी के विधायक मंगेश कुडालकर ने सरकारी जमीन पर न सिर्फ अवैध कब्जा किया बल्कि इसके लिए सरकारी फंड का भी दुरुपयोग किया, जिसके लिए विशेष अदालत ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के अदालत ने आदेश दिए। सोचिए, फरवरी 2026 में ईडी ने बीजेपी नेता जेएम म्हात्रे से जुड़ी 17,74,00,000 रुपए की संपत्ति अटैच की। आरोप था कि उन्होंने फर्जी रिकॉर्ड बदलकर जंगल की जमीन अपने कब्जा ली और बाद में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को यही जमीन मुआवजा लिया और बेच दी। इसी महीने वसई विरार के पूर्व पार्षद पर आरोप लगा कि उन्होंने सीवेज प्लांट और डंपिंग ग्राउंड के लिए आरक्षित करीब 60 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा किया और फिर निर्माण भी कर लिया। बहुत लंबी सूची है ये। हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि हमारे देश में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करना बहुत आसान है और इस हमाम में सब शामिल है। हकीकत तो ये है कि हमारे देश में अतिक्रमण या अवैध कब्जा अब एक राष्ट्रीय समस्या है। और स्थिति यह है, बहुत सारे लोगों ने इस मामले में सेना की जमीन को भी नहीं बख्शा है, आर्मी की जमीन, वही सेना जो सरहद पर हमारी इंच इंच जमीन की रक्षा करती है, उस सेना की जमीन देश के अंदर कोई कब्जा रहा है। इसी देश में भारतीय सेना की 11,152 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा है। इसी देश में रेलवे की भी 1,000 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है। और जंगलों की बात तो कीजिए ही मत। जंगलों को बचाने के लिए शोर तो बहुत होता है, लेकिन इसी देश में कई लोगों ने वन विभाग की 18,55,000 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है और ये जमीन दिल्ली जैसे 5 शहरों के बराबर है। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में बकरीद की कुर्बानी पर कोहराम क्यों मचा है और आखिर बकरीद पर गाय और भैंसों की कुर्बानी की जिद क्यों की जा रही है। इसके पीछे पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार का एक नया नोटिस है जिसमें एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए। भाई, ये कानून पहले से है। और ये कानून क्या कहता है? ये कानून कहता है कि जानवरों को खुले सार्वजनिक स्थानों पर बिल्कुल नहीं काटा जा सकता। ये देश का कानून है और ये कानून बहुत पहले से बना हुआ है। किसी भी जानवर को काटने से पहले फिट फॉर स्लॉटर का सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है और ये सर्टिफिकेट भी तभी मिलेगा जब जानवर 14 साल से ज्यादा उम्र का हो या बीमारी के कारण अक्षम हो या काम के लायक ना बचा। सबसे बड़ी बात क्या है इस कानून में ये लिखी गई है बात कि जानवरों की कटाई सिर्फ प्रशासन द्वारा तय बूचड़खानों में की जा सकती है और अगर किसी के द्वारा इस नियम को तोड़ा जाता है तो उसे 6 महीने की जेल, 1,000 का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अब ये कानून पश्चिम बंगाल में पहले से था लेकिन ममता बनर्जी की सरकार में कभी इन नियमों को सख्ती से लागू नहीं किया। उस वक्त स्थिति ये थी कि बकरीद के मौके पर हाईकोर्ट इस मामले में दखल देना पड़ता था हाईकोर्ट को और इसके बाद भी इन नियमों का पालन होता नहीं था। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि बकरीद का त्योहार कानून से ऊपर नहीं माना जाएगा और लोगों को नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। जबकि टीएमसी के नेता और हुमायूं कबीर इसका विरोध कर रहे हैं और हुमायूं कबीर ने तो ये कहा है कि बकरीद पर कोई कुर्बानी बंगाल में नहीं रुकी। अब ये बहस बार बार होती है कि पश्चिम बंगाल में अब तक सबसे ज्यादा भैंस दूसरे जानवरों को मीट के लिए काटा जाता था, ये सब खुले में होता था क्योंकि टीएमसी की सरकार इस पर कोई अंकुश नहीं लगाती थी। लेकिन आज मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ आंकड़े दिखाना चाहती हूँ जिससे आपको काफी कुछ समझ में आएगा। ये पता चलेगा कि भाई देश के किन हिस्सों में क्या क्या हो रहा है। तो ये राज्यवार तरीके से पश्चिम बंगाल में कौन से जानवर खाए जाते हैं, तो गोवंश की हम आपको संख्या दिखा रहे हैं, लगभग 1,34,000 भैंस, 89,000 भेड़ जो है वो भी 19 लाख से ज्यादा, बकरी 4,76,000 मतलब 4.5 करोड़ सबसे ज्यादा, इधर लगभग 17 करोड़ सुअर, पोल्ट्री लगभग 26 करोड़। चलिए जो पोल्ट्री की बात हो रही है वैसे ही हम आपको तमाम जगहों पर दिखा रहे हैं क्योंकि बात सिर्फ पश्चिम बंगाल की नहीं होनी चाहिए। जब आप देखेंगे तो उससे कहीं ज्यादा बाकी राज्यों में है, जिसमें हमने आपके लिए टॉप 5 जो है वो निकाला है। उसमें आप देखिए केरल में साल 2023-24 में आप देख रहे हैं 9 लाख के आसपास, उसके बाद से 24 और 25 में उतना ही रहता है, फिर तमिलनाडु में 5 लाख के आसपास ही है चाहे 23-24 और 24-25 हो, मेघालय में 3,22,355 लगभग 3.25 लाख के आसपास है, पश्चिम बंगाल में 1,41,000 तो वही 1,34 के आसपास है, अरुणाचल प्रदेश में 1,44 और 1,33। तो ऐसा नहीं है, तमाम राज्यों में है जहां पर इस तरह से गोवंश का को काटा गया है। अलग अलग राज्यों की हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर कितनी। अब बात भैंसों की आ रही है तो उसमें भी आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में लगभग 89,88,000 है। तो ये भैंसों की बात हो रही है, ये आपको बता दें ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। इससे गोवंश की पहले बात हो रही थी जिन राज्यों में ये होता है। भैंसों की बात हो रही है, अब ऐसे ही आप तमाम राज्यों में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, फिर आंध्र प्रदेश में 14,14 लाख के आसपास है जो कि 16.5 लाख हो चुका है 24-25 में, फिर बिहार में भी आप देखिए लगभग ऐसा ही है, तेलंगाना में भी लगभग 14 लाख के आसपास है, केरल में भी लगभग 12-13 लाख के आसपास है और ऐसे ही पश्चिम बंगाल में इनके मुकाबले अगर आप देखिए तो 87,000 और 89,000 पूरी संख्या है। आज बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या अब भारत में मुसलमानों से बकरीद पर अपने घर के पास कुर्बानी देने का अधिकार भी छीन लिया जाएगा और क्या ये मुसलमानों पर देश में हमला नहीं है। ऐसे लोगों को आज हम अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप के देशों के कानून के बारे में बताना चाहते हैं जहां बकरीद पर जानवरों की कुर्बानी के लिए कड़े नियम है। खुद को धर्म निरपेक्षता का चैंपियन बताने वाले अमेरिका में लोग अपने घरों पर जानवरों की कुर्बानी नहीं दे सकते। वहां मान्यता प्राप्त बूचड़खानों में ही जानवरों की कुर्बानी की दी जा सकती है और इसके लिए भी बहुत कड़े नियम है जिसकी वजह से वहां बहुत सारे मुसलमान जानवरों की कुर्बानी नहीं दे पाते। ब्रिटेन में भी इसी तरह के कानून है। ब्रिटेन में मुसलमान ना तो अपने घरों में जानवरों की कुर्बानी दे सकते हैं और अगर वो किसी मान्यता प्राप्त बूचड़खाने में ऐसा करने के बारे में सोचते हैं तो इसके लिए उन्हें बाकायदा पहले अपॉइंटमेंट लेना होता है और वहां कुर्बानी की यह प्रक्रिया बहुत महंगी है और जटिल है। और कोई भी व्यक्ति अपने घर पर या किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में जानवरों को कुर्बानी के लिए नहीं रख सकता। यूरोप के देशों में भी बकरीद पर जानवरों की कुर्बानी को लेकर सख्त कानून है, हालांकि अरब और एशिया के देशों में इसे लेकर ज्यादा सख्ती नहीं है। उदाहरण के लिए यह तस्वीर साल 2016 की है जब बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बकरीद के मौके पर सड़कों पर जानवरों के खून की नदियां बह रही थी और वहां के ड्रेनेज सिस्टम ने अपना दम तोड़ दिया था। ऐसे अनुमान है कि 17 करोड़ की आबादी वाले बांग्लादेश में सिर्फ बकरीद के मौके पर 1 करोड़ जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। और बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी की सरकार में ऐसे कई सिंडिकेट्स पकड़े गए जो बांग्लादेश में गाय और भैंसों की तस्करी करते थे। और हैरानी की बात यह है कि उस वक्त इन्हें सत्तारूढ़ नेताओं का संरक्षण भी मिलता था। इनमें गाय भैंस और बाकी पशुओं की तस्करी करने वाला सिंडिकेट सबसे खतरनाक था, जो हर साल 20 लाख मवेशियों की बांग्लादेश में तस्करी कर रहा था। बांग्लादेश में जो ग्रासलैंड है, जहां पर घास उगती है, वो बहुत कम है, जिसके कारण वहां गाय भैंस बाकी पशुओं की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। वो इसके लिए भारत से पशुओं की तस्करी कराते। वहां एक गाय 1 से 2 लाख रुपए में बेची जाती है। इसके पीछे बंगाल में जो सिंडिकेट काम करता था, वो गायों को लकड़ी के फट्टे पर बांधकर नदी के जरिए बॉर्डर पार कराता था। सुरक्षा बल ने रोके नहीं, इसके लिए कई बार गायों के साथ विस्फोटक बांध दिया जाता था, ताकि सुरक्षा बल के जवान गाय के पास ना जाए और वो गाय तैरते हुए बांग्लादेश पहुंच जाए। इस सिंडिकेट को कभी रोका नहीं गया, लेकिन केंद्र सरकार ने सिंडिकेट को खत्म करने की अब कोशिश की। ईडी ने इस सिंडिकेट के मास्टरमाइंड अनुब्रत बोंडल को 2022 में गिरफ्तार किया, जिसके 36 बैंक अकाउंट्स और बाकी संपत्तियों को जब्त किया गया। और आज जब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इन सारी दुकानों को बंद करा रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि बकरीद कानून के हिसाब से मनानी होगी। बांग्लादेश में मवेशियों की तस्करी पर पूर्ण अंकुश लगेगा, तो इस पर खूब विवाद होगा।
1: स्ट्रिक्ट नियम जो 1950 का नियम में लिखा हुआ है, 14 साल के नीचे के कैटल को काटा नहीं जाएगा, और जो कैटल एकदम ही अस्वस्थ है या अपाहिज है या एज हो गया है, उसको पर्टिकुलर ऑफिसर्स उनको सर्टिफिकेट देना होगा। तो सर्टिफिकेट अगर आप लोग दिखा सकते थे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1950 का जो आईन हमारे राज्य में है, वो दूसरे राज्य में नहीं है, और ये राज्य में बहुत सख्त है। ये अलग बात है कि अभी तक वो आईन लागू नहीं किया गया था, क्योंकि पिछला सरकार बहुत सारा आईन नहीं मानते थे, वोट बैंक का हिसाब करते थे, लेकिन इस सरकार में वो नहीं होगा।
0: पश्चिम बंगाल में जब तक ममता बनर्जी की सरकार थी, तब तक वहां पर मुस्लिम तुष्टिकरण का एक मौका नहीं छोड़ा गया। यह आरोप हमेशा उन पर लगा। नवरात्रि में दुर्गा विसर्जन को रोककर मुहर्रम के जुलूस को इजाजत दी गई। कई इलाकों में ये बीजेपी का आरोप हमेशा रहा कि कई इलाकों में मस्जिदों के कारण स्थानीय मंदिरों को बंद करा दिया गया। मुसलमानों को पिछड़ों की श्रेणी में डालकर उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई। मदरसों और अल्पसंख्यकों को उद्योगों से ज्यादा बजट दिया गया। मुस्लिम इमामों को विशेष भत्ता देने के लिए योजना लाई गई। रामनवमी पर मुस्लिम इलाकों से शोभा यात्रा निकालने पर अंकुश लगाया गया, और खुले में नमाज और मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर्स पर कभी भी कोई कानून लागू नहीं हुआ, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई अगर उन्होंने नियम तोड़ा। बीजेपी का आरोप है कि ये सब करके ममता बनर्जी ने सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति की, और इस राजनीति का नतीजा ये हुआ कि आज जब ये सारे लाभ खत्म किए जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और बंगाल के मदरसे में वंदे मातरम को अनिवार्य बनाने का भी विरोध किया जा रहा है, जबकि वंदे मातरम लिखने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी, जिन्हें कहा जाता है, इसी बंगाल की भूमि से थे। और यह बात सिर्फ वंदे मातरम की नहीं है। 2 दिन पहले जब कोलकाता में एक अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया जा रहा था, तो वहां इकट्ठा हुई भीड़ ने पुलिस, केंद्रीय बल सब पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। देखिए, हैरानी की बात यह है कि इस पत्थरबाजी का पैटर्न वैसा ही था जैसे कुछ साल पहले तक कश्मीर में दिखाई देता था। आपने देखा, चाहे वो बंगाल में हो रहा हो, या फिर बांद्रा में मुंबई में हो रहा हो, या फिर पहले कश्मीर में होता था, लोगों ने पत्थर इकट्ठा किए और इकट्ठा करके पहले से जमा करके रखे थे, और जब केंद्रीय बलों का दस्ता मार्च कर रहा था, तब उन पर भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसके बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को यह कहना पड़ा कि जिस तरह कश्मीर में पत्थरबाजी खत्म हुई, वैसे ही इसे बंगाल से भी खत्म किया जाएगा। सुनिए,
2: कश्मीर में बहुत पहले खत्म हो गया, जब धारा 370 35A को एबुलिश किया भारत सरकार, तब से खत्म हो गया। कश्मीर में इस तरीके से इंसिडेंट नहीं होता। बंगाल में थोड़ा आदत इनको पड़ गया था कि हम लोग को कुछ नहीं करेगा कुछ सरकार पुलिस, पुलिस का अंदर भी डर का माहौल था, लेकिन डर का माहौल भाग गया। पुलिस कानूनी तरीके से करेगा। दे आर द लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी, दे आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट। पुलिस लोग इंजर्ड होगा और पुलिस मंत्री एसी रूम में बैठ के देखेगा। ये सब दिन होती पास्ट इज पास्ट, छोड़ दीजिए। अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, जीरो टॉलरेंस।
0: आज बहुत सारे लोग भारत की धर्मनिरपेक्षता को खतरे में बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है वो आप हमारी अगली खबर से समझ पाएंगे। 17 मई को लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर एक स्लीपर कोच में एक सिरकटी लाश बरामद हुई, जिसे बॉक्स में छिपा कर रखा गया था। जब पुलिस ने रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी को खंगाला तो ट्रेन के कैमरे देखे चारों तरफ से और लगभग 800 से 1000 सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, उसकी जांच की, पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस को पता चला कि ये लाश एक 16 साल की लड़की की थी जिसका नाम शब्बा था और उसके पिता ने उसका सिर्फ इसलिए सिर काट दिया क्योंकि वो एक हिंदू लड़के से बात करती थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने कई बार अपनी बेटी को टॉर्चर भी किया था कि वो हिंदू लड़के से बात ना करे और इसके लिए उसे घर में बंद करके भी रखा गया। लेकिन जब ये लड़की नहीं मानी तो इसके पिता को लगा कि अगर उसकी लड़की ने हिंदू लड़के से शादी कर ली तो उनकी खूब बदनामी होगी और इसी के बाद इस आरोपी ने सिर्फ धर्म के चक्कर में अपनी बेटी का सिर काटने की ये साजिश रची। सोचिए, अपनी बच्ची का सिर काटना, इसके लिए कैसी सोच चाहिए, कैसा दिमाग चाहिए, किस तरह की गलत नीयत चाहिए। पुलिस का दावा है कि हत्या अचानक नहीं हुई बल्कि पहले से पिता ने अपनी बेटी की हत्या की योजना बनाई। आरोपी ने घटना से करीब 5 दिन पहले अपनी पत्नी और दोनों बेटों को रिश्तेदारों के यहां भेज दिया। फिर 16 मई को अपने दो रिश्तेदारों को उसने घर बुलाया और इसके बाद अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। हत्या भी कैसे, बेटी का सिर धड़ से अलग कर दिया, सर तन से जुदा। यही नहीं, इस आरोपी ने अपने बेटी के शरीर के कई टुकड़े किए। सोचिए, हाथ पैर अलग काटे, धड़ अलग किया, सिर को अलग कर दिया और पुलिस के मुताबिक पूरी बॉडी बॉक्स में नहीं आ रही थी इसलिए धड़ बॉक्स में रखा गया जबकि हाथ पैर पॉलिथीन में लपेट कर बैग में रखे गए। और सोचिए, ऐसी घटना के बाद ये कहा जाता है कि कोई खतरे में। इस देश में जब मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों से दोस्ती करते हैं, उन पर लव जिहाद का आरोप लगता है, कहा जाता है कि ये क्या मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की से दोस्ती नहीं कर सकता। इस पर कई कई दिन तक सोशल मीडिया पर माहौल बनाया जाता है भाई कि क्या मुश्किल है, अगर एक मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से प्यार करता है, शादी करती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक मुस्लिम लड़की एक हिंदू लड़के से बात भी कर लेती है तो उसका पिता, उसका परिवार समझने के बजाय सिर काट देता है, शरीर के टुकड़े कर देता है। देखिए, खैर आगे बढ़ते और आपको ये बताते हैं कि हमारे देश में विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के विदेशी दौरे को लेकर कई सवाल उठाए। ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपील की लेकिन खुद चले गए। आज हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी का यह विदेशी दौरा क्यों जरूरी था और इससे हमें क्या हासिल हुआ। 15 मई से शुरू हुई इस यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली का दौरा किया। वैश्विक तनाव के बीच हुए इस दौरे में भारत ने ऊर्जा, रक्षा, क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर कई ऐतिहासिक समझौते किए और साथ ही भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर से दुनिया को साधा है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा बहुत रणनीतिक दौरा रहा, स्ट्रेटेजिक। और इस दौरे के पहले पड़ाव यानी यूएई में भारत ने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, लॉन्ग टर्म एलपीजी सप्लाई और डिफेंस सेक्टर में लैंडमार्क समझौते किए। इतना ही नहीं, अबू धाबी ने भारत में $5 बिलियन के भारी भरकम निवेश का संकल्प जताया है। यूएई के बाद प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स पहुंचे जहां रक्षा, क्रिटिकल मिनरल समेत 17 समझौतों पर मुहर लगी। दोनों देशों के रिश्ते रणनीतिक साझेदारी में बदल गए और वैश्विक स्तर पर तेल सप्लाई में आ रही बाधाओं के बीच दोनों देशों ने पश्चिम एशिया के हालातों पर गहरी चिंता भी जताई। इस दौरे के बाद अगला पड़ाव था नॉर्डिक देश। स्वीडन के साथ भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनोवेशन का एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया, जबकि नॉर्वे में तीसरे इंडिया नॉर्डिक समिट के इतर प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क तीनों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की। नॉर्वे के साथ भारत ने ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत किया है। इस यात्रा के दौरान भारत की साख पूरी दुनिया में चमचमाती दिखी। प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार और नॉर्वे के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया। इसके साथ ही रोम में संयुक्त राष्ट्र के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें वैश्विक खाद्य सुरक्षा में योगदान के लिए एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया। ये मेडल उन गिने चुने वैश्विक नेताओं को दिया जाता है जिन्होंने भुखमरी और गरीबी को मिटाने के लिए असाधारण काम किया हो। एग्रीकोला एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है किसान। इस मेडल पर भी किसान और खेती से जुड़े प्रतीक बने होते हैं और ये पुरस्कार देते हुए एफएओ के महानिदेशक क्यू डोंग्यू ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। भारत ने न सिर्फ अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया है बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा को भी बहुत मजबूत किया है। उन्होंने कोरोना महामारी के बाद भारत सरकार द्वारा चलाए गए दुनिया के सबसे बड़े फूड प्रोग्राम की भी सराहना की, जिसके तहत गरीब अगर आप देखिए तो हम अपने देश में करीब 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त राशन दिया जा रहा है उसकी प्रशंसा की गई। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भारत में 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को जो सीधे बैंक खातों में नकद मदद भेजी जा रही है उसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल दी है। और कुल मिलाकर यह मेडल प्रधानमंत्री मोदी के उस संकल्प को सम्मान है जो देश के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति को भुखमरी गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए काम कर रहा है। इस पुरस्कार को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इसे देश के अन्नदाताओं को समर्पित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भविष्य की खेती प्रोड्यूसिंग मोर पर नहीं बल्कि प्रोड्यूसिंग बेटर पर केंद्रित होगी, जिसमें जैविक विविधता को बचाने और रासायनिक उर्वरकों पर जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उन पर जो हमारी डिपेंडेंस है, हमारी जो निर्भरता है उसको घटाने पर फोकस हो।
3: भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
4: मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
0: इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी का यह विदेशी दौरा सिर्फ समझौतों और डिप्लोमेसी तक सीमित नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक विरासत का भी बखूबी प्रदर्शन किया, जिसे गिफ्ट डिप्लोमेसी कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को भारत की विविधता से जुड़े 3 बेहद खास उपहार भेंट दिए, जिसमें पहला उपहार था रोगन पेंटिंग, गुजरात के कच्छ की ये दुर्लभ वस्त्र कला है। इसमें अरंडी के तेल से बने रंगों का इस्तेमाल होता है। इसका ट्री ऑफ लाइफ मोटिव निरंतरता और जुड़ाव का प्रतीक है। दूसरा उपहार था केसराम, गुजरात के जूनागढ़ का ये जीआई टैग्ड आम अपनी बेहतरीन सुगंध और बिना रेशे वाले गूदे के लिए प्रसिद्ध है, जो गुजराती अर्थ का एक प्रतीक है। और तीसरा उपहार था मेघालय का, मेघालय के अनानास, पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में उगने वाले ये जीआई टैग्ड अनानास दुनिया के सबसे मीठे अनानास माने जाते हैं, जो अपनी कम एसिडिटी और बेहतरीन स्वाद के लिए जाने जाते हैं। इन उपहारों के जरिए पीएम मोदी ने भारत के लोकल टू ग्लोबल के संकल्प को वैश्विक मंच पर मजबूती से रखा। साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये 5 देशों का दौरा रक्षा, तकनीक, व्यापार के मोर्चे पर तो बहुत कामयाब रहा, साथ ही सांस्कृतिक कूटनीति के जरिए भारत ने दुनिया के साथ अपने रिश्तों को एक नई गर्मजोशी और गहराई दी। अब बात भारत और इटली के रिश्ते सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रहे बल्कि एक नए और बेहद मजबूत दौर में पहुंच गए हैं। अब तक भारत और इटली के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी, लेकिन अब इसे अपग्रेड करके स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष हर साल मुलाकात करेंगे, चाहे ये द्विपक्षीय हो या किसी इंटरनेशनल समिट के। इसके अलावा जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 की निगरानी के लिए दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के स्तर पर एक परमानेंट मैकेनिज्म बनाया गया। आर्थिक मोर्चे पर दोनों देशों ने एक बड़ा टारगेट सेट किया है। हर साल 2029 तक आपसी व्यापार को 2,22,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री मेलानी ने भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द से जल्द लागू करने की भी वकालत की है। इसके अलावा दोनों देशों के जो टॉप सीईओज हैं उनके साथ बैठक हुई ताकि डिफेंस हो, डिजिटल फील्ड हो, एनर्जी, ऊर्जा सेक्टर, अभी सबसे बड़ा तो संकट वही है, ऊर्जा सेक्टर में निवेश बढ़ाया जा सके। रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों ने एक इंडस्ट्रियल रोड मैप तैयार किया है। इसके तहत दोनों देशों में अब सिर्फ हथियार खरीदेंगे बेचेंगे नहीं बल्कि रक्षा उपकरणों का को डिजाइन, को डिवेलपमेंट और को प्रोडक्शन, यानी एक तो उनका कैसे ये रक्षा हथियार होंगे वो डिजाइन बनाया जाएगा, फिर उसका एक साथ निर्माण होगा और फिर उसको आगे ले जाएगा। ये भारत के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया मिशन के लिए एक बड़ा बूस्ट माना जा रहा है। इसके अलावा आर्थिक अपराधों और मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम लगाने के लिए भारत की ईडी और इटली की फाइनेंस कॉर्प्स जीडीएफ ने हाथ मिलाया है। इस बैठक में आम लोगों, प्रोफेशनल से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। भारत से नर्सों को इटली में रोजगार देने के लिए सिर्फ नर्सेज के लिए बाकायदा एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों के बीच हुए समझौतों के तहत अब भारत से नर्सों का इटली जाना, वहां पर काम करना आसान हो जाएगा। सोचिए इसके जरिए कितनी महिलाओं के लिए आने वाले वक्त में अवसर मिलेंगे ताकि वो इस रोजगार के लिए इटली जा सके। इससे भारतीय मेडिकल स्टाफ के लिए विदेशों में रोजगार के बड़े अवसर खुलेंगे। भारतीय छात्रों और रिसर्चर्स के लिए इटली जाना माना हमेशा आप देखिए आना जाना, वहां पर पढ़ाई करना आसान बनाया जाएगा। और साल 2027 को भारत और इटली के बीच संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। गुजरात के लोथल में बन रहे नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के विकास के लिए भी इटली सहयोग करेगा। और भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और इटली की स्पेस एजेंसी एसआई मिलकर कमर्शियल स्पेस सेक्टर में काम करेंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में भारत के टैलेंटेड वर्कफोर्स और इटली की टेक्नोलॉजी को एक साथ लाया जाएगा। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है और आईएमईसी यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

अब हम एक अच्छी खबर बताएंगे। पुलवामा हमले का एक मास्टरमाइंड पाकिस्तान में अननोन गनमैन का शिकार हो गया है। अननोन गनमैन, जी हां, आपका दिमाग जिधर जा रहा है सही दिशा में जा रहा है। भारत के दुश्मनों का पाकिस्तान में धीरे धीरे एक एक कर चुन चुन कर सफाया हो रहा है, और इसमें अब नया नाम पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड में से एक हमजा बुरहान उस डॉक्टर का जुड़ गया है। हमजा बुरहान को पीओके के मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने एक स्कूल के सामने गोलियों से भून दिया। ये लाइन आपने बीते दिनों कई बार सुनी होगी कि अज्ञात हमलावरों ने पाकिस्तान या पीओके में भारत के दुश्मनों को गोलियों से भून दिया। बाकी हम आप पर छोड़ते हैं। हमजा बुरहान साल 2019 में हुए पुलवामा अटैक की प्लानिंग में शामिल था। अब जाहिर है पाकिस्तान या पीओके की पुलिस या सेना तो उसे मारेगी नहीं। देखिए, पुलवामा हमले में हमारे देश के 40 जवान शहीद हो गए थे और इसका बदला हमेशा भारत में 30 की तरह था। भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में स्ट्राइक्स किया। पुलवामा हमले में शामिल मास्टरमाइंड अब धीरे धीरे मारे जा रहे हैं। मसूद अजहर बड़ी मुश्किल से ऑपरेशन सिंदूर के एक हमले से बचा था। अब हमजा को अज्ञात हमलावरों ने निपटा दिया है और बताया जा रहा है कि हमजा को कई गोलियां मारी गई। पुलवामा हमले में शामिल आतंकी इस हमले के बाद पाकिस्तान में छिपते फिर रहे थे। पाकिस्तान सरकार ISI इन आतंकियों को अलग अलग जगहों पर कवर दे रही थी। मुजफ्फराबाद के जिस स्कूल के आगे आतंकी हमजा बुरहान को मारा गया, उसी स्कूल में हमजा को प्रिंसिपल बनाया गया था। ISI ने इस आतंकी को स्कूल का प्रिंसिपल बनाकर छिपाने की कोशिश की थी। सोचिए कैसे बचाया जा रहा था आतंकी को। उन्हें पता था कि भारतीय खुफिया एजेंसियां इस आतंकी को एक न एक दिन ढूंढ निकालेंगी, और इसी वजह से आतंकी हमजा को सिक्योरिटी मिली हुई थी। एक प्रिंसिपल को मिली सिक्योरिटी को देखकर आसपास के लोग हैरान भी होते थे कि प्रिंसिपल है और इतनी सिक्योरिटी। प्रिंसिपल बनकर हमजा जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों का योजना बनाया करता था। 27 साल के हमजा बुरहान का असली नाम अर्जुमंद गुलजार डार था और वो मूल रूप से पुलवामा के रत्नीपोरा का रहने वाला था। हमजा बुरहान आतंकी संगठन अलबद्र का कमांडर था। अलबद्र में शामिल होने के लिए हमजा अवैध दस्तावेजों के जरिए पाकिस्तान गया था और फिर वहां आतंकी ट्रेनिंग लेने के बाद उसने जम्मू कश्मीर के कई युवाओं को अलबद्र में शामिल करवाया। हमजा पाकिस्तान में रहकर ही युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा था। आतंकी संगठन अलबद्र जैश ए मोहम्मद के साथ मिलकर ऑपरेट करता था और इन दोनों ने मिलकर कई आतंकी हमले करवाए थे। ऐसा देखा गया है कि पिछले 3-4 से वर्षों में भारत में, अगर आप देखिए, 3-4 वर्षों में आतंकी हमले करने वाले जितने भी आतंकी हैं पाकिस्तान में रह रहे थे, उनको धीरे धीरे मारा जा रहा है। अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भून दिया, ये आपने खूब सुना है। ये कौन कर रहा है ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि कई बड़े आतंकी किसी गुमनाम धुरंधर का शिकार हो रहे हैं। इनमें कुछ आतंकी ऐसे थे जो भारत पर हुए बड़े आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड रहे हैं। तो सुनिए पूरी लिस्ट। इसी साल अप्रैल में शेख यूसुफ अफरीदी मारा गया था। ये लश्करे तैयबा का आतंकी था, हाफिज सईद का करीबी था। फरवरी 2025 में हाफिज सईद का रिश्तेदार मौलाना काशिफ अली मारा गया था। यह आतंकी लश्कर का पॉलिटिकल विंग संभालता था। मार्च 2025 में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का एजेंट मुफ्ती शाह मीर को बलूचिस्तान में मार गिराया गया। इस आतंकी ने भारतीय नेवी के पूर्व अफसर कुलभूषण जाधव को ईरान से अगवा किया था। मार्च 2024 पाकिस्तानी सेना के एक अधिकारी मेजर दानियाल को मार दिया गया था। यह आतंकी साल 2016 में बारामूला में हुए सेना के काफिले पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था। सितंबर 2023 में आतंकी अबू कासिम कश्मीरी को मार दिया गया था। अक्टूबर 2023 में जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर शाहिद लतीफ मारा गया था। यह आतंकी पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था। मार्च 2023 में जैश के आतंकी जहूर इब्राहिम मिस्त्री को गुमनाम हमलावर ने मार दिया था। यह आतंकी कांदहार हाईजैक में शामिल था। ये 7 ऐसे आतंकी थे जिन्होंने भारत के खिलाफ बड़ी साजिशें रची, कई वर्षों तक पाकिस्तान में छिपे रहे, आतंकी हमले करवाते रहे, लेकिन साल 2022 के बाद से पाकिस्तान में छिपे करीब 26 से ज्यादा छोटे बड़े आतंकी गुमनाम हमलावर का शिकार हो चुके हैं। सारे आतंकियों के मारे जाने का पैटर्न लगभग एक ही है। गुमनाम हमलावर अचानक आते हैं, फिर आतंकियों को गोलियों से छलनी कर देते हैं और ये सुनिश्चित करके जाते हैं कि आतंकी किसी भी हालत में बचे नहीं। यही वजह है कि पाकिस्तानी आतंकी बिलों में छिपे हैं।
या फिर हमजा बुरहान की तरह पहचान बदल कर जी रहे हैं। दरअसल पाकिस्तानी सेना ISI को भी पता है कि उनके पालतू आतंकियों को पाकिस्तान में भी कोई धुरंधर ठिकाने लगा रहा है और इसीलिए वो भी अपने आतंकियों की जान जी जान से बचा रहे हैं, लेकिन मुकाबला ऐसा है जिसमें वो एक एक कर मारे जा रहे हैं। सोचिए, भारत में ही रहने वाला अर्जुमंद गुलजार डार पाकिस्तान जाकर आतंकी हमलावर बुरहान बन गया और उसने भारत को ही जख्म दिए। ऐसे ही लोगों को देश का गद्दार कहा जाता है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक बंदूक तो नहीं उठाई, लेकिन देश में रहकर देश के लोगों को मारने वाले आतंकियों की मदद करने से पीछे नहीं हटते। ये खबर आपका दिल तोड़ देगी। कोई भी भारतीय पिछले साल हुए पहलगाम अटैक को नहीं भूल सकता। पाकिस्तानी आतंकियों ने बैसरन घाटी में हिंदुओं से उनका धर्म पूछकर पत्नियों के सामने उनके पतियों को गोली से उड़ा दिया था। क्या आप जानते हैं कि इस हमले को नाकाम किया जा सकता था? ऐसी रिपोर्ट आ रही है। दो कश्मीरी युवक जो सैलानियों के पैसों से अपना और अपने परिवार का पेट पालते थे, उन्होंने आतंकियों को देखा। उनकी आरोप है कि उन्होंने उनकी मदद की, उन्हें खाना खिलाया, रहने की जगह दी और हमले से पहले उनकी लोकेशन देखी, लेकिन इसके बाद भी इन दोनों ने सुरक्षा बलों को कुछ नहीं बताया। आतंकियों को मासूमों का खून बहाने दिया। इसी के साथ हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा, देखते रहिए आज तक।

0: To get the right car, you've got to drive Reichert. Drive Reichert, drive.
1: Choose from thousands of vehicles. Ford, Chevy, Buick, GMC, Kia, Hyundai, Nissan, Mitsubishi, Genesis, and Central Ohio's largest selection of certified pre-owned. Plus, only Reichert gives you our 72-hour exchange policy and the original $1,000 best value guarantee.
0: Drive. Dealing.
1: Visit Reichert.com for complete details on exchange and price guarantee.
2: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away.
5: You're listening to CNBC.
6: This is 80s hits exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
7: Keep it on smooth jazz.
8: This is Roots Reggae.
9: Exclusively on TuneIn.
10: This is classic hip-hop.
11: Exclusively on TuneIn.
4: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected. The shows, music, and news you love anytime you want.
12: मैं करता हूँ ना
13: मैं करूँगा
14: ओए कार्ड्स की दुकान इतने कार्ड्स कौन रखता है
12: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए
14: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस अनलिमिटेड स्टे डाइनिंग एंड मच मोर
12: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB दोनों ही चैंपियन है
14: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड PNB मेरा अपना बैंक
15: केंट से पानी होता है 100% प्योर
16: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है
15: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी
17: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
18: Ye third nahi, 13 degree ka case hai.
19: Maal maine churaya hai. Shauchalay ke peeche people ke niche dabaya.
18: हवालात की हवा अच्छे अच्छों को सुधार देती है सुकला
20: समर कूल कूलर
18: हवा अच्छी है ठंडक सच्ची है समर कूल लाइफ बनाए वंडरफुल
21: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार फील आ जाती
22: है भाई तू अपना है तेरा सफर मुझे भी करना है तूने प्रूव कर दिखाया यार एनीबॉडी कैन ड्रीम
21: मुझे लगा मैं नहीं पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है
23: ब्रीदेबल फैब्रिक्स ऑसम कंफर्ट एफर्टलेस स्टाइल एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद
24: आपके पास दो ऑप्शंस हैं या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो E3 प्रोडक्ट्स ये रिश्ता लंबा चलेगा

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
2: प्रिया कैसा लगा मेरा स्टंट?
3: विक्रम एक हिंट तो देते।
4: विक्रम
3: हिंट
2: बड़े आराम से
5: कूल फैंस से घर को सजाएं।
6: कूल फैंस बिजली बचाएं और कम आवाज करें।
5: कूल फैंस घर की शान बढ़ाएं।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
0: हिंट, बड़े आराम से। विमल, बोलो जुबा केसरी।
3: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेर आर यू।
4: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
5: भाजपा संवैधानिक आरक्षण के मामले में सत्ता का फाउल प्ले खेल रही है। भाजपा को भाजपा वो एम्पायर है जो सदियों से चली आ रही इस गैर बराबरी की इस लड़ाई को बेईमानी से जीतना चाहती है। ये रूल्स भी बेईमानी कर रही है और डिसीजन में भी रूल्स में तो बेईमानी कर ही रहे हैं, वहीं डिसीजंस में भी बेईमानी कर रहे हैं। इनकी कोशिश तो कोर्ट रूपी थर्ड एम्पायर को भी मैनेज करने की रहती है। भाजपा नहीं चाहती है कि सबको बराबरी का मौका मिले। वंचित समाज को सदियों से पढ़ाई नौकरी से वंचित रखा गया। भाजपा आरक्षण की उस सीढ़ी को खंडित कर देना चाहती है।

0: मंत्रि परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री ने देखा मंत्रालयों का रिपोर्ट कार्ड, कामकाज पर मंत्रियों ने दिया प्रेजेंटेशन, वैश्विक स्थिति, ऊर्जा संकट पर भी चर्चा। पीएम के विदेश दौरे से बड़े निवेश को मिली स्वीकृति, पीयूष गोयल का बयान, सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा समेत कुल 57 बड़े समझौते, विपक्ष ने फिर उठाए सवाल। मारुति ने कारों के दाम में किया 30,000 तक का इजाफा, जून से लागू होंगी नई कीमतें, बिहार में सुधा, राजस्थान में सरस ने दूध के दाम में 2 रुपए की बढ़ोतरी की। नीट कांड को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को फिर घेरा, पोस्ट में लिखा, यहां पेपर लीक से युवाओं का भविष्य हो रहा है बर्बाद, वहां इटली में मोदी रील बना रहे हैं। बंगाल में बकरीद पर गायों की कुर्बानी पर बरकरार रहेगी रोक, शुभेंदु सरकार के निर्णय पर रोक लगाने वाली याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट से खारिज, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत है आपका दस्तक में। रात के 10 बज रहे हैं, आज तक पर आप देख रहे हैं दस्तक, और आज दस्तक की शुरुआत एक ऐसी हत्या की खबर से जो पाकिस्तान के लिए जोर का झटका है और हमारे देश भारत के लिए सुकून देने वाला। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे धुरंधर ने पाकिस्तानी हमजा को निपटा दिया। वो हमजा बुरहान जो 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड्स में से एक था। आतंकवादी हमजा को पीओके यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में गोली मार दी गई। खूंखार हमजा को वर्ष 2022 में भारत सरकार ने यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया था और अब उसका अंत हो चुका है। तो आइए हम आपको दिखाएं कि कौन है वो धुरंधर जो पाकिस्तान में छिपे आतंकवादियों को एक एक करके निपटा रहा है।
3: धुरंधर ने पाकिस्तानी हमजा को निपटाया, आतंकियों में खौफ छाया। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पीओके में सरेआम हत्या। हाफिज सईद डरा, मसूद अजहर दहला, लखवी का कांप उठा कलेजा। पाकिस्तान में धुरंधर कौन, एक के बाद एक आतंकियों का काम तमाम। हमजा बुरहान का पूरा सच पुलवामा से लेकर मुजफ्फराबाद तक। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में आराम से अपनी जिंदगी जी रहे आतंकी हमजा बुरहान के सामने काल बनकर कौन आया, इस सवाल का जवाब है खड़ा धड़ हो रही आतंकियों की हत्याएं, जिन्हें कोई अज्ञात हमलावर आता है और काम तमाम करके चला जाता है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के अंदर कई आतंकियों पर न सिर्फ बड़े हमले हुए हैं बल्कि कई की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या भी हो चुकी है, और इन हत्याओं के पीछे किसी अज्ञात हमलावर का हाथ बताया जा रहा है। पिछले दिनों लश्करे तैयबा फाउंडर चीफ और हाफिज सईद के बराबर का दर्जा पाने वाले आमिर हमजा पर हमला होता है, लेकिन वो बाल बाल बच जाता है। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बशीर अहमद पीर की मौत हो जाती है। वो जम्मू कश्मीर में हथियारबंद आतंकवादियों की भर्ती करने और घुसपैठ कराने के लिए जिम्मेदार था। अल बद्र के कमांडर सैयद खालिद रजा और जैश ए मोहम्मद के मिस्त्री जहूर इब्राहिम को कराची में अलग अलग हमलों में गोली मार दी गई। और अब नंबर लगा है पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान का। आतंकी हमजा बुरहान की पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में गोली मार कर हत्या कर दी गई। मुजफ्फराबाद के AIMS हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर घुसकर सीधे हमजा के सिर में गोली मारी जाती है और आतंकी हमजा बुरहान वहीं ढेर हो जाता है। हमजा बुरहान उर्फ अर्जुमंड गुलजार डार स्कूल के अंदर अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। 14 फरवरी 2019 पुलवामा जम्मू कश्मीर दोपहर 3:30 बजे। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर विस्फोटक से लदी एक कार आती है जो सीधे सीआरपीएफ के काफिले की बस से टकरा जाती है और इस आतंकी हमले में देश के 40 बहादुर जवान शहीद हो जाते हैं। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और पुलवामा अटैक की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली। ये पुलवामा अटैक भारत सरकार के लिए बहुत बड़ा और गहरा जख्म था और जब इस हमले में आतंकी हमजा बुरहान के मास्टरमाइंड होने का पता चला तो भारत ने 2022 में उसे यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया। आपको बता दें कि पाकिस्तान जाने से पहले हमजा बुरहान कभी दक्षिण कश्मीर का कमांडर था। साल 2018 में हमजा और उसकी ब्रिगेड ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो भी रिलीज किया था जिसमें वो खुद अपना नाम बोलता है और अपने मिशन के बारे में बताता है।
4: मैं हमजा बुरहान, डिविजनल कमांडर साउथ कश्मीर, आपके सामने आज हाजिर हुआ हूँ इस वजह से कि जो तहब में अलबदर मुजाहिदीन ने कार्रवाई की है जिसमें कुछ मुर्तजीन जख्मी हुए हैं। हम अलबदर मुजाहिदीन इस कार्रवाई की जिम्मेदारी कबूल करते हैं और आइंदा भी ऐसे ग्रेनेड और पुलिस वालों पे हमले, एसटीएफ पे हमले, पॉलिटिकल वर्कर्स के हमले की जिम्मेदारी आज से ही अहद अपना बनाते हैं। इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से आज से ही हमारा टारगेट ये मुर्तदीन होंगे और लाजिमन जो जम्मू कश्मीर पुलिस है इसको हम आज से ही ये आखिरी वार्निंग होगी इनके नाम। कोई वार्निंग हम नहीं, इनके लिए बेशक हमारा बस एक ही पैगाम होगा, अगर ये पीछे मुड़े तो ठीक वरना ये अपने अंजाम को नजर रखे।
3: रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलवामा और शोपिया में हमजा का नेटवर्क तेजी से फैला। उसने यूसुफ बलोच नाम के एक हथियार सप्लायर के साथ मिलकर भर्ती और हथियार पहुंचाने का काम शुरू किया। हर महीने नए लड़कों को आतंकी संगठनों में शामिल किया जाता और कुछ ही समय बाद उनमें से कई मारे जाते। आरोप है कि ये पूरा नेटवर्क विचारधारा से ज्यादा पैसों और फायदे के लिए चलाया जा रहा था। श्रीनगर के लावायपुरा एनकाउंटर का मामला भी उसके नाम से जोड़ा गया। हमजा बुरहान उर्फ अर्जुमन गुलजार डार पुलवामा के रात्रिपुरा इलाके का रहने वाला था, लेकिन साल 2017 में वो पाकिस्तान चला गया और हमजा खतरनाक आतंकी संगठन अल बद्र से जुड़ जाता है। अल बद्र घोषित आतंकी संगठन है। अल बद्र में शामिल होने के बाद हमजा 2019 में पुलवामा हमले की साजिश में शामिल होता है। रिपोर्ट के मुताबिक हमजा बुरहान पाकिस्तान में कारोबार कर रहा था और ऑनलाइन माध्यम से युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा था। क्योंकि बुरहान की मेडिकल फील्ड में दिलचस्पी थी तो उसे आतंक की दुनिया में डॉक्टर के नाम से भी बुलाया जाता था। लेकिन अब हमजा बुरहान उर्फ अर्जुमन गुलजार डार का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो चुका है। किसी अज्ञात ने हमजा को गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया। अब पुलवामा में हमजा बुरहान का परिवार मौत का मातम मना रहा है।
5: करीबन 2 बजे मुझे फोन आया मलंगपुरा कैंप से कि आपका बेटा अर्जुमन गुलजार मुजफ्फराबाद में उस पर अटैक हो गया और मारा गया। इसके बाद MIU जो इनकी एजेंसी है उनसे भी मैंने रابطہ किया, उन्होंने भी ये कन्फर्म किया। पुलवामा पुलिस ने भी उनको भी उन्होंने ये कन्फर्म कर दिया कि उसे मुजफ्फराबाद में अटैक हो गया और मारा गया।
6: हम पाकिस्तान वैलिड डॉक्यूमेंट्स पे गए थे, थ्रू वीजा पासपोर्ट के जरिए वो गए थे MBBS के लिए पाकिस्तान। तो फिर 1-2 महीने हमारा रابطہ था उससे, तो बोल रहे थे कि हमें

0: यहाँ के कानून की नजर में या सबकी नजर में गलत है, तो हमने फिर उससे राबता छोड़ दिया, सब कुछ गलत हो गया। तो उसकी वजह से हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसे कि मेरे मेरे भाइयों को, हम सबको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मेरा एक भाई है, मुझसे छोटा है, और वो 2019 के केस बेच का है, उसने केस क्वालिफाई किया है, आज 4 साल से वो जेल में है।
1: हमजा बुरहान जहन्नुम पहुंच चुका है, लेकिन अब दहशत फैली है पाकिस्तान में पल रहे आतंकी संगठनों और आतंक के आकाओं में। चाहे वो हाफिज सईद हो, मौलाना मसूद अजहर हो या फिर जकीउर रहमान लखवी, आतंक के इन आकाओं के नाम यूएपीए की लिस्ट में शामिल हैं, और जो हमजा बुरहान मारा गया है उसका नाम भी यूएपीए की लिस्ट में शामिल था। पुलवामा से दीप फरीद के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
2: और आइए अब हम आपको हमारे संवाददाता अरविंद ओझा के पास लिए चलते हैं। अरविंद बताएंगे कि आतंकवादी हमजा बुरहान की इनसाइड स्टोरी क्या है, और अरविंद क्यों आजकल पाकिस्तान में आतंकवादियों और आतंकी संगठन में धुरंधर का खौफ छाया हुआ है।
3: तो सही, देखिए मैं आपको बताता हूं विस्तार से कि आखिर हिंदुस्तान के मोस्ट वॉन्टेड आतंकी हमजा बुरहान को पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने कैसे मौत के घाट उतार दिया। तो दरअसल दोपहर के वक्त दो अज्ञात हमलावर मुजफ्फराबाद में उस स्कूल पर पहुंचते हैं जिस स्कूल में हमजा बुरहान प्रिंसिपल था। अब प्रिंसिपल दरअसल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने प्रिंसिपल बनाकर इसे कवर दिया था। असल काम हिंदुस्तान में, खासतौर से जम्मू कश्मीर में, आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना था। तो दो अज्ञात हमलावर उस स्कूल के पास पहुंचते हैं, हमजा बुरहान ऑफिस में बैठा रहता है, अज्ञात हमलावर धड़ल्ले से उस ऑफिस में घुसते हैं और बेहद करीब से 3 गोलियां सिर पे मारते हैं। हमजा बुरहान की मौके पर ही मौत हो गई। देखिए, हमजा बुरहान को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने सिक्योरिटी भी दी हुई थी, AK-47 से लैस जवान उसकी सुरक्षा में तैनात रहते थे। अब स्कूल के प्रिंसिपल को सुरक्षा क्यों दी गई? तो दरअसल वो काम आतंकी गतिविधियों वाला कर रहा था, और सुरक्षा इसलिए दी गई थी कि बीते दिनों जिस तरह से एक पैटर्न के तहत पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकी मारे जा रहे हैं, उसके बाद हमजा बुरहान की सुरक्षा बढ़ाई गई थी, और अज्ञात हमलावरों के डर से जो पाकिस्तान में इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकी है वो न सिर्फ सिक्योरिटी लेने लगे हैं बल्कि वो अपनी लोकेशन लगातार चेंज कर रहे हैं। कई आतंकी अंडरग्राउंड हो गए हैं। तो पहले जो हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान में खुलेआम घूमते थे भारत में हमले करा के, लेकिन अब वो दिन नहीं रहा। अब वो पाकिस्तान में भी अपने आप को महफूज नहीं समझ रहे हैं, कि क्योंकि कोई अज्ञात हमलावर उनका पीछा कर रहा है, और कभी भी जिस तरह से हमजा बुरहान को गोली मार के मौत की नींद उतारा, कुछ उसी तरह से उनका भी हाल न हो जाए, इस वजह से वो भी डर के थर थर कांप रहे हैं।
2: बिल्कुल अरविंद, अरविंद ओझा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। और अब खबर टीम मोदी की। 5 देशों के विदेश दौरे से लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंत्रिपरिषद की बैठक की है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उन्हीं के दफ्तर सेवा तीर्थ में यह बैठक हुई। इस वर्ष की यह पहली मंत्रिपरिषद की मीटिंग है, और ये ऐसे समय में मीटिंग हुई है जब मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें काफी तेज हैं। बड़ी खबर इस समय की यह है कि जल्द ही मोदी कैबिनेट में फेरबदल होगा। प्रधानमंत्री के ऑफिस सेवा तीर्थ में मंत्रिपरिषद की बैठक खत्म हो चुकी है, चर्चा हुई है, रिपोर्ट कार्ड सारे मंत्रियों ने अपना रिपोर्ट कार्ड दिया है, यानी कि अपने अपने मंत्रालय की परफॉर्मेंस को बताया है, प्रेजेंटेशन दिया है, बताया कि हमने अपने अपने मंत्रालयों में क्या क्या कामकाज किया है, उसकी समीक्षा वहां पर हुई है, ये रिपोर्ट कार्ड हुई है, मिडिल ईस्ट संकट आर्थिक असर पर भी चर्चा हुई है, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना, यानी कि बहुत सारे नए मंत्री शामिल हो सकते हैं। उनमें कुछ ऐसे मंत्री, ऐसे नेता भी हैं जो पहले मोदी मंत्रिमंडल में थे, इस बार नहीं है, उनका नाम भी आ सकता है, वो भी आ सकते हैं, और कुछ नए चेहरे भी आ सकते हैं, लेकिन कुछ लोग हटाए भी जा सकते हैं। 2 संवाददाता हमारे साथ, हिमांशु मिश्रा और मंजीत नेगी, दोनों हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं दिल्ली से। हिमांशु, मंत्रिमंडल विस्तार तो हो रहा है, फिर बदल इसे कह लीजिए वो भी हो रहा है, तो क्या नए चेहरे आएंगे, या वो चेहरे जो पिछले मंत्रिमंडल में मोदी के थे उनमें से कुछ को जगह मिल सकती है, नाम भी अगर आप

0: तो बता दें, नहीं तो हम आपसे नाम पूछ लेंगे।
1: देखिए सईद, क्योंकि इस तरीके की जो सियासी हलचलें हैं वो ये साफ तौर पर इशारा भी कर रही हैं कि दो साल के करीब जो है वो अब हो चुके हैं और 9 नवंबर को मोदी सरकार 3.0 के दो साल होंगे, तो दो साल में ये मान के चला जाता है कि कैबिनेट में फेरबदल और विस्तार होता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो जरूरी है। और 11 महीने बाद जब मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है और उससे पहले सभी मंत्रालयों की जो है दो साल की उपलब्धियों का, उनकी योजनाओं का, उनकी जो भी पॉलिसीज रही हैं उनको लेकर रिपोर्ट मंगाया गया कि आपने अभी तक क्या उपलब्धियां हासिल की है, कौन सी नई योजना लेके आए, कौन सी पॉलिसी बनाई है, कौन सी पॉलिसी, कौन सी योजना कितनी ग्राउंड पे पहुंची है और अगर नहीं पहुंची है तो क्यों नहीं पहुंची है, इन सब की रिपोर्ट है। और उसके साथ साथ क्योंकि आप देखिए दो साल हो गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म। अगर आप देखें तो अगर आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो फिर रिफॉर्म करना पड़ेगा और ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, तो ये मान के चलिए कि ये प्रोसेस है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि जब भी संबोधित करते हैं अपने मंत्री को तो वो बताते हैं कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना, और आज जो हमारे सूत्रों के हवाले से हमको खबर मिली है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए ईज ऑफ लिविंग पे फोकस करना होगा और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती लाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा।
0: नाम नहीं बताएंगे
1: सईद? देखिए सईद, क्योंकि जब तक मंत्रिमंडल के विस्तार की या फेरबदल की खबर ना आ जाए, तब तक राष्ट्रपति भवन तक ये सारी चीजें ना पहुंच जाए, तब तक सिर्फ अटकलें ही हो सकती है। और मुझे लगता है अटकलें लगाना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है।
0: मैंने आपके पास अंदर की खबर भी होती है, नाम आपको बता भी होते हैं तो आप बताते नहीं है, लेकिन ठीक है, आपकी प्रोफेशनल।
1: पांच देशों की जो उन्होंने यात्रा की है उसका जानकारी खुद ब्रीफिंग जो है वो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की है कि उस पांचों देशों की यात्राओं में भारत को क्या मिला है।
0: बिल्कुल हिमांशु, मंजीत भी हमारे साथ है। मंजीत, इस वैश्विक आर्थिक संकट के दौर में ये फेरबदल किस तरह से देखते हैं आप इसे?
2: देखिए सर, करीब 5 बजे बैठक शुरू हुई थी और 4.5 घंटे इस बैठक का चलने का मतलब यही है कि बहुत विस्तार के साथ प्रधानमंत्री ने मौजूदा हालात पर भी चर्चा की है और उनके जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, 8 से 9 मंत्रालयों का प्रेजेंटेशन रखा गया था। शुरुआती जो सबसे पहला प्रेजेंटेशन था वो कॉमर्स मंत्रालय का था, क्योंकि वो सीधे इस क्राइसिस से जुड़ा है। वेस्ट एशिया का जो क्राइसिस है उसमें किस तरह से जो चीज़ें, चाहे ऊर्जा का संकट हो, चाहे जरूरी साजो सामान का संकट हो, उसको कैसे सरकार डील कर रही है, क्योंकि लगातार देश में चाहे पेट्रोल डीजल की किल्लत की बात हो या बाकी जरूरी चीज़ों की किल्लत को है लेकर है, उस पर प्रधानमंत्री ने सीधे उन महत्वपूर्ण मंत्रालयों का प्रेजेंटेशन लिया। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण सीसीएस के मंत्रालय हैं, गृह मंत्रालय हैं, वित्त मंत्रालय हैं, विदेश मंत्रालय हैं और बाकी जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं 8 से 9, उनका उनसे जानकारी ली गई। और न सिर्फ दो साल के कार्यकाल की जानकारी सईद, बल्कि इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं पश्चिम एशिया युद्ध को लेकर, उससे कैसे सरकार के निपटने की तैयारी है, उस पर भी विस्तार से बात हुई है।
0: बिल्कुल ठीक है मंजीत, बहुत धन्यवाद मंजीत और हिमांशु, हमारे दोनों संवाददाता हिमांशु मिश्रा, मंजीत नेगी, धन्यवाद आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में बहुत जल्द फेरबदल होने वाला है। और अब खबर पश्चिम बंगाल की। जी हां, बंगाल के फलता में आज दोबारा मतदान हुआ जिसमें बंपर वोटिंग हुई। फलता में 87.85% वोटिंग हुई। मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। फलता में जहां मतदाताओं में उत्साह दिखा तो वहीं टीएमसी के नेता और प्रत्याशी जहांगीर खान गायब दिखे। जहांगीर खान 29 अप्रैल को खुद मतदान में खुद को पुष्पा बता रहे थे, दावा कर रहे थे कि वो झुकेंगे नहीं, लेकिन 26 दिन बाद फलता में अभिषेक बनर्जी के चहेते इस पुष्पा का अब कोई अता पता नहीं है, ये हो चुका है फरार।
3: 15 साल से हम लोग जो वोट दे ही नहीं दे रहा पाया था, अभी जो है पूरा माहौल जो है, हम सब मेरे मर्जी से वोट दे रहा था, वोट दे रहा है, खुशी से वोट दे रहा है, सुबह से ही पोलिंग चल रहा है, वोट दे रहा है, हम कोई प्रॉब्लम नहीं।
4: सोचिए, ये उस देश के नागरिक बोल रहे हैं जिन्हें संविधान से वोट देने का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन पश्चिम बंगाल के फलता में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो खुलकर अब पूरे देश को बताते हैं कि संविधान से मिले उनके मौलिक अधिकार को भी जहांगीर खान नाम का शख्स अपनी जेब में लेकर घूमता था। फलता में लोग न सिर्फ वोट डालने से रोके जाते थे, बल्कि इसकी वो शिकायत तक किसी से नहीं कर सकते थे। जहांगीर खान के नाम का खौफ कुछ ऐसा रहा कि मतदान के दिन घर से लोग पहले नहीं निकल सकते थे।
5: जहांगीर खान जो कि तृणमूल कांग्रेस के स्ट्रांग मैन माना जाते थे, वो पुष्पा झुकेगा नहीं ऐसा कहा था और वो खुद अपने वोट से नाम हटा लिए। तो क्या लगता है कि इतने दिनों से उनका डर यहाँ पे था?
6: हाँ, उसके लिए डर के लिए सब बाहर निकल नहीं सकता है कि ऐसा किया था। और अभी हम रनिंग सीएम जो है वो तो आके हम लोग का रोड शो किया है, जो सब अपना से वोट दो, कोई डर नहीं करेगा। भय आउट भर सही।
4: जहांगीर खान जो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड बताया जाता है, चुनाव प्रचार में जहांगीर खान अभिषेक बनर्जी के इर्द गिर्द ही रहता था। दावा है कि इसीलिए जब वो फलता में विपक्षी पार्टियों को प्रचार करने से रोकता था तो उसे रोकने की हिम्मत कोई अफसर नहीं जुटा पाता था।
5: ये भी सुनने को आ रहा था कि यहाँ पे जो लोग वोट में विरोधी जो लोग रहते थे, जो कैंडिडेट रहते थे, ये भाजपा का हो या सीपीआईएम का हो, वो उनको प्रचार भी करने नहीं दिया जाता था। क्या ये सही है?
3: एकदम सही है सर। कोई भी आदमी प्रचार करने आए तो उसके लिए वो तो जहांगीर जो है ना वो पूरा पूरा बंद कर देते थे, यानी दुकान बंद पूरा करने नहीं देते।
6: शाम को उठा के चला जाता था पार्टी ऑफिस में।
4: ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जहांगीर खान की ममता सरकार में तूती बोलती थी, फलता में तो उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। इसीलिए जब उत्तर प्रदेश से बंगाल में चुनाव ड्यूटी पर गए आईपीएस अजय पाल शर्मा मतदाताओं की तरफ से डराने धमकाने की शिकायत पर एक्शन लिया तो ये जहांगीर खान को पसंद नहीं आया।
7: आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम।
0: दर्शक, में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो अगले हिस्से में आपको बताएंगे अमेरिका ने ईरान से धमकी में क्यों कहा लॉक्ड एंड लोडेड, इसका मतलब क्या है ये दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए दस्तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
10: Hop on board and settle in for an easy going cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins and Messina, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
11: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
12: Sokudo.
13: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: यार
2: ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
3: इसमें माइक्रो फाइबर है।
2: माइक्रो फाइबर यानी
3: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
2: हमारे सीमेंट में नहीं है?
3: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
4: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
5: और वही कहाँ गए थे घूमने?
6: जीके मैक्स।
7: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
6: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
8: जेके वॉल मैक्स
6: बेस्ट पेंट,
8: जेके मैक्स।
6: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
9: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
10: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
11: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
12: इसमें फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
2: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
3: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
4: नहीं,
3: और म्यूचुअल फंड से
4: सही।
5: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
6: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा।
7: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
1: विक्रम, एक हिंट तो देते।
8: विक्रम!
1: हिंट।
7: बड़े आराम से।
9: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
10: सोच बदलो और बैंक भी।
11: करेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
12: लाइक आई सेड बिफोर, वी बेटर होन द सिंस।
13: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
14: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
15: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस्ट पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस्ट पेपर से हूबहू मिलते हैं।
16: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं।
14: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
17: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
15: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
14: जहाँ खबर वहाँ खबरदार।
18: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। Monte Carlo, it's the way you make me feel.
19: Wait, lifestyle के लिए 10 अलग pages क्यों follow करना? Health, fitness, yoga, mental wellness, सब कुछ एक ही जगह, FitTuck. Simple tips, expert insights, real conversations. Life upgrade करो easy way. Watch only on FitTuck YouTube.
20: यहाँ से मैं रसगुल्ला खाए बिना नहीं जाऊंगा।
21: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूँ अंजना ओम कश्यप।
22: और हम लोग इस वक्त खड़े हैं भवानीपुर में ही।
23: श्वेतपुर, मेरे नाम की स्पेलिंग वाला श्वेतपुर।
24: किसी का मन हुआ चलो झालमुड़ी खाए, ओके।
22: शुभेंदु अधिकारी,
21: यहाँ पर पिक्चर साफ हो चुकी है। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे।
25: नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर तपस सिंह गुप्ता,
26: अनुपम मिश्र,
27: अमित भारद्वाज,
28: पीयूष मिश्रा,
29: मौसमी सिंह, कोलकाता आज तक।

पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त भयानक लू चल रही है। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्य भी इस लू से अछूते नहीं है। यहाँ भी भयंकर गर्मी है, लेकिन उससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह है कि अगले एक हफ्ते तक ऐसा ही हाल रहने वाला है। मौसम विभाग का अनुमान है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र और गुजरात समेत देश के 10 राज्यों में अगले एक हफ्ते तक सूखी गर्म हवाएं चलेंगी। इस दौरान इन राज्यों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा रहेगा। वेस्टर्न डिस्टरबेंस कमजोर होने और कोई एक्टिव वेदर सिस्टम नहीं होने की वजह से बारिश की कोई संभावना नहीं है। दिल्ली में तो और बुरा हाल, यहाँ 45 से 46 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। ऐसे में दिल्ली सरकार भी सक्रिय हो गई है। दिल्ली सरकार ने मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स को सड़कों पर उतारा है। दावा है कि ये यूनिट्स भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाकर लोगों को तुरंत राहत देंगे। यही हाल दिल्ली से सटे गुरुग्राम का भी है, जहां तापमान 46 डिग्री के पार चला गया। इस भीषण गर्मी में रात को भी राहत नहीं मिल रही, रात को भी गर्मी और उमस है। लोगों से दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच धूप में निकलने से बचने को कहा जा रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि प्यास ना भी हो तब भी पानी पी। इस भीषण गर्मी में रात को भी राहत नहीं मिल रही, रात को भी गर्मी और उमस है। लोगों से दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच धूप में निकलने से बचने को कहा जा रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि प्यास ना भी हो तब भी पानी पिए और खुद को हाइड्रेटेड रखें। वैसे तो भारत एक गर्म देश है, हर साल ही गर्मी पड़ती है, लू चलती है, गर्म हवाएं जीना दूभर करती हैं। लेकिन पिछले कुछ साल से ये हालात और ज्यादा बदतर हो गए हैं और ग्लोबल वार्मिंग इसे और खतरनाक बना रही है। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ग्लोबल वार्मिंग नहीं रोकी गई तो 45 से 50 डिग्री की हीटवेव सामान्य हो जाएगी। IMD के हालिया शोध बताते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण भारत में हीटवेव की तीव्रता और अवधि बढ़ रही है। 2020 से 2025 के अध्ययनों में पाया गया कि एक्सट्रीम हीट इवेंट्स में 2 से 3 गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। अर्थशास्त्री और स्वास्थ्य विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि ये भीषण गर्मी सिर्फ तापमान ही नहीं बढ़ाएगी, बल्कि ये आर्थिक विकास को भी धीमा करेगी, उत्पादकता घटाएगी और मेडिकल खर्चों को बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। और यह हाल किसी एक प्रदेश का नहीं है, बल्कि देश के सभी राज्यों का यही हाल है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और दिल्ली के कुछ इलाकों में तापमान सामान्य से 5.1 डिग्री या उससे ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं पूर्वी राजस्थान और ओडिशा में रातें भी गर्म बनी हुई हैं, जिससे लोगों को राहत नहीं मिल पा रही। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के लिए 24 से 26 मई तक रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसका अर्थ यह है कि सभी आयु वर्ग के लोगों में हीट स्ट्रोक और गर्मी से जुड़ी गंभीर बीमारियों का खतरा अत्यधिक बढ़ गया है। विदर्भ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी जोखिम अधिक बताए गए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, बिहार, राजस्थान और उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। आज तक भी

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: स्वागत एक बार फिर से आपका दस्तक में, आपके साथ मैं हूँ सईद अंसारी। और अब खबर ईरान और अमेरिका युद्ध की। एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को 48 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ साफ कह दिया कि अगर ईरान ने डील के लिए भेजे गए प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो अमेरिका हमला करेगा। तो अमेरिका के वॉर मिनिस्टर पीट हेक्सेथ ने लिखा कि लॉक्ड एंड लोडेड। तो आइए हम आपको दिखाएं कि आखिर इसका मतलब क्या होता है, लॉक्ड एंड लोडेड होता क्या है। लेकिन एक बड़ी खबर इस समय आ रही है हॉर्मुज को लेकर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है, हॉर्मुज पर टोल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ट्रंप ने अब दुनिया के देशों को अपनी तरफ करने के लिए ये दांव खेला है और कहा है कि हॉर्मुज पर बिल्कुल टोल नहीं होना चाहिए, हम हॉर्मुज पर टोल नहीं चाहते। ट्रंप ने यह कहा है, ईरान टोल वसूल कर रहा है और ईरान के खिलाफ जाकर यहां पर अमेरिका ने कहा है, दोनों सेनाएं डटी हुई हैं, ईरान की भी अमेरिका की भी। हॉर्मुज पर कब्जे को लेकर ट्रंप और ईरान दोनों डटे हुए हैं और हॉर्मुज ही अब अमेरिका ईरान युद्ध के बीच सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। ट्रंप ने एक और चाल चलते हुए एक सख्त बयान दिया, टोल बर्दाश्त नहीं होगा।
4: डोनाल्ड ट्रंप का 48 घंटे का अल्टीमेटम, क्या महायुद्ध की घड़ी आ गई? क्या ट्रंप के सामने झुकेगा ईरान? ईरान के पास क्या विकल्प है? हॉर्मुज में ईरान की अकड़ जारी, परमाणु प्रोग्राम पर भी अड़ा ईरान। अमेरिका ने क्यों कहा लॉक एंड लोडेड, मतलब क्या है? अब ईरान के जवाब का इंतजार, क्या 48 घंटे बाद होगा भीषण वॉर? 7 अप्रैल से भले ही ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम चल रहा है, लेकिन उसी घड़ी से धमकियों का महायुद्ध भी जारी है। फिर भी झुकना तो दूर की बात, ईरान ट्रंप की धमकियों के आगे टस से बस होने के लिए तैयार नहीं है। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बार ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है, अगर ईरान ने डील के लिए भेजे गए प्रस्ताव पर सही जवाब नहीं दिया तो अमेरिका हमला करने के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि उन्हें ईरान से शत प्रतिशत सही जवाब चाहिए। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर 2 दिन रुकने से वो लोगों को मारे जाने से बचा सके तो ये अच्छी बात होगी। आपको बता दें कि अमेरिका एक ऐसी डील का इंतजार कर रहा है जिसमें ईरान परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह छोड़ दे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोल दे। ट्रंप ने ईरान को पराजित देश बताते हुए कहा कि अगर ईरान ने जल्द फैसला नहीं किया तो बड़े पैमाने पर हमला शुरू हो जाएगा।
5: I mean, I'm saying 2 or 3 days, maybe Friday, Saturday, Sunday, something, maybe early next week, a limited period of time. Because we can't let them have a nuclear weapon.
4: अब सवाल ये है कि क्या वाकई ईरान ट्रंप की इन धमकियों के दबाव में आएगा? दूसरी तरफ ईरान की सरकारी एजेंसी नूर न्यूज ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई के हवाले से कहा है कि हमें अमेरिका के व्यूज मिल गए हैं और हम उनकी समीक्षा कर रहे हैं। और इस बीच अमेरिका के वॉर मिनिस्टर पीट हेक्सेथ ने भी सोशल मीडिया पर ईरान को बड़ी धमकी दे दी है। पीट हेक्सेथ ने लिखा है लॉक्ड एंड लोडेड। उन्होंने ये कमेंट अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के उस पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा है जिसमें ये कहा गया है कि ईरान के साथ ऐसी डील नहीं होगी जिससे उसे परमाणु हथियार बनाने की छूट मिल जाए। जेडी वैंस ने भी अपने पोस्ट में लॉक्ड एंड लोडेड लिखा था। साथ ही ये कहा था कि अमेरिका नहीं चाहता कि उसे फिर से युद्ध के रास्ते पर जाना पड़े, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप इसके लिए तैयार हैं कि अगर युद्ध करना पड़ा तो इसकी इच्छा और क्षमता दोनों ही उनमें मौजूद है। यानी राष्ट्रपति ट्रंप से लेकर उपराष्ट्रपति और अब युद्ध मंत्री भी ईरान के खिलाफ फिर से जंग की धमकी दे रहे हैं।
6: We think that we've made a lot of progress. We think the Iranians want to make a deal. The President of the United States has asked us to negotiate in good faith, and that's exactly what we've done. So we're in a pretty good spot here, but there's an option B. And the option B is that we could restart the military campaign to continue to prosecute the case, to continue to try to achieve America's objectives. And we could talk a little bit about what that looks like, but that's not what the president wants, and I don't think it's what the Iranians want either.
4: और तो और ट्रंप के सुरक्षा सलाहकार स्टीफन मिलर ने भी ईरान को ऐसी सजा भुगतने की चेतावनी दी है जिसकी मिसाल आधुनिक इतिहास में नहीं मिलेगी। स्टीफन मिलर ने कहा कि ईरान के पास दो ही विकल्प हैं, या तो वो अमेरिका की ओर से दिए गए प्रस्ताव पर राजी हो जाए या अमेरिकी सेना के हाथों दंड भुगतने को तैयार रहे। ये दंड ऐसा होगा जो आधुनिक इतिहास में किसी ने देखा नहीं होगा।
1: They can either agree to a piece of paper that is satisfactory to the United States, or they can face a punishment from our military, the likes of which has not been seen in modern history. That's the choice that they face.
4: लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब पूरा अमेरिकी प्रशासन ईरान को धमकियां देने पर उतारू है, तो फिर इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमला आखिरी समय में क्यों टाला? इससे जुड़ी एक बड़ी खबर न्यूज वेबसाइट मिडल ईस्ट आय के हवाले से आ रही है, जिसमें दावा किया गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने खाड़ी देशों के अपने सहयोगियों और अपने ही अधिकारियों की इस चेतावनी के बाद फैसला लिया कि हज यात्रा के दौरान युद्ध शुरू न किया जाए। खाड़ी देशों के दो वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार ट्रंप को बताया गया था कि हज यात्रा के दौरान ईरान पर हमला करने से खाड़ी देशों के भीतर संकट पैदा हो जाएगा, क्योंकि इससे लाखों तीर्थ यात्री वहीं फंस जाएंगे। सूत्रों ने यह भी बताया कि ट्रंप को आगाह किया गया था कि इस पवित्र समय के दौरान, जो इस्लामी त्योहार ईद उल अजहा से ठीक पहले का समय होता है, हमला करने से मुस्लिम जगत में वॉशिंगटन की साख को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। ट्रंप प्रशासन के भीतर चल रही चर्चाओं से परिचित एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है कि ये बातचीत हुई थी। उन्होंने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति को उनके अपने ही अधिकारियों ने चेतावनी दी थी कि इस समय अमेरिका इजराइल युद्ध को फिर से शुरू करने से ट्रंप की साख को गंभीर नुकसान पहुंचेगा। अमेरिका ने इससे पहले मुसलमानों के पवित्र महीने रमजान के दौरान ईरान पर हमला किया था, लेकिन हज के समय ऐसा करने से सऊदी अरब के सामने भारी लॉजिस्टिक चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। सऊदी अरब हर साल लगभग 10 लाख विदेशी तीर्थ यात्रियों की मेजबानी करता है। ये चुनौतियां खाड़ी देशों के हवाई यात्रा केंद्रों जैसे कतर और यूएई और दक्षिण तथा पूर्वी एशिया के उन देशों तक भी फैल जाएंगी जहां से कई तीर्थ यात्री अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अगर ये खबर सही है तो डोनाल्ड ट्रंप मई महीने में हमला करने से बचेंगे, यानी अब ये हमला जून के पहले हफ्ते में हो सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका लाख कोशिशों के बावजूद हुर्मुज खुलवाने में नाकाम रहा है। ईरान के पास इस वक्त हुर्मुज की नाकेबंदी सबसे बड़ा हथियार है और वो इस मुद्दे पर लगातार अमेरिका को चढ़ा रहा है। बड़ी खबर IRGC नौसेना के राजनीतिक उप प्रमुख के हवाले से आ रही है। मोहम्मद अकबर जादेह ने तंज करते हुए कहा है कि हुर्मुज जलडब्लू मध्य को कमांडर तंसीरी के आदेश पर बंद कर दिया गया था। यही नहीं, अपने तमाम दाव पेचों और चालों के बावजूद अमेरिका इसे फिर से खोलने में नाकाम रहा है। दुश्मन को ना तो ईरान के बारे में सही खुफिया जानकारी है, न ही समझ और अक्ल है। आपको बता दें कि अली रिजा तंसीरी ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC नेवी के कमांडर थे। उन्हें हुर्मुज बंद करने की रणनीति का मास्टरमाइंड माना जाता था। 26 मार्च 2026 को बंदर अब्बास में इजरायली एयर स्ट्राइक में वो बुरी तरह घायल हुए और 4 दिन बाद उनकी मौत हो गई। आज तक ब्यूरो।
7: और अब ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर एक और खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि ईरान युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए। एक रिपोर्ट के अनुसार नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान पर हमला हो और हमले जारी रहें, जबकि ट्रंप बातचीत और डील को मौका देना चाहते हैं, हमला करना बिल्कुल नहीं चाहते, लड़ाई नहीं चाहते। कहा यह भी जा रहा है कि नेतन्याहू और ट्रंप एक बार फिर से फोन कॉल के दौरान भिड़ गए। तो आइए हम आपको दिखाएं कि ईरान को लेकर अमेरिका और इजराइल, नेतन्याहू और ट्रंप आखिर क्यों भिड़ रहे हैं, क्या हो गया।
4: युद्ध को लेकर भिड़े डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू। क्यों नेतन्याहू ईरान पर हमले के लिए दबाव बना रहे हैं? क्यों नेतन्याहू ईरान और अमेरिका के बीच सुलह नहीं चाहते? ٹرمپ کے ساتھ فون پر نیتن یاہو کی بحث کیوں ہوئی؟ ایرانی سانسد نے ٹرمپ اور نیتن یاہو کی نکالی سپاری۔ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار ایران کو مہا یدھ کی دھمکی دیتے ہیں اور پھر ایکسٹینشن دے دیتے ہیں۔ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ کسی بھی قیمت پر ایران ڈیل کے لیے راضی ہو جائے اور ان کے من مطابق ڈیل فائنل ہو جائے، لیکن ایران کے ساتھ بات نہیں بن پا رہی ہے۔ اور اس بیچ ایک بے حد چونکانے والی خبر آئی ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ ڈیل چاہتا ہے، جبکہ نیتن یاہو چاہتے ہیں کہ ایران پر حملہ رکنا نہیں چاہیے۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے انوسار امریکی راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کے پردھان منتری بنجامن نیتن یاہو کے بیچ ایران پر یدھ کی بھاوی دشا کو لے کر ایک تناؤ پورن فون کال ہوئی۔ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ واشنگٹن حملوں کو پھر سے شروع کرنے کے بجائے سمجھوتے کے پکش میں نظر آ

0: दरअसल कतर और पाकिस्तान ने सऊदी, तुर्की और मिस्र के समर्थन से नया ईरान डील ड्राफ्ट आगे बढ़ाया है। अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस ने बताया है कि इस ड्राफ्ट को लेकर ही मंगलवार को ट्रंप के साथ फोन पर नेतन्याहू की बातचीत हुई। बातचीत के बाद नेतन्याहू बेहद गुस्से में थे। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इजरायली प्रधानमंत्री हमलों को फिर से शुरू करना चाहते थे ताकि ईरान की सैन्य क्षमताओं को और कमजोर किया जा सके और उसके महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नष्ट करके वहां की सत्ता को कमजोर किया जा सके। इससे पहले रविवार को ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान पर मंगलवार के लिए तय हमलों को टाल दिया है। उन्होंने बताया कि ये फैसला कतर और यूएई सहित अरब देशों के अनुरोध पर लिया गया।
1: And now we're blowing it away. We're blowing everything away, and we're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly. They're tired of this. This should have happened for 47 years. Somebody should have done something about it, and it's going to happen, and it's going to happen fast. And you're going to see oil prices plummet. They're going to come down. There's so much oil out there. They're going to come plummeting down.
0: सूत्रों के हवाले से एक्सियोस ने बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच की खाई को पाटने की कोशिश में कतर और पाकिस्तान ने अन्य क्षेत्रीय मध्यस्थों के सुझावों के साथ मिलकर एक संशोधित शांति प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया है। नेतन्याहू इन वार्ताओं को लेकर बेहद संशय में हैं और वो युद्ध को फिर से शुरू करना चाहते हैं ताकि ईरान की सैनिक क्षमता को और सत्ता को कमजोर किया जा सके। ट्रंप लगातार ये कहते आ रहे हैं कि उन्हें लगता है कि एक समझौता हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो वो युद्ध को फिर से शुरू करने के लिए भी तैयार हैं। अमेरिकी सेनेट में ट्रंप की सैन्य शक्तियों को सीमित करने वाला प्रस्ताव 50 बनाम 47 से पास हुआ। चार रिपब्लिकन सांसदों ने भी ट्रंप के खिलाफ वोट दिया। अगर कानून बना तो ईरान के खिलाफ जंग जारी रखने के लिए ट्रंप को कांग्रेस की मंजूरी देनी होगी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि ईरान ने लगातार अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान किया है और युद्ध को टालने के लिए हर संभव रास्ता तलाशा है। उन्होंने ये भी लिखा कि हमारी ओर से सभी रास्ते खुले हैं। जबरदस्ती के जरिए ईरान को झुकने पर मजबूर करना एक भ्रम के सिवा कुछ नहीं है। कूटनीति में आपसी सम्मान युद्ध की तुलना में कहीं अधिक समझदारी भरा, सुरक्षित और टिकाऊ फैसला होता है। पेजिशकियन को ईरान में IRGC के मुकाबले नरम पंथी माना जाता है और वो अक्सर सुलह की बातें करते हैं, लेकिन उनके इस पोस्ट से ये संकेत मिलता है कि ईरान झुककर समझौता नहीं करेगा। इस बीच ईरानी सांसद इब्राहिम अजीजी ने डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर के सिर पर इनाम रखा है। उन्होंने इसके लिए ईरान की संसद यानी मजलिस में एक बिल भी पेश किया है। इस बिल में 50 बिलियन यूरो यानी लगभग 58 बिलियन डॉलर का इनाम रखने का प्रस्ताव है। ये कहा गया है कि जो कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू या अमेरिकी सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर को मार देगा, उसे ये इनाम मिलेगा। अजीजी ने इसके साथ ही ईरान और अमेरिका के बीच अविश्वास की खाई को और चौड़ा कर दिया है। अजीजी ने कहा कि अमेरिकी कूटनीति पर भरोसा करने का दौर अब खत्म हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि हम अब हर स्थिति के लिए तैयार हैं। यानी ईरान से जो संकेत आ रहे हैं उनका मतलब यही है कि जिस जवाब का इंतजार अमेरिका को है वो उसे ईरान से नहीं मिलने वाला है। इसके बजाय ईरान युद्ध की स्थिति में लड़ने को तैयार है। आज तक ब्यूरो।
2: अमेरिका ईरान तनातनी के बीच एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ईरान जा रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि ईरान यानी कि ईरान की राजधानी तेहरान जाकर वो बातचीत करेंगे। पाकिस्तानी सेना प्रमुख है अमेरिका ईरान दोनों के बीच सुलह करवाने के लिए। एनरिच्ड यूरेनियम पर डील को लेकर चर्चा संभव है और यही एक मामला फंसा हुआ है। अमेरिका कहता है कि हम परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। अब जो यूरेनियम एनरिच यूरेनियम ईरान के पास है उसे लेकर बातचीत होगी। अमेरिका ये भी कह रहा था कि वो आप हमें सौंप दीजिए, किसी और देश को दे दीजिए, तो अब बातचीत की संभावना निकल रही है। और आइए अब हम आपको सुनवाते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को। अमित शाह ने बताया कि कैसे बक्सर के नक्सल मुक्त होने के बाद बक्सर के आदिवासी लोगों के चेहरों पर खुशी है।
3: नेतानार गांव में जब शहीद गुंडाधूर के नाम से गुंडाधूर सेवा डेरा का उद्घाटन करा, वहां मैंने आदिवासी भाइयों बहनों के चेहरे पर आशा की किरण देखी। मित्रों, मैं राजनीति के अंदर संवेदनशीलता के साथ काम करने वाला व्यक्ति हूं। लाखों की सभा में भाषण करके जितना आत्मसंतोष नहीं मिलता है, उससे भी ज्यादा आत्मसंतोष मुझे आज नेतानार गांव की 400 आदिवासी भाइयों बहनों के बीच में। एक बच्ची के मुंह से हम बच गए ये वाक्य चलते चलते सुनकर इतना आनंद होता है जिसका शब्दों में वर्णन करना बहुत कठिन।
2: दर्शक, में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
7: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
9: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
10: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
11: इसमें माइक्रोफाइबर है।
10: माइक्रोफाइबर यानी
11: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
10: हमारे सीमेंट में नहीं है,
11: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
12: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
13: और वही कहाँ गए थे घूमने?
14: जीके मैक्स।
15: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
14: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
15: जेके वॉल मैक्स
14: बेस्ट पेंट।
15: जेके मैक्स।
14: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
16: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
17: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
18: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू,
19: सोच बदलो और बैंक भी।
20: Like I said before, we better hold the sins.
21: सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
22: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
23: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
24: नहीं,
23: और म्यूचुअल फंड से
24: सही।
25: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
26: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
27: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
28: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
26: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
29: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
30: आज तक की खबर के बाद आज
27: सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
26: जहां खबर वहां खबरदार।
0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
0: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।

0: दिल्ली के रोहिणी जिले के अमन विहार की ये तस्वीर राजधानी की कानून व्यवस्था को चुनौती दे रही है। तस्वीरें इतनी विचलित करने वाली हैं कि हम इसे हूबहू आपको टीवी स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। बुधवार शाम अमन विहार इलाके में दो नाबालिगों की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। वारदात रोहिणी के सेक्टर 20 इलाके की बताई जा रही है। आरोप है कि 3 से 4 युवकों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। शुरुआती जांच में आपसी रंजिश की आशंका जताई जा रही है।
1: उतने जी हम लोग घर पे ही थे, 2:30 बजे तक लड़का हमारे घर पे ही था। उसके बाद वो नीचे आया है, उसके बाद हमें नहीं पता वो कहाँ गया हुआ। हमें तो ये बोला था कि मैं आ रहा हूँ, और हमें करीब 4:30 बजे के आसपास में, नहीं 5:30 बजे के आसपास में मैसेज मिला, किसी का कॉल आया है कि आपके लड़के को चोट लगी है बिल्डिंग स्कूल के पास में।
0: 24 घंटे में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हत्या की 4 वारदात हुई है। 19 और 20 मई की दरमियानी रात उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में श्यामलाल कॉलेज के पास 22 साल के अमानुल्लाह कुरैशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश में अमानुल्लाह कुरैशी की हत्या की गई। उत्तरी दक्षिण दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस इलाके में चाचा और भतीजे के बीच चाकूबाजी की घटना हुई, जिसमें चाचा की मौत हो गई, जबकि भतीजे की हालात गंभीर है। चौबीस घंटे में 4 मर्डर, देश की राजधानी में ये क्या हो रहा है? अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
2: Hot Mics, now streaming on TuneIn, your go-to show for sports, politics, entertainment, tech, and pop culture. Hosted by me, Billy Bush. Get unfiltered takes, A-list guests, real talk, no fluff. Search Hot Mics or tell your device to play Hot Mics on TuneIn to start listening now.
3: हर समुदाय का लोग लाउड स्पीकर अपने जो आस्था का केंद्र है उनकी प्रीमिसेस का अंदर रखिए ना भाई। सुबह 4 बजे से क्यों ये सब कर रहा है? सरकार का काम इमाम मुअज्जिन पुरोहित का भाता डिस्ट्रीब्यूशन है ना एडुकेशन का अच्छा करना है? इमाम मुअज्जिन को भाता देना है ना नौकरी देना है? आज कैबिनेट ने सब रिलीजियस भाता बंद कर दिया। नेशन फर्स्ट, देश को सुरक्षित रखने का काम भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार करेगा। पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया, अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का।
4: जब सवाल हिंदुत्व वाले एजेंडे का हो तो शुभेंदु अधिकारी हिचक नहीं दिखाते। 10 दिन सरकार के हुए हैं और इन 10 दिनों में गिनाने को कई फैसले हैं जिनसे शुभेंदु ने दिखा दिया है कि हिंदुत्व ही उनके गवर्नेंस का केंद्र बिंदु है। उनके कुछ ताजा फैसलों पर गौर करिए। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद, बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद, बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी, बंगाल में मदरसा एवं अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा, बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गाय के वध पर रोक, ओबीसी सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा जिसका असर मुस्लिम ओबीसी पर, और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत। ये तमाम फैसले हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन आज शुभेंदु अधिकारी हिंदुत्व की सियासी जड़ मजबूत करने उत्तर बंगाल कूच कर चुके हैं। ध्यान दीजिए, मुख्यमंत्री बनने के बाद ये उनका पहला उत्तर बंगाल दौरा है। उत्तर बंगाल बीजेपी के लिए क्यों अहम है ये जान लीजिए। 2026 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर बंगाल की 54 विधानसभा सीटों में से 40 सीटें जीतकर 2021 के चुनावों के अपने पिछले रिकॉर्ड 30 सीटों को पीछे छोड़ दिया। बीजेपी ने अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग इन 4 जिलों की सभी विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की। 2026 विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को उत्तर बंगाल में केवल 14 सीटें मिली। 2021 में तृणमूल ने उत्तरी बंगाल में 23 सीटें जीती थी। ये माना जा रहा है कि उत्तर बंगाल में हिंदू वोटों का जबरदस्त ध्रुवीकरण हुआ है और बीजेपी पहली बार बंगाल में सरकार बनाने में कामयाब हुई। आज शुभेंदु अधिकारी सिलीगुड़ी सचिवालय उत्तरकन्या में उत्तर बंगाल के 5 जिलों की कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, आम लोगों से मिलेंगे। एक तरह से ये उत्तर बंगाल के नाम बीजेपी का धन्यवाद भरा पैगाम है। अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री ने देखा मंत्रालयों का रिपोर्ट कार्ड, कामकाज पर मंत्रियों ने दिया प्रेजेंटेशन। प्रधानमंत्री ने ईज ऑफ लिविंग और रिफॉर्म पर जोर दिया, कहा 2047 को ध्यान में रखते हुए करें काम। प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से बड़े निवेश को मिली है मंजूरी, पीयूष गोयल का बयान, सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा समेत कुल 57 बड़े समझौते, विपक्ष ने फिर उठाए सवाल। मारुति ने कारों के दाम में किया 30,000 तक का इजाफा, जून से लागू होगी नई कीमतें, बिहार में सुधा, और राजस्थान में सरस ने दूध की कीमत में किया 2 रुपए की बढ़ोतरी। नीट कांड को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को फिर से घेरा, पोस्ट में लिखा यहां पेपर लीक से युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, वहां इटली में मोदी रील बना रहे हैं। और बंगाल में बकरीद में गायों की कुर्बानी पर बरकरार रहेगी रोक, शुभेंदु सरकार के फैसले पर रोक लगाने वाली याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट से खारिज, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का दिया गया हवाला।
1: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। ट्विशा की मौत के बाद 12 और 13 मई को जज रही ट्विशा की सास ने कुल 46 लोगों को फोन किए थे। ये फोन शहर के ताकतवर लोगों को किए गए थे, इनमें से एक सीसीटीवी इंस्टॉल करने वाला शख्स भी था। ट्विशा के परिवार वालों ने इल्जाम लगाया है कि ये फोन सच और जांच दोनों को भटकाने के लिए किए गए थे। उधर 9 दिन बीत जाने के बावजूद ट्विशा का पति समर्थ सिंह अब भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। ट्विशा की जज रही सास का घर है ये। पूर्व जज साहिबा गिरिबाला सिंह को पौधों का बड़ा शौक है। घर के अंदर के अलावा छत पर भी उन्होंने पौधे लगा रखे। बदकिस्मती से उसी छत पर 12 मई की रात ट्विशा की मौत हुई। अब जाहिर है जिस जगह मौत हुई वो क्राइम सीन है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ न हो लिहाजा क्राइम सीन को सील कर दिया जाता है। भोपाल पुलिस ने भी यही किया, छत पर ताला लगा दिया। अब गिरिवाला सिंह को फिक्र ये है कि छत पर पौधे मर न जाए। हालांकि पौधों की बात करते करते भी वो अपनी बहू ट्विशा को याद करना नहीं भूलती। ये अलग बात है कि याद करने का अंदाज थोड़ा अलग।
2: पुलिस ने जब लॉक कर रखा ऐसे मेरे पौधे मर जाएंगे, यू डू योर वर्क, आप जितना कर सकते हो, मेरे लिए तो हर पौधा इज अ लिविंग एंटिटी, हमें बचाना है उसको। बट इसका ये जो इट वाज अ कंप्लीट फार्स, इट वाज अ कंप्लीट नाटक, या तो वो नहीं समझती थी या उसके अंदर वो जो दो व्यक्ति हैं वो उसको आड़े आते थे। एक तरफ पौधे अच्छे लगते हैं, एक तरफ बच्चे अच्छे लगते हैं, लेकिन पौधों की देखरेख नहीं करना, बच्चे नहीं पैदा करने हैं। एंड मुझे कुकिंग भी अच्छा लगता है, लेकिन कुकिंग में ले अगर बोलो क्या, आई जस्ट सेड सुपरवाइज, क्योंकि खाना बनाने वाले तो लोग हैं यहाँ।

0: कोशिश कर रही हैं। ये सब उनका डेस्परेशन दिखाता है।
1: ट्विशा के पिता के अलावा ट्विशा के परिवार के वकील का कहना है कि ऑडियो इस बात का सबूत है कि शादी के बाद अगले 5 महीने ट्विशा ने अपने ससुराल में क्या क्या झेला होगा।
2: सर, वो एक ऑडियो वायरल हुआ है, अगर वो ऑडियो सही है तो उसको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को पीड़िता का परिवार जिसके पास भी जमा भी करेगा, उसका इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सत्यापन करेगी। हर तरह से उनके पास बहुत सारी पावरें हैं, उनका वॉइस सैंपल हो, चाहे उसकी सत्यता हो, ऑडियो कहाँ से है, सब चीज करेंगी। लेकिन अगर वो सही है और वो गिरिबाला सिंह जिनको अभी अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया, अगर उनकी ये भाषा है तो कहीं ना कहीं दर्शाता है शुरू से एक 5 महीने के अंदर एक इतनी अच्छी लड़की जिसका इतना ब्राइट फ्यूचर था, वो संदिग्ध हालतों में मौत हो जाती है। उसके बाद संदिग्ध हालतों में मौत होने के बाद जहां उसको सहानुभूति तो छोड़िए, किस तरीके की मीडिया में आके वो बातें कर रही हैं, उसके अगेंस्ट उसको पागल बनाने की कोशिश कर रही हैं। एक डेड बॉडी पड़ी हुई है आज एम्स में, 10 दिन से हम लोग मांग कर रहे थे सेकेंड पोस्टमार्टम की, शासन प्रशासन सबसे करा, वो नहीं मिली। लेकिन FIR हमें 3 दिन से मिली लेकिन जमानत 2 दिन में हो गई। ऐसा कानून सही नहीं है, ऐसे सिद्धांत भी सही नहीं है जो स्टैब्लिश करे जा रहे हैं। इसीलिए हमारी मांग है,
3: अगर को देख के सुन करके क्या लग रहा है,
2: अगर ऑडियो है मैडम का तो वो मैं सोच भी नहीं सकता कि वो जो पीड़िता थी जिसकी डेड बॉडी एम्स में पड़ी है उसने क्या झेला है 5 महीने, और इन लोगों ने उसके साथ कैसा व्यवहार करा, वो ऑडियो इस बात को प्रमाणित करता है।
1: इस बीच ट्विशा के परिवार वालों ने एक और सनसनीखेज इल्जाम लगाया है। इल्जाम ये कि 12 मई की रात ट्विशा की मौत के बाद से लेकर अगले दिन यानी 13 मई तक ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह ने कई ताकतवर लोगों को फोन किया, इनमें चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, लोकायुक्त, जुडिशरी से जुड़े कुछ लोग, CCTV कैमरा इंस्टॉल करने वाला और उस एम्स में भी कुछ लोगों के फोन पर बात हुई जिस एम्स में ट्विशा को ले जाया गया था। परिवार का सवाल है कि ट्विशा की मौत के फौरन बाद इन ताकतवर लोगों को गिरिबाला सिंह ने क्यों फोन किया, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए।
2: विक्टिम की पीड़िता के परिवार द्वारा कुछ नंबर कल जारी करे गए थे, उन नंबर्स किसके हैं, और ऐसी घटना, इतनी सीरियस घटना घट गई और उसके बाद ये अब विक्टिम के परिवार से बातचीत ना करके, उनको जानकारी ना देके किन लोगों से बात कर रहे थे, लगातार संपर्क में थे, उनका ऐसा आरोप है कि उसमें कोई CCTV वाला है जिससे इनने बात करी है, ऐसा पीड़िता के परिवार का आरोप है, तो उसकी सत्यता जानना जरूरी कि ये नंबर्स किन के हैं, इनके मालिक कौन है, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस, चाहे वो बेल हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे वो एम्स हो, कहीं ना कहीं इनका इन्फ्लुएंस है और इन नंबर से हो सकता है हमको कोई जानकारी प्राप्त हो।
1: ट्विशा के पिता नवनीति शर्मा का कहना है कि ट्विशा की मौत के बाद भोपाल के जिन ताकतवर लोगों को गिरिबाला सिंह ने फोन किया उनका रिकॉर्ड खुद गिरिबाला सिंह के वकील ने ही उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी के दौरान बाकायदा कोर्ट में जमा किया था। असल में कॉल रिकॉर्ड के जरिए गिरिबाला सिंह अदालत को ये बताना चाहती थी कि ट्विशा की मौत के बाद उन्होंने ट्विशा के घर वालों को कई बार फोन किए और वही कॉल डिटेल के रिकॉर्ड उन्होंने अदालत में जमा किए। इत्तफाक से उन्हीं कॉल रिकॉर्ड में 12 और 13 मई के बाकी कॉल डिटेल भी शामिल थे, जिन्हें चेक करने के बाद ट्विशा के घर वालों ने ये पाया कि गिरिबाला सिंह ने 13 मई को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, लोकायुक्त, एम्स के डॉक्टर और जुडिशरी से जुड़े कुछ लोगों को फोन किया।
0: ये हमारी तरफ से जारी नहीं है, ये उन्हीं के वकील द्वारा अपनी बहस में कोर्ट में डॉक्यूमेंट सबमिट किया गया था ये दिखाने के लिए कि हमने उनको कॉल नहीं किया था, पर ये बात लगी कि हमने कॉल किया था, वो हमारे कॉल रिकॉर्ड्स जब जांच होगी तो सामने आ जाएंगे। पर उसके साथ साथ पैरेलली उस रिकॉर्ड्स में वो नंबर्स भी हैं जिन पर उनकी बातचीत हुई है, वो नंबर्स बताया जा रहा है कि बहुत ही इन्फ्लुएंसिव लोगों के हैं, जैसा मैं पहले दिन से कहते आ रहा था, लोकायुक्त के भी नंबर हैं, SCGM के भी नंबर हैं, मेडिकल वेटनरी में काम करने वाले। तो मौत के दौरान आप इन सब से बात कर सकते हैं पर आप 30 सेकेंड पुलिस चौकी में फोन नहीं कर सकते, एम्बुलेंस नहीं बुला सकते, ये किस ओर इशारा कर रहा है? ये केस पूरा फैब्रिकेटेड है, पूरी तरीके से फैब्रिकेटेड केस है। हमको तरह तरह की टैक्टिक्स अपना करके, जुडिशियल टैक्टिक्स अपना करके फंसाया जा रहा है। बेटी तो उन्होंने एक दिन मारी दी हमारी, इस जुडिशियल टैक्टिक्स में हम रोज मर रहे हैं, पर हम कितना भी मरते रहे, हम मरते दम तक हम हर चीज का विरोध करते रहेंगे, हम अपने अधिकारियों के लिए लड़ते रहेंगे।
1: ट्विशा के परिवार की मांग है कि पुलिस को गिरिबाला सिंह के कॉल डिटेल की जांच कर ये पता लगाना चाहिए कि ट्रिशा की मौत के बाद उन्होंने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए

0: खुफिया जांच को गुमराह करने की कोशिश की। हालांकि इस बीच भोपाल की एक अदालत ने ट्रिशा के परिवार की इस मांग को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने दोबारा पोस्टमार्टम कराने की बात कही थी। अलबत्ता आगे फैसला होने तक कोर्ट ने परिवार की ये मांग जरूर मान ली कि ट्रिशा की लाश को प्रिजर्व कर रखा जाए।
1: मजिस्ट्रेट ने एप्लीकेशन डिसाइड करते हुए हमारा SHO को निर्देशित करा है कि आप बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए जो हर संभव प्रयास है करें और हमको सूचित करें। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि मजिस्ट्रेट या कोर्ट, उनके पास पूरी डायरी थी, पूरी डायरी उन्होंने अवलोकन करा और उनको भी ये लगता है कि हाँ सेकंड पोस्टमार्टम कराया जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि उनके क्षेत्र अधिकार में नहीं है दिल्ली एम्स भेजना, इसलिए केवल इस आधार पर उन्होंने मना करा है। लेकिन विक्टिम का जो परिवार है उसको ये लगता है कि अगर मध्य प्रदेश में किसी भी तरह की आगे जांच हुई, क्योंकि यहां सब शुरू से डिटेल चल रही है, इन्वेस्टिगेशन हर तरीके का इन्फ्लुएंस है, इसीलिए हमारे पास अब हाईकोर्ट जाने के अलावा कोई चारा नहीं है, तो उस ऑर्डर को हम हाईकोर्ट चैलेंज कर रहे हैं।
0: भोपाल के जिस एम्स अस्पताल के मुर्दा घर में ट्रिशा की लाश पिछले 9 दिनों से रखी है, उसके खराब होने का अंदेशा जताया जा रहा है। तेज गर्मी और ऊपर से लाश को प्रिजर्व करने के लिए जितने तापमान में लाश रखी जानी चाहिए, उसकी फैसिलिटी खुद एम्स के पास नहीं है। एम्स ने इस बारे में भोपाल के पुलिस कमिश्नर से भी बात कर अपनी चिंता जताई। हालांकि ट्रिशा के पिता का कहना है कि एम्स में ही ट्रिशा की लाश को अच्छे से प्रिजर्व कर रखा जा सकता है। उन्होंने एक्सपर्ट्स के हवाले से ये दावा किया कि लाश को खराब होने से बचाने के लिए -80 डिग्री के तापमान में लाश रखने की जरूरत नहीं पड़ती, -4 डिग्री तापमान में भी लाश को बेहतर ढंग से प्रिजर्व किया जा सकता है। दरअसल इंसाफ न मिलने तक ट्रिशा के परिवार वालों ने ट्रिशा की लाश लेने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से पिछले 9 दिनों से एम्स के मुर्दा घर में ट्रिशा की लाश पड़ी है। लाश न लेने या अंतिम संस्कार न करने के पीछे ट्रिशा के परिवार की ये मांग भी है कि ट्रिशा की लाश का दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए। हालांकि ट्रिशा के पति समर सिंह के वकील का कहना है कि ट्रिशा के परिवार की दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग इसलिए सही नहीं है क्योंकि एम्स में बाकायदा डॉक्टरों के एक पैनल ने वीडियोग्राफी कर पोस्टमार्टम किया है।
2: प्रथम पोस्टमार्टम जो कि सबसे रिनाउंड इंस्टीट्यूट, सबसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट एम्स भोपाल के की डॉक्टर्स की टीम द्वारा किया गया, जिसकी वीडियोग्राफी की गई है, उसमें कोई त्रुटि नहीं बता सकते हैं, इसलिए ये अनर्गल है। और वो एक मृतका जो कि मृतका जिसके साथ जो हमारे परिवार की सदस्य थी, उसकी उसके शव को पंचतत्व विलीन होने से रोकने का कुत्सित प्रयास है, जिसकी मैं भरता।
0: उधर 9 दिन बीत जाने के बावजूद ट्रिशा का पति समर्थ सिंह अब भी फरार है। 18 मई को अदालत समर्थ की अग्रिम जमानत की याचिका पहले ही खारिज कर चुकी है। अब समर्थ की अग्रिम जमानत के लिए उसके वकील ने हाई कोर्ट का रुख किया है। शायद अग्रिम जमानत पर 22 या 25 मई को सुनवाई।
2: समर्थ सिंह उनकी ओर से अग्रिम जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया गया था भोपाल न्यायालय के समक्ष, परंतु उनका अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया है 18 मई 2026 को। उससे व्यथित होकर हमने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत का आवेदन पति समर्थ सिंह की ओर से प्रस्तुत किया, जिसकी सुनवाई कल 22 मई अथवा सोमवार 25 मई को संभावित।
0: इस बीच भोपाल पुलिस ने समर्थ की गिरफ्तारी पर इनाम की रकम बढ़ाकर 10,000 से 30,000 कर दी। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक। AI के इस दौर में भी 20वीं सदी के उस कलंक ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा है। तरक्की के इस जमाने में आज भी बहुएं मर रही हैं या फिर मारी जा रही हैं। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन हमारे देश में हर रोज 20, हर महीने 600 और हर साल लगभग 7,000 से ज्यादा बहुएं या तो अपनी जान ले लेती हैं या फिर उनकी जान ले ली जाती है।
3: एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज, अंग्रेजी के ये वो दो जहरीले शब्द हैं जो हर 84 मिनट में एक दिन में 20, एक महीने में 600 और एक साल में 6,000 शादीशुदा लड़कियों की जिंदगी ले रहे हैं। दो रस्मों के लिए जिंदगी भर की दौलत लुटाकर भी बेटियों के लिए खुशियां नहीं खरीद पाने वाले हजारों माँ बाप को अब समझना होगा कि जिसे उनकी बेटी से ज्यादा दौलत और हुकूमत से मोहब्बत हो, वो एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज करने के बाद भी उनकी बेटी की इज्जत नहीं करेंगे। ट्रिशा की जान भी इसी जहरीले अंग्रेजी के शब्द एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज नहीं ली। टुशा कितनी परेशान थी, कितनी अकेली थी, कितनी बेबस थी। क्या ये टुशा के परिवार को नहीं पता था? पता था, लेकिन बेटी का घर बसाने की उम्मीद और इंतजार ने उसका पूरा बसेरा ही उजाड़ दिया। मुझे बहुत ज्यादा घुटन हो रही है माँ, बहुत अकेली हो गई हूँ, ये बच्चा किसका है, बहुत बुरी तरह फंस गई हूँ, मेरा जीवन नर्क हो गया है मम्मी, मुझे आप यहाँ से लेने आ जाओ। मम्मी मैं करूँ तो क्या करूँ, पापा से नाक रगड़वा कर माफी मंगवाना चाहता है, ये सब बहुत ज्यादा निर्दय है मम्मी, मेरा अब दम घुट रहा है माँ यहाँ, मम्मी यहाँ पर मैं पागल हो जाऊंगी, मेरा दम घुट रहा है यहाँ। बार बार टुशा अपनी माँ से कहती रही कि वो अब यहाँ रहना नहीं चाहती, घुटन हो रही है, अकेले हो गई है। उसके बाद भी उम्मीद लिए माँ ने जानते हैं टुशा से क्या कहा, सब अच्छा हो जाएगा, सब जल्दी ठीक हो जाएगा, यानी वही अंग्रेजी वाले दो शब्द एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज। ऐसा नहीं है कि माँ बाप कुछ बुरा या गलत चाहते हैं, लेकिन जो वक्त एक माँ बाप अपनी बेटी की शादीशुदा जिंदगी ठीक करने के लिए देते हैं, उसी वक्त को चंद पैसों के लालची लोग हमारी बेटियों की जान लेने और प्लानिंग करने के लिए मोहलत बना लेते हैं। और त्रिशा, दीपिका और निक्की भाटी जैसी बेटियों की मौत के शक्ल में सामने आती है। आज के दौर में हम चांद पर पहुंचने की, आसमान को छूने की, हवा में उड़ने की और पानी पर चलने की तकनीक ढूंढ लाए हैं, मगर नहीं पता लगा पाए इंसान के पीछे छुपे दानव को, पति के पीछे के लालच को, ससुराल जैसे दिखने वाले नर्क को। माँ बाप जिंदगी भर का जमा जोर लगा देते हैं बेटी की एक शादी में, फिर भी लालची लोगों की भूख नहीं मिटती, इसी का नतीजा है ये डरावने आंकड़े। देश में क्राइम का डाटा रखने वाली एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया 2023 की रिपोर्ट बताती है कि हमारे देश में दहेज के कुल 15,489 मामले दर्ज हुए, जिनमें दहेज की वजह से 6,156 महिलाओं की मौत हुई। हिंदुस्तान में हर रोज 17 से 18 बेटियों को दहेज की वजह से मार दिया जाता है, यानी हर 84 मिनट में एक महिला दहेज के चलते अपनी जान गंवा रही है। रिपोर्ट के हिसाब से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 7,151 मामले दर्ज हुए, बिहार में 3,665 दहेज के मामले सामने आए, जिनमें 2,122 महिलाओं की मौत हुई। बिहार में 1,143 महिलाओं ने जान गंवा दी। जो महिलाएं खुद की लड़ाई लड़ती हैं, वो भी अदालतों के चक्कर ही काट रही हैं। 83,000 से ज्यादा दहेज मामलों की फाइल हमारे देश की अदालतों में धूल फांक रहे हैं। क्राइम इन इंडिया 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली दहेज के लिए हुई मौत के मामले में सबसे ऊपर है। साल 2024 में दिल्ली में 109 दहेज हत्या के मामले दर्ज हुए, इनमें 111 महिलाओं की दहेज की वजह से जान गई। देश में दहेज के मामलों को लेकर भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 कहती है कि शादी के 7 साल के भीतर किसी महिला की जलने, चोट लगने या किसी भी तरीके से अननेचुरल डेथ होती है तो उसे दहेज की वजह से हुई मौत माना जाता है। अगर उसकी मौत से ठीक पहले उसे दहेज को लेकर किसी भी तरह से परेशान किया गया हो, ऐसी सूरत में आरोपी को कम से कम 7 साल की कैद से लेकर उम्र कैद तक हो सकती है। कानून तो तब सजा देगी जब दहेज जान ले लेगी, लेकिन इसे वक्त से पहले हर बेटी, हर माँ बाप, हर भाई और हर परिवार को समझ लेना होगा कि जिसकी फितरत में हैरत समाई नहीं है, जिसको दौलत से ज्यादा वो कभी भाई ही नहीं है, ऐसे पति और दामाद की अब हमें जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। आज तक ब्यूरो।
4: तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से।
6: Are you ready to tackle those home projects? Whether it's a new patio, fresh paint, or just some more space, now's the perfect time to make it happen. With a home equity loan from CME Federal Credit Union, you'll get an introductory 3.99% APR for 12 months, giving you the flexibility to take on those dream house projects. Your home's next chapter starts at CME. Visit cmefcu.org to apply today and to get your plans underway.
7: Terms and conditions apply. Federally insured by NCUA. Equal housing lender.
8: The music you love is

0: मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री ने देखा मंत्रालयों का रिपोर्ट कार्ड, कामकाज पर मंत्रियों ने दिया प्रेजेंटेशन। प्रधानमंत्री ने ईज ऑफ लिविंग और रिफॉर्म्स पर जोर दिया, कहा 2047 को ध्यान में रखते हुए करें काम। प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से बड़े निवेश को मिली मंजूरी, पीयूष गोयल का बयान, सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा समेत कुल 57 बड़े समझौते, विपक्ष ने फिर उठाए सवाल। मारुति ने कारों के दाम में किया है 30,000 तक का इजाफा, जून से लागू होगी नई कीमतें, बिहार में सुधा और राजस्थान में सरस ने दूध की कीमत में 2 रुपए की बढ़ोतरी की। नेट कांड को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को फिर से घेरा, पोस्ट में लिखा यहां पेपर लीक से युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, वहां इटली में मोदी रील बना रहे हैं। और बंगाल में बकरीद में गायों की कुर्बानी पर बरकरार रहेगी रोक, शुभेंदु सरकार के फैसले पर रोक लगाने वाली याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट से खारिज, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का दिया गया हवाला।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से।
0: मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास अतिक्रमण पर एक्शन जारी, अब तक करीब 500 अवैध झुग्गियों पर चलाया गया बुलडोजर। बांद्रा में बुलडोजर कार्रवाई के बीच हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने 15 आरोपियों को हिरासत में लिया। बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया भी मौके पर पहुंचे, सरकार का समर्थन करते हुए कहा जमीन माफियाओं पर ऐसे ही शिकंजा कसा जाएगा। पुणे में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में सीबीआई की पूछताछ जारी, डॉक्टर समेत कई नई गिरफ्तारियां की गई। मुंबई में 5,62,00,000 रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फ्रॉड गॉडमैन उर्फ कैप्टन को गिरफ्तार किया गया, ईडी ने पीएमएलए के तहत हिरासत में लिया। महाराष्ट्र के ठाणे रेलवे स्टेशन के पास मार्केट में लगी थी भीषण आग, फायरमैन समेत 2 की मौत हुई, 2 घायल। मुंबई के वर्सोवा जू लिंक रोड पर तेज रफ्तार बस ने कई वाहनों को टक्कर मारी, हादसे के बाद अफरा तफरी मची और लंबा ट्रैफिक जाम लगा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 33 साल के इंजीनियर ने खुदकुशी की, सोसाइटी के अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल से कूदा। लातूर में आवारा कुत्तों के हमले से 22 साल के युवक की इलाज के दौरान मौत हुई, परिजनों ने नगर निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जामनगर में पेट्रोल पंपों पर किसानों का हंगामा, डीजल न मिलने से गुस्साई भीड़ ने तोड़ा गैलन। क्राइम थ्रिलर बंदर का धमाकेदार ट्रेलर आउट हुआ, एक्टर बॉबी देओल का दिखा दमदार अवतार, फिल्म 5 जून को रिलीज होगी। स्पोर्ट्स ड्रामा पैडी का दमदार ट्रेलर आउट हुआ, रामचरण, जानवी कपूर, दिव्येंदु शर्मा समेत कई कलाकार नजर आएंगे, 4 जून को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी। ओटीटी पर दिखेगा क्राइम कॉमेडी का तड़का, फिल्म मामहन की स्टार कास्ट का पोस्टर रिलीज, रवि किशन, माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी, धरना, दुर्गा के साथ नजर आएंगे। आज मामहन का ट्रेलर आउट हुआ, दिखेगा धक धक गर्ल का नया अंदाज, फिल्म 4 जून को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। विंटेज मिर्जापुर ओटीटी के बाद अब बड़े पर्दे पर धमाका करने को तैयार मुन्ना भाई की वापसी की मांग अब भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। मुंबई के वर्सोवा जुहू लिंक रोड पर एक बेकाबू बस ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी है, एक्सीडेंट के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई थी, ट्रैफिक जाम लगा लंबा, इस हादसे में कई गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा है, जरा तस्वीरें देखिए पहले आप। गनीमत यह रही है कि हादसे में किसी की जान नहीं गई है, लेकिन तस्वीरें वाकई में डराने वाली हैं। अब बात करेंगे उस हंगामे की जो कई दिनों से लगातार जारी है मुंबई के भीतर, क्योंकि मुंबई के बांद्रा ईस्ट रेलवे स्टेशन के पास करीब 500 अवैध झुग्गियों को जमींदोज करने की कार्रवाई आज तीसरे दिन भी जारी रही। पश्चिम रेलवे ने बताया है कि 85% अतिक्रमण हटा दिया गया है, लेकिन यह बुलडोजर एक्शन 23 मई तक ऐसे ही जारी रहेगा। कल पुलिस की टीम पर पथराव के 15 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, वहीं एक ऐसे शख्स को भी गिरफ्तार किया गया जो भीड़ को उकसा रहा था।
2: मुंबई के बांद्रा ईस्ट रेलवे स्टेशन के पास करीब 500 झुग्गियों को जमींदोज करने के लिए बुलडोजर एक्शन जारी है। 20 मई को जिस तरह अतिक्रमण के खिलाफ अभियान के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया था, उसमें कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज कर भीड़ को तितर बितर किया था। आज गरीब नगर इलाके में तलाशी अभियान के बाद FIR में नामजद लोगों में से पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पश्चिम रेलवे ने बताया कि उनकी जमीन पर बनी अवैध झुग्गियों को तोड़ने का काम 85% से ज्यादा तक पूरा हो गया है। रेलवे की ओर से कहा गया कि हम कार्रवाई के साथ मानवीय पहलुओं का भी ध्यान रख रहे हैं।
3: अब तक ऑलमोस्ट 85% हमने डिमोलिशन का कार्य पूरा कर लिया है। जैसा मैंने बताया था कि जो अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं अप्रोक्सीमेटली 500 के करीब, उनमें से ऑलमोस्ट 85-90% जो है वो कार्य पूरा कर लिया गया है, उनकी डिसमेंटलिंग हो गई है। ये एक सेंसिटिव मुद्दा है, हम सभी समझते हैं, ह्यूमन एंगल इन्वॉल्व है, मानवीय पहलू इन्वॉल्व है और हम हर चीज को बहुत सेंसिटिव तरीके से डील कर रहे हैं। जिस किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की मदद की आवश्यकता हुई, कोऑपरेशन की आवश्यकता हुई, वो हमने किया। माननीय हाई कोर्ट के आदेश का पालन करना, माननीय हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि 100 हटमेंट को छोड़ के बाकी सारे स्ट्रक्चर को आप डिमोलिश करिए, हम एग्जैक्टली वही कर रहे हैं।
2: झुग्गियों में रहने वाले बुजुर्ग लोग कह रहे हैं कि उनका 40 साल से यहाँ आशियाना था, उनके पास आधार कार्ड से वोटर आईडी कार्ड तक मौजूद है, लेकिन अब उन्हें यहाँ से भगाया जा रहा है।
0: गरीब नगर में पिछले 2 दिनों से तोड़क कार्रवाई चल रही है। वेस्टर्न रेलवे इस पूरे प्लॉट को खाली करने के यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लान कर रही है, प्रोजेक्ट बनाने का यहाँ, लेकिन बहुत सालों से यहाँ पे लोग रहते आए हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं। दादा, आपका नाम क्या हुआ?
4: मोहम्मद हनीफ।
0: हनीफ जी, आप कब से रह रहे हैं यहाँ?
4: हम लोग को गरीब नगर में 40 साल हो गया है और घासबार में 20 साल, यानी कि टोटल 60 इयर्स। गरीब नगर में 40 साल और घासबार में 20 साल।
0: तो गरीब नगर बहुत सालों पहले भी कई बार यहाँ पे तोड़क कार्रवाई के लिए सरकार ने कोशिशें की थी, लेकिन उस समय क्यों नहीं हो पाता था?
4: उस समय ये सुनील दत्त थे ना, MP थे सुनील दत्त,
0: इस इलाके के MP थे, मेंबर ऑफ,
4: वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने काफी इधर की जो है गरीबों की सहायता की और हमने देखा, अपनी आंखों से देखा कि बुलडोजर के साथ में सामने वो सो गए, बोले अगर बुलडोजर चलाना है तो हमारी बॉडी के ऊपर से चलाओ, तोड़ दिया है इनको। सबसे पहला जो जिसका सर्वे नहीं किया है उनके बारे में भी सरकार कुछ करे। इनलीगल बोलने से काम नहीं चलता है, इलीगल बोला और तुम्हारी कहानी ख़त्म, ऐसा नहीं है। ये 480 घर के अंदर में भी 60-70 घर इलीगल होंगे, अगर इनका सही से सर्वे होगा, अगर इनकी पेपर के कागजात की सही से जांच पड़ताल होगी, तो इसमें से मैं भी जो है 480 में से 40-50 घर इलीगल लिख लेंगे, बाकी तो नहीं है ना।
2: बेघर हो चुकी बुजुर्ग महिलाएं भी सरकार से सिर ढकने के लिए छत मांग रही हैं।
5: 50 साल से रह रही, 40-50 साल होते, उम्र पे ख्याल करो कहीं गई नहीं, मैं यही रही, मेरे बच्चे मरे यहाँ, जवान, मेरा आदमी मरा, 2 बेटे हैं तो उनके घरों के हैं। अब ये तुम बोरे साहब का, सुनील साहब का, वो भी आके गए थे, जब से उसके पहले जमाने से रह रही, मेहनत करती, पेट भरती, अब मेरे को छत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बहुत मेहरबानी हो जाएगी अगर साया दे दिए छत रहने को, तो बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा। अभी टाना जान धूप में रह रहे, मेरी उम्र का ख्याल करो, मेरा कोई कमाने वाला नहीं, बताओ बुझा। अब पक्के प्रूफ है मेरे, सब प्रूफ चेक कर सकते हैं, अब पूरे प्रूफ पक्के हैं।
2: अब रेलवे स्टेशन के पास झुग्गियों का मलबा पसरा दिख रहा है, लोग इस कबाड़ में अपने काम की चीजें तलाश रहे हैं। महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए बिलख रही हैं। वो सरकार से पूछ रही हैं कि हम जाएं तो आखिर कहां जाएं?
6: हमारा घर तोड़ दिए, हमें बेघर कर दिया, हम रोडों पे यहां पे भी बैठ रहे थे, यहां से भी भगा रहे, ऐसे के लिए नहीं भगा रहे, यहां इस इलाकों में हम छाव के लिए ब्रिज के नीचे बैठ रहे थे, वहां से ही भगा रहे कि ये कह रहे कि मतलब वो मुंह से नहीं बोल रहे मगर एक्शन यही दे रहे कि तुम धूपों में बैठो, एक्शन हमारे को ये दे रहे कि तुम धूपों में बैठो, हम बच्चे लेके धूप में बैठे, मेरे बच्चे की बीमार तबीयत खराब हो गई, कल बाबा हॉस्पिटल से दवा लेकर आई हूँ, यहाँ हम छाव देखने जा रहे क्योंकि एक तो घर तो तुमने तोड़ दिए, अब हम छाव में उधर बैठ रहे ब्रिज के आसरे से, तो वहाँ से ही भगान दे रहे, वहाँ से ही भगा रहे। तो यही जो हमारी निगारबाजी ने हमसे जो कहा, हमारी जो ये निगारबाजी इन्होंने जो भी कहा सब सही कहा। हम कल को जो
7: हमें 24 घंटे का टाइम दिया गया है, क्या 24 घंटे के अंदर ये सामान नहीं हटाया गया यहाँ से? तो हम उठा के ले जाएंगे, उसके जिम्मेदार तुम हो गए। कल लाठी चार्ज हुई है, कल लाठी चार्ज हुई है, हमें ऐसा मारा गया है, ये देखिए ऐसा मारा गया है सर में पूरा, हमें ऐसा मारा गया है कि एक एक लेडीज को 50-50 पुलिस वालियां मार रही थी। क्यों हम पे जुलूम हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या मुसलमान है, ये हमारी तकदीर है।
2: कोई भी अप्रिय घटना ना हो इसके लिए 1200 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं, जिनमें मुंबई पुलिस के अलावा आरपीएफ और जीआरपी के जवान भी शामिल हैं। आज बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सुमैया भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि जमीन माफियाओं पर ऐसे ही शिकंजा कसा जाएगा।
8: रेलवे लाइन 8 नंबर की 9 नंबर की वहां पर ये बांग्लादेशी माफियाओं ने अड्डे बनाकर रखे थे, पहले फेज में वो हटाए गए, अभी यहाँ पर कार्रवाई शुरू है। मैं मुंबई की पुलिस को, रेलवे पुलिस फोर्स और मुंबई रेलवे के अधिकारियों को मुंबई कर की ओर से धन्यवाद देता हूँ। जो 1.5 करोड़ मुंबई कर के लिए ये बांद्रा टर्मिनस आने जाने भी नहीं मिलता था, जो बांग्लादेशी मुस्लिम माफिया, लैंड माफिया, भू माफिया, अब ये टर्मिनल विकसित किया जाएगा।
2: बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद पश्चिम रेलवे ने इन झुग्गियों को हटाने का काम शुरू किया है। 9 साल पहले जब रेलवे ने जमीन खाली कराने की कोशिश की थी तब झुग्गी वाले कोर्ट चले गए थे, जिसके बाद से यथास्थिति बनी हुई थी। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक अतिक्रमण अभियान 23 मई तक चलेगा। अब पूरे इलाके की घेराबंदी और बैरिकेडिंग की जाएगी ताकि ऐसी अवैध झुग्गियां दोबारा न बनाई जा सके। विद्या के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
0: दोनों एनसीपी के एक साथ आने पर सस्पेंस खत्म हो गया। एनसीपी शरद गुट के वरिष्ठ नेताओं ने यह साफ कर दिया है कि अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में उनका विलय नहीं होने जा रहा। हालांकि शरद पवार विलय वाली बात पर अभी खुलकर कुछ भी नहीं बोल रहे। सवाल अब यह है कि क्या पवार के मन में कोई मास्टर प्लान चल रहा है। इधर एनसीपी कह रही है कि शरद गुट उनकी पार्टी में बगावत की अफवाह फैला रहा है, जबकि असली भगदड़ तो शरद गुट में मची हुई है।
2: वैसे तो राजनीति में कभी भी हमेशा के लिए कोई फैसला नहीं होता, लेकिन फिलहाल एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की चर्चा पर विराम लगता दिख रहा है। प्लेन क्रैश में अजीत पवार की मौत के बाद संकट के समय में पूरा परिवार एकजुट नजर आया था। इतना ही नहीं, बारामती विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी शरद पवार की पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतार कर उदारता दिखाई थी, जिससे ऐसे संकेत मिले थे कि अब एनसीपी के दोनों धड़े एक साथ आ जाएंगे। शरद गुट के बड़े नेताओं ने अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के साथ किसी भी संभावित विलय की बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया।
9: मैं पार्टी की तरफ से आज जो बातचीत हुई उससे आज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैंने पहले भी कहा था, कहाँ पे भी पार्टी मर्ज होने की बात नहीं होगी। अजीत दादा थे तभी ये बात हुई थी, उसके बाद नहीं है। इसके बाद कभी भी पार्टी मर्जर की बात होगी नहीं। हमारी पार्टी स्वतंत्र तरीके से आने वाले कुछ दिनों में पार्टी संगठन मजबूत होगा और उसके बाद हम पूरे महाराष्ट्र में इस सरकार के खिलाफ जो जनक्षोभ है उसके बारे में हम लोग आंदोलन करेंगे। महंगाई का मुद्दा हो, नीट का मुद्दा हो और बहुत से मुद्दे हैं जो सरकार की तरफ से जो लोग नाराज है उसको लेके हम लोग महाराष्ट्र में आंदोलन करेंगे। और दूसरी बात है, 15 अगस्त के बाद हम लोग पूरे महाराष्ट्र में आघाड़ी करके हम लोग साथ में महाराष्ट्र में दौरा करने वाले हैं।
2: वहीं एनसीपी शरद गुट के प्रमुख शरद पवार ने मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में हुई एक अहम बैठक के दौरान इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी। पार्टी के 10 जून को होने वाले स्थापना दिवस से पहले बुलाई गई इस महत्वपूर्ण बैठक का मकसद मौजूदा राजनीतिक स्थिति का आकलन करना और अजीत पवार गुट के अंदर पनप रही कलह के बीच आगे की रणनीति तय करना था।
10: प्रफुल्ल पटेल आणि तटकरे साहेब भेटतात, पवार साहेबांना भेटतात, पवार साहेब वडील आहेत तो, आणि सगळे शरद पवारांचीच मुलं आहेत। थोडी रागवून बाजूला गेलेली, थोडी शरद पवारांना बोलली आहेत, शेवटी बाप मुलाला बोलतो, मुलगा बापाला बोलतो, ठीक आहे।
2: इसी महीने उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने चुनाव आयोग को सौंपी गई आधिकारिक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची में वरिष्ठ नेताओं प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को बाहर कर दिया था। इसके बाद अजीत गुट वाली एनसीपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष सुनील तटकरे ने शरद पवार से मुलाकात भी की थी, जिससे कयास लगाए जा रहे थे कि एनसीपी के कुछ वरिष्ठ नेता वापस से शरद पवार के खेमे में आ सकते हैं।
11: तो बड़ा सवाल यह है कि क्या शरद पवार की ये मौन किसी सियासी तूफान से पहले की शांति है, क्योंकि अजीत पवार के पार्टी में मची भारी कलह और 22 विधायकों के संपर्क में होने के दावों के बीच विलय को लेकर शरद पवार की भूमिका टू बी और नॉट टू बी के सस्पेंस को और बढ़ा रही है, जिसने महाराष्ट्र की राजनीति को हमेशा से उलझाए रखा है। सहयोगी भले ही विलय को लेकर इनकार कर रहे हो, लेकिन शरद पवार का ये मौन साफ इशारा कर रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है।
2: शरद गुट के नेताओं ने जिस तरह विलय की संभावनाओं को खारिज किया, उससे कार्यकर्ताओं में निराशा दिखी। इस बीच एनसीपी की दरारें और गहरी होती दिख रही हैं। सूत्रों का दावा है कि अजीत पवार गुट के करीब 22 असंतुष्ट विधायक पहले ही शरद पवार से मिल चुके हैं।
12: 22 विधायक के बारे में जो न्यूज है वो बिल्कुल फेक न्यूज है। ऐसा कोई विधायक जो है वो पवार साहब को नहीं मिला है, ना किसी के पास उससे उसके फुटेज है, ना कोई विधायक ने इस तरह का कोई बयान दिया है, ना किसी विधायक ने कोई ट्वीट किया है या कोई सोशल मीडिया पे अप्रत्यक्ष रूप से भी कुछ कहा है। और आप सब समझते हैं, किसी भी तर्क बुद्धि से अगर सोचा जाए तो आज तक महाराष्ट्र के इतिहास में या देश के इतिहास में कभी भी सत्ताधारी पक्ष से विपक्ष में आमदार फूटकर चले गए ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं और ऐसा हो भी नहीं सकता है, आप सबको मालूम है। उल्टा तुतारी के पवार साहब की पार्टी के एमएलए और उनके एमपी जो है वो अजीत दादा के संपर्क में थे और वो उस पार्टी को छोड़कर हमारी पार्टी में शामिल होने के लिए आने भी वाले थे।
2: एनसीपी की अंदरूनी कलह नहीं थमी तो सुनित्रा पवार को भविष्य में बड़ा झटका लग सकता है। ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
0: पूरे देश में पारे का प्रकोप देखने को मिल रहा है, पारा 50 के पार जाने को बेकरार है। भीषण गर्मी और लू में कोई राहत नहीं मिलती नजर आ रही। उत्तर भारत और मध्य भारत के बहुत से राज्य इस वक्त भीषण हीट वेव की चपेट में हैं। तापमान 45 डिग्री से लेकर 48 डिग्री तक पहुंच चुका है। महाराष्ट्र के विदर्भ में प्रचंड गर्मी से लोगों के हाल बेहाल हैं। वर्धा में तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। सवाल अब यह है कि ऐसी झुलसा देने वाली गर्मी से आखिर राहत कब मिलेगी।

0: अभी ये गर्मी और कितना झुलसाएगी, कब तक लू इतना रुलाएगी। 48 डिग्री तक तो पारा पहुंच गया, क्या 50 भी पार करेगा। अब की बार गर्मी का क्यों इतना ज्यादा अत्याचार। भीषण गर्मी और लू से कहीं कोई राहत की खबर नहीं है। मौसम विभाग ने पहले ही बता दिया था कि अगले 7 दिनों तक कोई राहत नहीं मिलने वाली। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और ओडिशा सहित कई राज्यों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी है। ये भी चेतावनी है कि इन राज्यों में हीट स्ट्रोक का खतरा सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए बहुत ज्यादा है। राजस्थान में बुरा हाल है, यहाँ श्रीगंगानगर जिले में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया, 46.5 डिग्री सेल्सियस। राजस्थान में करीब 15 शहरों में तापमान 45 डिग्री के पार चला गया है। महाराष्ट्र में सबसे बुरा हाल विदर्भ इलाके का है, यहाँ वर्धा में तापमान 47.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विदर्भ में 11 जिले हैं, सभी जिलों में तापमान 45 डिग्री से ऊपर है।
1: नवतपा शुरू होने को है, उससे पहले ही विदर्भ के कुछ शहरों का तापमान 47 डिग्री को पार कर चुका है। 20 मई की अगर बात करें तो विश्व के सबसे गर्म शहरों में विदर्भ के दो शहर शामिल थे, जिसमें वर्धा और नागपुर का समावेश था। वर्धा का 20 मई का तापमान 47.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड दर्ज किया गया, जबकि नागपुर का तापमान जो है वो 46.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नागपुर की अगर बात करें तो पिछले 10 साल का रिकॉर्ड जो है वो टूट गया है। नागपुर प्रादेशिक का मौसम विभाग के अधिकारियों की अगर माने तो अगले 5 से 7 दिनों तक नागपुर वासियों को और विदर्भ वासियों को भी इस भीषण गर्मी से राहत मिलती नहीं दिख रही है।
0: नागपुर में सीजन का रिकॉर्ड तापमान 46.6 डिग्री, अमरावती में 46.4 डिग्री और चंद्रपुर में 46.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। वहीं गढ़चिरौली में 45.6, अकोला और यवतमाल में 45.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 5 से 6 दिन में तापमान और बढ़ेगा।
2: तो जैसा अभी हम देख पा रहे हैं कि अभी कोई भी मौसमी प्रणालियां जो है क्षेत्र के ऊपर विकसित नहीं हो पा रही है, हमारे ऊपर ऐसी कोई भी हवाएं जो है नमी लेकर नहीं आ रही है। साथ ही साथ हम देखेंगे ऊपरी हवाओं में, अगर हम बात करें समुद्र से 3.1 या 5.8 किलोमीटर पे एक प्रति चक्रवात बना हुआ है जो अपने को सबसिडेंस कोच कर रहा है, और साथ ही जो हवाएं हैं निचली वायुमंडल में जो हवाएं हैं वो लगातार शुष्क और ड्राई एयर आ रही है, जो नॉर्थ वेस्टर्नली विंड होती है वो आ रही है। और साथ साथ अभी हम देखेंगे कि जो अभी ऐसी कोई भी जो आकाश है पूरी तरह से बादल रहित है, जिससे हम देख रहे हैं कि तापमान जो है अधिक से अधिक बन के आ रहा है, और ये जो भी तापमान की जो टेंडेंसीज है जो प्रवृत्ति अगले आने वाले 5 से 7 दिन तक बने रहेंगे, अगले आने वाले 5 से 7 दिन में। जैसा कि हम कल की बात करें, नागपुर और वर्धा का जो तापमान है कल 10 सालों में अधिकतम रिकॉर्ड किया गया है, जो अभी 10 साल की अगर हम बात करें तो जैसे कल वर्धा का तापमान जो 47.1 रहा है और नागपुर का जो तापमान रहा 46.6 रहा है, जो पिछले 10 साल में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है।
0: ऐसे हालात में बस राहत की एक खबर है कि 26 मई को मानसून केरल पहुंच जाएगा, लेकिन उत्तर भारत में आते आते आधा जून बीत जाएगा, यानी अभी उत्तर और मध्य भारत को लगभग एक महीने तक कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है।
3: ये देखेंगे, अगर ये मैप देखेंगे तो आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको ईस्ट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में वार्निंग जो है वो रेड अलर्ट जो है, रेड वार्निंग जो है वो दी गई है। वहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड की जो कंडीशन है वो लगातार बढ़ती जाएगी, लेकिन आज से एक पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय होगा पहाड़ी राज्यों में, जिसका असर जम्मू कश्मीर और हिमाचल के राज्यों में जो है वो देखने को मिल सकता है।
0: गर्मियां आते ही ऐसा लगता है कि सरकार की हर घर जल और जल जीवन मिशन जैसी योजनाएं भी फेल हो गई। ये तस्वीरें तो बता यही रही हैं। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक और महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़, झारखंड तक हालात एक जैसे ही हैं। ये मुंबई से सटा पालघर जिला है, जहां एक तरफ बुलेट ट्रेन और मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे बड़े प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आदिवासी बस्तियों के लोग आज भी पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधा के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। ये डहाणू तहसील है, जहां सैकड़ों परिवारों को रोजाना पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जल जीवन मिशन पर करोड़ों रुपए खर्च होने के दावों के बावजूद यहां के नल आज भी सूखे पड़े हैं। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि गांव के बोरिंग और कुएं भी पूरी तरह सूख चुके हैं। पानी के पारंपरिक स्रोत खत्म होने के बाद अब गाँव वालों को जंगलों में बने गड्ढों और डबकों का सहारा है। विडम्बना देखिए, जिस पानी से जानवर अपनी प्यास बुझा रहे हैं, उसी प्रदूषित पानी से गाँव वालों को भी प्यास बुझानी पड़ रही है। नागपुर से योगेश पांडे और पालघर से मोहम्मद हुसैन खान के साथ आज तक ब्यूरो।
4: और इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
6: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
7: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
8: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
6: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
5: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: अब मुंबई में समुद्र से कचरा हटाने के लिए बिना इंसानों वाली रोबोटिक नाव तैयार की गई है। बीएमसी ने समुद्र में तैरते कचरे को हटाने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया और बदवार पार्क में इलेक्ट्रिक नाव तैनात कर दी है। बीएमसी का दावा यह है कि रोजाना लगभग 80 से 90 किलो तैरता हुआ कचरा इकट्ठा कर लिया जाएगा इसके जरिए।
9: इस वक्त हम मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया इलाके में हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं टूरिस्ट बोट्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीएमसी के सामने एक चैलेंज है कि जो समुद्री तट है मुंबई का, उसके आसपास जो कचरा है उसे कैसे निकाला जाए। इसीलिए आप सामने जो देख रहे हैं एलिसियम, ये अनमैन्ड बोट है इलेक्ट्रिक उस पर चलने वाली पावर पे, और ये आप कह सकते हैं ऐसी दो बोट, एक गेटवे ऑफ इंडिया पर और एक कफ परेड में बदवार पार्क पर लाई गई है बीएमसी की तरफ से। जो कन्वेयर बेल्ट ब्लू कलर का है, ये जो कचरा है वो पिकअप कर समुद्र से अंदर बोट में डालता है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप कह सकते हैं कि बीएमसी ने इसीलिए शुरू किया है क्योंकि जो समुद्र के आसपास कचरा दिखता है उसे साफ किया जा सके। नीलेश वाकोड़े जो कि इस प्रोजेक्ट के हेड है, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में क्या जानकारी आप दे सकते हैं?
10: सर, बेसिकली अभी ये कैसे ये कॉन्सेप्ट अनमैन्ड बोट का क्यों है कि यहाँ पे तीन चीजें प्रायोरिटी पे है। एक फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी, सेकंड डिग्निटी है, और दूसरी बात में जीरो इमर्शन। जीरो इमर्शन यानी ये इलेक्ट्रिकल बोट है, इसकी वजह से यहाँ पे आपको बोट को खाली चार्ज करना है, उसके बाद आप ऑपरेट कर सकते हैं। ये जो सेकंड स्टेप है जहाँ पे जो कन्वेयर है, वो कन्वेयर में आपको जो गार्बेज है साइड गार्बेज पूरा कलेक्ट होता है। और सेकेंड थिंग क्या होता है कि कोई कॉर्नर पे जो जगह रहेगी वहाँ पे ये इजिली जा सकता है बिकॉज ऑफ दिस कन्वेयर
9: जी।
10: हाँ, सेकेंड थिंग फिर ये सब इसमें जमा हो जाता है, सब गार्बेज पूरा इसमें जमा हो जाता है। और इसका जो रेंज है वो जो रेंज है 1 किलोमीटर का है, और इसका जो हॉपर का कैपेसिटी है 800 से 1000 किलो तक है। और ये मिनिमम आप गेटवे का अगर कचरा देखेंगे, जो गार्बेज देखेंगे, तो उसका 200 से 400 तक उसका लिमिट है। बदवार पार्क का है वो आपका 150 से 250 तक जाता है। इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशन, ये कैसे जैसे टाइड होता है वैसे कचरा बढ़ता है, कम ज्यादा होता है, वो हिसाब से आप
9: बोट को ऑपरेट कैसे किया जाए।
10: बेसिकली सर एकदम इजी सिस्टम है, इसमें दो चीजें है, थ्रस्टर और कन्वेयर। स्टार्ट करने के लिए पहले इसको अपने को बैटरी लगाना पड़ता है, दो बैटरी है उसको। दोनों बैटरी लगाने के बाद, कनेक्ट करने के बाद वहां पे एक स्विच है, उसको ऑन करना है। बेसिकली हमारा एक टेस्टिंग रहता है डेली रूटीन का, उसमें हम लोग चेक करते हैं, उसके बाद ये सब चीजें अटैच होने के बाद में थ्रस्टर चेक करते, थ्रस्टर लगाने के बाद में हमने बोट स्टार्ट कर ली। फिर इसका राउंड अप कैसे कि आप जहाँ पे आपका गार्बेज है यहाँ पे ये बाय रिमोट ये बोट ऑपरेट किया जाता है।
9: ओके,
10: इसी के लिए उसका पर्टिकुलर रेंज दिया है 1 किलोमीटर का। तो ये रेंज से हम लोग बोट गार्बेज की तरफ ले जाते हैं और ये जो कन्वेयर है वो कन्वेयर का जो फ्रंट बेस है वहाँ पे एग्जैक्टली कचरा कन्वेयर पे आके वो हॉपर में जमा हो जाता है।
4: और इसी खबर के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: Jack FM is now streaming commercial free on TuneIn Premium.
11: Jack, you're killing me.
7: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
12: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

राज्य परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री ने देखा मंत्रालय का रिपोर्ट कार्ड, कामकाज पर मंत्री ने दिया प्रेजेंटेशन, पीएम ने ईज ऑफ लिविंग और रिफॉर्म पर जोर दिया, कहा 2047 को ध्यान में रखते हुए करेगा। प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से बड़े निवेश को मिली मंजूरी, पीयूष गोयल का बड़ा बयान, सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा समेत कुल 57 बड़े समझौते, विपक्ष ने फिर उठाए सवाल। मारुति ने कारों के दाम में किया 30,000 तक का इजाफा, जून से लागू हो जाएंगी नई कीमतें, बिहार में सुधा और राजस्थान में सरस ने दूध की कीमत में बढ़ाए 2 रुपए। नीट कांड को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को फिर से घेरा, पोस्ट में लिखा यहां पेपर लीक से युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, वहां इटली में मोदी रील बना रहे हैं। बंगाल में बकरीद में गायों की कुर्बानी पर बरकरार रहेगी रोक, शुभेंदु सरकार के फैसले पर रोक लगाने वाली याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट से खारिज, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का दिया गया हवाला।

दिल्ली में पीएमओ दफ्तर सेवा तीर्थ में मंदिर परिषद की बड़ी बैठक, प्रधानमंत्री से मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की, वैश्विक हालात और ऊर्जा संकट पर भी चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों को 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य, शासन में सुधारों और नागरिकों के लिए ईज ऑफ लिविंग को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए भी कहा। नीट कांड को लेकर राहुल गांधी का सरकार पर प्रहार, बोले नीट पेपर लीक से युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, प्रधानमंत्री ने धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाया। पिता राजीव गांधी की 35वीं पुण्यतिथि पर बेटे राहुल गांधी का भावुक संदेश, कहा पापा मैं पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा और आपके सपनों का भारत जरूर बनाऊंगा। संसद की स्टैंडिंग कमेटी के सामने एनटीए चीफ अभिषेक सिंह की पेशी, बोले नीट पेपर लीक नहीं हुआ, बस कुछ सवाल बाहर आए। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनर्मतदान खत्म, करीब 88% मतदान दर्ज। हावड़ा में सीएम शुभेंदु अधिकारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े फैसले, मदरसों में वंदे मातरम गाना होगा अनिवार्य। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार का बड़ा ऐलान, बोले अगर सब ठीक रहा तो 13 साल के बाद होंगे हावड़ा नगर पालिका के चुनाव। पश्चिम बंगाल में बकरीद में गायों की हत्या पर जारी रहेगी रोक, शुभेंदु सरकार के फैसले पर रोक लगाने वाली याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट से खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय का हवाला दिया। सीएम शुभेंदु अधिकारी की बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा फैसला, पश्चिम बंगाल में सीए लागू होते ही घुसपैठियों को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू। घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए सीएम शुभेंदु अधिकारी का बड़ा कदम, बांग्लादेश बॉर्डर पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को दी गई 75 एकड़ जमीन। मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी का आज पहला दिल्ली दौरा, प्रधानमंत्री मोदी से हो सकती है मुलाकात। पश्चिम बंगाल में लगातार और बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी टीएमसी, ममता बनर्जी ने बीजेपी पर गरीबों को बेघर करने के आरोप लगाए। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को गृहमंत्री शाह पर टिप्पणी के मामले में मिली राहत, कलकत्ता हाईकोर्ट में 31 जुलाई तक दंडात्मक कार्रवाई पर रोक, देश छोड़कर न जाने की आदेश। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजी के रेप केस में 3 सदस्यों को सीबीआई टीम गठित की है, नए सिरे से जांच के आदेश, 25 जून तक जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया। पश्चिम बंगाल में बमबाजी कर मुंबई में छुपे थे आरोपी, क्राइम ब्रांच ने देवनार में जाल बिछाकर 3 को अरेस्ट किया। सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के मामले में 5वीं गिरफ्तारी, आर्म्स एक्ट के तहत यूपी के बलिया से आरोपी नवीन अरेस्ट किया गया। दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद ने हाईकोर्ट में दायर की अंतरिम जमानत याचिका, आज सुनवाई की जाएगी। मारुति सुजुकी ने कारों के दामों में किया 30,000 रुपए तक का इजाफा, जून से लागू हो जाएंगी नई कीमतें। बिहार में सुधा शक्ति और राजस्थान में सरस दूध की कीमतें बढ़ गई हैं, 2 रुपए प्रति लीटर हो गया है इजाफा। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड आतंकी लिस्ट में हमजा बुरहान की हत्या, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के मुजफ्फराबाद में अनजान लोगों ने मारी थी गोली। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी की हाई लेवल बैठक, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 5.0 की तैयारियां तेज हुई, 7 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर चर्चा। सीएम योगी ने इन्वेस्ट यूपी से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की, लैंड बैंक बढ़ाने पर दिया जोर, बोले प्रदेश के हर जनपद में पहुंचना चाहिए निवेश। ईंधन संकट में निपटेगी यूपी सरकार, ऑफिसर्स को साइकिल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की सलाह। यूपी के लाखों कर्मचारियों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, डीए में 2% की बढ़ोतरी। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में 46वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप भव्य समापन हुआ, इसका सीएम योगी ने विजेताओं को सम्मानित किया। यूपी में 9 IPS अधिकारियों का तबादला, 4 ADG को प्रमोशन मिला, आलोक सिंह बने पीएसी के नए डीजी। रांची में 8 इनामी नक्सली समेत 27 नक्सली मुख्य धारा में लौटे, हथियारों के साथ झारखंड पुलिस ने के सामने आत्मसमर्पण किया था। नक्सलियों के सरेंडर पर सीएम हेमंत सोरेन बोले अब सिर्फ 49 इनामी बचे, मुख्य धारा में लौटने पर सरकार देगी 1.5 से 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पुलिस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए डायल 112 फेज 2 सेवा की शुरुआत, पुलिस के बेड़े में 39 नई डायल और 112 गाड़ियां शामिल, AI तकनीक से लैस हैं सभी वाहन। मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास अतिक्रमण पर एक्शन जारी है, अब तक करीब 500 अवैध झुग्गियों पर चलाया गया है बुलडोजर। बांद्रा में बुलडोजर कार्रवाई के बीच हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने 15 आरोपियों को हिरासत में लिया है। बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया भी मौके पर पहुंचे, सरकार का समर्थन करते हुए कहा जमीन माफियाओं पर ऐसे ही शिकंजा कसा जाना चाहिए। पुणे में नीट परीक्षा पेपर लीक के मामले में सीबीआई की पूछताछ जारी है, डॉक्टर समेत कई नई गिरफ्तारियां हुई। मुंबई में 5.62 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फ्रॉड गॉडमैन उर्फ कैप्टन को किया गया गिरफ्तार, ईडी ने पीएमएलए के तहत हिरासत में लिया। दिल्ली में एनसीआर टैक्सी और ऑटो यूनियंस की तीन दिन की हड़ताल शुरू हुई है, पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी से ड्राइवर यूनियन ने किराया बढ़ाने की मांग की। इंदौर में नगर निगम का अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान, सड़क चौड़ीकरण के लिए कई निर्माण ध्वस्त किए गए। प्रयागराज के अस्पताल में अधिवक्ता और डॉक्टर्स के बीच झड़प के बाद तनाव, सुरक्षा की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी।
प्रयागराज के 34 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हुई लेखपाल भर्ती परीक्षा, कुल 13,752 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। सोने और चांदी की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी, 600 रुपए बढ़कर 1,65,000 रुपए, 500 रुपए पहुंचा है गोल्ड और 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 5,000 रुपए बढ़कर 2,71,000 रुपए पहुंची। अयोध्या के दुर्गा मंदिर में 29 मई को ध्वजारोहण समारोह, 3,500 से ज्यादा महिलाएं बनेंगी अतिथि। मां जगदम्बा मंदिर के शिखर पर पहली बार महिला संत करेंगी ध्वजारोहण, राम मंदिर आंदोलन में महिलाओं के अतुलनीय योगदान को किया जाएगा याद। उत्तराखंड के द्वितीय केदार धाम पर महादेव के दर्शनों के लिए लंबी कतारें, धूमधाम से खोली।

दिया है। गुरुद्वारे के आसपास से ही हटाई गई है बर्फ। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में 24 मई तक जारी किया है गंभीर हीटवेव का अलर्ट। दिन में 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने का अनुमान। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए जारी कर दिया रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट। पंजाब, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार में लोगों को गर्मी से सावधानी बरतने की अपील। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में प्रचंड गर्मी से लगातार बढ़ रहा है तापमान। मौसम विभाग ने जारी किए हीट स्ट्रोक की चेतावनी। जयपुर में हीट वेव ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। 45 डिग्री तक पहुंचा तापमान, आज प्रशासन अलर्ट मोड पर। यूपी के बांदा में 5वें दिन 48 डिग्री तापमान रहा। मौसम विभाग की लोगों से सावधानी बरतने की अपील। यूपी में भीषण गर्मी को लेकर सीएम योगी सख्त हुए, कहा इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे तैयार। सीएम योगी ने सभी जिलों के डीएम, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और राहत एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। महाराष्ट्र में प्रचंड गर्मी का दौर जारी है। नागपुर में 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए पारा 47 डिग्री के पार। अमरावती में भी 47 डिग्री के आसपास। चंद्रपुर में 46.2 रिकॉर्ड किया गया है तापमान। गढ़चिरौली में 45 डिग्री के आसपास तो अकोला में, यवतमाल में भी 45 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के लोगों से अधिक पानी पीने और बिना वजह घर से बाहर न निकलने की अपील। नोएडा के कबाड़ गोदाम में लगी आग से आसपास मच गया हड़कंप। दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में किराना गोदाम में लगी विकराल आग। ऊंची लपटों से अफरा तफरी मची, दूर तक धुएं का गुबार। अकोला के सिटी हॉस्पिटल में शॉर्ट सर्किट से एसी में ब्लास्ट हुआ। जोरदार धमाके के बाद आईसीयू में भीषण आग लगी। सभी 18 मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। महाराष्ट्र के ठाणे रेलवे स्टेशन के पास मार्केट में भीषण आग लगी थी। फायरमैन समेत 2 की मौत हुई, 2 घायल हुए। पश्चिम बंगाल के आगरा रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी में संदिग्ध साजिश का खुलासा हुआ। भीड़ में दहशत फैलाने की कोशिश में शख्स ने आग लगाई। बागेश्वर के जंगलों में लगी आग थमने का नाम नहीं ले रही। आग के धुएं से लोगों का जनजीवन प्रभावित, वन विभाग काबू पाने में जुटा। नैनीताल के भवाली में 100 फीट गहरी खाई में गिरी थी कार, 5 लोगों की मौत हुई, 1 घायल हुआ। ऋषिकेश में महिला से छेड़छाड़ के आरोपों पर बवाल। गुस्साई भीड़ ने हरियाणा से आए 2 पर्यटकों को जमकर पीटा, मचा हड़कंप। वाराणसी पुलिस ने शराब की तस्करी कर रहे युवक को गिरफ्तार किया। चेकिंग के दौरान सूटकेस से भारी मात्रा में शराब और बियर की बोतल बरामद। वाराणसी में मामूली सी कहासुनी के बाद दरोगा ने महिला के साथ बर्बरता की। वीडियो संज्ञान में आते ही एसपी ने निलंबित किया। बिहार के मुंगेर में हथियार के बल पर नाबालिग से गैंगरेप। शादी से इनकार करने पर प्रेमी ने झील पर बुलाकर दोस्तों के साथ दुष्कर्म किया, 1 आरोपी गिरफ्तार। एमपी के रायसेन में बेतवा नदी में कचरा डंपिंग को लेकर हंगामा। इलाके की नगर पालिका पर पवित्र नदी को प्रदूषित करने के आरोप, जांच की मांग। मणिपुर में उग्रवादी संगठनों के 4 सदस्य गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किया गया। लखनऊ ऑनर किलिंग केस का सनसनीखेज खुलासा। युवती की हत्या कर शव के टुकड़े ट्रेन में रखे, पिता समेत 3 की गिरफ्तारी। मुंबई के वर्सोवा जुहू लिंक रोड पर तेज रफ्तार बस ने कई वाहनों को टक्कर मारी। हादसे के बाद अफरा तफरी मची, लंबा ट्रैफिक जाम लगा। अमेठी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने को लेकर यात्रियों में मारपीट हुई। जमकर लात घूंसे चले, एक दूसरे पर फेंके गए थे बैग। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 33 साल के इंजीनियर ने खुदकुशी की। सोसाइटी के अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल से कूदा शख्स। लातूर में आवारा कुत्तों के हमले से 22 साल के युवक की इलाज के दौरान मौत हुई। परिजनों ने नगर निगम के खिलाफ किया प्रदर्शन। जामनगर में पेट्रोल पंप पर किसानों का हंगामा। डीजल न मिलने से गुस्साई भीड़ ने तोड़ा गैलन। गुजरात के पाटन जिले में नील गाय के अवैध शिकार का मामला सामने आया। जांच में जुटा वन विभाग। मौके से एक कार और नील गाय के शव बरामद किए गए। क्राइम थ्रिलर बंदर का धमाकेदार ट्रेलर आउट हुआ। एक्टर बॉबी देओल का दिखा दमदार अवतार। फिल्म 5 जून को रिलीज होगी। स्पोर्ट्स ड्रामा पैडी का दमदार ट्रेलर आउट हुआ। रामचरण, जानवी कपूर, दिवेंद्यु शर्मा के साथ कई कलाकार। फिल्म 4 जून को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी। ओटीटी पर देखेगा क्राइम कॉमेडी का तड़का। फिल्म मां बहन के स्टारकास्ट का पोस्टर रिलीज किया गया। रवि किशन, माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी, धरना दुर्गा के किरदार सामने आए। आज मां बहन का ट्रेलर होगा आउट। दिखेगा धक धक गर्ल का रहा अंदाज। फिल्म 4 जून को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जाएगी। विंटेज मिर्जापुर ओटीटी के बाद अब बड़े पर्दे पर धमाका करने को तैयार है। मुन्ना भाई की वापसी की मांग अभी भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट और जेप्टो जैसी कंपनियों के डिलीवरी खर्च में इजाफा हुआ है। इस बढ़े हुए खर्च का बोझ ग्राहकों पर डालकर डिलीवरी चार्ज बढ़ा सकती हैं कंपनियां। सोने की महंगी कीमतों की वजह से लोन टू वैल्यू रेशियो में हुए इजाफे ने गोल्ड लोन में डिमांड 50% बढ़ा दी है। दक्षिण भारत के 5 राज्यों की कुल गोल्ड लोन में 75% की हिस्सेदारी। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली कंपनियों के लिए चीन से पार्ट्स लाना मुश्किल हो गया है। सप्लाई चेन पर चीन की सख्ती के बाद भारतीय कंपनियों ने सरकार से तुरंत मदद की गुहार लगाई। बीते 12 साल में भारत से टॉफी निर्यात 166% से बढ़कर 132 करोड़

पर पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पर बताया कि 2013-14 में देश में टॉफी का कुल एक्सपोर्ट 49.68 करोड़ रुपए था। लोन डिफॉल्ट होने पर बैंक ग्राहकों के मोबाइल फोन ब्लॉक नहीं कर सकेंगे। आरबीआई के निर्देश के मुताबिक केवल बैंक लोन से खरीदे गए फोन को ही बंद करने का अधिकार होगा। ईरान युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच फोन कॉल पर तीखी बहस। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ईरान के साथ समझौता चाहता है। अमेरिका ईरान में युद्ध खत्म करने की कोशिश तेज। तेहरान पहुंचे पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगाची से मुलाकात की। हज यात्रा के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमला करने से रोका। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हज और बकरीद के दौरान सैन्य कार्रवाई के मुस्लिम दुनिया में बड़ा गुस्सा और भड़क सकता था। ताइवान को अमेरिकी हथियारों की सप्लाई पर भड़का चीन। कहा, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं, अगर ऐसा हुआ तो चीन अमेरिका में बढ़ जाएगा तनाव। ब्लैक सी में टकराते बचे रूस और ब्रिटेन के विमान। रूसी फाइटर जेट्स ने ब्रिटिश जासूसी विमान को खतरनाक तरीके से रोका। रूस और बेलारूस का परमाणु सैन्य अभ्यास। आसमान और समंदर में गरजते हुए नजारे रूसी फाइटर जेट्स। जेलेंस्की के लॉन्ग रेंज प्रतिबंधों पर भड़का रूस। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा, जानबूझकर यूक्रेन संघर्ष को भड़काने में जुटे हैं जेलेंस्की। रूस ने चीन में अपने सैनिकों की सीक्रेट ट्रेनिंग की खबरों को नकारा। रॉयटर्स की रिपोर्ट को बताया पूरी तरह से झूठा। कहा, पश्चिमी मीडिया की खबरों पर न करें भरोसा। बाल्टिक देशों में ड्रोन घुसपैठ पर नेटो चीफ मार्क रूटे का बड़ा बयान। नेटो हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई का बना नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक ही दिन में रिकॉर्ड 274 पर्वतारोहियों ने माउंट एवरेस्ट पर हासिल की फतह।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि मजहब, मस्जिद और अवैध कब्जे का गठजोड़ देश के कानून से सुरक्षा की गारंटी कैसे बन चुका है। मतलब देश के कानून से बचना है, धर्म की दीवार बना दो, सरकारी जमीन पर कब्जा करो, वहां मस्जिद या मजार बना दो, जब जमीन खाली कराई जाए तो मजहब पर हमला बता दो। मुंबई के गरीब नगर में रेलवे की 600 करोड़ की जमीन, आप सोचिए जमीन किसकी, रेलवे की, कीमत कितनी, 600 करोड़ रुपए। और उस जमीन से अतिक्रमण हटाने पहुंचे प्रशासन पर हिंसक भीड़ ने पथराव कर दिया। एक तो पुलिस प्रशासन पर हमला, दूसरा जमीन रेलवे का कब्जा आया है, दावा किया गया कि बुलडोजर मुसलमानों के हक पर चल रहा है। हमारे देश में सरकारी जमीन, रेलवे की जमीन, यहां तक कि सेना के हजारों एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा एक राष्ट्रीय समस्या बन गई। और जब यह अतिक्रमण धर्म की आड़ में होता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई करना नामुमकिन बना दिया जाता है। आज बड़ा सवाल यह है कि क्या धर्म के नाम पर सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जे को सही ठहराया जा सकता है। इसके बाद आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में बकरीद की कुर्बानी पर कोहराम क्यों मचा है। शुभेंदु सरकार ने नया नोटिस जारी करते हुए एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट को सख्ती से लागू कर दिया है, जिसके बाद अब ना तो खुले में कुर्बानी होगी, ना बिना सर्टिफिकेट के मवेशी कटेंगे और नियम तोड़ा जाए, और नियम तोड़ा तो सीधे जेल। ममता सरकार के दौर में जिन नियमों को ताक पर रख दिया गया था, आज वो सख्ती से लागू हो चुके हैं, जबकि टीएमसी नेता इसका विरोध कर रहे हैं। और आखिर में आपको बताएंगे कि कैसे अज्ञात हमलावर पाकिस्तान में छिपे भारत के दुश्मनों के लिए काल बन चुके हैं। अब पुलवामा हमले का एक और मास्टरमाइंड आतंकी हमजा बुरहान उर्फ डॉक्टर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद में मारा गया है, पीओके में उसकी मौत हुई है, उसकी हत्या की गई है। आईएसआई ने उसे स्कूल का प्रिंसिपल बनाकर छिपा रखा था, लेकिन हमलावर ने गोलियों से भूनकर उसका भी हिसाब चुकता कर दिया। लेकिन आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम इन तस्वीरों से करना चाहते हैं जो मुंबई के गरीब नगर इलाके से आई हैं। ये वही इलाका है जहां बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास सरकारी जमीन पर बनी 400 से ज्यादा झुग्गियों पर बुलडोजर चलाने के लिए आया था। ये सरकारी जमीन है, ये याद रख के ही ये देखिए। इसी दौरान हिंसक भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी और ये कहा कि ये बुलडोजर मुसलमानों के हक पर चलाया जा रहा है। देखिए, ये तस्वीरें उस गठजोड़ को दिखाती हैं जो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और अवैध कब्जों के लिए सुरक्षा की गारंटी बन गया है। और यह गठजोड़ है धर्म और अतिक्रमण का। हमारे देश में सड़क, हाईवे, सरकारी संपत्तियों पर जो अवैध कब्जे धर्म के नाम पर होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। ऐसे मामलों में अतिक्रमण को धार्मिक रूप मिलता है और फिर सालों साल ये मामले या तो अदालत में लंबित रहते हैं या इनके नाम पर हिंसा, इनके नाम पर दंगे किए जाते हैं और हालात ऐसे हो जाते हैं कि ये अवैध कब्जे कैसे देखते ही देखते स्थायी हो जाते हैं। जो कल तक था ही नहीं, सड़क किनारे आप देखिएगा कि वहां पर वो धर्म के आधार पर अतिक्रमण हो चुका है और रोज आप गुजरते गुजरते आप भी अभ्यस्त हो जाते हैं और लगता है कि ये शुरू से यहीं पर था, जैसे यहीं का हिस्सा रहा हो। लेकिन इन्हें सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर स्वीकार कर लिया जाता है और मुंबई में भी इस वक्त यही हो रहा है। धर्म के नाम पर स्वीकारोक्ति क्यों मिलती है? क्योंकि यह माना जाता है कि अगर इसको हटाया गया तो धर्म के आधार पर विरोध होगा और धर्म के आधार पर ऐसे विरोध को कोई झेलना नहीं चाहता है। लेकिन सवाल है, यह सरकारी जमीन है, ये मुंबई में रेलवे की 5200 वर्ग मीटर जमीन है और कई सालों से इस पर अवैध कब्जा था, जिसकी अनुमानित कीमत जानते हैं कितनी है? 600 करोड़ रुपए। रेलवे की जमीन, 600 करोड़ रुपए की जमीन, और रेलवे ने इस जमीन को खाली कराने के लिए एक बहुत लंबी कानूनी लड़ाई अपनी ही जमीन के लिए। रेलवे जैसे सरकारी विभाग को भी एक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी, जो वो लंबे सालों तक लड़ी। लेकिन इसी दौरान रेलवे की जमीन पर जब ये मामला कोर्ट में चल रहा था, लंबा खींच रहा था, रेलवे की जमीन पर नई नई झुग्गियां और ढांचे बनते गए और इन अवैध ढांचों को बचाने के लिए यहां एक मस्जिद भी बना दी। अब आप ये देखिए, ये सोचा गया कि अगर यहां रेलवे की जमीन पर एक मस्जिद होगी तो बाकी का अवैध कब्जा भी इसके कारण सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि किसी भी धार्मिक स्थल पर बुलडोजर चलाना या उसे अवैध बताकर उसे हटाना बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। लोगों की आस्था, उनके विश्वास, उनके धर्म से जुड़ा मामला बनाकर विरोध के लिए सैकड़ों लोग उतर सकते हैं। और फिर इसको धर्म का चश्मा भी दिया जाता है कि जानबूझकर एक धर्म को टारगेट करने के लिए इसे हटाया जा रहा है। तो ऐसे में सोचा गया कि अगर आपको एक गारंटी चाहिए सुरक्षा की, तो वहां पर एक मस्जिद भी बना दीजिए। जबकि सब जानते थे यह अवैध जमीन है, ये रेलवे की जमीन है, लेकिन वहां पर एक के बाद एक जो जो बनाना था वो चलता गया। साल 2017 में रेलवे ने अपनी जमीन को खाली करने के निर्देश जारी किए और सभी लोगों को यह बताया गया कि जमीन पर मालिकाना हक रेलवे का बनता है। लेकिन यहां अवैध मकान, अवैध झुग्गियां बनाने वाले लोग अदालत चले गए और इसके बाद अदालत ने जमीन का सर्वे करने का बाकायदा आदेश दिया कि भाई जाइए और सर्वे कीजिए। इस सर्वे का मकसद ये पता लगाना था कि कानूनी रूप से जिन लोगों को इस जमीन का पात्र माना जा सकता है और उन्हें दूसरी जगह या घर दिया जा सकता है। अब देखिए, 2021 में जब सर्वे हुआ तो इसमें कानूनी रूप से सिर्फ 100 लोग ही असली पात्र माने गए और बाकी ढांचों को अवैध माना गया। 100 लोग जो शुरू में आए थे। इस पूरी कार्रवाई और लंबी सुनवाई के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि रेलवे को पूरा हक है, ये रेलवे की जमीन है, ये सरकार की रेलवे की जमीन है, रेलवे की जमीन उसको वापस मिलनी चाहिए। और इसी आदेश पर जो वहां पर स्थानीय प्रशासन है और पुलिस है, उसने बुलडोजर कार्रवाई शुरू की, क्योंकि वहां पर झुग्गियां, मस्जिद, जैसा कि हमने आपको बनाया, सब कुछ बना ली गई थी। लेकिन इसी दौरान इस कार्रवाई के बीच क्या आ गया? धर्म आ गया। प्रशासन ने रेलवे की जमीन पर बनी एक 3 मंजिला अवैध वहां पर मंजिल है, उसको हटाया तो कई लोग धर्म का कार्ड खेलने लगे। ये कहा गया कि मस्जिद के ऊपर बुलडोजर कैसे चलाया जा सकता है, ये 3 मंजिला वहां पर बताया जा रहा है मस्जिद थी, जबकि सच ये था कि ये मस्जिद बहुत पुरानी नहीं थी और इसे रेलवे की जमीन पर गैर कानूनी तरीके से, सब कुछ जानते हुए, रेलवे की जमीन पर कब्जा किया गया और कब्जा करके बनाया गया था। लेकिन कोर्ट के आदेश पर जब कार्रवाई हुई तो यह मामला धार्मिक भावनाओं का बन गया। और आप तो जानते ही हैं, हमारे देश में एक बार धर्म का मामला बन जाए उसके बाद स्थिति बहुत नाजुक हो जाती है। इसके बाद भीड़ ने कैसे पुलिस पर पत्थर बरसाए, उसकी तस्वीर आपके सामने है। एक तो आप कब्जा करें जमीन पर, दूसरा धर्म के नाम पर वहां पर अपने धार्मिक स्थल बना लें, तीसरा कोर्ट में जाकर मामला कानूनी रूप से लड़ें, चौथा कानूनी रूप से जब कोर्ट भी आदेश दे तो आप उसको मानने को तैयार नहीं है, और पांचवा जब पुलिस और प्रशासन अपना काम करने के लिए सरकारी कामकाज में किसी को भी रोकना कानूनन जुर्म है, ये इस देश का कानून, इस देश का संविधान कहता है। लेकिन ये पांचों चीज दरकिनार करते हुए आप इन लोगों का गुस्सा देखिए कि हाथों में पत्थर लिए ये पुलिस और प्रशासन पर टूट पड़े। यानी यह मामला विशुद्ध रूप से अवैध कब्जे का था, लेकिन इसके बावजूद इस मामले में धर्म का कार्ड खेला गया और यह दिखाने की कोशिश हुई कि इस देश में अल्पसंख्यक मुसलमानों के मस्जिद मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। लोगों ने यहां वीडियो, वहां वीडियो, सोशल मीडिया पर तरह तरह के वीडियो डालने लगे कि देखिए मस्जिद को ढहा जा रहा है। ये कोर्ट का आदेश था साहब। और हमारे देश में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो इस नैरेटिव को बढ़ावा भी दे रहे हैं। लेकिन आज हम अवैध कब्जे को बचाने के लिए खड़ी की जा रही धर्म की इस दीवार को गिराना चाहते हैं और आपसे ही पूछना चाहते हैं कि क्या धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, मदरसे के नाम पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को सही ठहराया जा सकता है? नहीं। इसी भारत में अनेकों उदाहरण हैं जब मंदिर भी अवैध रूप से जमीन को कब्जा करके बनाए गए हैं, तो उन्हें हटाया गया है, उन्हें तोड़ा गया है। अनेकों राज्यों में यह हुआ है, गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश, कई जगहों पर जहां पर भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके कोई भी धर्मस्थली बनाता है उसे तोड़ने का अधिकार है, तब पुलिस प्रशासन पर इस तरह से पत्थर नहीं बरसाए गए। और देखिए कैसे हुआ ये, कोर्ट ने फैसला दिया, वो भी तब हुआ जब अदालत ने खुद सर्वे किया, सर्वे करवाया और सर्वे कराकर कई सालों की सुनवाई की, इस अवैध कब्जे को हटाने का आदेश उसके बाद दिया है। देखिए
1: कि बच्चा हैंडीकैप, मेरा घर था, घर तोड़ दिया है, हमको घर के बदले हमारा घर कोई है नहीं कमाने वाला सर।
2: 50 साल हो गए हम लोग को इधर आना, और 50 साल तो ज्यादा दिन गया, लेकिन मैं 50 साल बोल रही हूँ, अल्लाह का खड़ा कर दिया रोड पर, कोई पूछने वाला हम लोग को।
3: ऐसा 1994 का 94 का इलेक्शन कार्ड है, जब से मेरी माँ वोट देते हुए आ रही है, अब बताओ हम लोग कैसा बांग्लादेशी हो गए।
4: रेलवे की जमीन हम मानते हैं, मगर हम जो इतने सालों से रह रहे, 50 साल पुराना हमारे पास डॉक्यूमेंट्स, तो हमको घर के बदले घर दिया जाएगा ना।
5: 50 साल से रह रही, बहुत 40-50 साल होते, उम्र पे ख्याल करो कहीं गई नहीं, मैं यही रही।
6: आज बोल रहे कि इल्लीगल जगह ये है, जब हमने इसको सोना बना दिया तो आज इसको इल्लीगल बताया जा रहा है। कल दलदल तो क्यों नहीं सरकार आई थी?
7: तोड़ दिए, हमें बेघर कर दिया, हम रोडों पे यहाँ पे भी बैठ रहे थे, यहाँ से भी भगा रहे, ऐसे के लिए नहीं भगा रहे।
8: इनलीगल बोलने से काम नहीं चलता है, इनलीगल बोला और तुम्हारी कहानी खत्म, ऐसा नहीं है।
9: पूरे एक्टिविटी में हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि किसी को भी कोई चोट ना आए, जैसा कि आपने देखा कि डेमोलिशन की जो एक्टिविटी आज तीसरा दिन है, अभी तक उस पूरे एक्सरसाइज में, डेमोलिशन की एक्टिविटी में एक भी किसी को खरोंच नहीं आई है, किसी को कुछ हेल्प चाहिए थी वो भी हमने किया।
0: इन तस्वीरों को देखकर हम यही कहना चाहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करना। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक हमारे देश में जिस रफ्तार से स्कूल्स, कॉलेजेस, अस्पताल, घर, फैक्ट्रियां, कारखाने और दफ्तर नहीं बने, उनसे कई गुना रफ्तार से क्या बना, धार्मिक स्थलों का निर्माण हुआ। साल 2001 के मुकाबले साल 2011 में धार्मिक स्थलों की संख्या में लगभग 25.6% की वृद्धि हुई, जबकि इसी दौरान फैक्ट्रियां, कारखानों, दफ्तरों की संख्या में लगभग 13% की बढ़ोतरी हुई। अस्पताल और डिस्पेंसरी की संख्या में 13% की वृद्धि हुई और नए घरों की संख्या में सिर्फ 8.8% की वृद्धि। इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि हमारे देश में नए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च का तेजी से निर्माण, और इनमें भी बहुत सारे धार्मिक स्थल ऐसे हैं जो या तो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाए गए, जिनका निर्माण विवादित भूमि पर हुआ है। उदाहरण के लिए उत्तराखंड की सरकार के मुताबिक पिछले 10 वर्षों में वहां वन विभाग की जमीन पर 300 से ज्यादा अवैध मस्जिदें, 300 से ज्यादा अवैध मस्जिदें, अवैध मदरसे और अवैध मंदिरों का निर्माण हुआ, और जब सरकार ने इनके खिलाफ कार्रवाई की तो बीच में धर्म की एक विशाल दीवार खड़ी हो गई। हलाल टाइम्स के मुताबिक आज पूरी दुनिया में इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा मस्जिद, जानते हैं कहां है? भारत में। इंडोनेशिया में 8 लाख मस्जिदें हैं, भारत में 4 लाख मस्जिदें हैं, बांग्लादेश में 3.5 लाख मस्जिदें हैं, सऊदी अरब में 3 लाख मस्जिदें और पाकिस्तान में 1,10,000 मस्जिदें। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहां मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारे होना कोई विवाद का विषय तो हो ही नहीं सकता, लेकिन जब इन धार्मिक स्थलों का निर्माण सरकारी जमीन पर हो तो इन्हें हटाने या उनके खिलाफ कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है, और मुंबई में यही हुआ। हालांकि इस खबर का दूसरा पहलू यह भी है कि हमारे देश में जब सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा होता है तब इसे उसी समय पर रोकने की ज्यादा कोशिशें होती ही नहीं है। अगर इस मामले में भी उसी वक्त अवैध कब्जे को रोका गया होता जब रेलवे की जमीन पर मस्जिदें बनाई जा रही थी, झुग्गियां बसाई जा रही थी, तभी समस्या ही नहीं पैदा होती। और यहाँ बात सिर्फ एक जगह के अतिक्रमण की भी नहीं है। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक जो मुंबई उपनगर जिला है वहां 91,181 एकड़ जमीन में से 4,194 एकड़ की सरकारी जमीन पर आज अवैध कब्जा है। यानी मुंबई की कुल 4.6% जमीन पर अतिक्रमण हो रखा है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई के ही 4,000 किलोमीटर के फुटपाथ में से 51% फुटपाथ पर अवैध कब्जा था, जिनमें कई अतिक्रमण के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई हो पाई? बिल्कुल नहीं हो पाई। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग ही सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करते हैं। अब देखिए, दिसंबर 2025 में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी के विधायक मंगेश कुडालकर ने सरकारी जमीन पर न सिर्फ अवैध कब्जा किया बल्कि इसके लिए सरकारी फंड का भी दुरुपयोग किया, जिसके लिए विशेष अदालत ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के अदालत ने आदेश दिए। सोचिए, फरवरी 2026 में ED ने बीजेपी नेता JM मात्रे से जुड़ी 17,74,00,000 रुपए की संपत्ति अटैच की। आरोप था कि उन्होंने फर्जी रिकॉर्ड बदलकर जंगल की जमीन अपने कब्जा ली और बाद में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को यही जमीन मुआवजा लिया और बेच दी। इसी महीने वसई विरार के पूर्व पार्षद पर आरोप लगा कि उन्होंने सीवेज प्लांट और डंपिंग ग्राउंड के लिए आरक्षित करीब 60 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा किया और फिर निर्माण भी कर लिया। बहुत लंबी सूची है ये। हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि हमारे देश में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करना बहुत आसान है और इस हमाम में सब शामिल है। हकीकत तो यह है कि हमारे देश में अतिक्रमण या अवैध कब्जा अब एक राष्ट्रीय समस्या है और स्थिति यह है, बहुत सारे लोगों ने इस मामले में सेना की जमीन को भी नहीं बख्शा है, आर्मी की जमीन, वही सेना जो सरहद पर हमारी इंच इंच जमीन की रक्षा करती है, उस सेना की जमीन देश के अंदर कोई कब्जा रहा है। इसी देश में भारतीय सेना की 11,152 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा है। इसी देश में रेलवे की भी 1,000 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है। और जंगलों की बात तो कीजिए ही मत। जंगलों को बचाने के लिए शोर तो बहुत होता है, लेकिन इसी देश में कई लोगों ने वन विभाग की 18,55,000 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है और ये जमीन दिल्ली जैसे 5 शहरों के बराबर। खैर, आगे बढ़ते और आपको ये बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में बकरीद की कुर्बानी पर कोहराम क्यों मचा है और आखिर बकरीद पर गाय और भैंसों की कुर्बानी की जिद क्यों की जा रही है। इसके पीछे पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार का एक नया नोटिस है जिसमें एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए। भाई ये कानून पहले से है और ये कानून क्या कहता है? ये कानून कहता है कि जानवरों को खुले सार्वजनिक स्थानों पर बिल्कुल नहीं काटा जा सकता। ये देश का कानून है और ये कानून बहुत पहले से बना हुआ है। किसी भी जानवर को काटने से पहले फिट फॉर स्लॉटर का सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है और ये सर्टिफिकेट भी तभी मिलेगा जब जानवर 14 साल से ज्यादा उम्र का हो या बीमारी के कारण अक्षम हो या काम के लायक ना बचा। सबसे बड़ी बात क्या है, इस कानून में ये लिखी गई है बात कि जानवरों की कटाई सिर्फ प्रशासन द्वारा तय बुचड़खानों में की जा सकती है और अगर किसी के द्वारा इस नियम को तोड़ा जाता है तो उसे 6 महीने की जेल, 1,000 का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अब ये कानून पश्चिम बंगाल में पहले से था लेकिन ममता बनर्जी की सरकार में कभी इन नियमों को सख्ती से लागू नहीं किया। उस वक्त स्थिति यह थी कि बकरीद के मौके पर हाईकोर्ट इस मामले में दखल देना पड़ता था हाईकोर्ट को और इसके बाद भी इन नियमों का पालन होता नहीं था। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि बकरीद का त्योहार कानून से ऊपर नहीं माना जाएगा और लोगों को नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। जबकि TMC के नेता और हुमायूं कबीर इसका विरोध कर रहे हैं और हुमायूं कबीर ने तो ये कहा है कि बकरीद पर कोई कुर्बानी बंगाल में नहीं रुकेगी। अब ये बहस बार बार होती है कि पश्चिम बंगाल में अब तक सबसे ज्यादा भैंस दूसरे जानवरों को मीट के लिए काटा जाता था, ये सब खुले में होता था क्योंकि TMC की सरकार इस पर कोई अंकुश नहीं लगाती थी। लेकिन आज मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ आंकड़े दिखाना चाहती हूँ जिससे आपको काफी कुछ समझ में आएगा। ये पता चलेगा कि भाई देश के किन हिस्सों में क्या क्या हो रहा है। तो ये राजवार तरीके से पश्चिम बंगाल में कौन से जानवर खाए जाते हैं, तो गोवंश की हम आपको संख्या दिखा रहे हैं, लगभग 1,34,000 भैंस, 89,000 भेड़ जो है वो भी 19,00,000 से ज्यादा, बकरी 4,76,000 मतलब 4.25 करोड़ सबसे ज्यादा। इधर लगभग 17 करोड़ सुअर, पोल्ट्री लगभग 26 करोड़। चलिए जो पोल्ट्री की बात हो रही है, वैसे ही हम आपको तमाम जगहों पर दिखा रहे हैं क्योंकि बात सिर्फ पश्चिम बंगाल की नहीं होनी चाहिए। जब आप देखेंगे तो उससे कहीं ज्यादा बाकी राज्यों में है, जिसमें हमने आपके लिए टॉप 5 जो है वो निकाला है। उसमें आप देखिए केरल में साल 2023-24 में आप देख रहे हैं 9 लाख के आसपास, उसके बाद से 24 और 25 में उतना ही रहता है। फिर तमिलनाडु में 5 लाख के आसपास ही है, चाहे 23-24 हो 24-25 हो। मेघालय में 3,22,355 लगभग 3.25 लाख के आसपास है। पश्चिम बंगाल में 1,41,000 तो वही 1,34 के आसपास है। अरुणाचल प्रदेश में 1,44 और 1,33। तो ऐसा नहीं है, तमाम राज्यों में है जहां पर इस तरह से गोवंश का को काटा गया है। अलग अलग राज्यों की हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर। कितनी अब बात भैंसों की आ रही है तो उसमें भी आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में लगभग 89,88,000 है। तो ये भैंसों की बात हो रही है, ये आपको बता दें ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। इससे गोवंश की पहले बात हो रही थी, जिन राज्यों में ये होता है। भैंसों की बात हो रही है। अब ऐसे ही आप तमाम राज्यों में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, फिर आंध्र प्रदेश में 14,15 लाख के आसपास है, जो कि 16,50,000 हो चुका है 24-25 में। फिर बिहार में भी आप देखिए लगभग ऐसा ही है, तेलंगाना में भी लगभग 14 लाख के आसपास है, केरल में भी लगभग 12-13 लाख के आसपास है, और ऐसे ही पश्चिम बंगाल में इनके मुकाबले अगर आप देखिए तो 87,000 और 89,000 पूरी संख्या है। आज बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या अब भारत में मुसलमानों से बकरीद पर अपने घर के पास कुर्बानी देने का अधिकार भी छीन लिया जाएगा, और क्या ये मुसलमानों पर देश में हमला नहीं है? ऐसे लोगों को आज हम अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप के देशों के कानून के बारे में बताना चाहते हैं, जहां बकरीद पर जानवरों की कुर्बानी के लिए कड़े नियम हैं। खुद को धर्म निरपेक्षता का चैंपियन बताने वाले अमेरिका में लोग अपने घरों पर जानवरों की कुर्बानी नहीं दे सकते। वहां मान्यता प्राप्त बूचड़ खानों में ही जानवरों की कुर्बानियों की दी जा सकती है, और इसके लिए भी बहुत कड़े नियम है, जिसकी वजह से वहां बहुत सारे मुसलमान जानवरों की कुर्बानी नहीं दे पाते। ब्रिटेन, ब्रिटेन में भी इसी तरह के कानून है। ब्रिटेन में मुसलमान ना तो अपने घरों में जानवरों की कुर्बानी दे सकते हैं, और अगर वो किसी मान्यता प्राप्त बूचड़ खाने में ऐसा करने के बारे में सोचते हैं तो इसके लिए उन्हें बाकायदा पहले अपॉइंटमेंट लेना होता है, और वहां कुर्बानी की ये प्रक्रिया बहुत महंगी है और जटिल है, और कोई भी व्यक्ति अपने घर पर या किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में जानवरों को कुर्बानी के लिए नहीं रख सकता। यूरोप के देशों में भी बकरीद पर जानवरों की कुर्बानी को लेकर सख्त कानून है, हालांकि अरब और एशिया के देशों में इसे लेकर ज्यादा सख्ती नहीं है। उदाहरण के लिए यह तस्वीर साल 2016 की है, जब बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बकरीद के मौके पर सड़कों पर जानवरों के खून की नदियां बह रही थी और वहां के ड्रेनेज सिस्टम ने अपना दम तोड़ दिया था। ऐसे अनुमान है कि 17 करोड़ की आबादी वाले बांग्लादेश में सिर्फ बकरीद के मौके पर 1 करोड़ जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। और बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी की सरकार में ऐसे कई सिंडिकेट्स पकड़े गए जो बांग्लादेश में गाय और भैंसों की तस्करी करते थे, और हैरानी की बात यह है कि उस वक्त इन्हें सत्तारूढ़ नेताओं का संरक्षण भी मिलता था। इनमें गाय, भैंस और बाकी पशुओं की तस्करी करने वाला सिंडिकेट सबसे खतरनाक था, जो हर साल 20 लाख मवेशियों की बांग्लादेश में तस्करी कर रहा था। बांग्लादेश में जो ग्रासलैंड है, जहां पर घास उगती है, वो बहुत कम है, जिसके कारण वहां गाय, भैंस, बाकी पशुओं की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। वो इसके लिए भारत से पशुओं की तस्करी कराते। वहां एक गाय 1-2 लाख रुपए में बेची जाती है। इसके पीछे बंगाल में जो सिंडिकेट काम करता था, वो गायों को लकड़ी के फट्टे पर बांधकर नदी के जरिए बॉर्डर पार कराता था। सुरक्षा बल ने रोके नहीं, इसके लिए कई बार गायों के साथ विस्फोटक बांध दिया जाता था ताकि सुरक्षा बल के जवान गाय के पास ना जाए और वो गाय तैरते हुए बांग्लादेश पहुंच जाए। इस सिंडिकेट को कभी रोका नहीं गया, लेकिन केंद्र सरकार ने इस सिंडिकेट को खत्म करने की अब कोशिश की। ईडी ने इस सिंडिकेट के मास्टरमाइंड अनुब्रत बोंडल को 2022 में गिरफ्तार किया, जिसके 36 बैंक अकाउंट्स और बाकी संपत्तियों को जब्त किया गया। और आज जब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इन सारी दुकानों को बंद करा रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि बकरीद कानून के हिसाब से मनानी होगी, बांग्लादेश में मवेशियों की तस्करी पर पूर्ण अंकुश लगेगा, तो इस पर खूब विवाद हो रहा है।
10: स्ट्रिक्ट नियम जो 1950 का नियम में लिखा हुआ है, 14 साल के नीचे के कैटल को काटा नहीं जाएगा, और जो कैटल एकदम ही अस्वस्थ है या अपाहिज है या एज हो गया है, उसको पर्टिकुलर ऑफिसर्स उनको सर्टिफिकेट देना होगा। तो सर्टिफिकेट अगर आप लोग दिखा सकते थे इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1950s का जो आइन हमारे राज्य में है वो दूसरे राज्य में नहीं है, और ये राज्य में बहुत सख्त है। ये अलग बात है कि अभी तक वो आइन लागू नहीं किया गया था, क्योंकि पिछला सरकार बहुत सारा आइन नहीं मानते थे, वोट बैंक का हिसाब करते थे, लेकिन इस सरकार में वो नहीं होगा।
0: पश्चिम बंगाल में जब तक ममता बनर्जी की सरकार थी, तब तक वहां पर मुस्लिम तुष्टिकरण का एक मौका नहीं छोड़ा गया, यह आरोप हमेशा उन पर लगा। नवरात्रि में दुर्गा विसर्जन को रोककर मुहर्रम के जुलूस को इजाजत दी गई। कई इलाकों में ये बीजेपी का आरोप हमेशा रहा कि कई इलाकों में मस्जिदों के कारण स्थानीय मंदिरों को बंद करा दिया गया, मुसलमानों को पिछड़ों की श्रेणी में डालकर उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई, मदरसों और अल्पसंख्यकों को उद्योगों से ज्यादा बजट दिया गया, मुस्लिम इमामों को विशेष भत्ता देने के लिए योजना लाई गई, रामनवमी पर मुस्लिम इलाकों से शोभा यात्रा निकालने पर अंकुश लगाया गया, और खुले में नमाज और मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर्स पर कभी भी कोई कानून लागू नहीं हुआ, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई अगर उन्होंने नियम तोड़ा। बीजेपी का आरोप है कि यह सब करके ममता बनर्जी ने सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति की, और इस राजनीति का नतीजा यह हुआ कि आज जब ये सारे लाभ खत्म किए जा रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और बंगाल के मदरसे में वंदे मातरम को अनिवार्य बनाने का भी विरोध किया जा रहा है, जबकि वंदे मातरम लिखने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी जिन्हें कहा जाता है इसी बंगाल की भूमि से थे। और यह बात सिर्फ वंदे मातरम की नहीं है, दो दिन पहले जब कोलकाता में एक अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया जा रहा था तो वहां इकट्ठा हुई भीड़ ने पुलिस केंद्रीय बल सब पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। देखिए, हैरानी की बात यह है कि इस पत्थरबाजी का पैटर्न वैसा ही था जैसे कुछ साल पहले तक कश्मीर में दिखाई देता था। आपने देखा, चाहे वो बंगाल में हो रहा हो या फिर बांद्रा में मुंबई में हो रहा हो या फिर पहले कश्मीर में होता था, लोगों ने पत्थर इकट्ठा किए और इकट्ठा करके पहले से जमा करके रखे थे, और जब केंद्रीय बलों का दस्ता मार्च कर रहा था तब उन पर भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसके बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को यह कहना पड़ा कि जिस तरह कश्मीर में पत्थरबाजी खत्म हुई वैसे ही इसे बंगाल से भी खत्म किया जाएगा। सुनिए,
11: कश्मीर में बहुत पहले खत्म हो गया जब धारा 370-35A को एबुलिश किया भारत सरकार, तब से खत्म हो गया। कश्मीर में इस तरीके से इंसिडेंट नहीं होता। बंगाल में थोड़ा आदत इनको पड़ गया था कि हम लोग को कुछ नहीं करेगा कुछ सरकार, पुलिस का अंदर भी डर का माहौल था, लेकिन डर का माहौल भाग गया, पुलिस कानूनी तरीके से करेगा। दे आर द लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी, दे आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट। पुलिस लोग इंजर्ड होगा और पुलिस मंत्री एसी रूम में बैठ के देखेगा, ये सब दिन होती पास्ट इज पास्ट, छोड़ दीजिए। अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, जीरो टॉलरेंस।
0: आज बहुत सारे लोग भारत की धर्म निरपेक्षता को खतरे में बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है वो आप हमारी अगली खबर से समझ पाएंगे। 17 मई को लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर एक स्लीपर कोच में एक सिरकटी लाश बरामद हुई जिसे बॉक्स में छिपा कर रखा गया था। जब पुलिस ने रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी को खंगाला तो ट्रेन के कैमरे देखे चारों तरफ से, और लगभग 800 से 1000 सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, उसकी जांच की, पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस को पता चला कि ये लाश एक 16 साल की लड़की की थी जिसका नाम शब्बा था, और उसके पिता ने उसका सिर्फ इसलिए सिर काट दिया क्योंकि वो एक हिंदू लड़के से बात करती। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने कई बार अपनी बेटी को टॉर्चर भी किया था कि वो हिंदू लड़के से बात ना करे और इसके लिए उसे घर में बंद करके भी रखा गया। लेकिन जब ये लड़की नहीं मानी तो इसके पिता को लगा कि अगर उसकी लड़की ने हिंदू लड़के से शादी कर ली तो उनकी खूब बदनामी होगी और इसी के बाद इस आरोपी ने सिर्फ धर्म के चक्कर में अपनी बेटी का सिर काटने की ये साजिश रची। सोचिए, अपनी बच्ची का सिर काटना, इसके लिए कैसी सोच चाहिए, कैसा दिमाग चाहिए, किस तरह की गलत नीयत चाहिए। पुलिस का दावा है कि हत्या अचानक नहीं हुई बल्कि पहले से पिता ने अपनी बेटी की हत्या की योजना बनाई। आरोपी ने घटना से करीब 5 दिन पहले अपनी पत्नी और दोनों बेटों को रिश्तेदारों के यहां भेज दिया। फिर 16 मई को अपने 2 रिश्तेदारों को उसने घर बुलाया और इसके बाद अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। हत्या भी कैसे, बेटी का सिर धड़ से अलग कर दिया, सर तन से जुदा। यही नहीं, इस आरोपी ने अपने बेटी के शरीर के कई टुकड़े किए। सोचिए, हाथ पैर अलग काटे, धड़ अलग किया, सिर को अलग कर दिया और पुलिस के मुताबिक पूरी बॉडी बॉक्स में नहीं आ रही थी इसलिए धड़ बॉक्स में रखा गया जबकि हाथ पैर पॉलिथीन में लपेट कर बैग में रखे गए। और सोचिए, ऐसी घटना के बाद ये कहा जाता है कि कोई खतरे में। इस देश में जब मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों से दोस्ती करते हैं उन पर लव जिहाद का आरोप लगता है, कहा जाता है कि ये क्या मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की से दोस्ती नहीं कर सकता। इस पर कई कई दिन तक सोशल मीडिया पर माहौल बनाया जाता है भाई कि क्या मुश्किल है, अगर एक मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से प्यार करता है शादी करती है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक मुस्लिम लड़की एक हिंदू लड़के से बात भी कर लेती है तो उसका पिता उसका परिवार समझने के बजाय सिर काट देता है, शरीर के टुकड़े कर देता है। देखिए, खैर आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि हमारे देश में विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के विदेशी दौरे को लेकर कई सवाल उठाए। ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपील की लेकिन खुद चले गए। आज हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी का ये विदेशी दौरा क्यों जरूरी था और इससे हमें क्या हासिल हुआ। 15 मई से शुरू हुई इस यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली का दौरा किया। वैश्विक तनाव के बीच हुए इस दौरे में भारत ने ऊर्जा, रक्षा, क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर कई ऐतिहासिक समझौते किए और साथ ही भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर से दुनिया को साधा है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा बहुत रणनीतिक दौरा रहा, स्ट्रेटेजिक। और इस दौरे के पहले पड़ाव यानी यूएई में भारत ने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, लॉन्ग टर्म एलपीजी सप्लाई और डिफेंस सेक्टर में लैंडमार्क समझौते किए। इतना ही नहीं, अबू धाबी ने भारत में $5 बिलियन के भारी भरकम निवेश का संकल्प जताया। यूएई के बाद प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स पहुंचे जहां रक्षा, क्रिटिकल मिनरल समेत 17 समझौतों पर मुहर लगी। दोनों देशों के रिश्ते रणनीतिक साझेदारी में बदल गए और वैश्विक स्तर पर तेल सप्लाई में आ रही बाधाओं के बीच दोनों देशों ने पश्चिम एशिया के हालातों पर गहरी चिंता भी जताई। इस दौरे के बाद अगला पड़ाव था नॉर्डिक देश। स्वीडन के साथ भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनोवेशन का एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया, जबकि नॉर्वे में 3rd इंडिया नॉर्डिक समिट के इतर प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क तीनों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की। नॉर्वे के साथ भारत ने ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत किया है। इस यात्रा के दौरान भारत की साख पूरी दुनिया में चमचमाती दिखी। प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार और नॉर्वे के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया। इसके साथ ही रोम में संयुक्त राष्ट्र के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें वैश्विक खाद्य सुरक्षा में योगदान के लिए एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया। ये मेडल उन गिने चुने वैश्विक नेताओं को दिया जाता है जिन्होंने भुखमरी और गरीबी को मिटाने के लिए असाधारण काम किया हो। एग्रीकोला एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है किसान। इस मेडल पर भी किसान और खेती से जुड़े प्रतीक बने होते हैं और ये पुरस्कार देते हुए FAO के महानिदेशक क्यू डोंग्यू ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। भारत ने ना सिर्फ अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया है बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा को भी बहुत मजबूत किया है। उन्होंने कोरोना महामारी के बाद भारत सरकार द्वारा चलाए गए दुनिया के सबसे बड़े फूड प्रोग्राम की भी सराहना की, जिसके तहत गरीब अगर आप देखिए तो हम अपने देश में करीब 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त राशन दिया जा रहा है उसकी प्रशंसा की गई। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भारत में 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को जो सीधे बैंक खातों में नकद मदद भेजी जा रही है उसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल दी है। और कुल मिलाकर ये मेडल प्रधानमंत्री मोदी के उस संकल्प को सम्मान है जो देश के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति को भुखमरी गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए काम कर रहा है। इस पुरस्कार को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इसे देश के अन्नदाताओं को समर्पित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भविष्य की खेती प्रोड्यूसिंग मोर पर नहीं बल्कि प्रोड्यूसिंग बेटर पर केंद्रित होगी, जिसमें जैविक विविधता को बचाने और रासायनिक उर्वरकों पर जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उन पर जो हमारी डिपेंडेंस है, हमारी जो निर्भरता है उसको घटाने पर फोकस।
12: भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूं।
0: इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी का ये विदेशी दौरा सिर्फ समझौतों और डिप्लोमेसी तक सीमित नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक विरासत का भी बखूबी प्रदर्शन किया, जिसे गिफ्ट डिप्लोमेसी कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को भारत की विविधता से जुड़े 3 बेहद खास उपहार भेंट दिए, जिसमें पहला उपहार था रोगन पेंटिंग, गुजरात के कच्छ की ये दुर्लभ वस्त्र कला है। इसमें अरंडी के तेल से बने रंगों का इस्तेमाल होता है। इसका ट्री ऑफ लाइफ मोटिव निरंतरता और जुड़ाव का प्रतीक है। दूसरा उपहार था केसराम, गुजरात के जूनागढ़ का ये जीआई टैग्ड आम अपनी बेहतरीन सुगंध और बिना रेशे वाले गूदे के लिए प्रसिद्ध है, जो गुजराती अर्थ का एक प्रतीक है। और तीसरा उपहार था मेघालय का, मेघालय के अनानास, पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में उगने वाले ये जीआई टैग्ड अनानास दुनिया के सबसे मीठे अनानास माने जाते हैं, जो अपनी कम एसिडिटी और बेहतरीन स्वाद के लिए जाने जाते हैं। इन उपहारों के जरिए पीएम मोदी ने भारत के लोकल टू ग्लोबल के संकल्प को वैश्विक मंच पर मजबूती से रखा। साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये 5 देशों का दौरा रक्षा, तकनीक, व्यापार के मोर्चे पर तो बहुत कामयाब रहा, साथ ही सांस्कृतिक कूटनीति के जरिए भारत ने दुनिया के साथ अपने रिश्तों को एक नई गर्मजोशी और गहराई दी। अब बात भारत और इटली के रिश्ते सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रहे बल्कि एक नए और बेहद मजबूत दौर में पहुंच गए हैं। अब तक भारत और इटली के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी, लेकिन अब इसे अपग्रेड करके स्ट्रेटेजिक स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष हर साल मुलाकात करेंगे, चाहे ये द्विपक्षीय हो या किसी इंटरनेशनल समिट के। इसके अलावा जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 की निगरानी के लिए दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के स्तर पर एक परमानेंट मैकेनिज्म बनाया गया। आर्थिक मोर्चे पर दोनों देशों ने एक बड़ा टारगेट सेट किया है, हर साल 2029 तक आपसी व्यापार को 2,22,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री मेलानी ने भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द से जल्द लागू करने की भी वकालत की है। इसके अलावा दोनों देशों के जो टॉप सीईओज हैं उनके साथ बैठक हुई, ताकि डिफेंस हो, डिजिटल फील्ड हो, एनर्जी ऊर्जा सेक्टर, अभी सबसे बड़ा तो संकट वही है, ऊर्जा सेक्टर में निवेश बढ़ाया जा सके। रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों ने एक इंडस्ट्रियल रोड मैप तैयार किया है। इसके तहत दोनों देशों में अब सिर्फ हथियार खरीदेंगे बेचेंगे नहीं बल्कि रक्षा उपकरणों का को डिजाइन, को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन, यानी एक तो उनका कैसे ये रक्षा हथियार होंगे वो डिजाइन बनाया जाएगा, फिर उसका एक साथ निर्माण होगा और फिर उसको आगे ले जाया जाएगा। ये भारत के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया मिशन के लिए एक बड़ा बूस्ट माना जा रहा है। इसके अलावा आर्थिक अपराधों और मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम लगाने के लिए भारत की ईडी और इटली की फाइनेंस कॉर्प्स जीडीएफ ने हाथ मिलाया है। इस बैठक में आम लोगों, प्रोफेशनल से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। भारत से नर्सों को इटली में रोजगार देने के लिए, सिर्फ नर्सेज के लिए, बाकायदा एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों के बीच हुए समझौतों के तहत अब भारत से नर्सों का इटली जाना, वहां पर काम करना आसान हो जाएगा। सोचिए इसके जरिए कितनी महिलाओं के लिए आने वाले वक्त में अवसर मिलेंगे ताकि वो इस रोजगार के लिए इटली जा सके। इससे भारतीय मेडिकल स्टाफ के लिए विदेशों में रोजगार के बड़े अवसर खुलेंगे। भारतीय छात्रों और रिसर्चर्स के लिए इटली जाना माना हमेशा आप देखिए आना जाना वहां पर पढ़ाई करना आसान बनाया जाएगा। और साल 2027 को भारत और इटली के बीच संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। गुजरात के लोथल में बन रहे नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के विकास के लिए भी इटली सहयोग करेगा। और भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और इटली की स्पेस एजेंसी एसआई मिलकर कमर्शियल स्पेस सेक्टर में काम करेंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में भारत के टैलेंटेड वर्कफोर्स और इटली की टेक्नोलॉजी को एक साथ लाया जाएगा। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है और आईएमईए यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

0: अब हम एक अच्छी खबर बताएंगे। पुलवामा हमले का एक मास्टरमाइंड पाकिस्तान में अननोन गनमैन का शिकार हो गया है। अननोन गनमैन, जी हां, आपका दिमाग जिधर जा रहा है सही दिशा में जा रहा है। भारत के दुश्मनों का पाकिस्तान में धीरे धीरे एक एक कर चुन चुन कर सफाया हो रहा है, और इसमें अब नया नाम पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड में से एक हमजा बुरहान उस डॉक्टर का जुड़ गया है। हमजा बुरहान को पीओके के मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने एक स्कूल के सामने गोलियों से भून दिया। ये लाइन आपने बीते दिनों कई बार सुनी होगी कि अज्ञात हमलावरों ने पाकिस्तान या पीओके में भारत के दुश्मनों को गोलियों से भून दिया। बाकी हम आप पर छोड़ते हैं। हमजा बुरहान साल 2019 में हुए पुलवामा अटैक की प्लानिंग में शामिल था। अब जाहिर है पाकिस्तान या पीओके की पुलिस या सेना तो उसे मारेगी नहीं। देखिए, पुलवामा हमले में हमारे देश के 40 जवान शहीद हो गए थे और इसका बदला हमेशा भारत में 30 की तरह था। भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में स्ट्राइक्स किया। पुलवामा हमले में शामिल मास्टरमाइंड अब धीरे धीरे मारे जा रहे हैं। मसूद अजहर बड़ी मुश्किल से ऑपरेशन सिंदूर के एक हमले से बचा था। अब हमजा को अज्ञात हमलावरों ने निपटा दिया है और बताया जा रहा है कि हमजा को कई गोलियां मारी गई। पुलवामा हमले में शामिल आतंकी इस हमले के बाद पाकिस्तान में छिपते फिर रहे थे। पाकिस्तान सरकार ISI इन आतंकियों को अलग अलग जगहों पर कवर दे रही थी। मुजफ्फराबाद के जिस स्कूल के आगे आतंकी हमजा बुरहान को मारा गया, उसी स्कूल में हमजा को प्रिंसिपल बनाया गया था। ISI ने इस आतंकी को स्कूल का प्रिंसिपल बनाकर छिपाने की कोशिश की थी। सोचिए कैसे बचाया जा रहा था आतंकी को। उन्हें पता था कि भारतीय खुफिया एजेंसियां इस आतंकी को एक न एक दिन ढूंढ निकालेंगी, और इसी वजह से आतंकी हमजा को सिक्योरिटी मिली हुई थी। एक प्रिंसिपल को मिली सिक्योरिटी को देखकर आसपास के लोग हैरान भी होते थे कि प्रिंसिपल है और इतनी सिक्योरिटी। प्रिंसिपल बनकर हमजा जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों का योजना बनाया करता था। 27 साल के हमजा बुरहान का असली नाम अर्जुमंद गुलजार डार था और वो मूल रूप से पुलवामा के रत्नीपोरा का रहने वाला था। हमजा बुरहान आतंकी संगठन अलबद्र का कमांडर था। अलबद्र में शामिल होने के लिए हमजा अवैध दस्तावेजों के जरिए पाकिस्तान गया था और फिर वहां आतंकी ट्रेनिंग लेने के बाद उसने जम्मू कश्मीर के कई युवाओं को अलबद्र में शामिल करवाया। हमजा पाकिस्तान में रहकर ही युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा था। आतंकी संगठन अलबद्र जैश ए मोहम्मद के साथ मिलकर ऑपरेट करता था और इन दोनों ने मिलकर कई आतंकी हमले करवाए थे। ऐसा देखा गया है कि पिछले 3-4 से वर्षों में भारत में, अगर आप देखिए, 3-4 वर्षों में आतंकी हमले करने वाले जितने भी आतंकी हैं पाकिस्तान में रह रहे थे, उनको धीरे धीरे मारा जा रहा है। अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भून दिया, ये आपने खूब सुना है। ये कौन कर रहा है ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि कई बड़े आतंकी किसी गुमनाम धुरंधर का शिकार हो रहे हैं। इनमें कुछ आतंकी ऐसे थे जो भारत पर हुए बड़े आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड रहे हैं। तो सुनिए पूरी लिस्ट। इसी साल अप्रैल में शेख यूसुफ अफरीदी मारा गया था। ये लश्कर ए तैयबा का आतंकी था, हाफिज सईद का करीबी था। फरवरी 2025 में हाफिज सईद का रिश्तेदार मौलाना काशिफ अली मारा गया था। यह आतंकी लश्कर का पॉलिटिकल विंग संभालता था। मार्च 2025 में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का एजेंट मुफ्ती शाह मीर को बलूचिस्तान में मार गिराया गया। इस आतंकी ने भारतीय नेवी के पूर्व अफसर कुलभूषण जाधव को ईरान से अगवा किया था। मार्च 2024 पाकिस्तानी सेना के एक अधिकारी मेजर दानियाल को मार दिया गया था। यह आतंकी साल 2016 में बारामूला में हुए सेना के काफिले पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था। सितंबर 2023 में आतंकी अबू कासिम कश्मीरी को मार दिया गया था। अक्टूबर 2023 में जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर शाहिद लतीफ मारा गया था। यह आतंकी पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था। मार्च 2023 में जैश के आतंकी जहूर इब्राहिम मिस्त्री को गुमनाम हमलावर ने मार दिया था। यह आतंकी कांदहार हाईजैक में शामिल था। ये 7 ऐसे आतंकी थे जिन्होंने भारत के खिलाफ बड़ी साजिशें रची, कई वर्षों तक पाकिस्तान में छिपे रहे, आतंकी हमले करवाते रहे, लेकिन साल 2022 के बाद से पाकिस्तान में छिपे करीब 26 से ज्यादा छोटे बड़े आतंकी गुमनाम हमलावर का शिकार हो चुके हैं। सारे आतंकियों के मारे जाने का पैटर्न लगभग एक ही है। गुमनाम हमलावर अचानक आते हैं, फिर आतंकियों को गोलियों से छलनी कर देते हैं और ये सुनिश्चित करके जाते हैं कि आतंकी किसी भी हालत में बचे नहीं। यही वजह है कि पाकिस्तानी आतंकी बिलों में छिपे हैं। या फिर हमजा बुरहान की तरह पहचान बदल कर जी रहे हैं। दरअसल पाकिस्तानी सेना ISI को भी पता है कि उनके पालतू आतंकियों को पाकिस्तान में भी कोई धुरंधर ठिकाने लगा रहा है और इसीलिए वो भी अपने आतंकियों की जान जी जान से बचा रहे हैं, लेकिन मुकाबला ऐसा है जिसमें वो एक एक कर मारे जा रहे हैं। सोचिए, भारत में ही रहने वाला अर्जुमंद गुलजार डार पाकिस्तान जाकर आतंकी हमलावर बुरहान बन गया और उसने भारत को ही जख्म दिए। ऐसे ही लोगों को देश का गद्दार कहा जाता है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक बंदूक तो नहीं उठाई, लेकिन देश में रहकर देश के लोगों को मारने वाले आतंकियों की मदद करने से पीछे नहीं हटते। ये खबर आपका दिल तोड़ देगी। कोई भी भारतीय पिछले साल हुए पहलगाम अटैक को नहीं भूल सकता। पाकिस्तानी आतंकियों ने बैसरन घाटी में हिंदुओं से उनका धर्म पूछकर पत्नियों के सामने उनके पतियों को गोली से उड़ा दिया था। क्या आप जानते हैं कि इस हमले को नाकाम किया जा सकता था? ऐसी रिपोर्ट आ रही है। दो कश्मीरी युवक जो सैलानियों के पैसों से अपना और अपने परिवार का पेट पालते थे, उन्होंने आतंकियों को देखा। उनकी आरोप है कि उन्होंने उनकी मदद की, उन्हें खाना खिलाया, रहने की जगह दी और हमले से पहले उनकी लोकेशन देखी, लेकिन इसके बाद भी इन दोनों ने सुरक्षा बलों को कुछ नहीं बताया। आतंकियों को मासूमों का खून बहाने दिया। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और याद रहिए, जिंदगी में बहाने हमेशा रहेंगे लेकिन मौके नहीं। नमस्कार।
1: जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को ढेर कर दिया गया है। आतंकी हमजा को पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में गोली मारी गई थी। खूंखार हमजा को साल 2022 में भारत सरकार ने UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया था और अब उसका अंत हो चुका है। तो आइए देखते हैं कि कौन है वो धुरंधर जो पाकिस्तान में छुपे आतंकवादियों को निपटा रहा है।
2: धुरंधर ने पाकिस्तानी हमजा को निपटाया, आतंकियों में खौफ छाया। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की POK में सरेआम हत्या। हाफिज सईद डरा, मसूद अजहर दहला, लखवी का कांप उठा कलेजा। पाकिस्तान में धुरंधर कौन? एक के बाद एक आतंकियों का काम तमाम। हमजा बुरहान का पूरा सच पुलवामा से लेकर मुजफ्फराबाद तक। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में आराम से अपनी जिंदगी जी रहे आतंकी हमजा बुरहान के सामने काल बनकर कौन आया? इस सवाल का जवाब है धड़ाधड़ हो रही आतंकियों की हत्याएं, जिन्हें कोई अज्ञात हमलावर आता है और काम तमाम करके चला जाता है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में पक्काल बनकर कौन आया? इस सवाल का जवाब है धड़ाधड़ हो रही आतंकियों की हत्याएं, जिन्हें कोई अज्ञात हमलावर आता है और काम तमाम करके चला जाता है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के अंदर कई आतंकियों पर न सिर्फ बड़े हमले हुए हैं बल्कि कई की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या भी हो चुकी है और इन हत्याओं के पीछे किसी अज्ञात हमलावर का हाथ बताया जा रहा है। पिछले दिनों लश्करे तैयबा फाउंडर चीफ और हाफिज सईद के बराबर का दर्जा पाने वाले आमिर हमजा पर हमला होता है, लेकिन वो बाल बाल बच जाता है। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बशीर अहमद पीर की मौत हो जाती है। वो जम्मू कश्मीर में हथियारबंद आतंकवादियों की भर्ती करने और घुसपैठ कराने के लिए जिम्मेदार था। अल बद्र के कमांडर सैयद खालिद रजा और जैश ए मोहम्मद के मिस्त्री जहूर इब्राहिम को कराची में अलग अलग हमलों में गोली मार दी गई। और अब नंबर लगा है पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान का। आतंकी हमजा बुरहान की पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में गोली मार कर हत्या कर दी गई। मुजफ्फराबाद के AIMS हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर घुसकर सीधे हमजा के सिर में गोली मारी जाती है और आतंकी हमजा बुरहान वहीं ढेर हो जाता है। हमजा बुरहान उर्फ अर्जुमंद गुलजार डार स्कूल के अंदर अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। 14 फरवरी 2019 पुलवामा जम्मू कश्मीर दोपहर 3:30 बजे। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर विस्फोटक से लदी एक कार आती है जो सीधे सीआरपीएफ के काफले की बस से टकरा जाती है और इस आतंकी हमले में देश के 40 बहादुर जवान शहीद हो जाते हैं। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और पुलवामा अटैक की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली। ये पुलवामा अटैक भारत सरकार के लिए बहुत बड़ा और गहरा जख्म था और जब इस हमले में आतंकी हमजा बुरहान के मास्टरमाइंड होने का पता चला तो भारत ने 2022 में उसे यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया। आपको बता दें कि पाकिस्तान जाने से पहले हमजा बुरहान कभी दक्षिण कश्मीर का कमांडर था। साल 2018 में हमजा और उसकी ब्रिगेड ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो भी रिलीज किया था जिसमें वो खुद अपना नाम बोलता है और अपने मिशन के बारे में बताता है।
3: मैं हमजा बुरहान, डिविजनल कमांडर साउथ कश्मीर, आपके सामने आज हाजिर हुआ हूँ इस वजह से कि जो ताहब में अलबदर मुजाहिदीन ने कार्रवाई की है जिसमें कुछ मुर्तजीन जख्मी हुए हैं। हम अलबदर मुजाहिदीन इस कार्रवाई की जिम्मेदारी कबूल करते हैं और आइंदा भी ऐसे ग्रेनेड और पुलिस वालों पे हमले, एसटीएफ पे हमले, पॉलिटिकल वर्कर्स के हमले की जिम्मेदारी आज से ही अहद अपना बनाते हैं इंशाअल्लाह।

0: राइड के साथ मिलकर भर्ती और हथियार पहुंचाने का काम शुरू किया। हर महीने नए लड़कों को आतंकी संगठनों में शामिल किया जाता और कुछ ही समय बाद उनमें से कई मारे जाते। आरोप है कि ये पूरा नेटवर्क विचारधारा से ज्यादा पैसों और फायदे के लिए चलाया जा रहा था। श्रीनगर के लाबायपुरा एनकाउंटर का मामला भी उसके नाम से जोड़ा गया। हमजा बुरहान उर्फ अर्जुमन गुलजार डार पुलवामा के रात्रिपुरा इलाके का रहने वाला था, लेकिन साल 2017 में वो पाकिस्तान चला गया और हमजा खतरनाक आतंकी संगठन अल बद्र से जुड़ जाता है। अल बद्र घोषित आतंकी संगठन है। अल बद्र में शामिल होने के बाद हमजा 2019 में पुलवामा हमले की साजिश में शामिल होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमजा बुरहान पाकिस्तान में कारोबार कर रहा था और ऑनलाइन माध्यम से युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा था। क्योंकि बुरहान की मेडिकल फील्ड में दिलचस्पी थी तो उसे आतंक की दुनिया में डॉक्टर के नाम से भी बुलाया जाता था। लेकिन अब हमजा बुरहान उर्फ अर्जुमन गुलजार डार का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो चुका है। किसी अज्ञात ने हमजा को गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया। अब पुलवामा में हमजा बुरहान का परिवार मौत का मातम मना रहा है।
1: करीबन 2 बजे मुझे फोन आया मलंगपुरा कैंप से कि आपका बेटा अर्जुमन गुलजार मुजफ्फराबाद में उस पर अटैक हो गया और मारा गया। इसके बाद MIU जो इनकी एजेंसी है उनसे भी मैंने रابطہ किया, उन्होंने भी ये कंफर्म किया। पुलवामा पुलिस ने भी उनको भी उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि उसे मुजफ्फराबाद में अटैक हो गया और मारा गया।
2: हम पाकिस्तान वैलिड डॉक्यूमेंट्स पे गए थे, थ्रू वीजा पासपोर्ट के जरिए वो गए थे MBBS के लिए पाकिस्तान। तो फिर 1-2 महीने हमारा रابطہ था उससे, तो बोल रहे थे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ यहाँ पे, MBBS की डिग्री ले रहा हूँ। तो फिर जब हमें पता चला कि उसने दूसरी राह इख्तियार की है जो उनके यहाँ के कानून की नजर में या सबकी नजर में गलत है, तो हमने फिर उससे रابطہ छोड़ दिया। सब कुछ गलत हो गया तो उसकी वजह से हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसे कि मेरे भाइयों को, हम सबको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मेरा एक भाई है, मुझसे छोटा है और वो 2019 के केस बीच का है, उसने केस क्वालिफाई किया है, आज 4 साल से वो जेल में है।
0: हमजा बुरहान जहन्नुम पहुंच चुका है, लेकिन अब दहशत फैली है पाकिस्तान में पल रहे आतंकी संगठनों और आतंक के आकाओं में। चाहे वो हाफिज सईद हो, मौलाना मसूद अजहर हो या फिर जकीउर रहमान लखवी, आतंक के इन आकाओं के नाम UAPA की लिस्ट में शामिल हैं। और जो हमजा बुरहान मारा गया है उसका नाम भी UAPA की लिस्ट में शामिल था। पुलवामा से मीर फरीद के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
3: और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। जी हां, बंगाल के फलता में दोबारा मतदान हुआ है जिसमें बंपर वोटिंग हुई है। फलता में 87% से ज्यादा मतदान हुआ है। फलता में जहां मतदाताओं में उत्साह नजर आया तो वहीं TMC के नेता और प्रत्याशी जहांगीर खान नदारद थे। जहांगीर खान 29 अप्रैल को हुए मतदान में खुद को पुष्पा बता रहे थे, दावा कर रहे थे कि वो झुकेंगे नहीं, लेकिन 26 दिन के बाद फलता में अभिषेक बनर्जी के चहेते पुष्पा का अता पता नहीं था।
4: 15 साल से हम लोग जो वोट दे नहीं दे रहा पाया था, अभी जो है पूरा माहौल जो है, हम सब मेरे मर्जी से वोट दे रहा था, वोट दे रहा है, खुशी से वोट दे रहा है, सुबह से ही पोलिंग चल रहा है, वोट दे रहा है, हम कोई प्रॉब्लम नहीं।
5: सोचिए, ये उस देश के नागरिक बोल रहे हैं जिन्हें संविधान से वोट देने का अधिकार मिला हुआ है। लेकिन पश्चिम बंगाल के फलता में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो खुलकर अब पूरे देश को बताते हैं कि संविधान से मिले उनके मौलिक अधिकार को भी जहांगीर खान नाम का शख्स अपनी जेब में लेकर घूमता था। फलता में लोग न सिर्फ वोट डालने से रोके जाते थे बल्कि इसकी वो शिकायत तक किसी से नहीं कर सकते थे। जहांगीर खान के नाम का खौफ कुछ ऐसा रहा कि मतदान के दिन घर से लोग पहले नहीं निकल सकते थे।
6: जहांगीर खान जो कि तृणमूल कांग्रेस के स्ट्रांग मैन माना जाते थे, वो पुष्पा झुकेगा नहीं ऐसा कहा था और वो खुद अपने वोट से नाम हटा लिए, तो क्या लगता है कि इतने दिनों से उनका डर यहाँ पे था?
7: हाँ, उसके लिए डर के लिए सब बाहर निकल नहीं सकता है कि ऐसा किया था। और अभी हम रनिंग CM जो है वो तो आके हम लोग का रोड शो किया है, जो सब अपना से वोट दो, कोई डर नहीं करेगा। भय आउट भर सही।
5: जहांगीर खान जो पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड बताया जाता है। चुनाव प्रचार में जहांगीर खान अभिषेक बनर्जी के इर्द गिर्द ही रहता था। दावा है कि इसीलिए जब वो फलता में विपक्षी पार्टियों को प्रचार करने से रोकता था तो उसे रोकने की हिम्मत कोई

0: सर नहीं जुटा पाता।
1: ये भी सुनने को आ रहा था कि यहाँ पे जो लोग वोट में विरोधी जो लोग रहते थे, जो कैंडिडेट रहते थे, ये भाजपा का हो या सीपीआईएम का हो, वो उनको प्रचार भी करने नहीं दिया जाता था। क्या ये सही है?
2: एकदम सही है सर। कोई भी आदमी प्रचार करने आए तो उसके लिए वो तो जहांगीर जो है ना, वो पूरा पूरा बंद कर देते थे, यानी दुकान बंद, पूरा कॉर्नर नहीं देते।
3: शाम को उठा के चला जाता था पार्टी ऑफिस में।
0: ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जहांगीर खान की ममता सरकार में तूती बोलती थी, फलता में तो उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता था। इसीलिए जब उत्तर प्रदेश से बंगाल में चुनाव ड्यूटी पर गए आईपीएस अजय पाल शर्मा ने मतदाताओं की तरफ से डराने धमकाने की शिकायत पर एक्शन लिया, तो ये जहांगीर खान को पसंद नहीं आया।
4: आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत।
0: इसके बाद जहांगीर खान सामने आए और उसने फिल्मी स्टाइल में डायलॉग मारा कि अगर अजय पाल शर्मा सिंघम है तो मैं पुष्पा।
5: उन्हें निजे के सिंघम मने करे सिनेमा आर्टिस्ट है, हमरा पुष्पा छुपेगा नहीं।
0: जहांगीर खान के तेवर चुनाव नतीजे आने से पहले तक ही रहे। 4 मई के बाद बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ना तो उसकी दादागिरी बची, ना फलता में जहांगीर की मौजूदगी रही। आज तक संवाददाता निर्माण फलता में जब जहांगीर खान के 3 मंजिला इमारत में उससे बात करने पहुंचते हैं तो वहां ताला लटका मिलता है।
1: जहांगीर जी, कोई है क्या अंदर? जहांगीर जी, वैसे तो कोई दिख नहीं रहा है और सामने ताला भी मारा हुआ है यहाँ पे, और इस वक्त जो है कि सबसे हाई सेंसिटिव ये इलाका कहा जाता है, क्योंकि कहीं पे यहाँ पे बहुत सारे आरोप लगे हैं दूसरी चरण की जो मतदान थी 29 तारीख को उस समय पर, क्योंकि हमने देखा कि कहीं पे लोग पूरी आंदोलन पे उतर आए रास्ते में, और उसके साथ साथ बीजेपी के तरफ से, दूसरे पार्टियों की तरफ से भी बहुत सारी ऐसी आरोप लगाए गई कि जहांगीर खान यहाँ पे मतदान करने नहीं देते हैं लोगों को।
0: जहांगीर खान सत्ता के दम पर ही खौफ फैलाता रहा, इसीलिए जैसे ही ममता सरकार की विदाई हुई पहले उसने खुद को चुनाव की रेस से अलग किया और अब वहां से फरार हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि जनता बेखौफ होकर वोट डाल अपने घर से निकली। फलता में दोबारा हुआ पुनर्मतदान पश्चिम बंगाल के बदलाव से खबरदार करता है, बताता है कि सिर्फ 26 दिन मतदाताओं को डराने धमकाने वाला जहांगीर खान छुप चुका है। उसे कानून का खौफ सताता है, जबकि 29 अप्रैल को हुए मतदान जहांगीर पर लोगों को डराने धमकाने का आरोप लगा। फलता में राजनीतिक हिंसा हुई, लेकिन सरकार बदलने के बाद दोबारा चुनाव में माहौल शांतिपूर्ण दिखा। जनता खुलकर वोट डालती दिखी तो जहांगीर खान का नामो निशान यहाँ खत्म दिखा।
1: काफी भारी मात्रा में लोग बाहर आ रहे हैं, अपनी मतदान कर रहे हैं, और पुष्पा जो जहांगीर खान अपने आप को बता रहे थे वो तो फिलहाल अब ये मतदान की जो रस्म है वो रस्म से बाहर चली गई है, लेकिन उनका जो ईवीएम मशीन है उनमें तो उनका नाम रहेगा।
6: पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार घुसपैठ को रोकने के लिए ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घुसपैठ के खिलाफ अपने 3D फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद बंगाल में अवैध घुसपैठियों की पहचान भी होगी और बॉर्डर पर सुरक्षा भी पुख्ता होगी।
7: ये हमारे NDA का पॉलिसी है मान्यवर, डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करेंगे।
0: पश्चिम बंगाल में घुसपैठ को बीजेपी ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया, जनता से वायदा किया कि बंगाल की सत्ता में आते ही वो घुसपैठ रोकने का काम करेगी।
8: पश्चिम बंगाल में भी बहुत जरूरी है कि घुसपैठियों को बाहर किया जाए। आपको घुसपैठियों और यहां के सत्ताधारी लोगों के इस गठजोड़ को तोड़ना ही होगा।
9: पश्चिम बंगाल में शुभ हिंदू सरकार ने 10 दिन में वो काम कर दिखाने का दावा किया है जो ममता बनर्जी ने 12 साल से लटकाए रखा। बांग्लादेश की सीमा पर कटीले तार लगाने के लिए शुभ हिंदू सरकार ने सिलीगुड़ी वाले इलाके में 27 किलोमीटर की जमीन बीएसएफ को सौंप दी।
10: नाउ वी आर रेडी टू हैंड ओवर 27 किलोमीटर फेंसिंग लैंड अलोंग विथ few border outpost lands and BSF infrastructure development land।
9: शुभेंदु सरकार की कोशिश जल्द से जल्द बांग्लादेश की सीमा को सुरक्षित कर जनता से वादा पूरा करने की है। राज्य सरकार से जमीन मिलने के बाद BSF और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर बाड़ लगाने का काम भी शुरू कर दिया है। ये पश्चिम बंगाल का कूच बिहार है जहाँ पर अवैध घुसपैठ की वजह से सामाजिक बदलाव में दावे बरसों से हो रहे हैं, इसके बावजूद यहाँ पर तारबंदी नहीं है। शुभेंदु सरकार के यहाँ पर फेंसिंग करने के लिए BSF को जमीन देने के फैसले से हलचल देखने को मिली। BSF की टीम ने यहाँ पर काम भी शुरू कर दिया है।
11: और इसी बॉर्डर फिलर से कुछ ही देर पहले आगे बांग्लादेश आते हैं। मेरा पीछे जो पैडी फील्ड है उसको छोड़ के एक मक्की का खेत दिखा रहा है, वो मक्की खेत छोड़ने के बाद ही मिलेगा आपको बांग्लादेश। और इसी जगह में इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा होता है, बॉर्डर स्मगलिंग का मुद्दा होता है, लेकिन इस रोकने के लिए फेंसिंग जरूरी है। और इस फेंसिंग देने के लिए बार बार BSF ने वेस्ट बंगाल सरकार को जमीन मांगे थे, लेकिन जमीन मिला नहीं। इसी बॉर्डर पिलर से 400 मीटर बाद में होगा नया फेंसिंग, इसलिए जमीन लेने का कार्रवाई चालू हो गया। और कुछ बिहार जिला का दिनहाटा 2 ब्लॉक में 18 एकड़ जमीन दिया जाएगा BSF को।
9: पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई 2216 किलोमीटर है, जिसमें से 1647 किलोमीटर सीमा पर बाड़ लगाई जा चुकी है। वहीं 570 किलोमीटर के हिस्से में काम होना भी बाकी। BJP का आरोप रहा है कि ममता के सरकार में रहते तुष्टीकरण की वजह से इस काम में खलल पड़ता रहा।
10: 555 किलोमीटर एमन इलाका रही है जिखने राज्य सरकार चाहले BSF के जमी दीते पारत, किंतु राज्य सरकार विगत राज्य सरकार राजनैतिक कारण वोट बैंकर जन्नो এবং তাদের যে হাই অ্যাপিজমেন্ট তুষ্টিকরণ তোষণের এজেন্ডা ছিল সেই কারণে তারা হয়তো দেয়নি।
9: लेकिन बंगाल में BJP अब सरकार बनते शुभेंदु अधिकारी इस मामले में एक्शन में दिख रहे हैं, जिससे बांग्लादेश सीमा पर रहने वाले लोगों को अवैध घुसपैठ की समस्या से निजात मिलने की उम्मीद है।
7: फेंसिंग होने से BSF का काम भी कुछ हल्का होगा। हमारा जो प्रतिरक्षा है, देश का जो सुरक्षा है, ये अच्छा होगा। और स्मगलिंग और जो इन्फिल्ट्रेशन टोटली शुड बी स्टॉप।
12: इधर फोर्स आएगा तो उधर जो हमारा जो चेकिंग होता है, ये कोई गेस्ट आता है तो घर से जाना पड़ता है आदमी लेने के लिए, फिर छोड़ने के लिए ले जाना पड़ता है, वो समस्या समाधान होगा।
10: CA ते बोला आछे 7 कम्युनिटी बा धर्म पालन करा लोकेरा तारा সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের আওতায় আসবেন এবং তাদেরকে যারা 31/12/2024 পর্যন্ত এসেছেন তাদেরকে কোনো পুলিশ কোথাও হ্যারাসমেন্ট ডিটেন্ট করতে পারবে না।
9: তো পশ্চিম বঙ্গাল মে CAA সে অবৈধ ঘুসপাঠিয়ে পকড়ে যায়গে, শরণার্থী আর ঘুসপাঠিয়ো মে অন্তর কিয়া যায়গা, বাংলাদেশী অবৈধ ঘুসপাঠিয়ো কি পহচান হোনে পর উনহে BSF কে হাওয়ালে কিয়া যায়গা, जो बांग्लादेश से बात करके उन्हें भेजने का इंतजाम करेगी।
10: CA रावताय जरा नहीं तारा होलेन कम्प्लीटली अवैध अनुप्रवेशकारी इनफिल्ट्रेटर्स, तादर के सरासरी राज्य पुलिस গ্রেফতার করবে এবং ডিটেন করবে এবং হ্যান্ডওভার করবে BSF এর হাতে।
9: BSF ने जिस तेजी से बांग्लादेश की सीमा पर पिलर लगाने के लिए सर्वे शुरू किया, उससे उम्मीद की जानी चाहिए कि बॉर्डर पर फेंसिंग का काम रिकॉर्ड समय में होगा। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से चिकन नेक की 120 एकड़ जमीन सौंपने से देश की सुरक्षा मजबूत होगी। चिकन नेक में आने वाले 7 हाईवे की देखरेख केंद्र कर पाएगा जो ममता सरकार में पीडब्ल्यूडी के पास था, लेकिन बंगाल में सरकार बदलने के बाद बॉर्डर पर हालात अब बदल जाएंगे।
6: और अब बात ईरान और अमेरिका युद्ध की करेंगे। एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि अगर ईरान ने डील के लिए भेजे गए प्रस्ताव पर सही जवाब नहीं दिया तो अमेरिका हमला करने के लिए तैयार है। तो अमेरिका के वॉर मिनिस्टर पीट हिट्सेक ने कहा है लॉक्ड एंड लोडेड। तो आइए देखते हैं इसका मतलब क्या है।
13: 7 अप्रैल से भले ही ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम चल रहा है, लेकिन उसी घड़ी से धमकियों का महायुद्ध भी जारी है। फिर भी झुकना तो दूर की बात, ईरान ट्रंप की धमकियों के आगे टस से बस होने के लिए तैयार नहीं है। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बार ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है अगर ईरान ने डील के लिए भेजे गए प्रस्ताव पर सही जवाब नहीं दिया तो अमेरिका हमला करने के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें ईरान से शत प्रतिशत सही जवाब चाहिए। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर 2 दिन रुकने से वो लोगों को मारे जाने से बचा सके तो ये अच्छी बात होगी। आपको बता दें कि अमेरिका एक ऐसी डील का इंतजार कर रहा है जिसमें ईरान परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह छोड़ दे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोल दे। ट्रंप ने ईरान को पराजित देश बताते हुए कहा कि अगर ईरान ने जल्द फैसला नहीं किया तो बड़े पैमाने पर हमला शुरू हो जाएगा।
14: I mean, I'm saying 2 or 3 days, maybe Friday, Saturday, Sunday, something, maybe early next week, a limited period of time. Because we can't let them have a nuclear weapon.
13: अब सवाल ये है कि क्या वाकई ईरान ट्रंप की इन धमकियों के दबाव में आएगा। दूसरी तरफ ईरान की सरकारी एजेंसी नूट न्यूज ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई के हवाले से कहा है कि हमें अमेरिका के व्यूज मिल गए हैं और हम उनकी समीक्षा कर रहे हैं। और इस बीच अमेरिका के वॉर मिनिस्टर पीट हेक्सेथ ने भी सोशल मीडिया पर ईरान को बड़ी धमकी दे दी है। पीट हेक्सेथ ने लिखा है लॉक्ड एंड लोडेड। उन्होंने ये कमेंट अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के उस पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा है जिसमें ये कहा गया है कि ईरान के साथ ऐसी डील नहीं होगी जिससे उसे परमाणु हथियार बनाने की छूट मिल जाए। जेडी वैंस ने भी अपने पोस्ट में लॉक एंड लोडेड लिखा था। साथ ही ये कहा था कि अमेरिका नहीं चाहता कि उसे फिर से युद्ध के रास्ते पर जाना पड़े, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप इसके लिए तैयार हैं कि अगर युद्ध करना पड़ा तो इसकी इच्छा और क्षमता दोनों ही उनमें मौजूद है। यानी राष्ट्रपति ट्रंप से लेकर उपराष्ट्रपति और अब युद्ध मंत्री भी ईरान के खिलाफ फिर से जंग की धमकी दे रहे हैं।
15: We think that we've made a lot of progress. We think the Iranians want to make a deal. The President of the United States has asked us to negotiate in good faith, and that's exactly what we've done. So we're in a pretty good spot here, but there's an option B. And the option B is that we could restart the military campaign to continue to prosecute the case, to continue to try to achieve America's objectives. And we could talk a little bit about what that looks like, but that's not what the President wants, and I don't think it's what the Iranians want either.
13: लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब पूरा अमेरिकी प्रशासन ईरान को धमकियां देने पर उतारू है, तो फिर इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमला आखिरी समय में क्यों टाला। इससे जुड़ी एक बड़ी खबर न्यूज वेबसाइट मिडल ईस्ट आय के हवाले से आ रही है जिसमें दावा किया गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने खाड़ी देशों के अपने सहयोगियों और अपने ही अधिकारियों की इस चेतावनी के बाद फैसला लिया कि हज यात्रा के दौरान युद्ध शुरू न किया जाए। खाड़ी देशों के 2 वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार ट्रंप को बताया गया था कि हज यात्रा के दौरान ईरान पर हमला करने से खाड़ी देशों के भीतर संकट पैदा हो जाएगा क्योंकि इससे लाखों तीर्थ यात्री वहीं फंस जाएंगे। सूत्रों ने यह भी बताया कि ट्रंप को आगाह किया गया था कि इस पवित्र समय के दौरान जो इस्लामी त्यौहार ईद उल अजहा से ठीक पहले का समय होता है, हमला करने से मुस्लिम जगत में वॉशिंगटन की साख को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। अमेरिका ने इससे पहले मुसलमानों के पवित्र महीने रमजान के दौरान ईरान पर हमला किया था, लेकिन हज के समय ऐसा करने से सऊदी अरब के सामने भारी लॉजिस्टिक चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। सऊदी अरब हर साल लगभग 10 लाख विदेशी तीर्थ यात्रियों की मेजबानी करता है। ये चुनौतियां खाड़ी देशों के हवाई यात्रा केंद्रों जैसे कतर और यूएई और दक्षिण तथा पूर्वी एशिया के उन देशों तक भी फैल जाएंगी जहां से कई तीर्थयात्री अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अगर ये खबर सही है तो डोनाल्ड ट्रंप मई महीने में हमला करने से बचेंगे, यानी अब ये हमला जून के पहले हफ्ते में हो सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका लाख कोशिशों के बावजूद हुर्मुज खुलवाने में नाकाम रहा है। ईरान के पास इस वक्त हुर्मुज की नाकेबंदी सबसे बड़ा हथियार है और वो इस मुद्दे पर लगातार अमेरिका को चढ़ा रहा है। बड़ी खबर IRGC नौसेना के राजनीतिक उप प्रमुख के हवाले से आ रही है। मोहम्मद अकबर जादेह ने तंज करते हुए कहा है कि हुर्मुज जल डब्लू मध्य को कमांडर तंसीरी के आदेश पर बंद कर दिया गया था। यही नहीं, अपने तमाम दाव पेचों और चालों के बावजूद अमेरिका इसे फिर से खोलने में नाकाम रहा है। दुश्मन को ना तो ईरान के बारे में सही खुफिया जानकारी है, न ही समझ और अक्ल है। आपको बता दें कि अली रिजा तंसीरी ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC नेवी के कमांडर थे। उन्हें हुर्मुज बंद करने की रणनीति का मास्टरमाइंड माना जाता था। 26 मार्च 2026 को बंदर अब्बास में इजरायली एयर स्ट्राइक में वो बुरी तरह घायल हुए और 4 दिन बाद उनकी मौत हो गई। आज तक ब्यूरो।
6: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: मंत्री परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री ने देखा मंत्रालयों का रिपोर्ट कार्ड, कामकाज पर मंत्री ने दिया प्रेजेंटेशन, पीएम ने ईज ऑफ लिविंग और रिफॉर्म पर जोर दिया, कहा 2047 को ध्यान में रखते हुए करेगा। प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से बड़े निवेश को मिली मंजूरी, पीयूष गोयल का बड़ा बयान, सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा समेत कुल 57 बड़े समझौते, विपक्ष ने फिर उठाए सवाल। मारुति ने कारों के दाम में किया 30,000 तक का इजाफा, जून से लागू हो जाएंगी नई कीमतें, बिहार में सुधा और राजस्थान में सरस ने दूध की कीमत में बढ़ाए 2 रुपए। नीट कांड को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को फिर से घेरा, पोस्ट में लिखा यहां पेपर लीक से युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, वहां इटली में मोदी रील बना रहे हैं। बंगाल में बकरीद में गायों की कुर्बानी पर बरकरार रहेगी रोक, शुभेंदु सरकार के फैसले पर रोक लगाने वाली याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट से खारिज, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का दिया गया हवाला। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को ढेर कर दिया गया है। आतंकी हमजा को पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में गोली मारी गई थी। खूंखार हमजा को साल 2022 में भारत सरकार ने यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया था और अब उसका अंत हो चुका है। तो आइए देखते हैं कि कौन है वो धुरंधर जो पाकिस्तान में छुपे आतंकवादियों को निपटा रहा है।
1: धुरंधर ने पाकिस्तानी हमजा को निपटाया, आतंकियों में खौफ छाया। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पीओके में सरेआम हत्या। हाफिज सईद डरा, मसूद अजहर दहला, लखवी का कांप उठा कलेजा। पाकिस्तान में धुरंधर कौन, एक के बाद एक आतंकियों का काम तमाम। हमजा बुरहान का पूरा सच पुलवामा से लेकर मुजफ्फराबाद तक। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में आराम से अपनी जिंदगी जी रहे आतंकी हमजा बुरहान के सामने काल बनकर कौन आया, इस सवाल का जवाब है धड़ाधड़ हो रही आतंकियों की हत्याएं, जिन्हें कोई अज्ञात हमलावर आता है और काम तमाम करके चला जाता है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के अंदर कई आतंकियों पर न सिर्फ बड़े हमले हुए हैं बल्कि कई की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या भी हो चुकी है और इन हत्याओं के पीछे किसी अज्ञात हमलावर का हाथ बताया जा रहा है। पिछले दिनों लश्करे तैयबा फाउंडर चीफ और हाफिज सईद के बराबर का दर्जा पाने वाले आमिर हमजा पर हमला होता है लेकिन वो बाल बाल बच जाता है। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बशीर अहमद पीर की मौत हो जाती है। वो जम्मू कश्मीर में हथियारबंद आतंकवादियों की भर्ती करने और घुसपैठ कराने के लिए जिम्मेदार था। अल बद्र के कमांडर सैयद खालिद रजा और जैश ए मोहम्मद के मिस्त्री जहूर इब्राहिम को कराची में अलग अलग हमलों में गोली मार दी गई। और अब नंबर लगा है पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान का। आतंकी हमजा बुरहान की पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में गोली मार कर हत्या कर दी गई। मुजफ्फराबाद के एआईएमएस हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर घुसकर सीधे हमजा के सिर में गोली मारी जाती है और आतंकी हमजा बुरहान वहीं ढेर हो जाता है। हमजा बुरहान उर्फ अर्जुमंड गुलजार डार स्कूल के अंदर अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। 14 फरवरी 2019 पुलवामा जम्मू कश्मीर दोपहर 3:30 बजे। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर विस्फोटक से लदी एक कार आती है जो सीधे सीआरपीएफ के काफिले की बस से टकरा जाती है और इस आतंकी हमले में देश के 40 बहादुर जवान शहीद हो जाते हैं। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और पुलवामा अटैक की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली। ये पुलवामा अटैक भारत सरकार के लिए बहुत बड़ा और गहरा जख्म था और जब इस हमले में आतंकी हमजा बुरहान के मास्टरमाइंड होने का पता चला तो भारत ने 2022 में उसे यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया। आपको बता दें कि पाकिस्तान जाने से पहले हमजा बुरहान कभी दक्षिण कश्मीर का कमांडर था। साल 2018 में हमजा और उसकी ब्रिगेड ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो भी रिलीज किया था, जिसमें वो खुद अपना नाम बोलता है और अपने मिशन के बारे में बताता है।
2: मैं हमजा बुरहान, डिविजनल कमांडर साउथ कश्मीर, आपके सामने आज हाजिर हुआ हूँ इस वजह से कि जो तहब में अलबदर मुजाहिदीन ने कार्रवाई की है, जिसमें कुछ मुर्तजीन जख्मी हुए हैं। हम अलबदर मुजाहिदीन इस कार्रवाई की जिम्मेदारी कबूल करते हैं और आइंदा भी ऐसे ग्रेनेड और पुलिस वालों पे हमले, एसटीएफ पे हमले, पॉलिटिकल वर्कर्स के हमले की जिम्मेदारी आज से ही अहद अपना बनाते हैं। इंशाअल्लाह रहमान, अल्लाह तबारक वताला के फजल करम से आज से ही हमारा टारगेट ये मुर्तदीन होंगे और लाजिमन जो जम्मू कश्मीर पुलिस है इसको हम आज से ही ये आखिरी वार्निंग होगी, इनके नाम कोई वार्निंग हम नहीं, इनके लिए बेशक हमारा बस एक ही पैगाम होगा, अगर ये पीछे मुड़े तो ठीक, वरना ये अपने अंजाम को नजर रखे।
1: रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलवामा और शोपियां में हमजा का नेटवर्क तेजी से फैला। उसने यूसुफ बलोच नाम के एक हथियार सप्लायर के साथ मिलकर भर्ती और हथियार पहुंचाने का काम शुरू किया। हर महीने नए लड़कों को आतंकी संगठनों में शामिल किया जाता और कुछ ही समय बाद उनमें से कई मारे जाते। आरोप है कि ये पूरा नेटवर्क विचारधारा से ज्यादा पैसों और फायदे के लिए चलाया जा रहा था। श्रीनगर के लाबायपुरा एनकाउंटर का मामला भी उसके नाम से जोड़ा गया। हमजा बुरहान उर्फ अर्जुमन गुलजार डार पुलवामा के रात्रिपुरा इलाके का रहने वाला था, लेकिन साल 2017 में वो पाकिस्तान चला गया और हमजा खतरनाक आतंकी संगठन अल बद्र से जुड़ जाता है। अल बद्र घोषित आतंकी संगठन है। अल बद्र में शामिल होने के बाद हमजा 2019 में पुलवामा हमले की साजिश में शामिल होता है। रिपोर्ट के मुताबिक हमजा बुरहान पाकिस्तान में कारोबार कर रहा था और ऑनलाइन माध्यम से युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा था। क्योंकि बुरहान की मेडिकल फील्ड में दिलचस्पी थी तो उसे आतंक की दुनिया में डॉक्टर के नाम से भी बुलाया जाता था। लेकिन अब हमजा बुरहान उर्फ अर्जुमन गुलजार डार का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो चुका है। किसी अज्ञात ने हमजा को गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया। अब पुलवामा में हमजा बुरहान का परिवार मौत का मातम मना रहा है।
3: करीबन 2 बजे मुझे फोन आया मलंगपुरा कैंप से कि आपका बेटा अर्जुमन गुलजार मुजफ्फराबाद में उस पर अटैक हो गया और मारा गया। इसके बाद MIU जो इनकी एजेंसी है उनसे भी मैंने रابطہ किया, उन्होंने भी ये कन्फर्म किया, पुलवामा पुलिस ने भी उनको भी उन्होंने ये कन्फर्म कर दिया कि उसे मुजफ्फराबाद में अटैक हो गया और मारा गया।
4: हम पाकिस्तान वैलिड डॉक्यूमेंट्स पे गए थे, थ्रू वीजा पासपोर्ट के जरिए वो गए थे MBBS के लिए पाकिस्तान। तो फिर 1-2 महीने हमारा रابطہ था उससे, तो बोल रहे थे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ यहाँ पे, MBBS की डिग्री ले रहा हूँ। तो फिर जब हमें पता चला कि उसने दूसरी राह अख्तियार की है जो यहाँ के कानून की नजर में या सबकी नजर में गलत है, तो हमने फिर उससे रابطہ छोड़ दिया, सब कुछ गलत हो गया। तो उसकी वजह से हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसे कि मेरे भाइयों को, हम सबको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मेरा एक भाई है, मुझसे छोटा है और वो 2019 के केस बीच का है, उसने केस क्वालिफाई किया है, आज 4 साल से वो जेल में है।
1: हमजा बुरहान जहन्नुम पहुंच चुका है, लेकिन अब दहशत फैली है पाकिस्तान में पल रहे आतंकी संगठनों और आतंक के आकाओं में। चाहे वो हाफिज सईद हो, मौलाना मसूद अजहर हो या फिर जकीउर रहमान लखवी, आतंक के इन आकाओं के नाम UAPA की लिस्ट में शामिल हैं और जो हमजा बुरहान मारा गया है उसका नाम भी UAPA की लिस्ट में शामिल था। पुलवामा से मीर फरीद के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
0: और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। जी हाँ, बंगाल के फलता में दोबारा मतदान हुआ है जिसमें बंपर वोटिंग हुई है। फलता में 87% से ज्यादा मतदान हुआ है। फलता में जहां मतदाताओं में उत्साह नजर आया तो वहीं TMC के नेता और प्रत्याशी जहांगीर खान नदारद थे। जहांगीर खान 29 अप्रैल को हुए मतदान में खुद को पुष्पा बता रहे थे, दावा कर रहे थे कि वो झुकेंगे नहीं, लेकिन 26 दिन के बाद फलता में अभिषेक बनर्जी के चहेते पुष्पा का अता पता नहीं था।
5: 15 साल से हम लोग जो वोट नहीं दे पाया था, अभी जो है पूरा माहौल जो है, हम सब मेरे मर्जी से वोट दे रहा था, वोट दे रहा है, खुशी से वोट दे रहा है, सुबह से ही पोलिंग चल रहा है, वोट दे रहा है, हम कोई प्रॉब्लम नहीं।
6: सोचिए, ये उस देश के नागरिक बोल रहे हैं जिन्हें संविधान से वोट देने का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन पश्चिम बंगाल के फलता में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो खुलकर अब पूरे देश को बताते हैं कि संविधान से मिले उनके मौलिक अधिकार को ही जहांगीर खान नाम का शख्स अपनी जेब में लेकर घूमता था। फलता में लोग न सिर्फ वोट डालने से रोके जाते थे बल्कि इसकी वो शिकायत तक किसी से नहीं कर सकते थे। जहांगीर खान के नाम का खौफ कुछ ऐसा रहा कि मतदान के दिन घर से लोग पहले नहीं निकल सकते थे।
7: जहांगीर खान जो कि तृणमूल कांग्रेस के स्ट्रांग मैन माना जाते थे, वो पुष्पा झुकेगा नहीं ऐसा कहा था और वो खुद अपने वोट से नाम हटा लिए। तो क्या लगता है कि इतने दिनों से उनका डर यहाँ पे था?
8: हाँ, उसके लिए डर के लिए सब बाहर निकल नहीं सकता है कि ऐसा किया था। और अभी रनिंग सीएम जो है वो तो आके हम लोग का रोड शो किया है, जो सब अपना से वोट दो, कोई डर नहीं करेगा। भय आउट भर सही।
6: जहांगीर खान जो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड बताया जाता है। चुनाव प्रचार में जहांगीर खान अभिषेक बनर्जी के इर्द गिर्द ही रहता था। दावा है किसी ने जब वो फलता में विपक्षी पार्टियों को प्रचार करने से रोकता था तो उसे रोकने की हिम्मत कोई अफसर नहीं जुटा पाता था।
7: ये भी सुनने को आ रहा था कि यहाँ पे जो लोग वोट में विरोधी जो लोग रहते थे, जो कैंडिडेट रहते थे, ये भाजपा का हो या सीपीआईएम का हो, वो उनको प्रचार भी करने नहीं दिया जाता था। क्या ये सही है?
5: एकदम सही है सर। कोई भी आदमी प्रचार करने आए तो उसके लिए वो तो जहांगीर जो है ना वो पूरा पूरा बंद कर देते थे, यानी दुकान बंद पूरा करने नहीं देते।
8: शाम को उठा के चला जाता था पार्टी ऑफिस में।
6: ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जहांगीर खान की ममता सरकार में तूती बोलती थी। फलता में तो उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता था। इसीलिए जब उत्तर प्रदेश से बंगाल में चुनाव ड्यूटी पर गए आईपीएस अजय पाल शर्मा ने मतदाताओं की तरफ से डराने धमकाने की शिकायत पर एक्शन लिया तो ये जहांगीर खान को पसंद नहीं आया।
9: आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत।
6: इसके बाद जहांगीर खान सामने आया और उसने फिल्मी स्टाइल में डायलॉग मारा कि अगर अजय पाल शर्मा सिंघम है तो मैं पुष्पा
10: हूँ। सिंघम मन सिनेमा पुष्पा छुपेगा नहीं।
6: जहांगीर खान के तेवर चुनाव नतीजे आने से पहले तक ही रहे। 4 मई के बाद बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ना तो उसकी दादागिरी बची ना फलता में जहांगीर की मौजूदगी रही। आज तक संवाददाता निर्माण फलता में जब जहांगीर खान के 3 मंजिला इमारत में उससे बात करने पहुंचते हैं तो वहां ताला लटका मिलता है।
7: जहांगीर जी कोई है क्या अंदर? जहांगीर जी वैसे तो कोई दिख नहीं रहा है और सामने ताला भी मारा हुआ है यहाँ पे। और इस वक्त जो है कि सबसे हाई सेंसिटिव ये इलाका कहा जाता है क्योंकि कहीं पे यहाँ पे बहुत सारे आरोप लगे हैं दूसरी चरण की जो मतदान थी 29 तारीख को उस समय पर, क्योंकि हमने देखा कि कहीं पे लोग पूरी आंदोलन पे उतर आए रास्ते में और उसके साथ साथ बीजेपी के तरफ से दूसरे पार्टियों की तरफ से भी बहुत सारी ऐसी आरोप लगाए गई कि जहांगीर खान यहाँ पे मतदान करने नहीं देते हैं लोगों को।
6: जहांगीर खान सत्ता के दम पर ही खौफ फैलाता रहा, इसीलिए जैसे ही ममता सरकार की विदाई हुई पहले उसने खुद को चुनाव की रेस से अलग किया और अब वहां से फरार हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि जनता बेखौफ होकर वोट डाल अपने घर से निकली। फलता में दोबारा हुआ पुनर्मतदान पश्चिम बंगाल के बदलाव से खबरदार करता है। बताता है कि सिर्फ 26 दिन मतदाताओं को डराने धमकाने वाला जहांगीर खान छुप चुका है। उसे कानून का खौफ सताता है, जबकि 29 अप्रैल को हुए मतदान जहांगीर पर लोगों को डराने धमकाने का आरोप लगा। फलता में राजनीतिक हिंसा हुई लेकिन सरकार बदलने के बाद दोबारा चुनाव में माहौल शांतिपूर्ण दिखा। जनता खुलकर वोट डालती दिखी तो जहांगीर खान का नामो निशान यहाँ खत्म दिखा।
7: काफी भारी मात्रा में लोग बाहर आ रहे हैं, अपनी मतदान कर रहे हैं और अब पुष्पा जो जहांगीर खान अपने आप को बता रहे थे वो तो फिलहाल अब ये मतदान की जो रस्म है वो रस्म से बाहर चली गई है, लेकिन उनका जो ईवीएम मशीन है उनमें तो उनका नाम रहेगा।
0: पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार घुसपैठ को रोकने के लिए ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घुसपैठ के खिलाफ अपने 3D फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद बंगाल में अवैध घुसपैठियों की पहचान भी होगी और बॉर्डर पर सुरक्षा भी पुख्ता होगी।
11: ये हमारे NDA का पॉलिसी है माननीय, डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर डिटेक्ट डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करेंगे।
12: पश्चिम बंगाल में घुसपैठ को बीजेपी ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया, जनता से वायदा किया कि बंगाल की सत्ता में आते ही वो घुसपैठ रोकने का काम करेगी।
13: पश्चिम बंगाल में भी बहुत जरूरी है कि घुसपैठियों को बाहर किया जाए। आपको घुसपैठियों और यहाँ के सत्ताधारी लोगों के इस गठजोड़ को तोड़ना ही होगा।
12: पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार ने 10 दिन में वो काम कर दिखाने का दावा किया है जो ममता बनर्जी ने 12 साल से लटका रखा। बांग्लादेश की सीमा पर कटीले तार लगाने के लिए शुभेंदु सरकार ने सिलीगुड़ी वाले इलाके में 27 किलोमीटर की जमीन BSF को सौंप दी।
14: नाउ वी आर रेडी टू हैंड ओवर 27 किलोमीटर फेंसिंग लैंड एलोंग विथ फ्यू बीओ बॉर्डर आउटपोस्ट लैंड्स एंड BSF इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लैंड।
12: शुभेंदु सरकार की कोशिश जल्द से जल्द बांग्लादेश की सीमा को सुरक्षित कर जनता से वादा पूरा करने की है। राज्य सरकार से जमीन मिलने के बाद BSF और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर बाड़ लगाने का काम भी शुरू कर दिया है। ये पश्चिम बंगाल का कूच विहार है जहाँ पर अवैध घुसपैठ की वजह से सामाजिक बदलाव में दावे बरसों से हो रहे हैं, इसके बावजूद यहाँ पर तारबंदी नहीं है। शुभेंदु सरकार के यहाँ पर फेंसिंग करने के लिए BSF को जमीन देने के फैसले से हलचल देखने को मिली। BSF की टीम ने यहाँ पर काम भी शुरू कर दिया है।
15: और इसी बॉर्डर पिलर से कुछ ही देर पहले आगे बांग्लादेश

0: राष्ट्रपति ट्रंप से लेकर उपराष्ट्रपति और अब युद्ध मंत्री भी ईरान के खिलाफ फिर से जंग की धमकी दे रहे हैं।
1: We think that we've made a lot of progress. We think the Iranians want to make a deal. The President of the United States has asked us to negotiate in good faith, and that's exactly what we've done. So we're in a pretty good spot here, but there's an option B. And the option B is that we could restart the military campaign to continue to prosecute the case, to continue to try to achieve America's objectives. And we could talk a little bit about what that looks like, but that's not what the President wants, and I don't think it's what the Iranians want either.
0: लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब पूरा अमेरिकी प्रशासन ईरान को धमकियां देने पर उतारू है, तो फिर इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमला आखिरी समय में क्यों टाला? इससे जुड़ी एक बड़ी खबर न्यूज वेबसाइट मिडल ईस्ट आई के हवाले से आ रही है, जिसमें दावा किया गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने खाड़ी देशों के अपने सहयोगियों और अपने ही अधिकारियों की इस चेतावनी के बाद फैसला लिया कि हज यात्रा के दौरान युद्ध शुरू न किया जाए। खाड़ी देशों के दो वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार ट्रंप को बताया गया था कि हज यात्रा के दौरान ईरान पर हमला करने से खाड़ी देशों के भीतर संकट पैदा हो जाएगा, क्योंकि इससे लाखों तीर्थ यात्री वहीं फंस जाएंगे। सूत्रों ने यह भी बताया कि ट्रंप को आगाह किया गया था कि इस पवित्र समय के दौरान, जो इस्लामी त्योहार ईद उल अजहा से ठीक पहले का समय होता है, हमला करने से मुस्लिम जगत में वॉशिंगटन की साख को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। अमेरिका ने इससे पहले मुसलमानों के पवित्र महीने रमजान के दौरान ईरान पर हमला किया था, लेकिन हज के समय ऐसा करने से सऊदी अरब के सामने भारी लॉजिस्टिक चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। सऊदी अरब हर साल लगभग 10 लाख विदेशी तीर्थ यात्रियों की मेजबानी करता है। ये चुनौतियां खाड़ी देशों के हवाई यात्रा केंद्रों जैसे कतर और यूएई और दक्षिण तथा पूर्वी एशिया के उन देशों तक भी फैल जाएंगी, जहां से कई तीर्थ यात्री अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अगर ये खबर सही है तो डोनाल्ड ट्रंप मई महीने में हमला करने से बचेंगे, यानी अब ये हमला जून के पहले हफ्ते में हो सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका लाख कोशिशों के बावजूद हुर्मुज खुलवाने में नाकाम रहा है। ईरान के पास इस वक्त हुर्मुज की नाकेबंदी सबसे बड़ा हथियार है और वो इस मुद्दे पर लगातार अमेरिका को चढ़ा रहा है। बड़ी खबर आईआरजीसी नौसेना के राजनीतिक उप प्रमुख के हवाले से आ रही है। मोहम्मद अकबर जादेह ने तंज करते हुए कहा है कि हुर्मुज जल डब्लू मध्य को कमांडर तंसीरी के आदेश पर बंद कर दिया गया था। यही नहीं, अपने तमाम दाव पेचों और चालों के बावजूद अमेरिका इसे फिर से खोलने में नाकाम रहा है। दुश्मन को न तो ईरान के बारे में सही खुफिया जानकारी है, न ही समझ और अक्ल है। आपको बता दें कि अली रिजा तंसीरी ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी नेवी के कमांडर थे। उन्हें हुर्मुज बंद करने की रणनीति का मास्टरमाइंड माना जाता था। 26 मार्च 2026 को बंदर अब्बास में इजरायली एयर स्ट्राइक में वो बुरी तरह घायल हुए और चार दिन बाद उनकी मौत हो गई। आज तक ब्यूरो।
2: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: मारुति ने कारों के दाम में किया 30,000 तक का इजाफा, जून से लागू हो जाएंगी नई कीमतें। बिहार में सुधा और राजस्थान में सरस ने दूध की कीमत में बढ़ाए 2 रुपए। नीट कांड को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को फिर से घेरा, पोस्ट में लिखा, यहां पेपर लीक से युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, वहां इटली में मोदी रील बना रहे हैं। बंगाल में बकरीद में गायों की कुर्बानी पर बरकरार रहेगी रोक, शुभेंदु सरकार के फैसले पर रोक लगाने वाली याचिका कलकत्ता हाई कोर्ट से खारिज, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का दिया गया हवाला। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को ढेर कर दिया गया है। आतंकी हमजा को पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में गोली मारी गई थी। खूंखार हमजा को साल 2022 में भारत सरकार ने यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया था और अब उसका अंत हो चुका है। तो आइए देखते हैं कि कौन है वो धुरंधर जो पाकिस्तान में छुपे आतंकवादियों को निपटा रहा है।
1: धुरंधर ने पाकिस्तानी हमजा को निपटाया, आतंकियों में खौफ छाया। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पीओके में सरेआम हत्या। हाफिज सईद डरा, मसूद अजहर दहला, लखवी का कांप उठा कलेजा। पाकिस्तान में धुरंधर कौन? एक के बाद एक आतंकियों का काम तमाम। हमजा बुरहान का पूरा सच पुलवामा से लेकर मुजफ्फराबाद तक। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में आराम से अपनी जिंदगी जी रहे आतंकी हमजा बुरहान के सामने काल बनकर कौन आया? इस सवाल का जवाब है धड़ाधड़ हो रही आतंकियों की हत्याएं, जिन्हें कोई अज्ञात हमलावर आता है और काम तमाम करके चला जाता है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के अंदर कई आतंकियों पर न सिर्फ बड़े हमले हुए हैं बल्कि कई की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या भी हो चुकी है और इन हत्याओं के पीछे किसी अज्ञात हमलावर का हाथ बताया जा रहा है। पिछले दिनों लश्कर ए तैयबा फाउंडर चीफ और हाफिज सईद के बराबर का दर्जा पाने वाले आमिर हमजा पर हमला होता है, लेकिन वो बाल बाल बच जाता है। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बशीर अहमद पीर की मौत हो जाती है। वो जम्मू कश्मीर में हथियारबंद आतंकवादियों की भर्ती करने और घुसपैठ कराने के लिए जिम्मेदार था। अल बद्र के कमांडर सैयद खालिद रजा और जैश ए मोहम्मद के मिस्त्री जहूर इब्राहिम को कराची में अलग अलग हमलों में गोली मार दी गई। और अब नंबर लगा है पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान का। आतंकी हमजा बुरहान की पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुजफ्फराबाद के एआईएमएस हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर घुसकर सीधे हमजा के सिर में गोली मारी जाती है और आतंकी हमजा बुरहान वहीं ढेर हो जाता है। हमजा बुरहान उर्फ अर्जुमन गुलजार डार स्कूल के अंदर अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। 14 फरवरी 2019 पुलवामा जम्मू कश्मीर, दोपहर 3:30 बजे। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर विस्फोटक से लदी एक कार आती है जो सीधे सीआरपीएफ के काफिले की बस से टकरा जाती है और इस आतंकी हमले में देश के 40 बहादुर जवान शहीद हो जाते हैं। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और पुलवामा अटैक की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली। ये पुलवामा अटैक भारत सरकार के लिए बहुत बड़ा और गहरा जख्म था और जब इस हमले में आतंकी हमजा बुरहान के मास्टरमाइंड होने का पता चला तो भारत ने 2022 में उसे यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया। आपको बता दें कि पाकिस्तान जाने से पहले हमजा बुरहान कभी दक्षिण कश्मीर का कमांडर था। साल 2018 में हमजा और उसकी ब्रिगेड ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो भी रिलीज किया था जिसमें वो खुद अपना नाम बोलता है और अपने मिशन के बारे में बताता है।
2: मैं हमजा बुरहान, डिविजनल कमांडर साउथ कश्मीर, आपके सामने आज हाजिर हुआ हूँ इस वजह से कि जो तहब में अलबद्र मुजाहिदीन ने कार्रवाई की है जिसमें कुछ मुर्तजीन जख्मी हुए हैं। हम अलबद्र मुजाहिदीन इस कार्रवाई की जिम्मेदारी कबूल करते हैं और आइंदा भी ऐसे ग्रेनेड और पुलिस वालों पे हमले, एसटीएफ पे हमले, पॉलिटिकल वर्कर्स के हमले की जिम्मेदारी आज से ही अहद अपना बनाते हैं इंशाअल्लाह रहमान। अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से आज से ही हम हमारा टारगेट ये मुर्तदीन होंगे और लाजिमन जो जम्मू कश्मीर पुलिस है इसको हम आज से ही ये आखिरी वार्निंग होगी इनके नाम, कोई वार्निंग हम नहीं इनके लिए, बेशक हमारा बस एक ही पैगाम होगा अगर ये पीछे मुड़े तो ठीक वरना ये अपने अंजाम को नजर रखे।
1: रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलवामा और शोपिया में हमजा का नेटवर्क तेजी से फैला। उसने यूसुफ बलोच नाम के एक हथियार सप्लायर के साथ मिलकर भर्ती और हथियार पहुंचाने का काम शुरू किया। हर महीने नए लड़कों को आतंकी संगठनों में शामिल किया जाता और कुछ ही समय बाद उनमें से कई मारे जाते। आरोप है कि ये पूरा नेटवर्क विचारधारा से ज्यादा पैसों और फायदे के लिए चलाया जा रहा था। श्रीनगर के लाबायपुरा एनकाउंटर का मामला भी उसके नाम से जोड़ा गया। हमजा बुरहान उर्फ अर्जुमन गुलजार डार पुलवामा के रात्रिपुरा इलाके का रहने वाला था, लेकिन साल 2017 में वो पाकिस्तान चला गया और हमजा खतरनाक आतंकी संगठन अल बद्र से जुड़ जाता है। अल बद्र घोषित आतंकी संगठन है। अल बद्र में शामिल होने के बाद हमजा 2019 में पुलवामा हमले की साजिश में शामिल होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमजा बुरहान पाकिस्तान में कारोबार कर रहा था और ऑनलाइन माध्यम से युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा था। क्योंकि बुरहान की मेडिकल फील्ड में दिलचस्पी थी तो उसे आतंक की दुनिया में डॉक्टर के नाम से भी बुलाया जाता था। लेकिन अब हमजा बुरहान उर्फ अर्जुमन गुलजार डार का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो चुका है। किसी अज्ञात ने हमजा को गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया। अब पुलवामा में हमजा बुरहान का परिवार मौत का मातम मना रहा है।
3: करीबन 2 बजे मुझे फोन आया मलंगपुरा कैंप से कि आपका बेटा अर्जुमन गुलजार मुजफ्फराबाद में उस पर अटैक हो गया और मारा गया। इसके बाद MIU जो इनकी एजेंसी है उनसे भी मैंने रब्ता किया, उन्होंने भी ये कन्फर्म किया, पुलवामा पुलिस ने भी उनको भी उन्होंने ये कन्फर्म कर दिया कि उसे मुजफ्फराबाद में अटैक हो गया और मारा गया।
4: हम पाकिस्तान वैलिड डॉक्यूमेंट्स पे गए थे थ्रू वीजा पासपोर्ट के जरिए, वो गए थे MBBS के लिए पाकिस्तान। तो फिर 1-2 महीने हमारा रब्ता था उससे, तो बोल रहे थे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ यहाँ पे, MBBS की डिग्री ले रहा हूँ। तो फिर जब हमें पता चला कि उसने दूसरी राह इख्तियार की है जो यहाँ के कानून की नज़र में या सबकी नज़र में गलत है, तो हमने फिर उससे रब्ता छोड़ दिया, सब कुछ गलत हो गया। तो उसकी वजह से हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसे कि मेरे भाइयों को, हम सबको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मेरा एक भाई है मुझसे छोटा है और वो 2019 के केस बीच का है, उसने केस क्वालिफाई किया है, आज 4 साल से वो जेल में है।
1: हमजा बुरहान जहन्नुम पहुंच चुका है, लेकिन अब दहशत फैली है पाकिस्तान में पल रहे आतंकी संगठनों और आतंक के आकाओं में। चाहे वो हाफिज सईद हो, मौलाना मसूद अजहर हो या फिर जकीउर रहमान लखवी, आतंक के इन आकाओं के नाम UAPA की लिस्ट में शामिल हैं। और जो हमजा बुरहान मारा गया है उसका नाम भी UAPA की लिस्ट में शामिल था। पुलवामा से वीर फरीद के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
0: और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। जी हाँ, बंगाल के फलता में दोबारा मतदान हुआ है जिसमें बंपर वोटिंग हुई है। फलता में 87% से ज्यादा मतदान हुआ है। फलता में जहां मतदाताओं में उत्साह नजर आया तो वहीं TMC के नेता और प्रत्याशी जहांगीर खान नदारद थे। जहांगीर खान 29 अप्रैल को हुए मतदान में खुद को पुष्पा बता रहे थे, दावा कर रहे थे कि वो झुकेंगे नहीं, लेकिन 26 दिन के बाद फलता में अभिषेक बनर्जी के चहेते पुष्पा का अता पता नहीं था।
5: 15 साल से हम लोग जो वोट दे नहीं दे रहा पाया था, अभी जो है पूरा माहौल जो है, हम सब मेरे मर्जी से वोट दे रहा था, वोट दे रहा है, खुशी से वोट दे रहा है, सुबह से ही पोलिंग चल रहा है, वोट दे रहा है, हम कोई प्रॉब्लम नहीं।
6: सोचिए, ये उस देश के नागरिक बोल रहे हैं जिन्हें संविधान से वोट देने का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन पश्चिम बंगाल के फलता में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो खुलकर अब पूरे देश को बताते हैं कि संविधान से मिले उनके मौलिक अधिकार को जहांगीर खान नाम का शख्स अपनी जेब में लेकर घूमता था। फलता में लोग न सिर्फ वोट डालने से रोके जाते थे बल्कि इसकी वो शिकायत तक किसी से नहीं कर सकते थे। जहांगीर खान के नाम का खौफ कुछ ऐसा रहा कि मतदान के दिन घर से लोग पहले नहीं निकल सकते थे।
7: जहांगीर खान जो कि तृणमूल कांग्रेस के स्ट्रांग मैन माना जाते थे, वो पुष्पा झुकेगा नहीं ऐसा कहा था और वो खुद अपने वोट से नाम हटा लिए। तो क्या लगता है कि इतने दिनों से उनका डर यहाँ पे था?
8: हाँ, उनर उसके लिए डर के लिए सब बाहर निकल नहीं सकता है कि ऐसा किया था। और अभी हम रनिंग सीएम जो है वो तो आके हम लोग का रोड शो किया है, जो सब अपना से वोट दो, कोई डर नहीं करेगा, भय आउट भर सही।
6: जहांगीर खान जो पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड बताया जाता है, चुनाव प्रचार में जहांगीर खान अभिषेक बनर्जी के इर्द गिर्द ही रहता था। दावा है किसी लिए जब वो फलता में विपक्षी पार्टियों को प्रचार करने से रोकता था तो उसे रोकने की हिम्मत कोई अफसर नहीं जुटा पाता था।
7: ये भी सुनने को आ रहा था कि यहाँ पे जो लोग वोट में विरोधी जो लोग रहते थे, जो कैंडिडेट रहते थे, ये भाजपा का हो या सीपीआईएम का हो, वो उनको प्रचार भी करने नहीं दिया जाता था। क्या ये सही है?
5: एकदम सही है सर। कोई भी आदमी प्रचार करने आए तो उसके लिए वो तो जहांगीर जो है ना वो पूरा पूरा बंद कर देते थे, यानी दुकान बंद पूरा करने नहीं देते,
8: शाम को उठा के चला जाता था पार्टी ऑफिस में।
6: ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जहांगीर खान की ममता सरकार में तूती बोलती थी, फलता में तो उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। इसीलिए जब उत्तर प्रदेश से बंगाल में चुनाव ड्यूटी पर गए आईपीएस अजय पाल शर्मा ने मतदाताओं की तरफ से डराने धमकाने की शिकायत पर एक्शन लिया तो ये जहांगीर खान को पसंद नहीं आया।
9: आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत।
6: इसके बाद जहांगीर खान सामने आए और उसने फिल्मी स्टाइल में डायलॉग मारा कि अगर अजय पाल शर्मा सिंघम है तो मैं पुष्पा।
10: उन्हें निजे के सिंघम मने करे सिनेमा आर्टिस्ट से हमरा पुष्पा छुपेगा नहीं।
6: जहांगीर खान के तेवर चुनाव नतीजे आने से पहले तक ही रहे। 4 मई के बाद बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ना तो उसकी दादागिरी बची ना फलता में जहांगीर की मौजूदगी रही। आज तक संवाददाता निर्माण फलता में जब जहांगीर खान के 3 मंजिला इमारत में उससे बात करने पहुंचते हैं तो वहां ताला लटका मिलता है।
7: जहांगीर जी कोई है क्या अंदर? जहांगीर जी वैसे तो कोई दिख नहीं रहा है और सामने ताला भी मारा हुआ है यहाँ पे। और इस वक्त जो है कि सबसे हाई सेंसिटिव ये इलाका कहा जाता है क्योंकि कहीं पे यहाँ पे बहुत सारे आरोप लगे हैं दूसरी चरण की जो मतदान थी 29 तारीख को उस समय पर, क्योंकि हमने देखा कि कहीं पे लोग पूरी आंदोलन पे उतर आए रास्ते में और उसके साथ साथ बीजेपी के तरफ से दूसरे पार्टियों की तरफ से भी बहुत सारी ऐसी आरोप लगाए गई कि जहांगीर खान यहाँ पे मतदान करने नहीं देते हैं लोगों को।
6: जहांगीर खान सत्ता के दम पर ही खौफ फैलाता रहा, इसीलिए जैसे ही ममता सरकार की विदाई हुई पहले उसने खुद को चुनाव की रेस से अलग किया और अब वहां से फरार हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि जनता बेखौफ होकर वोट डाल अपने घर से निकली। फलता में दोबारा हुआ पुनर्मतदान पश्चिम बंगाल के बदलाव से खबरदार करता है। बताता है कि सिर्फ 26 दिन मतदाताओं को डराने धमकाने वाला जहांगीर खान छुप चुका है। उसे कानून का खौफ सताता है, जबकि 29 अप्रैल को हुए मतदान जहांगीर पर लोगों को डराने धमकाने का आरोप लगा। फलता में राजनीतिक हिंसा हुई लेकिन सरकार बदलने के बाद दोबारा चुनाव में माहौल शांतिपूर्ण दिखा, जनता खुलकर वोट डालती दिखी तो जहांगीर खान का नामो निशान यहाँ खत्म दिखा।
7: काफी भारी मात्रा में लोग बाहर आ रहे हैं अपनी मतदान कर रहे हैं और अब पुष्पा जो जहांगीर खान अपने आप को बता रहे थे वो तो फिलहाल अब ये मतदान की जो रस्म है वो रस्म से बाहर चली गई है, लेकिन उनका जो ईवीएम मशीन है उनमें तो उनका नाम रहेगा।
0: पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार घुसपैठ को रोकने के लिए ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घुसपैठ के खिलाफ अपने 3D फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद बंगाल में अवैध घुसपैठियों की पहचान भी होगी और बॉर्डर पर सुरक्षा भी पुख्ता होगी।
11: ये हमारे NDA का पॉलिसी है मान्यवर, डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करेंगे।
12: पश्चिम बंगाल में घुसपैठ को बीजेपी ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। जनता से वायदा किया कि बंगाल की सत्ता में आते ही वो घुसपैठ रोकने का काम करेगी।
13: पश्चिम बंगाल में भी बहुत जरूरी है कि घुसपैठियों को बाहर किया जाए। आपको घुसपैठियों और यहां के सत्ताधारी लोगों के इस गठजोड़ को तोड़ना ही होगा।
12: पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार ने 10 दिन में वो काम कर दिखाने का दावा किया है जो ममता बनर्जी ने 12 साल से लटका रखा। बांग्लादेश की सीमा पर कटीले तार लगाने के लिए शुभेंदु सरकार ने सिलीगुड़ी वाले इलाके में 27 किलोमीटर की जमीन बीएसएफ को सौंप दी।
14: नाउ वी आर रेडी टू हैंड ओवर 27 किलोमीटर फेंसिंग लैंड अलोंग विथ फ्यू बीओ बॉर्डर आउटपोस्ट लैंड्स एंड बीएसएफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लैंड।
12: शुभेंदु सरकार की कोशिश जल्द से जल्द बांग्लादेश की सीमा को सुरक्षित कर जनता से वादा पूरा करने की है। राज्य सरकार से जमीन मिलने के बाद बीएसएफ और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर बाड़ लगाने का काम भी शुरू कर दिया है। ये पश्चिम बंगाल का कूच बिहार है जहाँ पर अवैध घुसपैठ की वजह से सामाजिक बदलाव में दावे बरसों से हो रहे हैं, इसके बावजूद यहाँ पर तारबंदी नहीं है। शुभेंदु सरकार के यहाँ पर फेंसिंग करने के लिए बीएसएफ को जमीन देने के फैसले से हलचल देखने को मिली। बीएसएफ की टीम ने यहाँ पर काम भी शुरू कर दिया है।
15: और इसी बॉर्डर पिलर से कुछ ही देर पहले आगे बांग्लादेश आते हैं। मेरा पीछे जो पैडी फील्ड है उसको छोड़ के एक मक्की का खेत दिखा रहा है, वो मक्की खेत छोड़ने के बाद ही मिलेगा आपको बांग्लादेश। और इसी जगह में इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा होता है, बॉर्डर स्मगलिंग का मुद्दा होता है, लेकिन इस रोकने के लिए फेंसिंग जरूरी है। और इस फेंसिंग देने के लिए बार बार बीएसएफ ने वेस्ट बंगाल सरकार को जमीन मांगे थे, लेकिन जमीन मिला नहीं। इसी बॉर्डर पिलर से 400 मीटर बाद में होगा नया फेंसिंग, इसलिए जमीन लेने का कार्रवाई चालू हो गया। और कुछ बिहार जिला का दिनहाटा 2 ब्लॉक में 18 एकड़ जमीन दिया जाएगा बीएसएफ को।
12: पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई 2216 किलोमीटर है, जिसमें से 1647 किलोमीटर सीमा पर बाड़ लगाई जा चुकी है। वहीं 570 किलोमीटर के हिस्से में यह काम होना भी बाकी। बीजेपी का आरोप रहा है कि ममता के सरकार में रहते तुष्टिकरण की वजह से इस काम में खलल पड़ता रहा।
14: 555 किलोमीटर एमन इलाका रही जेखने राज्य सरकार चाहले बीएसएफ के जमी दीते पारत, किंतु राज्य सरकार विगत राज्य सरकार राजनैतिक कारण भोट बैंकर जो এবং তাদের যে হাই অ্যাপিজমেন্ট তুষ্টিকরণ তোষণের এজেন্ডা ছিল সেই কারণে তারা হয়তো দেয়নি।
12: लेकिन बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते शुभेंदु अधिकारी इस मामले में एक्शन में दिख रहे हैं, जिससे बांग्लादेश सीमा पर रहने वाले लोगों को अवैध घुसपैठ की समस्या से निजात मिलने की उम्मीद है।
11: फेंसिंग होने से बीएसएफ का काम भी कुछ हल्का होगा। हमारा जो प्रतिरक्षा है, देश का जो सुरक्षा है, ये अच्छा होगा। और स्मगलिंग और जो इन्फिल्ट्रेशन टोटली शुड बी स्टॉप।
16: इधर फोर्स आएगा तो उधर जो हमारा जो चेकिन होता है, ये कोई गेस्ट आता है तो घर से जाना पड़ता है आदमी लेने के लिए, फिर छोड़ने के लिए ले जाना पड़ता है, वो समस्या समस्या में होगा।
14: सीए ते बोला आछे 7 कम्युनिटी बा धर्म पालन करा लोकेरा तारा সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের আওতায় আসবেন এবং তাদেরকে যারা 31/12/2024 পর্যন্ত এসেছেন তাদেরকে কোনো পুলিশ কোথাও হ্যারাসমেন্ট ডিটেন্ট করতে পারবে না।
12: তো পশ্চিম বঙ্গাল মে সিএএ সে অবৈধ ঘুসপাঠিয়ে পকড়ে যায়গে, শরণার্থী ও ঘুসপাঠিয়ো মে অন্তর কিয়া যায়গা, বাংলাদেশী অবৈধ ঘুসপাঠিয়ো কি পহচান হোনে পর উন্হে বিএসএফ কে হওয়ালে কিয়া যায়গা, জো বাংলাদেশ সে বাত করকে উন্হে ভেজনে কা ইন্তজাম করেগি।
14: সিএএ এর আওতায় যারা নেই তারা হলেন কমপ্লিটলি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ইনফিল্ট্রেটরস, তাদেরকে সরাসরি রাজ্য পুলিশ গ্রেপ্তার করবে এবং ডিটেন করবে এবং হ্যান্ডওভার করবে বিএসএফ এর হাতে।
12: বিএসএফ নে জিস তেজি সে বাংলাদেশ কি সীমা পর পিলার লাগানে কে লিয়ে সার্ভে শুরু কিয়া উসসে উম্মীদ কি জানি চাহিয়ে কি বর্ডার পর ফেন্সিং কা কাম রেকর্ড সময় মে হোগা। পশ্চিম বঙ্গাল সরকার কি তরফ সে চিকেন নেক কি 120 একর জমিন সৌঁপনে সে দেশ কি সুরক্ষা মজবুত হোগি, চিকেন নেক মে আনে ওয়ালে 7 হাইওয়ে কি দেখরেখ কেন্দ্র কর পায়েগা জো মমতা সরকার মে পিডব্লিউডি কে পাস থা, লেকিন বঙ্গাল মে সরকার বদলনে কে বাদ বর্ডার পর হালাত আব বদল জায়েঙ্গে।
0: जयपुर में हाई लेवल हंगामा देखने को मिला है। नीट पेपर लीक के विरोध में कांग्रेस ने जयपुर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के नेता हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी दफ्तर का घेराव करने पहुंचे। कांग्रेस मांग कर रही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें।
17: नीट पेपर लीक को लेकर जयपुर में हंगामा बरपा है। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ के खिलाफ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन भी है। 41 डिग्री के तापमान में तख्तियों पर तेवर लिखकर पहुंचे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। प्रचंड धूप में भी सरकार के खिलाफ तल्खियां दिखा रहे हैं कांग्रेस के नेता। कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय की तरफ बढ़ने वाले थे लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। पुलिस को वाटर कैनन चलाना पड़ा।
18: पानी की बौछारें शुरू कर दी गई है, पानी डाला जा रहा है। यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे जो बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वाटर कैनन से भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। जयपुर में
17: वाटर कैनन चलने के बाद भी कार्यकर्ता जमे रहे और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते रहे।
19: युवाओं का मुद्दा है, असली चोर पकड़ा गया। कांग्रेस को बदनाम कर रहे थे, चोरी ये कर रहे थे।
17: इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेडिंग का घेरा तोड़कर आगे बढ़ने के लिए धक्का मुक्की करते दिखे।
20: प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी के नेतृत्व के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर प्रदर्शन हुआ है, यहाँ भी प्रदर्शन हुआ है।
17: इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता भी थी। प्रदर्शनकारी लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। कांग्रेस ने नीट पेपर लीक को बड़ा मुद्दा बना लिया है, इसी के सहारे वो अपनी सियासत को नई धार दे रही है। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
0: और अब बात ईरान और अमेरिका युद्ध की करेंगे। एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि अगर ईरान ने डील के लिए भेजे गए प्रस्ताव पर सही जवाब नहीं दिया तो अमेरिका हमला करने के लिए तैयार है। तो अमेरिका के वॉर मिनिस्टर पीट हिट्सिक ने कहा है लॉक्ड एंड लोडेड। तो आइए देखते हैं इसका मतलब क्या है।
1: 7 अप्रैल से भले ही ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम चल रहा है लेकिन उसी घड़ी से धमकियों का महायुद्ध भी जारी है। फिर भी झुकना तो दूर की बात, ईरान ट्रंप की धमकियों के आगे टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बार ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है अगर ईरान ने डील के लिए भेजे गए प्रस्ताव पर सही जवाब नहीं दिया तो अमेरिका हमला करने के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि उन्हें ईरान से 100% सही जवाब चाहिए। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर 2 दिन रुकने से वो लोगों को मारे जाने से बचा सके तो ये अच्छी बात होगी। आपको बता दें कि अमेरिका एक ऐसी डील का इंतजार कर रहा है जिसमें ईरान परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह छोड़ दे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोल दे। ट्रंप ने ईरान को पराजित देश बताते हुए कहा कि अगर ईरान ने जल्द फैसला नहीं किया तो बड़े पैमाने पर हमला शुरू हो जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या वाकई ईरान ट्रंप की इन धमकियों के दबाव में आएगा। दूसरी तरफ ईरान की सरकारी एजेंसी नूर न्यूज ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई के हवाले से कहा है कि हमें अमेरिका के व्यूज मिल गए हैं और हम उनकी समीक्षा कर रहे हैं। और इस बीच अमेरिका के वॉर मिनिस्टर पीट हेक्सेथ ने भी सोशल मीडिया पर ईरान को बड़ी धमकी दे दी है। पीट हेक्सेथ ने लिखा है, लॉक्ड एंड लोडेड। उन्होंने ये कमेंट अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के उस पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा है, जिसमें ये कहा गया है कि ईरान के साथ ऐसी डील नहीं होगी जिससे उसे परमाणु हथियार बनाने की छूट मिल जाए। जेडी वैंस ने भी अपने पोस्ट में लॉक्ड एंड लोडेड लिखा था, साथ ही ये कहा था कि अमेरिका नहीं चाहता कि उसे फिर से युद्ध के रास्ते पर जाना पड़े, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप इसके लिए तैयार हैं कि अगर युद्ध करना पड़ा तो इसकी इच्छा और क्षमता दोनों ही उनमें मौजूद है। यानी राष्ट्रपति ट्रंप से लेकर उपराष्ट्रपति और अब युद्ध मंत्री भी ईरान के खिलाफ फिर से जंग की धमकी दे रहे हैं।
2: We think that we've made a lot of progress. We think the Iranians want to make a deal. The President of the United States has asked us to negotiate in good faith, and that's exactly what we've done. So we're in a pretty good spot here, but there's an option B. And the option B is that we could restart the military campaign to continue to prosecute the case, to continue to try to achieve America's objectives. And we could talk a little bit about what that looks like, but that's not what the President wants, and I don't think it's what the Iranians want either.
1: लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब पूरा अमेरिकी प्रशासन ईरान को धमकियां देने पर उतारू है, तो फिर इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमला आखिरी समय में क्यों टाला? इससे जुड़ी एक बड़ी खबर न्यूज वेबसाइट मिडल ईस्ट आई के हवाले से आ रही है, जिसमें दावा किया गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने खाड़ी देशों के अपने सहयोगियों और अपने ही अधिकारियों की इस चेतावनी के बाद फैसला लिया कि हज यात्रा के दौरान युद्ध शुरू न किया जाए। खाड़ी देशों के दो वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार ट्रंप को बताया गया था कि हज यात्रा के दौरान ईरान पर हमला करने से खाड़ी देशों के भीतर संकट पैदा हो जाएगा, क्योंकि इससे लाखों तीर्थयात्री वहीं फंस जाएंगे। सूत्रों ने यह भी बताया कि ट्रंप को आगाह किया गया था कि इस पवित्र समय के दौरान, जो इस्लामी त्योहार ईद उल अज़हा से ठीक पहले का समय होता है, हमला करने से मुस्लिम जगत में वॉशिंगटन की साख को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। अमेरिका ने इससे पहले मुसलमानों के पवित्र महीने रमजान के दौरान ईरान पर हमला किया था, लेकिन हज के समय ऐसा करने से सऊदी अरब के सामने भारी लॉजिस्टिक चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। सऊदी अरब हर साल लगभग 10 लाख विदेशी तीर्थयात्रियों की मेजबानी करता है। ये चुनौतियां खाड़ी देशों के हवाई यात्रा केंद्रों जैसे कतर और यूएई और दक्षिण तथा पूर्वी एशिया के उन देशों तक भी फैल जाएंगी जहां से कई तीर्थयात्री अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अगर ये खबर सही है तो डोनाल्ड ट्रंप मई महीने में हमला करने से बचेंगे, यानी अब ये हमला जून के पहले हफ्ते में हो सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका लाख कोशिशों के बावजूद हुर्मुज खुलवाने में नाकाम रहा है। ईरान के पास इस वक्त हुर्मुज की नाकेबंदी सबसे बड़ा हथियार है और वो इस मुद्दे पर लगातार अमेरिका को चढ़ा रहा है। बड़ी खबर आईआरजीसी नौसेना के राजनीतिक उप प्रमुख के हवाले से आ रही है। मोहम्मद अकबर जादेह ने तंज करते हुए कहा है कि हुर्मुज जल डब्लू मध्य को कमांडर तंसीरी के आदेश पर बंद कर दिया गया था। यही नहीं, अपने तमाम दाव पेचों और चालों के बावजूद अमेरिका इसे फिर से खोलने में नाकाम रहा है। दुश्मन को न तो ईरान के बारे में सही खुफिया जानकारी है, न ही समझ और अक्ल है। आपको बता दें कि अली रिजा तंगसीरी ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी नेवी के कमांडर थे। उन्हें हुर्मुज बंद करने की रणनीति का मास्टरमाइंड माना जाता था। 26 मार्च 2026 को बंदर अब्बास में इजरायली एयर स्ट्राइक में वो बुरी तरह घायल हुए और 4 दिन बाद उनकी मौत हो गई। आज तक ब्यूरो।
0: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री ने देखा मंत्रालयों का रिपोर्ट कार्ड, कामकाज पर मंत्री ने दिया प्रेजेंटेशन, पीएम ने ईज ऑफ लिविंग और रिफॉर्म पर जोर दिया, कहा 2047 को ध्यान में रखते हुए करेंगे। प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से बड़े निवेश को मिली मंजूरी, पीयूष गोयल का बड़ा बयान, सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा समेत कुल 57 बड़े समझौते, विपक्ष ने फिर उठाए सवाल।

0: मंत्री परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री ने देखा मंत्रालयों का रिपोर्ट कार्ड, कामकाज पर मंत्रियों ने दिया प्रेजेंटेशन, पीएम ने ईज ऑफ लिविंग और रिफॉर्म पर जोर दिया, कहा 2047 को ध्यान में रखते हुए करेगा। प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से बड़े निवेश को मिली मंजूरी, पीयूष गोयल का बड़ा बयान, सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा समेत कुल 57 बड़े समझौते, विपक्ष ने फिर उठाए सवाल। मारुति ने कारों के दाम में किया 30,000 तक का इजाफा, जून से लागू हो जाएंगी नई कीमतें, बिहार में सुधा और राजस्थान में सरस ने दूध की कीमत में बढ़ाए 2 रुपए। नीट कांड को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को फिर से घेरा, पोस्ट में लिखा यहां पेपर लीक से युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, वहां इटली में मोदी रील बना रहे हैं। बंगाल में बकरीद में गायों की कुर्बानी पर बरकरार रहेगी रोक, शुभेंदु सरकार के फैसले पर रोक लगाने वाली याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट से खारिज, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का दिया गया हवाला। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को ढेर कर दिया गया है। आतंकी हमजा को पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में गोली मारी गई थी। खूंखार हमजा को साल 2022 में भारत सरकार ने यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया था और अब उसका अंत हो चुका है। तो आइए देखते हैं कि कौन है वो धुरंधर जो पाकिस्तान में छुपे आतंकवादियों को निपटा रहा है।
1: धुरंधर ने पाकिस्तानी हमजा को निपटाया, आतंकियों में खौफ छाया। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पीओके में सरेआम हत्या। हाफिज सईद डरा, मसूद अजहर दहला, लखवी का कांप उठा कलेजा। पाकिस्तान में धुरंधर कौन, एक के बाद एक आतंकियों का काम तमाम। हमजा बुरहान का पूरा सच पुलवामा से लेकर मुजफ्फराबाद तक। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में आराम से अपनी जिंदगी जी रहे आतंकी हमजा बुरहान के सामने काल बनकर कौन आया, इस सवाल का जवाब है धड़ाधड़ हो रही आतंकियों की हत्याएं, जिन्हें कोई अज्ञात हमलावर आता है और काम तमाम करके चला जाता है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के अंदर कई आतंकियों पर न सिर्फ बड़े हमले हुए हैं बल्कि कई की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या भी हो चुकी है और इन हत्याओं के पीछे किसी अज्ञात हमलावर का हाथ बताया जा रहा है। पिछले दिनों लश्कर ए तैयबा फाउंडर चीफ और हाफिज सईद के बराबर का दर्जा पाने वाले आमिर हमजा पर हमला होता है लेकिन वो बाल बाल बच जाता है। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बशीर अहमद पीर की मौत हो जाती है। वो जम्मू कश्मीर में हथियारबंद आतंकवादियों की भर्ती करने और घुसपैठ कराने के लिए जिम्मेदार था। अल बद्र के कमांडर सैयद खालिद रजा और जैश ए मोहम्मद के मिस्त्री जहूर इब्राहिम को कराची में अलग अलग हमलों में गोली मार दी गई। और अब नंबर लगा है पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान का। आतंकी हमजा बुरहान की पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में गोली मार कर हत्या कर दी गई। मुजफ्फराबाद के एआईएमएस हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर घुसकर सीधे हमजा के सिर में गोली मारी जाती है और आतंकी हमजा बुरहान वहीं ढेर हो जाता है। हमजा बुरहान उर्फ अर्जुमन गुलजार डार स्कूल के अंदर अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। 14 फरवरी 2019 पुलवामा जम्मू कश्मीर दोपहर 3:30 बजे जम्मू श्रीनगर हाईवे पर विस्फोटक से लदी एक कार आती है जो सीधे सीआरपीएफ के काफले की बस से टकरा जाती है और इस आतंकी हमले में देश के 40 बहादुर जवान शहीद हो जाते हैं। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और पुलवामा अटैक की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली। ये पुलवामा अटैक भारत सरकार के लिए बहुत बड़ा और गहरा जख्म था और जब इस हमले में आतंकी हमजा बुरहान के मास्टरमाइंड होने का पता चला तो भारत ने 2022 में उसे यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया। आपको बता दें कि पाकिस्तान जाने से पहले हमजा बुरहान कभी दक्षिण कश्मीर का कमांडर था, साल 2018 में हमजा और उसकी ब्रिगेड ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो भी रिलीज किया था, जिसमें वो खुद अपना नाम बोलता है और अपने मिशन के बारे में बताता है।
2: मैं हमजा बुरहान, डिविजनल कमांडर साउथ कश्मीर, आपके सामने आज हाजिर हुआ हूँ इस वजह से कि जो ताहब में अलबदर मुजाहिदीन ने कार्रवाई की है, जिसमें कुछ मुर्तजीन जख्मी हुए हैं। हम अलबदर मुजाहिदीन इस कार्रवाई की जिम्मेदारी कबूल करते हैं और आइंदा भी ऐसे ग्रेनेड और पुलिस वालों पे हमले, एसटीएफ पे हमले, पॉलिटिकल वर्कर्स के हमले की जिम्मेदारी आज से ही अहद अपना बनाते हैं। इंशाअल्लाह रहमान, अल्लाह तबारक वताला के फजल करम से आज से ही हमारा टारगेट ये मुर्तदीन होंगे और लाजिमन जो जम्मू कश्मीर पुलिस है इसको हम आज से ही ये आखिरी वार्निंग होगी इनके नाम, कोई वार्निंग हम नहीं इनके लिए, बेशक हमारा बस एक ही पैगाम होगा, अगर ये पीछे मुड़े तो ठीक वरना ये अपने अंजाम को नजर रखे।
1: रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलवामा और शोपिया में हमजा का नेटवर्क तेजी से फैला। उसने यूसुफ बलोच नाम के एक हथियार सप्लायर के साथ मिलकर भर्ती और हथियार पहुंचाने का काम शुरू किया। हर महीने नए लड़कों को आतंकी संगठनों में शामिल किया जाता और कुछ ही समय बाद उनमें से कई मारे जाते। आरोप है कि ये पूरा नेटवर्क विचारधारा से ज्यादा पैसों और फायदे के लिए चलाया जा रहा था। श्रीनगर के लाबायपुरा एनकाउंटर का मामला भी उसके नाम से जोड़ा गया। हमजा बुरहान उर्फ अर्जुमन गुलजार डार पुलवामा के रात्रिपुरा इलाके का रहने वाला था, लेकिन साल 2017 में वो पाकिस्तान चला गया और हमजा खतरनाक आतंकी संगठन अल बद्र से जुड़ जाता है। अल बद्र घोषित आतंकी संगठन है। अल बद्र में शामिल होने के बाद हमजा 2019 में पुलवामा हमले की साजिश में शामिल होता है। रिपोर्ट के मुताबिक हमजा बुरहान पाकिस्तान में कारोबार कर रहा था और ऑनलाइन माध्यम से युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा था। क्योंकि बुरहान की मेडिकल फील्ड में दिलचस्पी थी तो उसे आतंक की दुनिया में डॉक्टर के नाम से भी बुलाया जाता था। लेकिन अब हमजा बुरहान उर्फ अर्जुमन गुलजार डार का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो चुका है। किसी अज्ञात ने हमजा को गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया। अब पुलवामा में हमजा बुरहान का परिवार मौत का मातम मना रहा है।
3: करीबन 2 बजे मुझे फोन आया मलंगपुरा कैंप से कि आपका बेटा अर्जुमन गुलजार मुजफ्फराबाद में उस पर अटैक हो गया और मारा गया। इसके बाद MIU जो इनकी एजेंसी है उनसे भी मैंने रابطہ किया, उन्होंने भी ये कंफर्म किया, पुलवामा पुलिस ने भी उनको भी उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि उसे मुजफ्फराबाद में अटैक हो गया और मारा गया।
4: हम पाकिस्तान वैलिड डॉक्यूमेंट्स पे गए थे, थ्रू वीजा पासपोर्ट के जरिए वो गए थे MBBS के लिए पाकिस्तान। तो फिर 1-2 महीने हमारा रابطہ था उससे, तो बोल रहे थे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ यहाँ पे, MBBS की डिग्री ले रहा हूँ। तो फिर जब हमें पता चला कि उसने दूसरी राह इख्तियार की है जो उनके यहाँ के कानून की नजर में या सबकी नजर में गलत है, तो हमने फिर उससे रابطہ छोड़ दिया, सब कुछ गलत हो गया। तो उसकी वजह से हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसे कि मेरे भाइयों को, हम सबको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मेरा एक भाई है, मुझसे छोटा है और वो 2019 के केस बीच का है, उसने केस क्वालिफाई किया है, आज 4 साल से वो जेल में है।
1: हमजा बुरहान जहन्नुम पहुंच चुका है, लेकिन अब दहशत फैली है पाकिस्तान में पल रहे आतंकी संगठनों और आतंक के आकाओं में। चाहे वो हाफिज सईद हो, मौलाना मसूद अजहर हो या फिर जकीउर रहमान लखवी, आतंक के इन आकाओं के नाम UAPA की लिस्ट में शामिल हैं। और जो हमजा बुरहान मारा गया है उसका नाम भी UAPA की लिस्ट में शामिल था। पुलवामा से मीर फरीद के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
0: और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। जी हाँ, बंगाल के फलता में दोबारा मतदान हुआ है जिसमें बंपर वोटिंग हुई है। फलता में 87% से ज्यादा मतदान हुआ है। फलता में जहां मतदाताओं में उत्साह नजर आया तो वहीं TMC के नेता और प्रत्याशी जहांगीर खान नदारद थे। जहांगीर खान 29 अप्रैल को हुए मतदान में खुद को पुष्पा बता रहे थे, दावा कर रहे थे कि वो झुकेंगे नहीं, लेकिन 26 दिन के बाद फलता में अभिषेक बनर्जी के चहेते पुष्पा का अता पता नहीं था।
5: 15 साल से हम लोग जो वोट दे नहीं दे रहा पाया था, अभी जो है पूरा माहौल जो है, हम सब मेरे मर्जी से वोट दे रहा था, वोट दे रहा है, खुशी से वोट दे रहा है, सुबह से ही पोलिंग चल रहा है, वोट दे रहा है, हम कोई प्रॉब्लम नहीं।
6: सोचिए, ये उस देश के नागरिक बोल रहे हैं जिन्हें संविधान से वोट देने का अधिकार मिला हुआ है। लेकिन पश्चिम बंगाल के फलता में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो खुलकर अब पूरे देश को बताते हैं कि संविधान से मिले उनके मौलिक अधिकार को ही जहांगीर खान नाम का शख्स अपनी जेब में लेकर घूमता था। फलता में लोग न सिर्फ वोट डालने से रोके जाते थे बल्कि इसकी वो शिकायत तक किसी से नहीं कर सकते थे। जहांगीर खान के नाम का खौफ कुछ ऐसा रहा कि मतदान के दिन घर से लोग पहले नहीं निकल सकते थे।
7: जहांगीर खान जो कि तृणमूल कांग्रेस के स्ट्रांग मैन माना जाते थे, वो पुष्पा झुकेगा नहीं ऐसा कहा था और वो खुद अपने वोट से नाम हटा लिए। तो क्या लगता है कि इतने दिनों से उनका डर यहाँ पे था?
8: हाँ, उनर उसके लिए डर के लिए सब बाहर निकल नहीं सकता है कि ऐसा किया था। और अभी हम रनिंग सीएम जो है वो तो आके हम लोग का रोड शो किया है, जो सब अपना से वोट दो, कोई डर नहीं करेगा। भय आउट भर सही।
6: जहांगीर खान जो पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड बताया जाता है। चुनाव प्रचार में जहांगीर खान अभिषेक बनर्जी के इर्द गिर्द ही रहता था। दावा है किसी ने जब वो फलता में विपक्षी पार्टियों को प्रचार करने से रोकता था तो उसे रोकने की हिम्मत कोई अफसर नहीं जुटा पाता था।
7: ये भी सुनने को आ रहा था कि यहाँ पे जो लोग वोट में विरोधी जो लोग रहते थे, जो कैंडिडेट रहते थे, ये भाजपा का हो या सीपीआईएम का हो, वो उनको प्रचार भी करने नहीं दिया जाता था। क्या ये सही है?
5: एकदम सही है सर। कोई भी आदमी प्रचार करने आए तो उसके लिए वो तो जहांगीर जो है ना वो पूरा पूरा बंद कर देते थे, यानी दुकान बंद पूरा करने नहीं देते।
8: शाम को उठा के चला जाता था पार्टी ऑफिस में।
6: ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जहांगीर खान की ममता सरकार में तूती बोलती थी। फलता में तो उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। इसीलिए जब उत्तर प्रदेश से बंगाल में चुनाव ड्यूटी पर गए आईपीएस अजय पाल शर्मा ने मतदाताओं की तरफ से डराने धमकाने की शिकायत पर एक्शन लिया तो ये जहांगीर खान को पसंद नहीं आया।
9: आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत।
6: इसके बाद जहांगीर खान सामने आए और उसने फिल्मी स्टाइल में डायलॉग मारा कि अगर अजय पाल शर्मा सिंघम है तो मैं पुष्पा।
10: उन्हें निजे के सिंघम मने करे सिनेमा आर्टिस्ट आमरा पुष्पा छुपेगा नहीं।
6: जहांगीर खान के तेवर चुनाव नतीजे आने से पहले तक ही रहे। 4 मई के बाद बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ना तो उसकी दादागिरी बची ना फलता में जहांगीर की मौजूदगी रही। आज तक संवाददाता निर्माण फलता में जब जहांगीर खान के 3 मंजिला इमारत में उससे बात करने पहुंचते हैं तो वहां ताला लटका मिलता है।
7: जहांगीर जी कोई है क्या अंदर? जहांगीर जी वैसे तो कोई दिख नहीं रहा है और सामने ताला भी मारा हुआ है यहाँ पे। और इस वक्त जो है कि सबसे हाई सेंसिटिव ये इलाका कहा जाता है क्योंकि कहीं पे यहाँ पे बहुत सारे आरोप लगे हैं दूसरी चरण की जो मतदान थी 29 तारीख को उस समय पर, क्योंकि हमने देखा कि कहीं पे लोग पूरी आंदोलन पे उतर आए रास्ते में और उसके साथ साथ बीजेपी के तरफ से दूसरे पार्टियों की तरफ से भी बहुत सारी ऐसी आरोप लगाए गई कि जहांगीर खान यहाँ पे मतदान करने नहीं देते हैं लोगों को।
6: जहांगीर खान सत्ता के दम पर ही खौफ फैलाता रहा, इसीलिए जैसे ही ममता सरकार की विदाई हुई पहले उसने खुद को चुनाव की रेस से अलग किया और अब वहां से फरार हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि जनता बेखौफ होकर वोट डाल अपने घर से निकली। फलता में दोबारा हुआ पुनर्मतदान पश्चिम बंगाल के बदलाव से खबरदार करता है। बताता है कि सिर्फ 26 दिन मतदाताओं को डराने धमकाने वाला जहांगीर खान छुप चुका है। उसे कानून का खौफ सताता है, जबकि 29 अप्रैल को हुए मतदान जहांगीर पर लोगों को डराने धमकाने का आरोप लगा। फलता में राजनीतिक हिंसा हुई लेकिन सरकार बदलने के बाद दोबारा चुनाव में माहौल शांतिपूर्ण दिखा। जनता खुलकर वोट डालती दिखी तो जहांगीर खान का नामो निशान यहाँ खत्म दिखा।
7: काफी भारी मात्रा में लोग बाहर आ रहे हैं अपनी मतदान कर रहे हैं और अब पुष्पा जो जहांगीर खान अपने आप को बता रहे थे वो तो फिलहाल अब ये मतदान की जो रस्म है वो रस्म से बाहर चली गई है, लेकिन उनका जो ईवीएम मशीन है उनमें तो उनका नाम रहेगा।
0: पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार घुसपैठ को रोकने के लिए ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घुसपैठ के खिलाफ अपने 3D फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद बंगाल में अवैध घुसपैठियों की पहचान भी होगी और बॉर्डर पर सुरक्षा भी पुख्ता होगी।
11: ये हमारे NDA का पॉलिसी है माननीय, डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर डिटेक्ट डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करेंगे।
12: पश्चिम बंगाल में घुसपैठ को बीजेपी ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया, जनता से वायदा किया कि बंगाल की सत्ता में आते ही वो घुसपैठ रोकने का काम करेगी।
13: पश्चिम बंगाल में भी बहुत जरूरी है कि घुसपैठियों को बाहर किया जाए। आपको घुसपैठियों और यहां के सत्ताधारी लोगों के इस गठजोड़ को तोड़ना ही होगा।
12: पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार ने 10 दिन में वो काम कर दिखाने का दावा किया है जो ममता बनर्जी ने 12 साल से लटका रखा। बांग्लादेश की सीमा पर कटीले तार लगाने के लिए शुभेंदु सरकार ने सिलगुड़ी वाले इलाके में 27 किलोमीटर की जमीन BSF को सौंप दी।
14: नाउ वी आर रेडी टू हैंड ओवर 27 किलोमीटर फेंसिंग लैंड अलोंग विथ फ्यू बीओ बॉर्डर आउटपोस्ट लैंड्स एंड BSF इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लैंड।
12: शुभेंदु सरकार की कोशिश जल्द से जल्द बांग्लादेश की सीमा को सुरक्षित कर जनता से वादा पूरा करने की है। राज्य सरकार से जमीन मिलने के बाद BSF और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर बाड़ लगाने का काम भी शुरू कर दिया है। ये पश्चिम बंगाल का कूच विहार है जहाँ पर अवैध घुसपैठ की वजह से सामाजिक बदलाव में दावे बरसों से हो रहे हैं, इसके बावजूद यहाँ पर तारबंदी नहीं है। शुभेंदु सरकार के यहाँ पर फेंसिंग करने के लिए BSF को जमीन देने के फैसले से हलचल देखने को मिली। BSF की टीम ने यहाँ पर काम भी शुरू कर दिया है।
15: और इसी बॉर्डर पिलर से कुछ ही देर पहले आगे बांग्लादेश आते हैं। मेरा पीछे जो पैडी फील्ड है उसको छोड़ के एक मक्की का खेत देख रहा है, वो मक्की खेत छोड़ने के बाद ही मिलेगा आपको बांग्लादेश। और इसी जगह में इनफिल्ट्रेशन का मुद्दा होता है, बॉर्डर स्मगलिंग का मुद्दा होता है, लेकिन इस रोकने के लिए फेंसिंग जरूरी है। और इस फेंसिंग देने के लिए बार बार BSF ने वेस्ट बंगाल सरकार को जमीन मांगे थे, लेकिन जमीन मिला नहीं। इसी बॉर्डर पिलर से 400 मीटर बाद में होगा नया फेंसिंग, इसलिए जमीन लेने का कार्रवाई चालू हो गया। और कुछ बिहार जिला का दिनहाटा 2 ब्लॉक में 18 एकड़ जमीन दिया जाएगा BSF को।
12: पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई 2216 किलोमीटर है, जिसमें से 1647 किलोमीटर सीमा पर बाड़ लगाई जा चुकी है, वहीं 570 किलोमीटर के हिस्से में काम होना भी बाकी। BJP का आरोप रहा है कि ममता के सरकार में रहते तुष्टिकरण की वजह से इस काम में खलल पड़ता रहा।
14: 555 किलोमीटर एमन इलाका रही है जिखने राज्य सरकार चाहले BSF के जमी दीते पारत, किंतु राज्य सरकार विगत राज्य सरकार राजनैतिक कारण भोट बैंकर जो এবং তাদের যে হাই অ্যাপিজমেন্ট তুষ্টিকরণ তোষণের এজেন্ডা ছিল সেই কারণে তারা হয়তো দেয়নি।
12: लेकिन बंगाल में BJP अब सरकार बनते शुभेंदु अधिकारी इस मामले में एक्शन में दिख रहे हैं, जिससे बांग्लादेश सीमा पर रहने वाले लोगों को अवैध घुसपैठ की समस्या से निजात मिलने की उम्मीद है।
16: फेंसिंग होने से BSF का काम भी कुछ हल्का होगा। हमारा जो प्रतिरक्षा है, देश का जो सुरक्षा है, ये अच्छा होगा। और स्मगलिंग और जो इन्फिल्ट्रेशन टोटली शुड बी स्टॉप।
17: इधर फोर्स आएगा तो उधर जो हमारा जो चेकिंग होता है कोई गेस्ट आता है तो घर से जाना पड़ता है आदमी लेने के लिए, फिर छोड़ने के लिए ले जाना पड़ता है, वो समस्या समझना होगा।
14: सीए ते बोला आछे सातटा कम्युनिटी बा धर्म पालन करा लोकेरा तारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्टर आवताय आसबेन एवं तादेरके जारा 31/12/2024 पर्यन्त एसेछेन তাদেরকে কোন পুলিশ কোথাও হ্যারাসমেন্ট ডিটেন্ট করতে পারবে না।
12: তো পশ্চিম বঙ্গাল মে সিএএ সে অবৈধ ঘুসপাঠিয়ে পকড়ে যায়গে, শরণার্থী ও ঘুসপাঠিয়ো মে অন্তর কিয়া যায়গা, বাংলাদেশী অবৈধ ঘুসপাঠিয়ো কি পহচান হোনে পর উনহে বিএসএফ কে হাওয়ালে কিয়া যায়গা, জো বাংলাদেশ সে বাত করকে উনহে ভেজনে কা ইন্তজাম করেগি।
14: সিএএ এর আওতায় যারা নেই তারা হলেন কমপ্লিটলি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ইনফিল্ট্রেটরস, তাদেরকে সরাসরি রাজ্য পুলিশ গ্রেপ্তার করবে এবং ডিটেন করবে এবং হ্যান্ডওভার করবে বিএসএফ এর হাতে।
12: বিএসএফ নে জিস তেজি সে বাংলাদেশ কি সীমা পর পিলার লাগানে কে লিয়ে সার্ভে শুরু কিয়া উসসে উম্মীদ কি জানি চাহিয়ে কি বর্ডার পর ফেন্সিং কা কাম রেকর্ড সময় মে হোগা। পশ্চিম বঙ্গাল সরকার কি তরফ সে চিকেন নেক কি 120 একর জমিন সৌঁপনে সে দেশ কি সুরক্ষা মজবুত হোগি, চিকেন নেক মে আনে ওয়ালে 7 হাইওয়ে কি দেখরেখ কেন্দ্র কর পায়েগা জো মমতা সরকার মে পিডব্লিউডি কে পাস থা, লেকিন বঙ্গাল মে সরকার বদলনে কে বাদ বর্ডার পর হালাত আব বদল জায়েঙ্গে।
0: जयपुर में हाई लेवल हंगामा देखने को मिला है। नीट पेपर लीक के विरोध में कांग्रेस ने जयपुर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के नेता हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी दफ्तर का घेराव करने पहुंचे। कांग्रेस मांग कर रही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें।
18: नीट पेपर लीक को लेकर जयपुर में हंगामा बरपा है। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ के खिलाफ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन हुई है। 41 डिग्री के तापमान में तख्तियों पर तेवर लिखकर पहुंचे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। प्रचंड धूप में भी सरकार के खिलाफ तलखियां दिखा रहे हैं कांग्रेस के नेता। कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय की तरफ बढ़ने वाले थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। पुलिस को वाटर कैनन चलाना पड़ा।
19: पानी की बौछारें शुरू कर दी गई है, पानी डाला जा रहा है। यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे जो बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वाटर कैनन से भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। जयपुर में
18: वाटर कैनन चलने के बाद भी कार्यकर्ता जमे रहे और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते रहे।
20: युवाओं का मुद्दा है, असली चोर पकड़ा गया। कांग्रेस को बदनाम कर रहे थे, चोरी ये कर रहे थे।
18: इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेडिंग का घेरा तोड़कर आगे बढ़ने के लिए धक्का मुक्की करते दिखे।
21: प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी के नेतृत्व के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर प्रदर्शन हुआ है, यहाँ भी प्रदर्शन हुआ है।
18: इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता भी थी। प्रदर्शनकारी लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। कांग्रेस ने नीट पेपर लीक को बड़ा मुद्दा बना लिया है, इसी के सहारे वो अपनी सियासत को नई धार दे रही है। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
0: और अब बात ईरान और अमेरिका युद्ध की करेंगे। एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि अगर ईरान ने डील के लिए भेजे गए प्रस्ताव पर सही जवाब नहीं दिया तो अमेरिका हमला करने के लिए तैयार है। तो अमेरिका के वॉर मिनिस्टर पीट हिट्सेक ने कहा है लॉक्ड एंड लोडेड। तो आइए देखते हैं इसका मतलब क्या है।
1: 7 अप्रैल से भले ही ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम चल रहा है, लेकिन उसी घड़ी से धमकियों का महायुद्ध भी जारी है। फिर भी झुकना तो दूर की बात, ईरान ट्रंप की धमकियों के आगे टस से बस होने के लिए तैयार नहीं है। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बार ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है अगर ईरान ने डील के लिए भेजे गए प्रस्ताव पर सही जवाब नहीं दिया तो अमेरिका हमला करने के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि उन्हें ईरान से 100% सही जवाब चाहिए। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर 2 दिन रुकने से वो लोगों को मारे जाने से बचा सके तो ये अच्छी बात होगी। आपको बता दें कि अमेरिका एक ऐसी डील का इंतजार कर रहा है जिसमें ईरान परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह छोड़ दे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोल दे। ट्रंप ने ईरान को पराजित देश बताते हुए कहा कि अगर ईरान ने जल्द फैसला नहीं किया तो बड़े पैमाने पर हमला शुरू हो जाएगा।
2: I mean, I'm saying two or three days, maybe Friday, Saturday, Sunday, something, maybe early next week, a limited period of time. Because we can't let them have a nuclear weapon.
1: अब सवाल ये है कि क्या वाकई ईरान ट्रंप की इन धमकियों के दबाव में आएगा? दूसरी तरफ ईरान की सरकारी एजेंसी नूर न्यूज ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई के हवाले से कहा है कि हमें अमेरिका के व्यूज मिल गए हैं और हम उनकी समीक्षा कर रहे हैं। और इस बीच अमेरिका के वॉर मिनिस्टर पीट हेगसेथ ने भी सोशल मीडिया पर ईरान को

0: मिल जाए। जेडी वैंस ने भी अपने पोस्ट में लॉक एंड लोडेड लिखा था, साथ ही ये कहा था कि अमेरिका नहीं चाहता कि उसे फिर से युद्ध के रास्ते पर जाना पड़े, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप इसके लिए तैयार हैं कि अगर युद्ध करना पड़ा तो इसकी इच्छा और क्षमता दोनों ही उनमें मौजूद है। यानी राष्ट्रपति ट्रंप से लेकर उपराष्ट्रपति और अब युद्ध मंत्री भी ईरान के खिलाफ फिर से जंग की धमकी दे रहे हैं।
1: We think that we've made a lot of progress. We think the Iranians want to make a deal. The President of the United States has asked us to negotiate in good faith, and that's exactly what we've done. So we're in a pretty good spot here, but there's an option B. And the option B is that we could restart the military campaign to continue to prosecute the case, to continue to try to achieve America's objectives. And we could talk a little bit about what that looks like, but that's not what the president wants, and I don't think it's what the Iranians want either.
0: लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब पूरा अमेरिकी प्रशासन ईरान को धमकियां देने पर उतारू है, तो फिर इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमला आखिरी समय में क्यों टाला? इससे जुड़ी एक बड़ी खबर न्यूज वेबसाइट मिडल ईस्ट आई के हवाले से आ रही है, जिसमें दावा किया गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने खाड़ी देशों के अपने सहयोगियों और अपने ही अधिकारियों की इस चेतावनी के बाद फैसला लिया कि हज यात्रा के दौरान युद्ध शुरू न किया जाए। खाड़ी देशों के दो वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार ट्रंप को बताया गया था कि हज यात्रा के दौरान ईरान पर हमला करने से खाड़ी देशों के भीतर संकट पैदा हो जाएगा, क्योंकि इससे लाखों तीर्थ यात्री वहीं फंस जाएंगे। सूत्रों ने यह भी बताया कि ट्रंप को आगाह किया गया था कि इस पवित्र समय के दौरान, जो इस्लामी त्यौहार ईद उल अजहा से ठीक पहले का समय होता है, हमला करने से मुस्लिम जगत में वॉशिंगटन की साख को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। अमेरिका ने इससे पहले मुसलमानों के पवित्र महीने रमजान के दौरान ईरान पर हमला किया था, लेकिन हज के समय ऐसा करने से सऊदी अरब के सामने भारी लॉजिस्टिक चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। सऊदी अरब हर साल लगभग 10 लाख विदेशी तीर्थ यात्रियों की मेजबानी करता है। ये चुनौतियां खाड़ी देशों के हवाई यात्रा केंद्रों जैसे कतर और यूएई और दक्षिण तथा पूर्वी एशिया के उन देशों तक भी फैल जाएंगी जहां से कई तीर्थ यात्री अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अगर ये खबर सही है तो डोनाल्ड ट्रंप मई महीने में हमला करने से बचेंगे, यानी अब ये हमला जून के पहले हफ्ते में हो सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका लाख कोशिशों के बावजूद हुर्मुज खुलवाने में नाकाम रहा है। ईरान के पास इस वक्त हुर्मुज की नाकेबंदी सबसे बड़ा हथियार है और वो इस मुद्दे पर लगातार अमेरिका को चढ़ा रहा है। बड़ी खबर आईआरजीसी नौसेना के राजनीतिक उप प्रमुख के हवाले से आ रही है। मोहम्मद अकबर जादेह ने तंज करते हुए कहा है कि हुर्मुज जल डब्रू मध्य को कमांडर तंसीरी के आदेश पर बंद कर दिया गया था। यही नहीं, अपने तमाम दाव पेचों और चालों के बावजूद अमेरिका इसे फिर से खोलने में नाकाम रहा है। दुश्मन को ना तो ईरान के बारे में सही खुफिया जानकारी है, न ही समझ और अक्ल है। आपको बता दें कि अली रिजा तंगसीरी ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी नेवी के कमांडर थे। उन्हें हुर्मुज बंद करने की रणनीति का मास्टरमाइंड माना जाता था। 26 मार्च 2026 को बंदर अब्बास में इजरायली एयर स्ट्राइक में वो बुरी तरह घायल हुए और 4 दिन बाद उनकी मौत हो गई। आज तक ब्यूरो।
2: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: रिफॉर्म पर जोर दिया, कहा 2047 को ध्यान में रखते हुए करेगा। प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से बड़े निवेश को मिली मंजूरी, पीयूष गोयल का बड़ा बयान, सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा समेत कुल 57 बड़े समझौते, विपक्ष ने फिर उठाए सवाल। मारुति ने कारों के दाम में किया 30,000 तक का इजाफा, जून से लागू हो जाएंगी नई कीमतें, बिहार में सुधा और राजस्थान में सरस ने दूध की कीमत में बढ़ाए 2 रुपए। नीट कांड को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को फिर से घेरा, पोस्ट में लिखा यहां पेपर लीक से युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, वहां इटली में मोदी रील बना रहे हैं। बंगाल में बकरीद में गायों की कुर्बानी पर बरकरार रहेगी रोक, शुभेंदु सरकार के फैसले पर रोक लगाने वाली याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट से खारिज, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का दिया गया हवाला। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को ढेर कर दिया गया है। आतंकी हमजा को पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में गोली मारी गई थी। खूंखार हमजा को साल 2022 में भारत सरकार ने यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया था और अब उसका अंत हो चुका है। तो आइए देखते हैं कि कौन है वो धुरंधर जो पाकिस्तान में छुपे आतंकवादियों को निपटा रहा है।
1: धुरंधर ने पाकिस्तानी हमजा को निपटाया, आतंकियों में खौफ छाया। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पीओके में सरेआम हत्या। हाफिज सईद डरा, मसूद अजहर दहला, लखवी का कांप उठा कलेजा। पाकिस्तान में धुरंधर कौन, एक के बाद एक आतंकियों का काम तमाम। हमजा बुरहान का पूरा सच पुलवामा से लेकर मुजफ्फराबाद तक। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में आराम से अपनी जिंदगी जी रहे आतंकी हमजा बुरहान के सामने काल बनकर कौन आया, इस सवाल का जवाब है खड़ा धड़ हो रही आतंकियों की हत्याएं, जिन्हें कोई अज्ञात हमलावर आता है और काम तमाम करके चला जाता है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के अंदर कई आतंकियों पर न सिर्फ बड़े हमले हुए हैं बल्कि कई की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या भी हो चुकी है और इन हत्याओं के पीछे किसी अज्ञात हमलावर का हाथ बताया जा रहा है। पिछले दिनों लश्करे तैयबा फाउंडर चीफ और हाफिज सईद के बराबर का दर्जा पाने वाले आमिर हमजा पर हमला होता है लेकिन वो बाल बाल बच जाता है। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बशीर अहमद पीर की मौत हो जाती है। वो जम्मू कश्मीर में हथियारबंद आतंकवादियों की भर्ती करने और घुसपैठ कराने के लिए जिम्मेदार था। अल बद्र के कमांडर सैयद खालिद रजा और जैश ए मोहम्मद के मिस्त्री जहूर इब्राहिम को कराची में अलग अलग हमलों में गोली मार दी गई। और अब नंबर लगा है पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान का। आतंकी हमजा बुरहान की पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में गोली मार कर हत्या कर दी गई। मुजफ्फराबाद के एआईएमएस हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर घुसकर सीधे हमजा के सिर में गोली मारी जाती है और आतंकी हमजा बुरहान वहीं ढेर हो जाता है। हमजा बुरहान उर्फ अर्जुमन गुलजार डार स्कूल के अंदर अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। 14 फरवरी 2019 पुलवामा जम्मू कश्मीर, दोपहर 3:30 बजे। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर विस्फोटक से लदी एक कार आती है जो सीधे सीआरपीएफ के काफिले की बस से टकरा जाती है और इस आतंकी हमले में देश के 40 बहादुर जवान शहीद हो जाते हैं। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और पुलवामा अटैक की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली। ये पुलवामा अटैक भारत सरकार के लिए बहुत बड़ा और गहरा जख्म था और जब इस हमले में आतंकी हमजा बुरहान के मास्टरमाइंड होने का पता चला तो भारत ने 2022 में उसे यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया। आपको बता दें कि पाकिस्तान जाने से पहले हमजा बुरहान कभी दक्षिण कश्मीर का कमांडर था। साल 2018 में हमजा और उसकी ब्रिगेड ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो भी रिलीज किया था जिसमें वो खुद अपना नाम बोलता है और अपने मिशन के बारे में बताता है।
2: मैं हमजा बुरहान, डिविजनल कमांडर साउथ कश्मीर, आपके सामने आज हाजिर हुआ हूँ इस वजह से कि जो ताहब में अलबदर मुजाहिदीन ने कार्रवाई की है जिसमें कुछ मुर्तजीन जख्मी हुए हैं। हम अलबदर मुजाहिदीन इस कार्रवाई की जिम्मेदारी कबूल करते हैं और आइंदा भी ऐसे ग्रेनेड और पुलिस वालों पे हमले, एसटीएफ पे हमले, पॉलिटिकल वर्कर्स के हमले की जिम्मेदारी आज से ही अहद अपना बनाते हैं इंशाअल्लाह रहमान। अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से आज से ही हमारा टारगेट ये मुर्तदीन होंगे और लाजिमन जो जम्मू कश्मीर पुलिस है इसको हम आज से ही ये आखिरी वार्निंग होगी इनके नाम, कोई वार्निंग हम नहीं इनके लिए, बेशक हमारा बस एक ही पैगाम होगा अगर ये पीछे मुड़े तो ठीक वरना ये अपने अंजाम को नजर रखे।
1: रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलवामा और शोपिया में हमजा का नेटवर्क तेजी से फैला। उसने यूसुफ बलोच नाम के एक हथियार सप्लायर के साथ मिलकर भर्ती और हथियार पहुंचाने का काम शुरू किया। हर महीने नए लड़कों को आतंकी संगठनों में शामिल किया जाता और कुछ ही समय बाद उनमें से कई मारे जाते। आरोप है कि ये पूरा नेटवर्क विचारधारा से ज्यादा पैसों और फायदे के लिए चलाया जा रहा था। श्रीनगर के लाबायपुरा एनकाउंटर का मामला भी उसके नाम से जोड़ा गया। हमजा बुरहान उर्फ अर्जुमन गुलजार डार पुलवामा के रात्रिपुरा इलाके का रहने वाला था, लेकिन साल 2017 में वो पाकिस्तान चला गया और हमजा खतरनाक आतंकी संगठन अल बद्र से जुड़ जाता है। अल बद्र घोषित आतंकी संगठन है। अल बद्र में शामिल होने के बाद हमजा 2019 में पुलवामा हमले की साजिश में शामिल होता है। रिपोर्ट के मुताबिक हमजा बुरहान पाकिस्तान में कारोबार कर रहा था और ऑनलाइन माध्यम से युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा था। क्योंकि बुरहान की मेडिकल फील्ड में दिलचस्पी थी तो उसे आतंक की दुनिया में डॉक्टर के नाम से भी बुलाया जाता था। लेकिन अब हमजा बुरहान उर्फ अर्जुमन गुलजार डार का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो चुका है। किसी अज्ञात ने हमजा को गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया। अब पुलवामा में हमजा बुरहान का परिवार मौत का मातम मना रहा है।
3: करीबन 2 बजे मुझे फोन आया मलंगपुरा कैंप से कि आपका बेटा अर्जुमन गुलजार मुजफ्फराबाद में उस पर अटैक हो गया और मारा गया। इसके बाद MIU जो इनकी एजेंसी है उनसे भी मैंने रابطہ किया, उन्होंने भी ये कंफर्म किया, पुलवामा पुलिस ने भी उनको भी उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि उसे मुजफ्फराबाद में अटैक हो गया और मारा गया।
4: हम पाकिस्तान वैलिड डॉक्यूमेंट्स पे गए थे थ्रू वीजा पासपोर्ट के जरिए, वो गए थे MBBS के लिए पाकिस्तान। तो फिर 1-2 महीने हमारा रابطہ था उससे, तो बोल रहे थे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ यहाँ पे, MBBS की डिग्री ले रहा हूँ। तो फिर जब हमें पता चला कि उसने दूसरी राह इख्तियार की है जो यहाँ के कानून की नजर में या सबकी नजर में गलत है, तो हमने फिर उससे रابطہ छोड़ दिया, सब कुछ गलत हो गया। तो उसकी वजह से हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसे कि मेरे भाइयों को, हम सबको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मेरा एक भाई है मुझसे छोटा है और वो 2019 के केस बीच का है, उसने केस क्वालिफाई किया है, आज 4 साल से वो जेल में है।
1: हमजा बुरहान जहन्नुम पहुंच चुका है, लेकिन अब दहशत फैली है पाकिस्तान में पल रहे आतंकी संगठनों और आतंक के आकाओं में। चाहे वो हाफिज सईद हो, मौलाना मसूद अजहर हो या फिर जकीउर रहमान लखवी, आतंक के इन आकाओं के नाम UAPA की लिस्ट में शामिल हैं। और जो हमजा बुरहान मारा गया है उसका नाम भी UAPA की लिस्ट में शामिल था। पुलवामा से वीर फरीद के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
0: और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। जी हां, बंगाल के फलता में दोबारा मतदान हुआ है जिसमें बंपर वोटिंग हुई है। फलता में 87% से ज्यादा मतदान हुआ है। फलता में जहां मतदाताओं में उत्साह नजर आया तो वहीं TMC के नेता और प्रत्याशी जहांगीर खान नदारद थे। जहांगीर खान 29 अप्रैल को हुए मतदान में खुद को पुष्पा बता रहे थे, दावा कर रहे थे कि वो झुकेंगे नहीं, लेकिन 26 दिन के बाद फलता में अभिषेक बनर्जी के चहेते पुष्पा का अता पता नहीं था।
5: 15 साल से हम लोग जो वोट दे नहीं दे रहा पाया था, अभी जो है पूरा माहौल जो है, हम सब मेरे मर्जी से वोट दे रहा था, वोट दे रहा है, खुशी से वोट दे रहा है, सुबह से ही पोलिंग चल रहा है, वोट दे रहा है, हम कोई प्रॉब्लम नहीं।
6: सोचिए, ये उस देश के नागरिक बोल रहे हैं जिन्हें संविधान से वोट देने का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन पश्चिम बंगाल के फलता में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो खुलकर अब पूरे देश को बताते हैं कि संविधान से मिले उनके मौलिक अधिकार को ही जहांगीर खान नाम का शख्स अपनी जेब में लेकर घूमता था। फलता में लोग न सिर्फ वोट डालने से रोके जाते थे बल्कि इसकी वो शिकायत तक किसी से नहीं कर सकते थे। जहांगीर खान के नाम का खौफ कुछ ऐसा रहा कि मतदान के दिन घर से लोग पहले नहीं निकल सकते थे।
7: जहांगीर खान जो कि तृणमूल कांग्रेस के स्ट्रांग मैन माना जाते थे, वो पुष्पा झुकेगा नहीं ऐसा कहा था और वो खुद अपने वोट से नाम हटा लिए, तो क्या लगता है कि इतने दिनों से उनका डर यहाँ पे था?
8: हाँ, उसके लिए डर के लिए सब बाहर निकल नहीं सकता है कि ऐसा किया था। और अभी हम रनिंग सीएम जो है वो तो आके हम लोग का रोड शो किया है, जो सब अपना से वोट दो, कोई डर नहीं करेगा। भय आउट भर सैन।
6: जहांगीर खान जो पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड बताया जाता है, चुनाव प्रचार में जहांगीर खान अभिषेक बनर्जी के इर्द गिर्द ही रहता था। दावा है किसी ये जब वो पलता में विपक्षी पार्टियों को प्रचार करने से रोकता था तो उसे रोकने की हिम्मत कोई अफसर नहीं जुटा पाता।
7: ये भी सुनने को आ रहा था कि यहाँ पे जो लोग वोट में विरोधी जो लोग रहते थे, जो कैंडिडेट रहते थे, ये भाजपा का हो या सीपीआईएम का हो, वो उनको प्रचार भी करने नहीं दिया जाता था। क्या ये सही है?
5: एकदम सही है सर। कोई भी आदमी प्रचार करने आए तो उसके लिए वो तो जहांगीर जो है ना वो पूरा पूरा बंद कर देते थे, यानी दुकान बंद पूरा करने नहीं देते।
8: शाम को उठा के चला जाता था पार्टी ऑफिस में।
6: ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जहांगीर खान की ममता सरकार में तूती बोलती थी, फलता में तो उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। इसीलिए जब उत्तर प्रदेश से बंगाल में चुनाव ड्यूटी पर गए आईपीएस अजय पाल शर्मा मतदाताओं की तरफ से डराने धमकाने की शिकायत पर एक्शन लिया तो ये जहांगीर खान को पसंद नहीं आया।
9: आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत।
6: इसके बाद जहांगीर खान सामने आए और उसने फिल्म स्टाइल में डायलॉग मारा कि अगर अजय पाल शर्मा सिंघम है तो मैं पुष्पा
10: हूँ। सिंघम मन सिनेमा पुष्पा छुपेगा नहीं।
6: जहांगीर खान के तेवर चुनाव नतीजे आने से पहले तक ही रहे। 4 मई के बाद बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ना तो उसकी दादागिरी बची ना फलता में जहांगीर की मौजूदगी रही। आज तक संवाददाता निर्माण फलता में जब जहांगीर खान के 3 मंजिला इमारत में उससे बात करने पहुंचते हैं तो वहां ताला लटका मिलता है।
7: जहांगीर जी कोई है क्या अंदर? जहांगीर जी वैसे तो कोई दिख नहीं रहा है और सामने ताला भी मारा हुआ है यहाँ पे। और इस वक्त जो है कि सबसे हाई सेंसिटिव ये इलाका कहा जाता है क्योंकि कहीं पे यहाँ पे बहुत सारे आरोप लगे हैं दूसरी चरण की जो मतदान थी 29 तारीख को उस समय पर, क्योंकि हमने देखा कि कहीं पे लोग पूरी आंदोलन पे उतर आए रास्ते में और उसके साथ साथ बीजेपी के तरफ से दूसरे पार्टियों की तरफ से भी बहुत सारी ऐसी आरोप लगाए गई कि जहांगीर खान यहां पे मतदान करने नहीं देते हैं लोगों को।
6: जहांगीर खान सत्ता के दम पर ही खौफ फैलाता रहा, इसीलिए जैसे ही ममता सरकार की विदाई हुई पहले उसने खुद को चुनाव की रेस से अलग किया और अब वहां से फरार हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि जनता बेखौफ होकर वोट डाल अपने घर से निकली। फलता में दोबारा हुआ पुनर्मतदान पश्चिम बंगाल के बदलाव से खबरदार करता है, बताता है कि सिर्फ 26 दिन मतदाताओं को डराने धमकाने वाला जहांगीर खान छुप चुका है। उसे कानून का खौफ सताता है, जबकि 29 अप्रैल को हुए मतदान जहांगीर पर लोगों को डराने धमकाने का आरोप लगा। फलता में राजनीतिक हिंसा हुई लेकिन सरकार बदलने के बाद दोबारा चुनाव में माहौल शांतिपूर्ण दिखा, जनता खुलकर वोट डालती दिखी तो जहांगीर खान का नामो निशान यहाँ खत्म दिखा।
7: काफी भारी मात्रा में लोग बाहर आ रहे हैं, अपनी मतदान कर रहे हैं। और पुष्पा जो जहांगीर खान अपने आप को बता रहे थे वो तो फिलहाल अब ये मतदान की जो रस्म है वो रस्म से बाहर चली गई है, लेकिन उनका जो ईवीएम मशीन है उनमें तो उनका नाम रहेगा।
0: पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार घुसपैठ को रोकने के लिए ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घुसपैठ के खिलाफ अपने 3D फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद बंगाल में अवैध घुसपैठियों की पहचान भी होगी और बॉर्डर पर सुरक्षा भी पुख्ता होगी।
11: ये हमारे NDA का पॉलिसी है माननीय, डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर डिटेक्ट डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करेंगे।
12: पश्चिम बंगाल में घुसपैठ को बीजेपी ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। जनता से वायदा किया कि बंगाल की सत्ता में आते ही वो घुसपैठ रोकने का काम करेगी।
13: पश्चिम बंगाल में भी बहुत जरूरी है कि घुसपैठियों को बाहर किया जाए। आपको घुसपैठियों और यहां के सत्ताधारी लोगों के इस गठजोड़ को तोड़ना ही होगा।
12: पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार ने 10 दिन में वो काम कर दिखाने का दावा किया है जो ममता बनर्जी ने 12 साल से लटका रखा। बांग्लादेश की सीमा पर कटीले तार लगाने के लिए शुभेंदु सरकार ने सिलीगुड़ी वाले इलाके में 27 किलोमीटर की जमीन BSF को सौंप दी।
14: नाउ वी आर रेडी टू हैंड ओवर 27 किलोमीटर फेंसिंग लैंड अलोंग विथ फ्यू बीओ बॉर्डर आउटपोस्ट लैंड्स एंड BSF इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लैंड।
12: शुभेंदु सरकार की कोशिश जल्द से जल्द बांग्लादेश की सीमा को सुरक्षित कर जनता से वादा पूरा करने की है। राज्य सरकार से जमीन मिलने के बाद BSF और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर बाड़ लगाने का काम भी शुरू कर दिया है। ये पश्चिम बंगाल का कूच विहार है जहाँ पर अवैध घुसपैठ की वजह से सामाजिक बदलाव में दावे बरसों से हो रहे हैं, इसके बावजूद यहाँ पर तारबंदी नहीं है। शुभेंदु सरकार के यहाँ पर फेंसिंग करने के लिए BSF को जमीन देने के फैसले से हलचल देखने को मिली। BSF की टीम ने यहाँ पर काम भी शुरू कर दिया है।
15: और इसी बॉर्डर फिलर से कुछ ही देर पहले आगे बांग्लादेश आते हैं। मेरा पीछे जो पैडी फील्ड है उसको छोड़ के एक मक्की का खेत दिखा रहा है, वो मक्की खेत छोड़ने के बाद ही मिलेगा आपको बांग्लादेश। और इसी जगह में इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा होता है, बॉर्डर स्मगलिंग का मुद्दा होता है, लेकिन इस रोकने के लिए फेंसिंग जरूरी है। और इस फेंसिंग देने के लिए बार बार BSF ने वेस्ट बंगाल सरकार को जमीन मांगे थे, लेकिन जमीन मिला नहीं। इसी बॉर्डर पिलर से 400 मीटर बाद में होगा नया फेंसिंग, इसलिए जमीन लेने का कार्रवाई चालू हो गया। और कुछ बिहार जिला का दिनहाटा 2 ब्लॉक में 18 एकड़ जमीन दिया जाएगा BSF को।
12: पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई 2216 किलोमीटर है, जिसमें से 1647 किलोमीटर सीमा पर बाड़ लगाई जा चुकी है। वहीं 570 किलोमीटर के हिस्से में यह काम होना भी बाकी। BJP का आरोप रहा है कि ममता के सरकार में रहते तुष्टिकरण की वजह से इस काम में खलल पड़ता रहा।
14: 555 किलोमीटर एमन इलाका रही जिखने राज्य सरकार चाहले BSF के जमी दीते पारत, किंतु राज्य सरकार विगत राज्य सरकार राजनैतिक कारण भोट बैंकर जो एवं तादेर जे हाई अपीजमेंट तुष्टिकरण तोषणेर एजेंडा छिलो सेई कारणे तारा हयतो देयनी।
12: लेकिन बंगाल में BJP अब सरकार बनते शुभेंदु अधिकारी इस मामले में एक्शन में दिख रहे हैं, जिससे बांग्लादेश सीमा पर रहने वाले लोगों को अवैध घुसपैठ की समस्या से निजात मिलने की उम्मीद है।
16: फेंसिंग होने से BSF का काम भी कुछ हल्का होगा। हमारा जो प्रतिरक्षा है, देश का जो सुरक्षा है, ये अच्छा होगा। और स्मगलिंग और जो इन्फिल्ट्रेशन टोटली शुड बी स्टॉप।
17: इधर फोर्स आएगा तो उधर जो हमारा जो चेकिन होता है, ये कोई गेस्ट आता है तो घर से जाना पड़ता है आदमी लेने के लिए, फिर छोड़ने के लिए जाना पड़ता है। वो समस्या সংশোধন হোগা।
14: সিএ তে বলা আছে সাতটা কমিউনিটি বা ধর্ম পালন করা লোকেরা তারা সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের আওতায় আসবেন এবং তাদেরকে যারা 31/12/2024 পর্যন্ত এসেছেন তাদেরকে কোনো পুলিশ কোথাও হ্যারাসমেন্ট ডিটেন করতে পারবে না।
12: তো পশ্চিম বঙ্গাল মে সিএএ সে অবৈধ ঘুসপাঠিয়ে পকড়ে যায়গে, শরণার্থী ও ঘুসপাঠিয়ো মে অন্তর কিয়া যায়গা, বাংলাদেশী অবৈধ ঘুসপাঠিয়ো কি পহচান হোনে পর উন্হে বিএসএফ কে হওয়ালে কিয়া যায়গা, জো বাংলাদেশ সে বাত করকে উন্হে ভেজনে কা ইন্তজাম করেগি।
14: সিএ এর আওতায় যারা নেই তারা হলেন কমপ্লিটলি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ইনফিল্ট্রেটরস, তাদেরকে সরাসরি রাজ্য পুলিশ গ্রেপ্তার করবে এবং ডিটেন করবে এবং হ্যান্ডওভার করবে বিএসএফ এর হাতে।
12: বিএসএফ নে জিস তেজি সে বাংলাদেশ কি সীমা পর পিলার লাগানে কে লিয়ে সার্ভে শুরু কিয়া উসসে উম্মীদ কি জানি চাহিয়ে কি বর্ডার পর ফেন্সিং কা কাম রেকর্ড সময় মে হোগা। পশ্চিম বঙ্গাল সরকার কি তরফ সে চিকেন নেক কি 120 একর জমিন সৌঁপনে সে দেশ কি সুরক্ষা মজবুত হোগি, চিকেন নেক মে আনে ওয়ালে 7 হাইওয়ে কি দেখরেখ কেন্দ্র কর পায়েগা জো মমতা সরকার মে পিডব্লিউডি কে পাস থা, লেকিন বঙ্গাল মে সরকার বদলনে কে বাদ বর্ডার পর হালাত আব বদল জায়েঙ্গে।
0: और अब बात ईरान और अमेरिका युद्ध की करेंगे। एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि अगर ईरान ने डील के लिए भेजे गए प्रस्ताव पर सही जवाब नहीं दिया तो अमेरिका हमला करने के लिए तैयार है। तो अमेरिका के वॉर मिनिस्टर पीट हिट्सेक ने कहा है लॉक्ड एंड लोडेड। तो आइए देखते हैं इसका मतलब क्या है।
1: 7 अप्रैल से भले ही ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम चल रहा है लेकिन उसी घड़ी से धमकियों का महायुद्ध भी जारी है। फिर भी झुकना तो दूर की बात, ईरान ट्रंप की धमकियों के आगे टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बार ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है अगर ईरान ने डील के लिए भेजे गए प्रस्ताव पर सही जवाब नहीं दिया तो अमेरिका हमला करने के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि उन्हें ईरान से 100% सही जवाब चाहिए। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर 2 दिन रुकने से वो लोगों को मारे जाने से बचा सके तो ये अच्छी बात होगी। आपको बता दें कि अमेरिका एक ऐसी डील का इंतजार कर रहा है जिसमें ईरान परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह छोड़ दे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोल दे। ट्रंप ने ईरान को पराजित देश बताते हुए कहा कि अगर ईरान ने जल्द फैसला नहीं किया तो बड़े पैमाने पर हमला शुरू हो जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या वाकई ईरान ट्रंप की इन धमकियों के दबाव में आएगा। दूसरी तरफ ईरान की सरकारी एजेंसी नूर न्यूज ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई के हवाले से कहा है कि हमें अमेरिका के व्यूज मिल गए हैं और हम उनकी समीक्षा कर रहे हैं। और इस बीच अमेरिका के वॉर मिनिस्टर पीट हेक्सेथ ने भी सोशल मीडिया पर ईरान को बड़ी धमकी दे दी है। पीट हेक्सेथ ने लिखा है लॉक्ड एंड लोडेड। उन्होंने ये कमेंट अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के उस पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा है जिसमें ये कहा गया है कि ईरान के साथ ऐसी डील नहीं होगी जिससे उसे परमाणु हथियार बनाने की छूट मिल जाए। जेडी वैंस ने भी अपने पोस्ट में लॉक्ड एंड लोडेड लिखा था। साथ ही ये कहा था कि अमेरिका नहीं चाहता कि उसे फिर से युद्ध के रास्ते पर जाना पड़े लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप इसके लिए तैयार हैं कि अगर युद्ध करना पड़ा तो इसकी इच्छा और क्षमता दोनों ही उनमें मौजूद है। यानी राष्ट्रपति ट्रंप से लेकर उपराष्ट्रपति और अब युद्ध मंत्री भी ईरान के खिलाफ फिर से जंग की धमकी दे रहे हैं।
18: We think that we've made a lot of progress. We think the Iranians want to make a deal. The President of the United States has asked us to negotiate in good faith, and that's exactly what we've done. So we're in a pretty good spot here, but there's an option B. And the option B is that we could restart the military campaign to continue to prosecute the case, to continue to try to achieve America's objectives. And we could talk a little bit about what that looks like, but that's not what the president wants, and I don't think it's what the Iranians want either.
1: लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब पूरा अमेरिकी प्रशासन ईरान को धमकियां देने पर उतारू है तो फिर इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमला आखिरी समय में क्यों टाला। इससे जुड़ी एक बड़ी खबर न्यूज वेबसाइट मिडिल ईस्ट आई के हवाले से आ रही है, जिसमें दावा किया गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने खाड़ी देशों के अपने सहयोगियों और अपने ही अधिकारियों की इस चेतावनी के बाद फैसला लिया कि हज यात्रा के दौरान युद्ध शुरू न किया जाए। खाड़ी देशों के दो वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार ट्रंप को बताया गया था कि हज यात्रा के दौरान ईरान पर हमला करने से खाड़ी देशों के भीतर संकट पैदा हो जाएगा, क्योंकि इससे लाखों तीर्थयात्री वहीं फंस जाएंगे। सूत्रों ने यह भी बताया कि ट्रंप को आगाह किया गया था कि इस पवित्र समय के दौरान, जो इस्लामी त्योहार ईद उल अजहा से ठीक पहले का समय होता है, हमला करने से मुस्लिम जगत में वॉशिंगटन की साख को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। अमेरिका ने इससे पहले मुसलमानों के पवित्र महीने रमजान के दौरान ईरान पर हमला किया था, लेकिन हज के समय ऐसा करने से सऊदी अरब के सामने भारी लॉजिस्टिक चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। सऊदी अरब हर साल लगभग 10 लाख विदेशी तीर्थयात्रियों की मेजबानी करता है। ये चुनौतियां खाड़ी देशों के हवाई यात्रा केंद्रों जैसे कतर और यूएई और दक्षिण तथा पूर्वी एशिया के उन देशों तक भी फैल जाएंगी जहां से कई तीर्थयात्री अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अगर ये खबर सही है तो डोनाल्ड ट्रंप मई महीने में हमला करने से बचेंगे, यानी कोशिशों के बावजूद हुर्मुज खुलवाने में नाकाम रहा है। ईरान के पास इस वक्त हुर्मुज की नाकेबंदी सबसे बड़ा हथियार है और वो इस मुद्दे पर लगातार अमेरिका को चढ़ा रहा है। बड़ी खबर IRGC नौसेना के राजनीतिक उप प्रमुख के हवाले से आ रही है। मोहम्मद अकबर जादेह ने तंज करते हुए कहा है कि हुर्मुज जल डब्लू मध्य को कमांडर तंसीरी के आदेश पर बंद कर दिया गया था। यही नहीं, अपने तमाम दाव पेचों और चालों के बावजूद अमेरिका इसे फिर से खोलने में नाकाम रहा है। दुश्मन को ना तो ईरान के बारे में सही खुफिया जानकारी है, न ही समझ और अक्ल है। आपको बता दें कि अली रिजा तंसीरी ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC नेवी के कमांडर थे। उन्हें हुर्मुज बंद करने की रणनीति का मास्टरमाइंड माना जाता था। 26 मार्च 2026 को बंदर अब्बास में इजरायली एयर स्ट्राइक में वो बुरी तरह घायल हुए और 4 दिन बाद उनकी मौत हो गई। आज तक ब्यूरो।
0: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: राज्य परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री ने देखा मंत्रालयों का रिपोर्ट कार्ड, कामकाज पर मंत्री ने दिया प्रेजेंटेशन, पीएम ने ईज ऑफ लिविंग और रिफॉर्म पर जोर दिया, कहा 2047 को ध्यान में रखते हुए करें काम। प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से बड़े निवेश को मिली मंजूरी, पीयूष गोयल का बड़ा बयान, सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा समेत कुल 57 बड़े समझौते, विपक्ष ने फिर उठाए सवाल। मारुति ने कारों के दाम में किया 30,000 तक का इजाफा, जून से लागू हो जाएंगी नई कीमतें, बिहार में सुधा और राजस्थान में सरस ने दूध की कीमत में बढ़ाए 2 रुपए। नीट कांड को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को फिर से घेरा, पोस्ट में लिखा यहां पेपर लीक से युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, वहां इटली में मोदी रील बना रहे हैं। बंगाल में बकरीद में गायों की कुर्बानी पर बरकरार रहेगी रोक, शुभेंदु सरकार के फैसले पर रोक लगाने वाली याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट से खारिज, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का दिया गया हवाला। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को ढेर कर दिया गया है। आतंकी हमजा को पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में गोली मारी गई थी। खूंखार हमजा को साल 2022 में भारत सरकार ने यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया था और अब उसका अंत हो चुका है। तो आइए देखते हैं कि कौन है वो धुरंधर जो पाकिस्तान में छुपे आतंकवादियों को निपटा रहा है।
1: धुरंधर ने पाकिस्तानी हमजा को निपटाया, आतंकियों में खौफ छाया। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पीओके में सरेआम हत्या। हाफिज सईद डरा, मसूद अजहर दहला, लखवी का कांप उठा कलेजा। पाकिस्तान में धुरंधर कौन, एक के बाद एक आतंकियों का काम तमाम। हमजा बुरहान का पूरा सच पुलवामा से लेकर मुजफ्फराबाद तक। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में आराम से अपनी जिंदगी जी रहे आतंकी हमजा बुरहान के सामने काल बनकर कौन आया, इस सवाल का जवाब है धड़ाधड़ हो रही आतंकियों की हत्याएं, जिन्हें कोई अज्ञात हमलावर आता है और काम तमाम करके चला जाता है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के अंदर कई आतंकियों पर न सिर्फ बड़े हमले हुए हैं बल्कि कई की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या भी हो चुकी है और इन हत्याओं के पीछे किसी अज्ञात हमलावर का हाथ बताया जा रहा है। पिछले दिनों लश्कर ए तैयबा फाउंडर चीफ और हाफिज सईद के बराबर का दर्जा पाने वाले आमिर हमजा पर हमला होता है लेकिन वो बाल बाल बच जाता है। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बशीर अहमद पीर की मौत हो जाती है। वो जम्मू कश्मीर में हथियारबंद आतंकवादियों की भर्ती करने और घुसपैठ कराने के लिए जिम्मेदार था। अल बद्र के कमांडर सैयद खालिद रजा और जैश ए मोहम्मद के मिस्त्री जहूर इब्राहिम को कराची में अलग अलग हमलों में गोली मार दी गई। और अब नंबर लगा है पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान का। आतंकी हमजा बुरहान की पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में गोली मार कर हत्या कर दी गई। मुजफ्फराबाद के एआईएमएस हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर घुसकर सीधे हमजा के सिर में गोली मारी जाती है और आतंकी हमजा बुरहान वहीं ढेर हो जाता है। हमजा बुरहान उर्फ अर्जुमन गुलजार डार स्कूल के अंदर अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। 14 फरवरी 2019 पुलवामा जम्मू कश्मीर दोपहर 3:30 बजे। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर विस्फोटक से लदी एक कार आती है जो सीधे सीआरपीएफ के काफिले की बस से टकरा जाती है और इस आतंकी हमले में देश के 40 बहादुर जवान शहीद हो जाते हैं। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और पुलवामा अटैक की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली। ये पुलवामा अटैक भारत सरकार के लिए बहुत बड़ा और गहरा जख्म था और जब इस हमले में आतंकी हमजा बुरहान के मास्टरमाइंड होने का पता चला तो भारत ने 2022 में उसे यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया। आपको बता दें कि पाकिस्तान जाने से पहले हमजा बुरहान कभी दक्षिण कश्मीर का कमांडर था। साल 2018 में हमजा और उसकी ब्रिगेड ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो भी रिलीज किया था, जिसमें वो खुद अपना नाम बोलता है और अपने मिशन के बारे में बताता है।
2: मैं हमजा बुरहान, डिविजनल कमांडर साउथ कश्मीर, आपके सामने आज हाजिर हुआ हूँ इस वजह से कि जो तहब में अलबद्र मुजाहिदीन ने कार्रवाई की है, जिसमें कुछ मुर्तजीन जख्मी हुए हैं। हम अलबद्र मुजाहिदीन इस कार्रवाई की जिम्मेदारी कबूल करते हैं और आइंदा भी ऐसे ग्रेनेड और पुलिस वालों पे हमले, एसटीएफ पे हमले, पॉलिटिकल वर्कर्स के हमले की जिम्मेदारी आज से ही अहद अपना बनाते हैं। इंशाअल्लाह रहमान, अल्लाह तबारक वताला के फजल करम से आज से ही हमारा टारगेट ये मुर्तदीन होंगे और लाजिमन जो जम्मू कश्मीर पुलिस है इसको हम आज से ही ये आखिरी वार्निंग होगी इनके नाम, कोई वार्निंग हम नहीं इनके लिए, बेशक हमारा बस एक ही पैगाम होगा, अगर ये पीछे मुड़े तो ठीक, वरना ये अपने अंजाम को नजर रखे।
1: रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलवामा और शोपिया में हमजा का नेटवर्क तेजी से फैला। उसने यूसुफ बलोच नाम के एक हथियार सप्लायर के साथ मिलकर भर्ती और हथियार पहुंचाने का काम शुरू किया। हर महीने नए लड़कों को आतंकी संगठनों में शामिल किया जाता और कुछ ही समय बाद उनमें से कई मारे जाते। आरोप है कि ये पूरा नेटवर्क विचारधारा से ज्यादा पैसों और फायदे के लिए चलाया जा रहा था। श्रीनगर के लाबायपुरा एनकाउंटर का मामला भी उसके नाम से जोड़ा गया। हमजा बुरहान उर्फ अर्जुमन गुलजार डार पुलवामा के रात्रिपुरा इलाके का रहने वाला था, लेकिन साल 2017 में वो पाकिस्तान चला गया और हमजा खतरनाक आतंकी संगठन अल बद्र से जुड़ जाता है। अल बद्र घोषित आतंकी संगठन है। अल बद्र में शामिल होने के बाद हमजा 2019 में पुलवामा हमले की साजिश में शामिल होता है। रिपोर्ट के मुताबिक हमजा बुरहान पाकिस्तान में कारोबार कर रहा था और ऑनलाइन माध्यम से युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा था। क्योंकि बुरहान की मेडिकल फील्ड में दिलचस्पी थी तो उसे आतंक की दुनिया में डॉक्टर के नाम से भी बुलाया जाता था। लेकिन अब हमजा बुरहान उर्फ अर्जुमन गुलजार डार का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो चुका है। किसी अज्ञात ने हमजा को गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया। अब पुलवामा में हमजा बुरहान का परिवार मौत का मातम मना रहा है।
3: करीबन 2 बजे मुझे फोन आया मलंगपुरा कैंप से कि आपका बेटा अर्जुमन गुलजार मुजफ्फराबाद में उस पर अटैक हो गया और मारा गया। इसके बाद MIU जो इनकी एजेंसी है उनसे भी मैंने रابطہ किया, उन्होंने भी ये कन्फर्म किया, पुलवामा पुलिस ने भी उनको भी उन्होंने ये कन्फर्म कर दिया कि उसे मुजफ्फराबाद में अटैक हो गया और मारा गया।
4: हम पाकिस्तान वैलिड डॉक्यूमेंट्स पे गए थे, थ्रू वीजा पासपोर्ट के जरिए वो गए थे MBBS के लिए पाकिस्तान। तो फिर 1-2 महीने हमारा रابطہ था उससे, तो बोल रहे थे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ यहाँ पे, MBBS की डिग्री ले रहा हूँ। तो फिर जब हमें पता चला कि उसने दूसरी राह अख्तियार की है जो उनके यहाँ के कानून की नज़र में या सबकी नज़र में गलत है, तो हमने फिर उससे रابطہ छोड़ दिया, सब कुछ गलत हो गया। तो उसकी वजह से हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसे कि मेरे भाइयों को, हम सबको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मेरा एक भाई है, मुझसे छोटा है और वो 2019 के केस बीच का है, उसने केस क्वालिफाई किया है, आज 4 साल से वो जेल में है।
1: हमजा बुरहान जहन्नुम पहुंच चुका है, लेकिन अब दहशत फैली है पाकिस्तान में पल रहे आतंकी संगठनों और आतंक के आकाओं में। चाहे वो हाफिज सईद हो, मौलाना मसूद अजहर हो या फिर जकीउर रहमान लखवी, आतंक के इन आकाओं के नाम UAPA की लिस्ट में शामिल हैं और जो हमजा बुरहान मारा गया है उसका नाम भी UAPA की लिस्ट में शामिल था। पुलवामा से वीर फरीद के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
0: और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। जी हाँ, बंगाल के फलता में दोबारा मतदान हुआ है जिसमें बंपर वोटिंग हुई है। फलता में 87% से ज्यादा मतदान हुआ है। फलता में जहां मतदाताओं में उत्साह नजर आया तो वहीं TMC के नेता और प्रत्याशी जहांगीर खान नदारद थे। जहांगीर खान 29 अप्रैल को हुए मतदान में खुद को पुष्पा बता रहे थे, दावा कर रहे थे कि वो झुकेंगे नहीं, लेकिन 26 दिन के बाद फलता में अभिषेक बनर्जी के चहेते पुष्पा का अता पता नहीं था।
5: 15 साल से हम लोग जो वोट नहीं दे रहा पाया था, अभी जो है पूरा माहौल जो है, हम सब मेरे मर्जी से वोट दे रहा था, वोट दे रहा है, खुशी से वोट दे रहा है, सुबह से ही पोलिंग चल रहा है, वोट दे रहा है, हम कोई प्रॉब्लम नहीं।
6: सोचिए, ये उस देश के नागरिक बोल रहे हैं जिन्हें संविधान से वोट देने का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन पश्चिम बंगाल के फलता में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो खुलकर अब पूरे देश को बताते हैं कि संविधान से मिले उनके मौलिक अधिकार को ही जहांगीर खान नाम का शख्स अपनी जेब में लेकर घूमता था। फलता में लोग न सिर्फ वोट डालने से रोके जाते थे बल्कि इसकी वो शिकायत तक किसी से नहीं कर सकते थे। जहांगीर खान के नाम का खौफ कुछ ऐसा रहा कि मतदान के दिन घर से लोग पहले नहीं निकल सकते थे।
7: जहांगीर खान जो कि तृणमूल कांग्रेस के स्ट्रांग मैन माना जाते थे, वो पुष्पा झुकेगा नहीं ऐसा कहा था और वो खुद अपने वोट से नाम हटा लिए। तो क्या लगता है कि इतने दिनों से उनका डर यहाँ पे था?
8: हाँ, उना जो, उसके लिए डर के लिए सब बाहर निकल नहीं सकता है कि ऐसा किया था। और अभी हम रनिंग सीएम जो है वो तो आके हम लोग का रोड शो किया है, जो सब अपना से वोट दो, कोई डर नहीं करेगा। भय आउट भर सही।
6: जहांगीर खान जो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड बताया जाता है। चुनाव प्रचार में जहांगीर खान अभिषेक बनर्जी के इर्द गिर्द ही रहता था। दावा है किसी ने जब वो फलता में विपक्षी पार्टियों को प्रचार करने से रोकता था तो उसे रोकने की हिम्मत कोई अफसर नहीं जुटा पाता था।
7: ये भी सुनने को आ रहा था कि यहाँ पे जो लोग वोट में विरोधी जो लोग रहते थे, जो कैंडिडेट रहते थे, ये भाजपा का हो या सीपीआईएम का हो, वो उनको प्रचार भी करने नहीं दिया जाता था। क्या ये सही है?
5: एकदम सही है सर। कोई भी आदमी प्रचार करने आए तो उसके लिए वो तो जहांगीर जो है ना वो पूरा पूरा बंद कर देते थे, यानी दुकान बंद पूरा करने नहीं देते।
8: शाम को उठा के चला जाता था पार्टी ऑफिस में।
6: ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जहांगीर खान की ममता सरकार में तूती बोलती थी। फलता में तो उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता था। इसीलिए जब उत्तर प्रदेश से बंगाल में चुनाव ड्यूटी पर गए आईपीएस अजय पाल शर्मा ने मतदाताओं की तरफ से डराने धमकाने की शिकायत पर एक्शन लिया तो ये जहांगीर खान को पसंद नहीं आया।
9: आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत।
6: इसके बाद जहांगीर खान सामने आए और उसने फिल्मी स्टाइल में डायलॉग मारा कि अगर अजय पाल शर्मा सिंघम है तो मैं पुष्पा
10: हूँ। उन्हें निजे के सिंघम मने करे सिनेमा आर्टिस्ट से आमरा और पुष्पा छुपेगा नहीं।
6: जहांगीर खान के तेवर चुनाव नतीजे आने से पहले तक ही रहे। 4 मई के बाद बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद न तो उसकी दादागिरी बची न फलता में जहांगीर की मौजूदगी रही। आज तक संवाददाता निर्माण फलता में जब जहांगीर खान के 3 मंजिला इमारत में उससे बात करने पहुंचते हैं तो वहां ताला लटका मिलता है।
7: जहांगीर जी कोई है क्या अंदर? जहांगीर जी वैसे तो कोई दिख नहीं रहा है और सामने ताला भी मारा हुआ है यहाँ पे। और इस वक्त जो है कि सबसे हाई सेंसिटिव ये इलाका कहा जाता है क्योंकि कहीं पे यहाँ पे बहुत सारे आरोप लगे हैं दूसरी चरण की जो मतदान थी 29 तारीख को उस समय पर, क्योंकि हमने देखा कि कहीं पे लोग पूरी आंदोलन पे उतर आए रास्ते में और उसके साथ साथ बीजेपी के तरफ से दूसरे पार्टियों की तरफ से भी बहुत सारी ऐसी आरोप लगाए गई कि जहांगीर खान यहाँ पे मतदान करने नहीं देते हैं लोगों को।
6: जहांगीर खान सत्ता के दम पर ही खौफ फैलाता रहा, इसीलिए जैसे ही ममता सरकार की विदाई हुई पहले उसने खुद को चुनाव की रेस से अलग किया और अब वहां से फरार हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि जनता बेखौफ होकर वोट डाल अपने घर से निकली। फलता में दोबारा हुआ पुनर्मतदान पश्चिम बंगाल के बदलाव से खबरदार करता है। बताता है कि सिर्फ 26 दिन मतदाताओं को डराने धमकाने वाला जहांगीर खान छुप चुका है। उसे कानून का खौफ सताता है, जबकि 29 अप्रैल को हुए मतदान जहांगीर पर लोगों को डराने धमकाने का आरोप लगा। फलता में राजनीतिक हिंसा हुई लेकिन सरकार बदलने के बाद दोबारा चुनाव में माहौल शांतिपूर्ण दिखा। जनता खुलकर वोट डालती दिखी तो जहांगीर खान का नामो निशान यहाँ खत्म दिखा।
7: काफी भारी मात्रा में लोग बाहर आ रहे हैं, अपनी मतदान कर रहे हैं और अब पुष्पा जो जहांगीर खान अपने आप को बता रहे थे वो तो फिलहाल अब ये मतदान की जो रस्म है वो रस्म से बाहर चली गई है, लेकिन उनका जो ईवीएम मशीन है उनमें तो उनका नाम रहेगा।
0: पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार घुसपैठ को रोकने के लिए ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घुसपैठ के खिलाफ अपने 3D फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद बंगाल में अवैध घुसपैठियों की पहचान भी होगी और बॉर्डर पर सुरक्षा भी पुख्ता होगी।
11: ये हमारे NDA का पॉलिसी है माननीय, डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर डिटेक्ट डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करेंगे।
12: पश्चिम बंगाल में घुसपैठ को बीजेपी ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया, जनता से वायदा किया कि बंगाल की सत्ता में आते ही वो घुसपैठ रोकने का काम करेगी।
13: पश्चिम बंगाल में भी बहुत जरूरी है कि घुसपैठियों को बाहर किया जाए। आपको घुसपैठियों और यहां के सत्ताधारी लोगों के इस गठजोड़ को तोड़ना ही होगा।
12: पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार ने 10 दिन में वो काम कर दिखाने का दावा किया है जो ममता बनर्जी ने 12 साल से लटकाए रखा। बांग्लादेश की सीमा पर कटीले तार लगाने के लिए शुभेंदु सरकार ने सिलगुड़ी वाले इलाके में 27 किलोमीटर की जमीन BSF को सौंप दी।
14: नाउ वी आर रेडी टू हैंड ओवर 27 किलोमीटर फेंसिंग लैंड अलोंग विथ फ्यू बॉर्डर आउटपोस्ट लैंड्स एंड BSF इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लैंड।
12: शुभेंदु सरकार की कोशिश जल्द से जल्द बांग्लादेश की सीमा को सुरक्षित कर जनता से वादा पूरा करने की है। राज्य सरकार से जमीन मिलने के बाद BSF और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर बाड़ लगाने का काम भी शुरू कर दिया है। ये पश्चिम बंगाल का कूच विहार है जहाँ पर अवैध घुसपैठ की वजह से सामाजिक बदलाव में दावे बरसों से हो रहे हैं, इसके बावजूद यहाँ पर तारबंदी नहीं है। शुभेंदु सरकार के यहाँ पर फेंसिंग करने के लिए BSF को जमीन देने के फैसले से हलचल देखने को मिली। BSF की टीम ने यहाँ पर काम भी शुरू कर दिया है।
15: और इसी बॉर्डर पिलर से कुछ ही देर पहले आगे बांग्लादेश आते हैं। मेरा पीछे जो पैडी फील्ड है उसको छोड़ के एक मक्की का खेत दिखा रहा है, वो मक्की खेत छोड़ने के बाद ही मिलेगा आपको बांग्लादेश। और इसी जगह में इनफिल्ट्रेशन का मुद्दा होता है, बॉर्डर स्मगलिंग का मुद्दा होता है, लेकिन इस रोकने के लिए फेंसिंग जरूरी है। और इस फेंसिंग देने के लिए बार बार BSF ने वेस्ट बंगाल सरकार को जमीन मांगे थे, लेकिन जमीन मिला नहीं। इसी बॉर्डर पिलर से 400 मीटर बाद में होगा नया फेंसिंग, इसलिए जमीन लेने का कार्रवाई चालू हो गया। और कुछ बिहार जिला का दिनहाटा 2 ब्लॉक में 18 एकड़ जमीन दिया जाएगा BSF को।
12: पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई 2216 किलोमीटर है, जिसमें से 1647 किलोमीटर सीमा पर बाड़ लगाई जा चुकी है, वहीं 570 किलोमीटर के हिस्से में काम होना भी बाकी। BJP का आरोप रहा है कि ममता के सरकार में रहते तुष्टीकरण की वजह से इस काम में खलल पड़ता रहा।
14: 555 किलोमीटर एमन इलाका रही है जेखने राज्य सरकार चाहले BSF के जमी दीते पारत, किंतु राज्य सरकार विगत राज्य सरकार राजनैतिक कारण भोट बैंकर जो এবং তাদের যে হাই অ্যাপিজমেন্ট তুষ্টিকরণ তোষণের এজেন্ডা ছিল সেই কারণে তারা হয়তো দেয়নি।
12: लेकिन बंगाल में BJP अब सरकार बनते शुभेंदु अधिकारी इस मामले में एक्शन में दिख रहे हैं, जिससे बांग्लादेश सीमा पर रहने वाले लोगों को अवैध घुसपैठ की समस्या से निजात मिलने की उम्मीद है।
16: फेंसिंग होने से BSF का काम भी कुछ हल्का होगा। हमारा जो प्रतिरक्षा है, देश का जो सुरक्षा है, ये अच्छा होगा। और स्मगलिंग और जो इन्फिल्ट्रेशन टोटली शुड बी स्टॉप।
17: इधर फोर्स आएगा तो उधर जो हमारा जो चेकिंग होता है कोई गेस्ट आता है तो घर से जाना पड़ता है आदमी लेने के लिए, फिर छोड़ने के लिए जाना पड़ता है, वो समस्या समझना होगा।
14: सीए ते बोला आछे सातटा कम्युनिटी बा धर्म पालन करा लोकेरा तारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्टेर आवताय आसबेन এবং তাদেরকে যারা 31/12/2024 পর্যন্ত এসেছেন তাদেরকে কোনো পুলিশ কোথাও হ্যারাসমেন্ট ডিটেন্ট করতে পারবে না।
12: তো পশ্চিম বঙ্গাল মে সিএএ সে অবৈধ ঘুসপ্যাঠি পকড়ে যায়গে, শরণার্থী ও ঘুসপ্যাঠিও মে অন্তর কিয়া যায়গা, বাংলাদেশী অবৈধ ঘুসপ্যাঠিও কি পহচান হোনে পর উনহে বিএসএফ কে হাওয়ালে কিয়া যায়গা, জো বাংলাদেশ সে বাত করকে উনহে ভেজনে কা ইন্তজাম করেগি।
14: সিএ এর আওতায় যারা নেই তারা হলেন কমপ্লিটলি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ইনফিল্ট্রেটরস, তাদেরকে সরাসরি রাজ্য পুলিশ গ্রেপ্তার করবে এবং ডিটেন করবে এবং হ্যান্ডওভার করবে বিএসএফ এর হাতে।
12: বিএসএফ নে জিস তেজি সে বাংলাদেশ কি সীমা পর পিলার লাগানে কে লিয়ে সার্ভে শুরু কিয়া উসসে উম্মীদ কি জানি চাহিয়ে কি বর্ডার পর ফেন্সিং কা কাম রেকর্ড সময় মে হোগা। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से चिकन नेक की 120 एकड़ जमीन सौंपने से देश की सुरक्षा मजबूत होगी। चिकन नेक में आने वाले 7 हाईवे की देखरेख केंद्र कर पाएगा जो ममता सरकार में पीडब्ल्यूडी के पास था, लेकिन बंगाल में सरकार बदलने के बाद बॉर्डर पर हालात अब बदल जाएंगे।
0: जयपुर में हाई लेवल हंगामा देखने को मिला है। नीट पेपर लीक के विरोध में कांग्रेस ने जयपुर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के नेता हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी दफ्तर का घेराव करने पहुंचे। कांग्रेस मांग कर रही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें।
18: नीट पेपर लीक को लेकर जयपुर में हंगामा बरपा है। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ के खिलाफ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन हुई है। 41 डिग्री के तापमान में तख्तियों पर तेवर लिखकर पहुंचे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। प्रचंड धूप में भी सरकार के खिलाफ तल्खियां दिखा रहे हैं कांग्रेस के नेता। कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय की तरफ बढ़ने वाले थे लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। पुलिस को वाटर कैनन चलाना पड़ा।
19: पानी की बौछारें शुरू कर दी गई है, पानी डाला जा रहा है। यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे जो बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे वाटर कैनन से भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। जयपुर में
18: वाटर कैनन चलने के बाद भी कार्यकर्ता जमे रहे और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते रहे।
20: युवाओं का मुद्दा है, असली चोर पकड़ा गया। कांग्रेस को बदनाम कर रहे थे, चोरी यह कर रहे थे।
18: इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेडिंग का घेरा तोड़कर आगे बढ़ने के लिए धक्का मुक्की करते दिखे।
20: प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी के नेतृत्व के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर प्रदर्शन हुआ है, यहाँ भी प्रदर्शन हुआ है।
18: इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता भी थी। प्रदर्शनकारी लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। कांग्रेस ने नीट पेपर लीक को बड़ा मुद्दा बना लिया है, इसी के सहारे वो अपनी सियासत को नई धार दे रही है। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
0: और अब बात ईरान और अमेरिका युद्ध की करेंगे। एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि अगर ईरान ने डील के लिए भेजे गए प्रस्ताव पर सही जवाब नहीं दिया तो अमेरिका हमला करने के लिए तैयार है। तो अमेरिका के वॉर मिनिस्टर पीट हिट्सेक ने कहा है लॉक्ड एंड लोडेड। तो आइए देखते हैं इसका मतलब क्या है।
1: 7 अप्रैल से भले ही ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम चल रहा है लेकिन उसी घड़ी से धमकियों का महायुद्ध भी जारी है। फिर भी झुकना तो दूर की बात, ईरान ट्रंप की धमकियों के आगे टस से बस होने के लिए तैयार नहीं है। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बार ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है अगर ईरान ने डील के लिए भेजे गए प्रस्ताव पर सही जवाब नहीं दिया तो अमेरिका हमला करने के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि उन्हें ईरान से 100% सही जवाब चाहिए। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर 2 दिन रुकने से वो लोगों को मारे जाने से बचा सके तो ये अच्छी बात होगी। आपको बता दें कि अमेरिका एक ऐसी डील का इंतजार कर रहा है जिसमें ईरान परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह छोड़ दे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोल दे। ट्रंप ने ईरान को पराजित देश बताते हुए कहा कि अगर ईरान ने जल्द फैसला नहीं किया तो बड़े पैमाने पर हमला शुरू हो जाएगा।
2: I mean, I'm saying two or three days, maybe Friday, Saturday, Sunday, something, maybe early next week, a limited period of time. Because we can't let them have a nuclear weapon.
1: अब सवाल ये है कि क्या वाकई ईरान ट्रंप की इन धमकियों के दबाव में आएगा? दूसरी तरफ ईरान की सरकारी एजेंसी नूर न्यूज ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई के हवाले से कहा है कि हमें अमेरिका के व्यूज मिल गए हैं और हम उनकी समीक्षा कर रहे हैं। और इस बीच अमेरिका के वॉर मिनिस्टर पीट हेक्सेथ ने भी सोशल मीडिया पर ईरान को बड़ी धमकी दे दी है। पीट हेक्सेथ ने लिखा है, लॉक एंड लोडेड। उन्होंने ये कमेंट अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के उस पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा है, जिसमें ये कहा गया है कि ईरान के साथ ऐसी डील नहीं होगी जिससे उसे परमाणु हथियार बनाने की छूट मिल जाए। जेडी वैंस ने भी अपने पोस्ट में लॉक एंड लोडेड लिखा था। साथ ही ये कहा था कि अमेरिका नहीं चाहता कि उसे फिर से युद्ध के रास्ते पर जाना पड़े, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप इसके लिए तैयार हैं कि अगर युद्ध करना पड़ा तो इसकी इच्छा और क्षमता दोनों ही उनमें मौजूद है। यानी राष्ट्रपति ट्रंप से लेकर उपराष्ट्रपति और अब युद्ध मंत्री भी ईरान के खिलाफ फिर से जंग की धमकी दे रहे हैं।
21: We think that we've made a lot of progress. We think the Iranians want to make a deal. The President of the United States has asked us to negotiate in good faith, and that's exactly what we've done. So we're in a pretty good spot here, but there's an option B. And the option B is that we could restart the military campaign to continue to prosecute the case, to continue to try to achieve America's objectives. And we could talk a little bit about what that looks like, but that's not what the President wants, and I don't think it's what the Iranians want either.
1: लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब पूरा अमेरिकी प्रशासन ईरान को धमकियां देने पर उतारू है, तो फिर इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमला आखिरी समय में क्यों टाला? इससे जुड़ी एक बड़ी खबर न्यूज वेबसाइट मिडल ईस्ट आई के हवाले से आ रही है, जिसमें दावा किया गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने खाड़ी देशों के अपने सहयोगियों और अपने ही अधिकारियों की इस चेतावनी के बाद फैसला लिया कि हज यात्रा के दौरान युद्ध शुरू न किया जाए। खाड़ी देशों के दो वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार ट्रंप को बताया गया था कि हज यात्रा के दौरान ईरान पर हमला करने से

0: ने इससे पहले मुसलमानों के पवित्र महीने रमजान के दौरान ईरान पर हमला किया था, लेकिन हज के समय ऐसा करने से सऊदी अरब के सामने भारी लॉजिस्टिक चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। सऊदी अरब हर साल लगभग 10 लाख विदेशी तीर्थ यात्रियों की मेजबानी करता है। ये चुनौतियां खाड़ी देशों के हवाई यात्रा केंद्रों जैसे कतर और यूएई और दक्षिण तथा पूर्वी एशिया के उन देशों तक भी फैल जाएंगी जहां से कई तीर्थ यात्री अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अगर ये खबर सही है तो डोनाल्ड ट्रंप मई महीने में हमला करने से बचेंगे, यानी अब ये हमला जून के पहले हफ्ते में हो सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका लाख कोशिशों के बावजूद हुर्मुज खुलवाने में नाकाम रहा है। ईरान के पास इस वक्त हुर्मुज की नाकेबंदी सबसे बड़ा हथियार है और वो इस मुद्दे पर लगातार अमेरिका को चढ़ा रहा है। बड़ी खबर IRGC नौसेना के राजनीतिक उप प्रमुख के हवाले से आ रही है। मोहम्मद अकबर जादेह ने तंज करते हुए कहा है कि हुर्मुज जल डब्लू मध्य को कमांडर तंसीरी के आदेश पर बंद कर दिया गया था। यही नहीं, अपने तमाम दाव पेचों और चालों के बावजूद अमेरिका इसे फिर से खोलने में नाकाम रहा है। दुश्मन को ना तो ईरान के बारे में सही खुफिया जानकारी है, न ही समझ और अकल है। आपको बता दें कि अली रिजा तंसीरी ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC नेवी के कमांडर थे। उन्हें हुर्मुज बंद करने की रणनीति का मास्टरमाइंड माना जाता था। 26 मार्च 2026 को बंदर अब्बास में इजरायली एयर स्ट्राइक में वो बुरी तरह घायल हुए और 4 दिन बाद उनकी मौत हो गई। आज तक ब्यूरो।
1: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री ने देखा मंत्रालयों का रिपोर्ट कार्ड, कामकाज पर मंत्री ने दिया प्रेजेंटेशन, पीएम ने ईज ऑफ लिविंग और रिफॉर्म पर जोर दिया, कहा 2047 को ध्यान में रखते हुए करेगा। प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से बड़े निवेश को मिली मंजूरी, पीयूष गोयल का बड़ा बयान, सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा समेत कुल 57 बड़े समझौते, विपक्ष ने फिर उठाए सवाल। मारुति ने कारों के दाम में किया 30,000 तक का इजाफा, जून से लागू हो जाएंगी नई कीमतें, बिहार में सुधा और राजस्थान में सरस ने दूध की कीमत में बढ़ाए 2 रुपए। नीट कांड को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को फिर से घेरा, पोस्ट में लिखा यहां पेपर लीक से युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, वहां इटली में मोदी रील बना रहे हैं। बंगाल में बकरीद में गायों की कुर्बानी पर बरकरार रहेगी रोक, शुभेंदु सरकार के फैसले पर रोक लगाने वाली याचिका, कलकत्ता हाईकोर्ट से खारिज, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का दिया गया हवाला। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को ढेर कर दिया गया है। आतंकी हमजा को पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में गोली मारी गई थी। खूंखार हमजा को साल 2022 में भारत सरकार ने यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया था और अब उसका अंत हो चुका है। तो आइए देखते हैं कि कौन है वो धुरंधर जो पाकिस्तान में छुपे आतंकवादियों को निपटा रहा है।
1: धुरंधर ने पाकिस्तानी हमजा को निपटाया, आतंकियों में खौफ छाया। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पीओके में सरेआम हत्या। हाफिज सईद डरा, मसूद अजहर दहला।

0: लखवी का कांप उठा कलेजा। पाकिस्तान में धुरंधर कौन, एक के बाद एक आतंकियों का काम तमाम। हमजा बुरहान का पूरा सच, पुलवामा से लेकर मुजफ्फराबाद तक। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में आराम से अपनी जिंदगी जी रहे आतंकी हमजा बुरहान के सामने काल बनकर कौन आया, इस सवाल का जवाब है धड़ाधड़ हो रही आतंकियों की हत्याएं। जिन्हें कोई अज्ञात हमलावर आता है और काम तमाम करके चला जाता है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के अंदर कई आतंकियों पर न सिर्फ बड़े हमले हुए हैं, बल्कि कई की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या भी हो चुकी है और इन हत्याओं के पीछे किसी अज्ञात हमलावर का हाथ बताया जा रहा है। पिछले दिनों लश्करे तैयबा फाउंडर चीफ और हाफिज सईद के बराबर का दर्जा पाने वाले आमिर हमजा पर हमला होता है, लेकिन वो बाल बाल बच जाता है। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बशीर अहमद पीर की मौत हो जाती है। वो जम्मू कश्मीर में हथियारबंद आतंकवादियों की भर्ती करने और घुसपैठ कराने के लिए जिम्मेदार था। अल बद्र के कमांडर सैयद खालिद रजा और जैश ए मोहम्मद के मिस्त्री जहूर इब्राहिम को कराची में अलग अलग हमलों में गोली मार दी गई। और अब नंबर लगा है पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान का। आतंकी हमजा बुरहान की पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में गोली मार कर हत्या कर दी गई। मुजफ्फराबाद के एआईएमएस हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर घुसकर सीधे हमजा के सिर में गोली मारी जाती है और आतंकी हमजा बुरहान वहीं ढेर हो जाता है। हमजा बुरहान उर्फ अर्जुमंड गुलजार डार स्कूल के अंदर अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। 14 फरवरी 2019 पुलवामा जम्मू कश्मीर, दोपहर 3:30 बजे। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर विस्फोटक से लदी एक कार आती है जो सीधे सीआरपीएफ के काफिले की बस से टकरा जाती है और इस आतंकी हमले में देश के 40 बहादुर जवान शहीद हो जाते हैं। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और पुलवामा अटैक की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली। ये पुलवामा अटैक भारत सरकार के लिए बहुत बड़ा और गहरा जख्म था और जब इस हमले में आतंकी हमजा बुरहान के मास्टरमाइंड होने का पता चला तो भारत ने 2022 में उसे यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया। आपको बता दें कि पाकिस्तान जाने से पहले हमजा बुरहान कभी दक्षिण कश्मीर का कमांडर था। साल 2018 में हमजा और उसकी ब्रिगेड ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो भी रिलीज किया था जिसमें वो खुद अपना नाम बोलता है और अपने मिशन के बारे में बताता है।
1: डिविजनल कमांडर साउथ कश्मीर आपके सामने आज हाजिर हुआ हूँ इस वजह से कि जो ताहब में अलबद्र मुजाहिदीन ने कार्रवाई की है जिसमें कुछ मुर्तजीन जख्मी हुए हैं। हम अलबद्र मुजाहिदीन इस कार्रवाई की जिम्मेदारी कबूल करते हैं और आइंदा भी ऐसे ग्रेनेड और पुलिस वालों पे हमले, एसटीएफ पे हमले, पॉलिटिकल वर्कर्स के हमले की जिम्मेदारी आज से ही अहद अपना बनाते हैं इंशाअल्लाह रहमान। अल्लाह तबारक वताला के फजल करम से आज से ही हमारा टारगेट ये मुर्तदीन होंगे और लाजिमन जो जम्मू कश्मीर पुलिस है इसको हम आज से ही ये आखिरी वार्निंग होगी इनके नाम। कोई वार्निंग हम नहीं, इनके लिए बेशक हमारा बस एक ही पैगाम होगा, अगर ये पीछे मुड़े तो ठीक वरना ये अपने अंजाम को नजर रखे।
0: रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलवामा और शोपिया में हमजा का नेटवर्क तेजी से फैला। उसने यूसुफ बलोच नाम के एक हथियार सप्लायर के साथ मिलकर भर्ती और हथियार पहुंचाने का काम शुरू किया। हर महीने नए लड़कों को आतंकी संगठनों में शामिल किया जाता और कुछ ही समय बाद उनमें से कई मारे जाते। आरोप है कि ये पूरा नेटवर्क विचारधारा से ज्यादा पैसों और फायदे के लिए चलाया जा रहा था। श्रीनगर के लाबायपुरा एनकाउंटर का मामला भी उसके नाम से जोड़ा गया। हमजा बुरहान उर्फ अर्जुमंड गुलजार डार पुलवामा के रात्रिपुरा इलाके का रहने वाला था, लेकिन साल 2017 में वो पाकिस्तान चला गया और हमजा खतरनाक आतंकी संगठन अल बद्र से जुड़ जाता है। अल बद्र घोषित आतंकी संगठन है। अल बद्र में शामिल होने के बाद हमजा 2019 में पुलवामा हमले की साजिश में शामिल होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमजा बुरहान पाकिस्तान में कारोबार कर रहा था। और ऑनलाइन माध्यम से युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा था। क्योंकि बुरहान की मेडिकल फील्ड में दिलचस्पी थी तो उसे आतंक की दुनिया में डॉक्टर के नाम से भी बुलाया जाता था। लेकिन अब हमजा बुरहान उर्फ अर्जुमन गुलजार डार का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो चुका है। किसी अज्ञात ने हमजा को गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया। अब पुलवामा में हमजा बुरहान का परिवार मौत का मातम मना रहा है।
2: करीबन 2 बजे मुझे फोन आया मलंगपुरा कैंप से कि आपका बेटा अर्जुमन गुलजार मुजफ्फराबाद में उस पर अटैक हो गया और मारा गया। इसके बाद MIU जो इनकी एजेंसी है उनसे भी मैंने रابطہ किया, उन्होंने भी ये कन्फर्म किया। पुलवामा पुलिस ने भी उनको भी उन्होंने ये कन्फर्म कर दिया कि उसे मुजफ्फराबाद में अटैक हो गया और मारा गया।
3: हम पाकिस्तान वैलिड डॉक्यूमेंट्स पे गए थे, थ्रू वीजा पासपोर्ट के जरिए वो गए थे MBBS के लिए पाकिस्तान। तो फिर 1-2 महीने हमारा रابطہ था उससे, तो बोल रहे थे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ यहाँ पे, MBBS की डिग्री ले रहा हूँ। तो फिर जब हमें पता चला कि उसने दूसरी राह इख्तियार की है जो यहाँ के कानून की नजर में या सबकी नजर में गलत है, तो हमने फिर उससे रابطہ छोड़ दिया, सब कुछ गलत हो गया। तो उसकी वजह से हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसे कि मेरे भाइयों को, हम सबको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मेरा एक भाई है, मुझसे छोटा है और वो 2019 के केस बीच का है, उसने केस क्वालिफाई किया है, आज 4 साल से वो जेल में है।
0: हमजा बुरहान जहन्नुम पहुंच चुका है, लेकिन अब दहशत फैली है पाकिस्तान में पल रहे आतंकी संगठनों और आतंक के आकाओं में। चाहे वो हाफिज सईद हो, मौलाना मसूद अजहर हो या फिर जकीउर रहमान लखवी, आतंक के इन आकाओं के नाम UAPA की लिस्ट में शामिल हैं। और जो हमजा बुरहान मारा गया है उसका नाम भी UAPA की लिस्ट में शामिल था। पुलवामा से मीर फरीद के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
4: और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। जी हाँ, बंगाल के फलता में दोबारा मतदान हुआ है जिसमें बंपर वोटिंग हुई है। फलता में 87% से ज्यादा मतदान हुआ है। फलता में जहां मतदाताओं में उत्साह नजर आया तो वहीं TMC के नेता और प्रत्याशी जहांगीर खान नदारद थे। जहांगीर खान 29 अप्रैल को हुए मतदान में खुद को पुष्पा बता रहे थे, दावा कर रहे थे कि वो झुकेंगे नहीं। लेकिन 26 दिन के बाद फलता में अभिषेक बनर्जी के चहेते पुष्पा का अता पता नहीं था।
5: 15 साल से हम लोग जो वोट नहीं दे पाया था, अभी जो है पूरा माहौल जो है, हम सब मेरे मर्जी से वोट दे रहा था, वोट दे रहा है, खुशी से वोट दे रहा है। सुबह से ही पोलिंग चल रहा है, वोट दे रहा है, हम कोई प्रॉब्लम नहीं।
6: सोचिए, ये उस देश के नागरिक बोल रहे हैं जिन्हें संविधान से वोट देने का अधिकार मिला हुआ है। लेकिन पश्चिम बंगाल के फलता में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो खुलकर अब पूरे देश को बताते हैं कि संविधान से मिले उनके मौलिक अधिकार को ही जहांगीर खान नाम का शख्स अपनी जेब में लेकर घूमता था। फलता में लोग न सिर्फ वोट डालने से रोके जाते थे बल्कि इसकी वो शिकायत तक किसी से नहीं कर सकते थे। जहांगीर खान के नाम का खौफ कुछ ऐसा रहा कि मतदान के दिन घर से लोग पहले नहीं निकल सकते थे।
7: जहांगीर खान जो कि तृणमूल कांग्रेस के स्ट्रांग मैन माना जाते थे, वो पुष्पा झुकेगा नहीं ऐसा कहा था और वो खुद अपने वोट से नाम हटा लिए। तो क्या लगता है कि इतने दिनों से उनका डर यहाँ पे था?
8: हाँ, उसके लिए डर के लिए सब बाहर निकल नहीं सकता है कि ऐसा किया था। और अभी हम रनिंग CM जो है वो तो आके हम लोग का रोड शो किया है, जो सब अपना से वोट दो, कोई डर नहीं करेगा। भय आउट भर सही।
6: जहांगीर खान जो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड बताया जाता है। चुनाव प्रचार में जहांगीर खान अभिषेक बनर्जी के इर्द गिर्द ही रहता था। दावा है किसी लिए जब वो फलता में विपक्षी पार्टियों को प्रचार करने से रोकता था तो उसे रोकने की हिम्मत कोई अफसर नहीं जुटा पाता था।
7: ये भी सुनने को आ रहा था कि यहाँ पे जो लोग वोट में विरोधी जो लोग रहते थे, जो कैंडिडेट रहते थे, ये भाजपा का हो या CPIM का हो, वो उनको प्रचार भी करने नहीं दिया जाता था। क्या ये सही है?
5: एकदम सही है सर। कोई भी आदमी प्रचार करने आए तो उसके लिए वो तो जहांगीर जो है ना, वो पूरा पूरा बंद कर देते थे, यानी दुकान बंद, पूरा करने नहीं देते।
8: शाम को उठा के चला जाता था पार्टी ऑफिस में।
6: ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जहांगीर खान की ममता सरकार में तूती बोलती थी। फलता में तो उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता था। इसीलिए जब उत्तर प्रदेश से बंगाल में चुनाव ड्यूटी पर गए IPS अजय पाल शर्मा मतदाताओं की तरफ से डराने धमकाने की शिकायत पर एक्शन लिया तो ये जहांगीर खान को पसंद नहीं आया।
9: आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत।
6: इसके बाद जहांगीर खान सामने आए और उसने फिल्मी स्टाइल में डायलॉग मारा कि अगर अजयपाल शर्मा सिंघम है तो मैं पुष्पा
10: हूँ। सिंघम मन सिनेमा पुष्पा छुपेगा नहीं।
6: जहांगीर खान के तेवर चुनाव नतीजे आने से पहले तक ही रहे। 4 मई के बाद बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ना तो उसकी दादागिरी बची ना फलता में जहांगीर की मौजूदगी रही। आज तक संवाददाता निर्माण फलता में जब जहांगीर खान के 3 मंजिला इमारत में उससे बात करने पहुंचते हैं तो वहां ताला लटका मिलता है।
7: जहांगीर जी कोई है क्या अंदर? जहांगीर जी वैसे तो कोई दिख नहीं रहा है और सामने ताला भी मारा हुआ है यहाँ पे। और इस वक्त जो है कि सबसे हाई सेंसिटिव ये इलाका कहा जाता है क्योंकि कहीं पे यहाँ पे बहुत सारे आरोप लगे हैं। दूसरी चरण की जो मतदान थी 29 तारीख को उस समय पर, क्योंकि हमने देखा कि कहीं पे लोग पूरी आंदोलन पे उतर आए रास्ते में और उसके साथ साथ बीजेपी के तरफ से दूसरे पार्टियों की तरफ से भी बहुत सारी ऐसी आरोप लगाए गई कि जहांगीर खान यहां पे मतदान करने नहीं देते हैं लोगों को।
6: जहांगीर खान सत्ता के दम पर ही खौफ फैलाता रहा, इसीलिए जैसे ही ममता सरकार की विदाई हुई पहले उसने खुद को चुनाव की रेस से अलग किया और अब वहां से फरार हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि जनता बेखौफ होकर वोट डाल अपने घर से निकली। फलता में दोबारा हुआ पुनर्मतदान पश्चिम बंगाल के बदलाव से खबरदार करता है। बताता है कि सिर्फ 26 दिन मतदाताओं को डराने धमकाने वाला जहांगीर खान छुप चुका है। उसे कानून का खौफ सताता है, जबकि 29 अप्रैल को हुए मतदान जहांगीर पर लोगों को डराने धमकाने का आरोप लगा। फलता में राजनीतिक हिंसा हुई लेकिन सरकार बदलने के बाद दोबारा चुनाव में माहौल शांतिपूर्ण दिखा। जनता खुलकर वोट डालती दिखी तो जहांगीर खान का नामो निशान यहाँ खत्म दिखा।
7: काफी भारी मात्रा में लोग बाहर आ रहे हैं, अपनी मतदान कर रहे हैं। और अब पुष्पा जो जहांगीर खान अपने आप को बता रहे थे वो तो फिलहाल अब ये मतदान की जो रस्म है वो रस्म से बाहर चली गई है, लेकिन उनका जो ईवीएम मशीन है उनमें तो उनका नाम रहेगा।
4: पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार घुसपैठ को रोकने के लिए ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घुसपैठ के खिलाफ अपने 3D फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद बंगाल में अवैध घुसपैठियों की पहचान भी होगी और बॉर्डर पर सुरक्षा भी पुख्ता होगी।
11: ये हमारे NDA का पॉलिसी है माननीय, डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर डिटेक्ट डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करेंगे।
6: पश्चिम बंगाल में घुसपैठ को बीजेपी ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। जनता से वायदा किया कि बंगाल की सत्ता में आते ही वो घुसपैठ रोकने का काम करेगी।
12: पश्चिम बंगाल में भी बहुत जरूरी है कि घुसपैठियों को बाहर किया जाए। आपको घुसपैठियों और यहाँ के सत्ताधारी लोगों के इस गठजोड़ को तोड़ना ही होगा।
6: पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार ने 10 दिन में वो काम कर दिखाने का दावा किया है जो ममता बनर्जी ने 12 साल से लटका रखा। बांग्लादेश की सीमा पर कटीले तार लगाने के लिए शुभेंदु सरकार ने सिलीगुड़ी वाले इलाके में 27 किलोमीटर की जमीन BSF को सौंप दी।
13: नाउ वी आर रेडी टू हैंड ओवर 27 किलोमीटर फेंसिंग लैंड अलोंग विथ फ्यू बॉर्डर आउटपोस्ट लैंड्स एंड बीएसएफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लैंड।
6: शुभेंदु सरकार की कोशिश जल्द से जल्द बांग्लादेश की सीमा को सुरक्षित कर जनता से वादा पूरा करने की है। राज्य सरकार से जमीन मिलने के बाद बीएसएफ और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर बाड़ लगाने का काम भी शुरू कर दिया है। ये पश्चिम बंगाल का कूच बिहार है, जहां पर अवैध घुसपैठ की वजह से सामाजिक बदलाव में दावे बरसों से हो रहे हैं, इसके बावजूद यहां पर तारबंदी नहीं है। शुभेंदु सरकार के यहां पर फेंसिंग करने के लिए बीएसएफ को जमीन देने के फैसले से हलचल देखने को मिली। बीएसएफ की टीम ने यहां पर काम भी शुरू कर दिया है।
14: और इसी बॉर्डर पिलर से कुछ ही देर पहले आगे बांग्लादेश आते हैं। मेरा पीछे जो पैडी फील्ड है उसको छोड़ के एक मक्की का खेत दिखा रहा है, वो मक्की खेत छोड़ने के बाद ही मिलेगा आपको बांग्लादेश। और इसी जगह में इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा होता है, बॉर्डर स्मगलिंग का मुद्दा होता है, लेकिन इस रोकने के लिए फेंसिंग जरूरी है। और इस फेंसिंग देने के लिए बार बार बीएसएफ ने वेस्ट बंगाल सरकार को जमीन मांगे थे, लेकिन जमीन मिला नहीं। इसी बॉर्डर पिलर से 400 मीटर बाद में होगा नया फेंसिंग, इसलिए जमीन लेने का कार्रवाई चालू हो गया। और कुछ बिहार जिला का दिनहाटा दो ब्लॉक में 18 एकड़ जमीन दिया जाएगा बीएसएफ को।
6: पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई 2216 किलोमीटर है, जिसमें से 1647 किलोमीटर सीमा पर बाड़ लगाई जा चुकी है। वहीं 570 किलोमीटर के हिस्से में काम होना भी बाकी। बीजेपी का आरोप रहा है कि ममता के सरकार में रहते तुष्टिकरण की वजह से इस काम में खलल पड़ता रहा।
13: 555 किलोमीटर एमन इलाका रही है, जिखने राज्य सरकार चाहले बीएसएफ के जमी दीते पारत, किंतु राज्य सरकार विगत राज्य सरकार राजनैतिक कारण भोट बैंकर जो एवं तादेज जे हाई एपिजमेंट तुष्टिकरण तोषणेर एजेंडा छिलो, सेई कारणे तारा होयतो दायनी।
6: लेकिन बंगाल में बीजेपी अब सरकार बनते शुभेंदु अधिकारी इस मामले में एक्शन में दिख रहे हैं, जिससे बांग्लादेश सीमा पर रहने वाले लोगों को अवैध घुसपैठ की समस्या से निजात मिलने की उम्मीद है।
11: फेंसिंग होने से बीएसएफ का काम भी कुछ हल्का होगा। हमारा जो प्रतिरक्षा है, देश का जो सुरक्षा है, ये अच्छा होगा। और स्मगलिंग और जो इन्फिल्ट्रेशन टोटली सुरक्षित,
15: इधर फोर्स आएगा तो उधर जो हमारा जो चेकिंग होता है, ये कोई गेस्ट आता है तो घर से जाना पड़ता है आदमी लेने के लिए, फिर छोड़ने के लिए जाना पड़ता है, वो समस्या समझना होगा।
13: सीए ते बोला आछे सातटा कम्युनिटी बा धर्म पालन करा लोकेरा तारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्टर आवताय आसबेन, एवं तादेरके जारा 31/12/2024 पर्यन्त एसेछेन तादेरके कोनो पुलिस कोथाओ हैरासमेंट डिटेन करते पारबे ना।
6: तो पश्चिम बंगाल में सीएए से अवैध घुसपैठिए पकड़े जाएंगे, शरणार्थियों और घुसपैठियों में अंतर किया जाएगा, बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों की पहचान होने पर उन्हें बीएसएफ के हवाले किया जाएगा, जो बांग्लादेश से बात करके उन्हें भेजने का इंतजाम करेगी।
13: सीएए रावताय जरा नहीं तारा होलेन कम्प्लीटली अवैध अनुप्रवेशकारी इनफिल्ट्रेटर्स, तादेरके सरासरि राज्य पुलिस ग्रेफ्तार करबे एवं डिटेन करबे एवं हैंडओवर करबे बीएसएफ के हाथे।
6: बीएसएफ ने जिस तेजी से बांग्लादेश की सीमा पर पिलर लगाने के लिए सर्वे शुरू किया, उससे उम्मीद की जानी चाहिए कि बॉर्डर पर फेंसिंग का काम रिकॉर्ड समय में होगा। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से चिकन नेक की 120 एकड़ जमीन सौंपने से देश की सुरक्षा मजबूत होगी। चिकन नेक में आने वाले 7 हाईवे की देखरेख केंद्र कर पाएगा, जो ममता सरकार में पीडब्ल्यूडी के पास था, लेकिन बंगाल में सरकार बदलने के बाद बॉर्डर पर हालात अब बदल जाएंगे।
4: जयपुर में हाई लेवल हंगामा देखने को मिला है। नीट पेपर लीक के विरोध में कांग्रेस ने जयपुर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के नेता हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी दफ्तर का घेराव करने पहुंचे। कांग्रेस मांग कर रही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें।
16: नीट पेपर लीक को लेकर जयपुर में हंगामा बरपा है। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ के खिलाफ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन हुई है। 41 डिग्री के तापमान में तख्तियों पर तेवर लिखकर पहुंचे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। प्रचंड धूप में भी सरकार के खिलाफ तल्खियां दिखा रहे हैं कांग्रेस के नेता। कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय की तरफ बढ़ने वाले थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। पुलिस को वाटर कैनन चलाना पड़ा।
17: पानी की बौछारें शुरू कर दी गई है, पानी डाला जा रहा है। यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, जो बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वाटर कैनन से भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। जयपुर में
16: वाटर कैनन चलने के बाद भी कार्यकर्ता जमे रहे और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते रहे।
18: युवाओं का मुद्दा है, असली चोर पकड़ा गया। कांग्रेस को बदनाम कर रहे थे, चोरी ये कर रहे थे।
16: इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेडिंग का घेरा तोड़कर आगे बढ़ने के लिए धक्का मुक्की करते दिखे।
19: प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी के नेतृत्व के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर प्रदर्शन हुआ है, यहाँ भी प्रदर्शन हुआ है।
16: इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता भी थी। प्रदर्शनकारी लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। कांग्रेस ने नीट पेपर लीक को बड़ा मुद्दा बना लिया है, इसी के सहारे वो अपनी सियासत को नई धार दे रही है। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
4: और अब बात ईरान और अमेरिका युद्ध की करेंगे। एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि अगर ईरान ने डील के लिए भेजे गए प्रस्ताव पर सही जवाब नहीं दिया तो अमेरिका हमला करने के लिए तैयार है। तो अमेरिका के वॉर मिनिस्टर पीट हिट्सेक ने कहा है लॉक्ड एंड लोडेड। तो आइए देखते हैं इसका मतलब क्या है।
0: 7 अप्रैल से भले ही ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम चल रहा है, लेकिन उसी घड़ी से धमकियों का महायुद्ध भी जारी है। फिर भी झुकना तो दूर की बात, ईरान ट्रंप की धमकियों के आगे टस से बस होने के लिए तैयार नहीं है। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बार ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है अगर ईरान ने डील के लिए भेजे गए प्रस्ताव पर सही जवाब नहीं दिया तो अमेरिका हमला करने के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें ईरान से शत प्रतिशत सही जवाब चाहिए। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर 2 दिन रुकने से वो लोगों को मारे जाने से बचा सके तो ये अच्छी बात होगी। आपको बता दें कि अमेरिका एक ऐसी डील का इंतजार कर रहा है जिसमें ईरान परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह छोड़ दे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोल दे। ट्रंप ने ईरान को पराजित देश बताते हुए कहा कि अगर ईरान ने जल्द फैसला नहीं किया तो बड़े पैमाने पर हमला शुरू हो जाएगा।
20: I mean, I'm saying 2 or 3 days, maybe Friday, Saturday, Sunday, something, maybe early next week, a limited period of time. Because we can't let them have a nuclear weapon.
0: अब सवाल यह है कि क्या वाकई ईरान ट्रंप की इन धमकियों के दबाव में आएगा। दूसरी तरफ ईरान की सरकारी एजेंसी नूर न्यूज ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई के हवाले से कहा है कि हमें अमेरिका के व्यूज मिल गए हैं और हम उनकी समीक्षा कर रहे हैं। और इस बीच अमेरिका के वॉर मिनिस्टर पीट हेक्सेथ ने भी सोशल मीडिया पर ईरान को बड़ी धमकी दे दी है। पीट हेक्सेथ ने लिखा है लॉक्ड एंड लोडेड। उन्होंने ये कमेंट अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के उस पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा है जिसमें ये कहा गया है कि ईरान के साथ ऐसी डील नहीं होगी जिससे उसे परमाणु हथियार बनाने की छूट मिल जाए। जेडी वैंस ने भी अपने पोस्ट में लॉक एंड लोडेड लिखा था। साथ ही ये कहा था कि अमेरिका नहीं चाहता कि उसे फिर से युद्ध के रास्ते पर जाना पड़े, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप इसके लिए तैयार हैं कि अगर युद्ध करना पड़ा तो इसकी इच्छा और क्षमता दोनों ही उनमें मौजूद है। यानी राष्ट्रपति ट्रंप से लेकर उपराष्ट्रपति और अब युद्ध मंत्री भी ईरान के खिलाफ फिर से जंग की धमकी दे रहे हैं।
21: We think that we've made a lot of progress. We think the Iranians want to make a deal. The President of the United States has asked us to negotiate in good faith, and that's exactly what we've done. So we're in a pretty good spot here, but there's an option B. And the option B is that we could restart the military campaign to continue to prosecute the case, to continue to try to achieve America's objectives. And we could talk a little bit about what that looks like, but that's not what the president wants, and I don't think it's what the Iranians want either.
0: लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब पूरा अमेरिकी प्रशासन ईरान को धमकियां देने पर उतारू है, तो फिर इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमला आखिरी समय में क्यों टाला? इससे जुड़ी एक बड़ी खबर न्यूज वेबसाइट मिडल ईस्ट आई के हवाले से आ रही है, जिसमें दावा किया गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने खाड़ी देशों के अपने सहयोगियों और अपने ही अधिकारियों की इस चेतावनी के बाद फैसला लिया कि हज यात्रा के दौरान युद्ध शुरू न किया जाए। खाड़ी देशों के दो वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार ट्रंप को बताया गया था कि हज यात्रा के दौरान ईरान पर हमला करने से खाड़ी देशों के भीतर संकट पैदा हो जाएगा, क्योंकि इससे लाखों तीर्थ यात्री वहीं फंस जाएंगे। सूत्रों ने यह भी बताया कि ट्रंप को आगाह किया गया था कि इस पवित्र समय के दौरान, जो इस्लामी त्योहार ईद उल अजहा से ठीक पहले का समय होता है, हमला करने से मुस्लिम जगत में वॉशिंगटन की साख को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। अमेरिका ने इससे पहले मुसलमानों के पवित्र महीने रमजान के दौरान ईरान पर हमला किया था, लेकिन हज के समय ऐसा करने से सऊदी अरब के सामने भारी लॉजिस्टिक चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। सऊदी अरब हर साल लगभग 10 लाख विदेशी तीर्थ यात्रियों की मेजबानी करता है। ये चुनौतियां खाड़ी देशों के हवाई यात्रा केंद्रों जैसे कतर और यूएई और दक्षिण तथा पूर्वी एशिया के उन देशों तक भी फैल जाएंगी जहां से कई तीर्थ यात्री अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अगर ये खबर सही है तो डोनाल्ड ट्रंप मई महीने में हमला करने से बचेंगे, यानी अब ये हमला जून के पहले हफ्ते में हो सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका लाख कोशिशों के बावजूद हुर्मुज खुलवाने में नाकाम रहा है। ईरान के पास इस वक्त हुर्मुज की नाकेबंदी सबसे बड़ा हथियार है और वो इस मुद्दे पर लगातार अमेरिका को चढ़ा रहा है। बड़ी खबर IRGC नौसेना के राजनीतिक उप प्रमुख के हवाले से आ रही है। मोहम्मद अकबर जादेह ने तंज करते हुए कहा है कि हुर्मुज जल डब्लू मध्य को कमांडर तंसीरी के आदेश पर बंद कर दिया गया था। यही नहीं, अपने तमाम दाव पेचों और चालों के बावजूद अमेरिका इसे फिर से खोलने में नाकाम रहा है। दुश्मन को ना तो ईरान के बारे में सही खुफिया जानकारी है, न ही समझ और अक्ल है। आपको बता दें कि अली रिजा तंसीरी ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC नेवी के कमांडर थे। उन्हें हुर्मुज बंद करने की रणनीति का मास्टरमाइंड माना जाता था। 26 मार्च 2026 को बंदर अब्बास में इजरायली एयर स्ट्राइक में वो बुरी तरह घायल हुए और 4 दिन बाद उनकी मौत हो गई। आज तक ब्यूरो।
4: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: अलग और रिपोर्ट कार्ड। कामकाज पर मंत्रियों ने दिया प्रेजेंटेशन। पीएम ने ईज ऑफ लिविंग और रिफॉर्म पर जोर दिया, कहा 2047 को ध्यान में रखते हुए करेगा। प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से बड़े निवेश को मिली मंजूरी, पीयूष गोयल का बड़ा बयान। सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा समेत कुल 57 बड़े समझौते, विपक्ष ने फिर उठाए सवाल। मारुति ने कारों के दाम में किया 30,000 तक का इजाफा, जून से लागू हो जाएंगी नई कीमतें। बिहार में सुधा और राजस्थान में सरस ने दूध की कीमत में बढ़ाए 2 रुपए। नीट कांड को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को फिर से घेरा, पोस्ट में लिखा, यहां पेपर लीक से युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, वहां इटली में मोदी रील बना रहे हैं। बंगाल में बकरीद में गायों की कुर्बानी पर बरकरार रहेगी रोक, शुभेंदु सरकार के फैसले पर रोक लगाने वाली याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट से खारिज, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का दिया गया हवाला। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को ढेर कर दिया गया है। आतंकी हमजा को पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में गोली मारी गई थी। खूंखार हमजा को साल 2022 में भारत सरकार ने यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया था और अब उसका अंत हो चुका है। तो आइए देखते हैं कि कौन है वो धुरंधर जो पाकिस्तान में छुपे आतंकवादियों को निपटा रहा है।
1: धुरंधर ने पाकिस्तानी हमजा को निपटाया, आतंकियों में खौफ छाया। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पीओके में सरेआम हत्या। हाफिज सईद डरा, मसूद अजहर दहला, लखवी का कांप उठा कलेजा। पाकिस्तान में धुरंधर कौन, एक के बाद एक आतंकियों का काम तमाम। हमजा बुरहान का पूरा सच पुलवामा से लेकर मुजफ्फराबाद तक। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में आराम से अपनी जिंदगी जी रहे आतंकी हमजा बुरहान के सामने काल बनकर कौन आया, इस सवाल का जवाब है धड़ाधड़ हो रही आतंकियों की हत्याएं। जिन्हें कोई अज्ञात हमलावर आता है और काम तमाम करके चला जाता है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के अंदर कई आतंकियों पर न सिर्फ बड़े हमले हुए हैं बल्कि कई की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या भी हो चुकी है और इन हत्याओं के पीछे किसी अज्ञात हमलावर का हाथ बताया जा रहा है। पिछले दिनों लश्करे तैयबा फाउंडर चीफ और हाफिज सईद के बराबर का दर्जा पाने वाले आमिर हमजा पर हमला होता है लेकिन वो बाल बाल बच जाता है। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बशीर अहमद पीर की मौत हो जाती है। वो जम्मू कश्मीर में हथियारबंद आतंकवादियों की भर्ती करने और घुसपैठ कराने के लिए जिम्मेदार था। अल बद्र के कमांडर सैयद खालिद रजा और जैश ए मोहम्मद के मिस्त्री जहूर इब्राहिम को कराची में अलग अलग हमलों में गोली मार दी गई। और अब नंबर लगा है पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान का। आतंकी हमजा बुरहान की पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में गोली मार कर हत्या कर दी गई। मुजफ्फराबाद के एआईएमएस हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर घुसकर सीधे हमजा के सिर में गोली मारी जाती है और आतंकी हमजा बुरहान वहीं ढेर हो जाता है। हमजा बुरहान उर्फ अर्जुमन गुलजार डार स्कूल के अंदर अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। 14 फरवरी 2019 पुलवामा जम्मू कश्मीर, दोपहर 3:30 बजे। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर विस्फोटक से लदी एक कार आती है जो सीधे सीआरपीएफ के काफिले की बस से टकरा जाती है और इस आतंकी हमले में देश के 40 बहादुर जवान शहीद हो जाते हैं। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और पुलवामा अटैक की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली। ये पुलवामा अटैक भारत सरकार के लिए बहुत बड़ा और गहरा जख्म था और जब इस हमले में आतंकी हमजा बुरहान के मास्टरमाइंड होने का पता चला तो भारत ने 2022 में उसे यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया। आपको बता दें कि पाकिस्तान जाने से पहले हमजा बुरहान कभी दक्षिण कश्मीर का कमांडर था। साल 2018 में हमजा और उसकी ब्रिगेड ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो भी रिलीज किया था जिसमें वो खुद अपना नाम बोलता है और अपने मिशन के बारे में बताता है।
2: मैं हमजा बुरहान डिविजनल कमांडर साउथ कश्मीर आपके सामने आज हाजिर हुआ हूँ इस वजह से कि जो तहब में अलबद्र मुजाहिदीन ने कार्रवाई की है जिसमें कुछ मुर्तजीन जख्मी हुए हैं। हम अलबद्र मुजाहिदीन इस कार्रवाई की जिम्मेदारी कबूल करते हैं और आइंदा भी ऐसे ग्रेनेड और पुलिस वालों पे हमले एसटीएफ पे हमले पॉलिटिकल वर्कर्स के हमले की जिम्मेदारी आज से ही अहद अपना बनाते हैं इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से आज से ही हम हमारा टारगेट ये मुर्तदीन होंगे और लाजिमन जो जम्मू कश्मीर पुलिस है इसको हम आज से ही ये आखिरी वार्निंग होगी इनके नाम कोई वार्निंग हम नहीं इनके लिए बेशक हमारा बस एक ही पैगाम होगा अगर ये पीछे मुड़े तो ठीक वरना ये अपने अंजाम को नजर रखे।
1: रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलवामा और शोपिया में हमजा का नेटवर्क तेजी से फैला। उसने यूसुफ बलोच नाम के एक हथियार सप्लायर के साथ मिलकर भर्ती और हथियार पहुंचाने का काम शुरू किया। हर महीने नए लड़कों को आतंकी संगठनों में शामिल किया जाता और कुछ ही समय बाद उनमें से कई मारे जाते। आरोप है कि ये पूरा नेटवर्क विचारधारा से ज्यादा पैसों और फायदे के लिए चलाया जा रहा था। श्रीनगर के लाबायपुरा एनकाउंटर का मामला भी उसके नाम से जोड़ा गया। हमजा बुरहान उर्फ अर्जुमन गुलजार डार पुलवामा के रात्रिपुरा इलाके का रहने वाला था लेकिन साल 2017 में वो पाकिस्तान चला गया और हमजा खतरनाक आतंकी संगठन अल बद्र से जुड़ जाता है। अल बद्र घोषित आतंकी संगठन है। अल बद्र में शामिल होने के बाद हमजा 2019 में पुलवामा हमले की साजिश में शामिल होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमजा बुरहान पाकिस्तान में कारोबार कर रहा था और ऑनलाइन माध्यम से युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा था। क्योंकि बुरहान की मेडिकल फील्ड में दिलचस्पी थी तो उसे आतंक की दुनिया में डॉक्टर के नाम से भी बुलाया जाता था। लेकिन अब हमजा बुरहान उर्फ अर्जुमन गुलजार डार का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो चुका है। किसी अज्ञात ने हमजा को गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया। अब पुलवामा में हमजा बुरहान का परिवार मौत का मातम मना रहा है।
3: करीबन 2 बजे मुझे फोन आया मलंगपुरा कैंप से कि आपका बेटा अर्जुमन गुलजार मुजफ्फराबाद में उस पर अटैक हो गया और मारा गया। इसके बाद MIU जो इनकी एजेंसी है उनसे भी मैंने रबते किया, उन्होंने भी ये कन्फर्म किया, पुलवामा पुलिस ने भी उनको भी उन्होंने ये कन्फर्म कर दिया कि उसे मुजफ्फराबाद में अटैक हो गया और मारा गया।
4: हम पाकिस्तान वैलिड डॉक्यूमेंट्स पे गए थे थ्रू वीजा पासपोर्ट के जरिए वो गए थे MBBS के लिए पाकिस्तान। तो फिर 1-2 महीने हमारा रबता था उससे तो बोल रहे थे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ यहाँ पे MBBS की डिग्री ले रहा हूँ। तो फिर जब हमें पता चला कि उसने दूसरी राह इख्तियार की है जो उनके यहाँ के कानून की नजर में या सबकी नजर में गलत है तो हमने फिर उससे रबता छोड़ दिया, सब कुछ गलत हो गया। तो उसकी वजह से हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसे कि मेरे भाइयों को, हम सबको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मेरा एक भाई है मुझसे छोटा है और वो 2019 के केस बीच का है, उसने केस क्वालिफाई किया है, आज 4 साल से वो जेल में है।
1: हमजा बुरहान जहन्नुम पहुंच चुका है लेकिन अब दहशत फैली है पाकिस्तान में पल रहे आतंकी संगठनों और आतंक के आकाओं में। चाहे वो हाफिज सईद हो, मौलाना मसूद अजहर हो या फिर जकीउर रहमान लखवी, आतंक के इन आकाओं के नाम UAPA की लिस्ट में शामिल हैं और जो हमजा बुरहान मारा गया है उसका नाम भी UAPA की लिस्ट में शामिल था। पुलवामा से वीर फरीद के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
0: और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। जी हाँ, बंगाल के फलता में दोबारा मतदान हुआ है जिसमें बंपर वोटिंग हुई है। फलता में 87% से ज्यादा मतदान हुआ है। फलता में जहां मतदाताओं में उत्साह नजर आया तो वहीं TMC के नेता और प्रत्याशी जहांगीर खान नदारद थे। जहांगीर खान 29 अप्रैल को हुए मतदान में खुद को पुष्पा बता रहे थे, दावा कर रहे थे कि वो झुकेंगे नहीं, लेकिन 26 दिन के बाद फलता में अभिषेक बनर्जी के चहेते पुष्पा का अता पता नहीं था।
5: 15 साल से हम लोग जो वोट दे नहीं दे रहा पाया था, अभी जो है पूरा माहौल जो है हम सब मेरे मर्जी से वोट दे रहा था, वोट दे रहा है, खुशी से वोट दे रहा है, सुबह से ही पोलिंग चल रहा है, वोट दे रहा है, हम कोई प्रॉब्लम नहीं।
6: सोचिए, ये उस देश के नागरिक बोल रहे हैं जिन्हें संविधान से वोट देने का अधिकार मिला हुआ है। लेकिन पश्चिम बंगाल के फलता में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो खुलकर अब पूरे देश को बताते हैं कि संविधान से मिले उनके मौलिक अधिकार को ही जहांगीर खान नाम का शख्स अपनी जेब में लेकर घूमता था। फलता में लोग न सिर्फ वोट डालने से रोके जाते थे बल्कि इसकी वो शिकायत तक किसी से नहीं कर सकते। जहांगीर खान के नाम का खौफ कुछ ऐसा रहा कि मतदान के दिन घर से लोग पहले नहीं निकल सकते।
7: जहांगीर खान जो कि तृणमूल कांग्रेस के स्ट्रांग मैन माना जाते थे, वो पुष्पा झुकेगा नहीं ऐसा कहा था और वो खुद अपने वोट से नाम हटा लिए, तो क्या लगता है कि इतने दिनों से उनका डर यहाँ पे था?
8: हाँ, उसके लिए डर के लिए सब बाहर निकल नहीं सकता है कि ऐसा किया था। और अभी हम रनिंग सीएम जो है वो तो आके हम लोग का रोड शो किया है, जो सब अपना से वोट दो, कोई डर नहीं करेगा। भय आउट भर सही।
6: जहांगीर खान जो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड बताया जाता है। चुनाव प्रचार में जहांगीर खान अभिषेक बनर्जी के इर्द गिर्द ही रहता था। दावा है कि इसीलिए जब वो फलता में विपक्षी पार्टियों को प्रचार करने से रोकता था तो उसे रोकने की हिम्मत कोई अफसर नहीं जुटा पाता था।
7: ये भी सुनने को आ रहा था कि यहाँ पे जो लोग वोट में विरोधी जो लोग रहते थे, जो कैंडिडेट रहते थे, ये भाजपा का हो या सीपीआईएम का हो, वो उनको प्रचार भी करने नहीं दिया जाता था। क्या ये सही है?
5: एकदम सही है सर। कोई भी आदमी प्रचार करने आए तो उसके लिए वो तो जहांगीर जो है ना वो पूरा पूरा बंद कर देते थे, यानी दुकान बंद पूरा करने नहीं देते।
8: शाम को उठा के चला जाता था पार्टी ऑफिस में।
6: ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जहांगीर खान की ममता सरकार में तूती बोलती थी। फलता में तो उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। इसीलिए जब उत्तर प्रदेश से बंगाल में चुनाव ड्यूटी पर गए आईपीएस अजय पाल शर्मा ने मतदाताओं की तरफ से डराने धमकाने की शिकायत पर एक्शन लिया तो ये जहांगीर खान को पसंद नहीं आया।
9: आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत।
6: इसके बाद जहांगीर खान सामने आए और उसने फिल्मी स्टाइल में डायलॉग मारा कि अगर अजय पाल शर्मा सिंघम है तो मैं पुष्पा
10: हूँ। सिंघम मन सिनेमा पुष्पा छुपेगा नहीं।
6: जहांगीर खान के तेवर चुनाव नतीजे आने से पहले तक ही रहे। 4 मई के बाद बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ना तो उसकी दादागिरी बची ना फलता में जहांगीर की मौजूदगी रही। आज तक संवाददाता निर्माण फलता में जब जहांगीर खान के 3 मंजिला इमारत में उससे बात करने पहुंचते हैं तो वहां ताला लटका मिलता है।
7: जहांगीर जी कोई है क्या अंदर? जहांगीर जी वैसे तो कोई दिख नहीं रहा है और सामने ताला भी मारा हुआ है यहाँ पे। और इस वक्त जो है कि सबसे हाई सेंसिटिव ये इलाका कहा जाता है क्योंकि कहीं पे यहाँ पे बहुत सारे आरोप लगे हैं दूसरी चरण की जो मतदान थी 29 तारीख को उस समय पर, क्योंकि हमने देखा कि कहीं पे लोग पूरी आंदोलन पे उतर आए रास्ते में और उसके साथ साथ बीजेपी के तरफ से दूसरे पार्टियों की तरफ से भी बहुत सारी ऐसी आरोप लगाए गई कि जहांगीर खान यहाँ पे मतदान करने नहीं देते हैं लोगों को।
6: जहांगीर खान सत्ता के दम पर ही खौफ फैलाता रहा, इसीलिए जैसे ही ममता सरकार की विदाई हुई पहले उसने खुद को चुनाव की रेस से अलग किया और अब वहां से फरार हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि जनता बेखौफ होकर वोट डाल अपने घर से निकली। फलता में दोबारा हुआ पुनर्मतदान पश्चिम बंगाल के बदलाव से खबरदार करता है। बताता है कि सिर्फ 26 दिन मतदाताओं को डराने धमकाने वाला जहांगीर खान छुप चुका है। उसे कानून का खौफ सताता है, जबकि 29 अप्रैल को हुए मतदान जहांगीर पर लोगों को डराने धमकाने का आरोप लगा। फलता में राजनीतिक हिंसा हुई लेकिन सरकार बदलने के बाद दोबारा चुनाव में माहौल शांतिपूर्ण दिखा। जनता खुलकर वोट डालती दिखी तो जहांगीर खान का नामो निशान यहाँ खत्म दिखा।
7: काफी भारी मात्रा में लोग बाहर आ रहे हैं, अपनी मतदान कर रहे हैं और पुष्पा जो जहांगीर खान अपने आप को बता रहे थे वो तो फिलहाल अब ये मतदान की जो रस्म है वो रस्म से बाहर चली गई है, लेकिन उनका जो ईवीएम मशीन है उनमें तो उनका नाम रहेगा।
0: पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार घुसपैठ को रोकने के लिए ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घुसपैठ के खिलाफ अपने 3D फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद बंगाल में अवैध घुसपैठियों की पहचान भी होगी और बॉर्डर पर सुरक्षा भी पुख्ता होगी।
11: ये हमारे NDA का पॉलिसी है मान्यवर, डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर डिटेक्ट डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करेंगे।
12: पश्चिम बंगाल में घुसपैठ को बीजेपी ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया, जनता से वायदा किया कि बंगाल की सत्ता में आते ही वो घुसपैठ रोकने का काम करेगी।
13: पश्चिम बंगाल में भी बहुत जरूरी है कि घुसपैठियों को बाहर किया जाए। आपको घुसपैठियों और यहां के सत्ताधारी लोगों के इस गठजोड़ को तोड़ना ही होगा।
12: पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार ने 10 दिन में वो काम कर दिखाने का दावा किया है जो ममता बनर्जी ने 12 साल से लटकाए रखा। बांग्लादेश की सीमा पर कटीले तार लगाने के लिए शुभेंदु सरकार ने सिलगुड़ी वाले इलाके में 27 किलोमीटर की जमीन BSF को सौंप दी।
14: नाउ वी आर रेडी टू हैंड ओवर 27 किलोमीटर फेंसिंग लैंड अलोंग विथ फ्यू बीओ बॉर्डर आउटपोस्ट लैंड्स एंड BSF इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लैंड।
12: शुभेंदु सरकार की कोशिश जल्द से जल्द बांग्लादेश की सीमा को सुरक्षित कर जनता से वादा पूरा करने की है। राज्य सरकार से जमीन मिलने के बाद BSF और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर बाड़ लगाने का काम भी शुरू कर दिया है। ये पश्चिम बंगाल का कूच बिहार है, जहाँ पर अवैध घुसपैठ की वजह से सामाजिक बदलाव में दावे बरसों से हो रहे हैं, इसके बावजूद यहाँ पर तारबंदी नहीं है। शुभेंदु सरकार के यहाँ पर फेंसिंग करने के लिए BSF को जमीन देने के फैसले से हलचल देखने को मिली। BSF की टीम ने यहाँ पर काम भी शुरू कर दिया है।
15: और इसी बॉर्डर फिलर से कुछ ही देर पहले आगे बांग्लादेश आते हैं। मेरा पीछे जो पैडी फील्ड है उसको छोड़ के एक मक्की का खेत दिखा रहा है, वो मक्की खेत छोड़ने के बाद ही मिलेगा आपको बांग्लादेश। और इसी जगह में इनफिल्ट्रेशन का मुद्दा होता है, बॉर्डर स्मगलिंग का मुद्दा होता है, लेकिन इस रोकने के लिए फेंसिंग जरूरी है। और इस फेंसिंग देने के लिए बार बार BSF ने वेस्ट बंगाल सरकार को जमीन मांगे थे, लेकिन जमीन मिला नहीं। इसी बॉर्डर पिलर से 400 मीटर बाद में होगा नया फेंसिंग, इसलिए जमीन लेने का कार्रवाई चालू हो गया। और कुछ बिहार जिला का दिनहाटा 2 ब्लॉक में 18 एकड़ जमीन दिया जाएगा BSF को।
12: पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई 2216 किलोमीटर है, जिसमें से 1647 किलोमीटर सीमा पर बाड़ लगाई जा चुकी है, वहीं 570 किलोमीटर के हिस्से में काम होना भी बाकी। BJP का आरोप रहा है कि ममता के सरकार में रहते तुष्टिकरण की वजह से इस काम में खलल पड़ता रहा।
14: 555 किलोमीटर एमन इलाका रही है जिखने राज्य सरकार चाहले BSF के जमी दीते पारत, किंतु राज्य सरकार विगत राज्य सरकार राजनैतिक कारण भोट बैंकर जो एवं तरह जे हाई एपिजमेंट तुष्टिकरण तोषण एजेंडा छिलो से ही कारण तारा है तो देनी।
12: लेकिन बंगाल में BJP अब सरकार बनते शुभेंदु अधिकारी इस मामले में एक्शन में दिख रहे हैं, जिससे बांग्लादेश सीमा पर रहने वाले लोगों को अवैध घुसपैठ की समस्या से निजात मिलने की उम्मीद है।
16: फेंसिंग होने से BSF का काम भी कुछ हल्का होगा। हमारा जो प्रतिरक्षा है, देश का जो सुरक्षा है, ये अच्छा होगा। और स्मगलिंग और जो इन्फिल्ट्रेशन टोटली शुड बी स्टॉप।
17: इधर फोर्स आएगा तो उधर जो हमारा जो चेकिंग होता है, कोई गेस्ट आता है तो घर से जाना पड़ता है आदमी लेने के लिए, फिर छोड़ने के लिए जाना पड़ता है, वो समस्या समझना होगा।
14: সিএ তে বলা আছে সাতটা কমিউনিটি বা ধর্ম পালন করা লোকেরা তারা সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের আওতায় আসবেন এবং তাদেরকে যারা 31/12/2024 পর্যন্ত এসেছেন তাদেরকে কোনো পুলিশ কোথাও হ্যারাসমেন্ট ডিটেন করতে পারবে না।
12: তো পশ্চিম বঙ্গাল মে সিএএ সে অবৈধ ঘুসপাঠিয়ে পকড়ে যায়গে, শরণার্থী আর ঘুসপাঠিয়ো মে অন্তর কিয়া যায়গা, বাংলাদেশী অবৈধ ঘুসপাঠিয়ো কি পহচান হোনে পর উন্হে বিএসএফ কে হওয়ালে কিয়া যায়গা, জো বাংলাদেশ সে বাত করকে উন্হে ভেজনে কা ইন্তজাম করেগি।
14: সিএএ এর আওতায় যারা নেই তারা হলেন কমপ্লিটলি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ইনফিল্ট্রেটরস, তাদেরকে সরাসরি রাজ্য পুলিশ গ্রেপ্তার করবে এবং ডিটেন করবে এবং হ্যান্ডওভার করবে বিএসএফ এর হাতে।
12: বিএসএফ নে জিস তেজি সে বাংলাদেশ কি সীমা পর পিলার লাগানে কে লিয়ে সার্ভে শুরু কিয়া উসসে উম্মীদ কি জানি চাহিয়ে কি বর্ডার পর ফেন্সিং কা কাম রেকর্ড সময় মে হোগা। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से चिकन नेक की 120 एकड़ जमीन सौंपने से देश की सुरक्षा मजबूत होगी। चिकन नेक में आने वाले 7 हाईवे की देखरेख केंद्र कर पाएगा जो ममता सरकार में पीडब्ल्यूडी के पास था, लेकिन बंगाल में सरकार बदलने के बाद बॉर्डर पर हालात अब बदल जाएंगे।
0: और अब बात ईरान और अमेरिका युद्ध की करेंगे। एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि अगर ईरान ने डील के लिए भेजे गए प्रस्ताव पर सही जवाब नहीं दिया तो अमेरिका हमला करने के लिए तैयार है। तो अमेरिका के वॉर मिनिस्टर पीट हिट्सेक ने कहा है लॉक्ड एंड लोडेड। तो आइए देखते हैं इसका मतलब क्या है।
1: 7 अप्रैल से भले ही ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम चल रहा है लेकिन उसी घड़ी से धमकियों का महायुद्ध भी जारी है। फिर भी झुकना तो दूर की बात, ईरान ट्रंप की धमकियों के आगे टस से बस होने के लिए तैयार नहीं है और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बार ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है अगर ईरान ने डील के लिए भेजे गए प्रस्ताव पर सही जवाब नहीं दिया तो अमेरिका हमला करने के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि उन्हें ईरान से शत प्रतिशत सही जवाब चाहिए। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर 2 दिन रुकने से वो लोगों को मारे जाने से बचा सके तो ये अच्छी बात होगी। आपको बता दें कि अमेरिका एक ऐसी डील का इंतजार कर रहा है जिसमें ईरान परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह छोड़ दे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोल दे। ट्रंप ने ईरान को पराजित देश बताते हुए कहा कि अगर ईरान ने जल्द फैसला नहीं किया तो बड़े पैमाने पर हमला शुरू हो जाएगा।
18: I mean, I'm saying 2 or 3 days, maybe Friday, Saturday, Sunday, something, maybe early next week, a limited period of time. Because we can't let them have a nuclear weapon.
1: अब सवाल ये है कि क्या वाकई ईरान ट्रंप की इन धमकियों के दबाव में आएगा। दूसरी तरफ ईरान की सरकारी एजेंसी नूर न्यूज ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई के हवाले से कहा है कि हमें अमेरिका के व्यूज मिल गए हैं और हम उनकी समीक्षा कर रहे हैं। और इस बीच अमेरिका के वॉर मिनिस्टर पीट हेक्सेथ ने भी सोशल मीडिया पर ईरान को बड़ी धमकी दे दी है। पीट हेक्सेथ ने लिखा है लॉक्ड एंड लोडेड। उन्होंने ये कमेंट अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के उस पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा है जिसमें ये कहा गया है कि ईरान के साथ ऐसी डील नहीं होगी जिससे उसे परमाणु हथियार बनाने की छूट मिल जाए। जेडी वैंस ने भी अपने पोस्ट में लॉक एंड लोडेड लिखा था। साथ ही ये कहा था कि अमेरिका नहीं चाहता कि उसे फिर से युद्ध के रास्ते पर जाना पड़े लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप इसके लिए तैयार हैं कि अगर युद्ध करना पड़ा तो इसकी इच्छा और क्षमता दोनों ही उनमें मौजूद है। यानी राष्ट्रपति ट्रंप से लेकर उपराष्ट्रपति और अब युद्ध मंत्री भी ईरान के खिलाफ फिर से जंग की धमकी दे रहे हैं।
19: We think that we've made a lot of progress. We think the Iranians want to make a deal. The President of the United States has asked us to negotiate in good faith, and that's exactly what we've done. So we're in a pretty good spot here, but there's an option B. And the option B is that we could restart the military campaign to continue to prosecute the case, to continue to try to achieve America's objectives. And we could talk a little bit about what that looks like, but that's not what the president wants, and I don't think it's what the Iranians want either.
1: लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब पूरा अमेरिकी प्रशासन ईरान को धमकियां देने पर उतारू है तो फिर इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमला आखिरी समय में क्यों टाला। इससे जुड़ी एक बड़ी खबर न्यूज वेबसाइट मिडल ईस्ट आई के हवाले से आ रही है। जिसमें दावा किया गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने खाड़ी देशों के अपने सहयोगियों और अपने ही अधिकारियों की इस चेतावनी के बाद फैसला लिया कि हज यात्रा के दौरान युद्ध शुरू न किया जाए। खाड़ी देशों के दो वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार ट्रंप को बताया गया था कि हज यात्रा के दौरान ईरान पर हमला करने से खाड़ी देशों के भीतर संकट पैदा हो जाएगा, क्योंकि इससे लाखों तीर्थ यात्री वहीं फंस जाएंगे। सूत्रों ने यह भी बताया कि ट्रंप को आगाह किया गया था कि इस पवित्र समय के दौरान, जो इस्लामी त्योहार ईद उल अजहा से ठीक पहले का समय होता है, हमला करने से मुस्लिम जगत में वॉशिंगटन की साख को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। अमेरिका ने इससे पहले मुसलमानों के पवित्र महीने रमजान के दौरान ईरान पर हमला किया था, लेकिन हज के समय ऐसा करने से सऊदी अरब के सामने भारी लॉजिस्टिक चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। सऊदी अरब हर साल लगभग 10 लाख विदेशी तीर्थ यात्रियों की मेजबानी करता है। ये चुनौतियां खाड़ी देशों के हवाई यात्रा केंद्रों जैसे कतर और यूएई और दक्षिण तथा पूर्वी एशिया के उन देशों तक भी फैल जाएंगी जहां से कई तीर्थ यात्री अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अगर ये खबर सही है तो डोनाल्ड ट्रंप मई महीने में हमला करने से बचेंगे, यानी अब ये हमला जून के पहले हफ्ते में हो सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका लाख कोशिशों के बावजूद हुर्मुज खुलवाने में नाकाम रहा है। ईरान के पास इस वक्त हुर्मुज की नाकेबंदी सबसे बड़ा हथियार है और वो इस मुद्दे पर लगातार अमेरिका को चढ़ा रहा है। बड़ी खबर IRGC नौसेना के राजनीतिक उप प्रमुख के हवाले से आ रही है। मोहम्मद अकबर जादेह ने तंज करते हुए कहा है कि हुर्मुज जल डब्लू मध्य को कमांडर तंसीरी के आदेश पर बंद कर दिया गया था। यही नहीं, अपने तमाम दाव पेचों और चालों के बावजूद अमेरिका इसे फिर से खोलने में नाकाम रहा है। दुश्मन को ना तो ईरान के बारे में सही खुफिया जानकारी है, न ही समझ और अक्ल है। आपको बता दें कि अली रिजा तंसीरी ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC नेवी के कमांडर थे,

0: मंत्री परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री ने देखा मंत्रालयों का रिपोर्ट कार्ड, कामकाज पर मंत्री ने दिया प्रेजेंटेशन, पीएम ने ईज ऑफ लिविंग और रिफॉर्म पर जोर दिया, कहा 2047 को ध्यान में रखते हुए करेगा। प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से बड़े निवेश को मिली मंजूरी, पीयूष गोयल का बड़ा बयान, सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा समेत कुल 57 बड़े समझौते, विपक्ष ने फिर उठाए सवाल। मारुति ने कारों के दाम में किया 30,000 तक का इजाफा, जून से लागू हो जाएंगी नई कीमतें, बिहार में सुधा और राजस्थान में सरस ने दूध की कीमत में बढ़ाए 2 रुपए। नीट कांड को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को फिर से घेरा, पोस्ट में लिखा यहां पेपर लीक से युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, वहां इटली में मोदी रील बना रहे हैं। बंगाल में बकरीद में गायों की कुर्बानी पर बरकरार रहेगी रोक, शुभेंदु सरकार के फैसले पर रोक लगाने वाली याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट से खारिज, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का दिया गया हवाला। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को ढेर कर दिया गया है। आतंकी हमजा को पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में गोली मारी गई थी। खूंखार हमजा को साल 2022 में भारत सरकार ने यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया था और अब उसका अंत हो चुका है। तो आइए देखते हैं कि कौन है वो धुरंधर जो पाकिस्तान में छुपे आतंकवादियों को निपटा रहा है।
1: धुरंधर ने पाकिस्तानी हमजा को निपटाया, आतंकियों में खौफ छाया। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पीओके में सरेआम हत्या। हाफिज सईद डरा, मसूद अजहर दहला, लखवी का कांप उठा कलेजा। पाकिस्तान में धुरंधर कौन, एक के बाद एक आतंकियों का काम तमाम। हमजा बुरहान का पूरा सच पुलवामा से लेकर मुजफ्फराबाद तक। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में आराम से अपनी जिंदगी जी रहे आतंकी हमजा बुरहान के सामने काल बनकर कौन आया, इस सवाल का जवाब है धड़ाधड़ हो रही आतंकियों की हत्याएं, जिन्हें कोई अज्ञात हमलावर आता है और काम तमाम करके चला जाता है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के अंदर कई आतंकियों पर न सिर्फ बड़े हमले हुए हैं बल्कि कई की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या भी हो चुकी है और इन हत्याओं के पीछे किसी अज्ञात हमलावर का हाथ बताया जा रहा है। पिछले दिनों लश्कर ए तैयबा फाउंडर चीफ और हाफिज सईद के बराबर का दर्जा पाने वाले आमिर हमजा पर हमला होता है लेकिन वो बाल बाल बच जाता है। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बशीर अहमद पीर की मौत हो जाती है। वो जम्मू कश्मीर में हथियारबंद आतंकवादियों की भर्ती करने और घुसपैठ कराने के लिए जिम्मेदार था। अल बद्र के कमांडर सैयद खालिद रजा और जैश ए मोहम्मद के मिस्त्री जहूर इब्राहिम को कराची में अलग अलग हमलों में गोली मार दी गई। और अब नंबर लगा है पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान का। आतंकी हमजा बुरहान की पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में

0: गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुजफ्फराबाद के AIMS हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर घुसकर सीधे हमजा के सिर में गोली मारी जाती है और आतंकी हमजा बुरहान वहीं ढेर हो जाता है। हमजा बुरहान उर्फ अर्जुमन गुलजार डार स्कूल के अंदर अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। 14 फरवरी 2019 पुलवामा जम्मू कश्मीर दोपहर 3:30 बजे जम्मू श्रीनगर हाईवे पर विस्फोटक से लदी एक कार आती है जो सीधे CRPF के काफले की बस से टकरा जाती है और इस आतंकी हमले में देश के 40 बहादुर जवान शहीद हो जाते हैं। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और पुलवामा अटैक की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली। ये पुलवामा अटैक भारत सरकार के लिए बहुत बड़ा और गहरा जख्म था और जब इस हमले में आतंकी हमजा बुरहान के मास्टरमाइंड होने का पता चला तो भारत ने 2022 में उसे UAPA के तहत आतंकी घोषित किया। आपको बता दें कि पाकिस्तान जाने से पहले हमजा बुरहान कभी दक्षिण कश्मीर का कमांडर था। साल 2018 में हमजा और उसकी ब्रिगेड ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो भी रिलीज किया था जिसमें वो खुद अपना नाम बोलता है और अपने मिशन के बारे में बताता है।
1: मैं हमजा बुरहान, डिविजनल कमांडर साउथ कश्मीर, आपके सामने आज हाजिर हुआ हूँ इस वजह से कि जो ताहब में अलबदर मुजाहिदीन ने कार्रवाई की है जिसमें कुछ मुर्तजीन जख्मी हुए हैं। हम अलबदर मुजाहिदीन इस कार्रवाई की जिम्मेदारी कबूल करते हैं और आइंदा भी ऐसे ग्रेनेड और पुलिस वालों पे हमले, SPF पे हमले, पॉलिटिकल वर्कर्स के हमले की जिम्मेदारी आज से ही अहद अपना बनाते हैं। इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से आज से ही हमारा टारगेट ये मुर्तदीन होंगे और लाजिमन जो जम्मू कश्मीर पुलिस है इसको हम आज से ही ये आखिरी वार्निंग होगी इनके नाम, कोई वार्निंग हम नहीं इनके लिए, बेशक हमारा बस एक ही पैगाम होगा अगर ये पीछे मुड़े तो ठीक वरना ये अपने अंजाम को नजर रखे।
0: रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलवामा और शोपिया में हमजा का नेटवर्क तेजी से फैला। उसने यूसुफ बलोच नाम के एक हथियार सप्लायर के साथ मिलकर भर्ती और हथियार पहुंचाने का काम शुरू किया। हर महीने नए लड़कों को आतंकी संगठनों में शामिल किया जाता और कुछ ही समय बाद उनमें से कई मारे जाते। आरोप है कि ये पूरा नेटवर्क विचारधारा से ज्यादा पैसों और फायदे के लिए चलाया जा रहा था। श्रीनगर के लाबायपुरा एनकाउंटर का मामला भी उसके नाम से जोड़ा गया। हमजा बुरहान उर्फ अर्जुमन गुलजार डार पुलवामा के रात्रिपुरा इलाके का रहने वाला था लेकिन साल 2017 में वो पाकिस्तान चला गया और हमजा खतरनाक आतंकी संगठन अल बद्र से जुड़ जाता है। अल बद्र घोषित आतंकी संगठन है। अल बद्र में शामिल होने के बाद हमजा 2019 में पुलवामा हमले की साजिश में शामिल होता है। रिपोर्ट के मुताबिक हमजा बुरहान पाकिस्तान में कारोबार कर रहा था और ऑनलाइन माध्यम से युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा था। क्योंकि बुरहान की मेडिकल फील्ड में दिलचस्पी थी तो उसे आतंक की दुनिया में डॉक्टर के नाम से भी बुलाया जाता था। लेकिन अब हमजा बुरहान उर्फ अर्जुमन गुलजार डार का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो चुका है। किसी अज्ञात ने हमजा को गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया। अब पुलवामा में हमजा बुरहान का परिवार मौत का मातम मना रहा है।
2: करीबन 2 बजे मुझे फोन आया मलंगपुरा कैंप से कि आपका बेटा अर्जुमन गुलजार मुजफ्फराबाद में उस पर अटैक हो गया और मारा गया। इसके बाद MIU जो इनकी एजेंसी है उनसे भी मैंने रابطہ किया, उन्होंने भी ये कंफर्म किया, पुलवामा पुलिस ने भी उनको भी उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि उसे मुजफ्फराबाद में अटैक हो गया और मारा गया।
3: हम पाकिस्तान वैलिड डॉक्यूमेंट्स पे गए थे थ्रू वीजा पासपोर्ट के जरिए, वो गए थे MBBS के लिए पाकिस्तान। तो फिर 1-2 महीने हमारा रابطہ था उससे, तो बोल रहे थे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ यहाँ पे, MBBS की डिग्री ले रहा हूँ। तो फिर जब हमें पता चला कि उसने दूसरी राह इख्तियार की है जो उनके यहाँ के कानून की नज़र में या सबकी नज़र में गलत है, तो हमने फिर उससे रابطہ छोड़ दिया, सब कुछ गलत हो गया। तो उसकी वजह से हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसे कि मेरे भाइयों को, हम सबको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मेरा एक भाई है मुझसे छोटा है और वो 2019 के केस बीच का है, उसने केस क्वालिफाई किया है, आज 4 साल से वो जेल में है।
0: हमजा बुरहान जहन्नुम पहुंच चुका है लेकिन अब दहशत फैली है पाकिस्तान में पल रहे आतंकी संगठनों और आतंक के आकाओं में। चाहे वो हाफिज सईद हो, मौलाना मसूद अजहर हो या फिर जकीउर रहमान लखवी, आतंक के इन आकाओं के नाम यूएपीए की लिस्ट में शामिल हैं और जो हमजा बुरहान मारा गया है उसका नाम भी यूएपीए की लिस्ट में शामिल था। पुलवामा से दीप फरीद के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
4: और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। जी हां, बंगाल के फलता में दोबारा मतदान हुआ है जिसमें बंपर वोटिंग हुई है। फलता में 87% से ज्यादा मतदान हुआ है। फलता में जहां मतदाताओं में उत्साह नजर आया तो वहीं टीएमसी के नेता और प्रत्याशी जहांगीर खान नदारद थे। जहांगीर खान 29 अप्रैल को हुए मतदान में खुद को पुष्पा बता रहे थे, दावा कर रहे थे कि वो झुकेंगे नहीं, लेकिन 26 दिन के बाद फलता में अभिषेक बनर्जी के चहेते पुष्पा का अता पता नहीं था।
5: 15 साल से हम लोग जो वोट दे नहीं दे रहा पाया था, अभी जो है पूरा माहौल जो है हम सब मेरे मर्जी से वोट दे रहा था, वोट दे रहा है, खुशी से वोट दे रहा है, सुबह से ही पोलिंग चल रहा है, वोट दे रहा है, हम कोई प्रॉब्लम नहीं।
6: सोचिए, ये उस देश के नागरिक बोल रहे हैं जिन्हें संविधान से वोट देने का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन पश्चिम बंगाल के फलता में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो खुलकर अब पूरे देश को बताते हैं कि संविधान से मिले उनके मौलिक अधिकार को भी जहांगीर खान नाम का शख्स अपनी जेब में लेकर घूमता था। फलता में लोग न सिर्फ वोट डालने से रोके जाते थे बल्कि इसकी वो शिकायत तक किसी से नहीं कर सकते थे। जहांगीर खान के नाम का खौफ कुछ ऐसा रहा कि मतदान के दिन घर से लोग पहले नहीं निकल सकते थे।
7: जहांगीर खान जो कि तृणमूल कांग्रेस के स्ट्रांग मैन माना जाते थे, वो पुष्पा झुकेगा नहीं ऐसा कहा था और वो खुद अपने वोट से नाम हटा लिए, तो क्या लगता है कि इतने दिनों से उनका डर यहाँ पे था?
8: हाँ, उसके लिए डर के लिए सब बाहर निकल नहीं सकता है कि ऐसा किया था। और अभी हम रनिंग सीएम जो है वो तो आके हम लोग का रोड शो किया है, जो सब अपना से वोट दो, कोई डर नहीं करेगा। भय आउट भर सैन।
6: जहांगीर खान जो पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड बताया जाता है। चुनाव प्रचार में जहांगीर खान अभिषेक बनर्जी के इर्द गिर्द ही रहता था। दावा है कि इसीलिए जब वो फलता में विपक्षी पार्टियों को प्रचार करने से रोकता था तो उसे रोकने की हिम्मत कोई अफसर नहीं जुटा पाता था।
7: ये भी सुनने को आ रहा था कि यहाँ पे जो लोग वोट में विरोधी जो लोग रहते थे, जो कैंडिडेट रहते थे, ये भाजपा का हो या सीपीआईएम का हो, वो उनको प्रचार भी करने नहीं दिया जाता था। क्या ये सही है?
5: एकदम सही है सर। कोई भी आदमी प्रचार करने आए तो उसके लिए वो तो जहांगीर जो है ना वो पूरा पूरा बंद कर देते थे, यानी दुकान बंद पूरा करने नहीं देते।
8: शाम को उठा के चला जाता था पार्टी ऑफिस में।
6: ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जहांगीर खान की ममता सरकार में तूती बोलती थी। फलता में तो उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। इसीलिए जब उत्तर प्रदेश से बंगाल में चुनाव ड्यूटी पर गए आईपीएस अजय पाल शर्मा ने मतदाताओं की तरफ से डराने धमकाने की शिकायत पर एक्शन लिया तो ये जहांगीर खान को पसंद नहीं आया।
9: आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत।
6: इसके बाद जहांगीर खान सामने आया और उसने फिल्मी स्टाइल में डायलॉग मारा कि अगर अजय पाल शर्मा सिंघम है तो मैं पुष्पा
10: हूँ। सिंघम मने करे सिनेमार आर्टिस्ट आमरा पुष्पा छुपेगा नहीं।
6: जहांगीर खान के तेवर चुनाव नतीजे आने से पहले तक ही रहे। 4 मई के बाद बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ना तो उसकी दादागिरी बची ना फलता में जहांगीर की मौजूदगी रही। आज तक संवाददाता निर्माण फलता में जब जहांगीर खान के 3 मंजिला इमारत में उससे बात करने पहुंचते हैं तो वहां ताला लटका मिलता है।
7: जहांगीर जी, कोई है क्या अंदर? जहांगीर जी, वैसे तो कोई दिख नहीं रहा है और सामने ताला भी मारा हुआ है यहाँ पे, और इस वक्त जो है कि सबसे हाई सेंसिटिव ये इलाका कहा जाता है क्योंकि कहीं पे यहाँ पे बहुत सारे आरोप लगे हैं दूसरी चरण की जो मतदान थी 29 तारीख को उस समय पर, क्योंकि हमने देखा कि कहीं पे लोग पूरी आंदोलन पे उतर आए रास्ते में, और उसके साथ साथ बीजेपी के तरफ से, दूसरे पार्टियों की तरफ से भी बहुत सारी ऐसी आरोप लगाए गई कि जहांगीर खान यहां पे मतदान करने नहीं देते हैं लोगों को।
6: जहांगीर खान सत्ता के दम पर ही खौफ फैलाता रहा, इसीलिए जैसे ही ममता सरकार की विदाई हुई पहले उसने खुद को चुनाव की रेस से अलग किया और अब वहां से फरार हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि जनता बेखौफ होकर वोट डाल अपने घर से निकली। फलता में दोबारा हुआ पुनर्मतदान पश्चिम बंगाल के बदलाव से खबरदार करता है। बताता है कि सिर्फ 26 दिन मतदाताओं को डराने धमकाने वाला जहांगीर खान छुप चुका है। उसे कानून का खौफ सताता है, जबकि 29 अप्रैल को हुए मतदान जहांगीर पर लोगों को डराने धमकाने का आरोप लगा। फलता में राजनीतिक हिंसा हुई, लेकिन सरकार बदलने के बाद दोबारा चुनाव में माहौल शांतिपूर्ण दिखा, जनता खुलकर वोट डालती दिखी, तो जहांगीर खान का नामो निशान यहां खत्म दिखा।
7: काफी भारी मात्रा में लोग बाहर आ रहे हैं, अपनी मतदान कर रहे हैं, और पुष्पा जो जहांगीर खान अपने आप को बता रहे थे वो तो फिलहाल अब ये मतदान की जो रस्म है वो रस्म से बाहर चली गई है, लेकिन उनका जो ईवीएम मशीन है उनमें तो उनका नाम रहेगा।
4: पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार घुसपैठ को रोकने के लिए ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घुसपैठ के खिलाफ अपने 3D फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद बंगाल में अवैध घुसपैठियों की पहचान भी होगी और बॉर्डर पर सुरक्षा भी पुख्ता होगी।
11: ये हमारे NDA का पॉलिसी है मान्यवर, डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर डिटेक्ट डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करेंगे।
6: पश्चिम बंगाल में घुसपैठ को बीजेपी ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया, जनता से वायदा किया कि बंगाल की सत्ता में आते ही वो घुसपैठ रोकने का काम करेगी।
12: पश्चिम बंगाल में भी बहुत जरूरी है कि घुसपैठियों को बाहर किया जाए। आपको घुसपैठियों और यहां के सत्ताधारी लोगों के इस गठजोड़ को तोड़ना ही होगा।
6: पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार ने 10 दिन में वो काम कर दिखाने का दावा किया है जो ममता बनर्जी ने 12 साल से लटकाए रखा। बांग्लादेश की सीमा पर कटीले तार लगाने के लिए शुभेंदु सरकार ने सिलीगुड़ी वाले इलाके में 27 किलोमीटर की जमीन BSF को सौंप दी।
13: नाउ वी आर रेडी टू हैंड ओवर 27 किलोमीटर फेंसिंग लैंड अलोंग विथ फ्यू बीओ बॉर्डर आउटपोस्ट लैंड्स एंड BSF इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लैंड।
6: शुभेंदु सरकार की कोशिश जल्द से जल्द बांग्लादेश की सीमा को सुरक्षित कर जनता से वादा पूरा करने की है। राज्य सरकार से जमीन मिलने के बाद BSF और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर बाड़ लगाने का काम भी शुरू कर दिया है। ये पश्चिम बंगाल का कूच बिहार है, जहाँ पर अवैध घुसपैठ की वजह से सामाजिक बदलाव में दावे बरसों से हो रहे हैं, इसके बावजूद यहाँ पर तारबंदी नहीं है। शुभेंदु सरकार के यहाँ पर फेंसिंग करने के लिए BSF को जमीन देने के फैसले से हलचल देखने को मिली। BSF की टीम ने यहाँ पर काम भी शुरू कर दिया है।
14: और इसी बॉर्डर फिलर से कुछ ही देर पहले आगे बांग्लादेश आते हैं। मेरा पीछे जो पैडी फील्ड है उसको छोड़ के एक मक्की का खेत दिखा रहा है, वो मक्की खेत छोड़ने के बाद ही मिलेगा आपको बांग्लादेश। और इसी जगह में इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा होता है, बॉर्डर स्मगलिंग का मुद्दा होता है, लेकिन इस रोकने के लिए फेंसिंग जरूरी है। और इस फेंसिंग देने के लिए बार बार BSF ने वेस्ट बंगाल सरकार को जमीन मांगे थे, लेकिन जमीन मिला नहीं। इसी बॉर्डर पिलर से 400 मीटर बाद में होगा नया फेंसिंग, इसलिए जमीन लेने का कार्रवाई चालू हो गया। और कुछ बिहार जिला का दिनहाटा 2 ब्लॉक में 18 एकड़ जमीन दिया जाएगा BSF को।
6: पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई 2216 किलोमीटर है, जिसमें से 1647 किलोमीटर सीमा पर बाड़ लगाई जा चुकी है। वहीं 570 किलोमीटर के हिस्से में काम होना भी बाकी। बीजेपी का आरोप रहा है कि ममता के सरकार में रहते तुष्टिकरण की वजह से इस काम में खलल पड़ता रहा।
13: 555 किलोमीटर एमन इलाका रही है जेखने राज्य सरकार चाहले बीएसएफ के जमी दीते पारत, किंतु राज्य सरकार विगत राज्य सरकार राजनैतिक कारण भोट बैंकर जो एवं तादेर जे हाई एपिजमेंट तुष्टिकरण तोषणेर एजेंडा छिलो सेई कारणे तारा हयतो देयनी।
6: लेकिन बंगाल में बीजेपी की अब सरकार बनते शुभेंदु अधिकारी इस मामले में एक्शन में दिख रहे हैं, जिससे बांग्लादेश सीमा पर रहने वाले लोगों को अवैध घुसपैठ की समस्या से निजात मिलने की उम्मीद है।
15: फेंसिंग होने से बीएसएफ का काम भी कुछ हल्का होगा। हमारा जो प्रतिरक्षा है, देश का जो सुरक्षा है, ये अच्छा होगा। और स्मगलिंग और जो इन्फिल्ट्रेशन टोटली शुड बी स्टॉप।
16: इधर फोर्स आएगा तो उधर जो हमारा जो चेकिंग होता है, ये कोई गेस्ट आता है तो घर से जाना पड़ता है आदमी लेने के लिए, फिर छोड़ने के लिए ले जाना पड़ता है, वो समस्या समस्या होगा।
13: सीए ते बोला आछे 7 कम्युनिटी बा धर्म पालन करा लोकेरा तारा সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের আওতায় আসবেন এবং তাদেরকে যারা 31/12/2024 পর্যন্ত এসেছেন তাদেরকে কোনো পুলিশ কোথাও হ্যারাসমেন্ট ডিটেন্ট করতে পারবে না।
6: তো পশ্চিম বঙ্গাল মে সিএএ সে অবৈধ ঘুসপাঠিয়ে পকড়ে যায়গে, শরণার্থী আর ঘুসপাঠিয়ো মে অন্তর কিয়া যায়গা, বাংলাদেশী অবৈধ ঘুসপাঠিয়ো কি পহচান হোনে পর উনহে বিএসএফ কে হাওয়ালে কিয়া যায়গা, जो बांग्लादेश से बात करके उन्हें भेजने का इंतजाम करेगी।
13: सीए रावताय जरा नहीं तारा होलेन कम्प्लीटली अवैध अनुप्रवेशकारी इनफिल्ट्रेटर्स, तादर के सरासरी राज्य पुलिस गिरफ्तार करबे एवं डिटेन करबे एवं हैंडओवर करबे बीएसएफ एर हाथे।
6: बीएसएफ ने जिस तेजी से बांग्लादेश की सीमा पर पिलर लगाने के लिए सर्वे शुरू किया, उससे उम्मीद की जानी चाहिए कि बॉर्डर पर फेंसिंग का काम रिकॉर्ड समय में होगा। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से चिकन नेक की 120 एकड़ जमीन सौंपने से देश की सुरक्षा मजबूत होगी। चिकन नेक में आने वाले 7 हाईवे की देखरेख केंद्र कर पाएगा, जो ममता सरकार में पीडब्ल्यूडी के पास था। लेकिन बंगाल में सरकार बदलने के बाद बॉर्डर पर हालात अब बदल जाएंगे।
4: जयपुर में हाई लेवल हंगामा देखने को मिला है। नीट पेपर लीक के विरोध में कांग्रेस ने जयपुर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के नेता हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी दफ्तर का घेराव करने पहुंचे। कांग्रेस मांग कर रही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें।
17: नीट पेपर लीक को लेकर जयपुर में हंगामा बरपा है। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ के खिलाफ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन भी है। 41 डिग्री के तापमान में तख्तियों पर तेवर लिखकर पहुंचे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। प्रचंड धूप में भी सरकार के खिलाफ तल्खियां दिखा रहे हैं कांग्रेस के नेता। कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय की तरफ बढ़ने वाले थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। पुलिस को वाटर कैनन चलाना पड़ा।
18: पानी की बौछारें शुरू कर दी गई है, पानी डाला जा रहा है। यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, जो बैरिकेडिंग में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वाटर कैनन से भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। जयपुर में
17: वाटर कैनन चलने के बाद भी कार्यकर्ता जमे रहे और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते रहे।
19: युवाओं का मुद्दा है, असली चोर पकड़ा गया। कांग्रेस को बदनाम कर रहे थे, चोरी ये कर रहे थे।
17: इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेडिंग का घेरा तोड़कर आगे बढ़ने के लिए धक्का मुक्की करते दिखे।
20: प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी के नेतृत्व के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर प्रदर्शन हुआ है, यहाँ भी प्रदर्शन हुआ है।
17: इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता भी थी। प्रदर्शनकारी लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। कांग्रेस ने नीट पेपर लीक को बड़ा मुद्दा बना लिया है, इसी के सहारे वो अपनी सियासत को नई धार दे रही है। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
4: और अब बात ईरान और अमेरिका युद्ध की करेंगे। एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि अगर ईरान ने डील के लिए भेजे गए प्रस्ताव पर सही जवाब नहीं दिया तो अमेरिका हमला करने के लिए तैयार है। तो अमेरिका के वॉर मिनिस्टर पीट हिट्सेक ने कहा है लॉक्ड एंड लोडेड। तो आइए देखते हैं इसका मतलब क्या है।
0: 7 अप्रैल से भले ही ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम चल रहा है, लेकिन उसी घड़ी से धमकियों का महायुद्ध भी जारी है। फिर भी झुकना तो दूर की बात, ईरान ट्रंप की धमकियों के आगे टस से बस होने के लिए तैयार नहीं है। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बार ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है, अगर ईरान ने डील के लिए भेजे गए प्रस्ताव पर सही जवाब नहीं दिया तो अमेरिका हमला करने के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि उन्हें ईरान से शत प्रतिशत सही जवाब चाहिए। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर 2 दिन रुकने से वो लोगों को मारे जाने से बचा सके तो ये अच्छी बात होगी। आपको बता दें कि अमेरिका एक ऐसी डील का इंतजार कर रहा है जिसमें ईरान परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह छोड़ दे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोल दे। ट्रंप ने ईरान को पराजित देश बताते हुए कहा कि अगर ईरान ने जल्द फैसला नहीं किया तो बड़े पैमाने पर हमला शुरू हो जाएगा।
1: I mean, I'm saying 2 or 3 days, maybe Friday, Saturday, Sunday, something, maybe early next week, a limited period of time. Because we can't let them have a nuclear weapon.
0: अब सवाल ये है कि क्या वाकई ईरान ट्रंप की इन धमकियों के दबाव में आएगा? दूसरी तरफ ईरान की सरकारी एजेंसी नूर न्यूज ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई के हवाले से कहा है कि हमें अमेरिका के व्यूज मिल गए हैं और हम उनकी समीक्षा कर रहे हैं। और इस बीच अमेरिका के वॉर मिनिस्टर पीट हेक्सेथ ने भी सोशल मीडिया पर ईरान को बड़ी धमकी दे दी है। पीट हेक्सेथ ने लिखा है लॉक्ड एंड लोडेड। उन्होंने ये कमेंट अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के उस पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा है जिसमें ये कहा गया है कि ईरान के साथ ऐसी डील नहीं होगी जिससे उसे परमाणु हथियार बनाने की छूट मिल जाए। जेडी वैंस ने भी अपने पोस्ट में लॉक्ड एंड लोडेड लिखा था। साथ ही ये कहा था कि अमेरिका नहीं चाहता कि उसे फिर से युद्ध के रास्ते पर जाना पड़े, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप इसके लिए तैयार हैं कि अगर युद्ध करना पड़ा तो इसकी इच्छा और क्षमता दोनों ही उनमें मौजूद है। यानी राष्ट्रपति ट्रंप से लेकर उपराष्ट्रपति और अब युद्ध मंत्री भी ईरान के खिलाफ फिर से जंग की धमकी दे रहे हैं।
21: We think that we've made a lot of progress. We think the Iranians want to make a deal. The President of the United States has asked us to negotiate in good faith, and that's exactly what we've done. So we're in a pretty good spot here, but there's an option B. And the option B is that we could restart the military campaign to continue to prosecute the case, to continue to try to achieve America's objectives. And we could talk a little bit about what that looks like, but that's not what the President wants, and I don't think it's what the Iranians want either.
0: लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब पूरा अमेरिकी प्रशासन ईरान को धमकियां देने पर उतारू है, तो फिर इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमला आखिरी समय में क्यों टाला? इससे जुड़ी एक बड़ी खबर न्यूज वेबसाइट मिडल ईस्ट आय के हवाले से आ रही है जिसमें दावा किया गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने खाड़ी देशों के अपने सहयोगियों और अपने ही अधिकारियों की इस चेतावनी के बाद फैसला लिया कि हज यात्रा के दौरान युद्ध शुरू न किया जाए। खाड़ी देशों के 2 वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार ट्रंप को बताया गया था कि हज यात्रा के दौरान ईरान पर हमला करने से खाड़ी देशों के भीतर संकट पैदा हो जाएगा क्योंकि इससे लाखों तीर्थ यात्री वहीं फंस जाएंगे। सूत्रों ने यह भी बताया कि ट्रंप को आगाह किया गया था कि इस पवित्र समय के दौरान जो इस्लामी त्यौहार ईद उल अजहा से ठीक पहले का समय होता है, हमला करने से मुस्लिम जगत में वॉशिंगटन की साख को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। अमेरिका ने इससे पहले मुसलमानों के पवित्र महीने रमजान के दौरान ईरान पर हमला किया था, लेकिन हज के समय ऐसा करने से सऊदी अरब के सामने भारी लॉजिस्टिक चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। सऊदी अरब हर साल लगभग 10 लाख विदेशी तीर्थ यात्रियों की मेजबानी करता है। ये चुनौतियां खाड़ी देशों के हवाई यात्रा केंद्रों जैसे कतर और यूएई और दक्षिण तथा पूर्वी एशिया के उन देशों तक भी फैल जाएंगी जहां से कई तीर्थ यात्री अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अगर ये खबर सही है तो डोनाल्ड ट्रंप मई महीने में हमला करने से बचेंगे, यानी अब ये हमला जून के पहले हफ्ते में हो सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका लाख कोशिशों के बावजूद हॉर्मुज खुलवाने में नाकाम रहा है। ईरान के पास इस वक्त हॉर्मुज की नाकेबंदी सबसे बड़ा हथियार है और वो इस मुद्दे पर लगातार अमेरिका को चढ़ा रहा है। बड़ी खबर IRGC नौसेना के राजनीतिक उप प्रमुख के हवाले से आ रही है। मोहम्मद अकबर जादेह ने तंज करते हुए कहा है कि हुर्मुज जल डबरू मध्य को कमांडर तनसीरी के आदेश पर बंद कर दिया गया था। यही नहीं, अपने तमाम दाव पेचों और चालों के बावजूद अमेरिका इसे फिर से खोलने में नाकाम रहा है। दुश्मन को ना तो ईरान के बारे में सही खुफिया जानकारी है, न ही समझ और अक्ल है। आपको बता दें कि अली रिजा तंगसीरी ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC नेवी के कमांडर थे। उन्हें हुर्मुज बंद करने की रणनीति का मास्टरमाइंड माना जाता था। 26 मार्च 2026 को बंदर अब्बास में इजरायली एयर स्ट्राइक में वो बुरी तरह घायल हुए और 4 दिन बाद उनकी मौत हो गई। आज तक ब्यूरो।
4: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री ने देखा मंत्रालयों का रिपोर्ट कार्ड, कामकाज पर मंत्री ने दिया प्रेजेंटेशन, पीएम ने ईज ऑफ लिविंग और रिफॉर्म पर जोर दिया, कहा 2047 को ध्यान में रखते हुए करेगा। प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से बड़े निवेश को मिली मंजूरी, पीयूष गोयल का बड़ा बयान, सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा समेत कुल 57 बड़े समझौते, विपक्ष ने फिर उठाए सवाल। मारुति ने कारों के दाम में किया 30,000 तक का इजाफा, जून से लागू हो जाएंगी नई कीमतें, बिहार में सुधा और राजस्थान में सरस ने दूध की कीमत में बढ़ाए 2 रुपए। नीट कांड को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को फिर से घेरा, पोस्ट में लिखा यहां पेपर लीक से युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, वहां इटली में मोदी रील बना रहे हैं। बंगाल में बकरीद में गायों की कुर्बानी पर बरकरार रहेगी रोक, शुभेंदु सरकार के फैसले पर रोक लगाने वाली याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट से खारिज, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का दिया गया हवाला। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को ढेर कर दिया गया है। आतंकी हमजा को पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में गोली मारी गई थी। खूंखार हमजा को साल 2022 में भारत सरकार ने यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया था और अब उसका अंत हो चुका है। तो आइए देखते हैं कि कौन है वो धुरंधर जो पाकिस्तान में छुपे आतंकवादियों को निपटा रहा है।
1: धुरंधर ने पाकिस्तानी हमजा को निपटाया, आतंकियों में खौफ छाया। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पीओके में सरेआम हत्या। हाफिज सईद डरा, मसूद अजहर दहला, लखवी का कांप उठा कलेजा। पाकिस्तान में धुरंधर कौन, एक के बाद एक आतंकियों का काम तमाम। हमजा बुरहान का पूरा सच पुलवामा से लेकर मुजफ्फराबाद तक। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में आराम से अपनी जिंदगी जी रहे आतंकी हमजा बुरहान के सामने काल बनकर कौन आया, इस सवाल का जवाब है धड़ाधड़ हो रही आतंकियों की हत्याएं, जिन्हें कोई अज्ञात हमलावर आता है और काम तमाम करके चला जाता है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के अंदर कई आतंकियों पर न सिर्फ बड़े हमले हुए हैं बल्कि कई की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या भी हो चुकी है और इन हत्याओं के पीछे किसी अज्ञात हमलावर का हाथ बताया जा रहा है। पिछले दिनों लश्करे तैयबा फाउंडर चीफ और हाफिज सईद के बराबर का दर्जा पाने वाले आमिर हमजा पर हमला होता है लेकिन वो बाल बाल बच जाता है। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बशीर अहमद पीर की मौत हो जाती है। वो जम्मू कश्मीर में हथियारबंद आतंकवादियों की भर्ती करने और घुसपैठ कराने के लिए जिम्मेदार था। अल बद्र के कमांडर